इतनी मामा की गारंटी है, कभी दुख का स्वप्न में भी कोई दृश्य नहीं आएगा, संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आएगी। तो सदा हर एक को अगर राज्य लेना है तो अभी अपने परिवार, सतयुग के साथी और रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा सब अभी बना सकते हो। 21 जन्म की गारंटी है। थोड़ी सी सेवा करो, समय निकालो, क्योंकि आपके पास संकल्प शक्ति तो है ही। सिर्फ जो बाप से मिला है वो अपने भाई बहनों को भी दो। बाबा कहते सिर्फ जो बाप से मिला है वो अपने भाई बहनों को भी दो। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि सदा ये चेक करो। कौन सी बात चेक करो? कि मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कार मिलन की रास करना आता है। बाप दादा ने कहा था वो रास कब करेंगे, उसकी डेट भी फिक्स करो। फिक्स हो सकती है, हो सकती है। पहली लाइन बताओ, हाथ उठाओ, हो सकती है। पांडव भी उठाओ, पांडव के बिना गति नहीं है। अच्छा, तो अभी लास्ट टर्न है, एक टन रहा हुआ है, उसमें हर एक अपने लिए क्या दृढ़ संकल्प है वो फिक्स करके लिखना ना? नेक्स्ट टर्न जब तक आए, लास्ट टर्न जब तक आए, तो बाबा कहे उसमें हर एक अपने लिए क्या दृढ़ संकल्प किया है वो फिक्स करके लिखना। कितना समय लगेगा? जो ब्राह्मण परिवार में कहां भी कभी भी संस्कार अपना कार्य नहीं करे, चाहे मेरा संस्कार चाहे दूसरे का संस्कार भी मेरे को प्रभाव में नहीं डाले। ये डेट फिक्स हो सकती है, हो सकती है। हाथ उठाओ। अच्छा, सभी का फोटो निकालो, क्योंकि जैसे ये अचानक सीन देखी ना, जापान में भूकंप और सुनामी आई जिसमें बहुत नुकसान हुआ, तो बाबा कहते ये अचानक सीन देखी, ऐसे सब अचानक ही होना है, इसलिए बाप दादा तैयारी तो देखेंगे ना। जब दूसरे को शुभ भावना, शुभकामना देते हो, बाप ने देखा ये दूसरों की सेवा का प्रोग्राम भी बनाया था, तो अगर हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना और शुभकामना रखो, नंबर वार तो होना ही है। आपकी यादगार माला में सब एक नंबर है क्या? नंबर वार है, लेकिन माला में तो पिरोए है ना, नंबर क्यों मिला? भिन्न भिन्न संस्कार है, लेकिन हमको संस्कार देखने के बजाय शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। कितना पक्का बाबा कराते, किसी के कैसे भी संस्कार है, संस्कार देखने के बजाय हमारा काम है शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। आखिर भी ब्राह्मण परिवार है ना, कैसा भी है परिवार तो मेरा है ना। बाबा कहते कैसा भी है परिवार तो मेरा है ना, जैसे मेरा बाबा कहते हो वैसे मेरा परिवार भी है। तो अच्छा है मेजॉरिटी ने हाथ उठाया है, तो सभी का उमंग उत्साह है, तब तो हाथ उठाया है ना। तो एक दो के सहयोगी बन, शुभ भावना, शुभ कामना की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति रखने से ये रास होना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा यही चाहते, शुभ भावना, शुभ कामना की रास बहुत सुंदर हो। एक दो के सहयोगी बन, शुभ भावना, शुभ कामना की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति रखने से ये रास होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर जो बहुत अच्छा नंबर लेगा, डेट पर प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, उनको न्यारा और प्यारा इनाम मिलेगा। इनाम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन बाप दादा इनाम देंगे। क्यों?
सेवा करने का टाइम निकालना है ना, तो ये संस्कार की खिटखिट समय अपने तरफ खींच लेती है, इसलिए समय की अभी आवश्यकता है। ठीक है ना। फिर बाबा ने मधुबन वालों को देखकर कहा, ये सभी मधुबन वाले है ना, आगे बैठने वाले को देख बाबा बोले, पसंद है ना, क्योंकि मधुबन वासी विशेष है। बाप दादा का भी मधुबन निवासियों प्रति दिल का प्यार है और मधुबन वालों का भी है। यह भी बाबा कहते हैं, बाप से प्यार है और रहेगा, मिट नहीं सकता है, अमर है इसमें। तब तो मधुबन वासी बने हैं ना। कहां भी मधुबन वासी जाते हैं तो किस रिगार से देखते हैं, मधुबन का है, मधुबन का है। इसलिए अटेंशन रखना, लास्ट टर्न के पहले सभी मधुबन में कोई स्थान मुकरूर करना जहां अपनी चिटकी डाले, लेकिन लास्ट टर्न के पहले। सभी ने होली मनाई, आपकी तो रोज होली है। तो बाबा बच्चों को देखकर कहते हैं मधुबन वालों को, आपकी तो रोज होली है, अभी भी यह तो बाहर का थोड़ा मनाना होता है, कहां मनाने जाए, कहां जाए। बाबा कहते यही तो मनाएंगे ना, लेकिन वो हुई रीत रसम। तो सभी चारों ओर के बाप दादा के अति स्नेही, अति प्यारे, लाडले, सिकिल अधे, स्वमान धारी, हर बच्चे को बाप दादा पदम गुना याद प्यार भी दे रहे हैं और दिल का दुलार भी दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर सब सुन के देख के हर्षित हो रहे हैं, चारों ओर सब सुन के देख के हर्षित हो रहे हैं। अच्छा, आज पहली बारी कौन आए हैं, उठो कि सभी पहली बारी आए हैं। बाबा भी बच्चों को देखकर खुश होते हैं, कहते अच्छा ये सब पहली बारी आए हैं। अच्छा, पहली बारी मधुबन निवासी बनने का भाग्य प्राप्त हुआ है। सभी आपके भाई बहने और बाप दादा भी आप सभी को पहली बारी आने की मुबारक दे रहे हैं। अभी बाप दादा देखेंगे, क्योंकि चांस है कि थोड़ी देरी से आए हैं, लेकिन जो चाहे वह अभी भी लास्ट सो फास्ट जाकर के फर्स्ट नंबर लेकर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो। ये बाप दादा का जो भी आज आए हैं, उन सभी बच्चों को वरदान है कि फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो। सिर्फ जो बाप के महावाक्य है वो श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रीमत आपको फर्स्ट डिवीजन में ला सकती है। कितना सुंदर बाबा ने वरदान दिया नए को भी कि श्रीमत पर चलते रहो तो श्रीमत आपको फर्स्ट डिवीजन में ला सकती है। विधि बता दी बाबा ने कैसे करना है, फर्स्ट डिवीजन में कैसे आना है, लाएगी ना। बाबा कहते श्रीमत आपको फर्स्ट डिवीजन में ला सकती है, लाएगी। इतने सारे परिवार द्वारा आप सभी को वरदान तो बाप का होता है, लेकिन शुभ भावना शुभकामना है कि आप जितना आगे बढ़ने चाहो उतना बढ़ सकते हो। सभी आपको दिल से दुआएं देंगे, जहां भी क्लास में आते हो वहां आपको दुआएं मिलती रहेगी और वह दुआएं आपको तीव्र पुरुषार्थी बना के आगे बढ़ाएगी। ये निश्चय रखो, बाबा कहते ये निश्चय रखो। अच्छा, तभी बाप दादा सभी से बहुत बढ़िया सुंदर गुड नाइट कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सभी रूहानी बच्चों के रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी कब, जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वह उनकी पालना नहीं कर पाते, इसलिए जितनी रचना ज्यादा उतने शक्तिहीन होते हैं। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है कर्म करने के पहले आदि मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो, इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी यानी समझदार है। आज का व्यक्ति इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, आप होली हंस बच्चों का आहार भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध, अशुद्धि का नाम निशान भी ना हो, क्योंकि शुद्ध दुनिया में जा रहे हो। जहां अपवित्रता व अशुद्धि का नाम निशान नहीं है, जब ऐसे होली हंस बनते हो तब भविष्य में हिज होलीनेस कहलाते हो। ऐसे होली हंस बनते हो तब भविष्य में भी हिज होलीनेस कहलाते हो। आज की विशेष सूचना है कि मास के तीसरे रविवार का योग अभ्यास, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहनों को संगठित रूप में एकत्रित होकर के 6:30 से 7:30 बजे तक अपने परम पवित्र स्वरूप में स्थित हो पवित्रता की दिव्य किरणें फैलाते हुए सर्व आत्माओं को पवित्र बनो योगी बनो की शुभ प्रेरणाएं सकाश रूप में देने की सेवा करें। अच्छा,

ओम शांति। अपने संस्कारों को परिवर्तन करो तो तुम्हारा संसार बदल जाएगा। हमारा संसार माना हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा कर्म क्षेत्र, सब कुछ बदल जाएगा। हमारे जीवन में सहज सफलता प्राप्त होने लगेगी, निराशा के बादल छट जाएंगे और हमारे घर में सदा खुशियों के झूले में सब झूलते रहेंगे। तो हम अपने संस्कारों को बदलेंगे, अच्छी तरह पहचान लें मेरा कौन सा संस्कार मुझे कष्ट देता है या दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। ऐसा तो नहीं हम अपने किसी संस्कार को बिल्कुल राइट समझ रहे हैं और उससे सबको परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि जिस मनुष्य में अहम बहुत होता है वो सदा अपने को राइट ही समझता है। परंतु यदि हमारे द्वारा दूसरों को कष्ट पहुंच रहा है, यदि हमारी वाणी दूसरों का सुख छीन रही है, यदि हमारा क्रोध घर में अशांति पैदा कर रहा है, यदि सब लोग हमसे दूर भागना चाहते हैं, तो हमें समय लेना चाहिए। हमारे संस्कारों में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा है, हमारे स्वभाव में प्रेम नहीं है, अपनापन नहीं, शुभ भावनाएं नहीं है, और हमारे वचन ऐसे नहीं हैं जो दूसरों को प्रिय लगें, दूसरों को उमंग बढ़ाएं, दूसरों को शांति दें। तो हम अपने संस्कारों को बदलें, संसार बदल जाएगा। चेक कर लें हमारे अंदर परिवारों में या संगठनों में लड़ाई झगड़ा करने के संस्कार तो नहीं हैं। अगर हम लड़ते ही रहेंगे तो सतयुग में हमारा पार्ट कदापि नहीं हो सकेगा, हम त्रेता युग में ही आएंगे। और जब द्वापर के बाद हम नए जन्म लेना शुरू करेंगे तो भी हम लड़ते ही रहेंगे, वो संस्कार हमारा इमर्ज हो जाएगा। और जो लड़ते हैं उन्हें स्वयं भी शांति प्राप्त नहीं होती, भले ही उनके द्वारा दूसरों को अशांति मिलती है, लेकिन हम जानते हैं जो दूसरों को अशांत करते हैं वो कभी शांत रह ही नहीं पाते हैं। ये भी देख लें कि हमारे अंदर कहीं परेशान होने का संस्कार तो नहीं है, छोटी छोटी बातों में हम दुखी और परेशान होते रहते हैं। तो अगर हम अपनी श्रेष्ठ श्यान में रहेंगे, अगर हम स्वमान में रहेंगे तो हम परेशान नहीं होंगे। बाबा कई बहुत सुंदर महावाक्य याद रखेंगे, जो बच्चे स्वमान में रहते हैं उनका जिम्मेदार बाप है, और जो अहम में रहते हैं उनके जिम्मेदार वो आप हैं, वो स्वयं हैं। तो कितना अच्छा हो हमारा जिम्मेदार स्वयं भगवान बनकर रहे, वाह, हम कितने निश्चिंत हो जाएंगे। तो क्यों ना हम स्वमान में रहें और टकराव से पूरी तरह मुक्त रहें। टकराव वाली आत्मा सेवाओं में विघ्न ही डालती है, वो वातावरण को भी विषैला कर देती है और सेवाओं की सफलता को धूमिल कर देती है। वाइब्रेशंस नेगेटिव हो जाते हैं और कोई भी ऐसे स्थान पर आना नहीं चाहता है। इसलिए चेक करें, अगर टकराव हो रहा है तो हम दूसरों को जिम्मेदार न ठहराएं, स्वयं की जांच करें, मुझे स्वयं में कहां परिवर्तन करना है। अगर हम दूसरों को ही देखते रहेंगे, ये ऐसा बोलते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये बार बार गलती करते हैं, तो हम टकराव से मुक्त माहौल कभी नहीं बना सकेंगे। बहुत अच्छी ये बात सभी को बार बार याद करनी है कि दूसरा बुरे वचन बोले, हम ये सोचने की बजाय कि ये कब बदलेगा, हम ये सोचें कि मुझे अचल अडोल रहना है, तो हम उसका पुरुषार्थ करें तो दूसरे की कमी हमें शक्तिशाली बनाने वाली बन जाएगी। तो आइए आज सारा दिन हम सुंदर स्वमान का अभ्यास करें। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। इस स्वमान से
हमसे रंग बिरंगी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलने लगती हैं और वातावरण चार्ज हो जाता है। फिर ज्ञान सूर्य से बाबा का आह्वान करें, अपना धाम छोड़कर हमारे सम्मुख आ जाओ और देखें ज्ञान सूर्य महाज्योति निराकार नीचे उतर रहे हैं और आ गए हमारे सामने। ज्ञान सूर्य आंखों के सामने हैं, उनकी रंग बिरंगी किरणें सामने से मुझ पर पड़ रही हैं। ऐसा अभ्यास 1 मिनट हर घंटे में 2 बार अवश्य करें।

रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, आइए अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागतम सुस्वागतम। सुबह के सुंदर समय पर चलिए सुनते हैं एक सुंदर विचार। बहुत ही खूब किसी ने कहा कि रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से दो चीज़ें बढ़ जाती है, एक है स्वाद और दूसरा है इज्जत। किसी को स्नेह देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का स्नेह पाना सबसे बड़ा सम्मान है। इसलिए कहते हैं कि तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। कितनी सुंदर बात है दोस्तों। वैसे भी देखा जाए तो कहते हैं ना, भाषा का लहेजा। जब हम किसी भी बात को रिक्वेस्ट के रूप में नम्रतापूर्वक जी कहते हैं तो सचमुच ही इज्जत हमारे पास उस व्यक्ति की कितनी है ये भी पता चलता है। और अगर सुबह सुबह नाश्ते में गर्म रोटी पर आपको

0: घी लगा कर दिया जाए तो कितना स्वाद भी बढ़ता है। ज़िंदगी का अगर स्वाद बढ़ाना है, ज़िंदगी में अगर खुद का भी जीने का स्वाद बढ़ाना है, तो ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि हमें सबके साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। दोस्तों, चलिए सुबह के सुंदर सुविचार के साथ सबसे पहले हम अपने स्टूडियो में उपस्थित ज्ञानेश्वर जी का भी स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भक्ति जी, और आपको और हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ति जी, कितना अच्छा सुविचार है। एक जमाना था जहां रोटी पे घी लगाना आम बात थी, अभी क्या हो गया, रिश्ते सूख गए, प्यार सूख गया, व्यवहार में उसका परिवर्तन हो गया, और फिर क्या हो गया, रोटी के ऊपर घी लगाना तो दूर, घी को तो छूते भी नहीं है, बिना घी की रोटी खाते हैं, क्योंकि रिश्तों में सूखापन आ गया। और इसलिए क्या होता है, जी का मतलब किसी को जी करके संबोधन करना है, कितनी बड़ी बात है। और इसके ऊपर जब मैं सोच रहा था तो ऐसा लगा मुझे कि जैसे रिश्तों का सूखापन अगर मिटाना है तो रोटी के ऊपर घी लगाओ या नहीं लगाओ आपके डाइट के हिसाब से है, क्योंकि आजकल हर कोई डाइट कॉन्शियस होता है, कोई वीगन होता है, लेकिन जी लगाना तो बहुत आसान है। और अगर हर कोई एक दूसरे को जी करके बात करेगा, जी लगा के बात करेगा, तो जी भी लग जाएगा, और नाम के आगे जी लगाते हैं तो उसका सम्मान भी बढ़ेगा और सब झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। अभी रास्ते पे देखिए, दो व्यक्ति जो है एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, जब लड़ाई पे उतर आते हैं, शब्दों की लड़ाई होती है, बाद में हाथापाई होती है, उस समय एक दूसरे को जी करके नहीं पुकारते। लेकिन मैं तो ऐसे सोचता हूँ, ऐसे किसी ने जरूर प्रयोग करना चाहिए कि जी करके ही बात करूंगा। और फिर देखिए लड़ाई कैसी होती है, अजी मैंने तो ठीक किया था, जी मैंने तो काम बहुत अच्छा किया था, गलती से धक्का लग गया। फिर वो दूसरा क्या बोलेगा, अजी गलती से धक्का लग गया तो भी ठीक है, लेकिन आपने जबरदस्ती क्यों मारा, नहीं माफ करना जी। ऐसे दोनों एक दूसरे को जी करके बात करेंगे तो क्या होगा, सम्मान भी बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है।
0: जी ज्ञानेश्वर जी, आपने भी बिल्कुल सही कहा, और हमारे सारे श्रोतागण जो है वो भी इस बात से बिल्कुल सम्मत होंगे, है ना जी। चलिए दोस्तों, अब समय हो गया एक सुंदर कहानी सुनने का। कहानी का नाम भी बहुत सुंदर है, प्रभु मिलन का अवसर। एक समय की बात है कि एक आदमी के पास बहुत कीमती घोड़ा था। उस आदमी को एक ही चिंता लगी रहती थी प्रतिपल। कौन सी चिंता, कि कहीं कोई उस कीमती घोड़े को चुरा करने ले जाए। एक दिन वह ऐसे नौकर की खोज में निकला जो कि रात भर जाग कर घोड़े का पहरा दे सके। रास्ते में क्या हुआ, उसे एक व्यक्ति मिला जिसने उस आदमी से कहा कि आपके घोड़े की रक्षा करने के लिए मेरे जैसा उपयुक्त नौकर आपको और कोई नहीं मिल सकता। उसने पूछा क्यों, तो उस आदमी ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं रात भर सोता ही नहीं हूँ, मुझे तो सोचने की आदत है, मैं हर समय कुछ न कुछ सोचता ही रहता हूँ। बस ये जवाब सुनते ही घोड़े का मालिक इतना प्रसन्न हुआ और उस व्यक्ति को अपने घर ले आया। उसने घोड़े को कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया और चाबी नौकर को दे दी। रात्रि के 12 बजे मालिक ने सोचा कि कहीं नौकर सो तो नहीं गया, और इस बात की पुष्टि कर लेने के लिए वह नौकर के पास जाकर पहुंचा। उसने नौकर को पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो, सो तो नहीं रहे हो ना। तो नौकर क्या कहता है, नहीं साहब, मैं सोया नहीं हूं, मैं तो सोच रहा हूं। मालिक आश्वस्त हो गया। मालिक बोला, अच्छा भाई क्या सोच रहे हो। नौकर ने कहा, मालिक मैं ये सोच रहा हूं कि जब दीवार में कील ठोकी जाती है तो जिस स्थान पर कील लगती है वहां की मिट्टी कहाँ चली जाती है। मालिक उसकी मूर्खता पर मुस्कुराया और साथ ही साथ आश्वस्त भी हुआ। दोस्तों क्यों पता है कि चलो नौकर तो ठीक मिल गया, जो सोचता ही रहेगा, सोएगा नहीं। और मालिक ने उसको कहा, बहुत अच्छा सोचते रहो, और वह वापस अपने घर में आ गया। दोस्तों आगे क्या होता है मैं समझती हूँ आपको बड़ी उत्सुकता होगी। बस कुछ पल के लिए उस उत्सुकता को बनाए रखिएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम सुनते हैं कहानी में आगे क्या होता है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: दोस्तों, रात्रि के दूसरे पहर पर मालिक पुनः अपने नौकर के पास आया देखने के लिए कि कहीं अब तो ये सो नहीं गया है। परंतु मालिक ने पाया कि नौकर अभी भी किसी गहन चिंतन में डूबा हुआ है। मालिक ने पूछा, अरे भाई, सो तो नहीं गए? तो उसने कहा, मालिक, मैं चिंतन में हूँ। अच्छा भाई, क्या चिंतन कर रहे हो? तो नौकर ने बोला, मालिक, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब टूथपेस्ट को दबाया जाता है तब पेस्ट बाहर क्यों आ जाता है, भीतर की ओर क्यों नहीं जाता? मालिक को फिर से हंसी आई, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं, ऐसे ही अच्छी तरह से सोचते रहो। सुबह होती रही, 4 बजे फिर से मालिक आया। घोड़े की चिंता थी ना उसको, तो वो आ गया और व्यक्ति से उसने पूछा, भाई अभी आपके चिंतन का विषय क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मालिक, अब मैं एक अत्यंत गंभीर विषय पर विचार कर रहा हूँ। मालिक बोला, भाई कौन सा है ये गंभीर विषय? नौकर ने कहा, मालिक, मैं सारी रात बैठा रहा, सोया भी नहीं, चिंतन करता रहा, कमरे को ताला भी लगा हुआ था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है घोड़ा गायब कैसे हुआ। दोस्तों, कहीं हम उस व्यक्ति की तरह सोचते तो नहीं है ना कि बिना ईश्वर के दर्शन के हमारा समय पूर्ण हो जाए और फिर हम ऐसे ही जन्म मरण के चक्कर में आते ही रहे। दोस्तों, सचमुच वैसे देखा जाए तो कहानी सुनते वक्त आपकी भी हंसी फूटी जरूर होगी, लेकिन इस कहानी ने जो जिस प्रकार से मोड़ लिया है वह सोचने की बात है। कई बार हम कुछ अच्छे संकल्प करते हैं, हमारे मन में संकल्प आता है कि सचमुच ये अच्छी बात करनी चाहिए, ये दान करना चाहिए, या ये कोई ऐसी नई बात करनी चाहिए, लेकिन सोचना और कर्म में उसको तुरंत उतारना या दृढ़ता पूर्वक उतारना, इसमें कई बार अंतर हो जाता है। और इसीलिए केवल हम सोचते ही रह जाते हैं और अगर उसको कर्म में नहीं उतारा तो फिर उसका फल भी प्राप्त नहीं कर पाते। ज्ञानेश्वर जी, आपका क्या विचार है?
1: बहुत ही सुंदर कथा है भक्ति जी, और मुझे ये याद आया कि हम कहते हैं घोड़े बेचकर सो जाना, अभी घोड़े बेचकर सोते कैसे हैं इसका पता आज मुझे चला। जागते रहते हुए भी घोड़े निकल जाती हैं। बहुत सुंदर कथा है, और आपने जैसे कहा कि क्या सोचना है और कैसे सोचना है, इसके ऊपर भी हमें जरूर सोचना है, चिंतन करना है, क्योंकि सोचना और चिंतन करना उसमें अंतर है। चिंतन जो होता है वो सकारात्मक रीति से होता है। संतों ने, हमारे पूर्वजों ने, साधु महात्माओं ने चिंतन किया, जिंदगी का राज समझने की कोशिश की, और जो राज उन्हें समझ में आया वो लोगों तक पहुंचाने के लिए भी प्रवचन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा उन्होंने कोशिश की, ताकि लोगों का भी भाग्य बने। तो ये चिंतन करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सोचते रहना ये बुरी बात है, क्योंकि ये सोचते सोचते हम व्यर्थ के विचारों में डूब जाते हैं। एक पल भी मनुष्य का ऐसा नहीं होता कि जहां वो सोचता नहीं है, कुछ ना कुछ विचार मन में तो रहते ही रहते हैं, चाहे वो रोज के जिंदगी के हो या व्यर्थ चिंतन के हो। लेकिन हम अच्छे और ऊंचे विचार कब करते हैं और कितने करते हैं, इसके ऊपर हमारी जिंदगी रहती है। कील ठोकने के बाद मिट्टी कहाँ जाती है, पेस्ट अंदर क्यों नहीं आती, ये विचार जो है वो मेरे ख्याल से वैज्ञानिकों के लिए अच्छा है। एक ही न्यूटन था और उसने कहा कि फल नीचे ही क्यों गिरा, और इसके ऊपर जब सोचता रहा तब गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे पता चला। तो ये सोचना अच्छा है, लेकिन उसके जड़ तक जाके लोगों का कल्याण हो ऐसे कुछ हमने व्यवधान रखे तो उसका फायदा होता है। लेकिन बहुत बार हम व्यर्थ चिंतन में रहते हैं, जो भी बात घटती है वो ऐसी क्यों घटी, इसके ऊपर सोचते रहते हैं, इसके ऊपर सोचते रहते हैं, लेकिन वो बात बदलने की शक्ति हमारे पास नहीं है। एक बार बात घट गई तो घट गई, घटना हो गई और भूतकाल में चली गई, तो फिर हमें उसे वर्तमान में लेके आते हैं और फिर क्या होता है, तकलीफ हमें भी होती है और हम दूसरों को भी तकलीफ देते हैं। तो भूतकाल के कहते हैं भूत जो है वो मनुष्य को बड़ी तकलीफ देते हैं। जो भूतकाल के भूत जो है वो दुखद जिंदगी जो है, दुख जो हमने झेले हैं, उसको अगर हम बार बार याद करें, कई व्यक्ति जो है हमें पीड़ा देती है उनको हम बार बार याद करें, तो फिर क्या होगा, तकलीफ हमें ही होगी। इसलिए सोचना, कैसे सोचना, कब सोचना और क्या सोचना, इसके ऊपर हमें गौर करना है, ऐसा मुझे लगता है।
0: ज्ञानेश्वर जी, मुझे लगता है लेकिन कथा का जो संदेश है, हम भगवान के लिए भी अगर सोचते ही रह गए तो भगवान मिलने की बात तो दूर ही है। और इसीलिए कथा को जो बहुत अच्छी रीति से मोड़ा है उस पर भी हमें चिंतन करना चाहिए, और जो भी शुभ संकल्प है वो संकल्प भी जल्द से जल्द कर्म में भी लाना चाहिए। चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंध और 25वां अध्याय। हर एक अध्याय में ज्ञानेश्वर जी जो कथाएं हैं वो सुनते वक्त लगता है कि हमारा बचपना वापस आ गया है, क्योंकि इतनी सुंदर भागवतकारों ने उसकी लिंक यहाँ बताई है, इतनी सुंदर कथन की है कि लगता है हम कोई दादी माँ से कहानी सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: आपको क्या लगता है?
1: बिल्कुल सही है।
0: तो यहाँ किस प्रकार से गोवर्धन धारण कर दिया? देखो, धारण शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई भी चीज को धारण करने की पात्रता चाहिए, तब हम कहते हैं कि इसने ये धारण किया। कोई पद हो, कोई विभूषण हो, तो शुकदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि इंद्र को पता लगा, कौन सा, कि उसकी पूजा ग्वाल बालों ने बंद कर दी है। तो उसको स्वाभाविक है कि नंद बाबा और सारे ग्वाल बाल पर बहुत क्रोध आ गया, और उसको ये भी एक मन में था कि अरे भाई, भले मैं क्रोध कर रहा हूँ, लेकिन इनका रक्षक कौन है? वो तो स्वयं भगवान है। फिर भी उसे अपने पद का बड़ा घमंड था। उसने क्रोध से तिल मिलाकर प्रलय करने वाले मेघों से आज्ञा दी। कौन सी आज्ञा दी? कि आप जाओ और ये जो ग्वाल बाल है और उनके जो सारा धन है, पशुएं हैं, उनका जाकर पूरा का पूरा संहार करो। तो चारों ओर भयानक बिजलियां चमकने लगी, बादल टकराने लगे, कड़कने लगे, प्रचंड आंधी आई, बड़े बड़े ओले बरसाने लगे। बहुत सुंदर वर्णन किया है भागवतकारों ने कि किस प्रकार से मूसलाधार वर्षा की शुरुआत हो गई। लेकिन वो मूसलाधार वर्षा एक झंझावात के तरह थी, और एक दूसरे से लोग भयभीत होकर देखने लगे, कांपने लगे, पशु ठिठुरने लगे और व्याकुल हो गए। अब क्या करें? तो स्वाभाविक है, वो श्री कृष्ण की शरण में आ गए और उन्होंने उनको कहा, भक्तवत्सल, आप ही अभी हमारे रक्षक हो, आप ही हमें तारण करने वाले हो, बस हमारी रक्षा करो, क्योंकि ये सृष्टि जो है वो क्रोधित हो गई है। तो ज्ञानेश्वर जी, आज के समय हम कई समाचार सुनते हैं, किस प्रकार से हम मानव ने प्रकृति के 5 तत्व को दुख दिया है, उनसे हमने कुछ न कुछ चीजें छीनी हुई है, और इसीलिए प्रकृति जो है उसका प्रकोप हो जाता है, और प्रकृति अपना जैसे कि बदला लेती है, या कहो कर्म के अनुसार जैसे हमने उनको दिया वैसे वो भी हमें वापस कर रही है। तो क्या भागवतकार यहाँ इस बात को बताकर हमें कुछ सूचना देना चाहते हैं? क्या बात है
1: भक्ति जी? मुझे लगता है कि ऐसे कहते हैं, जब पापों का बोझा बढ़ता है धरती के ऊपर, तब अपने आप धरती हिलने लगती है। 5 तत्व जो है, जिनके ऊपर हमने अन्याय किया है, वो 5 तत्व भी बदला लेने के लिए तुले हुए रहते हैं। और ऐसे भी कहते हैं कि प्रलय काल में सभी 5 तत्व क्रोधित हो जाते हैं, धरती हिलने लगेगी, मूसलाधार बारिश होती रहेगी, कहीं आग लग जाएगी, ऐसे बहुत सारी चीजें होगी। तो ये एक संकेत है, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल। और ज्ञानेश्वर जी, यहाँ भागवतकारों ने बहुत सुंदर रीति से मनुष्य के मन का जो एक भाव होता है वो भी प्रकट किया है कि ग्वाल बाल वो मन ही मन क्या कहने लगे कि सचमुच हमने ना इंद्र के यज्ञ का भंग किया है, इसीलिए वह व्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। दोस्तों, कई बार ऐसे होता है कि जाने अनजाने में अगर हमने कोई व्रत का उल्लंघन किया कहो, या हमारे से कुछ ऐसे कर्म हो गए जो हम कई सालों से कर रहे हैं, तो मन में एक आशंका पैदा हो जाती है। और आज तो हम कहते हैं कि उसको एक नकारात्मक रीति से देखो ही नहीं, क्योंकि हमारे ही सोच जो है वो हमारा भविष्य निर्माण करती है। लेकिन यहाँ उनका भोला भाला स्वभाव भी दिखाया है, मुझे लगता है।
1: बिल्कुल भक्ति जी, यह क्या है कि कई लोग ऐसे हैं कि भावना का फायदा उठाते हैं, जो भक्तों की भावना होती है उसका फायदा उठाते हैं। इसका मतलब जो मासूमता है भक्तों की भक्ति में, जो मासूमता है उसके ऊपर अतिरिक्त तो फायदा उठाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैंने कुछ पूजा की तो अच्छा होगा, ये तो इसके लिए सब लोग पूजा करते ही है, लेकिन मैंने अगर पूजा नहीं की तो बर्बादी होगी, ये डर जो है वो दिखाते हैं। ऐसे कई लोग हैं। मुझे याद है कि कई साल पहले एक सिस्टम चल रही थी कि आपके पास पोस्टकार्ड है, वो पोस्टकार्ड पे आपको लिखना है कि कुछ देवता है, देवताओं का मंत्र है, और वो मंत्र लिख के आपके घर में पोस्टकार्ड आएगा। अभी पोस्टकार्ड आने के बाद वो लिखता है कि ऐसे ही 10 पोस्टकार्ड आप भेजोगे तो आपको ये फायदा होगा, अगर नहीं भेजोगे तो नुकसान होगा, बहुत भयंकर नुकसान होगा। अभी क्या है, फायदा होने के लिए कोई नहीं करता, लेकिन नुकसान से बचने के लिए, वो डर जो है वो बचने के लिए वो 10 पोस्टकार्ड जो है और 10 लोगों को भेजता है। ऐसे करते करते नेटवर्क उसका बढ़ते रहता है, और ये बहुत गलत परंपरा है। हमें भगवान को प्यार से याद करना है, ना डर से करना है।
0: ज्ञानेश्वर जी, कितनी सुंदर बात आपने कही। मुझे लगता है मासूम शब्द जो है वो बहुत ही परफेक्ट है। आज हमारे अंदर भावना है भगवान के प्रति, बहुत दिल का सच्चा प्यार है, भक्ति है, श्रद्धा है, वो बात बहुत अच्छी है। लेकिन अगर भावना के वश होकर हम, जैसे अभी आपने पोस्टकार्ड की बात कही, ऐसे अगर करने लगे तो उसको भी समय पर पाबंदी लगाना ये भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है यहाँ श्री कृष्ण जी कुछ हमें ऐसा मैसेज भी देना चाहते हैं। दोस्तों, ये एक जो मनुष्य स्वभाव है उसका भी हम सचमुच कई बार अनुभव कर चुके हैं, हमारे लिए भी और औरों के लिए भी जरूर देखते हैं। भागवतकार इसके द्वारा भी कितना सुंदर संदेश देना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, यहाँ जब श्री कृष्ण जी के पास सब ग्वाल बाल आते हैं, तब वो उन्हें जैसे कि आश्वस्त करते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से बहुत अच्छी तरह से भली भांति इसका जवाब दे दूंगा। और इस प्रकार भगवान जो है वो खेल खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ देते हैं, जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते को, वो जो पुष्प होता है उसको उखाड़ते हैं और हाथ में रखते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार इतने बड़े गिरिराज को श्री कृष्ण जी उठाते हैं और उसको अपने सिर पर जैसे कि अपने उंगली पर जैसे कि धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की ये जो बहुत ही सुंदर सुहानी लीला है वो देखते ही ब्रजवासी तो बस भूख प्यास पीड़ा आराम विश्राम सब कुछ भूल जाते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं लगातार 7 दिन तक श्री कृष्ण जी ने उस पर्वत को ऐसे ही उठाए रखा और ये जो श्री कृष्ण की योग माया का बहुत ही अद्भुत प्रभाव है, वो जब देखा इंद्र जी ने तब उसके भी आश्चर्य का पारावार नहीं रहा। शायद उसको महसूस हो गया, अपनी भूल महसूस हो गई और उसने क्या किया कि मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। और गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि यह भयंकर आंधी भयंकर तूफान ओले बरसना बिल्कुल बंद हो गया है, आकाश से बादल छट गए हैं, अभी सूरज की रोशनी भी दिखाई दे रही है, तब उसने गोपों से कहा, प्यारे गोपो अब तुम निडर हो जाओ, अब कोई डर नहीं है और तुम बाहर निकल आओ। और जैसे ही सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण जी ने सब प्राणियों को ये आज्ञा दी तो उस आज्ञा का उन्होंने पालन किया और सब लोग धीरे धीरे बाहर निकल आए और खेल खेल में ही गिरिराज को श्री कृष्ण जी ने जैसे ही उठाया था अपने पूर्ववत स्थान पर रख दिया। दोस्तों, कई बार हमने कुछ फिल्मों में कहो पिक्चर्स में कहो ये बातें देखी हुई है, लेकिन एक अनोखा वर्णन होता है जब हम सुनते हैं और हमारी आंखों के सामने वो छवि आ जाती है। ज्ञानेश्वर जी, आपको क्या लगता है?
1: बहुत ही सुंदर कथा है भक्ति जी, और मेरे ख्याल से श्रीमद् भागवत में जितनी भी महत्वपूर्ण और लालित्यपूर्ण कथा यह है उसमें से एक गोवर्धन पर्वत की लीला। अभी इस कथा के ऊपर जब गौर करेंगे तो सुनते समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शास्त्रों में जितनी कथाएं हैं उसमें से जहाँ तक मुझे याद है दो कथाएं मुझे याद है पर्वत उठाने की। एक हनुमान जी, उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत ही उठाया, हाथ में ले लिया और लंका तक चले गए उड़ते। यहाँ तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया, पर्वत उठाया और पर्वत के नीचे सबको आश्रय दे दिया। देवता या भगवान की शक्ति अमर्याद है, वो कुछ भी कर सकती है, ये दिखाने का प्रयास इस कहानी के द्वारा होता है ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि भगवान के ऊपर हमारा निश्चय अटूट है तो हमें लगता है कि वो पहाड़ जैसी है, इसलिए कहते हैं कि मेरी समस्या पहाड़ जैसी बड़ी है, लेकिन वो भगवान के लिए वो पहाड़ राई जैसा हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमारा निश्चय काफी होना चाहिए, अगर निश्चय नहीं है तो राई भी पहाड़ जैसी लगेगी। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो कथा ये है उसमें से मुझे क्या लेना है। कई लोग कहते हैं कि ऐसे थोड़ी होता है, पर्वत कैसे उठाया होगा। अभी इसके बारे में जब सोचेंगे तो पर्वत बनाया किसने इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। अगर बिल्डिंग बनाने के लिए 9 मंजिल की, 10 मंजिल की, 16 मंजिल की, 20 मंजिल की सालों साल लगते हैं, और इतना बड़ा पर्वत, इतना बड़ा हिमालय वो कैसे बना, वो बन गया प्राकृतिक आपदा की वजह से। गोवर्धन पर्वत भी उसमें से एक मिसाल है। तो ये प्राकृतिक आपदाएं जो है वो इतनी शक्ति होती है कि एक क्षण में पर्वत का निर्माण हो जाता है ऐसे कई लोग कहते हैं। कहने का भाव यह है कि हमें भगवान की शक्ति क्या है इसके ऊपर गौर करना है। हमारा अगर भगवान के ऊपर निश्चय है तो संकट काल में भी उनकी शक्ति हमें काम आती है, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, कभी कभी हम कहते हैं ना कि पर्वत जैसे हमारे सामने परिस्थिति आ गई, जैसे पर्वत अड़िग होता है या बहुत ऊंचा होता है, बड़ा होता है, ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ गई। तो पर्वत जैसी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन अगर हम दिल से भगवान की शरण लेते हैं तो कुछ न कुछ उपाय स्वयं भगवान ही हमें बताते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि हमने अपना सर्वस्व जो है मन बुद्धि भगवान को अर्पण किया। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये बात है। और दूसरी बात, जो भी शास्त्र है उसमें सारे चमत्कार दिखाए हैं, और अभी के जमाने में अगर देखा जाए तो चमत्कार की बात जो है वो लोग इतना नहीं मानते, या तो फिर अंधश्रद्धा वगैरह सब कहते हैं। ज्ञानेश्वर जी, मुझे लगता है इन पर भी हमें भाष्य करना चाहिए। दोस्तों, हम जानते हैं कि गोवर्धन गिरिधारी, ये जो एक श्री कृष्ण का नाम है, बहुत सारे उनके नाम है जो भी उन्होंने इस प्रकार से कर्तव्य किए, चमत्कार कहे कर्तव्य कहे, तो गोवर्धन गिरिधारी ये जो नाम है वो भी उससे ही बहुत ही सुंदर रीति से शोभायमान होता है। चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ समय को देखते हुए आज के लिए हम आपसे विदाई लेते हैं, वाणी को विराम देते हैं। फिर से मिलेंगे अमृत धारा में। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आप तो रोज हमें देखते ही हैं, लेकिन ये ना सोचें कि हम आपको नहीं देखते। हम अपनी मन की आंखों से आपको देखते हैं, और जब आपका चेहरा खिला हुआ हम देखते हैं तो हमारा भी चेहरा खिल जाता है। हम चाहते हैं कि आप समस्याओं से मुक्त रहें, समाधान युक्त रहें, हमेशा हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, यही हमारी तमन्ना है। जब आप फोन करके ये कहते हैं कि आप अपने सुबह के सारे काम जल्दी जल्दी निपटा करके 9:30 बजे ठीक समाधान देखने के लिए टेलीविजन सेट के सामने बैठ जाते हैं, तो विश्वास कीजिए हम बहुत खुश होते हैं, हमारा मन हर्ष आता है, और ये प्यार ऐसा ही बना रहे ये हम चाहते हैं, क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए प्राण वायु की तरह है जो हमें जीवन देता है। आइए अब समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आदरणीय प्राता जी के साथ। प्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया
0: प्राता जी। जब फोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारी हमारी बहनें भाई ये कहते हैं कि जल्दी जल्दी घर का सुबह का सारा काम निपटाते हैं, ठीक 9:30 बजे बैठ जाते हैं, और भाइयों की ये शिकायत है कि हमें दफ्तर जाना होता है, तो क्या आप इस समय को थोड़ा पहले कर सकते हैं ताकि हम भी इस कार्यक्रम का पूरा पूरा आनंद ले सकें?
1: बिल्कुल, उनकी हम बात जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे पहुँचाएंगे अवश्य, और हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि सारा हमारा परिवार है
0: जी,
1: सब हमारे भाई बहने हैं। परिवार अगर किसी का सुखी होता है तो हम सुखी होते हैं, हमें लगता है हमारे प्रयास सफल हो रहे हैं, हमारा समय देना बिल्कुल उसका सदुपयोग हो रहा है, तो सचमुच ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और इस संसार में जो अब परिवार हैं वो सब सुखी हो जाएं, हर एक के घर में खुशी की, प्रेम की, शांति की, सुख की सरिता बहने लगे, हर व्यक्ति अपने जीवन को एंजॉय करे, बच्चे माँ बाप के बीच बहुत एक सौहार्दपूर्ण

0: प्रेम पूर्ण संबंध हो जाए, जिस की आजकल कमी होती जा रही है, इसके लिए ही ये स्पिरिचुअल नॉलेज, ईश्वरीय ज्ञान बहुत आवश्यक है। शायद कई दर्शक सोचते होंगे कि हम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सत्यता यही है। जैसे किसी को बुखार हुआ हो और कोई प्रसिद्ध टेबलेट निकली हो उसकी, तो बताया जाएगा ना, भाई बुखार में ये टेबलेट ले लो,
1: और बहुतों को जिससे लाभ हो रहा हो।
0: तो इसको प्रचार कहें, लेकिन एक अच्छी चीजों का प्रचार करना परम आवश्यक है, क्योंकि हमारे बहुत सारे टीवी चैनल्स, हमारे अखबार या और बहुत सारे लोग बुरी चीजों का प्रचार तो फटाफट कर देते हैं। और संसार में कुछ ऐसी एक नीति रीति बन गई है कि बुरी चीजें जल्दी चारों ओर फैल जाती हैं, लेकिन अच्छी चीजें लोगों को पता ही नहीं होता। भगवान इस धरा पर आया है, वो सत्य ज्ञान दे रहा है, और इस संसार में अब बहुत कुछ होने जा रहा है, ये युग बदलेगा, इतनी अच्छी चीजें कि पता ही नहीं लोगों को। तो इसका प्रचार करना भी हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि अगर एक मनुष्य गलत राह पे जा रहा है और वो उसी को सत्य मान रहा है, लेकिन उसे कष्ट होते जा रहे हैं, तो वो तो नहीं सोच रहा कि अगर राह सत्य है तो कष्ट नहीं होने चाहिए, हमें मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। हम दवाई खा रहे हैं लेकिन बीमारियां बढ़ रही हैं, फिर भी खा रहे हैं।
1: जी, जी, जी।
0: तो सत्य राह का ज्ञान देना परम आवश्यक है, गलत राह से मनुष्य को निकालना परम आवश्यक है। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान उसकी हर परिवार में जरूरत है, और अब हरेक को ये महसूस कर लेना चाहिए कि मन का अंधकार ही समस्याओं का निर्माण कर रहा है। अगर हम अपने को एनलाइटेंड कर दें, अगर चित्त को प्रकाशित कर दें, अगर सद्विवेक प्राप्त कर लें, तो सचमुच समस्याएं रहेंगी नहीं, एंड वी वुड एंजॉय आवर लाइफ।
1: आवश्यक हो जाता है कि मन में यदि अंधकार है तो उस अंधकार को पहले दूर किया जाए, क्योंकि हर चीज की शुरुआत तो वैसे ही मन से होती है। यदि मन में विचार आया, वही हमारी वाणी में, वही हमारे कर्म में आता है। तो ये जो मन का अंधकार है, आपने सुंदर बात कही कि ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों का अभ्यास केवल प्रचार नहीं है, लेकिन लाखों लोगों ने अपने मन के अंधकार को इससे दूर किया है, और साथ ही एक सुंदर और बेहतर जीवन जी रहे हैं, उसी को हम लोगों के सामने
0: देखिए। अंधकार तो किसी को भी पसंद नहीं होता, दिन छिपता है, श्याम होती है, थोड़ा भी घर में रोशनी कम हो जाए फट से लोग
1: लाइट जलाते हैं,
0: जलाएंगे। कोई भी अंधकार को पसंद नहीं करता, और जितनी रोशनी होती है, टाउन में निकल जाइए, बाजार में निकल जाइए, अगर रोशनी से बाजार जगमगा रहा है तो लोग घूमने ही जाएंगे,
1: जाके
0: तो टेंशन ही खत्म हो गई, मन आनंदित हो गया, खुशी बढ़ गई, बच्चों को भी ले जाएंगे वहां। और अगर बहुत सुंदर मार्केट हो, चाहे उसमें हीरे बिकते हो, सोने का मार्केट हो, लेकिन अंधेरा छाया हो, तो लोगों का वहां मन नहीं लगेगा। तो जब बाहरी अंधकार मनुष्य को प्रिय नहीं है, बाहरी अंधकार भी मनुष्य को ठोकरे खिलाता है, अच्छा नहीं लगता, तो अंदर का अंधकार तो निश्चित रूप से समस्याओं में वृद्धि करेगा ही। इसलिए ज्ञान के प्रकाश की हर व्यक्ति को जरूरत है, और ये ज्ञान का प्रकाश हमारे स्कूल कॉलेजों में नहीं मिल रहा है, ये ज्ञान का प्रकाश हमारे गुरुओं से भी नहीं मिल रहा है। मेरी बात कोई बुरा ना समझे, हम गुरुओं की कोई ग्लानि नहीं करते, वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन लोग मंत्र दे रहे हैं या धन कमाने में लग गए हैं या कोई और छोटी मोटी बात सिखा रहे हैं, लेकिन संसार को ज्ञान देना, आत्मा का ज्ञान देना, उन्हें आत्मभिमानी बना देना, उनके बॉडी कॉन्शियसनेस को समाप्त कराना, उनका नाता भगवान से जोड़ देना, इस लक्ष्य से शायद हमारे गुरु लोग भी थोड़े दूर चले गए हैं, कॉमर्शियल हो गए हैं, और बहुत लोगों ने तो गुरु बन के मतलब रोगों को ठीक करने का जैसे ठेका ही ले लिया, वो भी अच्छी बात है, रोगों को ठीक करना भी समस्याओं का समाधान ही है, लेकिन समस्याएं हो ही नहीं, अंधकार रहे ही नहीं, इसकी ओर हमारे गुरुजनों को बहुत ध्यान देना चाहिए, धन तो उनके पीछे पीछे भागेगा। तो हम ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा अपने चित्त को प्रकाशित करें।
1: जी जी जी, ये बहुत आवश्यक है। भ्राता जी, पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे, जैसे हमारी पूनम बहन जो चंडीगढ़ से थी, उन्होंने कहा था कि उनके 7 और 8 साल के 2 बच्चे हैं, और वो पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वैसा ही एक प्रश्न फ़ोन के माध्यम से भी आया भ्राता जी, मैं दोनों को एक साथ ले रहा हूं। ये हमारे पास आया है मथुरा से, और अनुराधा जी लिख रही हैं कि मैं अपने बच्चों से बहुत परेशान हूं, उनके कारण मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं अपना अपना पेशेंस खो देती हूँ, इरिटेट होती हूँ और बच्चों की पिटाई भी कर देती हूँ। कृपया बताएं कि कैसे मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करूँ, साथ ही मेरे बच्चे कैसे सुधरे।
0: पिटाई करके इनका गुस्सा तो शांत हो ही जाता होगा पर फिर पछताती भी होंगी, क्योंकि गुस्सा करने के बाद मनुष्य को उसकी गिफ्ट मिलती है पश्चाताप, रिपेंटेंस, रिग्रेट करता है मनुष्य बहुत ज्यादा। तो ऐसे बच्चे जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, देखिए उसके लिए भी जिम्मेदारी आज का विकास है। अब बच्चों को गेम्स मिल जाते हैं, वीडियो,
1: बिल्कुल, टेलीविजन आके खोल लेते हैं, चैनल्स चेंज करते रहते हैं,
0: उनको सब आता है,
1: वीडियो गेम्स
0: और ये मोबाइल में सब कुछ करना आता है बच्चों से। हम ट्रेन में जा रहे थे, देखा छोटा बच्चा 5-6 साल का, पापा से उसने मोबाइल छीना और फटाफट शुरू कर दिया जी। वो तो इधर उधर टेबलेट थी उनके पास, देखा तो वो तो फटाफट गेम खेल रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ये जो विज्ञान का विकास हुआ है, जो ये सब साधन निकले हैं, यद्यपि ये बहुत अच्छे हैं, हम इनके विरुद्ध नहीं हैं, हम भी यूज करते हैं, लेकिन बच्चे अगर इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो निश्चित रूप से बुद्धि, ब्रेन तो एक ही है उनके पास, उनकी शक्ति उधर डाइवर्ट हो गई तो पढ़ाई लिखाई में वो रहेगी नहीं। इसलिए थोड़ा सा घर में संयमित जीवन, माँ बाप को चाहिए वो खुद इनसे दूर रहें थोड़ा सा, क्योंकि वो अगर इनमें लगे रहेंगे तो बच्चे तो जरूर उनको फॉलो करेंगे, उनको रोका भी नहीं जा सके। ये कारण बच्चों की पढ़ाई में अरुचि का है। और दूसरा, कुछ पूर्व जन्मों के संस्कार भी होते हैं, पहले से ही मान लो उसको बिजनेस ही करना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं पढ़ते नहीं है, थोड़ा सा पढ़ा और फिर काम धंधे में लग गए। तो बच्चों की मेंटेलिटी को समझ लेना चाहिए, और जैसे हम पहले बताए हैं गुड वाइब्रेशंस का इफेक्ट, बच्चों को प्यार की पालना देना ये बहुत आवश्यक है। बच्चों पर गुस्सा करना और उनकी पिटाई करते रहना, ठीक है थोड़ी बहुत पिटाई कर ली हो तो बच्चों को सुधारने के लिए माँ को करना पड़ता है, लेकिन उसमें अपनी भी मनोस्थिति को बिगाड़ लेना, अपने अंदर भी अशांति कर लेना, फिर पश्चाताप की अग्नि में जलना, फिर बच्चों को चोट वोट इधर उधर लग जाए गलत, तो फिर उसका भी कष्ट तो माँ को ही होगा। इस सबसे कोई फायदा नहीं होगा। बच्चों को डांट फटकार दिया जाए, थोड़ा सा डरा दिया जाए, एक दो मार दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका प्रभाव अपने पर भी बहुत आ जाए और बच्चे भी उससे दुखी होने लगे या माँ से दूर होने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यार की पालना
1: जी,
0: और अच्छे वाइब्रेशंस की पालना, जिसको आजकल की माताएं जानती नहीं हैं। पहले देखिए हमारे ऋषि मुनि लोग और हमारे धर्माचार्य ये सिखाया करते थे कि बच्चा जब गर्भ में है तो माँ को कैसा चिंतन करना चाहिए। उन्हें गीता का पाठ सुनवाते थे, भागवत की कथाएं सुनवाते थे, जिस तरह की कथा उनको सुनाई जाएगी उसका इफेक्ट बच्चों पर आएगा। एक अभिमन्यु की कहानी लोग सुनाते, तो देखिए ऐसा ही है। तो बच्चों को जितनी अच्छी फीलिंग्स गर्भ से और फिर बाद में माँ के जितने अच्छे वाइब्रेशंस होंगे, बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए माताओं को क्रोध करने की बजाय, परेशान होने की बजाय कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या बात नहीं सुनते हैं या खेल कूद में लगे हुए, अच्छे वाइब्रेशंस बच्चों को देने चाहिए। भोजन के माध्यम से भी, पानी के, दूध के, फल के, जो उनको खिलाया पिलाया जाता है, और घर में भी वो इतना अच्छा वातावरण बनाए प्रेम का। हम जानते हैं कि उनके अपने भी संस्कार हैं, किसी को क्रोध पहले से ही बहुत आता है, कोई पहले से ही बहुत इरिटेट रहती हैं, किसी को छोटी छोटी बात में पहले से ही टेंस होने की एक ऐसी आदत पड़ी होती है कि जरा सी बात आई नहीं और वो टेंशन में आ गई। तो उन्हें अपने संस्कारों को भी सॉफ्ट करना चाहिए, हर बात को लाइट करना चाहिए और घर में खुशी और प्रेम का वातावरण बनाना चाहिए, ताकि घर उनका एक ऐसा मंदिर बन जाए कि जब बच्चे उसमें आए, पति आए, सास ससुर रहें, तो पारिवारिक एंजॉयमेंट उन्हें मिले, वहाँ एक टेंशन न मिले, ऐसा न लगे कि कहाँ आ गए, यहाँ तो लेट आएंगे। कई बच्चे लेट घरों में इसलिए आते हैं कि घरों में टेंशन रहता है, तो बाहर रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, फिर वो भी कहीं ना कहीं गलत कामों में लग जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज है माँ बच्चों को गुड वाइब्रेशंस दे, अपने अंदर भी बहुत अच्छी फीलिंग्स क्रिएट करे। और जैसा हम कह रहे थे, राजयोग मेडिटेशन और ईश्वरीय ज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा किया जा सकता है। जैसे अगरबत्ती हम जला देते हैं, बदबू होती है, या कोई धूप जला देते हैं, और कोई साधन आजकल हैं, तो ऐसे ही हमारा मन उससे भी ज्यादा फ्रेग्रेंट है, बहुत सुगंधी है हमारे मन के वाइब्रेशंस में। अगरबत्ती की तो खुशबू थोड़ी देर जब वो जल के पूरी हो जाएगी तो खुशबू भी खत्म हो जाएगी, लेकिन मन की जो सुगंधी है पवित्रता की जो सुगंध है, प्रेम की जो सुगंध है, शांति की जो सुगंध है, वो सचमुच अविनाशी है, लंबा काल चलती है। तो इन माताओं को अपने बच्चों को यही वाइब्रेशंस देने होंगे, तब धीरे धीरे बच्चों में भी सुधार आ जाएगा। बच्चों को सुधारने के लिए अपने को सुधारना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर बात भ्राता जी।

0: ऐसे ये तो पता नहीं कपूत पैदा हो गए, ये तो बिच्छू टिंडन पैदा हो गए। एक माँ ने अपने बच्चे का नाम बिच्छू ही रखा हुआ था, कोई उनको शैतान नाम रख देती है, कोई कुछ रख देती है। तो माँ के जो वाइब्रेशंस है जैसा हम कह रहे थे, और जो माँ बार बार सोच रही है बच्चों के लिए, जो उसके मन में एक फीलिंग्स एटीट्यूड बन गए हैं, उसके वाइब्रेशंस बच्चों को तुरंत जाएंगे, और माँ के तो बच्चों को गहराई से जाएंगे एकदम से, बहुत इफेक्ट करेंगे। इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ये कहती है कि वो दो बच्चे हैं इनको, दोनों को यहाँ आत्मा देखे, ये चेतन आत्माएं हैं, ये भगवान के बच्चे हमारे घर में आए, उसने दो फूल भेजे हैं, ठीक है, फूल नटखट हैं, कोई बात नहीं, सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं। जब वो बच्ची थी वो भी तो ऐसी रही होगी ना, वो भी अपनी माँ को बहुत तंग करती होगी ऐसे ही। तो आत्मिक फीलिंग रखने से वो बहुत अच्छे हैं और वो सब सुधर जाएंगे, उनके नटखटपन को भी एंजॉय करें माँ बाप।
1: तो जैसे कृष्ण नटखट थे यशोदा मैया और पूरे गांव वाले आनंद लिया करते थे,
0: ऐसे ही करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
1: बिल्कुल, तो थोड़ा सा इसे एक्सेप्ट करें कि बच्चों में थोड़ी सी चंचलता, क्योंकि वो बढ़ रहे हैं तो होती ही है, और साथ ही अपने मन में जैसे आपने कहा ये भाव न लाएं कि ये तो है ही शैतान, परेशान करते हैं, क्योंकि ये भी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नटखट करेंगे, घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा बनाए। व्रता जी एक चीज और कि कहीं ना कहीं जैसे पढ़ाई में उन्हें एक टेम्पटेशन भी तो दिया जा सकता है कि यदि तुम इतना होमवर्क कर लोगे या इतने अच्छे मार्क्स लाओगे तुम्हारे लिए ये चीज गिफ्ट में दी जाएगी, तो ये भी कहीं ना कहीं उन्हें पढ़ाई की ओर आकर्षित कर सकता है।
0: बिल्कुल, ऐसे कर लें कि इतने नंबर लाओगे तो देखो ये तुम्हें गिफ्ट मिलेगी, और इतना होमवर्क कर लोगे तो ये टॉफी खिलाई जाएगी, ये अच्छी चीज तुम्हें ला के देंगे। जो बच्चों की रुचि हो तो इससे भी बच्चों का अट्रैक्शन बढ़ेगा उस ओर, तो मारपीट की बजाय ये साधन भी बहुत अच्छा
1: अपनाए जा सकते हैं। जी व्रता जी, ये जो हमारे पास एक मेल आया है वो है मुंबई से गुलिस्तान जी का। ये कहती हैं कि मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है, कभी कुछ तो कभी कुछ, डॉक्टर्स की समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं भी इलाज करा करा के थक गई हूँ, मेरा चिड़चिड़ापन, निराशा, गुस्सा सब बढ़ता जा रहा है।
0: बहुतों की हो रही है आजकल, और डॉक्टर्स जब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, पैथोलॉजी में भेजते हैं, उनकी बहुत सारी चीजें, सब कुछ ठीक आता है
1: जी,
0: और डॉक्टर भी नहीं समझ पाते कि आखिर है क्या है। बुखार रहता है रोज, लेकिन कारण कुछ समझ में नहीं आता, यूरिन इन्फेक्शन नहीं, ब्लड इन्फेक्शन नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक तो है, जो भी उसके कारण होते हैं डॉक्टर्स ज़्यादा जानते हैं। वो भिन्न भिन्न तरह के चेकअप करा लेते हैं, बेचारों के खर्च भी बहुत हो जाते हैं, लेकिन इसका कोई समाधान दिखता नहीं, और फिर ये मानसिक बीमारियां बढ़ती जाती हैं साथ में, इरिटेशन बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है। तो इसके कारण जो मैंने आज तक देखे और जिन केसेज को मैंने लिया है इसमें कि वो कैसे स्पिरिचुअल एनर्जी से ठीक हो जाते हैं, तो उसमें देखा बहुत व्यक्तियों के साथ ऐसा हुआ कि बचपन में ईर्ष्यावश किसी ने, उनके किसी व्यक्ति ने कोई चीज मंत्राइज्ड करके उनको खिला दी कि ये पढ़े नहीं, इनकी बुद्धि ठीक ना चले। उनको पता नहीं था कि उसका इफेक्ट इतना बुरा होगा, उन्होंने तो थोड़ा सा समझ के उसको खिलाया था किसी स्वार्थवश, किसी ईर्ष्यावश। तो लेकिन वो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद वो काम करने लगा जोर से, और किसी के ब्रेन पर उसका इफेक्ट आने लगा, और किसी के शरीर में कई तरह के रोग आ गए। तो देखिए, देह में जो कुछ अंदर खिला पिला गया वो तो समझो रोम रोम में समा गया है। अब उसके लिए कोई मेडिसिन होती नहीं, अब उसको वाइब्रेशन से ठीक किया जा सकता। निगेटिव एनर्जी देह के रोम रोम में, हड्डी हड्डी में, ब्लड के हर अंग अंश में वो समा चुकी है, ब्रेन तक वो इफेक्ट कर चुकी है। अब इसका पहला तरीका करना चाहिए पानी को चार्ज करके पीना, क्योंकि बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा पानी की है, मोर देन 70%। तो पानी को चार्ज करने का तरीका है, पानी गिलास में लें, उस पर दृष्टि डालें और 7 बार संकल्प करें बहुत बहुत फेथफुल्ली, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि हम भगवान के बच्चे हैं, वो सर्वशक्तिवान है, तो हम उसकी संतान भी शक्तियों से भरपूर हैं। तो इसको एक नाम धम दे रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो ये संकल्प करेंगे पानी को दृष्टि देखें तो हमारी शक्तियों के वाइब्रेशन जो हमारी आंखों से निकल रहे हैं वो पानी में समा जाएंगे, और ये बहुत बड़ी चीज बन जाएगी। जब वो पानी व्यक्ति पिएगा तो जो निगेटिव एनर्जी अंग अंग में फैल चुकी है, ये पानी पानी में मिलेगा और उस एनर्जी को तेजी से नष्ट करेगा।
1: मतलब सारी

0: दिन में जितनी बार भी हम पानी पिए तो हम उसी दृष्टि देते हुए हम ये संकल्प करें, ये जो विचार है कितनी बार तक करें और कितनी देर तक?
1: 7 बार करेंगे ये संकल्प, दृष्टि देंगे, 1 मिनट का काम है, और ऐसा 7 दिन तो कर ही लें। तो मैंने ऐसे अनुभव देखे हैं, मैंने कराए हैं ये प्रयोग, ये कोई कल्पना नहीं है। किसी को गहरा बुखार, किसी को और कोई बीमारी, ऐसी ऐसी बीमारियां जिसका लोगों ने नाम भी नहीं सुना था। एक की तो सारी नसें सिकुड़ रही थी, श्रिंक हो रही थी, डॉक्टर भी कहें भाई इसको हम क्या करें, तो सिकुड़ रही है।
0: कई चीजों का तो वैसे भी मेडिकल साइंस में कोई इलाज
1: है ही नहीं। तो मैंने ऐसे कुछ प्राणायाम के प्रयोग, कुछ ये पानी के प्रयोग, कुछ राजयोग के अभ्यास, कुछ आत्मा से प्योर एनर्जी देना बॉडी को, ऐसे कुछ जो प्रयोग कराए तो बहुत जल्दी गुड रिजल्ट मिलने लगा। और बहुतों को ये हुआ कि पानी पीने से दवाई काम करने लगी, क्योंकि दवाई के इफेक्ट को वो बैड एनर्जी रोक रही थी। तो मैं उन्हें कहता हूं दवाई आप लेते रहो, दवाई बिल्कुल खत्म न करना, कैंसिल न करो
0: जी।
1: और ये पानी का प्रयोग करो, ये स्पिरिचुअल एनर्जी दो यहां से। उसका तरीका है मैं आत्मा हूं, मैं प्योर हूं। देखिए प्योर एनर्जी बेस्ट हीलिंग एनर्जी है
0: जी।
1: रोगों को ठीक करने की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो पवित्रता में है। तो ऐसा अभ्यास करेंगे मैं आत्मा यहाँ हूँ, पॉइंट ऑफ एनर्जी, मुझसे प्योर वाइब्रेशंस इन व्हाइट कलर ब्रेन में फैल रहे हैं। पहले ऐसे देखेंगे मेरा ब्रेन इस सफेद एनर्जी से भर रहा है, फिर वो पूरे देह में फैल रहे हैं, और जहाँ वो रोग है विशेष रूप से वहां जा रहे हैं। मान लो घुटने में दर्द है तो उस घुटने में जा रहे हैं, वो उसको हील कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। तो इससे देह की वाइटल फोर्स बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है, यानी रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है बहुत बढ़ जाती है, और फिर दवाई फटाफट काम करती है। तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी और दवाइयों का प्रयोग दोनों उस बीमारी को ठीक कर देते हैं। तो इनको यही करना है, लेकिन अपने स्वभाव को ठीक पहले करना है
0: जी।
1: ये बहुत अच्छी तरह याद रखना है, आई एम ए पीसफुल सोल, मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ। ये दिन में कई बार याद करें, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो शांति है, मैं शांत हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं प्योर एनर्जी हूँ। ये संकल्प दिन में कम से कम 20-25 बार करें तो इनका चित्त शांत होगा। और ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें, मन के शांत होते ही, मन के प्रसन्न होते ही अनेक बीमारियां शांत हो जाती।
0: वैसे भी कई डॉक्टर्स भ्राता जी जैसे कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी कहते कि मोर देन 80% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक, मन से हम उत्पन्न कर रहे हैं। तो मन से जो उत्पन्न हो रही हैं, तो ये राजयोग का अभ्यास जैसे आपने कहा कि पहले अपने मन को शांत करें, बुद्धि को शीतल कर लें, तो निश्चित रूप से जहां कहीं भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये बीमारी का कारण क्या है, तो बीमारियां भी दूर हो जाएंगी और हमेशा हम स्वस्थ रहेंगे।
1: बिल्कुल, खुशी
0: जी,
1: प्रेम, शांति और हल्कापन, 4 चीजें ले लें
0: जी।
1: मन को बहुत खुश कर दें, अपने लिए और सबके लिए प्रेम पैदा कर लें, चित्त को शांत कर दें और हल्का करें, जो बीमारी आई है चली जाए, कोई बात नहीं, उसको सीरियस न बनाएं। ऐसे नहीं खाट पे लेट गए, अब मेरे से तो कुछ काम नहीं होगा, मैं तो बीमार हूँ। बहुत एक्टिव रहें, जितने हम एक्टिव होंगे हमारी और मूवमेंट शरीर में होगा तो एनर्जी कहीं ब्लॉक नहीं होगी और हम जल्दी हेल्दी हो जाएंगे।
0: बिल्कुल, तो उसको सीरियसली ना लिया जाए। और खास करके ये जो आपने योग का अभ्यास बताया कि अपने पूरे ही शरीर को हम अच्छी एनर्जी दें, उससे कहीं ना कहीं हमारी ये जो बीमारी हैं, तकलीफें हैं, दूर हो जाएंगे। प्रताप जी, कईयों के मन में बीमारियां आ जाती हैं, जैसे आपने कहा कि मन में घर कर गई हैं कि कहीं मुझे ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो कहीं ये भी तो हमारी शारीरिक बीमारियों में तब्दील नहीं हो जाती?
1: बिल्कुल यही है। देखिए, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, चेकअप होता है, और डॉक्टर उसको बताता है कि आर्टरीज में, हार्ट में जो खून सप्लाई करती है
0: ब्लॉकेज
1: है, तुम्हें हार्ट अटैक हो सकता है। अब ये सुनते ही वो परेशान हो जाता है, मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, अरे ब्लॉकेज हो गया बहुत ज्यादा, क्या करूंगा। तो उसकी बीमारी तेजी से बढ़ जाएगी। और यदि वो बिल्कुल लाइट रहता है, अरे ब्लॉकेज हो गए तो घुल जाएंगे, क्या हुआ, पाइप में भी गंदगी फंस जाती है, लोग उसे ठीक कर देते हैं, निकल जाएगी, क्या हुआ, और वो अपने खुशी में रहता है, इजी रहता है। हमारे यहाँ बहुत पेशेंट्स आते हैं, हमारे यहाँ कैड का प्रोग्राम चलता है, कैड माना हार्ट को ठीक करने की, ये जो ब्लॉकेज हो जाते हैं इनको खोलने की, तो हमारे डॉक्टर हैं, बिना ऑपरेशन के उसको खोलवाते हैं, और उसमें योग अभ्यास राजयोग का अभ्यास और मन को बहुत प्रसन्न करना, बिल्कुल अपने को एनर्जेटिक कर देना, और वो ये भुला देते हैं कि यू आर हार्ट पेशेंट, नो फॉरगेट इट, बिल्कुल लाइट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि सात सात दिन में लोगों की आर्टरी के जो ब्लॉकेज थे वो खुल गए, वो भी हैरान होते हैं कैसे खुल गए भाई। तो ये मन की खुशी, मन की शांति, शीतल चित्त, ये बहुत काम करता है।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आपने बहुत सुंदर जानकारी दी है कि अपने मन को हम स्वस्थ रखें तो तन स्वतः स्वस्थ हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, मैं मुझे याद आता है एक ऐसी महिला की जिनको 25 वर्ष की उम्र में ही कैंसर हो गया था। परिवार में किसी को भी कैंसर नहीं था। जब ये ढूंढा गया कि वास्तव में इसे कैंसर कैसे हुआ, तो उनके घर के एक फैमिली डॉक्टर ने ये पाया कि इससे बहुत ज़्यादा डर लगता था कि कहीं मुझे भी ब्रेस्ट कैंसर ना हो जाए। जब भी वो किसी महिला को देखती थी जो इससे ग्रसित हैं, कितनी तकलीफ हो रही है, तो बार बार ये सोचती थी कि मुझे भी कहीं ये ना हो जाए। और 25 वर्ष की उम्र में उन्हें ये हो गया। सारे संसार में उनके ट्रीटमेंट के लिए वो घूमे, लेकिन कहीं भी उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। सभी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। अल्टीमेटली उनके फैमिली डॉक्टर ने ये कहा कि मन से यदि ये बीमारी हुई है तो मन से ही दूर होगी। उन्होंने बहुत सुंदर विचार देने उन्हें प्रारंभ किए और आज वो महिला संपूर्ण स्वस्थ है। कहने का भाव, मन से ही हम बीमारियों को पैदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यदि हम निराशात्मक विचार करते हैं, कहीं ना कहीं यदि हम नकारात्मक विचार करते हैं, कहीं ना कहीं यदि हम व्यर्थ विचार कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, तो हम अपने शरीर में बीमारियों का आह्वान कर रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे समाधान की ओर से कि आप अपने मन को सुमन बनाएं। सुंदर विचार से ही स्वस्थ शरीर बनता है, सुंदर विचारों से स्वस्थ जीवन बनता है, स्वस्थ माहौल बनता है। तो विचारों को सुंदर बनाएं। समाधान की टीम से आज के लिए यही आपके लिए शुभकामना। नमस्कार।
2: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
3: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं, भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं, जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करें, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई, अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा, अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: सुप्रभात, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आबू। 16 अगस्त 2026 7:35 रेडियो मधुबन की घड़ी पर, और मन का जो अंधकार है उसे कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, इस विषय पर आपने जाना आदरणीय सूरज भाई जी ने प्रकाश डाला इस विषय पर, और उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम बिल्कुल अच्छा लगा होगा और कुछ समस्याओं का समाधान ज़रूर मिल पाया होगा। जीवन के कुछ प्रश्नों का उत्तर भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने जाना होगा, क्योंकि मन का अंधकार ही समस्याओं का निर्माण करता है, तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं इस विषय पर आपने जाना। 94-14-15-14-15 पर आप हमें बता सकते हैं कि समाधान कार्यक्रम कैसा लगा आपको। आइए गुड मॉर्निंग आबू कार्यक्रम के अंतर्गत आज के दिन विशेष के बारे में हम जानेंगे, और इसके साथ साथ रियल इन्फॉर्मेशन रहेगा आपके लिए, वेदर रिपोर्ट्स के साथ साथ आप आसपास के घटनाक्रमों को भी जानेंगे। ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से रहेगा समाचार प्रभात, और मैं हूँ आरजे शुभा। और कल आप सभी ने बहुत अच्छे से रेडियो के साथ मिलकर के स्वतंत्रता दिवस मनाया, और आपके आसपास स्कूलों में और गांवों में कैसा रहा स्वतंत्रता दिवस, कैसे आप सबने मनाया, ये भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर आपको पता है 94-14-15-14-15। गुड मॉर्निंग आबू।

वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अबू और मैं हूँ आरजे शुभा। आइए चलते हैं हम पंचांग की और शक संवत 1948 श्रावण शुक्ल चतुर्थी रविवार विक्रम संवत 2083 है और अंग्रेजी तारीख है 16 अगस्त सन 2026। सूर्य दक्षिणायन उत्तर गोल वर्षा ऋतु है। राहुकाल शाम 4:30 से 6 तक है। चतुर्थी तिथि अगले दिन तड़के 4:52 तक है। उपरांत पंचमी तिथि का आरंभ है। हस्त नक्षत्र अगले दिन तड़के 3:50 तक है। उपरांत चित्रा नक्षत्र का आरंभ है। साध्य योग अगले दिन तड़के 4:08 तक है। उपरांत शुभ योग का आरंभ है। विष्टिकरण तड़के 4:52 तक है। उपरांत भवकरण का आरंभ है। चंद्रमा दिन रात कन्या राशि पर संचार करेगा। सूर्योदय का समय 5:51 पर था। सूर्यास्त का समय शाम को 7 है। चंद्रोदय का समय 9:23 पर था। चंद्रास्त का समय रात्रि 9:02 पर है। 16 अगस्त विक्रम संवत 2083 श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्थी रविवार उत्तरा फाल्गुनी इस्लामी हिजरी है। 1448-02 रबी उल अव्वल इतवार सरफा आज के दिन है। गणेश उत्सव प्रारंभ है आज के दिन और इसके साथ साथ भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी भी मनाया जाता है।

हम बड़े पैमाने पे गणेश चतुर्थी मनाते हैं तो वो इस बार सितंबर महीने में मनाई, जिसमें अनंत चतुर्दशी वगैरह भी होता है, विसर्जन होता है, तो वो सितंबर महीने में मनाया जाता है। 10 दिन का गणेश उत्सव सितंबर 14 से शुरू होता है और इसके साथ साथ हिंदू कैलेंडर के अनुसार 14 सितंबर 2026 को मनाई जाए गणेश चतुर्थी गणपति स्थापना, और 10 दिवस ये उत्सव का शुभारंभ किया जाए। आइए और बाकी जो जुड़ी हुई है हमारे गणेश उत्सव के साथ, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से चतुर्दशी तक मनाया जाता है और गणेश उत्सव पूरे भारत में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। और आज सुभद्रा कुमार चौहान जी की जयंती भी है और सुभद्रा कुमार चौहान जी को हम सभी याद करते हैं। 16 अगस्त 1904 में इनका जन्म हुआ था, 15 फरवरी 1948 में इन्होंने शहीद त्याग किया था। सुप्रसिद्ध कवियत्री और लेखिका थी, उनके 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए और उनकी प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता के कारण। सुभद्रा जी राष्ट्र चेतना की एक सजग कवियत्री रही, किंतु उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं रहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया।

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। आइए चलते हैं वेदर रिपोर्ट्स की ओर। राजधानी जयपुर में 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। बारिश होने की संभावना है, कम है आज के दिन राजधानी जयपुर में। अधिकतर बादल छाए रहेंगे आसमान पर। उदयपुर में बादल छाए रहेंगे और 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, अधिकतम 33 डिग्री तक जा सकता है। बारिश होने की संभावना 30% तक लगभग है। और वहीं पर आबू रोड में 34 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकते हैं। आबू रोड में बारिश होने की संभावना बिल्कुल है, दिन के समय भी रात्रि के समय भी। माउंट आबू में 19 डिग्री न्यूनतम, अधिकतम 24 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पे भी वर्षा की संभावना है 70% तक और 20% तक। बात करें पाली जिले के बारे में, तो पाली में 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर। जोधपुर में 26 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम 34 डिग्री तक जा सकता है। सूरत में 30 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 27 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर और बारिश होने की जोरदार संभावना है। मेहसाना में 26 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम 34 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की भी पूर्णतः संभावना है। राजकोट में 25 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम 32 डिग्री तक जा सकता है और यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। गांधीनगर में 25 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक जा सकता है गांधीनगर अहमदाबाद के अंचल में, लेकिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना फिलवक्त नहीं है। आइए राजधानी दिल्ली की ओर चलेंगे, फिर देश के कुछ प्रमुख महानगरों के ऊपर भी नज़र डालेंगे, सिरोही जिले की ओर भी चलेंगे। राजधानी दिल्ली में 34 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 27 डिग्री तक जा सकता है और बारिश होने की संभावना यहाँ पर बिल्कुल है। बादल भी छाए रहेंगे, 50% से ज़्यादा संभावना बारिश की है। कोलकाता की बात करें तो 30 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 25 डिग्री, यहाँ पर 85% तक बारिश होने की संभावना है। बेंगलुरु के बारे में बात करें तो यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक जा सकता है और बादल भी छाए रहेंगे लेकिन आसमान भी साफ रहेगा, बारिश होने की बहुत ही कम संभावना है बेंगलुरु में। मुंबई के बारे में बात करें, यहाँ 55% से ज़्यादा संभावना है बारिश होने की। 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं, हल्का बारिश होने की संभावना है। चेन्नई के बारे में बात करें तो यहाँ पे 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है। एक या दो बौछार होने की संभावना है लगभग 62% तक। सिरोही जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पे 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। सिरोही जिले के आसपास में अल्पकालीन बौछार होने की संभावना है। क्षेत्र के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश होने की भी संभावना है लगभग 64% तक। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे वेदर रिपोर्ट्स के साथ। लेते हैं यहाँ पर एक अल्पविराम, मिलते हैं अल्पविराम के उस पार।

वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम रेडियो मधुबन 107.8 FM। आइए हम चलते हैं आबू रोड रेलवे स्टेशन की ओर, जानते हैं आने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारियां। गाड़ी संख्या है 2 2 5 4 7। ग्वालियर से साबरमती तक जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 8:30 पर अपने 5 मिनट देरी से चलती हुई पहुंचने वाली है। वहीं पर आरावली एक्सप्रेस 1 4 7 0 2 8:30 पर पहुंचेगी। 9:05 पर वंदे भारत एक्सप्रेस 1 2 4 6 1 पहुंचने वाली है। गरीब नवाज एक्सप्रेस 1 6 5 3 2 9:10 पर पहुंचेगी। जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस 1 9 2 2 4 9:45 पर पहुंचेगी। अजमेर मैसूर एक्सप्रेस 1 6 2 0 9 10:10 पर पहुंचेगी। 10:30 पर जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 0 4 9 6 पहुंचने वाली है। 11:00 प्रयागराज से स्पेशल ट्रेन ऑन डिमांड 0411 संख्या वाली गाड़ी पहुंचने वाली है, जो गांधीग्राम तक जाती है प्रयागराज से। दौलतपुर गांधीनगर एक्सप्रेस है 1 9 4 1 2 11:30 पर पहुंचने वाली है। वहीं पर 1 9 4 1 2 दौलतपुर गांधीनगर एक्सप्रेस 11:30 पर पहुंचेगी। साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस 1 4 8 2 2 11:40 पर पहुंचेगी। योगा एक्सप्रेस 1 9 0 3 2 4:45 पर 5:55 देरी से चलती हुई प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर पहुंचने वाली है। जी हाँ, योगा एक्सप्रेस 10:50 पर पहुंचने वाली थी, 5:55 देरी से चलती हुई दोपहर के बाद शाम को 4:45 पर पहुंचने वाली है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे रेलवे इन्फॉर्मेशन के साथ।

वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू, 8:11 रेडियो मधुबन की घड़ी पर। घरेलू शेयर बाजार कल शुक्रवार को यानी कि तेज गिरावट के साथ तो बंद हुआ था, और अगर 14 अगस्त की बात करें हम, क्योंकि 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त छुट्टी थी, तो शुक्रवार की बात करते हैं तो घरेलू शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली थी परसों, और निफ्टी शुक्रवार को 0.12% यानी कि 29.85 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 0.09% यानी कि 70.7 अंक की गिरावट के साथ 78,009.25 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 7 कंपनियों के शेयर में तेजी देखने को मिली, और भारतीय एयरटेल, अडानी पोर्ट्स, ICICI बैंक के शेयरों में उछाल देखने को मिली। टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में उछाल देखने को मिली, और दूसरी तरफ एशियन पेंट्स, इंडिगो, NTPC के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली। शेयर मार्केट खुलने के चंद मिनट के बाद गिर गया था 14 अगस्त को। सेंसेक्स 310 अंकों के नुकसान के साथ लगभग 77,769 पर आ गया था। BSE के 30 स्टॉक्स वाले इंडेक्स में केवल इटरनल, बजाज फाइनेंस, टाइटन और अडानी पोर्ट्स ही हरे निशान पर थे, बाकी सारे लाल निशान पर ट्रेड कर रहे थे। तो ये कुछ शेयर मार्केट की बातें थी, यानी कि शेयर मार्केट लाल निशान पर बंद हुआ था। आइए बात करें सोने की कीमत के बारे में। तो राजधानी दिल्ली में सोने की 7 सत्रों की तेजी मुनाफा वसूली के कारण टूटी। 10 ग्राम सोने का भाव गिर गया है, और क्या कुछ

और सेंसेक्स 78,009.25 पर और निफ्टी 24,366 पर। और इसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल के दामों के ऊपर भी नज़र डाल देते हैं। पेट्रोल प्राइस मुंबई में 111 रुपये और 21 पैसे प्रति लीटर, राजधानी दिल्ली में 102 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर है। और वहीं पर राजधानी जयपुर में 112 रुपये और 66 पैसे हैं पेट्रोल की कीमत। डीजल की कीमत जान लेते हैं। डीजल हमारे मुंबई में 97 रुपये 83 पैसे हैं और नई दिल्ली में 95 रुपये 20 पैसे हैं, राजधानी जयपुर में 97 रुपये 78 पैसे हैं। तो ये कुछ पेट्रोल डीजल की भी बात और सोना चांदी और सेंसेक्स की बात हम कर रहे थे। आइए लेते हैं यहाँ पर फटाफट सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ गार्डन, जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? एंजॉय द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू, करेक्ट। अगर हमें जीवन को सचमुच एंजॉय करना है तो एक काम कर सकते हैं, गो वेरी क्लोज टू नेचर, प्रकृति के नजदीक आइए। प्रकृति के जितने नजदीक होते हैं तो उतना फील कर सकते हैं कि हमारा जीवन कितना वंडरफुल है और उसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो आप ऐसा डिसाइड करना कि साल में एटलीस्ट 10-15 दिन आप अपने बिजी लाइफ को निकाल कर गो वेरी क्लोज टू नेचर, गो टू वेरी क्लोज टू माउंटेन्स, गो टू रिवर्स, है ना, नेचुरल फ्लोरा और फौना की तरफ जाइए। लिसन टू द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, जहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, और वहां जाकर अकेले में आप बैठिए एंड स्लोली इंट्रोस्पेक्ट, और वहां के साइलेंस को आप अनुभव करेंगे। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, यू विल रियली एंजॉय इट, करेक्ट। अच्छा, नेचर का दो अर्थ होता है, एक होता है नेचर का अर्थ प्रकृति, उसी तरह दूसरा होता है नेचर मीन्स नेचर ऑफ पीपल। हमें यह समझना है कि जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। गुलदस्ता की भी रौनक कब होती है? जब उसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। उसी तरह इस जीवन रूपी यात्रा में आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे जिनके अलग अलग नेचर होते हैं। कैन यू एक्सेप्ट देयर नेचर? और अगर आप उनको एंजॉय कर सकते हो, बिलीव मी, लाइफ वुड बिकम रियली वंडरफुल, रियली ग्रेट।
0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: क्वालिटी ऑफ हेल्थ। जब हम हेल्थ के बारे में कहते हैं, सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स जिस पर हमको ध्यान देना होगा। नंबर वन इज एक्सरसाइज, और ये बहुत बहुत जरूरी है कि हर दिन हम सुबह उठकर थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। आप कहेंगे, सर वेयर इज द टाइम टू डू एक्सरसाइज? इसे एक बार भगवान से इंटरव्यू लिया गया और भगवान से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा गया, आपको मनुष्यों को देखकर सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या लगता है? और मालूम है भगवान का जवाब क्या था? God's beautiful answer was, the thing that surprises me the most about these human beings is, these human beings, they invest their complete health to gain wealth. And after many, many years, they have to reinvest their complete wealth to regain health. कहा जाता है, जान है तो जहान है। और बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा समय अपने लिए निकालें to do some exercise. अच्छा, अब एक्सरसाइज तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन हमारा रिसर्च कहता है कि एक्सरसाइज करते समय आप किस मानसिक अवस्था से आप एक्सरसाइज कर रहे हो। अब लोग सुबह उठकर जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, लेकिन अगर कोई गुस्से से वॉकिंग कर रहा है तो इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए हमारा रिसर्च कहता है कि जो भी आप कार्य कर रहे हो, अगर आप बहुत खुशी से करते हो तो उसका जो इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत रिमार्केबल होता है। इसे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में कुछ एक एक्सरसाइज को डिवाइस किए गए, विच आर कॉल्ड एज साइको फिजिकल डायनेमिक एक्सरसाइजेस। साइकी मीन्स माइंड और फिजिकल मीन्स शरीर, और इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। तो कुछ एक एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा, विच इज बीन डिवाइस बाई डॉक्टर गिरीश पटेल, अ वेरी फेमस साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम बोरीवली बॉम्बे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये एक्सरसाइजेस आपको बहुत बहुत पसंद आएंगे। तो सभी स्ट्रेट होकर, अलर्ट होकर बैठे, रेडी ऑल ऑफ यू। अच्छा अच्छा, सबसे पहले आपको ये बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ करना है। अच्छा, कैसे करना है? जब मैं कहूंगा वन, तो आप जोरदार ताली बजाना और महसूस करना कि आप उस सुप्रीम सर्जन जो ईश्वर है उनको टच कर रहे हो। और जब मैं कहूंगा टू, तो महसूस करना है कि उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस उतर उतर कर आप तक पहुंच रहे हैं। करेंगे सभी? हाँ, चलिए। ओके, हियर वी गो। वन टू, खुशी से करना, आपके चेहरे में मुस्कुराहट भी होनी चाहिए, ठीक है? ओके, एक और बार करेंगे, वन टू कर। अच्छा, जैसे आप उस सुप्रीम सर्जन को टच करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे जो शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं, अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं डिजीजेस होने का कारण क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, राइट। और जैसे ये टॉक्सिन्स शरीर से फ्लश आउट हो जाती है, वे बिकम डिजीज फ्री। लेकिन आजकल देखा गया है शरीर से ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे मन में होते हैं, स्ट्रेस, फियर, टेंशन, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। ऐसे एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज मुझे अच्छा लगता है, और वो है, जब मैं कहूंगा वन, तो आप महसूस करना कि अगर आपके शरीर में और मन में अगर टॉक्सिन्स है तो, तो जब मैं कहूंगा वन तो आप इस तरीके से उसको झटक दो, और जब मैं कहूंगा टू तो उसको थोड़ा धक्का मार के बाहर फेंक, ठीक है? बहुत खुशी से, बहुत आनंद से करना। चलो वन टू, थोड़ा धक्का मार दो। वेरी गुड, वेरी गुड। एक और बार वन, हाँ टू, करो करो करो। या या फ्रेंड्स, ये जो रोड में जो गाड़ियां चलती है उसमें हम पेट्रोल यूज करते हैं, और जो एरोप्लेन जो हवा में चलती है उसमें भी हम फ्यूल यूज करते हैं। अच्छा बताइए फ्रेंड्स, ये दोनों क्वालिटी ऑफ फ्यूल कौन सा अच्छा होगा इफ यू कंपेयर बोथ? राइट आंसर, वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस। यस, द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। उसी तरह द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स डाउन टू हेल्थ इज हम अपने शरीर में किस प्रकार का फ्यूल डाल रहे हैं, एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ आवर डाइट। अब प्रश्न उठता है कि हम किस प्रकार का भोजन स्वीकार करें। इसलिए हमारा रिसर्च कहता है दिस ह्यूमन सिस्टम इज मेंट फॉर प्योर वेजिटेरियन फूड, दिस ह्यूमन सिस्टम इज नॉट मेंट फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड। अब नॉन वेजिटेरियन फूड से क्या प्रॉब्लम्स है उसके तो हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो हमारा क्वालिटी ऑफ डाइट क्या होना चाहिए? प्योर वेजिटेरियन फूड के साथ साथ जरूर भोजन के पहले जरूर सलाद को लीजिए। ओके, ईट लॉट ऑफ स्प्राउट्स, फ्रूट्स, जूसेस। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है बहुत शक्तिशाली बन जाती है। साथ साथ में एक और बात पे ध्यान खिंचवाना चाहता हूं। कहा जाता है जैसा अन्न होगा वैसा मन बन जाता है। इसे मैं आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप भोजन बना रहे हैं तो बहुत खुशी और आनंद से भोजन बनाइए। अगर आपने बहुत गुस्से से भोजन बनाया, यही हमारा जीवन है क्या, जिंदगी भर हम भोजन बनाते रहे? अगर इस एटीट्यूड से भोजन बनाया तो जो भी आपका हाथ का बनाया भोजन खाएंगे तो उनके भी विचार जो होंगे वो डामाडोल हो जाएंगे। राइट भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि बहनें ही भोजन बना सकते हैं, आप भी तो थोड़ा हेल्प कर सकते हो ना। तो एक बार ट्राई करके देखना है ना, जब बहन भोजन बना रहे हैं तो बहुत किचन में जाना, बहुत प्रेम से एक दो टमाटो कट करके देखना, और बहन के चेहरे को देखना, उनका चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिल जाएगा। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इमोशंस। ओके, यू नीड टू हेल्प एवरीवन। इसे मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया है कि जब भी मेरे फैमिली मेंबर्स इफ दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू कुक फूड, मैं कहता हूं मैं आज के दिन भोजन बनाता हूं, एंड टेक कुकिंग एज योर हॉबी। जैसे आज भी आप देखो मंदिर में जाते हो आपको प्रसाद मिलता है ना, भले थोड़ा सा प्रसाद क्यों ना हो लेकिन उसका महत्व बहुत होता है क्योंकि वो ईश्वर की याद में वो भोजन बनाया गया है। ऐसे जब आप भोजन बनाते हो तो ईश्वर के अच्छे अच्छे गीत लगाइए, और उनके याद में अगर आप भोजन बनाते हो तो बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल बन

तारों भरी ना मैंने तो दिन का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है,

0: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप 8:31 रेडियो मधुबन की घड़ी पर। जैसे आज न्यूज़पेपर्स की यानी कि कल छुट्टी के अवसर था तो इसीलिए आज प्रकाशन तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें जो हम आप तक पहुंचाएंगे दैनिक भास्कर के जरिए। अगर आप सिरोही या बुरुड़ भास्कर कल आपने देखा होगा तो 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध में मददगार रहे, पाकिस्तान ने पकड़ने के लिए रखा था 3 लाख का इनाम, यानी कि बात कर रहे हैं भीम सिंह सोढ़ा जी के बारे में, जो खुद सेना में नहीं थे लेकिन 35 ग्रामीणों के साथ जवानों संग लड़ी और पाकिस्तान में फहराया था तिरंगा। जिला मुख्यालय के करीब 22 किलोमीटर दूर ओड़ा बांध के सिंचित क्षेत्र में स्थित सोढ़ों की ढाणी आज भी भारतीय सेना के उस गौरवशाली इतिहास की गवाही देती है, जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और ये कहानी है 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध के वीर योद्धा ठाकुर भीम सिंह सोढ़ा जी की। इस मोड़ पर एक श्रोता मित्र हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका।
1: मदन भाई
0: जी, मदन भाई कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ, सुन रहा था सुबह से रेडियो।
0: जी, आपने कल कैसे सेलिब्रेट किया, किसे मनाया आपने?
1: कल हम कंपनी में थे और कोई मनाए ना मनाए, मगर हम रास्ते में जो निकल रहे थे बच्चे झंडा लहराते हुए और झंडा को देख के और उन सैनिकों को याद करते हुए और उन आगे कार्य को सेवा करते हुए मैं बहुत खुश था। और इसी खुश में मैं पूरा मतलब ये अपना मनाया हमने
0: तो स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। जी,
1: कल मीटिंग था कंपनी में तो हमारे सेठ ने भी बोला आपको मुबारक हो आज का स्वतंत्र दिवस की, हमने बोला आपको भी मुबारक हो और भी वहाँ चर्चा किया था और इसके बाद में टाइम भी हो गया था और मैं दोपहर के बाद में झंडे देख रहे थे, मतलब बिल्कुल शांत, मतलब हवा वहा नहीं थे और झंडे मतलब शांत थे, मुझे ऐसा लगा कि भाई सुबह का माहौल बहुत अच्छा था, दोपहर के बाद में थोड़ा कम।
0: जी तो जी,
1: आपको नमस्कार करते हैं रेडियो मधुबन को।
0: नमस्ते, धन्यवाद आपका। नमस्ते, दिन अच्छा जाए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे मदन लाल जी। तो हम बात कर रहे थे भीम सिंह सोढ़ा जी के बारे में, जो खुद सेना में नहीं थे लेकिन 35 ग्रामीणों के साथ जवानों के संग जंग लड़ी उन्होंने, पाकिस्तान में फहराया था उन्होंने झंडा। तो इतिहासकार डॉक्टर उदय सिंह जी ने दैनिक भास्कर को बताया भीम सिंह सोढ़ा का पराक्रम जो 1971 के युद्ध में भी जारी रहा। और ओड़ा में मौजूद है शोरे की छतरी, ओड़ा गांव की भूमि पर ठाकुर भीम सिंह सोढ़ा जी की छतरी आज भी उनके त्याग बलिदान और देशभक्ति की याद दिलाता है। ओड़ा ग्राम पंचायत के तहत सोढ़ों की ढाणी में उनके पुत्र सुरतान सिंह और भीख सिंह के परिवार के सदस्य भाकर सिंह, हरि सिंह, सोहन सिंह और शंभू सिंह, मालम सिंह और उनके भाई कुप सिंह का परिवार इस विरासत को संजोए हुए हैं। पाकिस्तान सरकार ने भीम सिंह सोढ़ा को पकड़ने के लिए उस दौर में 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, इसके बावजूद वह पकड़े में नहीं आए। युद्ध के बाद भारतीय सेना के सैन्य विभाग के सिफारिश पर भीम सिंह सोढ़ा और उनके परिवार को ओड़ा बांध के सिंचित क्षेत्र में सैकड़ों बीघा भूमि पारितोषिक के रूप में, जागीर के रूप में दी गई थी।

निकाय चुनाव को लेकर के प्रशासन में तैयारियां तेज है और चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष शांतिपूर्ण व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए मतदान केंद्रों और स्ट्रॉन्ग रूम मतगणना केंद्र की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। वहीं पर रिटर्निंग अधिकारी उपखंड अधिकारी डॉ. अंशु प्रिया जी ने माउंट आबू क्षेत्र में प्रस्तावित मतदान केंद्रों स्ट्रॉन्ग रूम मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर व्यवस्थाएं देखी और संबंधित विभागों के अधिकारियों का समय रहते तैयारियां पूरी करने के लिए निर्देश भी दिया। राखी से रक्षा अभियान, अरठवाड़ा स्कूल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। डाक विभाग के राखी से रक्षा अभियान के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरठवाड़ा में विशेष कार्यक्रम अधीक्षक डाकघर अखाराम के निर्देशन में हुआ। अभियान के जरिए विद्यालय की बालिकाओं को देश की सीमाओं पर तैनात वीर जवानों तक राखी भेजने के लिए प्रेरित किया गया। बहनों का स्नेह पहुंचाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में भामाशाह, चंपालाल टाक, भंवर कुंवर और दिनेश कुमार, डॉक्टर कमलेश कुमार आर्य, निरीक्षक डाकघर पारसमल सुथार और प्रधान आचार्य कमलकांत जी उपस्थित रहे। और वहीं पर रेवदर कॉलेज में कविता प्रश्नोत्तरी, छात्रों को दिलाई गई मतदान की शपथ। और जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही के निर्देशन में अभियान नशा मुक्त एवं बाल विवाह के तहत 14 अगस्त को कालिका पेट्रोलिंग यूनिट आबू रोड ने जागरूकता कार्यक्रम किया। महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 बताया गया है और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 बताया गया है।

और वहीं पर कलेक्टर रोहिताशु सिंह तोमर जी के निर्देशन में नशा मुक्त सिरोही और बाल संरक्षण जागरूकता अभियान की शुरुआत हो गई है। कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवीन भवन में शुक्रवार को हुआ। ये अभियान 26 अगस्त से 27 फरवरी तक चलेगा। ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे दैनिक भास्कर के जरिए आसपास के घटनाक्रमों के ऊपर हमने नजर डाला। आइए लेते हैं यहाँ पर एक क्विक सा ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के उस पार।

0: आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। और कुछ बातें जो जुड़ी हुई हैं हमारे नौकरियों के साथ वो हम आपको क्विकली बता देते हैं। और इससे पहले कि सुरेश भाई दर्जी जी का भी कॉल आया था, आप सभी के लिए उन्होंने शुभकामनाएं भेजी हैं। UPSC में 34 पदों पर भर्ती, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद भरे जाएंगे। लास्ट डेट है 28 अगस्त 2026। और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पर जाकर के आपको अपना आधिकारिक वेबसाइट पर एप्लीकेशन भरना होगा। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी निकाली है। लास्ट डेट है 24 अगस्त 2026। आप ये आधिकारिक वेबसाइट में जाकर के RCFL की वेबसाइट में रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर के मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती के ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। और वहीं पर बैंकिंग क्षेत्रों में मौका है, अलग अलग राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में रिक्त स्थान भरे जाएंगे। SBI में जूनियर असिस्टेंट SBI में जूनियर एसोसिएट के 1538 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकली है। और इसके साथ साथ आवेदन करने के लिए SBI के वेबसाइट के करियर सेक्शन में जाएं, जूनियर एसोसिएट भर्ती के ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें। और वहीं पर झारखंड में इंटरमीडिएट लेवल भर्ती के 326 पदों पर भर्ती निकली है। 19 अगस्त तक करें आवेदन। रेलवे में 6777 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकली है। तो www.nfr-recruitment.in वेबसाइट पर जा करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं पर पटना हाई कोर्ट में भी 27 अगस्त 2026 लास्ट डेट है। एक कैडर असिस्टेंट के 68 पदों पर भर्ती निकली है। IBPS में क्लर्क के 11403 पदों पर भर्ती निकली है। और आप www.ibps.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट है 21 अगस्त 2026। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी नौकरियों के साथ भी। अभी वक्त हो गया आप सभी से अलविदा कहने का। कुछ ही क्षणों के बाद सुनेंगे आप ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में सम्पन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
2: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
2: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खेले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
2: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गाँव गाँव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
3: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती हैं, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
4: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट टिक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी एसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
5: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
6: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1,307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
7: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अखुआपदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गांव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहां खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गिंगुटी और कोकिला नदियां भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज़।
8: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा, 7 शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी।

0: नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान, कहा महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, बस्तर के 93 गांवों में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत, नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा, अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी बजे हैं सुबह के 9। 1 मिनट का समय स्वयं को दें।

0: शांति नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। और बड़ा अच्छा लग रहा है आज आप सभी से रूबरू होते हुए, क्योंकि आज हम लोग विशेष खास गेस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर शालिनी जी, जिनसे आप लोग रूबरू हो रहे हैं। तो इनसे हम लोग बात करेंगे कि ग्लूकोमा है क्या, इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम लोग सुनने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर शालिनी जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर शालिनी जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, थैंक यू।
0: जी जी, स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। और जिस विषय को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं, हमारे साथ सुभाष जी सोनावने जुड़ गए हैं, उन्होंने वेलकम लिखा है। और वुमेन्स डे एंड सभी को, माता बहनों को बधाई, गुड विशेष करके भी मैसेज किया है, थैंक यू सो मच। और आपको भी याद किया है उन्होंने। और मानसी जी भी याद किया है, ओम शांति लिख के भेजा है। मानसी जी, सुधा जी और सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और मैं चाहूंगा कि आज हम लोग एक खास पर्टिकुलर विषय को लेकर बात करेंगे, जिसका नाम है ग्लूकोमा। तो ये आंखों के लिए खास है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर शालिनी जी, मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, ये ग्लूकोमा है क्या, इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए।
1: ग्लूकोमा एक्चुअली एक प्रकार की आंखों की बीमारी है, जिसमें आंखों का प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है। और जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसी तरह आंखों का प्रेशर भी बढ़ता है। और आंखों के प्रेशर बढ़ जाने से आंखों के नसों को नुकसान होने लगता है, नसें सूखने लगती है, और उसकी वजह से हमारी जो रोशनी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। शुरुआत में तो पेशेंट को बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन एडवांस स्टेज में काफी विजन लॉस हो चुका होता है, तब पेशेंट को पता चलता है कि मुझे रोशनी कम हो गई है। इसको ही हम ग्लूकोमा बोलते हैं, आंखों के प्रेशर बढ़ने से रोशनी की कमी होना।
0: जी, तो डॉक्टर शालिनी जी, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा वर्तमान आपका सिनेरियो के बारे में बताइए।
1: मैं अभी ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू, यहाँ तलहटी में एज अ कंसल्टेंट एंड कंसल्टेंट ऑप्थल्मोलॉजिस्ट एंड ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट सेवाएं दे रही हूँ लास्ट 2.5 ईयर्स से।
0: जी,
1: यहाँ पे काफी पेशेंट्स हैं ग्लूकोमा के। राजस्थान के इस जोन में ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट कोई है भी नहीं, तो मेरे पास पेशेंट्स काफी रेफर होकर आते हैं। बहुत अच्छी सेवाएं हो रही हैं यहाँ अपने हॉस्पिटल में।
0: जी जी, तो आइए, मैं चाहूंगा कि इसका जो अभी पेशेंट्स तो काफी है आपने बताया, और खास इसके कमी के कारण रोशनी की कमी हो जाती है, और तो ऐसे में हम लोग कैसे ट्रीटमेंट शुरू करें, हमें कैसे पता चले कि ग्लूकोमा का ये प्रॉब्लम है, शुरू शुरू में जल्दी से हमें पता चल जाए, ऐसा क्या हो सकता है?
1: एक्चुअली ग्लूकोमा को साइलेंट किलर ऑफ विजन

0: या साइलेंट थीफ और विजन कहते हैं, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता कि पेशेंट की रोशनी कब कम हो गई। धीरे धीरे सिम्टम्स नहीं होने के कारण पेशेंट को महसूस नहीं होता। तो हर वो इंसान जो 40 ईयर्स अबव हो, उनको साल में एक बार जरूर आई चेकअप कराना चाहिए, कंप्लीट चेकअप कराना चाहिए, जिसमें आंखों का प्रेशर आता है, टोनोमेट्री आती है, फंडस एग्जामिनेशन, गोनियोस्कोपी, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, सारे एग्जामिनेशन इंक्लूडेड हैं उसमें, वो जरूर कराना चाहिए। उसके बाद अगर डॉक्टर को लगता है कि आपको फर्दर इवेल्युएशन की जरूरत है, तो कुछ और इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं ये मालूम करने के लिए कि उनको ग्लॉकोमा है या नहीं, और फिर जैसा ट्रीटमेंट, जैसा एडवाइस डॉक्टर देते हैं उसको फॉलो करना होता है।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ग्लूकोमा एक्चुअली में साइलेंस क्लियर भी कहा जाता है। इसका पता जो है बहुत जल्दी स्टेज पे नहीं मालूम पड़ता, तो थोड़ी देर के बाद ही पता चल जाता है, और जब पता चल जाता है तो इलाज संभव है। तो अब इसका जो ट्रीटमेंट है, जैसे किसी को मालूम पड़ गया कि भाई हाँ इनका ग्लूकोमा का प्रॉब्लम है, तो इसके वजह से कम दिखाई देता है, तो कैसे ट्रीटमेंट चलता है? लंबा चलता है या तुरंत हो जाता है, या कुछ ऑपरेशन से भी ठीक हो जाता है? कैसे?
0: एक्चुअली प्राइमरी ट्रीटमेंट तो मेडिकेशन से ही है, आई ड्रॉप्स हैं शुरुआत में। अगर ड्रॉप से प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम सर्जरी की तरफ सोचते हैं, और सर्जरी भी इसकी काफी अवॉइडिंग है, रिजल्ट अच्छे हैं सर्जरी की, काफी एडवांस सर्जरी भी है। तो ट्रीटमेंट, एक्चुअली इसकी ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलती है, ये इम्पोर्टेंट है जानना लोगों को। ऐसा नहीं कि आज हम, हाँ जी, ये क्योरेबल नहीं है कम्प्लीटली, ये ट्रीटेबल है। मतलब हम जब तक ट्रीट कर रहे हैं, मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तब तक ये हमारे कंट्रोल में रहेगा। अगर हमने दवाइयां कर दी तो फिर वो बीमारी बढ़ जाती है, तो हमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है इसकी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर शालिनी जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि इसका जो है पूरी तरह से इलाज नहीं है, बाकी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और लाइफ टाइम के लिए आपको जो है ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर आपको एक बार पता चल जाता है तो डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करके रहें, तो उसका ट्रीटमेंट होता रहेगा और आप अच्छी तरह से उसका लाभ भी ले सकते
0: हैं।
1: अच्छा, ये बीमारी हो नहीं, इसके लिए हमें क्या कुछ डाइट प्लान या फिर कुछ प्रिकॉशन कैसे कर सकते हैं?
0: एक्चुअली पहले तो ये अवेयर होना जरूरी है कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं ग्लॉकोमा के। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अबव 40 इयर्स बहुत वल्नरेबल एज होता है, इसके बाद ग्लॉकोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जिनको पुरानी कोई आंखों में चोट लगी हो वो काफी वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, माना उनके फैमिली में किसी को ग्लॉकोमा हो रखा है, जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, किसी को भी, तो उनको आई चेकअप जरूर कराना चाहिए साल में एक बार। जिन्होंने लंबे समय तक स्टीरॉइड्स लिया हो किसी न किसी फॉर्म में, लाइक इनहेलर्स के फॉर्म में या टैबलेट्स के फॉर्म में, इवन एलर्जी के लिए हम स्किन ऑइंटमेंट यूज करते हैं, उसके फॉर्म में भी वो हमारा आंखों का प्रेशर बढ़ा सकता है। तो ये सारी चीजें, अगर कोई भी इनमें से एक कारण है तो वो जरूर डॉक्टर से एक बार सलाह ले।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो आइए डॉक्टर शालिनी जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत विजय लक्ष्मी जी लेकर आ रही है, वो सुनते हैं, उसके बाद फिर आपसे बातें करते हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक मित्र जो हमें सुन रहे हैं उनमें से इस हाई के लिए या आंखों के लिए कोई भी सवाल आपको हो तो जरूर आप पूछ सकते हैं, डॉक्टर शालिनी जी आपको कोई जानकारी देगी। और मैं चाहूंगा कि आप अपने सवाल कमेंट सेशन में जरूर पुट अप करें। मानसी जी हैं, सुधा जी हैं, सुभाष जी हैं, आप सभी ने मैसेज किया, तो आपका आंखों से रिलेटेड कोई सवाल हो तो वो भी पुट अप करिए, तो हम लोग डॉक्टर शालिनी जी से उस पर बातचीत करेंगे। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा गीत लेकर आ रही हूँ विजय लक्ष्मी जी।

0: थैंक यू विजयलक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए, कुछ सवाल आए हैं और मानसी जी लिखते हैं, व्हाट इज ग्लूकोमा, और इसके बाद शिवाज जी ने याद किया है, वेरी नाइस दीदी, शुक्रिया। डॉक्टर शालिन जी, ग्लूकोमा के बारे में बताइए।
1: जी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ग्लूकोमा सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आंखों के प्रेशर को बढ़ने को कहेंगे, जिसे काफी नुकसान होता है, आंखें की रोशनी जा भी सकती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। मानसी जी, जिससे जो है आंखों की रोशनी कम हो जाती है और ये पता नहीं चलता, साइलेंट किलर है, तो ये डॉक्टर साहिबान ने थोड़ी देर पहले बताया था, तो आपको फिर से बता दिया है। तो अब इसका जैसे ट्रीटमेंट की आपने बात कही कि एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, लेकिन पूरा इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट चलता रहता है, तो यहाँ आबूरोड में कितने लोगों का इसमें ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको स्पेसिफाई जिनको रिजल्ट अच्छे मिले हैं, थोड़ा सा दो चार लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे।
1: बिल्कुल जी, आबूरोड में मैं आपको बहुत खुशी हो रही है मुझे बताने में कि आबू रोड के साथ साथ काफी दूर से पेशेंट यहाँ आकर लाभ ले रहे हैं और दूसरे आई हॉस्पिटल से पेशेंट रेफर भी हो रहे हैं जिनके वहाँ पे इलाज की कोशिश की गई लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो यहाँ रेफर किया गया, ऐसे पेशेंट्स भी आ रहे हैं। उसमें से काफी एक एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी। एडवांस ट्रीटमेंट की जब बात आती है तो एक साल पहले एक बच्चा आया था, 7 साल उम्र थी उसकी, और उसकी दोनों आंखों कंजनाइटल ग्लॉकोमा जैसी बीमारी से ग्रसित था वो, और दोनों आंखों की विजन ग्लॉकोमा की वजह से बहुत कम थी, बिल्कुल नजदीक का भी उसे देखना मुश्किल था। तो और वो ऐसे कम्युनिटी को बिलोंग करता था कि वो ये महंगी ट्रीटमेंट अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये एडवांस सर्जरी थोड़ी महंगी होती है, जिसको हम ट्यूब शंट ग्लॉकोमा ड्रेनेज डिवाइस बोलते हैं, उसका वो प्लान था करने का, अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन लोगों ने मदद की, हमारे हॉस्पिटल ने भी, उसे काफी कम रेट में उसकी सर्जरी हुई और उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। सर्जरी मैंने ही की थी, कुछ दिनों तक उसका प्रेशर बढ़ा था, सर्जरी का टाइम लगता है पोस्ट ऑप पीरियड में, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी प्रेशर बहुत कंट्रोल हो गई और जो उसकी विजन थी जो कि सूजन की वजह से कम थी वो काफी ठीक हो गई। और कुछ दिनों के बाद उसके जो रिलेटिव्स थे और जिन्होंने उनको मदद किया था बच्चे की फैमिली को फाइनेंशियली, वो आकर बता रहे थे कि बच्चे की पढ़ाई हो रही है, स्कूल जा रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है वो। तो एक ये सक्सेसफुल ट्रीटमेंट का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। दूसरा एक एग्जांपल है, एक 45 ईयर ओल्ड लेडी थी जिनकी पहले से ग्लॉकोमा सर्जरी हो रखी थी और प्रेशर काफी कम उसके आंखों का, प्रेशर सर्जरी की वजह से, ओवर फिल्ट्रेशन कहते हैं वो, उसकी वजह से बहुत कम थी प्रेशर और कैटरैक्ट हो रखा था। आसपास के सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था सर्जरी के लिए, कैटरैक्ट सर्जरी के लिए, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड केस था वो, कैटरैक्ट सर्जरी भी कॉम्प्लिकेटेड, पीछे जो पर्दा बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, उसके भी इन्वॉल्वमेंट का शक था। तो वो पेशेंट काफी उम्मीद से, उसको मेरे किसी और पेशेंट ने रेफर किया था कि वहां आप आओ, तो वो काफी उम्मीद से आया था कॉम्प्लिकेटेड केस, लेकिन मैंने उसे सारे रिस्क समझा कर वो केस टेकअप किया था।
0: अरे वाह।
1: और उसका सर्जरी का रिजल्ट जानकर आपको इतनी खुशी होगी, अगले दिन ही उसके विजन बहुत अच्छे आए और खुश होके उसके परिवार वालों ने पूरे हॉस्पिटल को पार्टी दी और धीरे धीरे सर्जरी का ऐसा मैंने

0: फैक्टर है, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है ग्लॉकोमा के लिए, और जिनका ब्लड प्रेशर भी बड़ा है उसमें भी सकता है आंखों का।
1: दूसरा ये है, इज इट रिलेटेड टू शुगर और ओनली स्ट्रेस, मानसी जी पूछ रहे, दोनों से रिलेटेड हो? बोथ,
0: वैसे भी रिलेटेड है और स्ट्रेस से भी रिलेटेड है।
1: अच्छा, सुभाष जी लिखते हैं, आंखों से पानी आना, कभी कभी आंखों में खुजली आना, इसके लिए क्या इलाज है?
0: ये सिम्टम आपको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के हैं, आंखों में पानी आना, खुजली आना, तो इसके लिए नॉर्मल एक ड्रॉप देते हैं एंटी एलर्जी और टीयर सब्स्टिट्यूट देते हैं, उसके काफी अच्छे रिजल्ट होते हैं, वो नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप 40 हैं के अबव हैं तो एक बार प्रेशर जरूर चेक कराना है आंखों का।
1: सुभाष जी बहुत ही अच्छे सिग्नल पूछा, धन्यवाद, शुक्रिया। और इस ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज रिलेटेड टू ग्लूकोमा, यस भारती जी, दोनों से रिलेटेड है ये, ब्लड प्रेशर हाई भी है लो भी है या फिर आपका डायबिटीज है, तो इन सारी चीजों में जो है ग्लूकोमा का चांसेस ज्यादा है, तो उसका ट्रीटमेंट लेना या आंखों को दिखाते रहना नॉर्मल आपके लिए हमेशा कंसल्ट करते ना जरूरी है। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग अभी जैसे सुभाष जी ने सवाल पूछा है और देवेंद्र जी लिखते हैं, आंखों में खुजली आने के बाद नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, क्या मेडिसिन ले इसके लिए? डॉक्टर शालिनी बताइए इनको, देवेंद्र पंड्या ने लिखा है।
0: कंजक्टिवाइटिस, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस का सिम्टम है ये, एंटी एलर्जी ड्रॉप देते हैं। एक बार मैं देवेंद्र जी को इनवाइट करना चाहूंगी हमारे हॉस्पिटल, ऐसे हम बता नहीं सकते हैं आपको, पूरे कंडीशन देखने के बाद फिर बताएंगे कि वो किससे रिलेटेड है, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस से रिलेटेड है या कोई और प्रॉब्लम है, तो फिर हम ड्रॉप दवा दे सकते हैं।
1: देवेंद्र पंड्या जी, आपका सवाल वाजिब है और उसमें क्या होता है कि किस कारण से ये पता लगाना बहुत जरूरी है, तो जब तक पेशेंट सामने ना आ जाए और कितने समय से है वो और आपको क्या तकलीफ है, कुछ बीमारी है, थोड़ा हिस्ट्री लेना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉपरली जो है चीजें दे सकते हैं, ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ऐसे देखा जाए तो नॉर्मली आपको कोई आई ड्रॉप बता सकते हैं, लेकिन उससे मेन जो है आपको एक बार कंसल्ट करने से क्या होता है, ओवरऑल चीजें क्लियर हो जाती है। ओम शांति दीदी, बहुत शानदार। अमित कुमार जी, अमित कुमार जी धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और मानसी जी या फिर रिक्शा है, माई डैड वॉज लॉस्ट वन आई एंड ही इज एन डायलिसिस, then what I take precautions?
0: डायबिटिक है वो, अगर डायलिसिस पे है तो मोस्ट प्रोबेबली वो डायबिटिक होंगे और डायबिटीज की वजह से उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी हुई होगी। तो अभी अगर वो डायबिटिक है तो ब्लड शुगर का बहुत ज्यादा ध्यान रखे, कंट्रोल रखने का, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी दोनों आंखों में होती है साइमल्टेनियसली। अगर एक आई लॉस्ट हो चुकी है तो दूसरी आई बहुत प्रेशियस हो जाती है, तो ब्लड शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रखने की जरूरत है अगर डायबिटिक है तो। और एक बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की राय जरूर ले ले, आकर दिखाए और कंप्लीट एग्जामिनेशन के बाद हम फिर और डिटेल एग्जामिनेशन के बाद ही बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा।
1: चलिए मानसी जी, आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, देवेंद्र जी ने ओके लिख के भेजा है। डॉक्टर शालिन दीदी, आई एम सफरिंग फ्रॉम ड्राइनेस इन माई आईज, व्हाट शुड आई डू? जी जी,
0: उनको टीयर सब्स्टिट्यूट रेगुलरली लेने की आवश्यकता है और बाहर जब भी निकले धूप में या गर्मी में तो डार्क गॉगल्स लगाकर निकले। जितने हो सके कोशिश करे कि आंखों को ल्यूब्रिकेंट मिलता रहे, मतलब अगर हम बहुत लंबे समय तक लैपटॉप पे या मोबाइल यूज कर रहे हैं तो हम टीयर ड्रॉप्स डालते रहे तो उससे हमें काफी फायदा होता है।
1: मानसी जी ने धन्यवाद लिखा है। और चलिए आकाश जी, आपका मैसेज रिपीट हो रहा है तो आपको बता दिया, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर रेगुलर जो आई ड्रॉप्स होते हैं वो, अगर आप टीयर्स नाम का आई ड्रॉप है, TEARS, तो TEARS नाम का आई ड्रॉप आप यूज कर सकते हैं, इससे ड्राइनेस कम हो जाएगा और अच्छा भी। जी,
0: वो एक बार आप डॉक्टर की राय लेंगे तो आपको बता देंगे कौन सा लेना है।
1: हाँ, कौन सा लेना है और कितने टाइम आपको यूज करना है वो भी बता दें। देवेंद्र जी एक और सवाल लेके आए हैं, मैम एंटी एलर्जी मेडिसिन लेने से कंट्रोल हो जाता है?
0: हाँ, हो जाता है, लेकिन आंखों की एलर्जी में टैबलेट का थोड़ा कम रोल है, ड्रॉप डायरेक्टली हम डालते हैं, टॉपिकल कहते हैं, तो उसका ज्यादा इफेक्ट है, अच्छा है। नहीं तो एंटी एलर्जी पूरा सिस्टमिक, माना टैबलेट लेने पे और शरीर पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है, तो वो हम नहीं चाहते हैं। केवल आंखों की एलर्जी के लिए आंखों की ड्रॉप, एंटी एलर्जिक ड्रॉप सफिशियंट होता है।
1: बिल्कुल। सविता जी ने लिखा आज मुझे देर हो गई, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और इन्होंने लिखा है देवेंद्र चेत्री बैंक टैबलेट लिया।

0: टैबलेट हमेशा लेने की जरूरत नहीं है. कोर्टिजोन टैबलेट जब बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही है तो हम एडवाइज करते हैं. हाँ, आंखों के एलर्जी के लिए रेगुलरली हम सेट्रिजिन टैबलेट एडवाइज करते हैं, बहुत सफिशियंट होता है.
1: अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा. चलिए, हम लोग बहुत सारे लोग आजकल तो क्या हो गया कि ऑफिस और जो भी लोग ऑफिस में जाते हैं या काम,
0: एक्चुअली वो हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो लोगों को ड्राइनेस की कंप्लेंट बहुत ज्यादा हो रही है. कोविड ने हमें दो एक्स्ट्रा चीजें ज्यादा बढ़ाकर दे दी है आंखों के लिए, एक ड्राइनेस की कंप्लेंट, दूसरा स्टीरॉइड्स. जिनको कोविड हुआ उन्होंने स्टीरॉइड्स बहुत लंबे समय तक लिया जी, तो जो स्टीरॉइड रिस्पॉन्डर है तो हो सकता है कि उनके आंखों का प्रेशर भी बढ़ा हो और ग्लॉकोमा भी हो सकता है, उनको चांस है होने की, तो उनको एक बार जरूर आई चेकअप करानी चाहिए.
1: डॉक्टर शालिनी जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताया. और आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग सभी लोग जो है कहीं ना कहीं मोबाइल के टच स्क्रीन से या कंप्यूटर या लैपटॉप के टच स्क्रीन से कनेक्टेड रहते हैं ज्यादा टाइम तक रह रहे हैं, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन जरूर रखना है. टाइम टू टाइम जो है आके ब्लिंक करते रहना चाहिए और बीच बीच में एक इंटरवल में पानी ज्यादा पीना चाहिए. अच्छा, सविता जी लिखते हैं आइस में खुजली बहुत होती है, क्या करें? ये सभी का प्रॉब्लम है.
0: सभी को एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स लेने की जरूरत है. मैं सभी को ये बताना चाहूंगी कि खुद से कोई ड्रॉप ना ले, ना ही किसी फार्मेसी पे जाकर किसी ने सजेस्ट कर दिया है कि ये ड्रॉप ले लो तो ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल ना करें. जो भी ड्रॉप लेना है आप प्लीज अपने डॉक्टर की राय लेकर ही ले, क्योंकि ज्यादातर लोग जल्दी ठीक हो जाए इसके कारण माइल्ड स्टीरॉइड्स दे देते हैं, और वो माइल्ड स्टीरॉइड्स एक्शन तो बहुत अच्छा करती है लेकिन अगर लंबे समय तक हमने उसको यूज किया है, रेगुलरली यूज किया है, तो अगेन वो आंखों का प्रेशर बढ़ा सकती है, ग्लॉकोमा कॉज करा सकती है.
1: बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी मेडिसिन ले तो डॉक्टर के निरीक्षण में ले, किसी से पूछ के ले ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि कई बार हम लोग कुछ चीजें जल्दी ठीक होने की वजह से या किसी ने बता दिया तुरंत दवा ले लिया और असर हो गया तो वो फिर कंटिन्यू हम लोग लेते रहे तो वो भी हमें पता नहीं चलता कि इसका साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं. तो इसीलिए आपको कितना लेना है, कितना समय तक लेना है और क्या सिम्टम्स में लेना है ये डॉक्टर ही आपको बताएंगे, तो आप उससे.
0: एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जो भी एलर्जी की जिनको प्रॉब्लम है आंखों की, वो कोल्ड कंप्रेशन करे, ठंडे पानी से आंखों को सेके, ठंडे पानी से या बर्फ से आंखों को सेके, उससे काफी रिलीफ मिलता है एलर्जिक कंडीशन में. ड्रॉप्स तो डॉक्टर जो एडवाइस करेंगे वो तो है, लेकिन ये कोल्ड कंप्रेशन बहुत बेनिफिशियल होता है एलर्जी कंडीशन
1: जी. अच्छा, एक और सवाल मानसी जी लिखते हैं यहाँ पर, आई हैव माइग्रेन, इट इफेक्ट्स ऑन माय आईज.
0: नॉट मच, थोड़ा वॉटरिंग हो सकती है लेकिन माइग्रेन का डायरेक्टली बहुत रिलेशन नहीं है आई से. और एक्चुअली मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि हेडेक ऐसी चीज है जो आंखों की वजह से भी हेडेक होती है लेकिन लोग उसको माइग्रेन समझकर माइग्रेन का ट्रीटमेंट लेते रहते हैं. जी, आंखों का अगर पावर कुछ चेंज हुआ है या चश्मा यूज नहीं कर रहे हैं, उनको चश्मा लगा है, नया रिफ्रैक्टिव एरर कुछ हुआ है उनको, तो उनको भी बहुत आंखों का दर्द, सिर का दर्द हो सकता है, फटीग फील हो सकता है आंखों के अंदर. और या नहीं तो आंखों का प्रेशर बढ़ा है, ग्लॉकोमा है, तो उनको भी काफी हेडेक होता है लेकिन ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि किस वजह से, तो लोग माइग्रेन समझकर माइग्रेन का ट्रीटमेंट लेते रहते हैं. हेडेक के लिए पैरासिटामोल ले लिया और फिजिशियन के पास गए. इवन मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं जो सीटी स्कैन एमआरआई तक करा कर आए हैं लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाया संभव. लास्टली उसको किसी ने सजेस्ट किया कि एक बार आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलो, वो मेरे पास आए तो मैंने देखा उनको ग्लॉकोमा की वजह से प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ था आंखों का, और फिर मैंने उसका फर्दर ट्रीटमेंट किया, उनको लेजर की जरूरत थी तो लेजर किया, तो अगले दिन ही पेशेंट बहुत कंफर्टेबल, रिलैक्स, जैसे ही उसका प्रेशर कम हुआ उसकी वो बीमारी शांत हुई, सिम्टम्स कम हुए, तब पेशेंट ने रियलाइज किया कि हमने कितने पैसे वेस्ट कर दिए.
1: ये प्रॉपर डायग्नोज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारे पैसे और टाइम वेस्ट हो जाता है.
0: लोगों को ये जानना जरूरी है कि आंखों की वजह से भी सर दर्द होता है.
1: बिल्कुल बिल्कुल, अगर आंखों में कई प्रॉब्लम है तो सरदर्द या सरदर्द होने पर आंखों की प्रॉब्लम या दोनों में से रिलेटेड चीजें हैं, तो आप जब भी ऐसा सिम्टम्स पता चले ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें. सुभाष जी लिखते हैं, नजर के स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा में सनग्लास गॉगल यूज करने से अच्छा है या नहीं ये बताइए।
0: सनग्लास जिनको पावर है वो बाहर सनग्लास यूज करना चाहें तो कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा है। बस जो पावर है वो सही होनी चाहिए, नहीं तो आपको उसकी वजह से दिक्कत होती है, तो किसी अच्छे जगह से जो कि प्रोफेशनल है, वेल ट्रेन्ड है, उस जगह से बनवानी चाहिए ताकि पावर में कुछ एक्सेस में गड़बड़ी ना हो, नहीं तो हेडेक।
1: मानसी जी लिखते हैं आई हैव 3 डेज कंटिन्यू हेडेक, सो तो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट कीजिए, आप क्या कर सकते हैं।
0: कंटिन्यूस हेडेक है तो एक बार जरूर आंखों की चेकअप करवाइए, हमें लगता है तो हम आपको फिजिशियन के पास भी रेफर कर सकते हैं। अगर हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जिनको फिजिकल दूसरी रीजन होती है हेडेक की, तो हम उनको भी रेफर करते हैं, लेकिन आपको कभी चेकअप जरूर करवाइए।
1: हाँ, एक बार चेकअप कर लें तो वो क्या है थोड़ा सा फ्री भी हो जाएंगे, और जैसे कि डॉक्टर ने अभी बताया कोल्ड आप जो है पट्टी लगा सकते हैं, ठंडे आंखों का पट्टी वगैरह लगा के एक दो बार देख लीजिए, है ना, तो उससे भी आपको थोड़ा रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ सुधा भारती जी लिखते हैं व्हाट इज इनिशियल सिम्टम्स ऑफ
0: ओपन एंगल ग्लॉकोमा है, एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा है। ओपन एंगल ग्लॉकोमा में इनिशियली तो कुछ भी पता नहीं चलता, प्रेशर बढ़ा रहता है, माइल्डली प्रेशर बढ़ा है, लंबे समय तक बढ़ा है। कभी कभी पेशेंट हेडेक का कंप्लेन करेगा या माइल्ड ब्लरिंग ऑफ विजन का कंप्लेन करेगा या उसके ग्लासेस के पावर जल्दी जल्दी बदल रहे हैं उसका कंप्लेन करेगा। ये ओपन एंगल के सिम्टम्स होते हैं इनिशियली जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे टाइप है जैसे एंगल क्लोजर, उसमें प्रेशर सडनली बढ़ता है और सडनली प्रेशर बढ़ने की वजह से सिम्टम्स भी उसमें काफी अक्यूट आते हैं। उसमें कलर्ड हेलोज, कॉर्नियल एडिमा हो सकता है, कॉर्नियल एडिमा माना जो आगे की पुतली है उसमें सूजन हो जाती है, तो उसकी वजह से ब्लरिंग होगा, रोशनी कम हो जाएगी, देखने में तकलीफ होगी, आंखें बहुत लाल हो जाएंगी, अक्यूट हेडेक होगा आईब्रोज के अराउंड इधर, वो हेडेक होता है। फिर कलर्ड हेलोज बोलते हैं, माना अगर हम कोई लाइट देख रहे हैं तो लाइट के अराउंड रेनबो टाइप कलर्ड छल्ला जैसा दिखेगा, उसको कलर्ड हेलोज बोलते हैं। तो ऐसी अगर तकलीफ होती है तो हम सिम्टम समझ सकते हैं कि ये शायद एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा का सिम्टम्स है इनिशियली, और ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, उसे तुरंत ट्रीट करना जरूरी है एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा का अगर सिम्टम्स किसी को हो रहे थे।
1: सुधा जी आप समझ गए होंगे इनिशियल सिम्टम्स क्या है, इसके ऊपर आप काम कीजिएगा जरूर। और एक और मैसेज आया, मानसी जी लिखते हैं आई टेक ट्राई के कोर्स ऑफ माइग्रेन बट नॉट एनी रिजल्ट।
0: ऑप्थल्मोलॉजिस्ट
1: आपका पास ऑप्शन है, उसको भी ट्राई कर लीजिए। अमित जी लिखते हैं दीदी आंखों के प्राकृतिक रोशनी बढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए, कृपया कुछ मार्गदर्शन करें। अमित जी ने
0: ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम अपने डाइट में बढ़ाएं, येलो फ्रूट्स बढ़ाएं और फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन करें, माना स्ट्रेस फ्री लाइफ हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। ये सारी चीजें हमारे आंखों के हेल्थ को बढ़ाती हैं। इनकी ग्लॉकोमा के लिए भी हम कहते हैं, मेरे पास कई ऐसे पेशेंट आए हैं जिन्हों को केवल मेडिटेशन के प्रैक्टिस से, मैं केवल मेडिटेशन नहीं कहूंगी, विद मेडिटेशन एंड मेडिटेशन बोथ काफी रिजल्ट अच्छे हुए हैं।
1: इम्पोर्टेंट
0: रोल है
1: जी। डॉक्टर अशालिनी जी एक और मैसेज आया है, लिखते हैं डॉक्टर मैम हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट विद यू फॉर फर्दर गाइडलाइंस। आप लोकल हॉस्पिटल में माउंट आबू में ये है हॉस्पिटल, और यहाँ नीचे आबू रोड में भी आप आएंगे तो ग्लोबल हॉस्पिटल यहाँ पर नजदीक में है। आप आबू रोड उतर के ग्लोबल हॉस्पिटल बोलेगा, कोई भी 10 रुपए में आपको ग्लोबल हॉस्पिटल छोड़ देगा, और वहां पर ही आपको आई हॉस्पिटल है उसमें ही आप डॉक्टर शालिनी जी से मिल सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं यू कैन टेक हर नंबर ऑल्सो, आई थिंक जहाँ से आपको अपॉइंटमेंट मिले। डॉक्टर शालिनी जी आप कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो तो यू कैन।
0: बिल्कुल, मेरी ईमेल आईडी मैं शेयर कर सकती हूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ईमेल आईडी, क्योंकि कई बार मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ फोन पर, मेरे ईमेल आईडी drshalini.6@gmail.com, आपको कुछ भी पूछना हो कनेक्ट कर सकते हैं उससे, मेल कर सकते हैं।
1: अगर आप लिखेंगे तो मैसेज में आप लिख भी सकते हैं, आप एक ऑप्शन है जहां एसएमएस में आप टाइप कर देंगे तो देख पाएंगे। और इसके साथ में एक और मैसेज आया, माय आईज वेयर लैसिक ऑपरेटेड 3 years बिफोर पीआर एंड आई स्टिल फील द पेन समटाइम, हाउ शुड आई क्योर इट परमानेंटली, थैंक्स एंड एडवाइस दीदी। ये आकाश जी लिखते हैं कि इनका जो है लैसिक ऑपरेशन हुआ है 3 साल पहले और पीआरपी का, तो अभी तक उनको जो है थोड़ा सा दर्द में फील होता है, तो क्या परमानेंटली ये दर्द खत्म हो सकते हैं, इसके लिए क्या करें, ये पूछा है।
0: पेन एग्जैक्टली एक्चुअली देखना जरूरी है ये कंडीशन कि ये पेन है या डिस्कम्फर्ट है, ये देखना जरूरी है कि ड्राइनेस की वजह से हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसा अभी आकाश जी ने थोड़ी देर पहले बताया था उनको ड्राइनेस की कंप्लेन है, तो ड्राइनेस की वजह से भी पेन होता है, लोग उसको पेन समझते हैं, तो मे बी इट इज नॉट रिलेटेड विथ लेसिक और इट कैन बी, तो एक बार देख कर ही बता सकते हैं और एक कॉर्निया स्पेशलिस्ट की ओपिनियन हम ले सकते हैं, जहां आपने सर्जरी कराई है वहां भी एक बार जाकर आप फिर से ओपिनियन ले सकते हैं।
1: चलिए आकाश, आपको वापस एक बार दिखाना पड़ेगा या फिर आप ग्लोबल हॉस्पिटल आ जाएंगे या मेल से डॉक्टर साहिबा से टाइम लेके आप आ सकते हैं, तो यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, तो इससे भी काम हो जाएगा। सविता जी लिखते हैं, आईज के लिए कोई एक्सरसाइज है तो बताइए प्लीज। जी
0: आई के लिए एक्सरसाइज एक्चुअली हम सभी को नहीं बताते जिनको अकोमोडेशन इश्यूज है, मसल एक्सरसाइज, कैड कार्ड एक्सरसाइज होता है, उनके लिए हम रिकमेंड करते हैं, अदरवाइज बेनिफिशियल तो सभी के लिए है। वो मेरे पास अभी है नहीं कैड कार्ड, वो लेकर आपको एक्सप्लेन करना होगा। हमारे पास आइए आप हॉस्पिटल, तो हम आपको कैड कार्ड भी बताएंगे और एक्सरसाइज भी बताएंगे इसे कैसे करना है डिस्टेंस पे लेकर। एक्चुअली वो एक फिगर होता है जो डिस्टेंस पे लेकर फिर नजदीक करना होता है, दो फिगर एक हो जाए तो वो बार बार प्रैक्टिस करनी होती है मॉर्निंग इवनिंग, वो एक्सरसाइज काफी अच्छा है। अगर वो नहीं हमारे पास तो पेन से भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तब तक कुछ चीजें जो आपको बताई गई है उसके प्रैक्टिस आप करिए। और ऐसे ईमेल शेयर करने के लिए बोला है तो मैं लिख देता हूँ, drshalini@gmail.com। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को ईमेल भी मिल गया डॉक्टर साहबा का, तो आप मेल करके उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए और फिर आप जो है ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। सुभाष जी ने याद किया है, थैंक यू गाइडलाइन के लिए, टोटल अच्छा लगा आपने सुनकर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो चलिए डॉक्टर साहब जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें, फिर हम लोग पूरा करते हैं। जी
0: हमारा थीम है द वर्ल्ड इज ब्राइट सेव योर साइट।
1: द वर्ल्ड इज ब्राइट सेव योर साइट, जी हाँ, आंखों की रोशनी को अच्छा रखिए तो आपको दुनिया जो है चमकीला प्रकाश में दिखे, अच्छा अच्छी तरह से दुनिया को देख सकते हैं आप।
0: जी
1: तो डॉक्टर शानी जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका जो समय मिला और साथ में आपने ग्लूकोमा के बारे में काफी अच्छी जानकारी दिया, और ये मेनली प्रेशर और डायबिटिक पेशेंट्स को होते हैं और ज्यादातर इन पेशेंट को इसके बारे में पता हो, नहीं भी हो तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप डायबिटीज ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर है लो और हाई है, तो दोनों में अगर कहीं सर दर्द हो रहा है या आंखों में पेन हो रहा है तो जरूर आप ऑप्टल्मोलॉजिस्ट से, आंखों के डॉक्टर से संपर्क करें। इससे क्या होगा, थोड़ा पहले आपको अवेयरनेस आ जाएगा और ट्रीटमेंट आसानी से हो जाएगा, और जब आंखों का पूरा रोशनी चली जाएगी या फिर कम दिखाई देगा तब जाएंगे तो लेट हो जाएगा।
0: ये बोलना चाहूंगी कि इसमें इरिवर्सिबल लॉस होता है विजन का, और बाकी बीमारियों में हम ट्रीट करें तो विजन वापस आती है, लेकिन ग्लॉकोमा में एक बार लॉस हो गया तो परमानेंट लॉस होता है, इरिवर्सिबल लॉस होता है, इसीलिए हम ये अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, विषय गंभीर है, इसलिए आपको बहुत सारी बातें हमने बता दी और आप इन चीजों पे ध्यान रखिए, हाई ब्लड प्रेशर है या फिर डायबिटिक है तो आप ऑप्टल्मोलॉजिस्ट से जरूर बीच बीच में कंसल्ट करते रहे जब भी आपको ये पता चले। और इसके बाद आप तो जैसे जनरली हमारा आंखों के लिए जो ट्रीटमेंट में खुजली है ये है वो है, इसमें आपको जो डॉक्टर साहिबा ने बताया किसी भी व्यक्ति के कहने पर ट्रीटमेंट ना करें, प्रॉपर आप ट्रीटमेंट लिए ताकि प्रॉपरली आपको सजेशन अच्छा मिल सके और अच्छी तरह से आप अपने, क्योंकि आंखें हैं तो दुनिया है, आंखें नहीं तो दुनिया है, इसीलिए आंखों का केयर ज्यादा करें और ठंडे पानी का जो मसाज है वो थोड़ा सा हल्का सा या कपड़ा ठंडा पानी का रखिए बीच में, और अच्छे ड्रॉप्स यूज कीजिए डॉक्टर से बात करके, है ना, और रेगुलर उसका ध्यान रखिए, स्वच्छ पानी से आंखों को बीच बीच में धोते रहें, क्योंकि ये आदत में आ जाए तो फिर अच्छी बात हो सकती है, थोड़ा सा अच्छी आदतों को बढ़ाना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहबा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और एक अच्छे विषय को लेकर आपने बातें की। एंड थैंक यू सो मच, दयाराम जी ने भी याद भेजा है आपके लिए, ये भी हमारे हमेशा प्रोग्राम सुनते रहते हैं। और सवाल आपके, अच्छा मेरे को एक गहरी जानवर ने काटा था, उसके बाद मेरी आंखों की रोशनी कम मुझे दिखाई देती है, उसके लिए क्या करना? अच्छा इनको कोई जानवर ने काटा है, दिखाना तो पड़ेगा भाई साहब, है ना। अब ये छोटे से सेशन में आपको कैसे सवाल पूछें और क्या क्या करें ऐसा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने सही डॉक्टर को सवाल पूछा है। तो डॉक्टर साहब ने ईमेल दिया है, ये वाला डॉक्टर का ईमेल है drshalini.6@gmail.com, तो इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा और बताइए, और फिर आपको ट्रीटमेंट भी बता देंगे, अपॉइंटमेंट लेके आप एक बार आपको आइए, दिखाइए, क्योंकि आंखों का काम है तो आप जल्दी से जल्दी दिखाएंगे तो उतना अच्छा रहेगा, है ना। तो और कोई बीमारी हो तो डिले करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आंखों के लिए आपको बहुत जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो थैंक यू दयाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका मैसेज दिखा आपने अभी। आंखें अच्छे हैं तो आप दुनिया को अच्छी तरह से देख सकते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, अपनी आंखों का ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। यह है रेडियो मधुबन 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, स्वास्थ्य के बारे में हर व्यक्ति कभी ना कभी सोचता जरूर है, खासकर उस समय पर जब व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ता है। स्वास्थ्य अगर थोड़ा भी खराब होता है तो हम सभी जानते हैं कि उसे ठीक करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और हम ये सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य को ठीक करने में समय भी लगता है, पैसा भी लगता है और ताकत भी लगती है। जब ये तीनों चीजें स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आवश्यक हो जाती हैं, तो स्वस्थ रहने में इन तीनों ही चीजों की बचत हो सकती है, तो इसलिए स्वस्थ रहना हम सभी के लिए अनिवार्य भी है। मगर क्या हम चाहकर भी स्वस्थ रह पाते हैं? किन कारणों से हम बीमार होते हैं? कैसे हम अपने स्वास्थ्य को स्वयं ठीक रखने की कोशिश कर सकते हैं? इस पर बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। आइए आज सहज स्वास्थ्य में हम ऐसे ही विषयों पर चिंतन करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी। डॉक्टर राहुल मोदी पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, मगर साथ साथ भारत के वो एक जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और भारत के प्राचीन नेचुरोपैथी केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर के, यहाँ अनेकों पीढ़ियों से उनके परिवार के जन लोगों को शफा देते आए हैं और आज भी वो नेचुरोपैथी के क्षेत्र में काम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: ओम शांति, नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, जब हम स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो नेचुरोपैथी कैसे काम करती है, इस विषय पर हमने आपसे जानकारी लिया। आपने कहा कि प्रकृति चिकित्सा प्रकृति के आधार पर हमें स्वस्थ बनाने के बारे में काम करती है, और सारे रोगों की दवा क्या है वो भी आपने कहा था, और प्रकृति के तत्वों से ही व्यक्ति का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, आपने ये कहा। पहले तो ये बात समझा जाए कि आप क्यों प्रकृति के तत्वों से ट्रीटमेंट करने की बात करते हैं बॉडी के इलनेसेस के लिए, और फिर इसके बाद में ये

0: समझना चाहूंगा कि हम कैसे करते हैं, मगर उससे पहले क्यों प्रकृति के तत्वों का ही आधार लेने की जरूरत है?
1: हमारा शरीर भी प्रकृति ने बनाया है और हमारा शरीर भी प्रकृति के पांच तत्वों से ही बना है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। आप खुद देखिए कि बोलचाल की भाषा में भी बोला जाएगा कि ये मिट्टी का शरीर था, मिट्टी में मिल गया। या हम कितने सारे लोक गीत सुनते हैं जिसमें भगवान के या कबीर के गाने सुनते हैं, उसमें ये बोलता है कि घमंड नहीं करना चाहिए, अपनी लाइफ नॉर्मली लिव रहना चाहिए क्योंकि ये मिट्टी का शरीर है। हा? और ये भी बोला जाता तू क्या लेकर आया, क्या लेके जाएगा, हा? ये मिट्टी से बना शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इवन बाइबल हैज अ कोट सेइंग कि भगवान ने पहले आदमी को मिट्टी से बनाया, फिर उसके नाखून में अपना प्राण डाला और वो आदमी जीवित हो गया। हा? और हम पृथ्वी को माँ मानते हैं, और आप देखिए कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपने कोख में रह के पैदा करती है और उसे पूरा भरण पोषण सब कुछ करती है, और पैदा होने के बाद भी माँ ही उसको सिखाती है। हम लोग कहते हैं मदर इज द फर्स्ट टीचर। मदर ही उस बच्चे का भरण पोषण करती है, पहले अपने कोख में रख के, अपने पेट उसमें रख के 9 महीने, और उसके बाद जब वो कुछ भी करने लायक नहीं रहता तो उसको खिला के पिला कर और उसको नर्चर करती है। यही सारा काम प्रकृति हमारे लिए करती है, और प्रकृति के पांचों तत्व करते हैं। इन पांचों तत्व में सबसे ज्यादा अगर किसी की वैल्यू है तो वह है पृथ्वी, या मिट्टी की, या धारा की, या धरती की। आप जिस भी उसको बोलना चाहिए कि ये वसुधा है, वसुंधरा है, धरा, धरती, पृथ्वी, मात्री, जो भी बोलिए, तो हम अपनी पृथ्वी को भी माँ मानते हैं और हम नेचर को भी मानते हैं, मदर अर्थ, मदर नेचर। क्योंकि वो माँ हमको, जैसे माँ की तरह वो हमें भरण पोषण देती है। प्राकृतिक चिकित्सा एक ईश्वरीय चिकित्सा है, इसे खुद ईश्वर ने बनाया है। और अगर हम फिजिकली मतलब माने तो जो सबसे करीब हम ईश्वर को देख पा रहे हैं अपने, तो हम उन पांचों तत्वों में से देख पा रहे हैं। हम उसको सूरज की धूप से देख पा रहे हैं, हम जिस जमीन पर रह रहे हैं उसको पृथ्वी के रूप में देख पा रहे हैं, जो पानी बह रहा है विभिन्न झरनों में, नदियों में, समुद्र में, उसको देख के हम माँ मतलब नेचर को अपने पास देख पा रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि जब नेचर ने ही हमें बनाया है तो नेचर ही हमको ठीक कर सकता है, और जब हम एंटी नेचर जाते हैं तो हम खराब हो जाते हैं। हमारा सारी बीमारी का जो जड़ है वो प्रकृति से दूर होना ही है। हम जितना प्रकृति से दूर चले गए उतना हम बीमार पड़ गए, जितना हम प्रकृति के पास आ जाएंगे उतना हम ठीक हो जाएंगे, ये हम लोग की सोच है।
0: ये बात समझ में आती है डॉक्टर साहब की, प्रकृति के तत्वों से ये शरीर बना हुआ है और प्रकृति के तत्वों से शरीर के बनने के कारण प्रकृति के तत्वों से ही इसका इलाज भी, इसके रोगों का भी इलाज किया जा सकता है। आपने कहा, आपने धरती के बारे में कहा, बिल्कुल धरती को माँ कहना ये तो भारतीय संस्कृति में तो है ही, मगर अन्य संस्कृतियों में भी विश्व भर में ये चीज हम देखते हैं, मदर अर्थ कहा ही जाता है, अंग्रेजी में भी हम इस चीज को ऐसे ही कहते हैं, पाश्चात्य देशों में भी ये मान्यता है। और आपने ये जो मिट्टी का पुतला है, ये चीज सांस्कृतिक विरासत में हम इन शब्दों को सुनते आए हैं, उसकी वास्तविक अहमियत कहाँ है, उसका वास्तविक संबंध क्या है, ये बात समझ में आती है। मिट्टी से बने हुए शरीर की जब हम बात करते हैं तो जब मिट्टी हम कहते हैं तो हम देखते हैं कि पूजा पाठ में, अनेक चीजों में जब हम धरती की भी वंदना करते हैं, जैसे भूमि वंदना के लिए एक बहुत ही मशहूर श्लोक है, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडली, ये हम कहते आए हैं, गाते आए हैं, ये सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा तो है ही, मगर शरीर में, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए भूमि तत्व कहाँ है, वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है, इन चीजों को भी समझने की जरूरत है। क्योंकि वैचारिक दृष्टिकोण से बात सही लगती है, मगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हिसाब से आप इसे कहाँ देखते हैं?
1: भैया, आपने जो श्लोक बोला उसमें अंत में शायद ये है ना कि मैं धरती माँ तुम पे पैर रख रहा हूँ, उसके लिए तुम्हें प्रणाम कर रहा हूँ और माफी मांग रहा हूँ।
0: जी बिल्कुल।
1: आप सोचिए हम किस संस्कार से आए हैं। आप देखिए जयशंकर प्रसाद की एक कविता, हिमालय के आंगन में तुम्हें प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हस अभिनंदन पह किया और पहनाया हीरक हार, जगे हम और लगे जगह नहीं, विश्व में बहला फिर आलोक, व्योम तम पुज नष्ट हुआ अखिल सं। हमारी संस्कृति भैया कितनी पुरानी है और हमारी धरा और धरती भी कितनी पुरानी। और भैया हमने सिर्फ अपनी धरती को अब्यूज किया है, हमने पेड़ काटा, हमने पॉल्यूशन किया, हमने जहां मन चाहा वहां गड्ढा खोद दिया, हमने जो मन चाहा उसमें डाल दिया। और अगर आप अपनी पृथ्वी माँ को प्यार करते हैं तो प्लीज, ये हेल्थ से हट के टॉपिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। सॉरी हम लोग हेल्थ पे बात कर रहे हैं पर ये मेरे मन से निकल गया कि अगर आप मदर अर्थ को बचाना चाहते हैं, क्योंकि आपका भोजन उसी से मिल रहा है। कुछ लोग जो बोलते हैं कि मैं नॉनवेज खाता हूं, पर आप एक बात जानिए कि जो आप जिस जीव को खा रहे हैं उसकी भी खुराक इस
0: धरती से ही,
1: धरती से मिल, धरती से, हम सब का, हम सब की खुराक इसी धरती से आ रही है। हम जो भी कह लें, हमको वाटर रिसोर्स जो हमको मिल रहा है उसी धरती में से ही हम निकाल के पानी पी रहे हैं। हमारे सारे फ्रूट वेजिटेबल्स ग्रेन्स सब कुछ इसी धरती से आ रहा है। तो धरती सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, या मिट्टी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रकृति चिकित्सा में मिट्टी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे माँ की गोद ठंडक देती है, दुलार देती है, उसी तरह मिट्टी भी मानव शरीर को दुलार और प्यार देती है। भैया मिट्टी बहुत तरह से है, मतलब मैं थोड़ा समय लूंगा इसको बताने में। मिट्टी बहुत तरीके की आती है, बालू मिली मिट्टी, पीली मिट्टी, कंकड़ वाली मिट्टी, पथरीली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी जो सबसे कॉमनली लोग सुनने में आते हैं। हम मिट्टी का सबसे जो पॉजिटिव पार्ट है वो यह है कि मिट्टी में ठंडक होती है। और अगर मेडिकली देखा जाए तो हम जब भी बीमार पड़ते हैं वो एक इंफ्लेमेटरी प्रोसेस है। इंफ्लेमेशन मतलब गर्मी। और मेडिकली ये देखा जाता है कि रेडनेस, हीट, हाँ, रूबर ट्यूमर, डॉलर कैलोर, चार चीजों में पैथोलॉजी में सिखाया जाता है। कहीं भी अगर गर्मी हो, अगर हम उसके ऊपर मिट्टी रख देंगे तो उसकी गर्मी को वो सोख लेगा। और एक सिंपल बात, अगर किसी का दिमाग गर्म है तो वो अपशब्द बोलेगा, इधर उधर झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा। और अगर उसका दिमाग ठंडा कर दिया जाए तो वो अच्छी बातें करेगा, वो उसका दिमाग, उसका सब कुछ ठीक से काम करेगा। मिट्टी में वही ताकत है, उस चीजों को ठंडा कर देती है। कहीं इन्फ्लेमेशन हो, कहीं टॉक्सिन्स हो, कहीं गर्मी हो रही हो, मिट्टी उसको ठंडा कर देती है।
0: डॉक्टर साहब एक बात मेरे को याद आई जब आप ये बात कह रहे थे, मैंने अक्सर ये चीज सुनी हुई है कि जब दो व्यक्ति झगड़ रहे हो, पुरानी किसी बात को लेकर झगड़ रहे हो, तो लोग अक्सर कहते हैं पुरानी बात पे मिट्टी डाल दो ना,
1: मिट्टी डाल
0: जाता है।
1: इसमें भैया मिट्टी का दो प्रयोग है, वो एक ठंडक देती और दूसरा जो गंदगी की बदबू या वो चीज फैल रही होती उसको दबा लेती है अपने अंदर।
0: बिल्कुल।
1: तो अब मिट्टी का हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में? हम ऐसी मिट्टी इस्तेमाल करते हैं जिसमें कंकड़ रेत नहीं। हम जो भी मिट्टी लेते हैं उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लेते हैं और फिर उसको चलनी से छान लेते हैं। आरोग्य मंदिर अपनी जो मिट्टी लाता है, पहले भैया हम कहीं से भी ले सकते थे, पर अब फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक, मेटल, इन सब चीजों की वजह से हमको जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहां से करीब 12 फीट 18 फीट नीचे से मिट्टी निकाली जा रही है उसको हम लेते हैं और उस मिट्टी को हम स्टोर करते हैं अपने यहां। मतलब हमको अगर कहीं भी कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही होती है तो हम वहां जाके, या जो अभी भी थोड़ा सा नॉन पोल्यूटेड एरियाज हैं वहां से मिट्टी लेकर आते हैं अपने यहां इलाज के लिए। उस मिट्टी को हम लोग पहले छानते हैं, फिर उसको पीसते हैं और पीसने के बाद एक बार फिर छानते हैं और फिर उसको भैया 24 to 48 hours तक उसको हम लोग पानी में भिगो के रखते हैं। महात्मा गांधी की किताब है आरोग्य की कुंजी, उसमें महात्मा गांधी जी ने कहा है कि मिट्टी का प्रयोग बाजरे की रोटी के, जितनी मोटी बाजरे की रोटी बनती है उसकी उतनी मोटाई की मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। इसको अब आज की भाषा में अगर समझाएं तो 1 to 2 inches मिट्टी का आपको प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी हम पूरे शरीर में भैया कहीं भी लगा सकते हैं, और आप जहां भी लगाइएगा वहां से ये आपको ठंडक देगी। और आप छोटी छोटी पट्टियों के रूप में, जैसे आंख पे मिट्टी, पेड़ों पे मिट्टी, पैरों में मिट्टी, हाथ पे मिट्टी लगा सकते हैं, और या तो पूरे शरीर में मिट्टी लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रयोग पेड़ों पे मिट्टी की पट्टी या एब्डोमिनल मड पैक का होता है, और ये ऐसी चिकित्सा है जो कि हर डाइजेस्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा इसका पॉजिटिव रोल है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। ये उस एरिया में जहां मिट्टी रखी जाती है वहां ठंडक ला देता है। तो जैसे ठंडक आती है तो जो गर्मी निकल रही होती वो बंद हो जाती है, थोड़ी देर के लिए ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है या कम हो जाता है, और फिर जब मिट्टी हटती है तो एक वहां पे स्वच्छ क्लीन ब्लड आता है जो सारे टॉक्सिन्स को निकाल के ले जाता है। पूरी की पूरी मड थेरेपी की यही फिलॉसफी है कि वो जहां पे लगती है वहां के शरीर को ठंडा कर दे।
0: जैसे आप ये मड थेरेपी की बात करते हैं, बहुत सारे लोग जब प्रकृति चिकित्सा की बात करते हैं, लोग सुनते हैं या कोई करने गया है, तो लोग यही सोचते हैं कि हाँ शरीर पे मिट्टी मल दिया गया है, मड पैक्स लगाए हैं, मड बाथ इत्यादि लिया गया, इत्यादि चीजें सुनने को मिलते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि ये बॉडी के इन्फ्लेमेशन को हील करने के लिए, उसे ठंडा करने के लिए, इन्फ्लेमेशन का मतलब ही गर्म होना है तो उसको ठंडा करने के लिए मिट्टी कार्य में ली जाती है, और मिट्टी कहाँ से ले आते हैं ये भी चीज आपने बताई। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि मिट्टी ही क्यों, क्या मिट्टी में कोई ऐसी हीलिंग प्रॉपर्टी है, क्या कोई ऐसी चीज है जो मिट्टी इस कार्य को कर सकती है, इस चीज को समझा जाए कि ये कार्य कैसे होता है।
1: भैया हम एक चीज जोड़ना चाहेंगे कि नेचुरोपैथी अस्पताल इस नाम इस चीज के लिए बदनाम भी है कि वहां लोगों को मिट्टी में गाड़ दिया जाता है जबकि ऐसा भैया नहीं होता है। अगर मिट्टी के अंदर किसी को डाला जाता है तो इसका मतलब उसकी नर्वस वीकनेस बहुत है, उसको के लिए, स्किन डिजीज के जो पेशेंट है उसके लिए। और अब सिंगल यूज हर जगह आ गया है, कोई भी व्यक्ति एक बार इस्तेमाल की हुई मिट्टी को दूसरी बार इस्तेमाल करना नहीं चाहता है, तो वो पिट मड थेरेपी जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होती है। आपने पूछा कि मिट्टी क्यों ही, उसकी जगह कुछ और क्यों नहीं।
0: आप कहते हैं तो लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए कि मिट्टी में क्या ऐसी खास बात है, कोई वो हीलिंग का कार्य करती है, क्या उसके गुण हैं वो समझ में आए।
1: मिट्टी अपने आप में ठंडक ज्यादा समय तक भैया संजो के रख पाती है, और आप देखिए कि प्राकृतिक उसका नेचर ही है कि वो चीजों को ठंडा रखती है। आप देखिए मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की सुराही, मिट्टी का घड़ा क्यों, और पहले तो मिट्टी के ही बर्तनों में भोजन बनता भी था, और मिट्टी के ही बर्तनों में भोजन सूखे अनाज रखे जाते थे। देखिए रसगुल्ला भी मिट्टी के बर्तन में मिलता था जब सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं था, पत्ते से उसका मुंह बांध करके मिलता था, कॉयर की रस्सी से उसका मुंह बांधा जाता था जब रबर बैंड नहीं था
0: जी।
1: तो आप देखिए कि वो, और उसमें रसगुल्ला ज्यादा फ्रेश रहता था, या दही कितनी फ्रेश मिट्टी के बर्तन में जमती थी, या रबड़ी उसमें कितना ज्यादा उस मिट्टी के बर्तन में रखी जाती थी। मिट्टी में ठंडक सोखने की ज्यादा शक्ति है, वो ज्यादा देर तक ठंडी रहती है, और लगाने के बाद ज्यादा देर तक वो गर्मी को एब्जॉर्ब कर पाती है। उसमें एब्जॉर्प्शन पावर इज मच मोर देन एनी अदर सब्सटेंस, तो इसीलिए मिट्टी का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। अगर आप मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो उसकी जगह एक ठंडा तौलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मिट्टी अगर आधे घंटे से 45 मिनट तक इस्तेमाल की जा सकती है एक बार में, तो तौलिये को हर 10 से 15 मिनट तक, 15 मिनट के बाद फिर से भिगो के ठंडा करना पड़ता है। ये डिफरेंस है मिट्टी में और किसी और चीज में। और मिट्टी की अपनी इनहेरेंट नेचर है खींच लेने की, और वो आपके शरीर की सारी नेगेटिविटी भी खींच लेती है। बेयरफुट वॉकिंग में बोला जाता है, वॉक बेयरफुट सो दैट ऑल योर नर्व्स एनर्जाइज्ड, कि आपका पूरा नर्वस सिस्टम एनर्जाइज हो जाए और वो जो भी आपकी नेगेटिविटी है वो आपसे निकाल ली जाए। फिजिक्स वाले इसको अर्थिंग बोलते हैं, पैर रख दिया अर्थिंग हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। सो मिट्टी हैज दैट पावर एंड इट कैन रीजेनरेट, मींस इट डज वंडर्स इन स्किन डिजीजेस एंड नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये पूरी की अगर पूरे शरीर पे मिट्टी लगा दी जाए तो ये आदमी को जितने भी नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इंसोम्निया है, इसमें ये वंडरफुल इसका रोल है, वंडरफुल भैया। और जब बड़ा अजीब लगता है जब चिकित्सालय में आदमी बोलता है मैं तो सोया ही नहीं, और जब एक बार उसको पूरे शरीर की मिट्टी दी जाती है तो कहता मैं तो बचपन में ऐसा सोता था। इसमें इतना चमत्कार है, आप आंख के ऊपर मिट्टी रख लीजिए, आपको पूरे के पूरे हेडेक, टेंशन हेडेक्स उसमें आराम मिलेगा, आपके मेंटल प्रॉब्लम्स में आपको आराम मिलेगा। पेड़ों पे मिट्टी रखिए, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में आराम मिलेगा, यूरिनरी सिस्टम्स की प्रॉब्लम में आराम मिलेगा, महिलाओं में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जितनी प्रॉब्लम्स होती है उसमें आराम मिलेगा। इवन पेड़ों पे मिट्टी रखने से ओबेसिटी भी कम होती है, क्योंकि वो शरीर को जब ठंडा करती है तो वहां ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, फिर धीरे से ब्लड सर्कुलेशन पूरा उस एरिया में बढ़ता है तो फैट जो है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना शुरू करता है। तो मिट्टी का प्रयोग पूरे शरीर पे किया जा सकता है, वनस्पत अगर वो मिट्टी ठीक से ली गई हो, उसमें कंकड़ प्लास्टिक केमिकल फर्टिलाइजर्स न मिले हो और उसको 24 से 48 घंटे तक ठंडा किया गया हो।
0: ये बात बहुत ही अहम लगती है कि मिट्टी के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हीलिंग के लिए मददगार हैं। जैसे आपने कहा कि मिट्टी गर्मी को खींच लेती है, मिट्टी का जो दूसरा अल्टरनेटिव है, अगर आप मड पैक्स नहीं इस्तेमाल करते तो फिर आपको गीले तौलियों को कितने बार बदलना पड़ता है, ये बात समझ में आ रही है। मिट्टी के बारे में आपने ये भी चीज कहा कि बेयर फुट वॉकिंग के बारे में भी आपने चीजें बताई। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में प्राय बहुतों के मन में प्रश्न उठते होंगे, क्योंकि पुराने लोगों को वो ये चीज करते हुए देखते आए हैं। मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल के बारे में आपने जो बात कही, उसके फायदे क्या हैं, वो सारी चीजें कई लोग आज भी उन चीजों को वापस समझकर फिर से उसे वापस इस्तेमाल में लाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं और अनेक ऐसी प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। आज के विषय पर और भी प्रश्न हैं, मगर मैं उन प्रश्नों को कल के लिए आगे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वक्त को देखते हुए यहां रुकना होगा, क्योंकि अगर मैं सवाल पूछ लूं तो उसके लिए जवाब के लिए भी वक्त देना पड़ेगा आपके लिए, तो इसलिए हम लोग यहीं रुकेंगे और अगले एपिसोड में मिट्टी से जुड़े हुए प्रकृति चिकित्सा में मिट्टी की भूमिका के ऊपर जो चीजें हैं उन चीजों को भी समझेंगे। डॉक्टर साहब, आज आप समय निकालकर हमारे बीच पहुंचे और इन प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार भैया, ओम शांति।
0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य, मैं हूं आपका दोस्त राजेश श्री, और आज हमने डॉक्टर मोदी जी से ये बातें समझी कि मिट्टी कितनी आवश्यक है। हम धरती को माता कहते हैं, धरती की गोद से हम सभी का जन्म हुआ है, इस वसुंधरा पर जो भी अन्न है, जो भी पोषण है, वो सब कुछ धरती से आता है। जब हम धरती की अहमियत को देखते हैं तो हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए, जब हम बीमार पड़ते हैं तो वापस इसी माँ की गोद में लौटने पर, इसी मिट्टी के इस्तेमाल से कितना फायदा हो सकता है, उन चीजों पर जानकारी ली है। मगर ये कैसे फायदेमंद होता है, हमें कैसे ये लाभ लेना है, इन विषयों पर अगले एपिसोड में बातचीत करेंगे। आज आप सभी हमारे साथ जुड़े सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम में, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम ऐसी नारी शक्ति पर आधारित है जिनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव या कुछ अलग उनके जीवन की कोई कहानी होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि नारी शक्ति के साथ जो घर में रह रही है या बाहर जो भी करती है तो उनके साथ इस तरह की परिस्थितियां भी आ सकती है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आप नारी शक्ति की शक्ति को भी पहचान सकते हैं, उसके स्ट्रगल को भी आप महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी ही नारी शक्ति से आपको मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है मधु राठौड़। आप गुजरात जूनागढ़ जिला बाटवा गांव के रहने वाले हैं। आपकी उम्र 52 वर्ष है। आपने 12th तक पढ़ाई की हुई है। सिलाई कढ़ाई बुनाई का आपको बहुत ही शौक है, कुकिंग का और विशेष करके सफाई का बहुत ही शौक है और अध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं। तो ऐसी नारी शक्ति से आपसे मिलवाने जा रहे हैं। मधु जी नमस्कार।
1: धन्यवाद जी,
0: बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
1: धन्यवाद
0: मधु जी। चलिए, आपकी उम्र 52 है, मतलब पिचपन के आसपास पहुंच चुकी है। और कहते हैं ना, पिचपन में जब बचपन की बातें करते तो बड़ा अच्छा लगता है, क्या कहेंगे?
1: बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी
0: जी,
1: तब से मुझे कुछ ऐसे लगा, बचपन से तो वैसे माँ बाप, हम 5, 3 बहने हैं, 2 भाई है, छोटा सा परिवार है और माता पिता है, दादी थी। फिर दादी तो अचानक से हार्ट अटैक आया और चली गई। उसके बाद सत्संग चला था घर में, जैसे कि तो सत्यनारायण की कथा हर 11 को होती थी। तो मम्मी सब कहती थी कि जाओ आप ना सबको, जो सगे संबंधी है उसको कहना कि हमारे यहाँ सत्संग है तो आ जाना। फिर सबको वो फूल लाना, प्रसाद लाना, वो सब मम्मी मुझे देती थी कि आप वो करो। फिर तो सब लाते थे, फिर ना बरसात आई, ये सब इकट्ठा करते हैं पैसा और उसका कुछ बड़ा करना था। तो मैं तो छोटी थी, तो एकदम बरसात आई तो सारा पैसा इसे पास रहता है 25 पैसे का 30 पैसे का
0: जी
1: हाँ, तो वो सब इकट्ठा किया हुआ था और घर की जो कांधी कहते मतलब माड़िया कहते उसमें लगा था। तो बरसात आने की वजह से जोरदार वो बिक गया। फिर सब वो सुखाया बहनों ने, मेरी 2 बहनें और भाभी है, सब सुखाया। फिर तो मम्मी ने और सत्संग की जो मंडली थी ना, बड़ी पहली बार मेरी मम्मी ने ही वो सत्संग चालू किया। तो कहते हैं कि अब ना कुछ उसका नया करे, हमारे यहाँ जो राजपूत के मंडली होती है ना बहनों की, तो उसमें सत्संग में से जो इतने पैसे इकट्ठे हुए थे तो उसका कुछ अच्छा सा करे जो सबको काम भी आए उसमें।
0: चलिए मधु जी, सत्संग की बातें हम जरूर जानेंगे, पहले हम बचपन की बात जानना चाहेंगे। आप जैसे बता रहे थे कि 5 भाई बहनों, ठीक है, अच्छा आप 3 बहनों और 2 भाई हो, आपका नंबर कौन सा आता है?
1: मेरा लास्ट का नंबर 5वां।
0: तो आप तो सबके चहेते रहे होंगे।
1: बहुत बहुत बहुत चहेते रहे।
0: आपके पिताजी क्या काम करते थे उस समय?
1: वो किसान थे, किसान। पहले तो मैं जब से आई ना तब से तो हमने बहुत खेती देखी। इससे पहले कहते थे कि हमारे 7 थे ना घर में, जैसे 5 बच्चे और 2 माँ बाप और दादी, उसमें बहुत एकदम करकसर से जीवन था
0: जी।

0: मुश्किल से हाँ, चल पाते थे गृहस्थी के
1: हाँ, नहीं पापा का यही एक सपना था कि मैं बड़ी खेती लूँ। इसके लिए उसने करकसर से हम सबको ऐसे सिखाया कि करकसर से रहोगे, लोभ से नहीं, करकसर से।
0: जी जी।
1: तो उसने 100 बीघा, मतलब अभी उसका पैसा होता है वो 15 करोड़ होता है, तभी कभी कुछ नहीं था। फिर भी पापा ने, हम काका कहते थे, हम साथ में रहते थे,
0: जॉइंट परिवार था।
1: हाँ जॉइंट परिवार था, मतलब मेरे जो बड़े पापा के बड़े भाई वो साथ में रहते थे, उसका 6 बेटा
0: जी
1: हाँ, और साथ में रहते थे। तो साथ में रहने की वजह से जो बड़े बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं
0: जी, काका बोलते हैं और बड़े पापा के बेटे,
1: हाँ पापा के बड़े भाई, उसको हम अदा बोलते हैं गुजराती में
0: जी।
1: तो वो अदा का सब बच्चे इकट्ठे रहते, तो वो मेरे पापा को काका कहते थे, तो हम भी काका ही कहते हैं, लास्ट तक काका किया। तो काका का यही सपना था और मुझे बहुत पढ़ाया उसने, सब हमारे भाई बहन है ना उसमें से मुझे ज्यादा पढ़ाया।
0: अच्छा, बाकी आपसे सब कम पढ़े लिखे हैं?
1: सब कम पढ़े लिखे,
0: भाई भी?
1: भाई भी।
0: तो सब क्या करते, खेती का काम?
1: हाँ सब खेती का ही काम करते हैं।
0: तो आपके सामने 100 बीघा जमीन का, जो आपके पिताजी का
1: वो बनाया उसने,
0: संकल्प था तो लिया?
1: हाँ वो पूरा किया, पहले ऐसा नहीं था, फिर पूरा किया, फिर उसको तो इतना उमंग आया। उसके बाद सब, पहले भाई की शादी हुई, बड़े भाई की, उसके बाद तीन की साथ में हुई और मेरी अकेली हुई।
0: अच्छा, आपकी शादी की बात तो जरूर करेंगे, लेकिन बात कर रहे थे आपके बचपन की, कि इस तरह आपके पिताजी खेती का काम करते थे, किसान थे, आपके माताजी भी कुछ करते थे?
1: हाँ घर का काम करती थी और खेत में पिताजी को बहुत साथ देती थी, सारा पूरा काम करके अपना भाता बना करके, और मुझे कहती थी कि आप ये घर संभालो और पढ़ाई करने के बाद हम आएंगे तो आपको ये खिचड़ी बना के रखनी है, ये सफाई करनी है और चूल्हा चूल्हा यह सब कुछ अच्छे से रखना है, ताकि आए तो सिर्फ हमें सब्जी और रोटी दोनों ही बनानी है, और पूरा घर का ख्याल रखना है, बाहर सब आपको करना है, और फिर आप ये सब पढ़ाई करने के बाद फिर पेड़ाई कर लेना और सफाई कर लेना। तो मम्मी भाता बनाकर, मतलब रसोई बनाकर जाती थी
0: जी
1: हाँ, और साथ में पिताजी को बहुत बहुत साथ देती थी।
0: तो आपके भाई बहन भी जाते थे खेत में?
1: सब जाते थे, सब के सब।
0: आप अकेले घर पर रहते?
1: हाँ मैं अकेली घर पर रहती, मैं डरती नहीं थी। मेरे से जो तीसरे नंबर की बहन है ना, जैसे हम तीन बहन है तो तीसरे नंबर बैठ गए, वो अकेली नहीं रहती थी, वो डरती थी, वो कहती थी मैं अकेली नहीं रहूंगी। मम्मी बहुत कहती थी कि आप रहो इसके साथ, फिर मैं कह देती हूँ कोई बात नहीं मम्मी आप जाओ उसको भी ले जाओ, मैं अकेली रहूंगी। और मैं बहुत बड़ा था तो मैं उसमें अकेली रहती थी और सब काम कर लिया करती, और मम्मी मुझे ऐसी शाबाशी देती, देखो तो आपसे छोटी है तो भी वो अकेली रहती है और सारा डरती भी नहीं है, कोई आते हैं तो ऊपर से देख लेती हूँ कि कौन आया है, अगर कोई हमारा संबंधी आते हैं तो मैं खिड़की खोलती हूँ, अगर कोई और है तो खिड़की भी नहीं खोलती, ऐसे में बहुत तैयार थी। तो मम्मी और पापा दोनों की चाहती थी, पापा तो हमें साथ में ही सुलाते थे, वो तो मेरी सगड़ी है जैसे बोलते, मैं इतनी गर्म रहती हूँ ना, तो वो खेत में से आते और पापा को मैं पानी देती हूँ, कुछ खाने को देती हूँ, तो पापा की बहुत चाहती थी, छोटी थी इसलिए बहुत बचपन प्यार से ही गुजरा, और सबका भाई बहनों का अभी तक प्यार मिल रहा है।
0: जी जी जी,
1: बहुत प्यार मिल रहा है
0: जी।
1: और अभी वो दुलार देते तो कहते है कि तुम बड़ी भाग्यशाली हो, ऐसे कहते है अभी भी।
0: जी जी, वो कहते हैं ना कि नमे सौने गमे, गुजराती कहावत है
1: हाँ।
0: तो आपके अंदर नम्रता थी तो आप सभी के दिलों पर राज करते थे।
1: अभी भी कर रही हूँ।
0: और बचपन से जो स्वभाव संस्कार जो हमारे अंदर पड़ जाते हैं वो लाइफ टाइम चलता है
1: हाँ, वो आगे ज्यादा हो जाता है बढ़कर। तो बचपन ऐसे ही गुजर गया, पता ही नहीं चला कि देखो सबने इतना साथ दिया, और मैं मेरा उत्साह और उमंग बहुत बढ़ाते थे भाई बहने
0: जी,
1: जो मेरे से चारों भाई बहन है ना, बहुत उत्सव उमंग बढ़ाते थे, जैसे कि खेतों में बुनाई होती है, कटाई होती है, वो हम एक दो मजदूर रख करके हम स्वयं करते थे।
0: अच्छा,
1: मजदूर चार आते थे, वो चार बहनें आती थी, दो बहनें अपनी और दो भाई उसके, वो चार ही आते थे और हम सब मिल करके ये सारा खेत संभालते थे।
2: सौ बीघा जमीन में? अच्छा।
1: मजदूर नहीं, ना कोई किराए का रखा, रात में कोई नहीं, सब अकेले ऐसे ही करते थे। तो हमने बचपन से यही सीखा कि मेहनत करो और मेहनत से आगे बढ़े। और पापा का तो बहुत था कि ये ले वो ले, बहुत था कोनो मेहनत में बहुत विश्वास था
2: जी। चलिए मधु जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन समय हो चला है यहाँ पर एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुन करके पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। मधु जी के अनुभव बहुत ही अच्छे हैं जो हम फिर से सुनेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई। चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: न, न, अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, हर रिश्ते में अपनापन जगाए, नन्हे कदमों से सपने बुनती, घर को स्वर्ग सा बना जाए, घर को स्वर्ग सा बना जाए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में ऐसी ही बेटी जुड़ी हुई है, ऐसी मातृशक्ति जुड़ी हुई है, मधु राठौड़, जिनके अनुभव हमने सुने हैं। इसी कड़ी में और भी आगे बढ़ेंगे। मधु जी पुनः स्वागत है आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
5: जी थैंक यू जी।

0: का प्रसाद मिलता है और बड़ी उत्साह उमंग से शिवरात्रि पूरा दिन रहते हैं। और शिवरात्रि के दिन खाना कुछ नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा फ्रूट लेना है, दूध लेना है और वो प्रसाद लेना जरूरी है। तो प्रसाद नहीं, माता जी लाई थी तो उसने कहा आप जाओ तो मुझे मंदिर भेजा। तभी एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी मिली और मैं 8वीं कक्षा में वो प्रदर्शनी देखी। तो वो प्रदर्शनी पहले तो कुछ समझ में नहीं आई, बाद में इतनी मन को भा गई कि बार बार वही आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगे। इसमें इतनी लगती थी कि मैं ही वही देवी हूं और मुझे इतना अच्छा अनुभव होने लगा कि मैं बस इसी मार्ग पर चलूं। घर पर आई, प्रदर्शनी देखी तो उस प्रदर्शनी में सुना कि मैं कौन हूं, वही बहुत अच्छा लगा। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया और माता जी तो चली गई खेत में और मैं घर पे, तब स्कूल पे रजा होती है तो घर पे हूँ, घर पे थी। उसके बाद आध्यात्मिक में मेरा जुड़ाव बहुत रहा, मैं बहुत अच्छा लगता था कि मैं आध्यात्मिक में कैसे आगे चलूँ। फिर हर 11 के दिन और पूनम के दिन मेरी माताजी कथा करती है, सत्संग सब बहनें आती है, सत्संग की 50 बहनें होती है। तो माताजी सत्संग में होने के कारण मैं इतनी आध्यात्मिक रही पहले से, भक्ति भाव, उसमें प्रसाद होता है, महाप्रसाद की बहुत महिमा होती है सत्संग में, सत्यनारायण की कथा, वो सत्संग फिर पाठ पूरा हो जाता है, 5 अध्याय होता है, पूरा होने के बाद प्रसाद सबको बांटते।
1: अच्छा, तो आप अध्यात्म में चलने लगे तो फिर घर में किसी ने विरोध तो नहीं किया?
0: जी छोटी थी तब तो किसी ने विरोध नहीं किया, पर ऐसे कहा कि अच्छा है, मम्मी अध्यात्म से जुड़ी थी तो अध्यात्म में बहुत रुचि थी मेरी पहले से ही,
1: तो भक्ति के संस्कार आपको बचपन से थे
0: बचपन से
1: जी, और 8वीं से आपको थोड़ा अध्यात्म स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया।
0: स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गई।
1: अच्छा, मैं स्कूल की बात कर रही हूँ कि आपकी सखियों के साथ कैसा था?
0: सखियों के साथ तो इतना मैं सखी नहीं करती थी, मुझे ऐसे आध्यात्म में अच्छा लगता है बस।
1: अच्छा, ये बताइए, आप स्कूल में कोई पार्टिसिपेट करते थे, जैसे गाने में,
0: हाँ, जो
1: किस
0: कोई
1: में?
0: स्पर्धा होती है, कोई भी स्पर्धा होती है, तो पहले तो मैं लींबू चमची में वो स्पर्धा किया ना, तो मेरा वो उसमें फर्स्ट नंबर आया, पहला नंबर आया, जो अच्छा लगा कि आगे बहुत बढ़ना चाहिए, उत्साह उमंग बढ़ा, जैसे पहले नंबर आया ना तो अंदर से लगा कि बहुत आगे मेहनत करनी चाहिए, फिर तो आगे आगे नंबर आता ही गया।
1: अच्छा, तो हर साल आप भाग लेते थे?
0: हाँ हर साल भाग लेते।
1: अच्छा, डांस गरबा ये भी करते थे
0: हाँ
1: स्कूल में?
0: गरबा
1: तो
0: करते, डांस तो अकेले अकेले करते,
1: करते थे अकेले स्टेज पर?
0: हाँ अकेले अकेले स्टेज पर करते थे, पर थोड़ा हिचकिचाते पर कर लेते थे, फिर बाद में एक भी किया फिर तो अच्छा लगा तो करते रहते थे डांस
1: जी,
0: भी।
1: कभी टूर्नामेंट में भी गए? गेम्स में कोई गेम्स खेलते थे? अच्छा,
0: गेम्स तो नहीं खेली,
1: पढ़ाई में कैसे थे आप?
0: पढ़ाई में बहुत बढ़िया था और एक फोकस था कि आगे बढ़ना है, मतलब इतना तो लाना ही है, तो पढ़ाई में भी रुचि बहुत रही, 10वीं में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, 12वीं तक, पर 12वीं तक में तो मेरी शादी हो गई थी, मैं 12वीं तो वहां ससुराल में किया।
1: अच्छा, 12वीं पढ़ रहे थे और शादी करवा दी?
0: हाँ 12वीं में तो मेरा जो रिजल्ट आया ना वो ससुराल में आया, पढ़ाई तो वहां, शादी तुरंत कर दी।
1: तो आपका ससुराल कहाँ है?
0: ससुराल भी वही बांटवा में ही है,
1: बांटवा में? कितना बड़ा शहर है बांटवा? शहर है या गांव है?
0: वैसे शहर भी कहो तो शहर भी है और गांव भी है,
1: तो वहीं पर आपका पियर भी और ससुराल भी वहीं पर?
0: ससुरे गांव में सब, कई बार गई नहीं, रेल तो मैंने कहीं देखा नहीं, आध्यात्मिक में रहे और गांव में ही शादी हो गई।
1: तो आप बता रहे थे कि छोटे थे तब तो कोई विरोध नहीं करते थे, तो शादी के समय किसी ने विरोध किया क्या?
0: नहीं फिर तो युगल को मैं आध्यात्मिक में ले गई तो उसको भी अच्छा लगा, फिर विरोध होगा आध्यात्मिक में
1: फिर क्या
0: वो,
1: हुआ? विरोध हुआ?
0: हाँ ससुराल में कहते हैं कि नहीं हम कोई पकड़ बकड़ नहीं है, हम आध्यात्मिक में नहीं चल सकते, अभी तो हमें बेटा चाहिए बेटी चाहिए, ऐसे आप शादी किए तो ये करना है वो करना है,
1: कौन बोलता है?
0: सास ससु

0: दूर बोलता है, पर हमारे में लाज प्रथा थी, घूंघट निकालने की प्रथा थी
1: जी।
0: तो मेरे पापा ने ही शादी के वक्त किया था कि आप घर जाके घूंघट उठाओ, वो अलग बात है, हमारे यहाँ तो शादी होगी तो घूंघट में ही होगी
1: जी।
0: पापा जी ने यही बोला था। और माता जी और बड़ी दो बहनें हैं, वो भी अच्छे से शिक्षा देती रही कि हमें अपने मर्यादा में रहना है, कभी इधर उधर पाँव न जाए, फिसल न जाए, वो बड़ा ध्यान रखना है किसी के साथ। बहुत सारी हमें मदद की बातें मिली उसी से
1: जी,
0: बड़ी दो बहनें थी उसे से सब मिला।
1: तो फिर ससुराल में सब कैसे रहते थे? शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
0: सासी तो घूंघट निकालते थे और बहुत स्ट्रगल हुआ।
1: मतलब आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट करते थे?
0: तभी तो करते थे, पर जब आध्यात्मिक में जुड़ी, आध्यात्मिक में मेरा मन रुचि लगी, तभी विरोध हुआ।
1: तो आपने कहा कि आपके हस्बैंड तो आपके साथ जाते थे
0: पहले, उसने थोड़े टाइम किया, थोड़े टाइम वो मेरे साथ चले। मैंने कहा प्यार से उसे बोला ना कि चलो हम जाते हैं, इसमें आध्यात्मिक में क्या, बहुत अच्छा है लगता है। वो सत्संग में जाने लगे, अब मेरे साथ आए, उसमें साप्ताहिक होता है कोर्स, उस वो किया उसने, और उसके बाद विरोध किया। और घर में तो जाते हैं तो सबको पता चलता है ना, ससुराल में तो मैं कह करके जाती थी कि मैं सत्संग में जा रही हूँ, तो फिर आने के बाद सबको अच्छा नहीं लगता है। मैं अपना काम टाइम पर करती थी, सबको बहुत प्यार से रखती थी, फिर भी उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि हम पकड़ लोग नहीं है सत्संग में, हमारा आध्यात्मिक में नहीं जाना है, सत्संग में नहीं जाना है, तो फिर मन नहीं लगता था सत्संग के बिना। तो
1: फिर आपने विरोध किया?
0: मैंने विरोध नहीं किया, मैंने चलती रही, सत्संग में जाती रही
1: जी।
0: फिर छुप छुप के जाने लगी, ऐसे थोड़े सामने, फिर तो उसको पता चल गया कि ये वहां से जाती है, तो सामने से आकर दो चमाट लगा देती।
1: अच्छा, तो इस तरह आपके साथ विरोध होने लगा
0: बहुत।
1: अच्छा, ससुराल में कितना बड़ा परिवार था? ये मतलब संयुक्त परिवार था या आप अकेले रहते थे सास ससुर के साथ?
0: संयुक्त परिवार था, 10 जने रहते थे, 4 भाई है, 2 बहने है, 2 ननद है और सास ससुर है, जेठ जेठानी, उसके 3 बच्चे
1: जी जी
0: बच्चे थे। हाँ,
1: तो इतना बड़ा परिवार था, आप कह रहे 10 जने थे, इतना बड़ा परिवार रहते थे साथ में।
0: हाँ, सबका काम भी हमें ही करता है, ऐसे कोई काम का भाग नहीं हुआ था, सब इकट्ठे काम करते थे। और मैं तब पानी की तंगी थी तो खेत में जाकर के कपड़े धोने होते हैं
1: जी जी जी।
0: हाँ, और वहाँ नहाने का सब मना होता है, नहाते नहीं थे, कहते कि नहीं हम थोड़ा ब्राह्मण लोग है, हम ब्राह्मण लोग नहीं है, वो क्या बोलते है, ब्राह्मण लोग नहाते है, हम नहीं नहाते। तो 2-3 दिन में नहाने देते थे और जैसे कि चलता था।
1: अच्छा, नहाने रोज नहीं देते थे और आपको स्वच्छता पसंद है, तो फिर क्या करता है?
0: फिर मैं तो नहाती हूँ तो उसको विरोध होता है कि ये कैसी है ना, उसको अच्छा नहीं लगता है। वो कहते बोलते थे ना कि नहीं नाना नहीं है, हम थोड़ा ब्राह्मण है, ब्राह्मण होते ही वो नहाते थे।
1: जी चलिए मधु जी, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर समय हो चला एक ब्रेक लेने का, तो एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: बेटी जब आगे बढ़ती है तो कुल खानदान रोशन होता है। बेटी जब आगे बढ़ती है तो कुल खानदान रोशन होता है। उसकी एक मुस्कान से ही पूरा समाज प्रोत्साहित होता है। उसकी एक मुस्कान से ही पूरा समाज प्रोत्साहित होता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम और वंदे मातरम में मधु जी हमारे साथ बने हुए हैं। आइए, इनके अनुभव हमने काफी कुछ सुने हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो मधु जी, जैसे आपकी शादी हो गई, आपको अध्यात्म में गहरी रुचि थी, सत्संग में आप जाते थे, ससुराल में फिर आप जाने लगे तो विरोध होने लगा, फिर आप रोज नाते तो नाने का भी विरोध होने लगा, तो पानी कहाँ से भर के लाते थे? घर पर नल था?
3: हाँ जी, नल तो था, पर ऐसे भी सबका मन भी देखना है ना, उसका मन नहीं है और हम ना रहे फिर भी नाना ही है, जरूरी है, फिर नहाते थे, नाना तो जरूरी लगा, तब भी लगा और अब भी लग रहा है।
2: नाते और रोज डांट खाते?
3: रोज डांट भी खाते और उसको हम अच्छे नहीं लगते थे, क्यों? नहाने के लिए मना करते और हम नहाते, तो संबंध ऐसे प्यार से नहीं रहता है।
2: आपके हस्बैंड के साथ?
3: हाँ, वो तो बहुत अच्छे थे, अभी भी अच्छे है।
2: तो कौन मना करता है?
3: सासू, जेठानी, वो कहते कि नहीं नाना है, ये क्यों नाना है इसे।
2: तो फिर साथ में ही रहे या अलग हो गए?
3: नहीं, फिर तो साथ में रही, जब तक पहली बेटी आई दूसरा बेटा आया तब तक साथ थे।
2: अच्छा, आपके हस्बैंड क्या काम करते थे उस समय?
3: वो होमगार्ड में थे, अभी तो रिटायर हो गए।
2: अच्छा, तो आपके गांव में थे?
3: हाँ, गांव में ही सेवा होती है ना सरकारी होमगार्ड की, जैसे पुलिस के नीचे।
2: जी जी,
3: कॉन्स्टेबल के नीचे होती है।
2: अच्छा, तो जैसे आपका मायका भी वही था
3: और ससुराल भी गांव में?
2: जी, जैसे आप बता रहे थे कि कपड़े धोने आप खेत में जाते थे, तो पानी की कमी थी तो आपके मायके में भी कपड़े धोने आप खेत पर जाते थे?
3: जी नहीं, वो तो घर पे ही था सब कुछ, घर पे ही कपड़े धोते थे, पर ससुराल में ना दुष्काल हुआ तो वहाँ थोड़ी तंगी हुई पानी की, तो कहते कि आप खेत में जाओ, तो मैंने तो जैसे शादी की आई और तुरंत कपड़े या जो चद्दर वो रजाई होती है ना, एक साथ 18 रजाई धोई, एक दिन भी मैंने बैठी नहीं हूं,
2: इतना काम करते थे,
3: एक दिन भी बैठी नहीं हूं। जैसे आज इधर पांव रखा, शाम को शादी करके आए, सुबह सब बोलने लगे इतना काम है, इतना काम है, वो है, इतना धोना है, तो मैंने सीधा कहा चलो मैं आती हूँ, मैं और मेरी जेठानी साथ में गए। फिर एक दिन आई, दूसरे दिन तो सास बोलने लगी कि इतना काम मैं अकेली क्या करूँगी, तो वो तो घर पर रही रसोई के लिए और मैं अकेली गई
2: कपड़े धोने।
3: हाँ,
2: तो शादी होते ही आपके काम में लगा देते हैं, नई नई बहू आई तो थोड़ा लाड़ कोड़ भी तो करते है ना?
3: करते है ना, अभी हम भी कर रहे हैं, हमारी भी बहू है, हम भी बहुत करते है। ऐसे आध्यात्म में जाते हैं ना तो जैसे हम पर बीती है ना उस पर ना ही बीते, उसको तो इतना लाड प्यार करते, उसको तो आप करके, आप अभी भी मैं, मेरी बहू है, उसको आप कहकर ही बुलाती हूँ
2: जी,
3: उसको ऐसे तुकार के नहीं बुलाते, प्यार से ही उसे बुलाते, अगर बुलाना है तो प्यार से ही बुलाते
2: जी जी। अच्छा, तो जैसे आपका काम में लगा दिया था, आपके मायके वालों ने कुछ नहीं कहा?
3: नहीं नहीं, माँ पापा का तो यही था कि मेहनत करो, मेहनत आपको जगह दे, मेहनत से ही आगे बढ़ना है ना।
2: तो इतना आप काम करते थे तो सास ससुर प्यार करते थे आपको?
3: नहीं, अपना अपना तरीका होता है ना, अपना अपना नजरिया होता है,
2: अच्छा, किसी का प्रेम नहीं मिला?
3: नहीं, आध्यात्मिक में बहुत रुचि इसलिए तो जगी ना।
2: अच्छा, तो इसलिए आपको थोड़ा सत्संग से प्रेम बढ़ा?
3: हाँ, प्रेम और बढ़ा।
2: फिर कितने समय में आप पियर जाते थे?
3: पियर तो गांव में ही था, क्योंकि वहाँ खाना मुझे वहाँ तेल बहुत लगता था सब्जी में, और मैके में तेल नहीं था तो साग भाजी में मैके ही खाती थी। अब माता जी मेरी और मेरी भाभी थी, सब कहती थी अच्छा आपको अच्छा नहीं लगता यहाँ खा लो, और खा करके वहाँ जाती हूँ ससुराल में।
2: तो रोज जाते थे खाना खाने?
3: हाँ, वहाँ रिवाज है, गांव में जो शादी होती है ना वो 4 बजे या 5 बजे मैके में रोज जाती है।
2: अच्छा,
3: अभी भी
2: टाइम मिल जाता है?
3: नहीं, टाइम निकालते, वो रिवाज हो गया है।
2: तो 5 बजे जा करके खाना खा के वापिस आ जाते हैं?
3: हाँ।
2: फिर ससुराल में खाना नहीं खाते थे?
3: नहीं, सब्जी में बहुत तेल होता है, कोई स्वाद नहीं तक क्या।
2: तो आप नहीं बोलते कि सब्जी में थोड़ा तेल कम डालो, या आप खुद नहीं बनाते?
3: नहीं, सबको यही पसंद है, मेरी पसंद नहीं है तो इसमें क्या बड़ी बात है, हम मैं खा लेते।
2: नहीं तो जैसे नहीं कहते कि आपके चाहिए उत्ती अलग से बना दो?
3: अलग कोई नहीं बनता किसी का।
2: अच्छा, तो इस तरह आपके जीवन यात्रा रही। तो वो कहते हैं ना गांव में पियर और गांव में ससुराल है, तो थोड़ी मुश्किल तो रहती है बैलेंस बनाने में, तो मुश्किल रहती थी आपके जीवन में भी?
3: हाँ, पर आध्यात्म में बहुत रुचि थी ना तो मुश्किल नहीं लगा
2: जी। अच्छा, और आप बोल रहे थे कि आपके हस्बैंड का आपको सपोर्ट मिलता था?
3: तभी मिलता था, फिर वो आध्यात्मिक में जुड़े तो थोड़ा कम हुआ, फिर ससुराल में सास ने और बोला कि अब तो 3 साल हो गए तो 3 साल में तो बच्चा होना चाहिए। मैके में भी यही कुछ रिस्पांस नहीं मिला तो फिर तो बेटी हुई तो जेठानी थी वो खेत में चली जाती थी, पूरा काम मेरे पर आ जाता था, जैसे गायों को दोना, भैंस रखते थे इसको दोना, सब काम करना और बच्चे को रखना। थोड़ा थोड़ा ज्यादा सासू का साथ था, वो सासू थोड़ी बेटी को रखती थी, साथ में थे ना जॉइंट फैमिली में
2: जी,
3: तो रखती थी।
2: दूसरे और कोई सदस्य नहीं थे परिवार में?
3: हाँ थे ना, वो है, एक चूल्हे पर ही रसोई बनती थी, पर यहाँ से कटोरी में लेकर वो अपने घर में खाती थी, वो मेरी सास की सास थी ना वो।
2: अच्छा, तो मधु जी जैसे आप कह रहे थे कि आपको सत्संग का शौक था, इस वजह से परिवार वाले आपको सपोर्ट नहीं करते थे और काम की जिम्मेवारी काफी रहती थी आपके ऊपर, और फिर आप कह रहे थे कि बच्चे होने के बाद आप अलग हो गए, तो सभी अलग हो गए, जेठानी आप या फिर सास ससुर के साथ रहते थे आप?
3: सभी अलग हो गए, देवरानी भी अलग हो गई, मैं भी, फिर तो देवर की शादी हुई उसके बाद 1 साल में सब अलग हो गए
2: जी। फिर तो आपको सत्संग में जाने से कोई नहीं रोकता था?
3: नहीं, कोई नहीं रोकता था, मैं चुपके से ही जाती थी सत्संग में, वो जो मेरे पति है ना उसको जाना अच्छा नहीं लगता है, फिर मैं अपना ढूंढती थी अंदर से कि भाई क्या मेरी कमी है, मेरा कोई काम छूट ना जाए, उसको बराबर से टाइम देती हूँ, उसका खाना पीना सब काम करना।
2: अच्छा, आप सारा काम करते थे और भजन कीर्तन भी करते थे?
3: साथ में बहुत भजन कीर्तन साथ में ही रहता था।
2: अच्छा, और आप क्या करते थे?
3: कभी सिलाई करते थे? हाँ, बच्चों को पढ़ाई में।
2: आपको सिलाई का भी शौक रहा, तो सिलने में आप क्या क्या सिलते थे?
3: ब्लाउज सिलते थे, ड्रेस सिलते थे, सिलाई का काफी शौक था, मैं ब्लाउज भी बना लेती थी और अपना पूरा जो भी है वो सब मैं सिलाई कर लेती हूँ।
2: जी जी, तो आप जैसे सास जेठानी देरानी सबके साथ रहते थे, वहां पर भी सिलाई करते थे या अलग होने के बाद शुरू?
3: अलग होने के बाद, साथ में तो टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि बस चलने का काम था,
2: इसलिए आप अलग होने के बाद सिलाई का काम शुरू किया। तो आप अपना ही सिलते थे या मॉल का भी सिलते थे?
3: मैं अपना ही सिलती थी, फिर दो थे भैंस थी और खेत थी, अलग होने के बाद तो खेत को संभालना होता है, सुबह 8 बजे बाता बना करके 8 बजे निकल जाना, 1 घंटे का चलने का खेत दूर थी।
2: अच्छा,
3: तो वहां पहुंच के आध्यात्मिक में रुचि थी ना, तो वहां भी मैं पढ़ लेती थी, कुछ भजन भजन कर लेती थी।
2: वहां भजन किसके साथ करता था?
3: ऐसे अपने ऐसे मन से। तो जब मजदूर आते ना, उससे पहले मैं पहुंच जाती थी।
2: अच्छा,
3: हाँ।
2: तो आपके हस्बैंड भी जाते थे?
3: वो दोपहर को रोटी लेकर आते थे, उसको क्या भाता बोलते हैं। हाँ, तो वो भात लेकर के आते, मैं अपने भाता लेकर के जाती थी सुबह, और बच्चों को मेरी माँ रखती थी।
2: अच्छा,
3: अलग होने के बाद।
2: जी जी,
3: हाँ। और शाम को आती थी चल करके, साइकिल भी नहीं कुछ नहीं था, चल के आना चल के जाना, तो एक घंटा तो हो जाता है आने जाने में, दो घंटा।
2: तो खेत में क्या करते थे आप, कुछ बोते थे?
3: बोते तो वो
2: बुआई आप ही करते हैं या मजदूर करते हैं, आप देख रेख करते हैं?
3: बुआई तो उसी से होती है, ट्रैक्टर से होती है।
2: जी,
3: पहले तो बेल था ना, बेल से होती बुआई, तो फिर उसमें सफाई होती है ना, वो हम करते थे।
2: अच्छा,
3: उसके बाद बड़े होकर के कटाई होती है ना, जैसे मूंगफली को पाटते हैं, भेगी करते हैं, जैसे
2: जी खटी करते हैं, और हाँ, फिर उसकी मिट्टी हटाते हैं।
3: हाँ,
2: मतलब फिर खेत के काम में आप
3: सारे काम है? सारे काम करते थे।
2: जी जी,
3: जो मजदूर वाला होता है ना, वो सारा काम करते थे।
2: जी जी, और पढ़ाई में आपको शौक था, और उसी गांव में आपकी शादी हुई, तो आपके टीचर लोग नहीं कहते कि क्या तू इन कामों में लग गई, पढ़ाई कर लेती तो अच्छा रहता?
3: टीचर बहुत अच्छी थी, पढ़ने जाती थी तो भी वो ऐसे वार्ता बोलते है, ऐसे ही पढ़ाई की भार नहीं दिया, भीतर में तो बहुत अच्छा।
2: जी जी, आप इस तरह खेत में जाते हैं, खेत में आते हैं, आपका टाइम पूरा हो जाता है, फिर सिलाई कब करते हैं?
3: सिलाई तो मैं जिस दिन नहीं जाना होता है ना, तब करती हूँ, और कभी कभी तो खाने पीने के बाद टाइम निकाल करके जो बनाना है ना, वो मन से बना लेती हूँ, करना है कि यही करना है, यही चाहिए घर में और अपने पहनने में, तो रात को भी मैं सिल लेती थी।
2: अच्छा, जब जरूरत पड़ी कि हाँ मेरे को इस तरह के कपड़े चाहिए, तो आप खुद का सिल लेते थे?
3: खुद का सिल लेते।
2: चलिए, बहुत अच्छी बात है मधु जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन फिर से समय हो चला है एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, मधु जी के अनुभव और भी बाकी है, तो बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं हूं अवधेश पंडित जीएम फाइनेंस बेसिल और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: की हंसी में ईश्वर बसता है, नारी की हंसी में ईश्वर बसता है, उसकी बातों में सच्चाई रहती है। जो नारी का मान रखे उसकी हर राह उजली रहती है, उसकी हर राह उजली रहती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में मधु जी हमारे साथ बने हुए हैं। मधु जी के काफी अनुभव सुने हैं, और भी हम कहना चाहेंगे, मधु जी आप पूरे जीवन अभी तक 52 साल की उम्र है तब तक आप पाटवा गांव में ही रहे, इससे बाहर आपका जाना नहीं हुआ
1: कभी नहीं।
0: तो जैसे आपकी दो बहनें बड़ी है, कभी उनके यहाँ जाना हुआ होगा?
1: एक तो गांव में ही है, एक बाजू में मजेठी है, वहाँ है।
0: अच्छा, पास पास में ही है।
1: हाँ, कभी कभी जैसे कि प्रसंग होते है, उसकी बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, तभी जाना हुआ
0: जी। और आप कभी ट्रेन में बैठे ही नहीं?
1: नहीं, पहली बार एक आध्यात्मिक ही बैठे।
0: हाँ, पहले जब आप रहे अपने ससुराल में तब तक ट्रेन में नहीं बैठे?
1: ट्रेन देखा ही नहीं था, दूर बाटवे में तो ट्रेन नहीं है, जूनागढ़ से।
0: जूनागढ़ से मिलते हैं। अच्छा, और जैसे अब आपकी उम्र 52 साल की है, आपके भी बच्चे बड़े हो गए हैं, बहू भी आ गई है, बेटी की भी शादी हो गई होगी?
1: हाँ, बेटी की भी शादी हो गई है, वो उसका भी दो बेटी है, बेटा है छोटा।
0: अच्छा, तो आप नहीं पढ़ पाए तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाया?
1: बहुत खूब पढ़ाया, यहाँ तक कि उसको तो नौकरी भी दिलाई यहाँ तक।
0: बेटी को?
1: बेटे को भी, अभी बेटा भी है, वो लाइवस्टॉक इंस्पेक्टर वहाँ पाजोद में है।
0: अच्छा, दोनों बच्चे जॉब करते हैं आपके?
1: बेटी नहीं करती, बेटी को तो अच्छा ससुराल मिला है तो उसको नहीं करने देते, पर अब वो विदेश जाने वाली है।
0: जी जी, शादी हो गई और बेटा जॉब करता है।
1: हाँ,
0: अभी आपको कोई दिक्कत नहीं?
1: जी नहीं,
0: अभी कोई सत्संग से रोकता नहीं?
1: जी नहीं।
0: आपके हस्बैंड सहयोग करते हैं अब?
1: हाँ, वो सहयोग करते हैं, थोड़ा मैं बोलती हूँ कि मैं जा रही हूँ तो सत्संग में, तो मुस्कुरा देते हैं, कुछ बोलते नहीं है
0: जी।
1: मैं उसको भी बोलती हूँ आप भी हमारे साथ चलो।
0: अभी भी आपके सास ससुर सभी है?
1: सास है अभी।
0: जी जी जी, अब अच्छे रहते हैं आपके साथ?
1: हाँ, बढ़िया रहते हैं, सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहते हैं।
0: जी जी
1: हाँ,
0: एक समय था जब कोई आपके साथ अच्छे नहीं रहते थे तो आपका दिल दुखता था?
1: एक समय तो यही था कि जब मैं अलग हुई ना, तब तो मेरे से सब विरोधी थे, फिर मेरी ये सत्संग की वजह से मैं सबसे साथ मिलजुल रही हूँ। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं उसको स्वीकार लेती हूँ, जैसे भी है मैं मिल जाती हूँ उसके, हर प्रसंग में उसके आगे होती हूँ।
0: जी जी जी बिल्कुल, तो आपने सबके साथ तालमेल बनाए रखा?
1: अभी भी बनाए रखा है।
0: जी जी, और बहू के साथ आपका कैसा व्यवहार है?
1: बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, उसका नाम भी ऐसा है जैसा उसका काम है, उसका नाम है शीतल, तो बहुत प्यारी है, बहुत मासूम है, बहुत अच्छी है।
0: जी जी जी, तो आपने बहू और बेटी को समान समझा?
1: बेटी से बढ़कर भी बहू को मैंने अपने दिल में रखा है।
0: जी जी,
1: कहते हैं ना, बेटी तो आती है तो जाती है।
0: जी,
1: बेटी से हमारा क्या? हाँ, आती है, वो फोन भी करती है, सब हालचाल पूछती है, पर बेटी से बढ़कर है बहू।
0: जी जी,
1: और बहू बहुत अच्छी है।
0: जी,
1: बहुत प्यारी है, और जैसा इसका नाम है ना वैसा उसका गुण है।
0: जी, और सिलाई काम आज भी आप करते हैं? हाँ, छोड़ दिया?
1: नहीं नहीं, करती हूँ अभी भी, अभी तो बहुत अच्छा सिलाई काम हाथ में बैठ गया है।
0: तो आप अपना ही करते हैं या अभी भी मूल का करते हैं?
1: मूल का बेटे ना बोलते हैं कि अभी कोई जरूरत नहीं मम्मी, वो गवर्नमेंट जॉब करता है, खेती है, अभी बहुत अच्छा है।
0: तो पहले आप मूल का भी करते थे?
1: पहले मूल का नहीं, घर का पूरा करती थी, खेत करती थी और पशुपालन।
0: अच्छा,
1: पशुपालन मेरे ऊपर था।
0: अच्छा, कितने गाय भेजते?
1: 3 गाय भैंसे थी और उसके बछड़े बच्चे होते हैं वो थे।
0: तो आप अकेले संभालते थे?
1: हाँ, हस्बैंड का तभी थोड़ा कम था साथ सहयोग।
0: जी, तो वो क्यों सहयोग नहीं करते थे फिर, आपने इतना क्यों पाला खेती को संभाला?
1: पैसे के लिए, पैसा तो चाहिए ना घर चलाने के लिए, तो खेत में से जो उत्पादन होता है वो तो इतना नहीं होता था
0: तब। लेकिन आपके हस्बैंड तो होम गार्ड थे ना, तो सैलरी तो आती होगी ना?
1: हाँ, वो उसके खाते में जमा होती है, वो घर पर नहीं देते थे ना।
0: अच्छा, घर में पैसे नहीं देते?
1: नहीं देते थे।
0: तो घर कैसे चलेगा?
1: हाँ, बस दूध घर का है, सब्जी खेत की आती है, गेहूं भी खेत के आते हैं, तो और क्या चाहिए? जैसे कि बाहर से कुछ लेना है ना, तो वो गाय भैंस का जो दूध बेचने के बाद जो पैसा आता है ना, उसमें से मेरा घर चल जाता है।
0: इसलिए आपने गाय भैंस रखी कि आपके हस्बैंड पैसे नहीं देते थे?
1: तभी भी नहीं देते, अभी भी नहीं देते,
0: अभी भी नहीं देते,
1: नहीं देते।
0: तो फिर पैसों का क्या करेंगे?
1: वो तो क्या करेंगे, ले जाएंगे साथ में, कोई नहीं ले जाता है ना, यहाँ ही पड़ा रहेगा।
0: अच्छा, तो आप जैसे आबू आए, अभी आप रेडियो मधुबन में हमारे साथ है, तो किराया भी लगता है, पैसा भी चाहिए बाहर जाने पर, तो कौन देता है फिर आपको?
1: बेटा देता है ना।
0: अच्छा, बेटा देता है,
1: बेटे से मांगती हूँ। मेरा स्वभाव यही है कि मैं मांगती नहीं, वो सामने से बोलता है कि अभी तो आपका खलास हो गया होगा, इतना दिया था, अब खलास हो गया होगा तो लो मम्मी। मैं तो पहले तो ना ही बोलती थी, मुझे नहीं चाहिए, फिर यहाँ ये तो
0: बाहर जाते हैं तो फिर पैसे दे देता है बेटा, लेकिन हस्बैंड आज भी नहीं देता है।
1: नहीं,
0: और आज भी जॉब उनकी जारी है?
1: नहीं, वो रिटायर्ड हो गए।
0: रिटायर्ड हो गए, पेंशन आती होगी?
1: नहीं, पेंशन नहीं आती, उसमें नहीं आती है। अच्छा। होम गार्ड में नहीं आती है।
0: अच्छा, फिर भी थोड़ा बहुत पैसा उनके हाथ में होगा, लेकिन देते नहीं है।
1: हाँ, वो सारा जमीन का पैसा तो आता ही है ना।
0: जी, खेती बाड़ी का। तो फिर खेती बाड़ी में से भी आपको नहीं मिलता, जबकि आप तो काम करते हैं?
1: मुझे नहीं मिलता।
0: अच्छा,
1: ये महिलाओं की जिंदगी इसी टगल वाली है।
0: फिर भी आप खुशी खुशी उसको बर्दाश्त करके चल रहे हैं।
1: स्वीकार लिया ना, जैसे भी है।
0: जी जी जी, तो चलिए कार्यक्रम के अंत में आप हमारी बहनें सुन रही, उनको क्या कहना चाहेंगे?
1: मेहनत करना है, मेहनत से डरना नहीं है, और हर परिस्थिति का डट के सामना करना है। जब सामना करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी हमें अंदर से खुशी भी आएगी और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा।
0: जी, चलिए, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है मधु जी, सभी नारी शक्ति को, कि मेहनत करना है और मेहनत के दम पर आगे बढ़ना है। जैसे आप पशुपालन करके थोड़ा बहुत पैसे बचा करके कहीं जाते हो तो लेके जाते हो, बाकी घर से नहीं मिलता है।
1: और सहन शक्ति एक बड़ी शक्ति है, वो सहन शक्ति से हमारा सबके साथ संबंध अच्छा रहता है।
0: जी जी जी,
1: सहन करेंगे ना तो सबके प्यारे रहेंगे।
0: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है मधु जी ने, बहुत बहुत आभार। आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने जीवन के अनुभव सभी के साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू जी, थैंक यू उषा दीदी जी, आपका बहुत बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, और बहुत बहुत दुआएं देती हूँ आपको।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में मधु जी राठौड़ हमारे साथ बने हुए थे। आप जूनागढ़ बांटवा से पधारे हैं और आपने अपने जीवन के अनुभव सुनाए हैं। देखिए, आपने जाना है कि नारी शक्ति कितनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका एक रुपए पर भी अधिकार नहीं होता है, फिर भी आप खुश है, परिवार को साथ में लेके चलते हैं, और सत्संग में जाना कोई गलत बात नहीं है। अच्छी बात है कि आप ईश्वर भजन करते हैं, तो परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया और आपके साथ अव्यवहार किया, फिर भी आप सहनशीलता के दम पर और मिलनसार संस्कार होने के दम पर सभी को साथ में लेके चले और हमेशा खुश रहे, और आज भी खुश है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृ शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का नूर।

तो है जो करता है मुश्किल हमारी दूर। हर तरफ हर जगह

0: कोई दरिया तो है। हाँ कहीं
1: अभी बजे हैं सुबह के 11, एक मिनट के स्वचिंतन से टेंशन होगी 9:11।

नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा, रविवार की सुप्रभातम। और आप सभी को कल जो हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस हुआ उसकी कोटि कोटि बधाई, और आने वाले कल नागपंचमी है उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरू करते हैं स्वतंत्रता दिवस के ऊपर एक आध्यात्मिक विश्लेषण। स्वतंत्रता दिवस आते ही पूरे देश में एक नए उत्साह का संचार होता है, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, देशभक्ति के गीत सुने जाते हैं और स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों का स्मरण किया जाता है। ये हमारे इतिहास का एक गौरवशाली दिन है। विदेशी शासन से राजनीतिक मुक्ति प्राप्त करना निश्चित रूप से एक महान ऐतिहासिक उपलब्धि है, किंतु ये दिन हमारे सामने एक और गहरा प्रश्न रखता है। क्या राजनीतिक स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है? एक राष्ट्र बाह्य शासन से मुक्त हो सकता है, लेकिन उसके नागरिकों का मन यदि भय, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आसक्ति और असंतोष से बंधा रहे तो स्वतंत्रता किस सीमा तक पूर्ण है? इसलिए स्वतंत्रता दिवस केवल इतिहास को याद करने का दिन नहीं है, ये अपना भीतर झांक कर पूछने का दिन है, क्या मैं वास्तव में स्वतंत्र हूँ? राजनीतिक स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता का अंत नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता ने हमें अपने देश पर स्वयं शासन करने का अधिकार दिया है, ये हमारा अमूल्य ऐतिहासिक अधिकार है, किंतु बाह्य शासन से मुक्ति और आंतरिक विकारों के शासन से मुक्ति ये दोनों एक नहीं है। जो व्यक्ति अपना क्रोध का दास है, क्या वो वास्तव में स्वतंत्र है? जो व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा के बिना अपने मूल्य का अनुभव नहीं कर पाता, क्या वो स्वतंत्र है? जो व्यक्ति लोभ के दबाव में निरंतर अधिक पाने की इच्छा रखता है, क्या वो स्वतंत्र है? जो व्यक्ति किसी संबंध, संपत्ति, पद अथवा प्रतिष्ठा को खोने के भय से अशांत है, क्या वो स्वतंत्र है? बाहर कोई जंजीर न होने पर भी भीतर जंजीरें हो सकती हैं। शरीर मुक्त हो सकता है, लेकिन मन पराधीन हो सकता है। इस अंतर विरोध को समझना ही स्वतंत्रता के गहरे अर्थ को समझने का पहला कदम है। हम किसके पराधीन हैं? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो मनुष्य की सबसे बड़ी पराधीनता बाहर नहीं, भीतर है। हम अपनी कमजोरियों, अनियंत्रित इच्छाओं, अतीत की स्मृतियों, भविष्य के भय और दूसरों के दृष्टिकोण के पराधीन हो जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि उसके जीवन का नियंत्रण उसके अपने हाथों में है, किंतु उसका मन दूसरों की बातों से अशांत हो जाता है। किसी की प्रशंसा से उफूल उठता है, किसी की अवहेलना से टूट जाता है। परिस्थितियां बदलते ही उसका मनोभाव बदल जाता है।

0: है तो फिर उसके मन का मालिक कौन है? यदि मेरी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करती है तो मेरी शांति की चाबी मेरे हाथ में नहीं है। यदि मेरा सम्मान दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर करता है तो मेरे आत्मसम्मान का मालिक मैं नहीं हूँ। यदि मेरा मन क्रोध के अधीन चल रहा है तो मैं क्रोध का गुलाम हूँ। ये आध्यात्मिक पराधीनता है। पराया कौन, अपना कौन? स्वतंत्रता के आध्यात्मिक विश्लेषण में पराया और अपना के अर्थ को भी नए सिरे से समझना आवश्यक है। हम सामान्यतः जिसे मैं कहते हैं वो अधिकांश समय शरीर से संबंधित होता है। मेरा नाम, मेरी जाति, मेरा परिवार और न जाने कितना मेरा धर्म, मेरी भाषा, मेरा क्षेत्र, मेरा पेशा, मेरा पद, मेरी संपत्ति, इन सब को मिलाकर एक सामाजिक पहचान बनती है। किंतु ये सभी पहचान परिवर्तनशील है। शरीर बचपन से युवावस्था और युवावस्था से वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है। पेशा बदलता है, पद बदलता है, सामाजिक पहचान बदलती है। भाषा, क्षेत्र और राष्ट्रीय सीमाएं भी मनुष्य द्वारा निर्मित पहचान है। आध्यात्मिक दृष्टि कहती है इन सभी पहचानों का सम्मान करते हुए भी अपनी मूल पहचान को नहीं भूलना चाहिए। मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं एक सचेतन आत्मसत्ता हूँ। इस दृष्टि से शरीर और शरीर से जुड़ी पहचाने पूर्णता पराई नहीं हो जाती, बल्कि उन्हें जीवन की एक अस्थायी भूमिका के रूप में समझा जाता है। अपना तो वो चेतन सत्ता है जो इन सभी भूमिकाओं को धारण करके जीवन के मंच पर अपने कर्तव्यों का पालन करती है। देहाभिमान पराधीनता का गुप्त द्वार। देहाभिमान का अर्थ केवल शरीर पर गर्व करना नहीं है, अपने संपूर्ण अस्तित्व को शरीर और शरीर से जुड़ी पहचानों के साथ एक मान लेना ही देहाभिमान है। मैं इस जाति का हूँ, मैं इस संप्रदाय का हूँ, मैं इस क्षेत्र का हूँ, मैं ई भाषा का हूँ, मैं ई पद पर हूँ, मेरा मान सम्मान, मेरी संपत्ति, ये सभी मैं और मेरा। जितने गहरे हो जाते हैं आंतरिक स्वतंत्रता उतनी ही संकुचित होती जाती है। देहाभिमान से भेद बुद्धि का जन्म होता है। भेद बुद्धि से अहंकार, आसक्ति, अपेक्षा, ईर्ष्या, क्रोध और संघर्ष बढ़ सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक स्वतंत्रता का पहला कदम है शरीर को नकारना नहीं, बल्कि शरीर को ही अपना संपूर्ण पहचान न मानना। जाति, वर्ण, भाषा और संप्रदाय की सीमाएं। मनुष्य ने समाज को सुसंगठित करने के लिए भाषा, संस्कृति, क्षेत्र, राष्ट्र और विभिन्न सामाजिक पहचानें बनाई हैं। ये मानव जीवन के मूल्यवान अंग हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब पहचान कहीं ना कहीं संबंधों का सेतु बनने के बजाय विभाजन की दीवार बन जाती है। मेरी भाषा श्रेष्ठ है, तुम्हारी भाषा निम्न। मेरी जाति ऊंची है, तुम्हारी जाति नीची। मेरा क्षेत्र श्रेष्ठ है, तुम्हारा क्षेत्र पिछड़ा। ऐसी मानसिकता मनुष्य को मनुष्य से दूर करती है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता हमें एक देश के नागरिक के रूप में एकजुट करती है। आध्यात्मिक स्वतंत्रता हमें संपूर्ण मानव जाति को एक विशाल परिवार के रूप में देखने की दृष्टि प्रदान करती है। इसका अर्थ अपनी भाषा, संस्कृति या राष्ट्र को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान। हेलो
1: दीदी, नमस्ते।
0: हेलो,
1: शांति से कैसे हो दीदी?
0: हाँ जी, नमस्कार
1: जी। नमस्ते दीदी, बहुत अच्छे, आप कैसे हो
0: जी? एकदम ठीक है। बाहर गए थे, कुछ अवार्ड्स मिले हैं वो लेने गए थे, इसलिए कल रात को आए, कल लाइव नहीं किया, इसलिए आज कर रहे हैं जी।
1: कल भी, कल तो 10 दिन था, 15 अगस्त था, तो कल भी हमने कहा सारे का अच्छा, बहुत बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुने थे वहाँ से
0: जी,
1: बहुत अच्छा लगा। और कल का दिन भी बहुत अच्छा शुभ दिन था
0: जी जी।
1: तो सभी को हमारी तरफ से दीदी नमस्ते है, आपको भी नमस्ते है।
0: नमस्ते।
1: और आप तो हरदम सेवा में ही रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है दीदी। सेवा ही एक अच्छा धर्म भी है और अच्छा एक दुआओं का भी खाता मिल जाता है।
0: बिल्कुल।
1: बस हम तो यही चाहते दीदी कि एक दूसरे को बस दुआ देते रहे, लेते रहे, तो ही तो एक जीवन का जीने का अच्छा मकसद हमको मिल जाता है
0: जी।
1: और कोई भी काम हो, कोई भी कोई बाबत हो, कोई प्रश्न हो, तो ये दुआओं से हल हो जाता है। दीदी कहते हैं कि जहाँ दवाइयाँ काम नहीं करती वहाँ जरूर दुआ काम करती है,
0: करती है, बहुत करती है।
1: बहुत सच्ची है दीदी। हाँ। बस एक दूसरे की दुआएं लेना है, हम अच्छे काम करेंगे, लोगों को
0: लेना भी है, देना भी है।
1: बिल्कुल दीदी, और हमारे सबसे आपको और हमारे सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन भी,
0: आपको भी, आपके परिवार को भी, पूरे रेडियो मधुबन परिवार की तरफ से बहुत बहुत
1: शांति।
0: तो मनुष्य की आंतरिक पराधीनता को यदि और सूक्ष्मता से देखें तो क्या होगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। कामनाएं पूरी ना होने पर क्रोध उत्पन्न हो सकता है। अधिक पाने के असंतोष से लोभ बढ़ता है। मैंने किया है, मेरा अधिकार है, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, ऐसी भावनाएं अहंकार को पोषण देती है। मोह मनुष्य को वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों से इस प्रकार बांध देता है कि उनके बदलते ही मन की स्थिरता भी डगमगा जाती है। इन विकारों को आध्यात्मिक परंपरा में आंतरिक शत्रु माना गया है। यहाँ युद्ध किसी बाहरी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, युद्ध अपनी ही अनियंत्रित प्रवृत्तियों के विरुद्ध है। इसलिए वास्तविक विजय किस पर है? किसी अन्य मनुष्य पर नहीं, अपनी कमजोरियों पर। आज के जीवन को एक प्रकार के आंतरिक संघर्ष का मंच कहा जा सकता है। बाहर की परिस्थितियाँ सदैव हमारे नियंत्रण में नहीं होती है कि नहीं भाई? कई चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन अपनी स्थिति बनाए रखना ये तो हमारे हाथ में होती है ना। तो कई बार कुछ चीज़ें हमारे पास ही होती है, लेकिन उसके लिए हमें अंदर झांकने की आवश्यकता होती है। तो जैसे बताया कि इन विकारों को आध्यात्मिक परंपरा में शत्रु माना गया है। आज के जीवन को एक प्रकार के आंतरिक संघर्ष का मंच कहा जा सकता है। बाहर की परिस्थितियां सदैव हमारे नियंत्रण में नहीं होती, किंतु उन परिस्थितियों को हम किस प्रकार स्वीकार करेंगे उसका उत्तर देने की शक्ति हमारे भीतर विकसित हो सकती है। कभी हम परिस्थितियों से हार जाते हैं, कभी क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, कभी मोह में बन जाते हैं, कभी अहंकार हमें अपनी भूल देखने नहीं देता, किंतु गिर जाना ही अंतिम पराजय नहीं है। गिर कर पुनः उठना, भूल को पहचानना, सजग होना और अपने श्रेष्ठ स्वरूप का पुनः स्मरण करना, यही आध्यात्मिक साहस है। स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता नहीं। आधुनिक मनुष्य प्रायः स्वतंत्रता को मेरी इच्छा, मेरा निर्णय ई रूप में समझता है, किंतु यदि इच्छा ही व्यक्ति को नियंत्रित करने लगे तो वो स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है मैं इच्छाओं का मालिक हूँ, इच्छाएं मेरे मालिक नहीं है। मैं क्रोध को देख सकता हूँ, किंतु क्रोध के वशीभूत होकर कार्य नहीं करूंगा। मैं लोभ को पहचान सकता हूँ, किंतु लोभ के निर्देश पर जीवन नहीं चलाऊंगा। मैं मोह को अनुभव कर सकता हूँ, किंतु उसमें अपनी मानसिक स्थिरता नहीं खोऊंगा। यही स्वराज्य है, स्वयं पर अपना राज, ट्रस्टी भाव, स्वतंत्रता का एक उच्च अभ्यास। आध्यात्मिक जीवन में ट्रस्टी भाव की शिक्षा इस स्वतंत्रता को व्यवहारिक रूप प्रदान कर सकती है। एक बैंक प्रबंधक बैंक के विशाल धन का उत्तरदायित्व तो संभालता है। वो धन को सुरक्षित रखता है, सही हिसाब रखता है, आवश्यकता अनुसार उपयोग करता है, किंतु वो उस धन को अपना नहीं मानता। ये उदाहरण जीवन के लिए गहरा पाठ है। जीवन, समय, प्रतिभा, बुद्धि, शक्ति, संपत्ति और संबंध, इन सभी को अधिकार बोध से नहीं बल्कि उत्तरदायित्व की भावना से उपयोग करना ही ट्रस्टी भाव है। ट्रस्टी अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं है, वो 100% उत्तरदायित्व लेता है, किंतु अनावश्यक मेरा भाव का बोझ नहीं ढोता। ये भाव मनुष्य को अनासक्त बनाता है, किंतु उदासीन नहीं करता। जिम्मेदार बनाता है, किंतु अधिकार के अहंकार से मुक्त रखता है। हाथ कर्तव्य में, हृदय परम सत्ता में। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ संसार छोड़कर भाग जाना नहीं है, परिवार, पेशा, समाज और दैनिक कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने अंतर मन के संबंध को उच्च सत्य से जोड़े रखना ही मूल अभ्यास है। एक माँ कार्यालय में अपना कार्य करते हुए भी अपने मन की गहराइयों में अपने संतान की स्मृति बनाए रखती है। वो हर क्षण अपनी संतान का नाम नहीं जपती, फिर भी उस संबंध की स्मृति उसके भीतर जीवंत रहती है। उसी प्रकार मनुष्य अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी चेतना को परम सत्ता, शांति, पवित्रता और श्रेष्ठता से जोड़े रख सकता है। कमल के फूल की सीख यहाँ अत्यंत सुंदर है। कीचड़ में रहकर भी कमल अपनी सुंदरता और सुगंध नहीं खोता। उही प्रकार मनुष्य को संसार के मध्य रहते हुए भी संसार की अशांति को

कितनी ऊर्जा शुभ विचारों में प्रयुक्त हुई और कितनी शक्ति शिकायतों, ईर्ष्या और व्यर्थ के चिंतन में नष्ट हो गई। ये आत्म परीक्षण ही आंतरिक स्वतंत्रता का आरंभ है। मैं और मेरा से मेरा उत्तरदायित्व तक मनुष्य की शांति का एक बड़ा कारण अधिकार बोध है। ये मेरा है, ये मुझे मिलना चाहिए, मेरे साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए था। ये सोच जितनी बढ़ती है मन का बोझ उतना ही भारी हो जाता है। इसके विपरीत यदि हम पूछें इस परिस्थिति में मेरा श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है, तो मन की दिशा ही बदल जाती है। अधिकार बोध हमें फल से बांधता है, उत्तरदायित्व की भावना हमें कर्तव्य में स्थिर करती है। अनासक्ति का अर्थ कर्तव्य का त्याग नहीं है, बल्कि कर्तव्य करते समय स्वामित्व के अनावश्यक बोझ को छोड़ देना है। स्वतंत्रता दिवस उत्सव से जीवन का अंग बने। हम प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, किंतु यदि स्वतंत्रता का अर्थ केवल ध्वजारोहण, भाषण, संगीत और उत्सव तक ही सीमित रह जाए, तो हम इसकी गहरी आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाएंगे। स्वतंत्रता हमारे दैनिक आचरण में दिखाई देनी चाहिए। किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं, बल्कि सम्मान करने की स्वतंत्रता है। क्रोध में प्रतिक्रिया देने की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि शांति को चुनने की स्वतंत्रता है। घृणा में विभाजित होने की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि मानवीय एकता को अनुभव करने की स्वतंत्रता है। दूसरों के दोष ढूंढने की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सर्वप्रथम स्वयं को सुधारने की स्वतंत्रता है। बाहरी जगत को जीतने की आकांक्षा नहीं, बल्कि सबसे पहले अपने मन को जीतने का साहस है। इस अर्थ में स्वतंत्रता दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, ये प्रतिदिन का जीवन दर्शन है। वास्तविक स्वतंत्रता कहाँ है? वास्तविक स्वतंत्रता तब आरंभ होती है जब मनुष्य समझ लेता है, मेरी आंतरिक शांति की चाबी किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। परिस्थितियां मेरी परीक्षा ले सकती है, किंतु मेरी चेतना को निर्देशित करने का अधिकार मेरा ही है। दूसरों का व्यवहार मुझे आहत कर सकता है, किंतु उसके बाद मैं क्रोध में प्रतिक्रिया दूं या संयम से उत्तर दूं, उस चयन की शक्ति मेरे भीतर निहित है। यही स्वतंत्रता स्वराज्य है, स्वयं पर अपना अधिकार। आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मार्ग इस आंतरिक स्वतंत्रता के लिए कुछ सरल किंतु गहरे अभ्यासों की आवश्यकता है, और वो सब आप जो हमारे सेंटर पे जाते हैं और वहाँ से जो सुनते हैं, वो सब बात जीवन में उतारने की है। जब मनुष्य अपने मन का स्वामी बनता है, तब स्वराज का आरंभ होता है। जब वो अपने विकारों को जीतता है, तब वो आंतरिक विजेता बनता है। जब वो अपनी संपत्ति का उपयोग मालिक के रूप में नहीं, बल्कि ट्रस्टी के रूप में करता है, तब आसक्ति का भार हल्का हो जाता है। जब वो विपरीत परिस्थितियों के बीच रहकर भी अपनी आंतरिक शांति को सुरक्षित रखता है, तब वो सच्ची स्वतंत्रता का आस्वादन करता है। आज के स्वतंत्रता दिवस पर हम केवल ये ना कहें हम स्वतंत्र है, बल्कि स्वयं से पूछें, क्या मेरा मन स्वतंत्र है? क्या मेरे विचार स्वतंत्र है? क्या मैं दूसरों की प्रशंसा और निंदा का पराधीन हूँ? क्या मैं क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का गुलाम हूँ? क्या मैं अपनी शारीरिक पहचान को ही अपना संपूर्ण अस्तित्व मान रहा हूँ? क्या मेरी शांति का नियंत्रण दूसरों के हाथों में है? क्या मैंने स्वयं पर अपना राज्य स्थापित किया है? यदि ये प्रश्न हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस का ये उत्सव एक नया और सार्थक अर्थ प्राप्त करेगा। आशा करते हैं आप इसी रूप में इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे। चलिए भाई, भाषण ही हो गया बहुत लंबा चौड़ा, जैसे स्वतंत्रता दिवस पे और लोग देते हैं, लेकिन ये हमने दुनिया में स्वतंत्रता और आत्मा की स्वतंत्रता के बारे में बताया। अभी एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर बतियाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, सुनिएगा ये गीत।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न,
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: तिरंगे की आखिरी छाया। 15 अगस्त की सुबह गांव के सरकारी स्कूल में तिरंगा फहराने की तैयारियां चल रही थी। बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आए थे। मैदान में कुर्सियां लगी थी और मंच पर माइक रखा था, लेकिन 12 साल का नवीन सबसे पीछे चुपचाप खड़ा रहा। उसके हाथ में एक पुराना कपड़े में लिपटा हुआ सामान था। प्रधानाध्यापक ने उसको देखा और पूछा, नवीन आज इतने उदास काहे हो? नवीन ने कपड़ा खोला, उसमें एक पुरानी धूल लगी हुई तिरंगे की छोटी सी पट्टी थी। उसने धीमे से कहा, सर ये मेरे दादाजी की है, उन्होंने कहा था कि इसे कभी जमीन पर मत गिरने देना। प्रधानाध्यापक ने पूछा, दादाजी से तुम्हें ये कब दी थी? नवीन की आंखें नम हो गई। उनकी मृत्यु से एक दिन पहले। उन्होंने कहा था, बेटा हमने आज़ादी देखी नहीं, उसके लिए लड़ने वालों की कहानियां सुनी हैं। तुमने आज़ादी पाई है, अब इसे संभाल कर रखना। इतने में स्कूल में समारोह शुरू हो गया। मुख्य अतिथि ने भाषण दिया, आज हम स्वतंत्र हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया। तालियां बजी, लेकिन तभी तेज हवा चली, मंच के पास लगा बड़ा तिरंगा रस्सी से निकलकर नीचे गिरे लगा। सब लोग घबरा गए। नवीन दौड़ पड़ा, उसने तिरंगे को जमीन छूने से पहले अपने हाथों में थाम लिया। पूरा मैदान कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। नवीन ने तिरंगे को सीने से लगाकर कहा, इसे सिर्फ कपड़ा समझकर मत देखिए, इसके गिरने से पहले मुझे अपने दादाजी की बात याद आ गई। प्रधानाध्यापक की आंखें भर आई। उन्होंने पूछा, तुम्हें आज़ादी का मतलब क्या लगता है नवीन? नवीन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम खुली हवा में सांस लेते हैं, आज़ादी का मतलब है कि हम किसी कमज़ोर को डराकर उसकी सांसें न छीनें, किसी भूखे को देखकर मुंह न फेरें, किसी बच्चे को पढ़ने से न रोकें, और सबसे ज़रूरी हम अपने देश को सिर्फ 15 अगस्त को याद न करें। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। प्रधानाध्यापक ने नवीन के हाथ से वो पुराना तिरंगा की पट्टी ली और उसे नए तिरंगे के पास सम्मान से रख दिया। उन्होंने कहा, आज इस बच्चे ने हमें बताया है कि आज़ादी विरासत में मिली कोई वस्तु नहीं, बल्कि रोज निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। नवीन आसमान की ओर देखने लगा, हवा में तिरंगा लहरा रहा था। उसे लगा जैसे कहीं दूर उसके दादाजी मुस्कुरा रहे हैं। और उस दिन स्कूल में सिर्फ तिरंगा नहीं फहरा था, एक बच्चे के भीतर देशभक्ति का अर्थ भी पहली बार पूरी तरह फहराया था। जिस मिट्टी ने हमें चलना सिखाया है, उसी मिट्टी ने वीरों को शहीद बनाया है। आओ आज फिर कसम उठाएं, भारत का मान कभी न झुकाएं। स्वतंत्रता दिवस की पुनः कोटि कोटि शुभकामनाएं। दुख वैकल्पिक नहीं होते, भोगने ही पड़ते हैं। और जिंदगी में कभी भी किसी भी रूप में की गई भलाई व्यर्थ नहीं जाती। ये कब और किस रूप में वापस आ जाएगी, सिर्फ समय ही जानता है। चलिए भाई एक गीत और सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बताएंगे। बहन जी को नुकवा सा गीत वह सुना दीजिए ना, और सुनिएगा ये गीत।

नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मन का रथ और आत्मा की ध्वनि। महाभारत की काल की बात है। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला था। चारों ओर शंखनाद हो रहा था। योद्धाओं के रथ सज चुके थे और सैनिक अपने अपने अस्त्र शस्त्र संभाल रहे थे। उसी समय पांडवों की सेना में एक युवा योद्धा था, सत्यकेतु। वो वीर था, धनुष चलाने में निपुण था, लेकिन उसके मन में एक बड़ा संघर्ष चल रहा था। युद्ध भूमि में जाने से पहले वो अपने रथ से उतरकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसका हाथ कांप रहे थे। उसका सारथी उसके पास आया और बोला, वीर, आज तुम्हारा शरीर युद्ध के लिए तैयार है, फिर तुम्हारा मन इतना विचलित काहे है? सत्यकेतु बोला, मेरा मन मुझे कभी भय की ओर दौड़ाता है, कभी क्रोध की ओर। मैं सोचता हूँ कि यदि मैं हार गया तो का होगा, यदि मृत्यु सामने आ गई तो। सारथी मुस्कराया और बोला, ये मन की प्रकृति है, मन धावक है। वो एक पल में भूतकाल से भविष्य तक दौड़ सकता है, लेकिन क्या तुमने कभी अपने भीतर उठने वाली उस शांत आवाज को सुना है जो तुम्हें सही और गलत का अंतर बताती है? सत्यकेतु ने पूछा, वो कौन सी आवाज है? सारथी ने कहा, वो तुम्हारी आत्मा की ध्वनि है। मन तुम्हें अनेक दिशाओं में खींचेगा, लेकिन आत्मा तुम्हें तुम्हारे धर्म की ओर बुलाएगी। फिर उसने सत्यकेतु के रथ की ओर संकेत करते हुए कहा, ये शरीर तुम्हारा रथ है, यदि रथ मजबूत है लेकिन सारथी दिशाहीन है तो रथ भटक जाएगा। यदि मन शक्तिशाली है लेकिन आत्मा की आवाज़ नहीं सुनता तो मनुष्य अपना ही विचारों का बंदी बन जाता है। सत्यकेतु कुछ देर शांत रहा। उसने अपनी आंखें बंद की, भय को देखा, क्रोध को देखा और अपनी इच्छाओं को भी देखा। फिर उसने अपने भीतर से एक शांत आवाज़ सुनी, तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्तव्य पर है, परिणाम पर नहीं। उसने आँख खोली। अब उसके चेहरे पर भय नहीं था। वो रथ पर चढ़ा और बोला, आज मैं जीतने के लिए नहीं, अपने धर्म का पालन करने के लिए युद्ध करूँगा। सारथी मुस्कराया। युद्ध समाप्त होने के बाद सत्यकेतु ने समझा कि सबसे कठिन युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर चलता है। मन हमें दौड़ाता है, आत्मा हमें दिशा देती है और शरीर उस दिशा में चलने का माध्यम बनता है। मेरे बच्चों, जीवन में जब मन परेशान हो तो तुरंत कोई निर्णय मत लेना। कुछ क्षण शांत बैठो और अपने भीतर की आवाज़ सुनो। कहे कि मन की हर इच्छा सही नहीं होगी, लेकिन शांत आत्मा अक्सर सही रास्ते का संकेत देती है। शिक्षा यही मिलती है, याद रखो, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने आधा संसार जीत लिया, और जिसने मन, आत्मा और शरीर में संतुल बना लिया उसके लिए कठिन से कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है। आशा करते हैं आप भी इसी तरह अपने मन को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेते होंगे। जब भी कोई परिस्थिति आए और वही व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, उसको ही कहेंगे इसने सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त की। हमारी सच्ची स्वतंत्रता युद्ध करने में नहीं बल्कि युद्ध के परिणामों से परे रहना, साक्षी भाव में रहने में है। अनमोल विचार। परमात्मा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, विश्वास वो ताकत है जो अंधेरे रास्तों में भी रोशनी महसूस करवा देती है। जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे तब अंदर से एक ही आवाज़ आए कि सब ठीक होगा, और वही विश्वास है। आपकी अच्छाइयाँ बेशक अदृश्य हो सकती हैं लेकिन इनकी छाप हमेशा दूसरों के हृदय में विराजमान रहती है। आप जितना कम बोलेंगे उतना ही आपको लोग ध्यान से सुनेंगे। मजबूत बनना है तो ईश्वर की तरफ ध्यान में लग जाओ। बेफिक्र रहना है तो ईश्वर से प्रार्थना करो। किसी को कुछ देना चाहते हो तो दुआ दीजिए, वो दुआ जो जुबान से नहीं दिल से निकली हो। जो सुरेश भाई ने भी फ़ोन किया था तो वो यही बोल रहे थे कि दीदी आपको बहुत दुआएं मिलती हैं। हमने कहा, हाँ, लेना भी है और देना भी है, परमात्मा जी तो यही कहते हैं। जिंदगी का रास्ता कभी बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। हाथ में हमारे है, हम कैसी मंजिल चाहते हैं। पुरानी बातें पकड़ कर रखने से रिश्तों में गांठें पड़ जाती है। हम उनके साथ बातों को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन पुरानी बातें इतनी निकल आती है, गांठें खुलने के बजाय और बढ़ जाती है। जब गांठें खोल ना सके, उन्हें तोड़ दें। पुरानी बातों को चित से मिटाकर प्यार से एक नई शुरुआत करें और स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। आपका दिन शुभ हो। कर्म का थप्पड़ इतना भारी। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी।
0: ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे भैया, कैसे हो?
1: बहुत बढ़िया हूँ मैं भी दीदी। बहुत ही अभी कम होता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात।
1: दुआएं दो, दुआएं लो। और सुरेश भाई जी ने, जोटाना वाले सुरेश भाई जी ने और आपने सब कुछ बोल दिया है। बहुत ही अच्छा। हमको बोलने की अभी जरूरत ही नहीं। सच्ची स्वतंत्रता क्या है
0: जी?
1: सही जीवन क्या है? सही सर्वांगीण विकास क्या है? तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चला और कल का भी पूरे दिन का प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा चला। तो सभी आगे भाई बहने श्रोताओं को सुभाष भाई का नमस्कार, धन्यवाद। ओम शांति।
0: ओम शांति भैया, नमस्कार। देखे भाई, कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। जो स्वयं को बदल लेता है उसका संसार भी बदल जाता है। ईश्वर की नज़र में, यानी ये पक्का कर लो कि तुम उनके निगरानी में हो, इससे तुम हमेशा सुरक्षा का अनुभव करेंगे। किसी को कभी किसी से कम मत समझो साहब। कभी किसी को कभी किसी से कम मत समझो साहब, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज जो छोटा है कल वही बड़ा मुकाम पा सकता है। और अगर इन बातों को जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जीवन स्वतंत्र कहलाता है। परमात्मा कहते हैं, लाले बच्चों, आपके जीवन से कुछ भी चला जाए पर खुशी ना जाए। काहे कि हर चीज़ खरीदी जा सकती है सिवाय मन की सुख शांति और खुशी के। इसलिए हमेशा खुश रहो। आप अपनी समस्याओं का कारण निवारण स्वयं हैं। स्वयं को बदलने का साहस रखिए, दुनिया अपने आप बदलती दिखाई देगी। क्रोध समस्या का समाधान नहीं, नई समस्या की शुरुआत है। परवाह ना करें, परवाह ना करें, तमाशे होते रहेंगे उम्र भर। परवाह ना करें, तमाशे होते रहेंगे उम्र भर। बस ये ख्याल रहे कि अपना किरदार बेदाग रहे, अपना किरदार बेदाग रहे। जीवन का सबसे सुंदर और सरल नियम जो हमारे साथ नहीं होना चाहिए वो हम दूसरों के साथ ना करें। और जिसने ये बात को जान लिया उसके जीवन में बल्ले बल्ले। चले भाई, एक गीत और सुन लेते हैं, फिर आपसे बताएंगे। सुनिएगा एक सुंदर सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: सहज रहें पर सजग रहें, कठिनाइयों के बावजूद ईमानदार रहना, धन के बावजूद सरल रहना, क्रोध के बावजूद शांत रहना और अधिकार के बावजूद विनम्र रहने को ही जीवन प्रबंधन कहते हैं। जिंदगी में कुछ नया सीखने के लिए ये स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। प्रार्थना आपकी आदत होनी चाहिए, न कि मुश्किल वक्त का सहारा। और बहुत अच्छी बात हम सुने हैं, बहुत बड़े संत महात्मा कहते हैं, जो मित्र वक्त नहीं दे पाए, का कहते हैं, सच्चा मित्र कौन सा है, दुनिया में वही तो चाहिए। जो मित्र वक्त नहीं दे पाए वो जान क्या देगा। दोस्ती बना के रखो, क्योंकि ध्यान वही आएगा, काम नहीं आएगा। सिर्फ मित्र और मौके पर काम नहीं आया तो मित्र किस काम का। हमारा तो उसूल है 100 गधे और 100 हाथी की जगह एक शेर होना चाहिए। जिसको तुम अपना बोलो वो पराया निकल जाएगा। मित्र ही तुम्हारे काम आएगा, कम बनाओ लेकिन दोस्ती अच्छी ताले चाबी की तरह बनाओ। टूट जाएगा लेकिन दूसरी चाबी से नहीं खुलेगा। तो जीवन में ऐसे मोड़ लो, उसका नाम है मित्र। परिवार के लोगों ने ना किया हो, दोस्त ने सपोर्ट किया। ध्यान रखना, मित्र वो होता है जो सब बातों में झेल ले, मुस्कुरा के और बना के रखना है। चाहिए कुछ नहीं लेकिन सब कुछ देना है, वो वाला मित्र किसी काम का है। और जिसका गए आपके लिए 10 मिनट में खड़ा हो जाए, कोई नहीं है तो तुमने इसलिए अपने जीवन में कुछ भी हो, सब छूट जाए तो छूट जाए लेकिन ना छूटे मित्रता, जैसे कृष्ण और सुदामा की थी। कहे का मतलब ही कि जीवन में हमारे बहुत सारे मित्र हों का फायदा। कहे को सिर्फ देखें और मुस्कुरा दें लेकिन कोई काम ना आए, लेकिन एक ही मित्र रखें। जैसे हम कहा, 100 गधे 100 हाथी नहीं रखिए, एक शेर रखिए, बस वही आपका जीवन की सच्ची कमाई है काम पे आने की। नहीं दे रहे दो ना पापा, कोई भी खिला देता है। बात होती है कि मेरे दोस्त के पापा ने 4.5 लाख रुपए की बाइक दिला दी है और आपको कहा था, आपने क्या दिलाया, ये 50,000 रुपए की इलेक्ट्रिक स्कूटी। लेकिन वरना मैंने कुछ कमी की है का, साल स्कूल में टॉप करता हूँ और फिर भी आप मेरे साथ भेदभाव करते हैं। बाप बोलता, बात सही है बेटा, तूने हर बार अच्छे नंबर लाए और तू ऊंचा करता है हमारा नाम, लेकिन सिर्फ स्कूल की जो पढ़ाई होती है ना, उससे टॉप आ जाने से, अच्छे नंबर लाने से आदमी सफल नहीं हो जाता है। पढ़ाई से तू पास जरूर हो जाएगा लेकिन बेटा जब जिंदगी इम्तहान लेगी ना, वहाँ तू फेल हो जाएगा। इसलिए सारी बात तुझे मैं हमेशा सिखाते रहता हूँ। मैंने तेरी ज़रूरतें वो सारी पूरी कर दी, बाइक तुझे मिल गई। अरे भाई, जब कम पैसों में कोई काम हो सकता है तो उस पर लाखों रुपए खर्चा करना समझदारी नहीं होती, समझा। इसको कंजूसी नहीं बोलते। मैं तुझे दुनिया का बहुत अच्छा बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ। जब तक तेरे जेब में पैसे होंगे ना, दुनिया तुझे सलाम ठोकेगी। पैसों का सही उपयोग समझदार इंसान की निशानी है, समझा। और उसी समय वो चाचा आते, कहते जेब में पैसा होगा ना तो जेब में हाथ निकाल कर सैल्यूट मारेंगे लोग तुमको, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं होगा ना तो ये दुनिया तुमको लात मारेगी, समझे। पर तू चिंता मत कर, तेरे पापा तेरे को गाड़ी नहीं दिला रहा है तो कोई बात नहीं, तेरे पापा तेरे को 5 लाख की नहीं दिलाएंगे, मैं तेरे को 5 लाख रुपये की गाड़ी दिलाऊँगा। सचमुच, अरे 5 लाख की बाइक पे पापा देख चाचा ने कहा पर एक शर्त है, उसमें इलेक्ट्रिक की वो जो तुम्हारी चल रही है ना, पापा ने लेके दिया वो नहीं होगी, गाड़ी मैं लेके दूंगा लेकिन पेट्रोलवा तुमको अपने पैसे से भरवाना पड़ेगा, ये एक शर्त है। उतने में बेटा बोलता मम्मी चार्जर दो बाइक में लगाना है। जब बात आई अपने ऊपर तो 50,000 वाली बाइक ही अच्छी लगने लगी। सही बात है, माता पिता के पैसों पे हम मौज कर लेते हैं लेकिन जब अपने पर आती है तब समझ आता है। रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं और खुश रहने वाले झुग्गियों में भी खुश होते रहते हैं। जिंदगी जीने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, जीने का तरीका आना जरूरी है। सुख की तिजोरी का ताला संतुष्टि की चाबी से ही खुलता है। हमें यदि संतुष्ट और प्रसन्न रहना है तो सम्मान या दिखावे की इच्छा का त्याग करना जरूरी है। जो लोग दिखावे में अपना पैसा खर्च करते हैं उनके पास अपनी मुसीबत को टालने के लिए पैसा नहीं बचता है। स्वयं का इलाज करें, दूसरों का पोस्टमार्टम नहीं है। हाँ, हम दूसरे का पोस्टमार्टम कर देते हैं, उनके पास ही है, उनके पास वो है, लेकिन अपने लिए खुद के लिए नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं। और जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को देखें, दूसरों को ना देखें। और जिसने ये कला पहचान ली ना, उसके जीवन में तो फिर कोई परेशानी ही नहीं आती। जब मन में विश्वास होता है तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। सकारात्मक सोच ही सफलता की पहली सीढ़ी है। आपके मन की स्थिति की रक्षा करने वाली असीम शक्तियाँ आप में भरी हुई हैं, अर्थात आप एक शांत और अमर आत्मा हैं। परिस्थिति की पाठशाला में मिली शिक्षा किसी भी विश्वविद्यालय की डिग्री से अधिक मूल्यवान होती है, क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं जीवन जीने की समझ देती है। सम्मान देने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है, यही रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बोलना नहीं, प्यार चाहते तो अपनों को छोड़ना नहीं। और इन बातों को ध्यान में रख लीजिए, बाकी तो आप सब समझदार लोग हैं। आपसे गलतियां हो सकती हैं लेकिन इसमें आपकी ज़िंदगी तय नहीं होती, इसलिए खुद को माफ़ करो, अनुभव से सीखो। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वो सही समय पर सुख और सम्मान बनकर लौटते हैं। अच्छे विचार मन को पवित्र बनाते हैं और अच्छे कर्म जीवन को सफल बनाते हैं। हर दिन एक नया अवसर है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। नम्र बनो तो सब नमन करेंगे। हर लोग चेहरे देखकर करीब आते हैं लेकिन असली रिश्ता दिल देखकर बनता है। इन बातों को ध्यान में रखें। और अब घड़ी कह रही है प्रभा पंडिताइन, अब अपनी वाणी को विराम दो। सही में वाणी को विराम देने का समय हो गया। अगले शनिवार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। शास्त्र अनुसार विधिवत नियम और कठिन अनुशासन मानकर संगीत परिवेशन करना ही शास्त्रीय संगीत है। जैसे कि ध्रुपद, धामर, ख्याल इत्यादि शैली इस शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत होते हैं। साधारण श्रोता में अल्पज्ञ संगीत धारणा होती है तो इसमें सहजता से प्रविष्ट नहीं कर सकते। इसके लिए कठिन साधना की जरूरत है, तब सफलता अनिवार्य मिल सकती है। तो आइए शास्त्रीय संगीत के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हर बार की तरह मौजूद है हमारे साथ श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ, जितने सारे संगीत प्रेमी हैं, विद्यार्थी हैं, सबको मैं नमस्कार करती हूँ।
0: श्यामली जी, हमने आज शास्त्रीय संगीत के बारे में कुछ जानकारी दी, शास्त्रीय संगीत की और महिमा में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: हाँ, शास्त्रीय संगीत जैसे हमारा नींव है,
0: नींव है
1: घर की, जो नींव होता है, या बचपन में जब बच्चे बड़े होते हैं, माता पिता उसको जब पहले शिक्षा देते हैं, माता पिता गुरु है, उसके बाद जब शिक्षा लेते हैं तो वो नींव हो गया ना, उसी संस्कार बैठ जाते हैं। वो जैसे जितना सुंदर संस्कार, जितना सुंदर शिक्षा मिलते हैं, वो उसको अंदर बैठ जाते हैं, उसी से वो बाकी जिंदगी में सफलता लाते हैं।
0: बचपन में माता पिता के द्वारा मिले हुए संस्कार इतने पक्के हो जाते हैं जो जीवन भर काम आते हैं।
1: इसलिए तो उनका तो उत्तरदायित्व है ही माता पिता की। तो कोई भी बच्चे अगर उस टाइम में नींव को मजबूत कर लेते हैं तो बाकी जिंदगी में सफलता तो अनिवार्य होते हैं।
0: वैसे संगीत में भी शास्त्रीय संगीत,
1: संगीत में भी शास्त्रीय संगीत ऐसी है जिसको हाथ पकड़ के कोई भी संगीत प्रेमी चल सकता है। संगीत शिक्षा देने में या करने में सफलता मिलते है उसको।
0: ओके,
1: ठीक है।
0: तो माना शास्त्रीय संगीत सीखना अनिवार्य हो जाता है।
1: अनिवार्य है, जैसे बचपन में ओ आ ई ई अगर नहीं सीखेंगे
0: तो शब्द कैसे आएंगे, वाक्य कैसे बनेंगे।
1: कोई भी शिक्षा में तो ये तो पहले तो है ही, प्राइमरी जो सेशन होता है वो तो चाहिए ही चाहिए ना। ये शास्त्रीय संगीत ऐसी ही है।
0: अच्छा, मालकोस राग हम 2 हफ्तों से उसके बारे में सीखते आए हैं।
1: हाँ जी,
0: आज आप आगे हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हम तो विलंबित ख्याल सिखा दिया, थोड़ा इतना कम टाइम में नहीं होता है, तब भी अगर शुरू करते हैं तो अच्छा है
0: जी।
1: तो आज क्या करेंगे, वायरे भी ठाट है तो इसमें रे और पा वर्जित है। इतना सुंदर, हर राग में पा होता ही है, यूज होता ही है, लेकिन इस राग में पा वर्जित है, पा रे वर्जित है, तो इसलिए माँ को वाइटल स्वर, माँ को उसके ऊपर डिपेंड करके हमको चलना है। जैसे सा पा सा होता है, अभी क्या करके सा मा सा। अगर रे पा वर्जित है, ऐसे भी भैरवी ठाट जो है, भैरवी राग भी ठाट भी इतना सुंदर इसका जो चलन है, तो जो मालकोस राग है रे पा वर्जित है और गा नी धा कोमल है, तो हमने पहले बताया। तो अभी आज क्या करेंगे, 3 ताल के ऊपर छोटा ख्याल दे देंगे। स्वरलिपि पहले अगर लिसनर लिख लेते हैं तो अच्छा है, किताब पेंसिल लिख लेते हैं तो मैं पहले बताना चाहती हूँ कि स्वरलिपि क्या है, ठीक है। 3 ताल के ऊपर है, पहला जो लाइन है, पहले जो बंदिश का जो लाइन है 2 लाइन में है, थोड़ा डिफर है, बाकी कुछ नहीं है। पहले लाइन है जैसे फाक से शुरू होता है, मा गा सा सा नी सा धा नी सा आ मा आ गा मा गा सा। लिसनर जरूर ध्यान देंगे, गा धानी कोमल है
0: जी।
1: फिर वही लाइन दूसरा है, गा गामा गा सा धानी, ये जो धानी है नीचे का नी है, धानी सा आ मा आ गा आ मा आ। फिर से बताती हूँ, मा गा सा सा नी सा धानी, ये निसा धानी जो है नीचे का है, सा आ मा आ गा मा गा सा। नेक्स्ट लाइन, गा गमा गा सा धानी नीचे है, सा आ मा आ गा आ मा, ऊपर की तार स्वर की है। सेकंड लाइन, सा आ सा नी सा नी धा मा धा नी ई धा नी धा मा आ, यह स्थाई का स्वरलिपि है
0: जी।
1: अभी हम अंतर की स्वरलिपि बताते हैं, मा मा गा गा मा आ धा आ नी सा सा गा नी सा सा, ये सा भी है गा भी है ऊपर की है। नेक्स्ट लाइन सा आ सा आ नी धा, सा है तार स्वर की, मा धा नी ई धा नी धा मा, मामा गागा मामा धा धा नी सा गागा, ये जो है गागा ऊपर की है, नीसा गागा मा गा सा सा ऊपर की है मा गा सा सा। लास्ट लाइन सा आ नीसा नी धा माधा नी ई धा नी धा मा, ये चार लाइन है अंतरा की और दो लाइन है स्थाई का, लेकिन पहला जो लाइन है दो लाइन जो है अलग अलग कर सकते हैं
0: जी।
1: ठीक है, तो हम करके सुनाते हैं। तो पहले आरोहण अवरोहण पकड़
0: करते।

0: ये एक ही लाइन दो बार अलग अलग है,
1: अलग अलग कर
0: तो हमने ऐसे ही सुना है कि अगर करते, क्योंकि अभी ऊपर चढ़ रहे हैं ना
1: जी,
0: थोड़ा कठिन तो चाहिए ना, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी तो प्राइमरी में नहीं है ना, थोड़ा बेसिक नॉलेज तो चाहिए, तो ऊपर उठना चाहिए। इसमें दो लाइन, पहला जो लाइन है इसमें दो अलग अलग ढंग से हमने किया है, उसके बाद सेकंड लाइन है सा सा सा, इसमें अगर आकर सहित करते हैं तो बहुत अच्छा है।
1: ऐसे भी प्रैक्टिस करने के लिए तो आकर सहित ही
0: हाँ,
1: करना
0: करेंगे
1: पड़ता है।
0: तो उसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में बंदिश दे देंगे।
1: अच्छा।
0: तो बहुत सहजता से उठा सकते हैं।
1: श्यामली जी, यहाँ ही हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में हमारे सभी श्रोता मित्रों को मालकोस राग से संबंधित गीत सुनाते हैं। आप सभी श्रोता मित्र इसका आनंद लीजिए। हम पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक से पहले मालकोस राग के आरोहण अवरोहण पकड़ के बारे में हमने श्यामली जी से जानकारी ली और भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक ही स्थाई का अलग अलग रीत से हमको सिखाया भी कि किस प्रकार हम अलग रीति से भी गा सकते हैं। श्यामली जी आगे आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: अभी ये जो बंदिश जो है अंदर भी उठा देती हूँ।

0: हमने क्या किया, स्वर लिपि जो दिया है पहले स्थाई अंतरा, स्थाई का दो लाइन अंतरा जो है चार लाइन की है, नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको बंदिश बैठा देंगे।
1: अच्छा, मगर इस एपिसोड में आगे हमको मालकोस में क्या सिखाएंगे?
0: आगे हम क्या करेंगे, छोटा सा मालकोस की जो बंदिश अच्छा। मैं सुना देती हूँ,
1: मतलब सिखाने वाली नेक्स्ट एपिसोड में सिखाएंगे। अभी
0: अभी ऐसी बहुत सुंदर एक बंदिश है,
1: बंदिश सुनाकर आप उसकी सुंदरता को
0: और भी बढ़ाते हैं,
1: और
0: भी बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल
0: ठीक है।

0: हमको भी आप जो इतनी सहजता से गा लेते हैं, इसको सुन सुन के सिर्फ मन ही मन में मुस्कुरा ही सकते हैं। हम गा नहीं सकते आपकी जैसा।
1: आपको पहले एपिसोड में बताया कि ये जो राग जो है इसका समय है मध्य रात्रि का।
0: जी जी।
1: तो मध्य रात्रि में क्या हुआ कि कृष्ण जी राधा जी जब रास करते थे, निद्रा देवी क्या करते थे उस टाइम, सबको निद्रा में पहुंचा देते थे। तो उस टाइम सब निद्रा में चले गए, लेकिन इनका दोनों में जो मिला

0: आप है राधा और कृष्ण जी को मिलाप है, हर जगह में आप देखना श्रृंगार भाव है, मन ही मन में मुस्काए जाते जो राधा कृष्ण जी का ये भाव जो है वो मध्यरात्रि का ही होता है
1: जी।
0: इसलिए मध्यरात्रि में इस गीत सुनने से क्यों नींद आते हैं, इसका राज यही है। इसलिए मैं सोचती हूँ इसलिए शायद ये मध्यरात्रि का शास्त्रीय संगीत है।
1: ओके श्यामली जी, आज जाते जाते इसी बंदिश के साथ साथ और भी क्या सुनाना चाहेंगे आप?
0: आज बहुत सुंदर एक फिल्म है नवरंग।
1: अच्छा।
0: बहुत पुरानी फिल्म है,
1: बहुत फेमस है।
0: आशा जी और महेंद्र कपूर जी ने ये निभाया है गीत। आधा है चंद्रमा रात आधी, ये राग जो मालकस के ऊपर है ये गीत आधारित है। मैं करना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ क्योंकि कोशिश करना भी चाहती हूँ। बहुत सुंदर गीत है।
1: ऐसे भी पहले भी आपने ये राग के बारे में बताया कि ये मध्य रात्रि में गाया जाना वाला राग है और ये गीत भी उससे ही कुछ संबंधित है।
0: जी, आप देखना मालकोस राग की जैसे जैसे गीत चलता है वो ऐसे ही होता है
1: जी
0: राग की समय।

0: बहुत सुंदर, हमारी मुलाकात भी आधी ही रह गई।
1: सुंदर है आधे को लेकर सब ये गीत
0: आधा राधा
1: सब कुछ,
0: जितने भी शब्दों का प्रयोग किया
1: तो मध्यरात्रि का ये गीत जो है कितना इसके साथ कितना मिलजुलते हैं
0: जी
1: समय के अनुसार।
0: जी जी बहुत सुंदर श्यामली जी, यहाँ ही हम लेते हैं इजाजत, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत विषय, तो आप जरूर हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9414151415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जब कबूतर को पता चलता है कि बिल्ली उसके पास आ गई है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है जैसे बिल्ली गायब हो गई है, पर ऐसा होता नहीं है बाबू। वैसे हम लोग कभी कभी यही तरीका अपनाते हैं, समस्या से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या इससे वो खत्म हो जाती है? घर ऑन एयर के पिछले एपिसोड में आपने सुना कि राठौड़ परिवार बड़ी मुश्किल से नाश्ते की टेबल पर बैठे ही थे कि तभी दरवाजे पर होती है एक नॉक। कौन पूछने पर गेट से जवाब आता है, पुलिस। अब यहाँ कबूतर है राठौड़ परिवार और बिल्ली है पुलिस। चलिए देखते हैं कि अब कबूतर करता क्या है।
1: बड़े भैया, गेट मत खोलिए, मैंने सीरियल में देखा है, पुलिस एकदम से आती है अंदर और बिना कुछ बताए हथकड़ी लगाकर ले जाती है और फिर बहुत मारती है।
2: अरे अरे, तो आप गेट मत खोलिए, आपको ले गए तो हमारा क्या होगा?
3: अरे, पुलिस वालों के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि किसी को भी ले जाएं, और मुझे क्यों पकड़ेंगे, मैंने क्या किया है?
4: एक काम करते हैं, तुम लोग सब चुप हो जाओ, उनको लगेगा घर पे कोई नहीं है तो सब वापस चले जाएंगे।
5: माँ, ऐसी थोड़ी होता है, आप
4: चुप कर किशन, जेल जाना है क्या?
6: माँ, आप डरो मत, कुछ नहीं होगा। बड़े भैया, आप बैठिए, भाभी घबरा रही है, मैं देखता हूँ, और आप लोग जरा शांत हो जाइए।
7: भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ।
6: ठीक है, चलिए।
4: नहीं वीरेंद्र, रुक। अरे रुक बेटा।
6: माँ, आप मेरा हाथ पकड़ो, मैं हूँ ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा।
8: हम नजदीकी पुलिस थाने से आए हैं, हमें विजय की तलाश है।
7: आपका मतलब विजय दीनानाथ चौहान है?
8: आप पुलिस वाले से मजाक कर रहे हैं?
7: सॉरी सर, मैं नर्वस होता हूँ तो मजाक निकल जाता है।
8: ठीक है ठीक है, आप मेरी बात का ठीक से जवाब दीजिए, विजय कहाँ है?
6: जी, विजय नाम का तो यहाँ कोई नहीं रहता।
8: देखिए, हमें पता चला है यहीं रहता है। एक आरोपी को छुपाना कानूनन जुर्म है, इसलिए जल्दी बताइए विजय कहाँ है।
6: सर, हम सच कह रहे हैं, यहाँ कोई विजय नहीं रहता।
8: देखिए, हमारे पास प्रूफ है, विजय कुशवाहा आधार कार्ड डिटेल्स है, उसमें यहीं का एड्रेस दिया हुआ है।
9: अरे, ये तो अपना विजय है।
8: हाँ, पकड़े गए, मतलब हमसे झूठ बोल रहे थे। कौन विजय, अब कहते हो अपना विजय?
6: नहीं नहीं सर, मतलब क्या है ना, ये हमारे परिवार का मेंबर नहीं है, ये तो हमसे पहले इस मकान में रहता था, तो इसलिए ये एड्रेस पड़ा होगा। इसकी पोस्ट आती है कभी कभी यहाँ, तो लेने आ जाता है बस।
8: कोई और आपके एड्रेस पे 5 साल से अपनी पोस्ट पार्सल मंगा रहा है, आपने कुछ नहीं कहा?
7: ये लोग यहाँ 5 साल से रह रहे हैं।
8: सर, मुझे लगता है ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं।
6: नहीं सर, हमें लगा वो तो हमारा दोस्त है।
10: सर, हुआ क्या है ये तो बताइए।
8: देखिए, विजय ने बड़ा बैंक फ्रॉड किया है।
0: कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर में कोई नहीं फंसना चाहता, लेकिन अगर मुसीबत आ ही जाए तो फिर समझदारी ही तो काम आती है। आपका आईडी प्रूफ आपका प्रमाण है, ध्यान रखिए कि आपके नाम, नंबर या एड्रेस का कोई और इस्तेमाल ना करिए। अब पुलिस अपने विजय, मेरा मतलब है कि विजय को तो पकड़ ही लेगी, बैंक में जो फ्रॉड किया है, लेकिन क्या राठौड़ परिवार की समस्या कम होगी? अब ये तो बाद में पता चलेगा।
11: मर्दों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। हमसे हंस खेल के बात करने वाला वो विजय फ्रॉड निकला।
12: रागिनी दीदी, पहली बार सही बात बोली है आपने।
11: पहली बार तो क्या कहना चाहती है शांति, क्या मैं हमेशा गलत बात कहती हूँ?
10: भैया, ये हमारी बहने ही है ना, कहीं मंदिर से तो उठा कर नहीं लाए थे इन दोनों को?
11: किशन, तू तो पिटेगा मुझसे।
12: दीदी, आपसे और मुझसे दोनों से।
11: रुक, अभी बताती हूँ।
12: पकड़ो दीदी, पकड़ो इसको, बहुत मजाक बनाता है हमारा।
10: अरे कोई बचाओ मुझे इन दोनों से, कोई छोड़ के आओ इनको वापस मंदिर में।
11: तुझे तो मंदिर में भी नहीं रखेंगे, रुक।
12: मारो दीदी, मारो मारो।
11: अरे ये तुम तीनों क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो?
6: बड़े होकर भी बचपन भी जी लेना चाहिए कभी कभी, घर की रौनक इस मीठी प्यार वाले झगड़े से तो है। और देखो ये लोग इस बहाने एक तो हो गए।
2: इसलिए तो मैं भी प्यार से झगड़ती हूँ ताकि आप लोग खुश रहें।
4: बड़ी बहू

0: तू तो इतना खुश कर देती है कि खुशी के साथ मेरा बीपी भी बढ़ जाता है।
1: वैसे चंद्रावती, तुम तो बचपन में बड़ी शांत थी। तुम्हारी माताजी ने बताया था मुझे, कहीं शादी के लिए झूठ तो नहीं कह दिया था?
2: मैं तो सच में बड़ी शांत थी। अपने छोटे भाई पर कभी हाथ नहीं उठाया मैंने, और ये आपकी बहनों को देख लीजिए।
3: बड़े भैया, आप तो बहुत लकी हैं।
4: हाँ बिल्कुल, बड़ी बहू ने आते ही इस घर को संभाला, इस घर को एक करके रखा। जब इन दोनों की शादी हुई थी तो चंद्रावती 23 साल की थी और गजेंद्र 26 का, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी बहू पर ज्यादा थी। शादी होते ही एक लड़की से अब ऐसे उम्मीद लगा जैसे एकदम से वो बदल जाए, अपनी उम्र से भी बड़ी होकर व्यवहार करने लगे। और वही लड़के को छूट दे देते हैं बस इसलिए कि वो एक लड़का है। इसलिए मैं तो सच में मानता हूँ बहुत सयानी है।
2: थैंक यू।
5: चलिए, कोई तो समझा कि बहू भी एक आम लड़की ही तो है, जिसे अपनी सहेलियों से बात करना पसंद है, जिसकी आंखों में अपने भी कुछ सपने हैं। उसी लड़की को शादी की रस्मों के बाद एकदम से सब जिम्मेदारियों से लाद दिया जाता है, और कहीं चूक हो जाए तो उसे बुरी बहू का खिताब दे दिया जाता है। उसकी गलतियों पर ताने कसने की जगह प्यार से समझा कर गले लगाकर तो देखिए, देखिए कि कैसे वो बहू बेटी बन जाती है। हाँ, वैसे बहू से याद आया कि राठौड़ परिवार की छोटी बहुरानी राजकुमारी जी नजर नहीं आ रही। हो, समझ गया, राजकुमारी जी किचन में है।
0: कुमारी, ये क्या कर रही हो? अरे ये कढ़ाई जमीन पर क्यों गिरी हुई है, और ये दो तरफ से मुड़ी हुई क्यों है?
6: मासा, मैं तो आपने जो कहा था बस वही कर रही थी। आपने तो कहा था मासा कि राजकुमारी हमें कढ़ाई की जरूरत नहीं है, जा इसे बदल कर कुकर ला। हाँ, मैं तो इसे कुकर बना रही थी मासा। ओ, तभी मैं सोचूं कि मैं तो इंजीनियर भी नहीं हूँ, फिर मासा ने मुझे कुकर बनाने को क्यों बोला? लेकिन फिर मैंने सोचा, मासा ने बोला है कि कढ़ाई को बदल के कुकर बना ला, तो मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए।
7: आपको क्या लगता है भाभी, इंजीनियर बर्तन बनाते हैं?
6: हाँ, मतलब वो पास वाली दुकान पे जो छोटू है ना, वो इंजीनियर ही तो है, बर्तन ठीक करके देता है सारे वो।
7: भाभी, वो उसके पापा की दुकान है और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है।
6: ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में शुरू में ही सिखा देते हैं बर्तन बनाना।
8: हमारी भाभी कितनी भोली है ना?
9: हाँ, भोली भी है और भाली भी।
7: जैसी भी है हमारी है।
8: मैं बहुत लकी हूँ मासा कि इस परिवार का हिस्सा हूँ।
5: ऐसा आज्ञाकारी देखा है आपने कि कोई कढ़ाई को कुकर बनाने की कोशिश करने लगे। वैसे हर परिवार में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, पर यही तो जिंदगी का मजा है। जैसे चाट होती है ना, थोड़ी खट्टी, आहा, थोड़ी मीठी और थोड़ी तीखी, हर स्वाद होता है। ऐसे ही जिंदगी में हर कोई हमारे जैसा सोचने, बोलने और करने लगे तो फिर बोरिंग ना हो जाएगी लाइफ, हा? तो चलिए, आप और हम लोगों में छुपी खूबसूरती को देखते हैं और उन्हें सराहते भी हैं। आखिर अपने तो अपने होते हैं। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ, आपका साथ निभाने और राठौड़ परिवार की कहानी सुनाने फिर आऊंगा अगले एपिसोड में। इंतजार कीजिएगा हमारा, क्योंकि भाई ये राठौड़ परिवार है, बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है यहाँ।
10: घर ऑन एयर, पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि, ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित, ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा, बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा, बुआ शांति राठौर, आरजे मोना, वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल, राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि, बच्चे रूहानी अमीक्षा, नैरेटर आरजे अमित। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। रेडियो मधुबन पर समय हो रहा है कार्यक्रम सलामे जिंदगी का। दोस्तों, आप जानते हैं कि रेडियो मधुबन आप सबके लिए तरह तरह के कार्यक्रम लेकर आता है, और उसमें से एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम जो कि हमारे बड़े और बुजुर्गों के साथ हम करते हैं, जहाँ पर हम बातें करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं उनके जीवन गाथा, उनके संघर्ष, उनकी उपलब्धियां और उनके गर्व के विषय। आइए आज ऐसे ही इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ कार्यक्रम सलामी जिंदगी में मौजूद हैं दीनदयाल वर्मा जी। आप झांसी उत्तर प्रदेश से रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ।
0: माउंट आबू की धरती पर पहली बार आपका आगमन हुआ है और आप आज रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर हैं। यह एक मंच है जहाँ से हम अपने समुदाय तक ऐसी प्रेरणास्पद कहानियाँ जो वास्तविक जीवन में हो रही होती हैं उनको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और आज इस यात्रा में जहां पर हम आपकी कहानी जानेंगे, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका जन्म कहां पर हुआ, कौन से सन में हुआ, और आपके माता पिता के बारे में भी हम सुनना चाहेंगे।
1: मेरा जन्म ग्राम अटरिया, तहसील मोठ, जिला झांसी में हुआ। मेरी जन्मतिथि 12/7/1956 है और मैंने बीए एलएलबी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से किया है। और यहाँ मधुबन की धरती पे जो आज आगमन मेरा 8 तारीख को हुआ था, यहाँ आके मुझे वाकई ये महसूस हुआ कि जो है अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो मधुबन में, मधुबन राजस्थान में। माउंट आबू ऐसा जो है एक हिल स्टेशन है जहाँ पर जो भी आदमी आएगा यहाँ की स्मृतियों को अपने जीवन में आत्मसात अवश्य करेगा।
0: तो जैसा कि हमने बातचीत की शुरुआत में जानना चाहेंगे कि आपका जो बचपन है
1: जी,
0: बचपन के बारे में कुछ बताइए, क्या यादें जुड़ी हैं, कैसे स्कूल में जाते थे, और माता पिता के बारे में भी कुछ जरूर बताइए।
1: बचपन मेरा एक ग्रामीण जीवन से स्टार्ट हुआ है। मेरे पिताजी कपड़े और सिलाई का व्यापार करते थे
0: जी,
1: और माता गृहिणी थी। हमारे प्राइमरी स्कूल गाँव ग्राम अटरिया में प्राइमरी लेवल तक स्कूल था। इसके बाद मुझे 6 से लेके 8 तक महंत रामेश्वर दास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरगढ़ शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी। इसके बाद वहाँ साइंस साइड ना होने की वजह से मुझे DVIC मोठ में एडमिशन लेना पड़ा। इसके बाद हम 3 भाई थे, तीनों भाइयों की शिक्षा का दायित्व हमारे अकेले पिता और माता पर ही था।
0: तो जैसे एक मकान बनता है तो सबसे पहले उसकी नींव रखी जाती है, और बचपन हमारे जीवन का नींव होता है
1: जी जी।
0: ऐसे कुछ ना कुछ गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं माता पिता के पास जो हम जाने अनजाने में अपने अंदर भी स्वीकार करते हैं, और ये बातें हमको जीवन पर्यंत गाइड करती हैं
1: जी जी।
0: तो माता जी की क्या ऐसी विशेषता थी जो आपको बहुत अच्छी लगती है?
1: माता जी की एक विशेषता ये थी कि वो जो है हम लोगों को अनुशासित रहने की प्रेरणा देती थी, और समय पर उठना, समय पर स्नान करना, समय पर स्कूल जाना, ये उनने जो है हम लोगों सभी भाइयों के लिए समय से उनने खाना बनाना ये सब किया।
0: और जैसे पिताजी की अगर याद करते हैं तो वो उनके अंदर क्या?
1: पिताजी का ये था कि बहुत बहुत सख्त अनुशासन था।
0: ओके।
1: जैसे पढ़ने का टाइम है तो पढ़ेंगे, कहीं अनावश्यक खेलने नहीं जा सकते
0: जी।
1: कहीं स्विमिंग पे नहीं जा सकती, तालाब में घूमने नहीं जा सकती, किसी के अनावश्यक पार्टी नहीं कर सकती।
0: तो ये बातें आपके भी जीवन में आई?
1: हाँ।
0: तो माता और पिता दोनों से आपने अनुशासन को सीखा
1: जी,
0: चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या फिर कार्यमय जीवन
1: जी जी।
0: जैसे अनुशासन की बात हुई, साथ साथ आपने बताया कि गांव में बहुत सारी चीजें होती हैं एक्टिविटी करने के लिए। आज के समय हम देखते हैं कि एक जीवन घर हो, मतलब गांव हो, ग्रामीण परिवेश हो या पर शहर में भी, हर जगह करीब करीब लोगों का जीवन अपने छोटे से मकान के अंदर एक सिमट के रह गया है
1: जी जी।
0: पर उस समय पे किस प्रकार की एक्टिविटी गाँव में करने का ऑप्शन होता था? जैसे आपने तालाब की बात करी, तो कहाँ कहाँ आप जाते थे, कैसे आनंद लेते थे?
1: गाँव में था कि जामुन का पेड़ हुआ, जामुन पक गई तो वहाँ तोड़ने के लिए गाँव के बच्चे चले जाते थे। मुझे जाने से मना ही थी, मैं कभी नहीं गया, और अगर किसी दिन गया तो उस दिन मुझे बहुत पनिशमेंट मिला जब मैं लौट के आया।
0: तो बचपन आपका पूरा अनुशासन से गुजरा या फिर शैतानी भी थोड़ी बहुत होती?
1: नहीं, शैतानी तो पिताजी ने करनी ही नहीं थी, शैतानी उन्होंने करनी नहीं थी मुझे
0: जी।
1: सही।
0: और उस समय के जो टीचर्स हैं वो कैसे थे, स्कूल का परिवेश कैसा होता था?
1: स्कूल में 2 टीचर थे प्राइमरी में, एक रामनारायण, एक चिंतामणि, हमारे पास के गांव कुमारिया के रहने वाले थे
0: जी।
1: उन्होंने प्राइमरी की शिक्षा जो है बहुत अच्छी तरह से दी।
0: ओके।
1: बहुत अच्छी तरह
0: थी। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे?
1: हिंदी, अंग्रेजी तो कक्षा 6 से थी, लेकिन हिंदी है, सामाजिक विज्ञान है और पीटी है, व्यायाम है।
0: आपका पसंदीदा सब्जेक्ट क्या था?
1: मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था क्रिकेट।
0: क्रिकेट, अरे वाह, तो आपको स्पोर्ट्स में रुचि थी?
1: हाँ, स्पोर्ट्स में रुचि थी, लेकिन पिताजी जो है ज़्यादा खेलने के लिए परमिट नहीं करते थे।
0: ओके,
1: ये नहीं जा पाए।
0: जैसे प्राइमरी की शिक्षा पूरी होती है तो हम थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर मिडिल स्कूल में जाते हैं, तो आगे की शिक्षा कहाँ पर हुई है?
1: आगे की शिक्षा की हमारे गांव में प्राइमरी तक ही शिक्षा थी, इसलिए 6 से कक्षा 8 तक के लिए महंत रामेश्वर दास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरगढ़ में हमें जाना पड़ता था।
0: ओके।
1: गांव से 2 किलोमीटर था, वो हमारे पैदल जाते थे, पैदल आना पैदल जाना।
0: तो आजकल जैसे आपके भी घर में छोटे बच्चों ने, मतलब आपके बच्चों के बच्चों ने भी जन्म लिया होगा, तो आजकल चॉकलेट भी लेना हो तो लोग स्कूटी निकाल के घर से निकलते हैं।
1: ठीक
0: तो
1: है,
0: कैसे आप तुलना करते हैं वो समय को और इस समय को?
1: उस समय को हमारा पोता 12 साल का है, मैं सोचता हूँ कि अब ये मशीनरी युग है, इसलिए बच्चे कहते हैं मुझे स्कूटी दिला दो, मुझे बुलेट दिला दो, मुझे कार दिला दो, तो ये सब हमने कहा तुम अभी बड़े हो जाओगे तब दिलाएंगे तुम्हें, 18 साल कंप्लीट कर लो, तुम्हारा लाइसेंस बन जाएगा तब फिर हम दिला देंगे
0: जी।
1: तो ये है कि गांव का जीवन था, बरसात हो, धूप हो, जाड़ा हो, पैदल जाना है 2 किलोमीटर सर्दी में, और फिर जो है धूप में बरसात में, मतलब आप ब्रेकअप नहीं कर सकते, कंटिन्यू करना है आप। और मैंने ये अपने जीवन में किया कि मैं जो है छुट्टी ही में कर रहा, बकाया मैं जो है स्कूल से बंक नहीं किया कोई।
0: तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके बचपन के बारे में जानने के लिए, और जो हम जैसे उम्र के जो लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था नहीं देखी है
1: जी, जी।
0: तो कहीं ना कहीं उनको सुन के भी अच्छा लग रहा होगा कि ग्रामीण जीवन जहाँ पर आपको शारीरिक श्रम भी करना है, अनुशासन में रहना है, फॉलो करना है
1: जी।
0: अभी कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को कुछ बताया जाता है तो वो नाराज हो जाते हैं, जवाब दे दे देते हैं, या कह देते हैं कि आपने हमको, हमारे साथ ये ठीक नहीं किया,
1: जवाब दे देते हैं।
0: लेकिन एक वंचित परिस्थितियों में भी जहाँ पर बहुत लिमिटेड साधन होते थे
1: जी,
0: तो अनुशासन के साथ साथ संयम भी रखना, इच्छाओं को बस में रखना, ये भी सीखते थे। तो बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने, जो कहीं ना कहीं हमारे श्रोता सुन रहे होंगे और उनको भी खुशी भी हो रही होगी
1: जी, जी।
0: और उनके अंदर भी एक विजुअलाइजेशन आ रहा होगा कि किस प्रकार के समाज होता था उस समय। चलिए सोता हूँ, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर लौट कर आएंगे, और हमारे साथ बने हुए हैं दीनदयाल वर्मा जी, आप झांसी उत्तर प्रदेश से आज कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी में पधारे हुए हैं। आपने अपने एजुकेशन में BA LLB किया है और वर्तमान समय तो सोशल एक्टिविटी में आप एक्टिव हैं। आपने जो अवसर प्राप्त किया सरकारी नौकरी से, उत्तर प्रदेश सरकार से आपने एक ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD के पद से आप रिटायर हुए हैं, जहां पर आपने चकबंदी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सेवाएं दी हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर लौट कर आते हैं इस गीत के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप होबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM होबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो
1: दोस्तों फिर लौटकर आ गए हैं कार्यक्रम सलामी जिंदगी में और आज हमारे साथ मौजूद हैं दीनदयाल वर्मा जी। और जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे उनके बचपन के बारे में, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और स्कूल के जीवन से अभी कॉलेज की ओर चलते हैं। यार जब आप कॉलेज पहुंचे तो कहाँ तक आपने पढ़ाई की और कॉलेज कहाँ पर था, किस प्रकार की व्यवस्था थी?
2: मैंने सरदार पटेल इंटर कॉलेज चिरगांव से किया इंटरमीडिएट और बीए एलएलबी किया बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से।
1: तो हॉस्टल में रहना हुआ या फिर?
2: नहीं नहीं हॉस्टल में नहीं, अपने कमरे पे किराए से कमरा लेके पढ़ते थे।
1: ओके
2: हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं मिल पाई।
1: क्यों, क्या सिचुएशन बना जो आपने लॉ का विद्यार्थी बनना है?
2: लॉ का विद्यार्थी इसलिए भी, उस समय नौकरियों का कुछ ऐसा नहीं था कि नौकरी मिल ही जाएगी, तो दोनों पहलू लेके चला के अगर नौकरी नहीं मिली तो LLB करके वकालत करके अपना जो है परिवार का पालन करूँ।
1: और कौन से सन में आपने कम्प्लीट किया LLB?
2: LLB हमने कम्प्लीट किया 1980 में।
1: तो एक कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन में ये पड़ाव आता है जब पढ़ाई पूरी हो रही होती है और फिर कहीं ना कहीं एक अपने परिवार को चलाने की बात करें या पेट पालने के लिए शब्द कह सकते हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ व्यक्ति करने का एक इच्छा रखता है और समाज भी उसको प्रेरणा देता है कि अभी आपको कुछ नौकरी करनी चाहिए या खुद का काम करना चाहिए। तो उसके लिए कभी कभी कई लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। आपका कैसा रहा जीवन, कि आपको फटाफट जॉब मिल गई या फिर आप
2: नहीं
1: संघर्ष किया?
2: मैंने संघर्ष नहीं कर पाया, मतलब पढ़ने के बाद मुझे तुरंत जॉब मिल गई।
1: ओके
2: विद इन वन मंथ
1: आपको जॉब मिल गई। तो आपने कोई एंट्रेंस दिया, एग्जाम दिया, क्या हुआ?
2: एक्चुअली मैंने जो है हिंदी सब्जेक्ट से एक साल की ट्रेनिंग की थी आई से, हिंदी स्टेनोग्राफी।
1: ओके
2: तो उस समय वो रेडियो पे देवकी नंदन पांडे की वो स्पीच समाचार पढ़ते थे, तो मैं उसको रेडियो को खोल के उसको लिखने की प्रैक्टिस करता था
1: फास्ट
2: और मैं उसको जो है पूरा जो है एक भी शब्द छोटे बिना लिख लेता था।
1: अच्छा, इतनी कितनी टाइपिंग स्पीड थी?
2: मेरी टाइपिंग स्पीड तो थी 35 और नॉट हैंड की स्पीड तो 100 के नियर अबाउट 100 थी।
1: अरे वाह, तो फिर इससे जॉब मिल गया?
2: जॉब ऐसा हुआ कि एक पद था चकबंदी विभाग में, एक रिक्त पद था, इसके अगेंस्ट 64 जो है स्टूडेंट जो है DM झांसी ने बुलाए थे।
1: ओके
2: तो सभी लड़कों का जो है मुन्ने कहा कि पहले रिटर्न लेंगे, रिटर्न लिया तो कुछ उसमें सॉर्ट आउट हो गए। इसके बाद जो लोग बचे उनका जो डिक्टेशन और वो टाइपिंग के लिए चौधरी थे एक इंस्ट्रक्टर ITI झांसी के, चौधरी जी को बुलाया, उनने डिक्टेशन दी, सबको डिक्टेशन दी। डिक्टेशन के बाद ये हुआ कि अब उतनी टाइपिंग मशीनें थी नहीं, जितने लड़के रह गए थे उस डिपार्टमेंट में भी नहीं थी। DM साहब को फ़ोन करके चौधरी साहब ने ये पूछा कि सर टाइपिंग मशीन है तो इतनी है नहीं, तो फिर क्या करूं, कैसे इनकी शुद्धता जांचूं कि इनने डिक्टेशन सही लिखा है या नहीं? तो उन्होंने कहा आप हिंदी में हाथ से उनको जो है लिखने

0: अच्छा
1: तो रजिस्टर डाक से मेरे घर के पति पे भी जब वो है कॉल लेटर पहुंच गया, अपॉइंटमेंट लेटर, और जब मैंने उसको देखा तो मुझे बेहद खुशी हुई कि चलो मेरी मेहनत कामयाब हो गई।
0: बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये सिर्फ ना हमारे खुशी की बात है बल्कि पूरा परिवार भी बहुत खुश हुआ होगा आपका।
1: जी जी जी,
0: क्योंकि एक जॉब लगना तो इसका परिचायक है कि आपने पढ़ाई भी अच्छे से की है और आपने हार्ड वर्किंग है
1: जी।
0: तो इस प्रकार से आपने कौन से पद पे आपका चयन हुआ?
1: मेरा पद स्टेनोग्राफर पे हुआ था, हिंदी स्टेनोग्राफर
0: जी। आगे की यात्रा कैसी रही है?
1: आगे की यात्रा ऐसी रही कि मैंने हमेशा जो है जो क्योंकि स्टेनोग्राफर का पद ऐसा है कि अपने बॉस की ही एक बात माननी है, बकाया किसी के अंडर में नहीं है, वो ओनली एक बॉस है उसका, उसी के अंडर में। तो उस चीज को मैंने अपने जो है रिटायरमेंट तक फॉलो किया। अगर उन्होंने कहा सुबह 6 बजे आना है तो 6 बजे 5 मिनट पहले, और अनुशासन में तो रहना ही था, टाइम की पंक्चुअल, रेगुलर एंड पंक्चुअल, अनुशासित तो रहना ही है, सरकारी नौकरी है।
0: इसमें जैसे कोई भी कार्य में जीवन में अभी बहुत सारे श्रोता ऐसे हमारे सुन रहे होंगे जो युवा होंगे जिनकी जॉब लगी होगी या वो काम कर रहे होंगे
1: जी,
0: तो कौन कौन से वो गुण आप बताना चाहेंगे उन्हें कि जिनको धारण करने से
1: जी
0: कार्य में जीवन अच्छा रहे?
1: सरकारी कार्य में सबसे जो अच्छा गुण है वो है कि आपको अगर जो है छुट्टी पे जाना है तो आप 2 दिन पहले अप्लाई करिए, छुट्टी लीजिए, परमिशन मिले तभी जाइए। अगर जो है सरकारी नौकर 24 घंटे का नौकर होता है, उसे किसी भी समय बुलाया जा सकता है
0: जी।
1: आप डिसओबे नहीं कर सकते और ना करना चाहिए। आपको अपनी जो नौकरी है सरकारी उसको जो है बनाए रखना है, उससे जो है दूसरों को प्रेरणा मिलनी है, तो आपको जो है अनुशासन में और आज्ञाकारी रहना,
0: आज्ञाकारी बनना बहुत इम्पोर्टेंट,
1: बहुत इम्पोर्टेंट।
0: और कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहते हो?
1: और कोई ऐसी बात है कि किसी को जो है सरकारी नौकरी में रहते हुए किसी को धोखा मत देना।
0: ओके।
1: क्योंकि चकबंदी विभाग ऐसा विभाग रहा कि इससे जो है गरीब से गरीब किसान जुड़ा है, और गरीब किसान जो है किस तरह से मेहनत से जो है खेती करता है, फसल उगाता है, अगर किसान नहीं है तो देश नहीं
0: आधारित है।
1: हाँ, तो ये भारत कृषि प्रधान देश है, और जो है चकबंदी विभाग ऐसा है कि जो चकबंदी विभाग करता है वो ब्रह्मा भी नहीं कर सकता, ऊपर वाला भी नहीं कर सकता। वो चीज है, जैसे एक उदाहरण है, उदाहरण ये है किसी विलेज में आपके 4 खेत, चकबंदी विभाग एक ऐसा विभाग है कि जो चारों खेतों को आपको एक जगह बना देगा
0: जी,
1: वहाँ आप ट्यूबवेल लगाएं, ट्रैक्टर लगाएं, यानी सारी जो है कृषि पंप लगाएं, कुछ भी लगाएं, इससे आप कृषि की उन्नति कर सकते
0: जी।
1: और प्रभु भी चाहे तो आपके 4 खेत एक जगह नहीं कर सकते।
0: किसानों के जीवन की उन्नति के लिए बहुत काफी प्रभावशाली होता है।
1: चकबंदी विभाग ने जो उन्नति आई है, जो कृषि की उन्नति, ये कंसोलिडेशन एक्ट 1953 में बना था, और जो है पूर्व मेरठ से पश्चिम से चकबंदी शुरू हुई, और इस समय चकबंदी जो है मतलब लास्ट स्टेज पे है, पूरे उत्तर प्रदेश में चकबंदी हो चुकी है।
0: ओके।
1: कुछ जो है तहसीलें रह गई जहाँ जो है सेकंड लॉट के जो है गांव में लोग बाग जो है उससे प्रेरित होके चकबंदी अपना रहे कि भाई हमारा गांव क्यों छूट गया, हमारे गांव में भी चकबंदी होना चाहिए। कुछ स्वार्थी किस्म के लोग हर गांव में हैं, जो गांव सभा की जमीन पर कब्जा किए हैं, वो नहीं चाहते कि चकबंदी हो। वो जानते हैं कि चकबंदी होगी तो जो हमने 10 एकड़ जमीन जो है गांव सभा की जोत रखी है वो निकल जाएगी। तो ऐसे लोग जो है चकबंदी का विरोध करते हैं, लेकिन मोस्टली 95-98% लोग चाहते हैं कि चकबंदी हो, उससे खलिहान के लिए, खेल के मैदान के लिए, स्कूल के लिए, चारागाह के लिए, युवक मंगल दल के लिए, चक रोड के लिए, नालियों के लिए रोड, ये सारी चीजें चकबंदी जिस गांव में हो गई वहां रोड बन गए हैं, नालियां बन गई हैं, और अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, हरित क्रांति आ गई है।
0: बहुत अच्छा हुआ कि आपने बताया, हमारे श्रोता में बहुत सारे किसान भी हैं
1: जी
0: जिनके जमीन पे अगर चकबंदी नहीं होगी तो इसका वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं
1: जी।
0: ये भी एक अच्छा पड़ाव आपने अपने जीवन का जिया, जहाँ पर आपने पहले तो पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद ये कार्यमय जीवन, जहाँ पर जनता की सेवा
1: जी
0: तो है ही आपका पेशा, जहाँ पर आपने किसानों को बहुत फायदा पहुँचाया, उनके कार्य को आसान किया, सारी जमीन को एक जगह पर पहुंचाई ताकि वो बेहतर तरीके से उसको मैनेज कर सके। तो दोस्तों, हमारे साथ बने हुए हैं दीनदयाल वर्मा जी, और आपने एक OSD के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में सेवाएं दी चकबंदी विभाग उत्तर प्रदेश सरकार में, और आज रेडियो मधुबन पर हमारे से मुखातिब हो रहे हैं। लेकिन अभी समय

और एक छोटे से ब्रेक का, जहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और एक गीत सुनाएंगे आपको, और फिर लौट कर आएंगे रेडियो मधुबन पर, जहाँ हम उनसे बातचीत करेंगे उनके परिवार के बारे में, कि परिवार के अंदर कौन सी वो मूल्य हैं जिनको ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, कैसे हम परिवार को बेहतर तरीके से चला सकते हैं, बच्चों को आगे बढ़ने में कैसे मददगार बन सकते हैं पेरेंट के रूप में, इन सब चीज़ पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए प्यारा सा गीत, फिर लौट कर आते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए कार्यक्रम सलामी जिंदगी।

0: this is Aditya Raj Kapoor and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.8 FM रेडियो मधुबन, और रेडियो मधुबन पर अभी कार्यक्रम चल रहा है सलामी जिंदगी, जहाँ पर ऐसे व्यक्तित्व से बातचीत कर रहे थे जिन्होंने अपने कार्यमय जीवन में बहुत सारे किसानों के जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव डाला। और अब आइए आगे चलते हैं और बातचीत करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। दीनदयाल जी, जैसे आप बता रहे थे कि एक कार्यमय जीवन के बारे में बताया, बचपन और युवा काल के बारे में आपने बताया, ये आगे चलेंगे और जानना चाहेंगे कि आपका विवाह कब हुआ, किससे विवाह हुआ?
2: मेरा विवाह पुष्पा देवी से हुआ था, ग्राम सोमई, जिला जालौन से।
1: जी, वो कौन से सन में आप विवाह हुआ?
2: हमारा विवाह अंडर एज, मतलब जो आजकल की उसके हिसाब से, मैं क्लास 9th में पढ़ता था उस समय मेरी शादी हो गई।
1: कितनी उम्र थी आपकी
2: उस समय? मेरी उम्र 14 वर्ष। मेरा विवाह हुआ था 1970 में।
1: धर्मपत्नी थी वो, कितने वर्ष की थी?
2: धर्मपत्नी की उम्र 11 वर्ष।
1: तो उस समय पे काफी कम उम्र में माता पिता शादी के रस्मों को निभा देते थे।
2: जी जी।
1: तो आपने उसके बाद पढ़ाई जारी रखी?
2: जी, पढ़ाई जारी रखी
1: जी, और LLB तक पढ़ाई किया।
2: जी जी।
1: और आपकी धर्मपत्नी ने कितने पढ़ाई की?
2: हमारी धर्मपत्नी साक्षर है, हस्ताक्षर कर लेती हैं, थोड़ी हिंदी पढ़ लेती हैं।
1: हिंदी पढ़ लेती हैं।
2: हाँ, लेकिन मतलब स्कूल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की, ना उनके पास कोई सर्टिफिकेट स्कूल का मिला, माता पिता गरीब थे, नहीं पढ़ा पाए।
1: तो उनकी विशेषताओं के बारे में कुछ बताइए कि क्या आपके जीवन में एक सकारात्मक योगदान उनका रहा?
2: हमारे सकारात्मक जीवन में उनका योगदान ये रहा, उन्होंने कभी मेरे आदेश का उल्लंघन नहीं, बच्चों को बड़े प्यार से दुलार से पाला पड़ा किया। उस समय थोड़ा सा ही वेतन मिलता था, उसी वेतन में उन्होंने सब बच्चों को पढ़ाया, और अच्छे स्कूल में मैंने शिक्षा दिलाई, इंग्लिश स्कूल में
1: बच्चों को।
2: हाँ, मेरा बेटा इस समय गुड़गांव हरियाणा में पोस्टेड है, और वो GST डिपार्टमेंट का हेड है, SGST और CGST का हेड है गुड़गांव में।
1: कितने बच्चे हैं आपके?
2: हमारा एक बेटा, 3 बेटियां हैं।
1: जैसे परिवार, पारिवारिक जीवन की हम बात करें,
2: जी जी,
1: कौन से ऐसे गुण हैं
2: जी
1: जो, चाहे हम युगल की बात करें, पति पत्नी के बीच में बेहतर समन्वय बना सकते हैं, कौन से ऐसे गुण होने?
2: एक पहली, बच्चों को सबसे अच्छा गुण तो ये होना चाहिए कि अपने बच्चों को बुराइयों से दूर रखें, गलत जो है व्यसन ना होने दें, उन्हें जो है गुटखा पान तंबाकू ये सब चीज़ों से दूर रखें, और शराब का तो सेवन बिल्कुल ना करने दें उन्हें।
1: ओके।
2: और पढ़ने की प्रवृत्ति उनमें डालें।
1: कैसे डालें?
2: पढ़ने की प्रवृत्ति ऐसे डालें, उन्हें ये शिक्षा दें कि बेटा ऐसा है, श्रम करके कोई व्यक्ति धनवान नहीं बन पाया, मतलब हावड़ा चला के सोचे कि हम टाटा बिरला बन जाए, पढ़ोगे दिमाग से आप आगे बढ़ोगे, ये बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कही थी। हथियार है ऐसा जो है, यंत्र है जिससे जो है आप अपने जीवन में जो है आप आगे बढ़ सकती हो, समाज को आगे बढ़ा सकती हो। आप शिक्षित होगे, अगर माँ शिक्षित है पूरा परिवार पढ़ता है, पिता को इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन मेरी पत्नी ने अशिक्षित होते हुए भी अपने बच्चों को जो है पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा दिलाई और इंजीनियरिंग करवाई। मेरे बेटे ने जो है NIT मैंगलोर से इंजीनियरिंग, उस समय मैंने GPF से सारा लोन लेके बेटे की शिक्षा करवाई। ये है कि बच्चों को व्यसनों से दूर रखें और इतना अनुशासित रखें कि वो जो है वो इतना भी उन पे दबाव मत डालें कि वो डिप्रेस हो जाएं, कि वो बगावत पे उतर आएं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
1: मैंने संयम रखना है,
2: संयम रखना,
1: नियम
2: है।
1: और संयम दोनों साथ में चल रहे हैं,
2: नियम और संयम दोनों साथ में चल रहे हैं, तभी जो है बच्चे आगे बढ़ पाएंगे।
1: इसी जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, बच्चों को जब बड़ा करते हैं या बालिकाओं को बड़ा करते हैं, जैसे आपने बताया कि, तो जैसे बच्चियों को बड़ा करना अपने आप में एक क्योंकि बच्चियां जो है समाज का निर्माण करती हैं, बच्चे जन्म होते हैं उनको बड़ा करना माँ का बहुत प्रभाव रहता है।
2: जी हाँ,
1: पर बच्चियों को बड़ा करने के लिए क्या ध्यान रखना पड़ता है?
2: बच्चियों को बड़ा करने के लिए मुख्य रूप से माँ का योगदान ज्यादा रहता है कि हमारी बेटी किस किस कहाँ जा रही है, उस पर नजर समय से आ रही है, किस से बात करती है, पढ़ने स्कूल जा रही है या नहीं जा रही है, या क्लास बंक कर रही है, ये सब सहेलियों से भी पता चल जाता है। तो माँ का रोल ज्यादा होता है, पिता तो अपना ड्यूटी पे निकल गया, 10 बजे शाम के 5 बजे 6 बजे आया।
1: तो बच्चियों की शिक्षा का क्या महत्व?
2: बच्चियों की शिक्षा का महत्व ये है कि अगर बच्ची पढ़ती है तो पूरा जो है परिवार पढ़ता है, पूरा परिवार। अगर आपकी बच्ची जो है अशिक्षित है तो वो अपने जीवन में ना तो अपनी संतान को पढ़ा सकती है और ना अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। तो इसलिए बच्चियों का साक्षर और उनका पढ़ाई योगदान बहुत जरूरी है। अगर वो पढ़ी होंगी तो पूरा देश पढ़ेगा, पूरा राष्ट्र पढ़ेगा।
1: और जैसे आजकल समानता की बात होती है कि पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए।
2: जी जी।
1: और आजकल हम देखते हैं कि महिलाएं बालिकाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं।
2: जी।
1: चाहे वो पायलट बन रही हो या जहाज चला रही हो।
2: जी।
1: युद्ध में भी उनको स्थान दिया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
2: इस बारे में सरकार ने जो कदम उठाया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, मतलब इसमें यह है कि सरकार का योगदान बिल्कुल सराहनीय है और ऐसे कार्य के लिए सरकार की भी तारीफ की जानी चाहिए कि जो बेटियों को आगे बढ़ा रही है, उन्हें समान अवसर मिल रहे हैं, समान जो है खेल के क्षेत्र में देखो, चाहे सोशल में, चाहे केमिकल में, चाहे एयरो स्पेस में, तो ये तो बराबरी लड़कियों को मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है।
1: बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन के जो अलग अलग पहलू हैं
2: जी,
1: उन पर आप हमारे श्रोताओं के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, अपने विचार साझा कर रहे हैं।
2: जी जी।
1: एक बात और जानना चाहेंगे
2: जी,
1: कि पारिवारिक जीवन में जैसे जो हम बड़े होते हैं, कई बार हम देखते हैं कि पारिवारिक जीवन में आपस में भी मनमुटाव हो जाता है या फिर अनबन हो जाती है, मतों का पार्थक्य हो जाता है, चाहे वो माता पिता और बच्चों के बीच में हो या आपस में हो जाता है कभी के पति पत्नी के बीच में, इन सब चीज़ों को कैसे हम बेहतर मैनेज कर सकते हैं?
2: इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए सबसे सरल तरीका है, यदि आपको कोई भला बुरा कह रहा है तो उस समय आप शांत हो जाइए, क्योंकि आप एक कहेंगे वो दो कहेगा, अनावश्यक वार्तालाप पड़ेगा और मुकदमा कोर्ट कचहरी तक चला जाता है। और मैं चकबंदी जैसे विभाग में जहां मुकदमों की भरमार रहती है, किसी यानी मर्डर भी होते हैं तो उनका भी सॉल्यूशन समझौता होता है आखिर में। क्रिमिनल केसेस में भी यही देखा है और रेवेन्यू में भी यही रहा है। किसानों की खेतों की लड़ाई, उनने कहा दो बिस्वा मेरी आपने दबा ली, मैंने मुकदमा कर दिया, आप सामने आया, अच्छा मैं देखता हूँ आप, आपने लाठी चला दी, एक आध मर्डर हो गया, पता चला दोनों की जमीन बिक गई, दोनों बर्बाद हो गए। तो शांति पर जीवन बहुत जरूरी है आगे बढ़ने।
1: शांति की आपने बात की और आप भी अपने व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिकता को पसंद करते हैं ऐसा मैंने महसूस किया है, तो आध्यात्मिकता का क्या स्थान है परिवार संचालन में?
2: आध्यात्मिकता का ये स्थान है कि अगर आत्मी आध्यात्मिक जीवन अपना रहा तो वो दुर्व्यसनों की तरफ नहीं, बुराइयों की तरफ नहीं जाएगा, कुरीतियों को नहीं अपनाएगा और कोशिश ये करेगा कि हम प्रभु से जुड़े रहें, प्रभु हमें जो है बुरे कर्मों को करने की इजाज़त नहीं देगा, हम जो है उसके मन में ये भय रहेगा, जब भय रहेगा तो गलत कामों की ओर पर अग्रसर नहीं होगा।
1: बिल्कुल सही बात। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं दीनदयाल वर्मा जी से जो झांसी उत्तर प्रदेश से आज हमारे साथ मौजूद है, और उनके व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन पर बातचीत की, गुणों के बारे में बातचीत की, धारणाओं के बारे में बातचीत की, शांति के ऊपर काफ़ी महत्व दिया उन्होंने कि कैसे शांति जो है हमारे जीवन में अनावश्यक एंगेजमेंट से बचा सकती है, कि अगर हम कोई ऐसे परिस्थिति हो जहां पर थोड़ा सा हमारे अंदर गुस्सा आ रहा हो, तनाव आ रहा हो, और वहां पर अगर हम थोड़ा सा संयम दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें छोटी हो जाएंगी और बड़े ऐसा कुछ हो जाए जिससे हमको फिर और भी धन और समय देकर के उसको समाधान करना पड़े, उससे हम बच सकते हैं। तो ऐसी ही बातचीत जारी रहेगी और फिर लौट कर आएंगे जब हम बातचीत करेंगे उनके व्यक्तिगत जीवन में अपना जो वर्तमान समय है, जो वार्धक्य जीवन है, उसको कैसे हम बेटर मैनेज करें, कैसे उसको सेवाओं में लगाएं, कैसे समाज से और दुआएं कमाने का माध्यम बना सकते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। फिर लौट कर आएंगे 107.8 FM रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ये सुंदर सगी पेश है आपके लिए।

मैं गीत सागर रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है सलामी जिंदगी, रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। और आज हमारे साथ इस रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर मौजूद हैं दीनदयाल वर्मा जी, जिनके एक प्रेरणादायक जीवन पर हम बातचीत कर रहे हैं। उनके जीवन के अलग अलग पहलू, उम्र के अलग अलग समयों पर हम बातचीत कर रहे हैं। और अभी हम पहुंचे हैं उनके वर्तमान जीवन पे, जहां पर करीब 67 ईयर आयु है उनकी। और उनके हाव भाव से महसूस ही नहीं होता ये उम्र का कोई प्रभाव। तो सर, जैसे हम आपको देखते हैं कि एक बहुत ही अच्छा अपने स्वस्थ जीवन मेंटेन करा हुआ है। आदमी को जब वो बुजुर्ग होता है, व्यक्ति को उस समय कौन सी ऐसी बातें वो जीवन में ध्यान रखे, जब वो बुजुर्ग होते हैं तो उनका जीवन बेहतर रहे, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य के रूप में हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में हो, या आर्थिक रूप से हो। आप क्या करते हैं, कैसा रूटीन रहता है आपका दिन भर का?
1: मेरा रूटीन ये है कि सुबह 5 बजे उठना। सुबह उठ के जो है फ्रेश होके टहलने जाना है, एक घंटे टहलने के बाद घर आके थोड़ा व्यायाम करना, इसके बाद जो है स्नान करना।
0: ओके।
1: स्नान के बाद पत्नी चाय दे देती हैं और मेरे हाथ में अखबार होता है। अखबार से मैं छोटी से छोटी एक एक लाइन पढ़ता हूँ करीब 2 घंटे। अखबार पढ़ने के बाद नाश्ते का टाइम आ जाता है। नाश्ते में अंकुरित जो है दाल, अंकुरित चना, मौसमी फल, पपीता है, अमरूद है, केला है
0: जी,
1: और रात में बादाम डाल दिए, काजू डाल दिए और अखरोट डाल दिए, भिगो दिया, किशमिश डाल दी, इनका जो है नाश्ता कर लेना
0: जी।
1: इसके बाद जो है दिन में कहीं किसी का फोन आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, या कोई हमारे गुरु हैं उनके पास एक आध घंटे के लिए मिलने चला जाता हूँ। 2 घंटे करीब, 1.5 घंटे आराम कर लिया, दोपहर 1:30-2 बजे खाना खाया, इसके बाद बस टीवी में थोड़ा समाचार सुन लिए
0: जी,
1: या कोई देश विदेश की गतिविधियां हैं टीवी ऑन कर ली, उनको समाचार देख लिए,
0: जानकारी कर,
1: इसके बाद 1.5 घंटे आराम किया। और शाम के 5 बजे हमारे यहाँ एक पंचतंत्र, वो गजानन पार्क है केकेपुरी कॉलोनी झांसी में, तो वहाँ शाम के जो है 1 घंटे फिर सैर की।
0: ओके।
1: 1 घंटे सैर करने के बाद शाम हो गई, प्रभु का स्मरण किया और 7:30-8 बजे के बीच में खाना खाया और टीवी देखी, 10 बजे जो है सो जाना।
0: तो एक संयमित जीवन आपने अपनी रूटीन सेट कर रखी है
1: जी जी,
0: जहाँ पर हर चीज का स्थान है, चाहे ऐसे जो स्वास्थ्य को मेंटेन रखे, ऐसा अच्छा भोजन अंकुरित हो या अन्य चीजें, और व्यायाम सुबह और शाम दोनों समय पे, साथ साथ में बुद्धि को तेज रखने के लिए थोड़ा बहुत रीडिंग, ये सारी चीजें आप करते हैं
1: जी।
0: व्यसन कई लोग अपनाते हैं, कई बार हम देखते हैं कि उनका जीवन इससे काफी प्रभावित हो जाता है। कई लोग युवा काल में प्रभावित हो जाते हैं, कुछ लोगों को ओल्ड एज में प्रॉब्लम्स होती है। आपका जीवन कैसा रहा और व्यसन के बारे में क्या राय है?
1: व्यसन के बारे में ये रहा, मैंने किसी जो है तंबाकू तो मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, और जैसे सिगरेट, शराब या कोई ऐसी चीज है, किसी पार्टी में चला गया ऑफिसर्स के यहाँ, जहाँ ये न लगे कि मैं जो है अनपढ़ हूँ या उनकी पार्टी को अटेंड करने में अक्षम हूँ, मैंने उसका सेवन किया, लेकिन मैंने आदत में नहीं अपनाया कभी
0: जी,
1: कि नहीं कि जो है एक जगह गए वहाँ पार्टी में हमने ये एंजॉय किया तो फिर आगे हम वो घर पे भी व्यवस्था कर ले। हालांकि चाहते तो हम घर पे भी वो व्यवस्थाएं कर देते, लेकिन फिर मैंने उनको किया नहीं कि हमारे बच्चों पे असर पड़ेगा। एंजॉय किया लाइफ को, लेकिन जो है उसको
0: व्यसन में नहीं कन्वर्ट,
1: व्यसन में परिवर्तन नहीं होने दिया
0: जी
1: लाइफ में
0: जी।
1: उनकी
0: आपको लगता है कि जो लोग व्यसन करते हैं और आपकी उम्र के हैं और आप में, आपके अंदर फर्क?
1: हाँ, बहुत सारे मेरे साथी हैं जो मुझसे अंडर एज में ही व्यसनों हो गए, या जिन्होंने विस्की या वाइन को अपना लिया, तंबाकू गुटखा अपना लिया, तो कुछ कैंसर के जो है पीड़ित हो गए, कुछ अल्पायु में भी पूरी आयु किए बिना ही
0: चले गए।
1: अपने मतलब दुर्व्यसनों की वजह से ही उनका जो है जीवन सुखमय नहीं बीता।
0: क्या कहना चाहेंगे हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको व्यसन के बारे में?
1: व्यसन के बारे में मेरा यही कहना है सभी श्रोताओं से कि इन सब बुराइयों से दूर रहें। गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, इनको अगर जीवन में आदत के रूप में ना रहने दें हाँ कभी मजबूरी में किसी के दबाव में कोई चीज का जो है सेवन करना पड़े तो कर लीजिए, उसमें कोई नहीं है, लेकिन उसको अपने जीवन में जो है अपने आदत में शामिल ना करिए।
0: जितना हो सके हम बचे रहें और इन चीज़ों से दूर रहें
1: जी।
0: और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि किसी के दबाव में भी आवश्यकता नहीं है सेवन करने की। कहीं ना कहीं हमारी धारणाएं लोगों को प्रभावित करती हैं। हमारा उच्च जीवन देखकर के लोगों को कई बार हिम्मत भी नहीं होती कि हम वो हमको कहें कि आप ये करो। और कई बार हम अपनी धारणाओं के बारे में थोड़ा सा सम्मानपूर्वक उनके आग्रह को ठुकरा सकते हैं ये बात कह के कि ये चीज़ें मुझे नुकसान पहुँचाती हैं तो मैं नहीं कर पाऊँगा। मैंने कुछ बहाना बना सकते हैं कि मैंने ट्राई किया था पर मेरा शरीर दिक्कत आ जाती है,
1: सही है,
0: ऐसा भी कह सकते हैं। ये तो रही व्यसन की बात और आपने रूटीन के बारे में भी बताया। मन का स्वास्थ्य कैसे मेंटेन करते हैं?
1: मन का स्वास्थ्य सुरक्षित या उसको मेंटेन करने के लिए दो ही चीजें हैं, या तो आप अच्छा साहित्य पढ़िए। अच्छा साहित्य पढ़ेंगे दिमाग में जो है गलत चीजें अपने आप प्रवेश नहीं कर पाएंगी, और दूसरा ये है कि आप मतलब अच्छे लोगों से ही संपर्क रखना है।
0: ओके।
1: अच्छे लोगों से संपर्क रखना है तो हमारे यहाँ जो है हमारे पूर्वज कहा करते थे, हम अपनी दुकान में बैठा करते थे तो हमारे पिताजी को कहते हैं संगत ही गुड़ उपजे, संगत ही गुड़ जाएं, और बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाएं। तो यह संगत का असर है।
0: बेहतर से जो लोग हमारे जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं ऐसे लोगों से ही हम अपना व्यवहार रखें।
1: तो आपका समय भी पास होगा, आपकी जो है अवगुण नहीं आ पाएंगे, आपकी जो है संगति खराब नहीं हो पाएगी।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए रेडियो मधुबन पर आज, अपने अपने जीवन के बारे में जो भी बातें शेयर की
1: जी।
0: एक साधारण ग्रामीण परिवेश में आपने जन्म लिया लेकिन अपने पुरुषार्थ से आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करके आपने सरकारी नौकरी प्राप्त की और पारिवारिक जीवन में भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि कोई भी व्यसन आप ना लें ताकि बच्चों को भी अंदर ये सब चीज़ें ना आए। और स्वास्थ्य के बारे में भी आपने बहुत ही अच्छी धारणाएं बना रखी हैं कि कैसे आप एक्सरसाइज करते हैं और मन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा साहित्य पढ़ते हैं जिससे आप अपना जीवन बेहतर बना पाते हैं
1: जी।
0: तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, और आज हमारे साथ बने हुए दीनदयाल वर्मा जी। दीनदयाल जी जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दोस्तों को?
1: दोस्तों को हमारा मैसेज यही है कि वो अपने जीवन में आध्यात्म को लेके चलेंगे तो बुराइयों से दूर रहेंगे, और किसी न किसी प्रभु की आराधना अवश्य करें। किसी अच्छे बड़े लोग रहे हैं जैसे B.R. अम्बेडकर रहे, तो उन्हें ही कहा कि शिक्षा ही हमारे जीवन में आगे बढ़ने का, हम अपने बच्चों को बढ़ा सकते हैं, खुद बढ़ा सकते हैं। कोई मेहनत मजदूरी करके अच्छा इंसान नहीं बन पाया है, तो मेहनत का अपनी जगह अलग रोल है, क्योंकि मेहनत नहीं करेगा किसान तो हम लोग खाएंगे क्या
0: जी। बिल्कुल।
1: लेकिन कहने का मतलब है कि अगर वो किसान आज ऐसे फार्मर हैं जो अपनी खेती भी कर रहे हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और उनके बच्चे जो है वैज्ञानिक और यानी बड़े बड़े पदों पे जा रहे हैं, कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई जो है लेबर क्लास का आदमी जो है, बहुत सारे रिक्शे वालों के बच्चे जो है IAS PCS और वैज्ञानिक हैं। मेरे खुद जो है रिश्ते में एक दो ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे जो है बहुत आगे
0: अपने तो, पुरुषार्थ के बल पे और बहुत क्षमता के बल पे पहुंच गया है। तो मतलब कि ये है कि कोई परिस्थिति में हमको हार नहीं मानना है, आगे बढ़ने के लिए अपना एक प्रयास जारी रखना।
1: वो कहते हैं ना मतलब सफलता ही जो है कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम प्राप्त ना कर सकें अगर हम उसका प्रयास करें। असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ।
0: तो दोस्तों आपने बहुत ही अच्छी प्रेरणा ली होगी आज कार्यक्रम सलामी जिंदगी से। हमारे साथ दीनदयाल वर्मा जी थे उत्तर प्रदेश झांसी से, और सलामी जिंदगी के इस एपिसोड में उन्होंने अपने जीवन के चार अलग अलग पहलुओं पर बात की, चाहे वो उनका बचपन, युवा काल, वैवाहिक जीवन और वर्तमान जीवन। सर कुछ ऐसे श्रोता सुन रहे होंगे जो आपकी उम्र के होंगे, तो उनको उन्होंने कई लोग रिटायरमेंट लिए होंगे, कुछ लोग बिजनेस से होंगे, किसी को शारीरिक चुनौतियां होंगी, मानसिक चुनौतियां होंगी, उन्हें क्या कहना?
1: वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसको हर एक को इसको जो है इससे गुजरना
0: जी,
1: और इसको जो है चाहे हंस के गुजार लो चाहे रो के गुजार लो। हंस के गुजारोगे तो आपका जो है जीवन सुखमय कटेगा, और बीमारियां ऐसी चीज है कि व्याधियां तो हर व्यक्ति को घेर लेती हैं बुढ़ापे में
0: जी।
1: कोशिश ये करिए कि आप उन व्यसनों से दूर रहने वाली बीमारियों से ना घिरे। दूसरा पहलू ये है, आप बुराइयों से दूर तभी रह सकते हैं जब आप बुरे लोगों के बीच में ना पहुंचे, उनसे दूरी बना के रखें कि किसी भी परिस्थिति में जीवन को कठिन परिस्थितियों में रत रहते हुए भी शांति का परिचय दें, कभी क्रोध ना करें, तभी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, हंसमुख जीवन जिए, उल्लासपूर्वक किसी कोशिश करें कि किसी को आपकी वाणी से कष्ट ना हो।
0: ये तो एकदम दुआओं कमाने का रास्ता आपने बताया है सबको, बहुत ही अच्छी प्रेरणाएं आपने समाज के हर वर्ग को दी आज इस प्रोग्राम के माध्यम से, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर पधारे और हमारे सभी श्रोताओं को आपने अपने जीवन के उन छोटे छोटे उसूलों से
1: जी
0: प्रेरित किया, जिसको धारण करके वो भी अपना जीवन आपकी जैसा श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो दोस्तों, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कार्यक्रम सलामी जिंदगी में।

0: नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और आज के आपके फेवरेट शो को लेकर आया हूँ फिर से आपके बीच। और शो का नाम है जुनून, और आप मेरी आवाज पहचान ही रहे होंगे। मैं आपका दोस्त और आज के शो का होस्ट शरद, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। और आप इसे सुन सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन पर। और मेरे साथ है आज एक फिर से एक नए जुनून के साथी, और उनका जुनून है रूरल डेवलपमेंट, उनका जुनून है ट्राइबल वेलफेयर, उनका जुनून है रेडियो कम्युनिकेशन, और इसके साथ साथ उनका जुनून है कि वो कैसे अपने जीवन के माध्यम से दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वो बादल फिल्म का गीत आपको याद है ना, खुद के लिए जिए तो क्या जिए, तो वही बात है। और ऐसे ही जुनूनी जो इस गीत को सच्चा साबित करते हैं, हमारे साथ हैं विनोद। विनोद, आपका स्वागत है हमारे रेडियो शो में। आप तो जानी बानी आवाज हैं और मुझे लगता है श्रोता आपको जानते भी होंगे। जी विनोद
1: जी, बिल्कुल, रेडियो मधुबन से मेरा पुराना रिश्ता है और मेरी शुरुआत जो है वो रेडियो मधुबन से ही हुई है, क्योंकि रेडियो मधुबन में से ही मैंने बहुत कुछ सीखा और अपने जीवन में भी अपनाया, और अब अपनाते हुए जो है वो मेरे अपने समाज के लिए काम कर रहा हूँ।
0: जी, आपसे शुरुआती दौर की बातचीत में मालूम चला, और साथियों बता दूं कि दुनिया के नक्शे में जब कोटड़ा में भूख से कुछ मौतें हुई थी कुछ सालों में, और इसके बाद लोगों ने जानना शुरू किया, सरकारें जागी, प्रशासन चेता, और लोगों को मालूम चला कि क्या हमारे देश में एक ऐसा इलाका भी है जो इतना पिछड़ा हुआ है। कोटड़ा उस तहसील का नाम है जहाँ से विनोद आते हैं, और कोटड़ा की आबादी आदिवासी आबादी है, वो आदिवासी बहुल क्षेत्र जिसके बारे में हमारे संविधान निर्माताओं ने विशेष प्रावधान किए हैं, और इन विशेष प्रावधानों के बावजूद आजादी के इतने सालों बाद भी उस इलाके का विकास ना हो पाना, उसका ह्यूमन इंडिकेटर उसके पीछे रह जाना, हम सबको सब सोचने पर मजबूर करता है। और विनोद से हम चर्चा करेंगे इस इलाके के बारे में, आदिवासी जनजीवन के बारे में और ग्रामीण विकास के बारे में, विनोद की क्या योजना है। तो विनोद, आपको ये जुनून कैसे लगा कि आप आदिवासी समाज में काम करना चाहते हैं, आदिवासी समाज के मानव इंडिकेटर से, ह्यूमन इंडिकेटर से उनके विकास की बात करते हैं, ये विचार कहाँ से आया, ये जुनून कहाँ से आया?
1: जी, वो कहते हैं ना कि स्कूल में जब पढ़ाई कर रहे होते तो आसपास बहुत कुछ दिखता है, और मेरी जो पढ़ाई है वो आधी गुजरात में हुई और आधी राजस्थान में। तो 10 तक जब मैं पढ़ रहा था गुजरात में, मैंने 11-12 जो है वो आबू रोड में एडमिशन हॉस्टल में लिया, जो कि रेडियो मधुबन के थोड़ा सा सामने ही है, और उसी के जरिए मैं रेडियो मधुबन से भी कनेक्ट हुआ 2011 के बाद से, जब मैं 12वीं में या फिर 11वीं में था तब जुड़ा था, और वहीं से फिर मुझे लगा। और मेरे अंदर ये तो बहुत सारी कविताएं हैं, गीत है या फिर जानकारी है, वो इकट्ठे करने का शौक था और इकट्ठी करके जानकारी रखता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसको मैं करूंगा क्या या फिर बाद में काम आएगी, केवल यही एक मुझे लग रहा था मन में। लेकिन रेडियो मधुबन के टीम जो है वो हमारे हॉस्टल में स्कूल में आते थे, तो उन्होंने जो कार्यक्रम वहां पर किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से कोई रेडियो में आकर बोलना चाहता है तो बोल सकता था। मुझे उस समय कुछ पता नहीं था कि रेडियो में कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, लेकिन जब मैं पहली बार गया तो फिर मुझे बताया गया, और उस समय मुझे ये याद नहीं कि मैंने क्या प्रस्तुत किया था, लेकिन मेरे पास प्रस्तुत करने के लिए कविताएं थी, कहानियां थी, और जो जानकारी अखबारों में आती है वो इकट्ठी कोई वो थी जो मैंने प्रस्तुत की थी। और फिर धीरे धीरे रेडियो मधुबन से जुड़ा, और उस समय मैं अपने गांव में नहीं रहता था, मेरा एक घर गुजरात में भी है जहां पर मेरे मम्मी पापा रहते थे, तो गांव में नहीं रहता था, तो जब मैं गांव में नहीं आता था लेकिन रेडियो मधुबन से जुड़ा तो गांव में आ गया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि हमारे गाँव में जो है वो बिजली नहीं थी, और गांव के अंदर बोर्ड लग चुका था कि विद्युतीकरण हो चुका है, तो फिर मुझे लगा कि बिजली लाने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले सरपंच को लेटर लिखा कि हमारे गांव में बिजली नहीं है लेकिन बिजली का बोर्ड लग गया है, तो वो बिजली आनी चाहिए। और फिर सरपंच ने कुछ नहीं किया, 7 दिनों के बाद फिर मैंने वो जो लेटर है उसको अटैच करके विकास अधिकारी के नाम से लिखा, पीडीओ को, बीडीओ ने भी 7 दिन तक कुछ नहीं किया, फिर सीधा मैं कलेक्टर के नाम से लेटर लिखा और सरपंच वाली विकास अधिकारी वाली वो एप्लीकेशन ले जाकर कलेक्टर ऑफिस में दी। लेकिन कलेक्टर ऑफिस में उदयपुर जब मैं गया मिलने के लिए तो उधर पहले लिख के देना पड़ता है पर्ची में कि मिलने के लिए कौन कहां से आया है। तो जैसे ही वहां पर जो पीओन या फिर जो भी होगा उन्होंने देखा कि कोटड़ा से आया है तो मुझे फिर कलेक्टर से मिलने दिया। और उस समय कलेक्टर से क्या बात हुई ये मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ महीनों के बाद जब मैं वापस आबू रोड चला गया था लेकिन मुझे फोन आता है कि गांव में बिजली का काम शुरू हो चुका है। तो वो एक पहली शुरुआत थी, गांव के अंदर बिजली नहीं है और बच्चे पढ़ना चाहते हैं क्योंकि दिन में काम करना पड़ता है, रात को अगर पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ सके। तो वो एक पहली शुरुआत थी लाइफ का, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर बिजली लाने की स्टार्टिंग की और उसके बाद फिर हैंडपंप के लिए भी प्रयास किया। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था लाइफ का, काम का। और उसके बाद फिर रेडियो से जुड़ने के बाद तो बहुत सारे कई जो प्रोजेक्ट रेडियो के थ्रू भी चले। और एक और चीज की मैं भील समाज से आता हूँ तो मेरी अपनी भाषा तो मैं जानता था भील भाषा में बात करना, और आबू रोड एरिए में ग्रासे समुदाय के लोग रहते थे उनकी भाषा हालांकि मिलती जुलती है लेकिन अलग थी। तो मुझे वहां के रेडियो मधुबन की जो दीदी है कृष्णा बहन जी, उन्होंने कहा कि आप अगर यहाँ की लैंग्वेज में लोगों के साथ बातचीत करेंगे तो ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। तो फिर जब गांव में जाकर लोगों से ग्रासे भाषा मुझे उस समय नहीं आती थी लेकिन फिर मैंने वो सीखा और स्टार्टिंग की लोगों के साथ बातचीत करना। तो और लोगों को भी लगा कि ये हमारा ही एक अंदर समाज का है और हम इसके साथ बातचीत कर सकते हैं, और लोगों को भी अपनापन लगने लगा। तो जैसे स्कूलों में जाता था, स्कूलों में रिकॉर्डिंग करना, गांव में जाके लोगों से उनकी खेती के बारे में बातचीत करना, उनके जीवन के बारे में, वो लोग कैसे रहते हैं या फिर उनका जो भी गांव की जैसे समस्या है, सड़क की है, पानी की हो गई, बिजली की हो गई, तो जब वो लोग अपनी भाषा में बातचीत करके रिकॉर्डिंग करवाते थे तो उन्हें एक अलग खुशी होती थी। समस्या का समाधान तो शायद सेकंड नंबर पे था, पहला तो उन्हें ये लगता था कि कम से कम हमारी बात जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, और जब वो लोग शाम को सुनते थे तो उन्हें एक अलग ही खुशी होती थी। और इस वजह से वहां के लोगों के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ, जो कि वो जो जुड़ाव तब हुआ था वो जुड़ाव आज तक है। और केवल वहां नहीं, आबू रोड में मेरे अपने कोटड़ा में भी बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े और एक अलग ही पहचान छोटी सी उम्र में। और मुझे उस समय इतना ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि जब मैं रेडियो में था तो अपनी एक अलग पहचान बनी थी और वही पहचान आज भी मेरे बहुत काम आती है। और उस रेडियो में ही रहते हुए मैंने साइकिल चलाना सीखा, जो साइकिल चलाना तब सीखा जो कि आज भी मैं साइकिल ही चलाता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। और उधर के गांव में साइकिल चला के जाके लोगों के बीच रिकॉर्डिंग करना ये होता था। और यहाँ के कोटड़ा के तो लोग ये बोलते हैं कि साइकिल वाला आया, साइकिल वाला लड़का, मतलब वो खुशी ही अलग है
0: जी।
1: आज भी मुझे अंदर लगता है कि नहीं, मतलब वो कहते हैं ना कि जीवन होना तब सफल होता है जब आप कुछ कर पाते हैं। एक तो है कि सोच कर कुछ करना और ऑटोमेटिकली आपके सामने कुछ हो रहा है और आप करते जा रहे। मेरे साथ वैसे हो रहा था, और कभी लगा नहीं कि मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, मतलब बस अपने जीवन को जी रहा हूँ और जो जरूरी लग रहा है ना वो कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बदलाव हो रहा है ऐसा कभी ये नहीं कि मतलब मैं बदलाव के लिए कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो रहा, बदलाव की जरूरत है और मैं कर रहा हूँ ऐसा
0: जी। ये बदलाव कैसा था, ये जुनून किस तरह के बदलाव के लिए?
1: वो जो बदलाव है कि जैसे लोगों की एक प्रॉब्लम है कि अगर पानी की समस्या है तो रेडियो में लोग अपनी बात रख पा रहे मेरे जरिए, और मुझे ये लगता था कि हाँ रेडियो में बात जाएगी, प्रशासन तक जाएगी, कहीं ना कहीं तो समाधान होगा ही। और जैसा कि गांव के अंदर सरपंच से भी तो मुलाकात होनी ही है, अगर गांव के लोग बता रहे कि ये समस्या है तो सरपंच भी समस्या के समाधान के लिए शायद कुछ प्रयास करेंगे, क्योंकि वो कम्युनिकेशन उसी समय या ऑन द स्पॉट या फिर बाद में भी हो पा रहा था, क्योंकि सरपंच को भी पता चल रहा था कि लोगों की समस्या है। अगर रेडियो पे जा रही है तो गांव की एक अच्छी इमेज या कैसी इमेज जाएगी अगर समस्या रहती है तो
0: जी। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो विकास का बदलाव की जो बात आपसे हो रही है, हम ये चाह रहे हैं कि बदलाव किस दिशा में है, अगले 20 साल बाद आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं अपने इलाके में
1: जी। मैं हालांकि एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, हालांकि लाइफ में अब थोड़ा सा मुझे अभी जून महीने में ही एक वर्कशॉप कहूँ या फिर कार्यशाला कहूँ संविधान प्रचारक की हुई, उसको मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद थोड़ा एक और नजरिया बदला है। उससे पहले मेरा नजरिया ये था कि जहां जहां आदिवासी समुदाय है, और एक और पॉइंट ये था कि जो पीड़ित लोग हैं उनको जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है वो मिले, लेकिन मुझे ये लगता है कि भारत के जितने भी लोग हैं और जिन लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है वो सुविधाएं उन्हें मिल पाए, क्योंकि उन सुविधाओं को दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में और उनके साथ जितने भी संविधान निर्माण करता आया थे या फिर जो भी उनका सहयोग करने वाले थे उन लोगों ने इतना प्रयास किया कि संविधान बने हुए जितना टाइम हुआ है 1950 में बना, लेकिन आज भी उन संविधान में इतना कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, और वो जो सारे नियम और वो सुविधाएं लोगों को अब भी अगर कहा जाए तो अगर वो सारी सुविधाएं मिल जाती है तो बेहतर होगा। और वो सारी सुविधाएं एक तो मूलभूत सुविधाएं जो है रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा एजुकेशन है, क्योंकि जितने अधिकार संविधान में दिए हैं वो सारे इंसान की अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। केवल मैं पहले ये सोचता था कि आदिवासी समुदाय और पीड़ित पक्ष, लेकिन अभी मैं ये सोचता हूँ कि भारत के वो सारे लोग जिन्हें ये सब सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जो कि एक व्यक्ति के जीवन में उपयोगी होनी चाहिए वो मिल पाए।
0: जी, तो युवाओं को जब आप चलते हैं कि आपने जब एकला चालों को थामा है तो एकला चालों के आपकी गति के साथ और लोग जुड़े हैं आपसे, युवाओं ने कैसी प्रतिक्रिया दी आपको आपके क्षेत्र में?
1: हाँ, जैसे कि आपने एकला चालो की बात की, तो जब मेरे अपने खुद के कोटड़ा टाइम्स की मैं बात करूँ तो जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तब इसका नाम भी कुछ और था कि आदिवासी क्षेत्र की जो खबरें वो लोगों तक पहुंचे, और मैं अकेला ही जहाँ कहीं कुछ घटना हो जाती है खुद चले जाता रिकॉर्डिंग करता। कई बार तो लोग ये भी कहते कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, हमारा कुछ गलत कर दोगे, तो खतरे जैसे भी डर लगते थे, क्योंकि अगर कहीं पर हमारे आदिवासी क्षेत्र में एक मौताना नाम से प्रथा है और अगर किसी का मर्डर हो गया तो फिर वो लाश जो है वो बहुत दिनों तक रहती है और जब तक उस लाश का फैसला नहीं होता वो रहेगी ही। और अगर मैंने एक पक्ष की बात रिकॉर्ड करके उसको YouTube पे चला दिया और दूसरे पक्ष की बात को रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर ऐसा भी हुआ है कि एक जगह पर मैं गया हूँ तो वहां पर लोगों ने मुझे कहा है कि हम अपनी बात नहीं रखना चाहते, लेकिन उन लोगों को मैंने समझाया कि अगर आपकी बात को मैं रखूंगा तभी तो लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में क्या हुआ था, और उसके बाद फिर मैं दूसरे पक्ष के पास भी गया और उनकी भी बात को रिकॉर्ड किया। तो इस तरीके से जो शुरुआत हुई तब मैं अकेला था, और उसके बाद धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं हम भी इनके साथ जुड़े, और वो भी फिर अपने क्षेत्र की खुद की जो खबर है वो देने लगे। और एक और मैं बताऊं तो मेरे साथ एक मेरा साथी था प्रकाश डामोर करके, तो पहले वो मेरे साथ काम करता था, कुछ कारणवश डिस्कनेक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद वापस जिस तरीके से मैं अपना खुद का चला रहा हूँ कोटड़ा टाइम्स, वैसे उसने भी अपना खुद का चैनल स्टार्ट किया और वो अपने क्षेत्र में काम कर रहा है जैसे गुजरात के दांता तहसील करके वहां पर। तो मुझे लग रहा है कि जो यूथ मेरे साथ जुड़े थे वो पहले केवल मेरे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन वो अब एक साथ 3-4 मीडिया के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, केवल गांव की जो खबरें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, इसके अलावा वो दूसरा भी काम करते हैं जिसके जरिए उनकी अपनी इनकम भी होती है। और जो लोग कोटड़ा टाइम्स के साथ जुड़े थे वो सारे वॉलेंटियर थे, और वॉलेंटियर इसलिए थे क्योंकि मेरी अपनी जो सोच थी वो ये थी कि आदिवासी समुदाय जो है वो अपना खुद का विकास कर सके, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो लोगों तक पहुंचा सके। और इसको शुरुआत करने के पीछे एक कारण ये था कि हमारी जो अपनी खबरें हैं मैं अगर दूसरे मीडिया को देता हूँ मेन स्ट्रीम को तो वो उनका मन होता तो या तो आगे उनको जगह मिल पाती तभी वो खबरें छपती थी, और इस कारण क्या होता था कि वो खबरें प्रशासन तक भी नहीं पहुंचती थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसके लिए खुद का ही होना चाहिए ताकि मैं उसको अपने मेन स्ट्रीम में डालूं। और आज ऐसा टाइम है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं वो मेरे पास न्यूज मांगते हैं कि आप गांव की अपनी जो खबरें हैं वो हमें भेजिए।
0: तो आपके इस टाइम्स में आपके अखबार में, क्योंकि कहते हैं ना कि यदि लोगों तक पहुंचना है तो अखबार निकाल, तो ये बात है। और गांधी जी ने तो कितने सारे अखबार चलाए, भगत सिंह जी ने काफी सारे अखबार निकाले, तो हर क्रांतिकारी का अपना अखबार रहा है। आपके अखबार में कितने लोगों की टीम है और क्या छपता है?
1: मेरा अखबार तो नहीं है, कोटड़ा टाइम्स जो है वो एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल है और यूट्यूब चैनल है कोटड़ा टाइम्स के नाम से, और शुरुआत में इसमें 11 लोग थे, सारे वॉलेंटियर थे। अभी कुल 5 लोग हैं, वो वॉलेंटियर हैं और अपने अपने क्षेत्र की न्यूज भेज रहे हैं। और फ्यूचर में तो ऐसा भी प्लान है कि जो कोटड़ा टाइम्स, यानी कि उसके अंदर केवल कोटड़ा की न्यूज नहीं आ रही है, क्योंकि जैसे आबू रोड हो गए, जितने भी आदिवासी क्षेत्र आसपास के हैं, करीबन 6-7 तहसील और 4-5 जिले हैं, उनको मैंने शामिल किया हुआ है।
0: आप इस कम उम्र के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं विनोद जी?
1: मैं शुरुआत रेडियो मधुबन की बात से करना चाहूंगा, क्योंकि रेडियो मधुबन में रहते हुए ही बहुत सारे जगह ट्रेनिंग में भी गया, उस दौरान मैंने बहुत सारी चीजों को सीखा और समझा है। और रेडियो में रहते हुए ही मैंने कैसे लिखना है, कैसे ऑडियो एडिटिंग करनी है, कैसे वीडियो एडिटिंग करनी है, ये सब कुछ सीखा था। अगर रेडियो मधुबन नहीं होता तो शायद मुझे नहीं लगता है कि मैं आज जिस मुकाम पर हूँ, अपना खुद का चैनल बनाया है और लोगों का इंटरव्यूज ले पा रहा हूँ। और मुझे ऐसा कभी लगा नहीं था कि बड़े पोस्ट पर व्यक्ति का इंटरव्यू लेना सामान्य होगा, लेकिन आज मैं आराम से अगर कोई भी बड़े पोस्ट का व्यक्ति है तो उससे मिलके उसका इंटरव्यू ले सकता हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट पर काम किया, तो रेडियो में रहते हुए जितने जो प्रोजेक्ट थे, जो कि आदिवासी समुदाय को लेकर भी कुछ बनाए थे, एक तो पेशा एक्ट की जानकारी वाला था जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, और उसमें टोटल 11 शक्तियां थी और उनके ऊपर आदिवासी भाषा में गीत, आदिवासी स्टोरीज बनाई गई और आदिवासी नाटक उसमें कार्यक्रम के लिए शामिल किए गए। और इसके अलावा जो है वो वहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए बाल विवाह के ऊपर भी काफी सारे कार्यक्रम किए थे। और उसके बाद जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप की जागरूकता, तो आबू रोड में और कोटड़ा में दोनों जगह आदिवासी समुदाय भील और ग्रासिया दोनों में ये देखने में मुझे उस समय लगा था, अब भी है लेकिन अब थोड़ा वो कम हुआ है क्योंकि एजुकेशन बढ़ा है इसीलिए, तो तब उसकी जागरूकता की कोशिश की गई थी। और इसके अलावा जो है वो एक जो सामाजिक कुप्रथा है उसको लेकर ही पूरा एक अभियान चलाया गया था, जैसे कि जो मैंने स्टार्टिंग में बात की लिव इन रिलेशनशिप, कुप्रथा, नशा मुक्ति और बाल विवाह तो नहीं होते थे, लेकिन अगर हो भी रहे हो तो उसकी जानकारी

0: कार्यक्रम का नाम रखा था मेरी आवाज आदिवासियों की पहचान, इस नाम से था और वो पूरा आदिवासी भाषा में ही था। और उसके जो गीत है वो उस समय रिकॉर्डिंग किए गए थे और कई बच्चों को कैसे गीत बनाने हैं उसकी भी जानकारी नहीं थी, मुझे खुद को भी नहीं थी क्योंकि मैं भी गांव में ज्यादा नहीं रहता था। लेकिन मैंने खुद ने भी फिर गानों को सीखना शुरू किया और लिखना शुरू किया और फिर जो बच्चे ऑडिशन में सिलेक्ट हुए फिर राउंड में आए उनको फिर मैंने देशभक्ति गीत है, संस्कृति का गीत है, प्रकृति का गीत है, वो सब कुछ कैसे लिखना है वो उन्हें गाइड करके करवाया और फिर ये कार्यक्रम किया। और वो कार्यक्रम जब मैंने रेडियो में किया तो उसके बाद जैसे ही मैं रेडियो से 2017 में गांव लौट जाता हूँ उसके बाद फिर मैंने अपने ही क्षेत्र में यहाँ की स्कूलों के साथ एक दूसरा नया कार्यक्रम डिजाइन करके करवाना शुरू किया था। हालांकि कोरोना आने की वजह से फिर वो बीच में ही अटक गया था, लेकिन शुरुआत जो है वो हो चुकी थी। और वो कहते हैं ना कि जब एक रास्ते पर चलते हैं तो चुनौतियां तो आती ही है और उन चुनौतियों के बीच में जो है वो प्रयास जो है वो जारी रहते हैं लेकिन धीरे धीरे जारी रहते हैं। तो हालांकि काम तो उस समय सिंगिंग का ये सब कुछ रुक गया क्योंकि मैंने एक ये भी सोचा था कि हमारे जो आदिवासी अपने गीत है वो ये जो टैक्सी वगैरह चलती है उसमें भी बजने चाहिए। तो उस समय मेरी कल्पना थी और मैंने ऐसा तो कभी सोचा नहीं था कि वो टैक्सियों में गीत बजेंगे क्योंकि जब भी मैं टैक्सियों में गुजरता था तो हिंदी गाने, गुजराती गीत यही बजते थे। और आज ऐसा समय है कि आबू रोड में भी और हमारे इस एरिया में भी और गुजरात का भी जो आदिवासी एरिया है वहां पर हमारे आदिवासी कलाकारों के जरिए आदिवासी गीत जो है वो प्ले हो रहे हैं म्यूजिक वाले। तो वो भी एक बदलाव मेरी वजह से तो नहीं आया लेकिन आया है ये मैं देख पा रहा हूँ।
1: जी मेरे रेडियो के साथियों, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन और फ्रीक्वेंसी है 107.8 FM और हमारे साथ हैं एक युवा जुनूनी विनोद। और विनोद ने अपनी यात्रा, अपने जुनून के बारे में भी कुछ कुछ बातें हमसे की हैं, लेकिन हम उससे उसके बारे में विस्तार से समझना चाहेंगे विनोद से। और विनोद से जानना चाहेंगे, विनोद आदिवासी समाज में कौन सी कुरीतियां हैं जो अभी भी युवाओं के मध्य हैं और उनके विकास में क्या महत्वपूर्ण बाधा आपको लगती है और सरकार उसमें कैसे सहयोग कर सकती है?
0: तो मैं अपने जितने भी रेडियो मधुबन के श्रोता हैं उनसे कहना चाहूंगा कि मोहताना जो है वो आदिवासी समाज में बहुत पहले से चलती आ रही एक ऐसी परंपरा है जिसके कारण लोगों को अपने घर बार छोड़ के चले जाना पड़ता है। और इसका अर्थ ये होता है कि मौत का मुआवजा, यानी कि किसी की मौत हो गई है तो उसका मुआवजा देना, यानी कि जब तक उस मौत का मुआवजा नहीं मिलेगा, पैसे नहीं दिए जाएंगे तब तक वो जो लाश है वो नहीं उठाई जाएगी। और मौत होने का कारण कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति की अपनी पत्नी है, डिलीवरी हो रही है उसकी और अचानक उसकी मौत हो गई तो उसके पीर पक्ष के जो लोग हैं वो उसके पति से पैसे की मांग करेंगे और जब तक पैसे नहीं दिए जाएंगे तब तक वो जो लाश है वो या तो अंतिम संस्कार के लिए नहीं लेके जा सकते हैं, पोस्टमार्टम वगैरह भी नहीं होगा। इसके अलावा इसमें ऐसा भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के खेत में है खड़ा और सांप ने काट लिया और वो खेत किसी और का हुआ तो जिसका खेत है उसको मौत का मुआवजा भरना पड़ेगा। और अभी रिसेंटली हमारे एरिया में एक केस हुआ था जिसमें जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई उसकी मृत्यु बिजली के संपर्क में आने से हुई, बिजली लगने से, तो उसका जो मुआवजा है वो सरकार से मांग की लोगों ने और सरकार को उसका मुआवजा भी देना पड़ा। तो तब तक कुछ नहीं होता है जब तक लाश को उठाया नहीं जाता, ये है मोहताना। और ये जो परंपरा वो पहले से चलती आ रही है, अभी भी चल रही है और इसे रोकने के लिए समाज के जो जागरूक लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, वे भी प्रयास कर रही हैं लेकिन इतनी सफल नहीं रही। और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब मैं रेडियो में था तब कोटड़ा SDM कार्यालय से मुझे इसी के लिए सम्मानित किया गया था, मोहताना की कुप्रथा को हटाने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है इसीलिए, और मैं अभी भी ये देख रहा हूँ कि ये अभी भी लग रही है। तो वो सम्मान मुझे नहीं लगता है कि सही था। और क्योंकि केवल प्रयास करने से ये नहीं हो रहा है, हर एक इंसान के अगर ये अंदर ये जागरूकता आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जागरूकता कुछ नहीं आई है। अभी जैसे एक रिसेंटली केस मैंने बिजली वाला बताया तो एक केस ऐसा है जिसमें बाइक और टैक्सी का एक्सीडेंट होता है जिसमें टैक्सी वाले ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है लेकिन जो दूसरा परिवार होता है वो सामने वाले पक्ष को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है और उनसे वो बात करता है कि जो बीमा राशि है उसके जरिए इसका समाधान किया जाए।

0: क्योंकि अगर मौताना की बात भी होती है हमारे समुदाय में, तो केवल इतना होता है कि 1,50,000 या फिर 50,000 केवल राशि दी जाती है। बाकी अगर 14-15 लाख या 3 लाख की बात भी होती है तो वो राशि टुकड़ों में बटती है, लेकिन जो पीड़ित परिवार होता है उसको नहीं मिलती है। एक और बात ये कि मौताना में ऐसा भी होता है कि अगर किसी दूसरे गांव के व्यक्ति का मामला है तो दूसरे गांव के जो लोग हैं वो उस गांव पे जाके चढ़ाई भी करते हैं, यानी कि पूरा गांव खाली भी हो जाता है। उस गांव के अंदर जो परिवार होता है वो परिवार, या फिर उस परिवार के अंदर भी जो उसी जाति के लोग होते हैं, उन लोगों को पूरा अपना घर बार छोड़ के चला जाना पड़ता है। दूसरा पक्ष आके लूटपाट करता है, घर बार तोड़ देता है। और रिसेंटली ऐसा ही केस गिरवर में 1 महीने पहले देखने को मिला है। पुलिस भी वहां पर थी लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई और पूरा घर जो है वो तोड़ दिया गया था। तो बदलाव की काफी जरूरत है। ये जो एक प्रथा है वो अभी भी चल रही है।
1: तो इसके लिए आपने क्या अभियान शुरू किया और कैसे आपने युवाओं को जोड़ा इस प्रथा को रोकने के लिए?
0: स्टार्टिंग में जब किया था तो गांव में जाकर मीटिंगें करते थे और लोगों को इकट्ठा करके उन्हें इस बारे में बताते थे, और सामाजिक संस्था के साथ भी मिलकर इसके लिए प्रयास किया। और प्रयास ऐसे थे कि उसमें हम लोगों को इकट्ठा करके केवल हम नहीं बात करते थे, लोगों से ही पूछते थे कि अगर ये चीजें घट रही है तो इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है। और उन बातचीत में लोग ये भी बताते थे कि कैसे एक गांव पूरा खाली हो जाता। मैं जहाँ रहता हूँ वहां पर तो गांव के अंदर बहुत सारे घटनाएं घटी हुई है। लोग गए हैं 10-10, 12-12 साल से और उनकी पीढ़ियां भी निकल गई, वो दूसरी जगह बाग की खेती में जाकर रह रहे हैं। तो ऐसी भी घटनाएं हैं। और जो आपने पूछा युवाओं को जोड़ने की बात, तो युवा उस समय जुड़ा था, और वो युवा जुड़ा था जो पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज कर रहा है। और वो सारे युवा उस समय मेरे साथ मिलकर, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि अपना खुद का दुकान थी, बिजनेस था, वो भी मिलकर साथ में जागरूकता का काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही फिर मैं पीछे हटा, और पीछे हटने के पीछे कारण ये था कि मेरे अपने परिवार में भी मेरे पापा की तबीयत खराब हुई, तो फिर मुझे घर आना पड़ा और फिर मैंने एक कदम पीछे लिया। तो फिर जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग थे वो भी डिस्कनेक्ट हो गए, क्योंकि सबकी अपनी एक जिंदगी होती है। और जो युवा जुड़े हुए थे वो खुद का अपने बिजनेस नौकरी में भी चले गए। अभी इस प्रथा के ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो कुछ संस्थाएं काम कर रही है। और मैंने ये भी देखा है कि जो सरकार की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी लोगों में जागरूकता लाने के लिए बैठकें आयोजित कर रहा है, और कोशिश ये करता है कि अगर ऐसी कोई घटना घट जाए तो उस घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाइश करता है, और जो भी मुआवजे वाली बात होती है वो बीमा के जरिए उन्हें दिलवाने की कोशिश की जाती है, ताकि जान हानि एक तो हुई है लेकिन दूसरी ना हो।
1: जी, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक लॉजिक क्या है, मतलब इस बात को लेकर, इस परंपरा को इतने सालों तक लोग चला रहे हैं, मुआवजे का अपना एक स्थानीय कानून बना रखा है, जबकि देश दुर्घटना बीमा है, उसकी क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान है, न्यायालय के माध्यम से क्षतिपूर्ति भी होती है, इसका लॉजिक क्या है, इतने सालों से ये कैसे चल पा रहा है?
0: लोगों के चलाने के पीछे का लॉजिक यही है कि अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, अगर हमने सामने वाले पक्ष को जवाब नहीं दिया तो ये और ऐसी घटना कर सकता है। केवल इतना सा लॉजिक है, और लॉजिक जो है वो पहले से चलता आ रहा है। और इसमें ऐसा भी हो रहा है कि अगर मैं कोटड़ा रहता हूँ तो मुझे स्वरूपगंज जाना है या फिर कहीं भी जाना है, तो अगर कुछ उस समुदाय के लोग बीच में रहते हैं तो वो पूरा रास्ता भी बंद कर देते हैं, कहीं आने जाने भी नहीं देते, ये भी हो रहा है। और लॉजिक बस इतना सा ही है कि अगर हमने बदला नहीं लिया तो हमारे और किसी व्यक्ति को ये मार सकते हैं। जैसे राजा महाराजाओं का बदला लेने की जो भावना रहती थी, वो भावना मतलब अभी तक जितना मैंने रिसर्च किया है उससे समझ पाया हूँ।
1: तो ये परंपरा, ये व्यवस्था, ये पूरे क्षेत्र में है या कुछ पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का समुदाय के साथ ये समस्या है, ये परंपरा है?
0: केवल समुदाय में नहीं, अगर दूसरे समुदाय का भी व्यक्ति है तो उस समुदाय के व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा जाता। कि हालांकि होता यह है कि उसमें पुलिस का हस्तक्षेप रहता है, जिस वजह से वो दूसरे समुदाय को समुदाय नुकसान नहीं पहुंचा पाता, लेकिन ऑन द स्पॉट तो उस व्यक्ति को वो लोग नहीं छोड़ेंगे कि जो तुमने किया है उसकी तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। हालांकि जान हानि का नहीं करते, लेकिन पैसों की बात जो है वो पहले रहती है। और इसमें ये जो परंपरा चल रही है इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जो यहाँ के पंच है उन्हें उसमें 2 पैसे मिलते हैं, और सरपंच अपनी रोजगारी चलाने के लिए भी इसको चला रहे हैं, ये भी देखा गया है।
1: तो ये जो विवाद है ये पंचायत में का निर्णय लिया जाता है, पंचायत का समझौता करवाया जाता है, या ये है कोई भी पक्ष इसमें पक्षकार हो?
0: पंचायत में इसका निर्णय नहीं होता है, ये जो है वो गांव के सरपंच होते हैं, और गांव का सरपंच को हालांकि उसमें शामिल जरूर किया जाता है, लेकिन उस गांव के जो दूसरे लोग होंगे, उस परिवार से भी हो सकते हैं और उस गांव के भी लोग हो सकते हैं, वो लोग और दूसरे गांव के लोग, वो दोनों आपस में मिलकर इन बातों को समझाइश करते हैं। एक पक्ष बात करता है, फिर दूसरे पक्ष को सुनाने जाता है कि उस पक्ष का ये कहना है, और आपस में पूरे दिन चर्चा चलती है, पूरे दिन भी चर्चा हो सकती है, और ऐसा अगर एक दिन में चर्चा नहीं हुई तो 10 दिन भी चर्चा चलती है, और तब तक जो लाश है वो नहीं उठाई जाएगी ना पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन अभी तो पुलिस क्योंकि लाश ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, इसीलिए इसका निपटारा करने की कोशिश जो वो है वो जल्दी करती है। और ऐसे भी देखा गया है कि पुलिस कई जगह पर अगर एक्टिव नहीं होती है तो लाश जो है वो करीबन एक एक महीने तक भी रहती है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे मुद्दों को अपने चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचा है जहां पर करीबन 41 दिन तक लाश बर्फ की पेटी में रखी जा रही है, क्योंकि पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है, सामने वाले पक्ष पे कुछ कार्रवाई नहीं कर रही, ऐसा भी हो रहा है। और जब इन सब चीजों को चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, तब प्रशासन को लग रहा है कि नहीं इसमें हमारी भी बदनामी हो रही है, तब जाकर प्रशासन जो है वो एक्टिव हो रहा है। तो अभी तक अगर ये परंपरा चल रही है तो प्रशासन भी इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि लोगों की भागीदारी उसमें नहीं रहती है। और यहाँ के प्रशासन की बात की जाए तो फिर प्रशासन जो है वो दोनों पक्ष से निपटारा लोगों से ही करवाती है और उसका अपना बेनिफिट भी निकाल देती है, वो यही सच है। और फिर इस वजह से परंपरा जो वो चली जा रही है, क्योंकि पुलिस भी नहीं चाहती कि परंपरा खत्म हो जाए, क्योंकि उनकी अपनी रोजी रोटी है वो भी खत्म हो जाएगी। और ये एक्यूरेट बात है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस रिसेंटली चल भी रहे हैं, और अगर कोई नया व्यक्ति आ गया पुलिस डिपार्टमेंट में तो वो थोड़े दिन प्रयास करेगा कि ये बंद हो जाए, लेकिन फिर उसे समझ में आ जाएगा कि यहाँ की यही परंपरा है और इसे ऐसे ही चलाना होगा, तो फिर वो चलते ही रह रही है।
1: तो इस विकृत परंपरा को लेकर सरकार ने कोई कानून बनाया है या इसके लिए प्रशासन ने कोई नियम बनाए हैं जिससे कि इस पर रोक लगाई जाए?
0: प्रशासन ने तो नियम बनाए हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से आदिवासी जो समुदाय हैं उनकी अपनी परंपरा है और उनके अपने नियम है। एक तो रूढ़िगत परंपरा जो कि 5वीं और 6वीं अनुसूची में जिसका वर्णन है और पेश एक्ट में भी जिसका वर्णन है कि उनके अपने निपटारे जब वो खुद करेंगे तो पुलिस भी हस्तक्षेप करती है, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाती क्योंकि उनके अपने कायदे हैं। हालांकि समुदाय नहीं जानता है, उसके बावजूद भी उसके अपने निपटारे वो खुद करता है और इसीलिए ये नहीं रुक रहा है, और पुलिस ने भी कोई नियम जो है वो लागू नहीं कर पाती है।
1: आपको क्या लगता है पूरे इलाके में जिसमें आप काम कर रहे हैं, यहाँ के लोकल स्थानीय समुदायों की क्या चुनौतियां हैं?
0: स्थानीय लोगों की चुनौतियां तो अगर देखा जाए तो हालांकि आबरूड क्षेत्र में जो है वो एजुकेशन जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ की अधिकतर स्कूलों में टीचरों की कमी नहीं है। और कोटड़ा एरिया में देखा जाए तो यहाँ पर कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एक भी टीचर नहीं है, केवल जो पंचायत सहायक है उनके जरिए स्कूलें चल रही है, और स्कूल भवन नहीं है, बच्चे आ रहे तो वो किसी और भवन में बैठ रहे हैं, एक से लेकर करीबन 4-5 क्लासे जो है वो एक साथ बैठ रही है, रोजाना जो पीरियड होने चाहिए वो भी नहीं हो रहे। तो एजुकेशन की अगर ये हालत है तो कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। तो वैसे ही मैं जिस एरिया में रहता हूँ कोटड़ा एरिया में, यहाँ पर बांध बनाकर यहाँ के लोगों को विस्थापित करने के प्लान भी चल रहे हैं। प्लान विस्थापित करने के हैं, ये यहाँ के लोगों को लग रहा है और सरकार को लग रहा है कि वो दूसरी जगह के लोगों को डैम बनाकर पानी बचाकर रोक कर पानी पिलाना चाहती है। तो ये भी एक यहाँ पर चुनौती देखने को मिल रही है, और इसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे NGO काम भी कर रहे हैं कि शिक्षा से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहे। और जो बांध वाली बात की तो उसको लेकर मैं और मेरे साथ कुछ और लोग हैं जो अभी ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि डैम जो है वो यहाँ पर नहीं बने, क्योंकि 2 डैम बनने से करीबन 10-12 पंचायत के बहुत सारे लोग प्रभावित होने वाले हैं विस्थापित, और उनके पुनर रखने की वापस जो व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं की गई है। हालांकि उनको जमीन दिखाई गई है, लेकिन जिस तरीके से लोगों से वापस अनुमति भी लेनी चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो चुनौतियां तो यहाँ पर ऐसी है कि लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं को ही मतलब कंप्लीट प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर दूसरी चीजें तो उन्हें मिलने से ही रही। क्योंकि कई गांव में ऐसा कहा जा रहा है कि बिजली पहुंच गई है, लेकिन आज भी गांव के कुछ घरों में बिजली नहीं है, और कुछ बड़ी पोस्ट वाले जो लोग हैं उन्होंने अपने घर के पास से, हालांकि कहने का मेरा भावार्थ यह है, कुछ समय पहले मैंने एक न्यूज भी चलाई थी उसको लेकर, कि एक सरपंच है उनके घर बिजली कनेक्शन जा रहा है, लेकिन जहां से कनेक्शन जा रहा है उसके वायर ऊपर से जा रहा है लेकिन नीचे वाले घर में बिजली नहीं है। तो ये भी एक तरह से देखा कि सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पा रही है, या तो लोग उस सुविधाओं को लेने का तरीका नहीं जान पा रहा है, या फिर उनको सुविधाएं जो है वो नहीं दी जा रही है।
1: इस पूरी यात्रा में विनोद भाई आपने बताया कि आपने किस प्रकार से लोगों को जोड़ा है, मोहताना की जो परंपरा है, जो कुरीति है, उसको लेकर आपने अभियान अपने इलाके में चलाया है, आपने पुलिस और प्रशासन का भी साथ लिया है, लेकिन इस पूरे अभियानों के साथ आपने एक संविधान प्रचारक के रूप में भी काम कर रहे हैं, और एक फेलोशिप भी आपने कई प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, ये किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं? आपको लगता है ये सारे प्रोजेक्ट निरंतरता में हैं, या इनको हम ये एक दिशा में चलने वाली प्रक्रिया है जिससे कुछ बदलाव होने का संभव है?
0: जो प्रोजेक्ट है वो निरंतर अगर चलाया जाए तो चल सकते हैं, और उन्हीं के जरिए बदलाव भी हो सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जीवन में हर एक व्यक्ति के अपने टर्निंग पॉइंट आता है। जब तक मैं एक्टिव था, कुछ काम कर रहा था, तब तक यूथ भी जुड़ा हुआ था, वो भी करने के लिए प्रयासरत था। अभी मैं अगर अपनी जीवन की बात करूं तो मेरा पूरा जो शेड्यूल है पहले से अब चेंज हो चुका है। मुझे अपने समुदाय में जाने के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि अपनी खुद की एक अपनी शॉप है, सुबह स्कूल जाना, शॉप पे रहना, लोगों का ऑनलाइन कुछ काम है तो वो करना, और अगर मेरी अपनी लाइफ बदली है तो लोगों की अपनी लाइफ भी बदली है। और जो लोग पहले सोचते थे कि कुछ बदलाव होना चाहिए और कर रहे थे, तो वो जो बदलाव है वो मैं अभी सोच भी रहा हूँ, करने का प्रयास भी कर रहा हूँ, लेकिन जो तरीके हैं वो बदल गए हैं। पहले प्रोजेक्ट के रूप में हो रहे थे, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि सिस्टम में आना पड़ेगा आपको, तब जाके कुछ बदलाव होंगे। अभी जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहा हूँ, उनको बेसिक, मैं 8-9-10 के बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं संविधान प्रचारक की जो कार्यशाला थी उसमें जाके आया, मुझे खुद को समझ में आया कि संविधान जो है वो बहुत सरल है और हमें आसानी से समझ में आ सकता है और हमारे जीवन के लिए है। मैंने कभी ये महसूस नहीं किया था कि संविधान जो है वो हमारे जीवन के लिए है, मैंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, और मुझे केवल यही लगता था कि संविधान में हमारे अपने अधिकार है और कर्तव्य है। और कर्तव्य का ये मतलब है कि मुझे किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, और अधिकार का मतलब है कि मेरे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसके लिए आवाज उठा सकता हूँ। लेकिन संविधान के अंदर तो मुझे कैसे जीना है उसका भी वर्णन है, और मैं किसके साथ कैसा व्यवहार करूँ ये भी वर्णन है। तो अब मुझे लग रहा है कि अगर मेरा व्यवहार लोगों के साथ बदल रहा है तो ऑटोमेटिकली लोगों को भी समझ में आएगा कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। और अगर संविधान के मूल्यों को, वैल्यू को, लोग ऐसा नहीं कि संविधान के मूल्य इसीलिए उन्हें करना है, लेकिन अगर वो खुद उन चीजों को समझेंगे कि मुझे सबके साथ समान व्यवहार करना है, सबको अगर कोई चीज मिल रही है बेनिफिट तो मुझे जितना मिल रहा है उसको भी उतना मिलना चाहिए, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो कैसे इसका समाधान किया जाए ताकि किसी को ठेस नहीं पहुंचे, हानि नहीं पहुंचे। तो प्रोजेक्ट जो पहले थे वो हालांकि सीमित थे, लेकिन उन्हीं प्रोजेक्ट को अगर वापस भी स्टार्ट किया जा सके, लेकिन उनमें वैल्यूज को शामिल करके, वैल्यू के साथ साथ ये है कि लोग उसको महसूस कर सके, क्योंकि पहले केवल ये था कि चीजें खत्म हो रही है, संस्कृति खत्म हो रही है, इसलिए कार्यक्रम स्टार्ट किया सिंगिंग वाला, या फिर समाज में कुछ कुरीति है और वो बदलनी चाहिए इसीलिए कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन नहीं, लोगों को अपना जीवन एकदम सुंदर बने उसके लिए अगर ये सोच बना के अगर वापस ये सारी चीजें स्टार्ट की जा सकती है तो बदलाव होंगे। और ये मैं अपने से शुरुआत, जब से मैंने ये समझा है तब से मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, क्योंकि शॉप में रहता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, उनके साथ मेरा व्यवहार एक समान सा, या फिर वो लोग अगर दूसरे तरह का व्यवहार भी कर रहे हैं तो उन्हें कैसे वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी जानकारी वैसे देना ताकि वो जो व्यक्ति दूसरा उसे नहीं दे पा रहा है उससे भी वो उसी व्यवहार में बातचीत करके उसको ले पाए, ताकि कुछ गलत ना हो, सब प्रेम भाव से समझ पाए।
1: तो आपकी आगे क्या यात्रा है, अब आप अपने जीवन में क्या देखते हैं, आप कैसे और इस बदलाव को परिपक्व करने, पल्लवित करने और इसको स्थायी करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं?
0: ट्राई करने के लिए तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी अपनी छोटी बच्ची है, अगस्त में उसके 3 साल पूरे होने वाले हैं, और मैंने खुद से भी मतलब सोचा कि एक छोटे बच्चे का जो मैसेज है वो लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचता है, वो और मैं हम दोनों मिलकर कैसे लोगों तक एक जो संविधान की जानकारी है, अधिकार हो गए, कर्तव्य हो गए, और इस तरीके से हमारे अपनी स्वतंत्रता है, या फिर जो कहते हैं कि धर्म निरपेक्षता, या फिर हमारे समुदाय में भी जब किसी की मौत हो रही है, अगर मुआवजे की बात हो रही है, मौताने की बात हो रही है, तो तुरंत ही अगर वो भावना आ रही है तो लोग उस चीज को बदल पाए, वैसे कुछ विज्ञापन या फिर वैसे कुछ कार्यक्रम डिजाइन करके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है। और साथ साथ में स्कूल के जो जिन बच्चों के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ, उन बच्चों के साथ कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है मेरा, उसमें मैं कैसे इन चीजों को शामिल करूँ, ताकि बच्चे कंप्यूटर तो सीख ही रहे लेकिन साथ साथ में मूल्य को भी समझे, अधिकार को भी समझे, और उसको अपने जीवन में अपनाते हुए उन्हें जो चाहिए वो भी मिल पाए। क्योंकि अगर मैंने इन चीजों को अभी समझा है तो मुझे लगता है कि मैं अगर इसकी शुरुआत अभी कर दूं तो जो अभी तक नहीं समझ पाए वो लोग भी इन चीजों को समझ पाएंगे। और समझने का मतलब यही है कि अगर मेरे ऊपर कोई गुस्सा कर रहा है तो मैं भी सीधा उस पर गुस्सा करूंगा, ये स्वाभाविक है, लेकिन वो स्वभाव कैसे बदले, ऐसी चीजों के ऊपर भी मैं काम करने का सोच रहा हूँ। और इसके अलावा जैसे शॉप है तो कैसे मतलब ऐसी कुछ चीजें वहां पर रहे, क्योंकि विजिटिंग तो रहता ही है, तो बहुत सारे लोग जब विजिट करते हैं तो चीजों को देखकर भी उसको केवल पढ़ते हैं तो भी थोड़ा सा माइंड में रहता है कि हाँ मैंने कहीं पढ़ा था, ये चीजें करने का प्लान है। और अपनी खुद की वेबसाइट जो है, न्यूज चैनल यूट्यूब, तो उसमें अपनी जो न्यूज चला रहा हूँ मैं, उसमें भी उन मूल्यों को शामिल करो, ताकि समस्या के साथ मूल्य जाए, कौन से अधिकार का हमारे हनन हो रहा है, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं और कौन सी समस्या है ये।
1: जी, कोटड़ा में बताते हैं कि कोटड़ा में कई सालों पहले सड़क भी नहीं पहुंचती थी, और कोटड़ा में आज का जो जनजीवन है वो अब विकास की जो मूलभूत संरचनाएं हैं वो उनका विकास हुआ है, कुछ विद्यालय भी बने होंगे, कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बने होंगे, लेकिन फिर भी जो ये बुराइयां हैं ये सामाजिक चेंज और सामाजिक आंदोलन से ही होगा, और सामाजिक आंदोलन के लिए किसी एक व्यक्ति को ही आगे आना होगा। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो बुराइयां हैं लगभग सभी समुदाय में वहां एक जैसी बुराइयां हैं, तो इसका क्या कारण है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई हो, और ये पंच पटेल जो है समाज के वो को लेकर आगे क्यों नहीं आते।
0: जैसा कि मौताना के ऊपर बदलाव करने के लिए मैंने इस पे जब रिसर्च किया तो देखा ये कि मौताना जो है वो शुरू करने के पीछे उद्देश्य अच्छा था, लेकिन समय के साथ इसका जो उद्देश्य है वो पूरा बदल चुका। केवल इतना ही था कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो, इसीलिए वो बदले की भावना थी, और उस समय कुछ और यानी कि मौत का मुआवजा यानी कि पैसे की बात नहीं थी, ताकि व्यवहार जो है वो बना रहे, और अगर कोई इंसान गलती करता है तो उसे सजा मिले, इस उद्देश्य के साथ पहले का था, लेकिन वो समय के साथ बदल गया, अब केवल बदले की भावना रह गया। और अभी के जो पंच पटेल की बात करें तो उनका इतना ज्यादा बदलाव को लेकर नहीं है, लेकिन आज की जो युवा है वो इससे काफी प्रभावित है। प्रभावित होने का मतलब ये कि उन्हें लगता है कि ये चीजें बदलनी चाहिए, क्योंकि नहीं बदल रही है, इसलिए वो अपना खुद का पैसा सेविंग करके अपना खुद का घर नहीं बना पा रहे, क्योंकि घर बनाएंगे कुछ घटना घटे उन्हें घर बार छोड़ के चला जाना पड़ेगा। और इसको लेकर हमारे कोटड़ा में भी कुछ जो युवाएं हैं उनका अपना ग्रुप बना के वो बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं, गांव के अंदर मीटिंगें कर रहे हैं। और अगर आबू रोड क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर भी चीजें प्रचलन में है, तो वहां पर भी वहां का जो आदिवासी ग्रुप है वो अपने खुद की अपनी टीमें बनाकर अलग अलग जागरूकता के कार्यक्रम भी कर रहा है, उनकी अपनी मंथली मीटिंग भी होती है, पैसे भी सेविंग हो रहे हैं, और कैसे लोगों को जागरूक किया जाए और अपनी संस्कृति भी बची रहे, साथ साथ में जो परंपराएं समाज को आगे बढ़ने से रोक रही उन्हें रोका जा सके। और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि एजुकेशन या फिर गवर्नमेंट जॉब में अधिकतर आदिवासी समुदाय के लोग गए हैं।
1: लेकिन एक बात तो है कि इस सबके बावजूद क्या जो नए कानून है या जो हमारे मुआवजे का कानून है या बीमा कंपनियों के से मुआवजा प्राप्त करने का जो कानून है, दुर्घटना बीमा का प्रावधान है, तो ये सब बदलते समय के साथ जो नई वित्तीय सेवाएं सरकार ने शुरू की हैं और एक व्यवस्था बनाई है, एक जिला न्यायालय बनाया है, जिला पंचायत बनाई है, तो क्या इस सरकार के नियमों को फॉलो करने के आदिवासी समाज तैयार है।
0: आदिवासी समाज तैयार है, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है, अगर उनके साथ, आज की पीढ़ी ही नहीं बल्कि जो अभी का यूथ है या उनके माता पिता है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मेरी अपनी शॉप है और स्टेशनरी भी है, तो दिन में करीबन 10-12 लोग रिपोर्ट के जो पेज होते वो खरीदने के लिए आते। इसका मतलब यह है कि अगर गांव में कुछ घटनाएं घट रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो मामला पुलिस तक जाना चाहिए, पुलिस तक जाने से उसका समाधान जल्दी हो सके, ये सोच लोगों में आई है, क्योंकि गांव से उसका निपटारा नहीं हो रहा है, और गांव से निपटारा नहीं हो रहा है ये भी है, प्लस गांव के लोग गांव की बात भी नहीं मान रहे हैं, तो लोग भी अब चाहने लगे हैं कि समाधान जो है वो प्रशासन के पास जाए और उसी तरीके से हो, कानून के दायरे में रहकर हो।
1: एक बात और जानना चाहूंगा मैं आपसे कि जो लिविंग की परंपरा है, इसके क्या ऐसे फायदे थे जो ये एक प्रचलन में आया कुछ समुदायों के बीच, और ये क्या सभी समुदाय में है या किसी व्यक्तिगत या किसी पर्टिकुलर समुदाय में ही ये परंपरा देखी गई है?
0: लिविंग रिलेशनशिप बाकी समुदाय का तो मैंने अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मेरे अपने आदिवासी समुदाय में और जहाँ मैं रहता हूँ और आबुरुड क्षेत्र की मैं बात करूँ, तो पहले बहुत ज्यादा था कम उम्र का लिव इन रिलेशनशिप, अब भी जो है लिव इन रिलेशनशिप हो रहा है लेकिन 18 या फिर उससे प्लस में, और इसके पीछे के जो कारण है वो ये भी है कि समुदाय के पास इतनी इनकम नहीं होती है कि वो उसकी जो शादी है वो तुरंत करवा सके, और इसीलिए कुछ समय तक लोग जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, और फिर जो लड़का होता है वो खुद ही अपने पैसे कमाता है, और फिर पैसे इकट्ठे होने के बाद शादी होती है, और अगर कुछ शादी हो भी जाती है तो फिर उसकी ये भी वजह रहती है कि लड़का और लड़की साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि पहले अगर वो रहते हैं तो उसके बाद शादी करनी है या नहीं करनी वो भी उनके माता पिता को समझ में आता है, और लड़के लड़की उन्हें भी समझ में आता है कि हम दोनों साथ में रह सकते हैं। जितना ये मैं समझ पाया हूँ, ये अपना मेरा विचार है, लोगों का अपना अलग विचार हो सकता है, और मुझे लगता है कि मेरी इस बात पे शायद मेरा अपना समुदाय वो ये भी सोच सकता है कि मैंने ऐसी क्यों बात की, तो मेरा अपना ये विचार है, मैं ये समझ पा रहा हूँ और जितना मैंने देखा है, अगर किसी को ठेस पहुंचे हो तो इसके लिए मैं माफी भी चाहता हूँ।
1: नहीं जी, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है और वो भी अपनी तरीके से सोचने के लिए आजाद है, लेकिन बात ये है कि हमें सोचना होगा संविधान के दायरे में और समाज की बेहतरी के लिए और समुदाय की बेहतरी के लिए। तो अभी शिक्षा को लेकर या नौकरी को लेकर या सरकारी नौकरी को लेकर क्या एक चेतना विकसित हुई है आदिवासी समाज में, उदयपुर के इलाके की जो आदिवासी समाज है उसके अंदर?
0: जी बिल्कुल, जागरूकता आई है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एनजीओ भी काम कर रही है जो कि केवल शिक्षा का नहीं समुदाय के बीच में जाकर भी, और रिसेंटली मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी बात में यहाँ बांध बनने का जिक्र किया था, और उसे रोकने के लिए यहाँ का समुदाय काफी विरोध कर रहा है। इसकी घोषणा जो है वो 2022 में हुई थी, 2026 हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन डैम बनने की शुरुआत अभी नहीं हुई है क्योंकि यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं, और विरोध के पीछे यही है कि विस्थापित हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, अपनी जमीन नहीं छोड़ सकते हैं ये। और मैं अपनी बात करूँ तो इसे रोकने के लिए लोगों में जागरूकता बनी रहे और सूचना के अधिकार कानून का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है, और वो ऐसे किया गया है कि जब घोषणा हुई थी तब भी किया गया और अभी भी इसका उपयोग किया जा रहा है, और सूचना के अधिकार के तहत ही लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि इसको बनाने को लेकर कहां कहां से अनुमति ली गई है और कौन से प्रावधान के तहत क्या मुआवजा मिलेगा या फिर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसे चलने वाला है, ये जो सब बातें हैं वो सूचना के अधिकार के तहत जो डिपार्टमेंट है उनसे मांगी है लोगों ने, और सूचना के अधिकार को भी मैंने समझा तो मेरे साथ के कुछ युवा है वो भी समझ रहे, उनके खुद के नाम से RTA लगा रहे, और यही जो बात है वो एजुकेशन पर भी लागू होते हैं, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने खुद के नाम से RTA लगा के कि कोटड़ा में आखिर शिक्षकों की जो कमी है या फिर स्कूल भवनों की कमी है वो क्यों, मतलब पूरी करने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उसको लेकर अभी चर्चा हो रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर बच्चा खुद सूचना के अधिकार को जानेगा तो वो अपने अधिकारों के लिए जवाब मांग सकता है, और जवाब मांगेगा तो उसे जवाब मिलेगा, और जवाब मिलेगा तो फिर उसे क्या करना है और कैसे अपनी बात को लोगों के बीच में रखना है ताकि लोगों की जागरूकता भी बढ़े, लोगों की एकता भी हो और जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। प्रयास जारी है।
1: हाँ, कोशिश करने वाले की हमें और प्रयास जारी रहना चाहिए। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। बहुत ही रुचिकर और आनंददायी बात चल रही है। हमको गहराई में समझने को मिल रहा है एक समुदाय, एक स्थिति के बारे में और एक युवा जीवन के बारे में, एक जुनूनी के बारे में, जिनका एक जुनून है कि वो अपने समुदाय को विकसित करना चाहते हैं और विकसित भारत 2047 के सपने में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो हमसे जानना चाहेंगे कि अब उनकी क्या कार्य होता है और संगठन को तैयार करने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्या करने जा रहे हैं।
0: मेरे आगे की जो योजनाएं हैं वो संविधान को लेकर ज्यादा है, क्योंकि संविधान के मूल्य लोगों तक पहुंचे, और इसके लिए मेरी अपनी जो कोटला टाइम्स की टीम है मैं उसके साथ भी इस पे चर्चा कर रहा हूँ। और साथ ही साथ में, क्योंकि केवल एक कार्यशाला अटेंड करने से मुझे ये समझ में आया कि संविधान से ही मेरा जीवन है। अगर संविधान नहीं होता तो मैं जहाँ हूँ शायद मैं वहां नहीं होता। जितना मैं कर पा रहा हूँ वो मैं नहीं कर पाता। और एक इंसान की जिंदगी जो अभी चल रही है उसमें संविधान का अपना रोल है, और वो रोल लोगों को कभी महसूस नहीं हुआ कि संविधान है तब हम है, और तभी मैं पढ़ पा रहा हूँ, तभी मैं नौकरी जा पा रहा हूँ, तभी मैं गाड़ी में सफर कर पा रहा हूँ, या फिर मैं खुली हवा ले पा रहा हूँ। क्योंकि जब संविधान नहीं बना था तब की परिस्थितियाँ कुछ और थी और अब की परिस्थितियाँ कुछ और है। तो आगे का जो मेरा खास भविष्य में सोच रहा हूँ वो संविधान की अवेयरनेस को लेकर ही ज्यादा सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे मेरे अभी 32-33 इयर्स चल रहे हैं, 33वें साल में मुझे थोड़ा सा ये समझ में आया कि ये मेरे जीवन से है, तो वो लोगों को भी समझ में नहीं, मतलब लोगों को एहसास हो, और वो मैं एहसास दिलाने के लिए युवाओं के साथ, गाँव के लोगों के साथ फील्ड में, हालांकि जाना नहीं हो पा रहा है लेकिन कैसे भी मुझे वो टाइम निकालना है। क्योंकि सप्ताह में अगर मैं 1-2 घंटे भी समुदाय के बीच जाता हूँ तो इससे यही होगा कि मैं उनके साथ बातचीत कर पाऊंगा और जान पाऊंगा। और मेरा तरीका ये नहीं है कि मैं उन्हें ये बताऊं कि संविधान ने हमें ये सब कुछ दिया है, केवल मेरी नॉर्मल बातचीत में वो सब कुछ आए और लोग समझ पाए।
1: जी, चलते चलते आपसे विनोद जी जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा क्षेत्र है कोटड़ा का और जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं आबू रोड पे, अभी आधारभूत संरचनाएं जो है उसके विकास की क्या स्थिति है और सरकारों ने क्या सफलतापूर्वक अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को कर पाया है?
0: आधारभूत संरचनाएं तो जो गवर्नमेंट की कहे या फिर क्षेत्र की कहे, जो थी पहले वो बदल रही है, और गवर्नमेंट भी जो है वो अपना देखा जाए तो 100% देने का पूरा प्रयास कर रहा है। क्योंकि गांव के अंदर शिविरें हो रही है, और जो शिविरें है वो करीबन 3-6 महीनों में, और उनके अधिकारी जो है, चाहे सरपंच हो, पटवारी हो, विकास अधिकारी हो या तहसीलदार, SDM, सबका अपना रोल जो है वो गांव में, क्योंकि हर पंचायत में कैंप लगाकर लोगों तक सुविधाएं पहुंचे उस पर प्रयास चल रहे हैं, और लोग वंचित ना रहे उसके लिए उससे जुड़े जो लोग हैं उनको भी पाबंद किया जा रहा है, चाहे वो पटवारी हो या फिर उससे नीचे के जो अधिकारी हो उन्हें भी। और ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को सुविधाएं सारे मिल पाए, और सुविधाएं नहीं मिल पा रही है तो लोगों तक वो मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है कि कौन से दिन कैंप है, कौन से दिन क्या कुछ हो रहा है। पर सरकार का जो प्रयास है वो पूरा चल रहा है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा जिम्मेवारी बनती है तो वो जागरूक युवाओं की बनती है, जिन तक मैसेज पहुंचता है कि सरकार की ये योजनाएं हैं और इसका लाभ ऐसे मिल सकता है, वो युवा के जरिए लोगों तक मैसेज पहुंचे। तो और जितना मैं देख पा रहा हूं तो बहुत कम युवा जो है वो इसमें प्रयास कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बहुत कम युवा प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे दूसरे युवा उसमें जुड़ेंगे, और जुड़ने के पीछे कारण ये है क्योंकि जो युवा नहीं जुड़े हैं उन्हें खुद भी नहीं पता कि इसका लाभ कैसे लेना है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि वही युवा एक पुरुष बन रहा है, अपना परिवार बना रहा है, क्योंकि उन्हें भी उन अधिकारों की जरूरत है, वो जानेगा तो फिर उसके जरिए लोगों तक भी पहुंचा सकता है।
1: जिम्मेदारी युवाओं की है, और ये आपकी फाइनल बात, ये हम लेते हैं आज का टेक अवे हमारे श्रोताओं के लिए, और ऐसे ही जुनूनी के साथ फिर मिलते रहेंगे। विनोद जी, आपने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया और आम जन तक अपने विचार और अपनी बात आपने पहुंचाई, और एक विशेष समुदाय जिसके लिए संविधान ने भी विशेष प्रावधान किए हैं उनके साथ किए गए छोटे से विशेष प्रयासों पर की एक चर्चा और ये आज का हमारा जुनून था। फिर मिलेंगे ऐसे ही साथी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महाकाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: ये बात उन दिनों की है जब भारत में करो या मरो का नारा गूंज रहा था। सिंध प्रदेश के रहने वाले एक किशोर ने सोचा कि देश की आजादी के लिए कुछ कर गुजरने का ये ही सबसे अच्छा समय है। हेमू कालानी नामक इस किशोर ने जब ये विचार अपने साथियों को सुनाए तो वे भी सहमत हो गए, मगर उनके सामने कोई स्पष्ट कार्यक्रम नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन के आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए अंग्रेज सैनिकों की एक पलटन ट्रेन द्वारा सखर से गुजर रही थी। हेमू और उनके साथियों ने सोचा कि अगर ट्रेन की पटरियां उखाड़ दी जाएं, तो अंग्रेजों के इरादे मिट्टी में मिल जाएंगे। हेमू ने अपने दो साथियों नंद और किशन को लेकर पटरियां उखाड़ने का काम शुरू कर दिया। निस्तब्ध दिशा में खटखट की आवाज पटरियों की रक्षा के लिए तैनात दल तक पहुंच गई। प्रहरी दल ने घटनास्थल पर पहुंचकर तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। फौजी अदालत में जब उन पर मुकदमा चला तो हेमू कालानी ने अपने साथियों को राहगीर बताते हुए पटरियां उखाड़ने की जिम्मेदारी अकेले अपने ऊपर ले ली। अदालत ने हेमू को फांसी का दंड सुनाया। फूल सी उम्र में एक और क्रांति फूल शहादत की भेंट चढ़ गया।
3: हेमू, तुमको कितनी बार कहा है सूर्यास्त से पहले कमरे से बाहर ना निकला करो।
4: वो तो ठीक है, परंतु आज किसी काम के सिलसिले में कुछ साथियों से मिलना बहुत आवश्यक था।
3: पर तुमको इस बात का भी ध्यान होना चाहिए हेमू कि ऐसा करके कितना जोखिम उठा रहे हो। आजाद मैदान की घटना के बाद तो पुलिस और सीआईडी नौजवान मंडल के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, और तुमको यदि कुछ हुआ तो हमारी तो सारी की सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी।
4: ठीक हम दोस्त, तुम कोई चिंता मत करो। बस थोड़ा दिल को मजबूत करो। मैं इतना मोम का बना हुआ नहीं हूं। कहीं दौलत नजर नहीं आ रहा, वो अभी पहुंचा नहीं क्या?
3: पर वो तो तुम्हारे साथ आने वाला था ना।
4: परंतु वो दोपहर को 12 बजे मुझसे अलग हो गया था। बड़े बाजार से गुजर रहे थे तो हमको लगा कि कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं।
3: अच्छा,
4: इसलिए हम दोनों अलग हो गए। मैं उनको चकमा देकर तंग गलियों से होता हुआ निकल आया।
3: खैर,
4: वो भी आता ही होगा।
3: पर हेमू, हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे? बाहर जाना
5: हम लोग ये तो कर ही सकते हैं कि अपना दिल और दिमाग ठिकाने पर रखें। सुना है आज प्रभात फेरी में कुछ गड़बड़ हो गई थी।
4: हाँ, मैं उस समय उस एरिया में एक होटल में बैठा था और वो दृश्य देखा था। पुलिस जिस बेरहमी से हिंदुस्तानियों के ऊपर लाठियां बरसा रही थी, उसे देखकर जी में आ रहा था कि डंडा लेकर एक दो सिपाहियों के तो सर फोड़ दूं।
3: हेमू, भावुकता और जोश को काबू में रखो। हेमू,
4: जब देखो तुम जोश और भावुकता की बात करते रहते हो। तुम क्या चाहते हो, कि हम निष्ठुर होकर बैठ जाएं?
3: हमको गलत बात समझो मेरे यार, हम तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं। लो, दौलत भी आ गया।
4: क्या बात है, कहां रह गए थे तुम?
6: तेरी माँ ने मुझे देख लिया था, उससे पीछा छुड़ाने में वक्त लग गया, बहुत परेशान थी। तुम घर नहीं गए ना, शायद इसलिए।
4: अच्छा अच्छा, ठीक है, अब जल्दी करो, समय बहुत कम है, तैयारी करना चाहिए। दौलत, बाहर व्यवस्था कैसी है?
6: ये खबर बिल्कुल पक्की है कि मालगाड़ी 7:03 पर सखर स्टेशन पर पहुंचेगी और 20 मिनट स्टेशन पर रुक कर वहां से रवाना होगी। जिस साथी से मुझे ये खबर प्राप्त हुई है वो पक्के भरोसे वाला है।
4: ये पता लगा कि उस गाड़ी में क्या क्या लदा है?
6: ये बात बिल्कुल गोपनीय है, हिंदुस्तानी ऑफिसरों को भी इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है, इसलिए पता लगाना बड़ा मुश्किल है।
4: निश्चित ही पंजाब में आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए इस गाड़ी में हथियार और गोला बारूद भेजा जा रहा होगा, पर हम किसी भी कीमत पर गोरों को ऐसा करने नहीं देंगे। अब सुनो किशन
3: जी,
4: तुम रेलवे लाइन पर सिग्नल से 100 कदम दूरी पर पेड़ के पीछे छुपकर खड़े रहना। जब तक मैं इशारा ना करूं तब तक वहां से हिलना मत, समझे?
3: बिल्कुल ठीक।
4: शाबाश मेरे दोस्त, शाबाश। यदि आज का काम हो गया तो जिंदगी की बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो जाएगी।
0: इस तरह रात के सन्नाटे में रेल की पटरी उखाड़ने के लिए हेमू कालानी अपने दोनों मित्रों को साथ लेकर सिंध प्रांत के सक्खर की बिस्किट फैक्ट्री के पास पहुंच गए और रेल की पटरी उखाड़ने लगे।
4: दोस्तों हाथ जरा जल्दी जल्दी चलाओ इससे पहले कि कोई आए। इस रेल की पटरी को तुरंत उखाड़ फेंकना है। किशन, तुम ये वाला कपलिंग खोलो और मैं वो उधर वाला कपलिंग खोलता हूँ।
5: ठीक है।
6: सर, ये रात के सन्नाटे में आवाज बड़ी दूर तक जा रही है। कोई पुलिस वाला गश्त वाला सुनना ले।
4: दोस्तों ध्यान रहे, अगर कोई पुलिस वाला आ जाए तो हम तीनों अलग अलग दिशा में भागेंगे ताकि उसकी पकड़ से बचा जा सके।
3: ठीक है, हाँ यही सही रहेगा।
6: हेमू, इस रेलगाड़ी में क्या सामान जा रहा होगा?
4: मुझे मालूम पड़ा है कि अंग्रेज सैनिकों की एक पलटन ट्रेन द्वारा भारी मात्रा में असलहा और गोला बारूद लेकर यहाँ से गुजरने वाली है।
3: अच्छा।
4: और ये असलहा बारूद भारत छोड़ो आंदोलन के आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
6: जब पटरी ही नहीं रहेगी, वो ट्रेन ही नहीं पहुंचेगी तो कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, हम भी देखते हैं। हम
7: कौन है वहाँ पटरी के पास? ठहरो, क्या कर रहे हो वहाँ? रुको,
3: अरे भागो भागो हेमू, भागो, पुलिस आ गई, भागो।
7: ठहरो नहीं तो गोली मार दूंगा। अबे भाग के कहाँ जाता है? अरे
4: छोड़ो दादाजी, हाथ छोड़ो मेरा।
7: तुझे छोड़ दूं? तेरे दो साथी तो साले भाग गए और तुझे भी जाने दूं? चल थाने, चल।
4: अरे चल रहा हूँ थाने।
7: अरे चल,
4: अरे गरीबान छोड़ो, मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ थाने। चलो
7: चलो।
0: हेमू कालानी के दोनों दोस्तों भाग गए मगर हेमू कालानी पकड़ा गया, उसे थाने ले जाया गया। फौजी अदालत ने उन लोगों पर मुकदमा चलाया।
8: मिलॉर्ड, ये जो सामने मुलजिम के कटघरे में खड़ा है उसने बहुत संगीन जुर्म किया है। इसने एक फौजी ट्रेन को गिराने की कोशिश की और अंग्रेजी हुकूमत को भी हानि पहुंचाने की हर संभव कोशिश की। मिलॉर्ड, चेहरे से ये बिल्कुल मासूम दिखता है पर वास्तव में ये एक खतरनाक गिरोह का लीडर है, इंकलाबी है। मिलॉर्ड, मेरी माननीय अदालत से दरखास्त है कि ऐसे हैवान और शैतान को मौत की सजा दी जाए जिससे दूसरे लोगों को भी सबक मिले और वे अंग्रेजी हुकूमत से टक्कर लेने की जुर्रत न

0: कर सकें।
1: मिस्टर हेमू कालानी, तुमको अपनी सफाई में कुछ कहना है?
2: हाँ हाँ, मैंने ट्रेन गिराने की कोशिश की, परंतु अफसोस मैं उसमें सफल नहीं हो सका।
1: हेमू कालानी, अगर तुम कानून का साथ देने के लिए तैयार हो जाओ तो अदालत तुम्हारी उम्र का ख्याल करके तुम्हारी सजा घटा सकती है। घबराओ मत, एक कानून तुम्हारे साथ है और तुम्हें पूरा पूरा इंसाफ दिया जाएगा।

0: इंसाफ। जज साहब, अगर आप इंसाफ ही करना चाहते हैं तो सजा हमको नहीं उन लोगों को मिलना चाहिए जिनके इशारे पर आप इंसाफ करते हैं। सजा उनको दो जज साहब जो हमारे इस भारत देश में धोखे से शासक बनकर बैठे हैं। आपका कानून, आपकी अदालत, आपका इंसाफ, आपकी तानाशाही है। गोरों को हमारे मुल्क में रहने का कोई हक नहीं है।
1: अपनी जबान बंद रखो नादान छोकरे। तेरी ऐसी हिम्मत कि तुम हमारे सामने हमारी सरकार को गाली दे रहे हो। तुम मुल्जिम हो। तुमने फौजी ट्रेन गिराने की कोशिश करके हजारों जिंदगियों से खेलने की कोशिश की है। लिहाजा फौजी कानून के मुताबिक तुम्हें मौत की सजा दी जा रही है। हैंग टिल डेथ। 21 जनवरी 1943 को सुबह 6 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी।
2: हेमू कालानी को काल कोठरी में डाल दिया गया। उसे बहुत यातनाएं दी गईं, पर उसने अपने दोस्तों के नाम नहीं बताए। रेल पटरी उखाड़ने के जुर्म में हेमू कालानी को फांसी की सजा सुना दी गई।
3: क्या दीवाने हैं? इन कच्ची हड्डियों को भी सूली पर चढ़ना होगा? क्या खुदा की शान है। शायद पागल हो गया है। इस हालत में तो कोई भी शख्स पागल हो सकता है। इस जवान पर तो कितनी सख्तियां बरती जा रही हैं।
0: पागल हो तेरे दुश्मन मियां। खुदा की शान नहीं, गोरे फिरंगियों के लिए कयामत जरूर आई है।
3: शाबाश तेरे हौसले को। इस फांसी घर में कई हट्टे कट्टे जवानों को देखा है जो फांसी का हुक्म सुनते ही ढीले पड़ जाते हैं, परंतु तेरा तो वजन ही बढ़ गया है। वाह,
0: वो यहाँ मरने आते हैं पर मैं यहाँ मौत पर जीत हासिल करने आया हूँ। बस यही फर्क है मुझ में और उनमें।
3: बेशक शेर दिल हो, परंतु तुमने ताकतवर लोगों से पंगा लिया है।
0: ताकतवर। गोरे को तुम ताकतवर समझते हो? अरे जो निहत्ते लोगों से भी ऐसे डरता है जैसे बाज से चिड़िया। तुम्हारे गोरे साहब को तो देखो, इस कोठरी में घुसने से पहले कैसे वो डर कर पिस्तौल पर हाथ रखता है।
3: सच कहते हो, पर दीवाने तुमको इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं ये? ऐसा कौन सा अपराध किया है तुमने? सुना है तुमने रेलगाड़ी गिराने की साजिश की है।
0: बता दूं तुमको मैंने क्या किया है? मैंने इन फिरंगियों की नाक काटने का जुर्म किया है। मैंने किया है, तभी तो दे रहे हैं सजा।
3: सच कहते हो, तुम जैसे मासूम जवान को फांसी की सजा घोर अन्याय है।
0: मेरी दैनिक खातिरदारी के लिए आज तुम्हारे गोरे सुप्रिटेंडेंट नहीं आए?
3: 6 बजने में भी कुछ मिनट हैं। आज लगता है तुम्हारे लिए कोई नई चाल चली गई है। शायद कुछ लोगों को जेल में बुलाया गया है। बहुत चालबाज है ये गोरा सुप्रिंटेंडेंट।
0: अच्छा, हाँ। देखो, जब तक इस शरीर में जान है ना, तब तक उसे कुछ हासिल नहीं होगा।
3: खुदा तुझे हिम्मत दे, मेरी दुआ है।
4: आई डबल द कॉल। अब तक तो इसका होश ठिकाने आ गया होगा। या अभी तक यह जिद पर आ रहा है? देखो कैसे आराम से सो रहा है।
5: हेमो, आखिरी बार पूछ रहे हैं, बता दे क्या सोचा है तुमने।
0: मुझे क्या सोचना था?
5: यही कि तुम अपने बाकी दो साथियों के नाम बताओगे या नहीं।
0: मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि मेरे साथ कोई नहीं था, इससे ज्यादा और क्या बताऊँ। आप मुझे बार बार क्यों परेशान कर रहे हैं?
5: ये सरासर झूठ है कि तेरे साथ कोई नहीं था। हमारे सिपाहियों ने दो लोगों को वहाँ से भागते हुए देखा है।
0: मेरा साया देखकर उनको भ्रम हुआ होगा कि मेरे साथ कोई और भी था।
5: हमारे सामने तुम अभी बच्चे हो, इस प्रकार का मजाक तुम्हारी हैसियत से ऊपर है।
0: अच्छा, मैं तो एक बच्चा हूँ, तो फिर मेरे साथ ये मर्दाने खेल क्यों खेल रहे हैं? छोड़ दो इस बच्चे को।
5: हेमू, मुझे तेरी जवानी पर तरस आ रहा है। तुम ना समझ बच्चे की तरह जिद करके अपनी ही बर्बादी की राह बना रहे हो।
0: बेशक, भला आपके समझ भरे विचार के अनुसार मुझे क्या करना चाहिए?
5: तुम अपने साथियों के नाम बता दो बस, ऐसा करके तुम अपनी अमूल्य जान बचा सकते हो।
0: और उन दो साथियों की जान आपके हाथों में सुरक्षित रहेगी, यही ना? एक बात और ध्यान देकर सुन लो, मान लिया कि वो लोग मेरे साथ थे भी, तो क्या मैं उनका नाम आपको बता दूंगा? हरगिज नहीं बताऊंगा।
5: अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ जायज है।
0: हाँ, ऐसी बात आपके मुंह से ही शोभा दे सकती है।
4: अगर तुम्हें सीधी तरह से नाम नहीं बताया तो हमें दूसरा तरीका भी अपनाना आता है।
0: अभी कौन से कम तरीके अपनाए हैं आपने? घोड़े मारना, बर्फ की सिल्ली पर सुलाना, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं आप?
5: लोहे की गरम सलाखें और कीलों की सेज, फिर खुद ही समझ में आ जाएगा।
0: आजमा के देख लो अपने ये शैतानी तरीके भी।
4: ओ शैतान, शैतान क्यों शैतान ठोकरा?
0: बस गोरे साहब, जल्दी चिढ़ जाते हो, शैतान वास्तव में इतना बुरा नहीं होता।
5: हेमू, तुम खामखा अपनी तबाही की तैयारी कर रहे हो, जबकि हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं।
0: सच? फिर तो मैं पागल हूँ जो आपके द्वारा की जा रही भलाई को नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे तो आपको पूरा सहयोग देना चाहिए, यही ना?
5: बिल्कुल, इतने दिनों से हम तुम्हें यही बात समझाने की तो कोशिश कर रहे हैं।
0: तब तो मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा। मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। कहिए, आप क्या पूछना चाहते हैं?
5: क्या कह रहे हैं, तुम सब कुछ बताने के लिए तैयार हो?
4: शाबाश शाबाश, मुझे मालूम था कि तुम बहुत अच्छा झोंक रहे हैं।
0: मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त पर।
5: बोलो बोलो, कुछ भी बोलो, डरो बिल्कुल नहीं, तुम्हारी जान बचाने का वायदा है।
0: शर्त तो मामूली है, पर आपके लिए जरा।
5: अरे तुम कोई फिक्र मत करो, तेरी हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं हम।
4: या, बताओ, डर मत।
0: तो सुनो, अंग्रेजों भारत छोड़ो।
4: Shut up! Shut up!
0: अंग्रेजों भारत छोड़ो।
4: Shut up!
0: तो मंजूर है ये शर्त?

0: मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। और फांसी के अलावा आपके पास और क्या है?
1: मैं तुम्हें जिंदगी दूं तो?
0: वाह, तुम मुझे जिंदगी दोगे?
1: हाँ, हाँ।
0: तुम मेरे स्थान पर फांसी पर लटकने वाले तो नहीं? फिर इस सुंदर चीज का दान कैसे दे पाओगे?
1: बस एक ही बात है कि तुम
0: फिर वही बेसुरा राग। मेहरबानी करके मुझे और तंग करने की कोशिश मत करो।
1: नहीं हेमू, मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढ निकाला है। बस तुम सिर्फ हाँ कर दो, फिर देर नहीं लगेगी।
0: मुझे ऐसा कोई भी रास्ता नजर नहीं आता।
1: अच्छा सुन, तुम अपने साथियों के नाम नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ। अपना जुर्म कबूल कर लो और सरकार से उसके लिए माफी मांग लो और लिख कर दे दो कि आगे से तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे और सरकार से वफादारी करोगे।
0: क्या? माफी? माफी? तुमने अपने जमीन को क्या इतना कुचल दिया है जेलर, जो तुम एक हिंदुस्तानी होकर मुझे ऐसी शर्मनाक सलाह दे रहे हो? हाँ, ऐसी शर्मनाक सलाह दे रहे हो। किस अपराध के लिए माफी मांगू इस सुपरिटेंडेंट से, कमबख्त दायर की औलाद से?
2: शट अप। मौत का सजा तुम्हें चीखार देगा, समझा? हाँ,
0: चलाओ चलाओ, तुम्हारा ये कौमी निशान चुप क्यों हो गए हो? अरे मौत का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश मत करो। आजादी के लिए ये कीमत बिल्कुल मामूली है।
2: आजादी आजादी आजादी
0: आजादी
2: कैसे आता है तुम्हारा ये आजादी? मौत तुमको जब शांत खा देगा, तुमको जब सबक मिलेगा।
0: सबक सिखाएगा, सबक मिलेगा देशभक्ति का, ना कि तेरी तरह कायरता का। आप मेरी जिंदगी ले सकते हैं, परंतु आजादी की शमा नहीं बुझा सकते। हेमू कराने का खून दीपक में तेल का काम करेगा। एक बेगुना हेमू कराने का खून सैकड़ों हेमू करानी पैदा करेगा और मशाल मशाल जलती रहेगी।
1: हेमू हेमू, जोश से काम ना लो, कुछ सोचो। मालूम भी है कि तेरे माँ बाप की क्या हालत हो गई, उनके बारे में भी कुछ सोचा है तूने?
0: मेरी माता जी, मेरे पिताजी।
1: हाँ, तुम उनसे मिलना चाहते हो?
0: नहीं, मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। मेहरबानी करके मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, उनको यहाँ मत बुलाना।
2: आए मिलो तुम, अच्छा बात है, अच्छा लगेगा माँ बाप से मिलने। हम कलानी के माता जी और पिताजी को छाली बुला और सुनो, वो ऑफिस में बैठा।
1: हेमू, तुम अगर अपना और अपने माँ बाप का भला चाहते हो तो जिद से बाज आओ। थोड़ी देर के लिए सोच कर तो देखो कि तुम अपनी जवानी से।
3: हेमू हेमू मेरे लाल, तेरी अभागन माँ काश मर जाए। बेटा बेटा, तुमने खुद को कहाँ आकर फंसाया है?
0: माँ
3: बेटा,
1: तुमको अपनी परवाह नहीं है तो कम से कम अपनी माँ जेठी बाई कालानी, पिता पेशुमल कालानी का तो ख्याल करो।
3: बेटा बेटा, अब तुम मान भी जाओ। बेटा जैसा ये कह रहे हैं तुम वैसा ही करो, इसी में सभी की भलाई है बेटा।
0: माँ माँ, आप ये क्या कह रही हैं माँ? मैं अपनी जान बचाने के लिए दूसरी माताओं के लालों को कुएं में धकेलूं माँ?
3: नहीं बेटा, नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कह रही। पर बेटा अभी मुझे तेरी जरूरत है। बेटा तू ही तो मेरी जिंदगी का आसरा है।
4: देखो बेटे, ये तुमसे तेरे दोस्तों का नाम पूछ रहे हैं ना?
0: पिताजी।
4: और यदि तुमने अपने दोस्तों के नाम बता दिए तो बेटा ये तुम्हें छोड़ देंगे, इस मुसीबत से छुटकारा पा जाएगा बेटे।
0: माँ, तेरा बेटा मुसीबत में नहीं है।
3: हाँ बेटा,
0: वो तो आकाश

0: ऐसा तारा है जो आने वाले युगों का इतिहास रोशन करता रहता है। ये तेरी ये अंधेरी कोठरी नहीं है माँ, बल्कि एक प्रकाश स्तंभ है।
1: हाँ बेटा,
0: जहाँ से प्रकाश फैलता है माँ, और तब तक फैलता रहेगा जब तक जुल्म का नामो निशान खत्म नहीं हो जाता माँ।
2: स्टॉप इट। तुम एक काम करो, इसको समझाओ, अपना बेटा को समझाओ, थोड़ा समझाओ, नहीं तो कानून के मुताबिक इसको इसको फांसी हो जाएगा। समझा तुम चाहता है कि फांसी हो जाए?
1: हेमू, तुम हमें अपने मुंह में बांध कर कैसे जा सकते हो बेटा? बेटा तेरे ये माँ बाप तो तेरे बिना मर जाएंगे। बेटा हम पर कुछ तो रहम खाओ।
0: नहीं माँ, नहीं, मुझे ज्यादा पीड़ा देने की कोशिश मत करो माँ, मेरी आत्मा बिल्कुल शांत है माँ। जिससे मैंने जालिमों का ये आदेश सुना है, मेरे ऊपर एक अमर जीवन की खुमारी छा गई है। हाँ, मैं एक अनोखा आनंद महसूस कर रहा हूँ माँ। देखो माँ, एक माँ आनंद। हाँ, अब मुझे पूरा संतोष है। क्या क्या आप मेरा आनंद भंग करना चाहते हैं? हाँ, क्या आप मुझे इस महायज्ञ से भटकाना चाहते हैं? नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए माँ। नहीं, कुछ पलों के लिए मुझे इस आनंद का मजा लूट लेने दो माँ। मेरी आत्मा को अमर जीवन का रस ले लेने दो माँ। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ मेरी माँ, आपको प्रणाम। पिताजी, पूज्य पिताजी, आपको प्रणाम। मेरे साथियों, तुम सबको प्रणाम। मेरी मातृभूमि, तुझे प्रणाम। वंदे मातरम।
3: इस तरह 21 जनवरी को अमर शहीद हेमू कालानी को फांसी दे दी गई। आज पूरा देश हेमू कालानी की शहादत पर उन्हें शत शत नमन करता है।
4: निर्देशन वीरबाला श्रोत्रिय, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत। जागृति इस कार्यक्रम में महिलाओं को जागरूक करने का एक कार्यक्रम, जहां पर हम अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों को लेके आते हैं और उनसे महिलाओं के संबंधित जानकारियां हम लेते हैं और कुछ नई बातें भी सीखते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बातचीत कर रहे हैं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। आज हम सभी को जानकारियां देने के लिए, और मानसिक स्वास्थ्य क्यों जरूरी है और मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, इस विषय के ऊपर आज चर्चा करेंगे और हमें जानकारियां देंगे। हमारे साथ है वीरेंद्र जी। आप पिछले 10 सालों से एक मानसिक रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और हमारे साथ एक और एक्सपर्ट है आज, हर्षिता सेतिया जी। आप एक साइकोलॉजिस्ट है, यानी मनोरोग विशेषज्ञ हैं। आप दोनों हरियाणा से हैं और हैदराबादी जनरल हॉस्पिटल में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो चलिए हम बातचीत करते हैं और जानते हैं, खास करके जब महिलाओं की बातचीत हम कर रहे हैं तो उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य क्या है और उनके मानसिक स्वास्थ्य क्यों अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर जब कुछ ऐसी बातें होती हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इनकी मानसिक असंतुलन हो रही है। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे दोनों आज के इस विशेषज्ञों को, हर्षिता जी और वीरेंद्र जी। आज के इस कार्यक्रम जागृति में और रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बातचीत करते हैं तो अभी तो हम काउंसलर एक शब्द से बहुत परिचित हैं, लेकिन जैसे आप दोनों की थोड़े डिफरेंसेस है प्रोफेशन में, लेकिन डील करते हैं वही मानसिक रोग के लिए। तो काउंसलिंग तो वही है, लेकिन जैसे हर्षिता जी आप कहते हैं कि आप मनोरोग विशेषज्ञ हैं और वीरेंद्र जी मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, तो ये डिफरेंस क्या है?
2: बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो मानसिक रोग विशेषज्ञ या फिर जिसको हम साइकियाट्रिस्ट भी कहते हैं, उनकी एक प्रॉपर डॉक्टर हैं वो, जिन्होंने पहले MBBS किया है, उसके बाद वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में गए हैं जो कि साइकियाट्री है। तो वो एक आपको प्रॉपर डॉक्टर हैं जिनसे आप जाकर अपने मानसिक रोग के बारे में बातचीत कर सकते हैं। और दूसरा, जब हम मनोरोग विशेषज्ञ के बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए आप BA या BSc, MSc या MA करके फिर आप PhD करते हैं या MPhil करते हैं। आप दवाइयां नहीं लिख सकते, लेकिन जो साइकियाट्रिस्ट हैं, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, वो बेसिकली आपको दवाइयों से, उनके द्वारा आपको ठीक किया जाता है। लेकिन मनोरोग विशेषज्ञ का जो बेसिक काम है, जिसको हम काउंसलर बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो आपको थेरेपी के थ्रू ट्रीट करते हैं। तो ये दोनों में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है।
0: बहुत सुंदर। मतलब जब हमारी मानसिक बीमारियां बढ़ जाती हैं, तो समय जब उस तीव्रता को कंट्रोल करना है, जहाँ पर मेडिसिंस की भी आवश्यकता होती है, तो फिर वो साइकियाट्रिस्ट डील करते हैं उनको। और जो छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, एक लंबे अरसे की लाइफस्टाइल के कारण कुछ आदतें ऐसी हो जाती जिससे खुद भी डिस्टर्ब रहते हैं और दूसरे भी उनसे डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो इमोशंस को डील करने के जो तरीके हैं, वो एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से हम सोल्यूशन प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर। तो हम जिनसे बातचीत कर रहे हैं, आपकी स्पेशलिटीज़ और आपकी एक्सपर्टीज़ को तो हम समझे हैं, तो हम आगे बढ़ते हुए ये जानना चाहते हैं, अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो मेंटल हेल्थ या फिर मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, और अगर हम महिलाओं के पर्सपेक्टिव्स में देखें तो वो क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसे हम समझे कि हाँ, ये चीज़ें अगर संतुलन में हैं तो हाँ, हम मेंटली फिट हैं।
2: आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा है कि महिलाओं के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, आज का जो हमारी श्रृंखला है वो महिलाओं के बारे में है, हम कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आज अपने आप से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या क्या मुझ में या मेरे आसपास जो लोग हैं और महिलाएं हैं उनमें ऐसा हम क्या देखें जो हमें पता लगे कि हाँ मुझे कुछ चीज़ें हैं कि मुझे दिखाने की ज़रूरत है या फिर मुझे ये देखने की ज़रूरत है कि मेरे आसपास भी कोई इन चीज़ों से तो नहीं जूझ रहा। अगर हम कहते हैं कि हमारा मन बहुत लंबे समय से उदास चल रहा है, हम खुशी लोग खुश हैं, मेरे आसपास ऐसा कुछ नहीं चल रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुशी नहीं फील होती है, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आपको यहाँ पे कि आपका पॉइंट है, एक इंडिकेटर है, एक रेड फ्लैग है कि आपको रुक के अपने आप को देख लेना चाहिए कि अब 15 दिन या 20 दिन से ऊपर हो गया है तो आपको कहीं ना कहीं अब एक रेड फ्लैग आ गया है कि आपको चेक करने की ज़रूरत है। और जो हम अगर दूसरे इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं कि क्या करना है जी, के कुछ भी तो नहीं अच्छा लग रहा, किसके लिए जीना है मुझे, मेरे साथ तो ऐसा ही होता रहता है, मेरा तो परिवार ही ऐसा है, सारा दिन तो मैं बच्चों की करती रहती हूँ, फिर भी मेरे को इन रिटर्न तो कुछ नहीं मिलता ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरे अंदर अगर ये थॉट्स आ रहे हैं जो कि एक पैटर्न बन के लीड कर रहा है कि मुझे सुसाइडल थॉट्स पे अगर मैं पहुँच गई हूँ तो आपके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि अब ये आपके लिए इंडिकेटर है, आपको जान जाना चाहिए कि अब मुझे कहीं ना कहीं सहायता की, मदद की ज़रूरत है। तीसरा, आपकी नींद डिस्टर्ब होने लग जाती है, या तो आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है, अगेन एक इंडिकेटर है कि आपको दिखाना चाहिए। दूसरा, नींद बहुत कम आने लग गई है, आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, आपको बिना दवाई के नींद नहीं आती है, अगेन एक इंडिकेटर है कि आपको दिखा लेना चाहिए। ये 3 से 4 इंडिकेटर मेजर हैं कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे साथ या मेरे आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको इस समय साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर चले जाना चाहिए और दिखाना चाहिए।
0: ये पैरामीटर्स है जहाँ पे हम बीमार हैं, लेकिन एक स्वस्थ मन या एक अच्छा हेल्दी माइंडसेट हम किसे कहते हैं, क्योंकि आज की डेट में तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। महिलाओं को अगर देखते हैं तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जहाँ पे वो डांट नहीं खाती है, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा कि वो परेशान नहीं है, तो फिर ऐसे में फिटनेस क्या है?
1: देखिए, स्वास्थ्य की जो WHO की डेफिनेशन है उसके अंदर में 2 भाग आते हैं कि आप अपने शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हैं, तभी आप उसको हेल्थ की डेफिनेशन जो WHO की है उसमें ये बोलते हैं इट्स अ कंप्लीट वेलबींग बहुत फिजिकली एंड मेंटली। इसका अर्थ यह है कि आप अपने मानसिक तौर पर भी अपना 100% अपना 100% दे पा रहे हैं। स्ट्रेस सबकी ज़िंदगी में आते हैं, मानसिक स्वास्थ्य ये चीज़ दिखाता है कि आप उस स्ट्रेस को कितना अच्छा हैंडल कर पा रहे हैं, कितना अच्छा कोप कर पा रहे हैं। कोई चीज़ ख़राब हुई, आपको किसी ने डांटा, आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आप उससे कितना जल्दी निकल पा रहे हैं, वो आपका मानसिक स्वास्थ्य को दिखाता है। जैसे अगर आप इन्फेक्शन फैल रहा है, बाहर बुखार हो रहा है, पर फिर भी आपको बुखार नहीं हुआ तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ चल रहे हैं, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य भी वैसा ही है कि जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही आपके आसपास में, आपका पूरा दिन खराब निकल रहा है, फिर भी आपका दिमाग उससे कोप अप कर पा रहा है, उन चीज़ों से आपको निकाल पा रहा है और आपको इतना एनर्जेटिक रख पा रहा है कि आप अपने काम पर ध्यान रख पा रहे हैं और जो आप काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दे पा रहे हैं मानसिक तौर पर, तो वो मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। और जब भी आपको लग रहा है कि आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं किसी काम के अंदर में, इसका मतलब कि चीज़ें ठीक नहीं रह रही हैं, मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है।
0: जी, तो वीरेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि कोई डगमग हो रहा है तो फिर हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है और स्ट्रेस को हैंडल करना आना चाहिए। आमतौर पर ये बताते हैं कि थोड़ी सी तो बात है, अभी घर में बड़े हैं तो थोड़ा सा तो बोलेंगे, अभी इतना भी आप सुन नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते, तो फिर एक द्वंद्व चलता है इंसान के माइंड में, मैंने गलत किया, मुझे बोला तो फिर भी समझ सकते हैं, जहाँ पे मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों सुनूं। और एक ज़माना था जहाँ पे महिलाएं सुनते सुनते सुनते आदी हो चुकी थी, फिर उनके दिमाग में कभी ये नहीं आता था कि मुझे उल्टा जवाब देना है या मुझे घर छोड़ना है या उन चीज़ों से परेशान होना है ऐसा। लेकिन अभी की जनरेशन में हम ये देखते हैं कि एक रेबेलियसनेस है, जिससे कभी कभी अगर वो उसको रिस्पॉन्स करती है या फिर उसको समाधान या जवाब देती हैं तो फिर उनको अलग रीति से लोग ट्रीट करते हैं, तो फिर वो जो छोटी सी बात जहाँ पे वो रोकने के लिए कोशिश करती है, वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी या फिर अपने डिग्निटी को बचाने की कोशिश करती है, तो फिर वो बात बढ़ जाती है। तो फिर ऐसे में वो कैसे हैंडल करे कि उसके साथ जो गलत हो रहा है, भले वो लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो छोटी सी चीज़ एक शुरुआत होती है। अभी वो एक छोटी सी चीज़ को अलाउ करती है लोग उनको बोलने में, या फिर पहली वो थप्पड़ है या पहली वो डांट है या एलिगेशन है या कोई भी चीज़, जिसे जो शुरुआत होती है इन चीज़ों की परंपरा की, तो वो कैसे रोके उस चीज़ को?
1: देखिए, सबसे पहले तो जैसे जैसे ज़माना बदला है, समय बदला है, औरतें इंडिपेंडेंट होने लगी हैं, काम करने लगी हैं, बाहर निकलने लगी हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने लगी हैं, तो उसके बाद में समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। हमारा समाज जो है बहुत वेस्टर्नाइज्ड हो रहा है, और जो गलत नहीं है बहुत हद तक ठीक भी है। हर चीज़ के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं, तो औरतों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, तब वो ये एहसास कर पा रही हैं कि हमारे साथ जो कुछ गलत हो रहा है उस चीज़ को समझ पा रही हैं। इससे पहले की जो सोसाइटी थी, उस समय अगर गलत हो रहा था औरतों के साथ में, तो उनके पास में ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो इस चीज़ों से निकल पाएं या इस चीज़ से लड़ पाएं। जैसे कि आपने बोला कि जब पहला थप्पड़ पड़ रहा है, तो अगर औरत इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या वर्किंग है या थोड़ा हिम्मत वाली है, तो उस थप्पड़ का मुकाबला कर सकती है, उसका जवाब दे सकती है या उस थप्पड़ को उठते समय रोक सकती है, बाउंड्री सेट कर सकती है कि ऐसा आप नहीं कर सकते। पर जो आज से पुराने का जमाना था, जिस समय औरतों के पास ये इंडिपेंडेंस नहीं थी, तो सिखाया भी ऐसा जाता था, माँ बेटी को आगे यही सिखा के भेज रही है कि जो भी होगा तुझे यहीं पे रहना है, घर से निकल गई तो डोली जा रही है, वहाँ से बर्थी ही निकलेगी, तेरा और कोई देखने वाला नहीं है, तू अलग नहीं हो सकती, तो हंसकर रोकर मार खाकर जैसा भी रहना है तुझे वहीं पर रहना है। अब ये मेंटेलिटी चेंज हो रही है, इसमें इंटरनेट का बहुत योगदान है, लोग पढ़ाई का बहुत योगदान है, लड़कियाँ पढ़ रही हैं अब, मैं समझता हूँ पढ़ाई का सबसे अधिक योगदान है। पढ़ने से ही, एजुकेशन के साथ में ही आदमी का दिमाग खुलता है, उनको एहसास होता है कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं और कहाँ उनके अधिकार खाए जा रहे हैं। और देखिए, अधिकार जहाँ तक खाने की बात है, या अधिकारों में जब भी चोट लग रही है, तो आपको पहली चोट के साथ ही जवाब देना होता है। आप अगर ट्रैफिक का कोई नियम कोई तोड़ रहा है, तो आप हमेशा पहली बार तोड़ते हो, तभी आपको अगर पुलिस ने देख लिया आपको उसी समय फाइन करते हैं। ये नहीं कहते कि आपको पहली बार नियम तोड़ते हुए छोड़ दिया जाए। तो जब भी आपके अधिकारों को नुकसान पहुंच रहा है, जब भी वो पहला थप्पड़ या पहली गाली उठ रही है, आपको उसी समय जवाब देना चाहिए। तो उसके लिए मानसिक बल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शारीरिक बल की बात यहाँ होनी रही, झगड़ने की बात नहीं हो रही, हमें उनको रोकना है, तो उसके लिए मानसिक बल होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मानसिक रूप से आपको स्वस्थ होना बहुत जरूरी है।
0: तो वो मानसिक स्वस्थता को कैसे कायम रखें? और जैसे हम बहुत सारी चीज़ें तो सीखते हैं फिजिकली फिट रहने के लिए, फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल खाना

0: रा खाना है, उसे आपकी बॉडी हेल्दी रहती है इस तरीके से। लेकिन मेंटल फिटनेस के लिए, मेंटली हम स्ट्रांग रहने के लिए, और जिस तरीके की आपने बात कही कि मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तो उसकी उस चीज़ की ट्रेनिंग तो इंटेंशनली या कॉन्शियसली बचपन से तो किया नहीं जाता है। और जैसे आपने कहा कि अभी यहाँ से डोली उठी तो फिर उधर से अर्थी उतर दी, यही साइकोलॉजिकली फिट करके भेजते हैं महिलाओं को। तो वो कितनी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सक्षम है, कुछ भी है, लेकिन वो जो सोच है वो सोच उसको वहाँ पे रोक देती है। तो फिर यहाँ पे फिटनेस या स्ट्रेंथ क्या है जिससे वो अपने आप को मोल्ड करे या फिर उससे बाहर आ सकती है?
1: देखिए, सबसे पहले तो हमें जो एक लूप या साइकिल चल रहा है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी औरतों की ही है। उन्हें अपनी बेटियों को जो सदियों से उन्हें शिक्षा मिलती आ रही है उसको अब रोकना होगा। तभी बेटियां मानसिक रूप से स्वस्थ और मानसिक बलवान हो पाएंगी। जब उन्हें समय रहे, जब उन्हें पता रहेगा कि उनके अधिकार क्या हैं और उनको कहाँ रोकना है, और जब उन्हें वो डर नहीं होगा कि अगर मैंने इन्हें रोका या कुछ किया उसके जो अंजाम होंगे उसमें मुझे सिर्फ मुझे ही भुगतना पड़ेगा, किसी और को कुछ नहीं भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज भी हमारे समाज में डाइवोर्स या फिर तलाक जैसे जो शब्द हैं वो औरतों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक माने जाते हैं कंपेयर टू मर्द। और वो उसके पीछे कारण ये है कि पीछे से एक पीढ़ी के पीढ़ी इधर पीढ़ी सेम ही बात सिखाई जा रही है। तो उसको रोकने की जिम्मेवारी औरतों की होगी, क्योंकि बेटियाँ ये शिक्षा अपनी माँ से ही लेती हैं और कहीं से नहीं मिलती। कोई भाई बाप ये सिर्फ शिक्षा नहीं देता, माँ के साथ सबसे अधिक समय बिताती हैं। तो माँ को वो साइकिल ब्रेक करनी पड़ेगी। तो एक बेटी के मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में उसकी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। और जहाँ तक आपने बोला कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त किया जाए, तो दो चीज़ें हैं इसमें। आप मानसिक रोगी हुए या नहीं हुए, तो जब तक आप नहीं हुए, उससे पहले वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन, कि आप मानसिक रोगों से अपने आप को कैसे बचा पाएं। तो उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें जैसे जो जो चीज़ें शारीरिक हिस्से में काम करती हैं वैसे वैसे चीज़ें मानसिक रूप में भी काम करती हैं। इसमें योग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप सैर करती हैं, आप पॉजिटिव चीज़ों को देखती हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहती हैं, और सबसे बड़ी बात चीज़ों को वेंट आउट मतलब चीज़ों को बाहर निकालती हैं, तब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह जाते हैं। चीज़ों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में कोई भी कुंठा हो रही है, कोई भी बात हो रही है, जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालेंगी तब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकती। तो आई थिंक वेंटिंग आउट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके अंदर में आपको अपना कोई ऐसा साथी, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या कोई ऐसा दोस्त ढूंढना पड़ता है, जहाँ से जहाँ में आपके अंदर जो भी द्वंद्व चल रहे हैं आप उसको बाहर निकाल पाएं।
0: जी, सो अगर हम पॉइंट आउट करें, हमको हमेशा हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे साथ सकारात्मक बातचीत करते रहे, और जो हम मीडिया में, यूट्यूब में या कहीं पे भी जो इंटरनेट पे चीज़ें देख रहे हैं उसमें हम कॉन्शियसली फिल्टर्स लगाएं कि हम सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट को ही देखें। और तीसरा, पेरेंट्स का सबसे बड़ा जिम्मेवारी है कि वो लड़कियों को ये चीज़ें ना सिखाए, तुमको दब के रहना है, तुमको सहन करना है, लेकिन जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे हिम्मत से खुद के लिए खड़ा होना भी हमें सिखाना है, और उसके साथ साथ लड़कों को भी कुछ सिखाना है, वो भी तो माँ बाप की जिम्मेवारी।
1: बिल्कुल, लड़कों भी को भी सिखाना है, लड़कों को सिखाना है, लड़कों को उनकी बाउंड्रीज सिखानी है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जो चीज़ आपको बुरी लगती है वो सामने वाले को भी बुरी लगती है। किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो जेंडर देख कर नहीं आती, दोनों की होती है, लड़कों और लड़कियों दोनों की होती है। तो हाथ उठाना, गाली गलौज करना, बल का प्रयोग करना, ये आप अपने बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। मैंने वही आपको बोला कि लड़कियों की हमें शिक्षा रोकनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें रोकनी पड़ेंगी कि ये चीज़ें नहीं सीखनी है आपको जो पीछे चलता रहा था, और लड़कों को सिखाना है आपको ऐसे बनकर रहना है, सामने वाले को सम्मान देना है, जितनी आपकी सम्मान है उतना ही सामने वाले की भी इज्जत है। तो ये चीज़ें अपने लड़कों को तो सिखानी ही पड़ेंगी।
0: जी, तो जब घर में माँ बाप या बहन भाई, वो बचपन से जिन भी रिलेशंस के साथ वो रहते हैं, वो हर किसी को अगर रेस्पेक्ट करना सीखते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली एक उम्र के बाद उनके जीवन में जब नए रिश्ते आते हैं तो फिर उनको भी वो उसी तरीके से सम्मान करना वो सीख पाते हैं।
1: बिल्कुल, जब आप स्त्री का सम्मान करना सीख जाएंगे तो फिर आप हर रिश्ते में करेंगे उसको। सिर्फ ये नहीं होगा कि सिर्फ माँ का सम्मान कर रहे हैं और बीवी का नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होगा, फिर आप हर जगह सम्मान कर पाएंगे।
0: जी, सो वीरेंद्र जी, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रहे हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है, उसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं और मेंटली फिट होने के लिए हमें क्या क्या करना है। जैसे आपने योग और मेडिटेशन दो चीज़ों का कॉन्वर्सेशन में जो जिक्र किया है, मेडिटेशन तो हमको समझ में आता है कि हमें ध्यान करना है, केंद्रित करना है, हर किसी का एक अलग तरीका होता है मेडिटेशन करने का। लेकिन ये योग और मेडिटेशन का जो डिफरेंस और योग से हमारी मानसिक संतुलन में कैसे प्रभाव पड़ता है,
1: आई थिंक डॉक्टर हर्षिता इसमें ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगी।
2: जब हम बात करते हैं योग या मेडिटेशन की, दोनों में एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि आप जो कर रहे हैं अभी कर रहे हैं, माइंडफुल होके कर रहे हैं। इसमें जो माइंडफुलनेस है वो बहुत बड़ा पावरफुल टूल है जो काम में आता है। मैं जो हूँ यही हूँ अभी हूँ, ना तो मैं कुछ पास्ट का देख रहा हूँ, ना तो मैं कुछ फ्यूचर के लिए सोच रहा हूँ। अगर अभी मुझे माइंडफुलनेस का अर्थ ही यही है, टू लिव इन प्रेजेंट, अभी यहीं पर, ना तो इससे कम ना तो इससे ज़्यादा। जब हम बात करते हैं मेडिटेशन की, बहुत सारे स्कूल्स हैं इंडिया में जो मेडिटेशन सिखाते हैं, अपने अपने तरीके से सिखाते हैं। बेसिकली वो आपको काम डाउन ही करवा रहे हैं और इससे ज़्यादा वो आपको कुछ नहीं कराना चाह रहे। जब हम कामनेस चाहते हैं, क्या वो कामनेस मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ? आंसर यस है। क्या वो कामनेस, वो शांति मैं अपने रिश्तों में चाहता हूँ? बिल्कुल इसका आंसर यस है। वही शांति मुझे अपने घर में चाहिए? बिल्कुल चाहिए। फिर हम कहते हैं कि मेडिटेशन आपको करना है, आपको एक जगह बैठ के मेडिटेशन करना इज़ नॉट अ मेडिटेशन। आप चलते फिरते घूमते फिरते आप प्रेजेंट में रहें, यहीं रहें, बिना मतलब आप पास्ट में ना जाएं। उसने मेरे साथ ये किया था, 3 साल पहले उसने मेरे को ये बात बोली थी, अब मेरे अंदर एक ग्रज बैठ गया उसके लिए। हम फॉरगेटफुल और फॉरगिवनेस अगर नहीं लाते हैं, वो चीज़ें फिर ऐसे ही कॉन्टिन्यू चलती रहती हैं। कहाँ से माइंडफुलनेस को हम एक्सपेक्ट करते हैं? मेरे लिए फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे बेटर चीज़ें हो जानी चाहिए। एक हद तक थिंक करना इज गुड, बट देन अगेन ओवर थिंकिंग आ जाना इज बैड। ओवर थिंकिंग होना, चाहे वो फ्यूचर की है या वो पास्ट की है, वो आपको कभी मेडिटेशन में लिंक नहीं करवा पाएगी। इसलिए आप जो कर रहे हैं यही हैं, अभी हूँ और यही इंजॉय कर रहा हूँ। अब जब हम बात कर रहे हैं कि हम योगा जब अगर करते हैं तो मेरा इससे मेंटल हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट आता है? अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो ही हमारा मानसिक, जो मेरी मेंटल हेल्थ है वो मैं अच्छा हूँ। मेरी हेल्थ तभी अच्छी कैसे हो सकती है? अगर मैं बेड पर बैठा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्या वो खुशी बहुत देर तक चलेगी अगर मैं 2 दिन लगातार बेड पर बैठूँ तो? नहीं चलेगी। फिजिकली मैं एक्टिव नहीं हुआ, मैं उठ के नहीं चला। सेम जैसे खाने के लिए, शरीर के लिए खाना ज़रूरी है, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं। बाहर जाओ, योगा करो, जिम करो, वॉकिंग करो, सैर करो, इट इज़ इंटर रिलेटेड। ये चीज़ें करेंगे तो हमारे जो केमिकल लेवल्स हैं अंदर, जो बनते हैं खुश रहने के हॉर्मोन्स हैं, वो डेवलप होते हैं। इसलिए हमें प्रैक्टिकल योगा है, आप ज़रूरी नहीं आपको योगा ही करना है, आप सैर पर जाएं, आप जॉगिंग पर चले जाएं, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप जिम के लिए जाएं, बट थोड़ा टाइम आपको अपने लिए बाहर निकालना ज़रूरी है। उस रूम से बाहर निकलें, उस स्पेस से बाहर निकलें, बाहर जाएं, गार्डन में जाएं, ग्रीनरी देखें, लोगों से बात करें। ये डायरेक्टली आपके मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है।
0: मतलब कुल मिला करके हमारी लाइफस्टाइल में एक ऐसी आदत हो जिसमें हम हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की बैलेंस लेकर के चले, और हमारी लाइफस्टाइल में हमारी खाने पीने पे अटेंशन हो, और हमारी जो फिजिकल हेल्थ के हिसाब से, जैसे आपने कहा कि वॉकिंग करना है, जॉगिंग करना है, या प्राणायाम, योगा, जो भी कर सकते हैं, जिससे एक रिफ्रेशमेंट होती है, एक रिजुविनेशन होता है, और जब प्रकृति के साथ वक्त बिताते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वेंट आउट हो जाते हैं। कुछ चीज़ें बोल के वेंट आउट होते हैं, कुछ चीज़ें बिना बोल के भी वेंट आउट हो जाते हैं। और मेंटली हम ऐड ऑन करने के लिए मेडिटेशन करें, जिसमें हम अपने विचारों को देखें और सकारात्मकता की ओर हम अपनी विचारों को डाइवर्ट करें या डायरेक्शन दें। सो थैंक यू सो मच आज की इस ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन के लिए। बहुत ही इंसाइटफुल और बहुत ही सीख वाली बातचीत आप दोनों ने की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करते हैं कि हमको आपसे और भी बहुत सारी विषयों के ऊपर महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, लेकिन आज के लिए आज के इस कार्यक्रम का समय की सीमा को देखते हुए हम आपसे विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: दोस्तों, ये था आज का जागृत कार्यक्रम, जहाँ पर हमने मानसिक स्वास्थ्य, खास करके महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हर्षिता जी और वीरेंद्र जी, जो हमारे एक साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हैं, आप दोनों से हमने चर्चा की है। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

माइनस 20 डिग्री और खून जमा देने वाली सर्दी में भी एक फौजी 24 घंटे हमारे देश की रक्षा के लिए तैनात रहता है। हम राष्ट्रगान चल रहे उन 52 सेकंड्स तक अपने राष्ट्रगान के सम्मान में तो खड़े ही रह सकते हैं ना।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। कार्यक्रम का वक्त है जीवन रोशनी का, और हर बार की तरह आज हमारे मध्य एक एक्सपर्ट है जो सीनियर राजू का टीचर है। प्रीति दीदी जी, आप हो से हैं, आप एक शिक्षक रह चुके हैं, बचपन से आप आध्यात्म से जुड़े हैं। 2007 से आप सिरसा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अनेक कन्याओं के जीवन आपने परिवर्तन किया है, बहुत सारे यूथ को आपने मोटिवेट किया है, और अनेक परिवारों की जिंदगी आपने बेहतर किया है अपनी आध्यात्म के माध्यम से। तो आज बहुत ही भाग्य की बात है, दीदी हमारे साथ है, प्रीति दीदी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। दीदी, आपसे जानना चाहेंगे गाने के बारे में। इस प्रोग्राम में हम गानों के बारे में चर्चा करते हैं, जो गाने हम बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा डीपली से समझने की कोशिश करेंगे। कवि प्रदीप जी की एक रचना है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो इस गाने के बारे में जानेंगे। जैसे पंक्तियों में लिखा हुआ है कि सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हम देखते हैं कि सूरज चांद भी बदल चुके हैं, तो प्रदूषण की मात्राएं भी बढ़ गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इंसान के साथ साथ ये प्रकृति में बदलाव क्यों?
1: एक्चुअल में जब ये गीत बना था मे बी 1958 में, एक प्रदीप कुमार जी का गाया हुआ और रचा हुआ गीत है। उन्होंने 1947 के बाद, 1947 के बाद जो भारत की हालत थी उसी को देखते हुए ये गीत बनाया था
0: जी।
1: लेकिन आज धीरे धीरे उससे भी बदतर हालत हो गई है।
0: हाँ जी।
1: क्योंकि गीत के बोल तो हैं, ना बदला सूर्य ना बदला चंदा, है ना, चांद भी नहीं बदला, आसमान भी नहीं बदला, सिर्फ इंसान बदला है। लेकिन वास्तव में आज तो वायुमंडल भी बदल गया
0: जी।
1: अनचाही बरसात, अनचाहा जो है कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा, फ्लड, ये सब चल रहा है। ये कहीं ना कहीं इसका दोष जो है ना वो मनुष्यों पर है। बढ़ती हुई संख्या और उसके साथ लोभ
0: जी,
1: लोभ वृत्ति के कारण, कारखानों की बढ़ती संख्या या जंगलों की कटाई, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे पोल्यूशन तो बढ़ा, जिसका प्रभाव पड़ा प्रकृति पर। और इंसान भी प्रकृति का ही बना हुआ है, एक मनुष्य का शरीर भी पांच तत्वों से बना है, तो उसी पांच तत्वों का प्रभाव जो है उसके मन पर भी प्रभावित कर रहा है
0: जी।
1: आज मन जो है ना वो सब का ही नेगेटिव दूषित हो गया है, क्योंकि इंसान में अगर बदली है तो उसकी सोच बदली है, और वो सोच बदलने के कारण ही ये सब चल रहा है।
0: तो हमारे सोच का असर ये प्रकृति पर पड़ता ही है।
1: जी जी जी, पड़ता ही है। जैसे एक छोटा सा प्रसंग बताते हैं
0: जी।
1: कहते एक बार कहीं गेहूं का ट्रक जा रहा था, तो ड्राइवर को पता नहीं चला, तो उसमें से गेहूं का एक बोरा नीचे गिर गया, सड़क पे गिरा, तो वो तो चला गया, ट्रक वाला तो चला गया। तो कहते वो बोरा नीचे गिरा, उसका मुंह खुल गया, उसमें से गेहूं बाहर बिखर गई। बिखरी गेहूं को देखकर एक गाय आई, थोड़ी देर तक उसने उस जो है गेहूं को खाया, जब उसका पेट भर गया वो चली गई
0: जी।
1: फिर थोड़ी देर में कबूतरों का झुंड आया, उन्होंने भी थोड़ी देर अपना दाना चुगा, जब उनका भी पेट भरा वो भी चले गए। लेकिन तीसरी बार एक इंसान आया
0: जी,
1: और इंसान ने आते ही क्या किया होगा आप सोच सकते हो,
0: कि
1: उन्होंने उसी बोरे को अपने कंधे पे डाला और अपने घर में ले गया
0: जी।
1: आज जीव जंतु, पशु पक्षी, उनको चिंता नहीं है कल क्या होगा, क्या खाएंगे, लेकिन आज इंसान की वृत्ति ऐसी हो गई है, जो लोभ है, लालच है, उसका प्रभाव जो है वो सब जगह दिखाई दे रहा है
0: जी। बिल्कुल। तो इसका असर प्रकृति पर भी पड़ रहा है। और इसके बाद कुछ लाइंस इस प्रकार से है कि समय जो है वो बड़ा बेढंगा सा है
1: जी।
0: और आदमी जो है वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, जिसको कवि जी ने कहा है लफंगा, और कहीं पे हम झगड़ा देख रहे हैं, और कहीं पे हम पोस्टर्स पर भी देख रहे हैं कि हम अश्लील तस्वीरें देख रहे हैं
1: जी, जी।
0: और कहते हैं कि तस्वीर अश्लील है उस बिना कपड़े के, और उस पोस्टर के नीचे जो आदमी सो रहा होता है वो भी बिना कपड़े के भी आजकल हम देख रहे हैं। तो ये जो दौर है, और कहते हैं कवि जी यहाँ पर कि छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान है
1: जी, जी,
0: कितना बदल गया इंसान है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो इस तरीके से कार्य कर रहे हैं वही आगे बढ़ रहे हैं, आपका क्या कहना है?
1: वो आगे बढ़ रहे हैं, अभी दिख रहा है। वास्तव में हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार ये बोला गया कि धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो तो कुछ गया और चरित्र गया तो सब कुछ गया
0: जी।
1: ये हमारा एक बहुत बड़ा स्लोगन है, लेकिन आज इसके ऑपोजिट हो गया
0: जी।
1: आज बोलते हैं कि धन गया तो सब कुछ गया, हेल्थ गई तो थोड़ा ही कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो कुछ भी नहीं गया
0: जी।
1: आज चरित्र का पतन हो गया, क्योंकि मोरालिटी चाहे यूथ है आज, वो शायद वो फिल्मी दुनिया का असर है या शायद वो ये कलयुग का प्रभाव है
0: जी।
1: कि उनकी मनोवृत्ति ऐसी हो गई है कि उनको लगता ही नहीं कि वो रोंग कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं
0: जी।
1: तो ऐसी वृत्ति का कारण ये है, कुछ तो मोबाइल्स हैं, टीवी हैं, या जो खुलापन आ गया ना, उस करके आज इंसान जो है वो अपनी कथनी करनी को भी बराबर नहीं कर रहा, और उसकी सोच भी, उसके कर्म भी, उसका व्यवहार भी सब चेंज हो गया है। इस करके कवि ने शायद उस टाइम लिखा था कि इंसान लफंगे की तरह हो गया है, लेकिन मोस्टली मेरे को तो ये लगता है कि आज हर इंसान जो है वो वैल्यूलेस होकर, बाहरी रूप से तो वो सुंदर दिखता है, पर्सनैलिटी का ध्यान रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं गुणों की कमी, कहीं ना कहीं मोरालिटी की कमी, कहीं ना कहीं उसके अंदर ना मानवता खो गई है, स्वार्थी हो गया है, जिस करके दुनिया की ऐसी हालत होती जा रही है
0: जी। तो वास्तविक में खुलेपन का अर्थ क्या है?
1: खुलेपन का अर्थ है कि आज जो शिक्षा भी दी जा रही है उसमें सिर्फ बुकिश नॉलेज तो है ही, पहले बहुत सारी बातें ऐसी होती थी जिसको पर्दे में रखा जाता था, जिसको कहा जाता था कि ये बातें तो अंदर करने वाली है
0: जी।
1: लेकिन आज उसी को ही जो है आज का यूथ है, आज के बड़े है, उसको स्वीकार कर लिया कि नहीं, कहीं ना कहीं विदेशी कल्चर का प्रभाव आ रहा है
0: जी।
1: उस चीज का प्रभाव, कहां हम सोचते थे कि जब बच्चा 14-15 साल का होता था तब उसको अपनी फिजिकल चेंज के बारे में नॉलेज होती थी
0: जी।
1: लेकिन आज एक छोटे बच्चे को भी, 5 साल 6 साल के बच्चे को भी फिजिकल की नॉलेज, अपनी बॉडी की नॉलेज और हर बात को वो समझता है
0: जी।
1: कहीं ना कहीं कारण उसकी मानसिकता को बदलने का या तो टीवी रहा है, या फिल्में रही है, या मोबाइल का रोल रहा है, या जो आज रोल मॉडल है वो हमारे सामने कोई नहीं है, जो रोल मॉडल दिख रहे हैं उसी को ही वो फॉलो कर रहे हैं
0: जी। जो बच्चों को हम अगर सेक्स एजुकेशन की भी बात करते हैं यहाँ पर, तो ये होना जरूरी है, आपको क्या लगता है आज के मंजर को देखते हुए छोटे बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को?
1: जो गर्ल्स हैं उनको जानकारी के लिए बताना जरूरी है, वो भी बैड टच और गुड टच के बारे में
0: जी।
1: बाकी उनको इतना विस्तार में जाने की या पहले से एडवांस नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, हमें तो यही लगता है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक वे से देखें तो 12 साल के बाद ही हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं
0: जी।
1: उसका इफेक्ट बॉडी पे दिखाई देता है, चाहे वो गर्ल्स है चाहे वो हमारे बालक है, दोनों पे दिखाई देता है। लेकिन उसकी नॉलेज देना एक पेरेंट्स का, एक टीचर का, वो तो उसकी ड्यूटी है
0: जी।
1: लेकिन उसको डीप नॉलेज देना, उससे उसके माइंड को डाइवर्ट करना, उसके मन को दूषित करना, ये रॉन्ग हो जाता है। कहीं ना कहीं खुली सोच ने भारत को बहुत ज्यादा पतन की ओर ले जाना शुरू कर दिया है
0: जी। बिल्कुल, तो दीदी ने जैसे कहा गुड टच और बैड टच के बारे में ये जानकारी देना बहुत जरूरी है, लेकिन जितना देना जरूरी है उतना ही देना चाहिए। इसके साथ साथ जब हम छल कपट वाले इंसानों को देखते हैं हमारे इर्द गिर्द भी, जिनकी जीत होती हुई हम देखते हैं, तो हम खुद घबरा जाते हैं या फिर हम खुद लो फील करते हैं, तो उस समय हम अपने मन को कैसे समझाएं?
1: एक्चुअल में हम तो कहेंगे इस समय झूठ फरेब का राज चल रहा है
0: जी।
1: तो जिसका राज होता है वो फलीभूत तो होएगा ही होएगा,
0: राइट।
1: तो इसलिए अगर छल कपट फलीभूत हो रहा है तो कोई नई बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा पास्ट कर्मों का खाता भी तो है।
0: हाँ।
1: कर्म गति ये कहती है कि अगर मैंने पिछले जन्म में खूब अच्छे कर्म किए और जब मृत्यु हुई तो मैं निश्चिंत होकर इस दुनिया में आई कि मेरे तो अच्छे कर्म जमा है। अब मेरे अच्छे जमा है इसलिए मैं निश्चिंत हूँ, आते या धड़ल्ले से पाप छल कपट सब करना शुरू कर दिया, क्योंकि पीछे स्मृति थी मेरे तो फुल जमा है। लेकिन जिसने बैड किए, बहुत बुरे हुए, वो लास्ट में कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं करना, मुझे कुछ ऐसा नहीं करना जो मुझे आगे भुगतना पड़े, वो नाना करते आता है
0: जी।
1: इसलिए यहाँ वो हमें सीधा साधा सरल दिखता है, लेकिन पास्ट में वो अपने बहुत बुरे कर्म करके आया है, नाना करके आया, तोबा करके आया है
0: जी।
1: जिस करके आज वो हमें बिल्कुल सरल साधारण दिख रहा है, लेकिन पीछे जो अच्छे करके आया है वो निश्चिंत होके आया है, इसीलिए वो आज छल कपट कर रहा है, क्योंकि उन्हीं कर्मों के आधार पर जैसे सपोज करो किसी का बैंक बैलेंस जो है बहुत ज्यादा है, तो वो सोचता है मेरे बैंक बैलेंस में तो बहुत पैसा है, चाहे मैं कहीं भी खर्च करूं। लेकिन किसी के कम होते हैं तो वो सोच विचार के करता है। तो कहीं ना कहीं ये कर्म गति का भी कारण है। बाकी ये नहीं है कि जो छल वाला है वो बढ़ रहा है और जो सत्य वाला है वो डूब रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो है पास्ट गति का कहीं ना कहीं प्रभाव जो हमें फलीभूत होते हुए दिखाई देता है।
0: जी बिल्कुल, तो इस बात को हम ध्यान में रखें कि जो अभी बुरे कर्म कर रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें पास्ट में उन्होंने अच्छा कर्म किया है,
1: वो बुरे कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जीवन एक चेन है, पिछला बोया खा रहे हैं
0: जी,
1: आपका बोया हुआ आगे मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा, उसका जो है प्रमाण मिलेगा ही मिलेगा, है ना। क्योंकि जैसे धरती बीज नहीं खाती, ऐसे हमारे कर्मों का जो है वो भी खाता कभी वेस्ट नहीं जाता, छोटे से छोटे कर्म का भी खाता जरूर बनता है।
0: जी, तो अपने कर्म के ऊपर गौर करें जो भी हम कर्म कर रहे हैं। और कवि ने इस गाने में बहुत बार कहा है कि कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। तो इंसानों के बदलने का कारण आपको क्या लगता है, गहराई क्या है इसमें?
1: इंसानों के बदलने का अगर हम मोटे रूप में देखें तो इंसान तो वही है जिसकी दो आंखें थी, दो कान थे
0: जी,
1: वही नाक थी, सब कुछ वही है
0: जी।
1: लेकिन आज वो बदली है तो उसकी सोच बदली है। जो शुरू में बोलती थी कि तेरे बहाने सरबत का भला, कि सबका भला हो, आज वो सबका भला में सिर्फ मेरा अच्छा हो जाए, मुझे किसी से नहीं लेना देना, ये भावना जो है ना वो फलीभूत ज्यादा हो गई है। इंसान में बदली है उसकी सोच, क्योंकि सोच जो है ना वो एक बीज है
0: जी।
1: सोच से ही बनता है हमारा व्यवहार और व्यवहार से बनते हैं हमारे कर्म।
0: राइट,
1: तो सबसे ज्यादा जो बेस बदला ना उसकी सोच बदली, और उसमें भी ज्यादा स्वार्थपन आ गया, लालच आ गया, कहीं ना कहीं अपनी लालसा पूरी करने के लिए ना बाय हुक बाय क्रूक कुछ भी करने की जो वृत्ति है ना उसने इंसान को बदल दिया है। बाकी इंसान तो वही है, पहले भी गेहूं की ज्वार की रोटी खाता था, पहले भी वही वस्त्र पहनता था, पहले भी घरों में रहते थे, आप भी हम वही कर रहे हैं
0: जी।
1: लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सोच में विचारों में अंतर आ गया है। पहले के मुकाबले अब के विचार जो है ना उसमें ज्यादा जो है पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिविटी या वेस्ट ज्यादा आ गया है, जिस करके इंसान जो है वो बदला हुआ दिखाई दे रहा है
0: जी। दीदी, कई लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को फिर से चेंज करें, अपने वृत्तियों को बदले, विचारों को बदले, लेकिन नहीं हो पाता। हम जब आध्यात्मिक संस्थाओं में आते हैं, हम भाषण भी सुनते हैं, मोटिवेट भी होते हैं, लेकिन फिर कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते?
1: पहली बात तो ये होती है कि दृढ़ता की कहीं ना कहीं कमी होती है
0: जी।
1: हमारे अंदर जब तक किसी काम को करने की दृढ़ता नहीं आएगी तब तक हम उस कार्य को कर नहीं सकते। और दूसरी बात ये होती है, कई बार हम टारगेट बड़ा रख लेते हैं लेकिन उस टारगेट को 2-4-10 दिनों में रेगुलर नहीं कर पाते, और फिर धीरे धीरे वो हमसे कहीं ना कहीं छूट जाता है
0: जी।
1: क्योंकि आज जो समझ है ना वो सबको फुली नॉलेज है
0: जी,
1: ज्ञान की कोई कमी नहीं है किसी के पास। इसीलिए आध्यात्मिकता में यही बताते हैं कि रावण के 10 सिर थे। 10 सिर का प्रतीक यही है कि आज के इंसान के पास एक दिमाग है
0: जी।
1: तो उसके पास 10 गुना दिमाग था, लेकिन वो किस तरफ जा रहा था? बुराई की तरफ जा रहा था। तो इसी तरह आज इंसान के पास दिमाग फुल है, नॉलेज फुल है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर वो दृढ़ता नहीं है, वो फिसल जाता है। जो कर्म इंद्रियां वो कहीं ना कहीं उसको धोखा देती है, जिस करके वो दृढ़ता की कमी के कारण अपने जो असूलों को, अपनी जो मान्यताओं को, अपनी जो उसने धारणा बनाई है ना उस पे खरा नहीं उतर पाता और अपने आप का परिवर्तन नहीं कर पाता। तो उसके लिए हमें अभ्यास की, खुद को एक लक्ष्य देने की जरूरत है। जब हम बार बार उस चीज का अभ्यास करते हैं या मन में एक लक्ष्य देते हैं तो जल्दी उस टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। आज एक बच्चा कमजोर होता है तो भी उसके पेरेंट्स ये बोलते हैं, नहीं नहीं मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा। अगर उसको फोर्स किया जाता है
0: जी
1: और वो ट्यूशन भी लेता है, लगन से पढ़ता भी है, तो एक दिन वो डॉक्टर जरूर बनता है।
0: राइट,
1: इसका उदाहरण है हमारे वैज्ञानिकों में भी, उसका उदाहरण है
0: जी,
1: कि वो बिल्कुल ही जो जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन की है
0: जी,
1: तो उनका दिमाग बिल्कुल ही मेंटली वो क्या थे, डिसऑर्डर थे, जब टीचर ने लिख के दिया कि आपके स्कूल में जो हमारे स्कूल में आपके बच्चों को पढ़ाने का जो है कोई सोर्स ही नहीं है क्योंकि इसका दिमाग बहुत ही वीक है, आप किसी और स्कूल में इंतजाम करो, तो उसकी मदर ने उसको एक चैलेंज रूप में स्वीकार किया
0: जी
1: कि मेरे को ये बोला है कि स्कूल में नहीं है लेकिन मैं घर में तो करा सकती हूँ, लेकिन बच्चे को शो नहीं होने दिया, उसको सिर्फ यही कहा कि वो वहां तेरे को पढ़ाने के लायक टीचर नहीं है, तेरे को मैं घर में पढ़ाऊंगी
0: जी,
1: तेरे को मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी। तो माना एक विल पावर जब होती है या जब हम एक लगन में लग जाते हैं, एक लक्ष्य रखते हैं ना, तो वहाँ जरूर उसकी प्राप्ति होती है, वहाँ उस ध्येय को हम प्राप्त करके ही रहते हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही अलबेलापन या कहीं ना कहीं बात में हम ही दृढ़ता की कमी के कारण उस बात को चेंज नहीं कर पाते, इसलिए दृढ़ता चाहिए
0: जी। आजकल की मोबाइल युग में हम चाहते हैं कि हम दृढ़ता पूर्वक, जैसे हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो हम मोबाइल नहीं देखेंगे, आज नहीं देखेंगे, आज हम सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे और पढ़ाई करेंगे, लेकिन जैसे ही हम बेड पे जाते हैं तो हम भूल जाते हैं वो बात, फिर हम मोबाइल देखने लगते हैं, वो एडिक्शंस इतने दिनों के इतने सालों से है हमारे में
1: जी।
0: तो कैसे फिर करें उसको?
1: उसके लिए तो वही है, बस वो प्लानिंग है, माना मन को हमको साधना पड़ेगा, मन को पक्का करना पड़ेगा। जैसे मैंने संकल्प किया कि मुझे रात को फोन नहीं देखना, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ उपाय भी करना पड़ेगा कि नहीं देखना तो फिर कहाँ रखना है। अगर उसको अपने सिराने पे ही रखा, अगर उनको पास ही रखा, तो फिर तो नेचुरली, क्योंकि हमें जो हैबिट पड़ी हुई है वो हैबिट जल्दी नहीं जाती, वो हैबिट्स को छोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब हम इस बात को पक्का कर ले कि पहले उसका इंतजाम भी तो करें, कोई आदत छोड़नी है, तो उसमें मन में एक दृढ़ता लेके आए और प्लस अपने अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, थोड़ा मेडिटेशन करें, जिससे मेरी विल पावर जो है वो पूरी मजबूत होगी, पावरफुल होगी, फिर मैं उस कोई भी अपनी कमी कमजोरी को निकाल सकूंगा। अदरवाइज वो कमी जो है वो हमारे ऊपर ही हैवी हो जाती है। तो उसके लिए मेडिटेशन की हेल्प लेनी चाहिए, उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए, उसके लिए सुबह उठते ही हमने क्या अपने आप को संकल्प दिया बार बार रिमाइंड करना चाहिए। अभी आप ये मान के चलो, हमने 10-12 साल पहले पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एक लेक्चर दिया था, तो वहाँ बड़े भाई साहब गए हुए थे, मैं उनके साथ ही गई थी
0: जी।
1: तो

0: मिल रहा है, इनाम मिल रहा है, डिग्री मिल रही है, गोल्ड मेडल मिल रहा है
1: जी,
0: उसने अपने रूम में पूरे पेज पे पेपर पे लगा के रख दिया। मॉर्निंग में उठते ही उन्होंने जब देखा, रोज उसको देखा, पक्का कराया कि नहीं, एक दो मार्क्स के लिए मुझे सेकेंड नंबर पे नहीं रहना, मुझे तो फर्स्ट पे ही आना है
1: जी।
0: तो 4 मंथ आफ्टर जब उसका ईमेल आया तो उसने बताया कि सच में वो फर्स्ट नंबर पर आया है। वो उसका रिजल्ट क्या था कि जो उसने बार बार देखा, जो बार बार सोचा, जो बार बार किया, उसका उसको रिजल्ट मिला ना। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है किसी भी कमी कमजोरी संस्कार को त्यागने के लिए। आज हम सब रेडीमेड चाहते हैं, सब कुछ जल्दी जल्दी मिल जाए
1: जी।
0: लेकिन अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, दृढ़ता लेके आए, तो परिवर्तन हो सकता है
1: जी
0: ना। क्योंकि इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम अ पॉसिबल
1: जी।
0: अगर उसको भी अलग करेंगे ना, इम्पॉसिबल को भी, वो भी कहता है आई एम अ पॉसिबल है ना। तो इसलिए इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन उसके लिए अपने को एक विजन देने की, एक लक्ष्य देने की, वो आवश्यक।
1: वो हर दिन थोड़ा थोड़ा कोशिश करना है।
0: हाँ, हर दिन थोड़ी थोड़ी जो है कोशिश करनी चाहिए
1: जी। तो यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत। आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट प्रीति दीदी जी हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम जीवन रोशनी में। आज हमारे बीच हमारे एक्सपर्ट सीनियर राजयोगा टीचर प्रीति दीदी जी है सिरसा से, और आप शिक्षक भी रह चुके हैं। 2007 से समर्पित रूप से ब्रह्मा कुमारीज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए दीदी का फिर से स्वागत करते हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद जी। ओम शांति।
0: ओम शांति। दीदी जैसे ब्रेक से पहले भी बहुत सारी बातों के बारे में आपने हमें गाइड किया कि हम क्यों बदल गए हैं, और अगर अपने आदतों को हमें फिर से चेंज करना है, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है, तो कैसे हम दृढ़तापूर्वक आदतों को बदल सकते हैं, इसके बारे में हमने बात की। कर्मों की गुह्य गति के बारे में भी आपने बताया।
1: जी जी।
0: अभी आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर कुछ लाइन्स इस प्रकार से हैं कि राम के भक्त और रहीम के बंदे रचते आज फरेब के फंदे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दुनिया में हर धर्म के बीच में थोड़ा बहुत लड़ाइयाँ चल रही है।
1: जी जी।
0: तो आप क्या सोचते हैं कि धर्म क्या है?
1: धर्म का मूल अर्थ है धारणा।
0: जी।
1: धर्म जो है वो कोई देह से नहीं जुड़ा।
0: जी।
1: आज फसाद की जड़ जो बन गया ना, वो दैहिक धर्मों से बन गया कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, जैन हूँ, फलाना हूँ। ये जो धर्म है ना, ये आपस में मतभेद पैदा करता है। लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ है कि हमारे अंदर प्रेम की, सद्गुणों की, शांति की, सद्भावना की धारणा होना। इसीलिए जो हमारा एक प्रसिद्ध गीत भी है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना।
0: जी।
1: कोई भी मजहब कभी भी वैर रखना नहीं सिखाता, लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर द्वेष हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो धर्म के नाम पे हो रहा है।
0: जी।
1: क्योंकि वास्तव में सबने दैहिक धर्म को ही मूल मान लिया है। पर वास्तव में हमारा जो धर्म है, मूल धर्म है, हमारी आत्मा का जो धर्म है, वो है शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ये उसका धर्म है। और अगर सब यही चाहें कि मुझे प्रेम से, शांति से, प्यार से, पवित्रता से एक दूसरे के साथ चलना है, बात करनी है, रहना है, व्यवहार करना है, तो कोई झगड़े की बात ही नहीं।
0: राइट।
1: विभाजन से पहले हम सब ने देखा, सब एक होकर रहते थे, कोई पता ही नहीं चलता था कौन बच्चा मुसलमान का है, कौन बच्चा हिंदू का है, कौन बच्चा किस जो है समुदाय से बिलोंग करता है, हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन ये बाद में ही, ये सारे जैसे ही अलग अलग टाइटल मिलते गए, दैहिक धर्म बनते गए, ये सारा विवाद फसाद तब पड़ा।
0: जी।
1: इसलिए हमारी मूल धारणा जो है प्रेम की, शांति की, आनंद की, उस धारणा पर अगर हम चलते हैं तो फसाद हो ही नहीं सकता।
0: जी।
1: क्योंकि हम भगवान के घर से आए, हम सब मानते हैं, जब वहां से आए तो वहां से कोई स्पेशल थोड़ी था कि ये हिंदू धर्म क्या है, ये मुसलमान धर्म क्या है, वो तो जिस कुल में, जिस घर में, जिस बिरादरी में जन्म लिया वहां का टैग लग गया।
0: जी।
1: पर वास्तव में तो हम सब भगवान के बच्चे हैं, एक पिता की संतान है, हम सब रूहें आपस में भाई भाई हैं, तभी हम सब बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई।
0: जी।
1: तो धर्म यही सिखाता है कि प्यार से रहना, धर्म सिखाता है मिलजुल के, बांट के खाना, एक दूसरे को सद्भावना देना, सहयोग देना, ये मूल धारणा है धर्म की।
0: ये हम भूलते जा रहे हैं, इसलिए आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। और एक साथी कहते हैं कि इतना बदलाव इंसान में क्यों आया, पुराने जमाने से अब तक सब नीचे क्यों आते जा रहे हैं? इसकी जवाब आपने दिया है, इतने एनजीओज हैं अभी, इतने टेक्नोलॉजी भी एडवांस्ड है, लेकिन फिर भी हम नीचे क्यों गिरते आ रहे हैं?
1: क्योंकि बाहरी जो है ना, बाहरी उठाव तो हुआ, बाहरी जो है वहां से तो हमने खूब तरक्की कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो अंदरूनी ताकत थी, शक्तियां थी, वो गुम होती चली गई।
0: जी।
1: जिस करके भारत पतन की ओर जा रहा है, जिस भारत के लिए हम कहते थे जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा, आज उस गीत का ओपोजिट हो गया कि देख तेरे संसार की हालत।
0: जी।
1: ओपोजिट हो गया ना उसका, माना कहने का भाव कि जहाँ सशक्त भारत था, जिनकी मानसिकता, जिनके अंदर सशक्त मन था, एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के प्रति सहयोग था, आज वहां धीरे धीरे धीरे धीरे कटुता ने रूप धारण ले लिया, क्योंकि बाहरी शोशेबाजी, बाहरी शो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं आंतरिक गतिविधियों की ओर कहीं ध्यान नहीं है। आज एक माँ अगर बच्चे को हॉस्टल में भेज दिया, उसको समझा के भेजेगी कि जो नशा करते हैं उनके साथ नहीं रहना, फलाने के साथ नहीं बोलना, ये वेस्ट खाना नहीं खाना, बासी नहीं खाना, लेकिन किसी माँ ने आज तक किसी को बताया कि तूने ऐसा गंदा भी नहीं सोचना?
0: जी नहीं।
1: तूने कभी ऐसा जो है मन में विचार भी नहीं लाना? मन के लिए तो कभी किसी ने गाइडेंस दी ही नहीं।
0: जी।
1: तो जब मन के लिए दी नहीं, दी ही बाहरी चीजों के लिए, तो बाहरी चीजों में ही तो तरक्की होनी थी।
0: जी।
1: तो जिसकी ओर ध्यान नहीं रखा वही पिछड़ गया, वही पीछे रह गया, है ना। तो जरूरत है मन को सशक्त करने की, एम्पावरमेंट देने की मन को।
0: जी।
1: उसकी जरूरत है।
0: तो मन को सशक्त करने के लिए टेक्निक्स भी है, वो आगे जानेंगे। वो साथी पूछ रहे हैं कि आपके अनुसार कैसा बदलाव अभी आना चाहिए मनुष्य में?
1: मनुष्य में बदलाव जो आज स्वार्थपना है ना, अगर वो समाप्त हो जाए, आपस में प्यार की, आपस में जो लेन देन है वो निस्वार्थ भाव से हो, जो धन को प्रेफरेंस दे रहे ना वो धन की बजाय अगर उसके गुणों को प्रेफरेंस दी जाए, अगर मानवता को प्रेफरेंस दी जाए, तो बहुत बड़ा सुधार जो है वो आ सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं गिरावट का कारण है कि हम बाहरी रूप को देख कर ही उसको प्रेफरेंस देते हैं। आज इतना बड़ा व्यक्ति होता है, उसके साथ उतनी अच्छी ही उसको VIP सब चीजें मिलती हैं, लेकिन एक साधारण व्यक्ति जिसके अंदर गुण है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। कारण क्या है? क्योंकि हम बाहरी रूप से ही प्रभावित होते हैं, अंदर की मानसिकता कोई देख नहीं सकता, इसीलिए उस व्यक्ति को भी हम ऐसे समझते हैं कि ये तो छोटा है।
0: राइट।
1: बाहरी ड्रेस का, जैसे लुकमान का उदाहरण आता है ना, कि एक बार किसी जगह वो गए तो उनको किसी ने बोला कि वो कपड़े ऐसे डालते थे साधारण, तो बोला वहाँ राजा के यहाँ भोग है तो आप अच्छे कपड़े डाल के जाओ ना। तो उसने सेठ ने अपने कपड़े दे दिए।
0: जी।
1: तो जब वो कपड़े डाल के उस भोज में पहुंचे तो वहाँ सारे खा रहे थे, लेकिन वो खाना नहीं खा रहे थे, वो उठा उठा के अपने कपड़ों को खिला रहे थे, ले ले ले आइसक्रीम खा ले ले ये दाल खा ले ले ये खा ले। सारे कहते भी इतना हकीम है, इतना समझदार है, आज ये ऐसे काम क्यों कर रहा।
0: जी।
1: तो उनको जब जाके पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा आपने मेरे आउटर रूप को देख के तो मुझे एंट्री दी है।
0: जी।
1: मेरी इनर ब्यूटी को तो आपने देखा ही नहीं, इसलिए आउटर को ही खिला रहा हूँ, क्योंकि इनवाइटेड तो ये है, मैं थोड़ी इनवाइटेड हूँ। है ना। तो बाहरी जो रूप है ना वो आज ज्यादा प्रत्यक्ष है, लेकिन इनर ब्यूटी की तरफ कहीं ना कहीं ध्यान जो है हमारा बिल्कुल भी नहीं है।
0: जी। क्योंकि जैसे पहले भी आपने कहा था कि आजकल जो बाहरी रूप देखकर ही लोग आपको पसंद कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए यूथ भी यही चाह रहा है कि ठीक है यही सही, हम यही कर लेते हैं, इनर ब्यूटी को छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि आउटर ब्यूटी से ही लोगों को एक्सेप्टेंस मिल रहा है।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आज का यूथ का रोल मॉडल भी यही है, या तो हीरो हीरोइन है या क्रिकेटर है, किसी का रोल मॉडल नहीं है कि हमारे श्री लक्ष्मी नारायण, हमारे श्री कृष्ण, श्री राधा जी, श्री राम, श्री सीता, रामायण पढ़ना पसंद करते हैं, भागवत सुनना पसंद करते हैं, लेकिन राम जी बनना पसंद नहीं करते, श्री कृष्ण जैसा बनना पसंद नहीं करते। हम तो ऐसे भारत में रह रहे हैं कि यहाँ अगर हमें कोई दो मूर्तियां दिखाए राम जी की, बोले कि एक मूर्ति जो है वो पत्थर की है, एक मूर्ति सोने की है, जो राम जी की मूर्ति है वो पत्थर की है और रावण की जो मूर्ति है वो सोने की है, तो कौन सी लेना चाहोगे?
0: जी।
1: तो आप सोच सकते हो कि लोग किसको प्रेफर करेंगे।
0: जी।
1: वो खाली उसके स्वरूप को नहीं देखेंगे, उनके वो सिर्फ जाएगी, उनकी वृत्ति कहाँ जाएगी, सिर्फ आउटर पर। वो मिट्टी की मूर्ति श्री राम की वो नहीं उनको प्रभावित करेगी, लेकिन वो सोने की मूर्ति रावण की है वो अपनी तरफ जरूर खींचेगी। कहीं ना कहीं अभी तक जो हमारी दोहरी मानसिकता है वही इस गिरावट का मूल कारण बन गई।
0: जी। जैसे मानसिकता के बारे में आप कह रहे हैं, और आप कह रहे थे कि जो माताएं हैं वो गाइड नहीं करते कि हमारे मन में विचार कैसे आना चाहिए, तो शरीर को सुंदर बनाने के लिए हम कसरत करते हैं, तो मन की सुंदरता के लिए क्या कसरत करना चाहिए?
1: मन की सुंदरता के लिए सबसे जरूरी कसरत है कि हम अपने मन को कम से कम 10-15 मिनट तक देखें, वो कहाँ जाता है रोज सारे दिन में।
0: जी।
1: कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि मन एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती, विचार शक्ति है। आज हम उस पे एनालिसिस नहीं करते, बाहरी रूप में करेंगे, इतना आज खर्चा हो गया, इतना टाइम वहां लग गया, लेकिन माइंड मेरा कहाँ कहाँ लगा वो कभी नहीं देखा, क्योंकि जिस चीज को हमने देखा नहीं वो चीज ही हमसे दूर हो गई। एक बच्चा बाहर खेलने गया, शाम हो गई, वापिस नहीं आया, मदर देखने जाएगी कहाँ गया, लेकिन मेरा मन सुबह से लेके शाम तक भटक रहा है
0: जी,
1: हमने कभी नहीं देखा वो कहाँ जा रहा है।
0: राइट।
1: इसलिए मन को थोड़ी सी देर के लिए अपने पास बिठाने की, बात करने की जरूरत है, जिससे मानसिकता बदलेगी। क्योंकि जब हम सेल्फ को देखते हैं, माइंड को देखते हैं, क्योंकि किसी भी चीज के पीछे भागते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे के पीछे हम भागेंगे
0: राइट,
1: तो वो रुक जाता है, लेकिन हम बैठे होते हैं तो वो हमें हाथ लगा के कहते हैं मुझे पकड़ो। तो कहीं ना कहीं मन की भी यही दशा है, हम पीछे भागते हैं तो वो रुका हुआ है, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि नहीं मैं तो बैठी हूँ, मन ही भाग रहा है, तो वो फिर वो भागेगा, वो हमें भी भगाएगा। तो इसलिए मन को थोड़े से टाइम के लिए टाइम देने की जरूरत है। अपने आप से ही पूछें, अपने आप को ही ये एक जो है जरूरी इन्फॉर्मेशन दे कि मेरे साथ क्या जाने वाला है, जो मैं कर्म कर रहा हूँ, कर्म कर रही हूँ, क्या ये मेरे जो कर्म है, ये पूंजी जो मैं इकट्ठी कर रहा हूँ या वेस्ट इकट्ठा कर रहा हूँ, क्या मैं इसके लिए इस जीवन में आया, मेरा लक्ष्य क्या है। जब आप मन से 2-4-5 बार क्वेरी करते हैं, जैसे काउंसलर काउंसलिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, अंदर की बातें ही तो निकलवाते हैं
0: जी।
1: तो ऐसे मन से अगर हम अंदर की बातें निकलवाएंगे तो मन हमारा अपने आप ही बस में आएगा, क्योंकि हम मन की पीठ नहीं करते। मन को तो बोल दिया, मन तो घोड़ा है, मन तो फलाना है, मन तो किसी के काबू में आया ही नहीं। तो मानसिकता तब बदलेगी जब हमारे मन में सुधार होगा, जब मन में अच्छे विचार आएंगे, और जब अच्छे विचारों के लिए हमें कहीं ना कहीं आध्यात्मिक संस्था से जुड़ना पड़ेगा, और वो आध्यात्मिक संस्थाएं हमारे यहाँ बहुत है। ब्रह्मा कुमारी संस्था भी ऐसा बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जो मन के बदलाव की ओर सबसे ज्यादा तीव्र गति की ओर उसका अटेंशन है, जिसके बहुत सारे कोर्सेज हैं माइंड को मैनेज करने के, अपने विचारों को, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं। अगर हम वो काउंसलिंग भी लेते हैं उनसे या वो टॉपिक भी सुनते हैं, तो भी हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, काबू में कर सकते हैं
0: जी। बिल्कुल। तो आप रेडियो मधुबन पर भी समय प्रति समय ब्रह्मा कुमारीज के जो फॉर्मर चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज रहे हैं दादियाँ, उनकी बातें भी सुनते हैं और मन के बारे में भी चीज़ें सुनते हैं, तो इसे प्रैक्टिस करें आप, जैसे दीदी ने भी कहा। तो ये इस हफ्ते के लिए आप सभी के लिए होमवर्क है कि आप प्रैक्टिस करें, अपने मन के साथ समय बिताएं, फिर हमें आप फीडबैक देंगे। और इन सारे गानों को देखते हुए, इन पंक्तियों को देखते हुए, लाइंस को देखते हुए, एक सवाल उठ रहा है मन में कि क्या फिर से ये जग सुधरेगा। हम कहते हैं कि भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा, तो आपको क्या लग रहा है?
1: ज़रूर सुधरेगा, 100% सुधरेगा, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो सर्कल में है
0: जी।
1: जो सर्कल है उसका ना स्टार्टिंग होता है ना एंड होता है, वो साइकिलिंग ही करता है, पूरा चक्र ही चलता है। तो इसी दुनिया में सत्युग था, और वो सत्युग जो है बीत के अभी कलयुग एंड तक पहुंच गए, तो फिर दोबारा सत्युग जरूर आएगा। जैसे सुबह दोपहर शाम रात, जैसे मानव जीवन की अवस्था, बच्चा है, फिर किशोर अवस्था में है, युवा अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, फिर मृत्यु, फिर बच्चा, तो ये सारी चीजें एक साइकिल में बंधी हुई है
0: जी।
1: ऐसे इस विश्व को भी जरूर परिवर्तन होना है, तो वो होगा भी जरूर। वो परिवर्तन जो है हम सबके प्रयास से होगा, और अगर हम अपनी गारंटी ले लें हम सब कि हम ही उसको परिवर्तन करने के निमित्त बनेंगे, तो ये भारत जो है शीघ्र ही विश्व गुरु, शीघ्र ही स्वर्ग बन जाएगा, ऐसी हमारी शुभ भावना भी है और ऐसा हमारा पक्का विश्वास भी है कि भारत जो है फिर से विश्व गुरु बनेगा और फिर से भरपूर बनेगा
0: जी। तो इसमें अध्यात्म का क्या रोल है?
1: अध्यात्म का रोल ये है कि अध्यात्म माना अपने आत्मा का अध्ययन, इसमें हम सेल्फ पे ध्यान देते हैं। क्योंकि आज अगर हमें कोई कहे कि फलाने की 2 कमजोरी बताओ, तो हम 2 की बजाय 4 बताएंगे
0: जी।
1: लेकिन कोई कहे अपनी 2 कमजोरी बताओ, तो वो 2 कमजोरी हमें ढूंढनी पड़ती है
0: राइट।
1: क्योंकि हम उसके लिए बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं नहीं मेरा भाव नहीं होता, मेरे मन में कुछ नहीं होता, मैं तो ऐसे सीधी सीधी बोल देती हूँ, मैं तो ऊंचा बोल लेती हूँ, उसके लिए हम एक्सक्यूज देते हैं
0: जी।
1: क्योंकि हम अपने आप को नहीं देखते, लेकिन आध्यात्मिकता दिखाती है आत्मा का अध्ययन, खुद को बदलते हैं, खुद को देखते हैं, तो वहीं से ही परिवर्तन शुरू होता है, और आध्यात्मिकता के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। स्वयं को परिवर्तन करने का, क्योंकि आध्यात्मिकता एक मार्गदर्शन है सबके लिए। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, यूथ सब जुड़ सकते हैं, कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसमें कुछ भी टफ नहीं होता, सिर्फ अपने आप को चेंज करने की बात है, अपने आप को परिवर्तन करने की बात है। और इस बात को हम स्वीकारते भी हैं। आज पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, बुजुर्ग कहते हैं हमारे कुलीग हमारे साथ का साथ नहीं देते
0: जी।
1: तो जब एक दूसरे का हम साथ नहीं देते तो खुद का तो कर ही सकते हैं ना, सेल्फ को चेंज करना तो इजी है ना। तो इसलिए आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा रोल है इस जग को सुधारने में और स्वयं को सुधारने में
0: जी। तो आध्यात्मिकता को अपनाएं, और जैसे दीदी ने कहा अपने आप के बारे में जानना, अपने आत्मा के ज्ञान के बारे में जानना, इसे ही हम आध्यात्म कहते हैं। तो इसको और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश आप करें। अगर आपको मुश्किलें आए तो आप हमें फीडबैक में बता सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं सवाल 94-14-15-14-15 इस नंबर पर। और अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हम, दीदी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि अभी समय परिवर्तन हो रहा है, तो समय परिवर्तन से पहले पहले हमें सुजाग होना है, जागृत होना है, अवेयरनेस चाहिए। बाहरी अवेयरनेस बहुत है, बाहरी चीजों का बदलाव हम चाहते हैं। घर पुराना हो गया, हम उसको कहेंगे इसको नया करें, थोड़ा रेनोवेट करें थोड़ा। अगर हमारा कपड़ा पुराना हो गया तब भी हम उसको नया बनाना चाहते हैं। हर चीज में हमें नवीनता चाहिए, लेकिन अभी संस्कारों में भी नवीनता चाहिए, अभी सोच में भी नवीनता चाहिए। इसीलिए अपने ऊपर थोड़ा सा समय सब जरूर दें, अपने संस्कारों के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, अपने व्यवहार के ऊपर। अगर ये हम बदलाव करेंगे, नवीनता लेके आएंगे, तो ये हमारा परिवर्तन ही हमें जीवन जीने की कला और एक सुखद परिवार की रचना में और सुखद भारत की रचना में, एक सुखद समाज की रचना के रूप में दिखाई देगा
0: जी। बहुत खूब, एंड थैंक यू सो मच हमारे मध्य आने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जब भी आप शांतिवन परिसर में आए तो आप रेडियो के श्रोताओं के साथ जरूर बातचीत करें।
1: जी जी जी, जरूर जरूर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओम शांति। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। आज का कार्यक्रम कैसा रहा आप हमें बता सकते हैं कॉल करके, मैसेज या फिर व्हाट्सएप करके। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।

0: मैं हूं ममता शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.
1: चटपटी मजेदार गर्मा गर्म पानी पूरी. आओ भाई आओ, गर्मा गर्म पानी पूरी खाओ.
2: क्या बात है भाई, तुमने तो तरक्की कर ली, बढ़िया ठेला ले लिया.
3: जी जी, उसके नाम से ही जीवन धन्य है.
2: लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, चटपटी तो ठीक है, ये गर्मा गर्म पानी पूरी क्या होता है? गर्मा गर्म पानी पूरी मैंने तो पहले कभी नहीं सुना.
3: भाई साहब, पहले मैं सिर्फ पानी पूरी बेचता था, लेकिन लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे. फिर मैंने सोचा कुछ अलग करके देखूं.
2: और वैसे भी पानी पूरी के अंदर का रगड़ा जो भरते हो वह तो गर्म ही होता है ना. बढ़िया बिजनेस स्ट्रेटेजी है.
3: जी जी, वो तो है.
2: भाई तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं?
3: जी पूछिए ना.
2: कुछ दिन पहले तुम्हारा जोर जोर से चिल्लाने का आवाज आया, तब मैं कुछ काम कर रहा था.
3: कुछ दिन? हाँ हाँ हाँ, याद आया. उस दिन दो लड़के मेरे से पानी पूरी लिए और बिना पैसे देकर भाग गए, और मैं गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा.
2: लेकिन मैं जब खिड़की से झांक करके देखा तो कोई एक सफेद साड़ी वाली बहन थी और तुम्हारी उनके साथ कुछ बहस हो रही थी.
3: भाई साहब, बात कुछ और थी. उस दिन जो मैं उन लड़कों पर चिल्ला रहा था, उसी वक्त वो ओम शांति वाली दीदी यहाँ से जा रहे थे. उन्होंने रुक कर मुझे समझाया कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा. पहले तो मुझे उनकी बातें अटपटी लगी, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ ऐसी बातें कही कि मेरा पूरा नजरिया बदल गया.
2: ओम शांति वाली दीदी, अब ये कौन है भाई? मैंने सोचा कोई हॉस्पिटल की नर्स होंगी, और ऐसा भी क्या कह दिया उन्होंने?
3: भाई वो पास में ही ओम शांति सेंटर है ना, वहीं से आई थी. मैं उनके वहाँ एक दो बार कुछ कार्यक्रम में गया था.
2: भाई मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, लोग उधार लेके चले जाते हैं और पैसे ही वापस नहीं लौटाते. इससे बहुत परेशानी होती है, समझ नहीं आता क्या करें.
3: भाई एक बात पूछें?
2: हाँ हाँ बोलो ना.
3: आपके पास अगर समय है तो कल वो दीदी के सेंटर पर चलें, पास में ही है, बस एक दो गली छोड़कर. क्या पता आपके समस्या का भी कुछ हल मिल जाए.
2: ठीक है, देखते हैं.
3: ओम शांति दीदी.
4: अरे आप, ओम शांति, आइए ना आइए.
3: ये भाई साहब, मैं जहाँ ठेला लगाता हूँ ना, उसी के सामने ही रहते हैं. उस दिन आपसे बात करते हुए उन्होंने देखा तो वो आपके बारे में पूछ रहे थे, तो मैं इन्हें भी यहाँ पर ले आया.
4: अच्छा, आइए आइए बैठिए. वैसे क्या करते हैं आप?
2: मेरा बिजनेस है छोटा सा.
4: अच्छा.
2: लेकिन मैं सच बताऊं तो कुछ अच्छा नहीं.
4: क्या बात है, बोलिए ना.
2: उसमें कई लोग उधार में कई चीज मेरे से ले जाते हैं, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो फिर समय पर पैसे ही नहीं लौटाते.
4: वैसे उधार देते हैं तो पैसे लौटाने की याद दिलाना गलत नहीं है,
2: लेकिन मुझे लगता है उन्होंने खुद से बिना पूछे पैसे लौटा देना चाहिए ना. बार बार मांगने में भी शर्म आती है. कभी कभी तो लगता है भलाई का जमाना ही नहीं रहा, तंग आ गया हूँ.
4: ये आपकी अच्छाई है कि आप मदद करते हैं, लेकिन बिजनेस में भावना से ज्यादा बुद्धि से काम लेना चाहिए.
2: हाँ दीदी, आपकी बात सही है, लेकिन मैं मना नहीं कर पाता. लगता है किसी के जरूरत पर मदद की तो अपना भी अच्छा कर्म बनेगा.
4: आपकी भावना तो बहुत ऊंची थी, मदद करो लेकिन सोच समझ कर, क्योंकि आज के समय में कई लोग आपका फायदा उठा सकते हैं. ऐसे समय में परखने की शक्ति बहुत जरूरी है.
2: परखने की शक्ति?
4: जी, परखने की शक्ति. किसे उधार देना है या किसे नहीं, पहले उन्हें देखो, समझ लो और आगे से एक नियम बनाओ. उधार देने से पहले तय कर लो कि कब तक पैसा वापस आना चाहिए, और प्रेम से याद दिलाओ.
2: लेकिन हम कैसे किसी को जाने, हमें पहले से थोड़ी पता होता है कि ये धोखा देगा.
4: कई बार आपने देखा होगा किसी को उधार देते वक्त आपके मन में अंदर से आवाज आती होगी, ये शायद समय पर पैसे नहीं देगा, और वो सच में वैसे ही होता।
3: जी जी दीदी बिल्कुल, मुझे भी उस दिन ऐसे ही लग रहा था कि वो लड़के भाग जाएंगे, और वैसे ही हुआ।
4: जी बिल्कुल, ये आपकी अंदर की आवाज आपको बता रही होती है, ये हमारी परख शक्ति है।
2: हाँ जी जी बिल्कुल दीदी, हमें अपने अंतरात्मा कुछ चीज करने से रोक रही होती है,
4: लेकिन हम अपनी उस आवाज को दबा देते हैं।
2: हाँ जी जी बिल्कुल दीदी, ऐसे मेरे साथ कई बार हुआ तो है,
4: लेकिन फिर भी हम निर्णय गलत लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर निर्णय शक्ति की भी कमी है, और आने वाले परिणाम देख दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सहन शक्ति की भी कमी है।
2: लेकिन दीदी, अब तक के अनुभव के हिसाब से अब ना परखने की शक्ति की जरूरत है, ना निर्णय शक्ति की। मैंने तो ठान लिया, अब किसी को उधार देना ही नहीं जो बाद में सहन करना पड़े।
4: इसका मतलब अगर कोई सच में मजबूर है और हम उसे सहयोग करें, ये भावना भी अब कमजोर हो गई, अर्थात सहयोग की शक्ति की भी कमी हो गई।
2: आपकी बातों में गहराई तो है, लेकिन दीदी करें तो करें क्या, रातों में भी नींद नहीं आती, वही बातें दिमाग में चलती रहती हैं।
4: क्योंकि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति की भी कमी है, ये भी एक शक्ति है जो हम बातों को लगाम नहीं लगा पाते।
2: आपसे बातों में जीतना मुश्किल है दीदी, लेकिन उसका क्या जिनको पहले से उधार दे रखा है, और वह है भी अपने ही मित्र संबंधी, उनसे ना तो झगड़ सकते हैं, ना उनके ऊपर कोई कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं।
4: जिन्हें पहले से उधार दे रखा है, हो सकता है उनके जीवन में सच में ऐसी कोई समस्या है जो पैसे लौटा नहीं रहे, और वो उनके पास आने पर दे भी देंगे, बस उनके प्रति शुभ भावना रखे।
2: हाँ, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं, उनके पास पैसे हैं, लेकिन मेरी उधारी चुकाने के लिए बोला तो बोलते हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, दे देंगे।
4: ऐसे समय पर सामना करने की शक्ति भी जरूरी है, क्योंकि हम गलत को सहन नहीं कर सकते, उन्हें गुस्से से नहीं लेकिन धैर्यवत गंभीरता पूर्वक कड़े शब्दों में याद भी दिलाना चाहिए।
2: और अगर फिर भी ना दे तो?
4: हमारा उनके साथ कोई पिछले जन्मों का हिसाब था जो हमने इस जन्म में चुका दिया, ऐसे सोचकर आगे बढ़ो। अच्छे बुरे को समंदर जैसा बड़ा दिल रख सब कुछ अंदर संभालो, समाने की शक्ति धारण करो।
2: ये बहुत बड़ी बातें हैं, समा तो लेते लेकिन दिल में और बातें फिर भी रह जाती हैं।
4: हाँ, क्योंकि समेटने की शक्ति की कमी है, व्यर्थ बातों को छोड़कर सिर्फ अच्छी बातों को समेट करके आगे बढ़ो तो मन पर बोझ नहीं रहेगा।
2: दीदी आखिर ये कितनी शक्तियां हैं, इन मन की शक्तियों को तो अच्छे से समझना होगा।
4: जी जरूर, सिर्फ इसे जानना ही नहीं, इसे बढ़ाना भी होगा। ये हमारी 8 शक्तियां हैं जो रोज राजयोग मेडिटेशन करने से बढ़ती है, और जीवन की हर समस्या में ये 8 शक्तियां हमें मदद करती हैं।
2: दीदी ये मन की शक्तियों को कैसे जाने, और ये मेडिटेशन करते कैसे हैं, क्या आप हमें सिखा सकते हैं? मुझे तो इसकी बहुत जरूरत है।
4: आपको इन मन की शक्तियों को जानने के लिए सेंटर पर रोज आना होगा। यहाँ पर 7 दिन का कोर्स होता है जिसमें आपको इन शक्तियों के बारे में बताया जाएगा।
2: ओ दीदी, इसकी कोई फीस?
4: नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती है।
3: जी दीदी, हम जरूर आएंगे, पूरा 7 दिन का कोर्स करेंगे।
4: ये भगवान का घर है, माना आपका अपना घर है।
2: जी दीदी, सच में यहाँ का वातावरण बहुत शांति देने वाला है, हम जरूर आएंगे।
4: ओम शांति।
3: ओम शांति।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं मैं आप सबके लिए आप सबका बेहद पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है हमराही लेकर के, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। श्रोताओं, अक्सर कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं हमको प्रेरणा देकर के जाते हैं जब वो कार्यक्रम हो जाते हैं उसके बाद, लेकिन आज का कार्यक्रम व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए बहुत खास है, बहुत विशेष है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्तित्व जिनको मेरे जैसे हजारों हजार युवा अपना आदर्श मानते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर के पद पर आसीन है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, जो लगभग 50 वर्षों से दृष्टिबाधित साथियों की सेवा में लगे हुए हैं, भारत और भारत के बाहर शायद ही कोई ऐसा हो जो हमारे आज के जो विशेष मेहमान हैं उन्हें नहीं जानता हो, और साथ ही साथ वे भारत के सबसे बड़े दृष्टिबाधितों के लिए बने संगठन राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के महासचिव हैं, और 1, 2, 4 नहीं लगभग 40-42 वर्षों से वो इस पद पर रहते हुए अपने समाज, अपने साथियों की और अपने पूरे इस पीढ़ी को नेतृत्व प्रदान करने का काम कर रहे हैं। उम्मीद है श्रोताओं इतनी बात में तो आप सब समझ गए होंगे। चलिए तो स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान आदरणीय एस के रोंगटा सर एवं उनकी श्रीमती जी सुषमा रोंगटा मैडम का। सर और मैम, आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार सबको।
0: मैम, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू सो मच। नमस्ते सबको।
0: मैम, एक्चुअली सर को तो जैसा कि मैंने बताया शायद ही कोई ऐसा हो जो नहीं जानता हो, और वैसे तो आपको भी जानते ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं आज की शुरुआत आपसे की जाए। आप थोड़ा सा अपने बारे में मैम हमारे सुनने वालों को बताइए प्लीज।
2: अपने विषय में क्या बताऊं मेरा तो साहब के साथ ही जुड़ा है, जो भी है मिस्टर रोंगटा के साथ ही मैं जुड़ी हुई हूँ शुरू से। सबसे पहले मैंने जब बिलीव साइंस किया तो लाइब्रेरी में, मतलब जो हमारी एनएपी की लाइब्रेरी थी उसको ज्वाइन किया था। yes, तो मैं साहब के साथ मीटिंग्स में जाती थी, डिफरेंट मीटिंग्स में, ऑफिशियल्स मीटिंग में। तो मैं देखती थी मिस्टर रोंगटा की पर्सनैलिटी से मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गई, क्योंकि वो जो भी अपनी बात कहते थे उसमें इतना दम होता था कि अच्छे अच्छे ऑफिसर्स भी उनकी बात को मानने के लिए बाध्य हो जाते थे। तो वो सब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और इसी तरह जो है मेरा जो है उनसे जो लगाव जो था वो फिर बाद में प्रेम में परिवर्तित हो गया।
0: बहुत खूब। वाकई में ये कहानी जो भी आज सुनेंगे उन्हें बड़ा अच्छा लगने वाला है। मैम, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या?
2: मैंने पहले तो एमए हिंदी किया था और उसके बाद में बिलीव साइंस किया, और बाद में लोकसभा ज्वाइन करने के बाद में मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी प्रोफेशनल के रूप में लोकसभा में पार्लियामेंट लाइब्रेरी को ज्वाइन किया, और उसके बाद में फिर मैंने लॉ किया।
0: क्या बात, वाह। मतलब सर की वकालत का असर आप पर भी हो ही गया कम से कम।
2: वकालत के में तो अभी मुझे कुछ नहीं आता है।
0: जी मैम, थैंक यू। आपसे बातचीत तो बहुत लंबी करनी है। तो सर, वैसे तो आप जो भी कहेंगे वो हम सब के लिए अनमोल वचन ही होते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से अपने बारे में बताएं सर, कुछ ऐसा जो शायद बहुत कम आप कभी कहते हो, प्लीज सर।
1: मैं तो यही कहना चाहूंगा अपने विषय में, जो जीवन का सार अब तक का है।
0: जी सर।
1: जो मैं अपना मूल्यांकन करता हूँ अब तक की जिंदगी के सफर को, वो यही है कि जो आपके साथ समाज परिवार में जिस तरह का व्यवहार होता है,
0: यस सर,
1: उसका बड़ी सतर्कता से हमको मूल्यांकन करना चाहिए।
0: यस सर।
1: और उस व्यवहार के मूल्यांकन के आधार पर आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और अपने जीवन को ढालने का, जिससे कि आपका अधिकार, आपका स्वाभिमान सुरक्षित रहे, उसी आधार पर अपने जीवन को ढालना चाहिए और उसी तरह की जीवन यात्रा करनी चाहिए। मैं इसमें विश्वास रखता हूँ और इसी विश्वास के साथ मैंने अपनी ये जीवन यात्रा अब तक की है, और उसमें मुझे लगता है कि इस अप्रोच से मैं न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल रहा बल्कि अपने सामाजिक कार्यों में सफल रहा।
0: बहुत खूब। एक बात बताएं सर कि दुनिया आपको अलग अलग नजर से देखती है, हमारे जैसे लोग आपको आदर्श मानते हैं, कुछ लोग आपको एक्टिविस्ट मानते हैं, कुछ लोग आपको सफल वकील मानते हैं, आप अपने आप को क्या मानते हैं सर?
1: मैं तो अपने आप को एक इंसान मानता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि एक अच्छा इंसान ईश्वर हमेशा मुझे बनाए रखे, और जो सबसे बड़ी दुश्मन बुराइयां हैं मानव के लिए, जैसे अहम, अहंकार
0: जी सर,
1: जैसे घृणा, जेलस, इनसे दूर रखे
0: जी।
1: और मैं उस इंसानियत का जो आधार मानता हूँ, जिस इंसानियत के साथ अपने अंतिम सांस लेना चाहता हूँ,
0: क्या
1: अंतिम सांस तक जीना चाहता हूँ, वो आधार यही है
0: जी
1: कि व्यक्ति को अपने जीवन में
0: जी
1: जो उसका सबसे बुरा समय था उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, और उससे जुड़े रहते हुए दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को संचालित करना चाहिए।
0: जी जी जी, निश्चित रूप से सर, बहुत खूब सर। सर आपका भी जीवन एक सामान्य दृष्टिबाधित विद्यार्थी की तरह ही प्रारंभ हुआ, कब आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि आप अपने इस समाज के लिए ही लड़ेंगे, इस समाज के लिए ही कार्य करते रहेंगे, ये सब भावना आपके अंदर मतलब शुरू में तो नहीं आई होगी एकदम से? तो
1: नहीं, मैं ये कहूंगा कि बहुत शैशव काल से ये भावना आ गई।
0: अच्छा।
1: और इसमें जैसा मैंने कहा कि परिवार और समाज में और इस विद्यालय में
0: जी जी
1: जो व्यवहार देखा, मैंने कहा ना मेरे जीवन यात्रा का आधार और जीवन को ढालने का आधार ही समाज, परिवार और अन्य व्यक्तियों का जो व्यवहार है दृष्टिबाधिता के कारण
0: जी,
1: उसी ने हमेशा यात्रा को निर्धारित किया है। उस क्रम में जो मैंने परिवार में देखा, एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने के नाते
0: जी सर,
1: जो आपस में दृष्टिबाधिता को लेकर बातें सुनी
0: जी,
1: और जिस तरह से एक जो आम दृष्टिकोण उस समय था, आज भी है, लेकिन आज वो काफी नीचे चला गया है, नीचे इन द सेंस कि वो अभिव्यक्त नहीं होता
0: जी।
1: मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लोगों के दिमाग से चला गया है
0: जी जी।
1: अब अभिव्यक्त करते हुए लोग डरते हैं, पहले अभिव्यक्ति उसकी बिल्कुल खुलेआम होती थी, व्यवहार में भी, शब्दों में भी
0: जी।
1: तो वो जो अभिव्यक्ति थी नकारात्मकता की
0: जी,
1: वो जो बोझपन की
0: जी,
1: कि परिवार में एक बोझ आ गया, समाज में एक बोझ आ गया, और विद्यालय में जो देखा कि किसी भी श्रेणी का कर्मचारी
0: जी
1: वो दृष्टिबाधितों को बड़े हे दृष्टि से देखकर व्यवहार करता था
0: जी जी जी,
1: तो निर्दयता भी देखी
0: जी,
1: उसने एक मुझे जो मैं हूं वो बनाया
0: जी,
1: एक रिएक्शन पैदा किया, प्रतिक्रिया पैदा की, नहीं इसके विरुद्ध संघर्ष करना है, इसको परिवर्तित करना है।
0: बिल्कुल सर।
1: और उसको परिवर्तित करने के कारण मैंने बहुत शैशव काल में ही ले लिया, और बहुत शैशव काल में ही मैंने तय कर लिया कि मुझे कानून का व्यवसाय चुनना है, क्योंकि उस समय मुझे ये लगा कि, और जो शायद सही लगा और सही निर्णय था
0: जी,
1: यही एक व्यवसाय है
0: जी
1: जिससे अंततो गत्वा संघर्ष के एक हथियार के रूप में प्रयोग करके हम इस नकारात्मक दृष्टिकोण को बदल कर अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं और उसकी रक्षा कर सकते हैं
0: जी। क्या बात है, बहुत खूब। तो आपकी सर ये यात्रा तो इतनी विशाल, इतनी लंबी है कि इस पर आगे भी बातचीत जारी रहेगी यहाँ पर, लेकिन अब मेरे मन में प्रश्न ये आ रहा है कि ये सब करते करते, अपने साथियों के लिए लड़ते लड़ते, समय आता है जब अपने बारे में भी सोचना होता है कि भाई गृहस्थी बसानी है, परिवार बनाना है, बढ़ाना है, तो ये सब आपने कब सोचना शुरू कर दिया सर?
1: देखिए, मैं अगर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की बहुत कोशिश करता रहा आज तक मुझे उत्तर नहीं मिला कब
0: जी,
1: लेकिन मैं यही कहूंगा
0: जी
1: कि जब मैडम का साथ मिला
0: जी,
1: तो हमने तय किया कि अब ये सही समय है जब न केवल परिवार के लिए हम सोचें
0: जी,
1: बल्कि हमने ये देखा कि इनके रूप में हमें एक और साथी इस जो मिशन है
0: जी,
1: उसको पूरा करने में संबल के रूप में
0: जी
1: मिलेगा
0: जी,
1: और अच्छी साथी साबित होगी, तभी हमने ये निर्णय किया
0: जी जी। कौन से सन में सर आप दोनों विवाह सूत्र?
1: ये 1984 में हम लोगों का विवाह हुआ था, 8 मई 1984 को विवाह हुआ था।
0: अरे मतलब मई का महीना आपके लिए?
1: मई का महीना, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: श्रोताओं बताएंगे
1: ऐसे क्रांति के लिए, क्रांति के लिए मार्च का महीना
0: जी जी जी
1: मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है
0: जी,
1: संघर्षों के लिए
0: जी,
1: अपने समाज के लिए
0: जी,
1: क्योंकि विद्यालय में भी जो पहला आंदोलन किया मैंने 23 मार्च को
0: जी जी जी अच्छा
1: 23 मार्च को किया
0: जी सर,
1: 23 मार्च 1966 को,
0: 1966 वाह।
1: और यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर जो पहला आंदोलन, संगठित आंदोलन
0: जी जी जी
1: हुआ वो 16 मार्च 1966
0: बिल्कुल, जिसको
1: ये 2 महीने मेरे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
0: वाह,
1: और राजर मैं कहूँ कि डिटर्मिनेंट है।
0: बहुत खूब सर, बहुत खूब। सर मैम से पहले भी कभी ऐसा हुआ कि मतलब ये व्यक्ति बहुत अच्छे आपकी जिंदगी में? तो काफी लोग आए होंगे, आपने काफी लोगों से मुलाकात की होगी, कभी और कोई आया जहन में आपके, या ऐसा कभी सोचने का वक्त ही नहीं मिला?
1: नहीं मतलब इस दृष्टि से तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये बात सही है कि व्यक्ति कई आए
0: जी
1: जिनको हमने सोचा कि वो बन सकते हैं और उनमें सामाजिक प्रवृत्ति है
0: जी,
1: लेकिन अंततोगत्वा जो इनमें मैडम में देखी इसके लिए काम करने की, एक्चुअली उस समय परिवार से ज्यादा यही डिटर्मिनेंट था कि कौन इस मिशन में सच्चा साथी साबित हो सकता है।
0: बिल्कुल तो सही,
1: वो जो है उसको ध्यान में रखते हुए।
0: अच्छा सर पहला प्रस्ताव, हमारे श्रोता जानने के लिए बेताब रहेंगे सर कि पहला प्रस्ताव किसकी तरफ से आया?
1: अब ये बड़ा डिफिकल्ट मुझे लगता है अकस्मात दोनों ने एक दूसरे को एक ही समय में प्रस्ताव।
0: कहीं सर कहीं ये वकीलों वाला उत्तर तो नहीं
1: है?
0: वकीलों वाला उत्तर तो नहीं है सर कहीं ये?
1: नहीं नहीं नहीं, वो तो मैडम करेक्ट करेंगी अगर
0: जी जी जी जी,
1: लेकिन मुझे जो लगता है
0: जी जी वाह, मतलब ये यही होता है सर, जब दोनों तरफ भावनाएं प्रबल हो तो फिर शायद समय भी उसी एक साथ ही एक समय में ही ये सारी बातें होती
1: हैं। बिल्कुल बिल्कुल
0: जी, तो बिल्कुल। अब यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत सर मैम से भी जरूरी बनती है
1: जी जी।
0: मैम
2: जी हाँ,
0: यही बात आपके लिए भी मैम आती है मेरे जहन में कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा एक्टिवली काम करते हुए, और आपका अपना एक परिवार था, वहां भी बातें हुई होंगी कि भाई अब आपका विवाह होना चाहिए, तो फिर एकाएक दृष्टिबाधित व्यक्ति को चुनना ये कैसे एकदम संभव हो पाया? मतलब आपके लिए बड़ा आसान रहा होगा, लेकिन हम लोग ये जानना जरूर चाहेंगे। मैम
2: नहीं, मुझे मिस्टर रूंटा में कभी दृष्टिबाधिता कभी मतलब अड़चन के रूप में कभी भी फील नहीं हुई, हमेशा उनका मेरा जो उनको देखने का नजरिया था वो हमेशा उनके इंटेलिजेंसिया पर ही जाता था कि वो कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने इंटेलेक्चुअल हैं, और मुझे मतलब जो है वही चीज बहुत ज्यादा प्रभावित करती थी, और मेरे को लगता था कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, तो बल्कि मुझे साइटेड लोगों में बहुत सारी कमियां भी नजर आती थी, जो मेरे ठीक है मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं किसी बैंक ऑफिसर से शादी कर लूं, या मतलब ठीक है रिश्ते देखते थे, लेकिन जब मैं सोचती थी कंपेयर करती थी तो मुझे मतलब ठीक नहीं लगता था, जो कैपेबिलिटी और जो मिस्टर रूटा में थी वो मुझे किसी और में नजर नहीं आती थी, और दूसरी कुछ फैमिली की सर्कमस्टांसेस भी ऐसी थी कि मेरे छोटे बहन भाई थे थोड़े, तो मुझे लगता था कि मेरे की फैमिली में जितना साथ मेरे को मिस्टर रूटा दे सकते हैं शायद कोई दूसरा नहीं देगा उतना जिंदगी में।
0: क्योंकि मैम ये प्रश्न दरअसल इसलिए आता है कि आज तो तकनीक ने बहुत सारे काम आसान कर दिए हैं, लगभग सब कुछ ही आसान कर दिया है, लेकिन उस जमाने में ना तो तकनीक थी, केवल जो कुछ था वो अपना अपनी इंटेलेक्चुअलनेस ही सब कुछ थी, तो ऐसे में मतलब निर्णय ले पाना, और उस समय बातें भी बहुत हुआ करती थी, ब्लाइंड और साइटेड के बीच की जो एक खाई है वो भी बहुत ज्यादा बड़ी थी।
2: पर मैंने तो बोला ना कि मुझे प्रभावित ही उनका इंटेलिजेंसिया ही किया, तो वही मेरे लिए कभी अड़चन लगती नहीं थी कि उनमें ये कमी है वो कमी है, कभी मुझे किसी चीज की कमी नजर ही नहीं आती थी।
0: क्या बात। तो मैम जैसे सर ने बताया आपका विवाह तो 1984 में हुआ, लेकिन अगर मैं पूछूं कि पहले दिन वो पहली बार कौन सा साल था जब आपने सर को देखा?
2: 82 में मैंने NFB ज्वाइन की थी
0: जी,
2: और NFB में मैं फिर जब इनके साथ मीटिंग्स में जाया करती थी, तो ऐसे शुरुआत में तो ऐसे कुछ नहीं था, ठीक है ही वाज माय बॉस, बट ठीक है जब धीरे धीरे जो है जो उनका व्यक्तित्व जो है वो मुझे धीरे धीरे प्रभावित करता गया, और आगे चल के मुझे लगा कि मतलब जब घर में मेरे शादी वादी की बात चलने लगी तो फिर मुझे लगा कि ही कैन बी अ गुड चॉइस फॉर मी।
0: क्या बात मैम, तो 1982 में आपने पहली बार सर को देखा और
2: वो तो एज ए ऑफिशियल, मतलब एक साल तक तो शायद हम ऑफिस की तरह ऑफिसर ही उनको मानती थी।
0: हाँ, लेकिन एक एक पर्सन के रूप में, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में आपने 1982 में बहुत खूब। तो मैम परिवार का क्या रिएक्शन था, इमीडिएट रिएक्शन, पहली बार जब आपने ये बताया कि भाई आप इस तरीके से विवाह करने जा रहे हैं? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा मुझे लगता है।
2: परिवार तो देखिए उस टाइम पे जैसी सोच होती है, टाइम पे तो कोई एग्री नहीं कर सकता था इस चीज को कि मैं जो है एक ब्लाइंड पर्सन से शादी कर लूं, और बहुत रिएक्शन था। इसीलिए जो है हमें जो है बिना फैमिली की परमिशन के ही शादी करनी पड़ी।
0: ओह अच्छा। बाद में फिर मैम कितना वक्त लगा परिवार को ये समझने में कि आपने जो निर्णय लिया है वो शायद उनसे भी बेहतर निर्णय लिया है?
2: एक्चुअली मेरी मदर उस टाइम पे काफी बीमार थी, वो तो उनका तो सॉफ्ट कॉर्नर था बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे फादर और मेरे फादर के ब्रदर्स वगैरह थे वो सब अगेंस्ट थे बहुत ज्यादा। उनको एक साल तो लगी गया इस चीज को समझने में।
0: अच्छा मैम, फैमिली का तो खैर हम समझ सकते हैं कि क्या रोल रहता है, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल का क्या रिएक्शन था उस समय, फ्रेंड सर्कल की राय क्या थी?
2: नहीं, मेरी जो फ्रेंड्स थी वो बहुत ही सपोर्टिंग थी, हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी को चाहते हो तो उसकी किसी फिजिकल कमी पे नहीं जाना चाहिए, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, आपको वहीं जाना चाहिए जहाँ आपका मन करता है।
0: ऐसे मामलों में मैम
2: दे वर वेरी सपोर्ट।
0: बहुत बढ़िया। ऐसे मामलों में मैम मानसिक रूप से खुद का भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। कभी आपको ऐसा पल आया कि आपने खुद से ये प्रश्न किया हो कि यार मैं कहीं मतलब लड़खड़ा तो नहीं जाऊंगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी बढ़ जाएंगी, ऐसा कभी आपको सोचने का मिला?
2: नहीं, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ, बल्कि मैं अगर अवलोकन करती भी थी तो हमेशा मुझे मिस्टर डूटा अपने से बेटर ही नजर आते,
0: ज्यादा स्ट्रांग नजर आए आपको हमेशा,
2: ज्यादा स्ट्रांग नजर आते।
0: बहुत तो सर ये बताएं सर कि एक तरफ ये सब आंदोलन चल रहे थे, दूसरी तरफ आप विवाह सूत्र में बंध गए।
1: जी,
0: आम तौर पर सर सबके साथ अक्सर ऐसा होता है कि एक्टिविज्म करते करते कहीं ना कहीं परिवार की डोर या परिवार पर थोड़ी पकड़ ढीली होने लगती है। आपने ये सब कैसे मैनेज किया सर? एक तरफ मैम की भी मतलब इच्छाएं रही होंगी परिवार को संभालने की और उनको समय देने की, सबसे बड़ी बात, तो वो सब मैनेज कैसे किया? ये मुझे लगता है गुरु मंत्र होगा आपकी तरफ से सबके लिए।
1: नहीं, मैं तो इसमें मैंने मैनेज नहीं किया
0: जी,
1: मैनेज मैडम ने किया। इन्होंने बहुत क्लियरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की ले ली
0: जी,
1: और कभी भी मुझे नहीं लगता कि परिवार के चलाने के मामलों में
0: जी
1: मैंने कोई किसी ऐसे दायित्व का निर्वहन किया हो जिससे मेरे सामाजिक कार्य पर असर पड़ता हो
0: जी।
1: तो ये तो मैंने कहा ना कि जो मैंने इनसे विवाह का जो निर्णय लिया
0: जी,
1: उसका आधार यही था कि मुझे इनकी सोशल इंस्टिंक्ट और सोशल स्पिरिट का मूल्यांकन था
0: जी,
1: और उसी मूल्यांकन के आधार पे किया जो सही साबित हुआ
0: जी।
1: तो परिवार को तो संभाला मैडम ने ही
0: जी,
1: बच्चों के लालन पोषण से लेकर
0: जी
1: को पूरी तरह से संभाला उन्होंने, और मुझे कोई पारिवारिक

0: नहीं कभी भी जैसे रोजगार के जैसे बात सुनती थी। ये विवाह से पहले भी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा।
1: जी जी जी जरूर सर जरूर।
0: विवाह से पहले 1982 में हमने एक फैसला कराया था
1: जी
0: उत्तर प्रदेश सरकार से, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे
1: जी, जी,
0: के बीच में, तो उनके साथ फैसला करवाया था कि जितने लोग उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं और रोजगार के लायक हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए का, और उसके लिए पूरी योजना मैंने ही बना के दी थी
1: जी,
0: और उसमें नाम तक दिए थे कि कौन कहाँ लग सकता है
1: जी,
0: इस पद पर लग सकता है
1: जी।
0: तो वो लिस्ट एज इट इज पूरी योजना अप्रूव हुई थी
1: जी।
0: अब सवाल ये था कि आप जानते हैं कि हमारी व्यवस्था ऐसी है कि निर्णय होने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन जो नीचे लेवल पे है बहुत डिफिकल्ट काम
1: जी,
0: इतना मुश्किल होता है वो आप जानते हैं
1: जी।
0: तो विवाह से पहले ही जैसा मैडम ने कहा कि मीटिंग्स में जाती थी
1: जी,
0: एक कंक्रीट एग्जांपल है कि भी आगरा में
1: जी
0: पूर्णानंद विश्वविद्यालय है उसमें दो लोगों को जॉब मिलनी थी।
1: अच्छा।
0: और वो लगभग 6 महीने से उस पर कोई काम नहीं, हम आगरा गए, मैडम भी गई थी, और उस दिन दिन भर में एक ही दिन में
1: जी
0: उस फाइल को मूव करा के नियुक्ति पत्र का आदेश हुआ
1: जी।
0: उस समय जो इनकी फीलिंग थी
1: जी
0: उसने मुझे बहुत प्रभावित किया।
1: क्या बात है।
0: वैसे तो उस समय तो कोई ऐसी बात नहीं थी
1: जी,
0: तो कि विवाह होगा नहीं होगा, लेकिन एक एम्प्लॉय की हैसियत से वो गई थी और उसमें मतलब खुशी इनको शाम को ये बात सुनकर हुई। वो इस बात को दर्शाती है कि हमारे संघर्षों और उसके परिणामों से
1: जी
0: वो कितना सरोकार रखती, शुरू से रखती रही है।
1: जी जी जी जी जी क्या बात है। ये दूरदर्शिता आपके अंदर शुरू से ही थी सर, और ये बहुत अच्छी बात होती है अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए।
0: आज भी कोई केसेस होते हैं फेडरेशन से संबंधित कोर्ट में
1: जी,
0: या कोई मीटिंग होती है तो तुरंत पूछती हैं
1: जी
0: उसके खत्म होने के बाद
1: जी
0: कि क्या हुआ, ठीक हुआ
1: जी जी,
0: क्या हुआ नहीं हुआ
1: जी। और सर कभी आपको परेशान देखते होंगे मैम, तो उस समय फिर क्या प्रतिक्रिया होती है मैम की?
0: नहीं, वो हमेशा स्ट्रेंथ के रूप में रही है
1: जी,
0: परेशान देखकर भी हमेशा स्ट्रेंथ के रूप में रही। उन्होंने हमेशा यही मुझे बल दिया है इस बात का कि काम इनके लिए अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस दृष्टि से मतलब केवल एक जीवन संगिनी के रूप में नहीं
1: जी जी जी जी जी
0: हमारे सामाजिक कार्यों में और संगठन के कार्यों में
1: जी।
0: आपको बताऊं ये जब अपना प्रधान कार्यालय बना
1: जी जी जी
0: इसकी बिल्डिंग, इसका नक्शे से लेकर इसकी सुपरविजन, इसकी ईंट से लेकर लोहे की परचेजिंग
1: जी,
0: हर चीज का खुद
1: क्या बात,
0: इन्होंने ऑफिस जाते हुए भी
1: जी जी जी,
0: और उन दिनों सुबह जाना
1: जी
0: ऑफिस पहले वहाँ बिल्डिंग पे, फिर ऑफिस जाना, और शाम को वापस आते हुए पहले बिल्डिंग पे आना
1: जी,
0: कंस्ट्रक्शन जो हुआ है उस दिन उसका सुपरविजन करना
1: जी,
0: और फिर घर आना।
1: बहुत खुश।
0: तो आप ये सोचिए कि यही कारण है कि हमने किसी को बिल्डिंग मटेरियल और लेबर का कंबाइन कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, हमने लेबर कॉन्ट्रैक्ट केवल दिया, वो भी एक अभी जिसने शुरू ही किया होगा
1: जी, जी,
0: अपने अपने काम को
1: जी,
0: उसको ठेका दिया था
1: जी,
0: उससे काम करवा लेना, और इतना अच्छा, कम से कम आज जब कोई कहता है कि ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है, किसी भी कॉर्पोरेट से अच्छी है
1: जी,
0: तो मुझे बहुत गर्व होता है इनके इस सहयोग पर।
1: क्या
0: संघ का, अब देखिए
1: जी
0: आप जानते हैं कि संघ में चूंकि जनतांत्रिक है,
1: बिल्कुल सर,
0: राजनीतिक बातें बहुत होती हैं
1: जी,
0: हम इन चीजों को कभी रेखांकित नहीं करते, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में अनकहे बहुत से सहयोग हैं इनके, जो निश्चित रूप से संगठन और समाज को काफी शक्ति हमेशा प्रदान करते हैं, और मेरे कार्य को तो निश्चित रूप से बहुत सबल बनाते हैं।
1: वाह सर, ये संगठन के प्रति आपका जो समर्पण है वो तो सभी जानते हैं, लेकिन मैम का जो समर्पण भाव है कहीं ना कहीं वही संगठन की,
0: हमारे समर्पण को तो आप ये मान के चलिए कि हमारा समर्पण तो वर्ग का एक सदस्य होने के नाते जो है, लेकिन इनका समर्पण होना
1: जी
0: वो मेरे समर्पण से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: निश्चित रूप से सर, निश्चित रूप से। इतने सारे सर मतलब चूंकि आपका पेशा ही वकालत का है, और आपके केसेस के साथ साथ आपने संगठन और अपने साथियों के लिए जो केसेस इतने सारे लड़े हैं और जीते हैं, ऐसा हुआ सर कभी कि परिवार से इतर उन केसेस पर भी आप दोनों की चर्चाएं होती हों आपस में, और कई बार कभी ऐसा भी हुआ हो

0: मैम की कोई राय आपके बहुत काम आ गई हो?
1: देखिए, लीगल रूप से हर केस पर चर्चा होती है।
0: अच्छा, व्यवहारिक रूप से
1: लीगल पक्ष के लिए तो वो ये कहती हैं कि भाई उस पे तो आप ही सही निर्णय ले सकते हो,
0: आप ही बेहतर हैं। जी जी जी।
1: लेकिन व्यवहारिक रूप से वो जरूर अपनी प्रतिक्रिया भी देती हैं। अगर निर्णय, जैसे मान लीजिए हमने किसी केस में, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ
0: जी,
1: कि राजस्थान में जो टीचर्स का केस था
0: जी, रीट वाला जी सर,
1: जिसमें उनको शिक्षकों की नियुक्ति में कंसेशन पहले मिला हुआ था, रिलैक्सेशन मार्क्स में
0: जी सर,
1: बाद में उन्होंने हमारा छीन लिया, बाकी का जारी रखा, तो उसके विरुद्ध जो डाली थी, हर बार मैं जाता था, हर बार जब लगता था कि आज हो जाएगा फैसला
0: जी,
1: और जब नहीं होता था
0: जी,
1: तो इनको भी उतनी ही खींच जाती थी जितनी हमको आती थी। क्या न्यायालय की व्यवस्था है, मतलब वो देख के काफी अंदर से शक्ति भी आती थी।
0: जी जी।
1: देखिए
0: जी,
1: जो आपने पहले बहुत पहले सवाल पूछा था शुरू में,
0: जी जी,
1: मैनेज कैसे किया सामाजिक कार्य और परिवार को के समय के बीच?
0: जी सर।
1: वो जो बात मैंने कही थी कि भाई मैंने मैनेज नहीं किया,
0: बिल्कुल,
1: ये उसी का परिणाम, उसी का प्रमाण है जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ
0: जी।
1: तो मैंने देखा उन दिनों, मतलब हमको तो लगता ही था जो लगता था
0: जी,
1: इनको भी ऐसे केसेस में लगता है। अभी खाद्य सुरक्षा का जब हुआ था केस,
0: बिल्कुल सर,
1: तो मैं समझ सकता था कि जब वो ऑर्डर हुआ तो कितनी खुशी इनको,
0: कितनी खुशी। जी जी जी जी।
1: हाँ, सबके लिए, कम से कम जिनके पास खाने की सुरक्षा नहीं है वो तुम आपने दिलवा दी
0: जी,
1: मतलब वो खुशी, जो जीवन संगीनी हो जाना एक अलग इशू है, परिवार चला लेना एक अलग इशू है
0: जी,
1: लेकिन आपकी जो मिशन है उसके साथ उसके खुशी और गम दोनों को शेयर करना, ये ज्यादा एडेड इनकी व्यक्तित्व का मैं कहूंगा कि हिस्सा है।
0: क्या बात है सर, बहुत खूब सर। आमतौर पर सर घरों में छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद हो जाते हैं?
1: नहीं, हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं।
0: आपका जीवन इतना समर्पित रहा है इस सबके पीछे,
1: उसके बावजूद विवाद की गुंजाइश आप जैसा कह रहे हैं बहुत थी
0: जी जी,
1: क्योंकि अधिकतर समय हमारा संघ को ही और समाज को ही गया है
0: जी,
1: इसमें मुझे मानने में कोई हिचक नहीं है
0: जी,
1: और किसी भी गृहिणी को इस पर कम से कम रोष तो हो ही सकता है
0: जी जी जी,
1: लेकिन वो रोष भी व्यक्त नहीं कभी हुआ
0: जी।
1: आप देखते हैं, जब अब तो खैर परिस्थितियां ऐसी नहीं है
0: जी,
1: पहले जब परिस्थितियां सामान्य थी तब महीने में कम से कम 2-3 बार बाहर जाना भी पड़ता था
0: जी, जी, जी।
1: लेकिन उसके बावजूद, उन 2-3 बार बाहर जाने के बावजूद भी
0: जी,
1: कभी ऐसा नहीं लगा उनको कि दिक्कत कोई है। तो उस दृष्टि से मैं मानता हूँ कि ये निर्णय भी सही था
0: जी,
1: और इस जीवन यात्रा में एक सही साथी मिला,
0: एक मजबूत आधार स्तंभ आपकी इस पूरी यात्रा में।
1: बिल्कुल।
0: क्या बात है सर, बहुत खूब सर। लेकिन इंसान कभी कभी परेशान हो जाता है सर, अपने जो दिक्कतें आती हैं या प्रशासन से या समाज से जो कुछ सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है, तो उस समय आपके तनाव को किस प्रकार मैम ने कम करने में अपना योगदान दिया, मदद की आपकी, कोई ऐसी बात आपको जो बहुत ही प्रभावित कर गई हो कि हाँ यार ये तो मैं गलत ही सोच रहा था?
1: नहीं, मुझे देखो संदीप, ऐसा कोई वाकया, एक्चुअली मेरा काम करने की शैली, मेरे काम की शैली बहुत डिफरेंट है। मैं किसी चीज को तनाव में नहीं लेता।
0: क्या बात है, वाह बहुत खूब सर।
1: किसी भी चीज को तनाव के रूप में कभी नहीं लेता
0: जी जी जी।
1: और अगर कोई समस्या है तो समस्या को चुनौती के रूप में लेता हूँ, न कि तनाव, इसलिए ऐसी स्थिति आती नहीं
0: जी
1: जनरली
0: जी,
1: और इसलिए ऐसा कोई इंस्टांस याद नहीं आता जब ऐसी आवश्यकता मान पड़ी हो
0: जी जी। तो सर एक प्रश्न जो बहुत देर से मेरे मन में चल रहा है, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि
1: बिल्कुल पूछिए।
0: आपने साथियों को रोजगार दिलवाने के लिए, उनको एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में उनको मदद मिले इंस्टीट्यूशन से, और इसके अलावा भी वो उनका सामाजिक विकास हो, इसके लिए आपने पूरी जिंदगी लगा दी अपनी। लेकिन हर एक इंसान की सर एक आवश्यकता होती है, अपना परिवार बसाना, अपने जीवन साथी की तलाश करना, क्योंकि आजकल सर इतना आपने और संगठन ने काम कर दिया है कि जॉब में इतनी दिक्कत आजकल आती नहीं है, आती तो है फिर भी लेकिन इतनी नहीं आती है। लेकिन आपको नहीं लगता अभी कि सामाजिक सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्ति के परिवार के साथ उसका सामंजस्य और समाज में, उसके लिए व्यक्ति को खुद क्या पहल करनी चाहिए और आप अपने स्तर पर कहां देखते हैं कि कहीं कोई कमी रही है क्या इसमें?
1: देखिए, जो सामाजिक विकास की प्रक्रिया है, और मैं अगर कहूं कि फुल इंटीग्रेशन की जो प्रक्रिया है
0: जी,
1: क्योंकि जो समस्याएं, जिस समस्या की ओर आप इशारा कर रहे हैं
0: जी जी जी,
1: उसका रूट कॉज, उसकी जड़ में क्या है, उसकी जड़ में एक्सक्लूजन, जो नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण एक्सक्लूजन हुआ हमारा, एक विभाजक रेखा खिंची
0: जी
1: दान दाता
0: जी,
1: और दान लेने वाले के बीच।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: समाज में ये एक विभाजक रेखा हमारे और समाज के वर्ग के बीच रही। तो अब आप उसको तोड़ने के लिए, उस विभाजक रेखा को मिटाने के लिए
0: जी,
1: हमारे संघर्ष का उद्देश्य क्या है? हमारे संघर्ष का उद्देश्य समानता की ओर आगे बढ़ना
0: जी,
1: हमारे संघर्ष का उद्देश्य अवसरों के माध्यम से, क्षमता प्रदर्शन के माध्यम से नकारात्मक दृष्टिकोण को परिवर्तित करना है
0: जी।
1: ये प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत लंबा है
0: जी जी जी जी जी।
1: ये प्रोसेस एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के जीवन काल का नहीं है
0: जी,
1: ये अनवरत चलने वाला प्रोसेस है।
0: बिल्कुल सर,
1: अगर हम तुलना करें कि जो लोग आज आत्मनिर्भर हो गए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ
0: जी
1: कि किसी भी समानता के लिए सबसे पहले आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक है, उसके बिना समानता की बात
0: बेमानी है,
1: वो होगा नहीं।
0: बिल्कुल,
1: आप बोलते रहिए
0: जी,
1: कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून में लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम ऐसे लोगों की तुलना करें और आपस में तुलना करें, जिनको रोजगार मिल गया, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गए
0: जी,
1: तो कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने हो सकता है मुझसे भी ज्यादा अच्छा अपना समायोजन किया हो
0: जी,
1: सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से
0: जी जी जी।
1: कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने उस अवसर का लाभ उठाया ही नहीं, कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको।
0: बिल्कुल निश्चित रूप से सर।
1: और वो क्यों मिलेंगे
0: जी,
1: और क्यों हो रहा है ऐसा
0: जी,
1: उनकी गलती नहीं, उनका जो पारिवारिक परिवेश है, उनका परिवार ही बहुत पीछे नीचे पायदान में खड़ा। तो ऐसे लोगों का ज्यादातर समय
0: जी,
1: क्योंकि ये बात भी सच है
0: जी,
1: कि अगर दृष्टि बाधित व्यक्ति जब तक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होता, तब तक परिवार उसको बोझ समझता है
0: जी,
1: और जिस दिन वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाता है, उस दिन से वो अपना अधिकार समझता है
0: जी जी,
1: उससे सहयोग
0: जी।
1: ये एक बहुत बड़ी डाइकोटमी है जो मैंने एक्सपीरियंस किया।
0: निश्चित रूप से
1: मैंने स्वयं देखा है अपने जीवन में
0: जी,
1: मैं दूर नहीं जाता
0: जी,
1: कि जो हमारे रिश्तेदार भाई जब हम दिल्ली आ गए, पूरी तरह से सेटल नहीं हुए अपनी लाइफ में, तब तक वो हमारे फोन का भी शायद जवाब ना देते थे
0: जी,
1: लेकिन आज उनका खुद का फोन आता है। ये अंतर है।
0: बिल्कुल सर,
1: यही आर्थिक शक्ति है
0: जी।
1: तो वो जिन लोगों का समायोजन नहीं हो पाया अभी उस तरह से पारिवारिक जीवन में,
0: बिल्कुल,
1: या अच्छा समायोजन नहीं हो पाया
0: जी जी जी,
1: उसका कारण मैं ये समझता हूँ कि उनका अधिकतर शक्ति उनकी अपने माता पिता, जो पहले ही गरीबी से जूझ रहे थे, उनको संभालने में, उनको सपोर्ट देने में
0: जी जी,
1: जो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ
0: जी
1: कि हम केवल अधिकारियों की बात ना करें, दायित्वों की बात करें।
0: बिल्कुल सर,
1: लेकिन साथ साथ
0: जी
1: ऐसे लोगों से के लिए मेरा संदेश यही रहेगा कि आप दायित्वों का निर्वहन करते हुए
0: जी
1: अपने परिवार, अपने परिवेश को भी सुधारते रहें
0: जी जी जी जी जी जी,
1: उसमें भी अपना कुछ हिस्सा उसमें भी लगाएं, अपने एनर्जी का, संसाधनों का। ये कहने का अभिप्राय नहीं है कि माता पिता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन ना करें
0: जी,
1: हाँ ये जरूर कहूंगा
0: जी
1: कि भाई बहनों ने अगर आपका पहले ध्यान नहीं रखा, तो उनके लिए जब तक आपका आर्थिक समायोजन नहीं हुआ था, उनके लिए अपना जीवन व्यर्थ ना करें
0: जी,
1: उनको सहयोग, अपने संसाधनों का इस्तेमाल उनके लिए ना करें
0: जी।
1: ये तो मैं बिल्कुल बहुत दृढ़ता से कहना चाहूंगा।
0: लेकिन चूंकि आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है, तो अब आपका ये जो मानना है बिल्कुल ठीक है सर, कि व्यक्ति को खुद इस पर, इसके लिए प्रयास करना,
1: खुद इस पर करना चाहिए और खुद सही निर्णय लेने चाहिए।
0: और कहीं ना कहीं सर आप ये भी मानते हैं कि व्यक्ति चाहे तो अपने आप को इतना सशक्त वो बना सकता है जॉब लगने के बाद।
1: बिल्कुल बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता
0: जी। मैम, हमारे सभी जो साथी हैं समाज के, वो ये जानना जरूर चाहेंगे कि सर की आज उम्र के इस पड़ाव पर इतनी ऊर्जा का राज क्या है।
2: उनकी ऊर्जा का राज उनकी डिटर्मिनेशन है।
0: क्या वाह मैम, कभी ऐसा होता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको लगता है कि भाई इतना बड़ा देश है, इतने सारे संगठन है, इतने सारे लोग हैं, इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं, कभी आपने कहा हो सर को कि देखिए ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, मतलब इसने बहुत अच्छा किया है, कभी ऐसा हुआ मैम?
2: हाँ, अगर कोई काम अच्छा करता है तो मुझे भी खुशी होती है, ऐसा ही नहीं है। और मैं ये भी सोचती हूँ कि ठीक है, मिस्टर रूंगटा आज 67 इयर्स के हो गए, अब और कितना 10 साल और काम कर लेंगे मैक्सिमम, अगर ईश्वर ने इतनी लाइफ दी तो ठीक है 5-7 साल और काम कर लेंगे उसके बाद। मैं इनको बार बार कहती हूँ कि आपको एक एक टीम तैयार करनी चाहिए जो कि आपको टेक ओवर करे और इस इंस्टीट्यूशन को ऐसे ही चलाए जैसे कि आज चल रहा है, उसी इसकी मुझे बहुत चिंता होती है, क्योंकि बिकॉज मैंने इसको एक छोटा सा बीज बोया था, उसके बाद एक छोटा पौधा देखा था और पौधे बढ़ते बढ़ते एक वटवृक्ष की तरह से मैं इसको देखती हूँ जो कि अपनी बाहें फैला करके सबको छाया दे रहा है, लेकिन ये ऐसे ही चलना चाहिए, इसकी जड़े कमजोर नहीं होनी चाहिए, इसको मतलब एनएफबी को थोड़ी सी भी अगर सोच लीजिए सशक्तिकरण नहीं होता, मतलब थोड़ा सा भी अगर इसकी कोई चीज कमजोर हो जाती है या वो काम नहीं कर पाती किसी कारण से तो उसका मुझे बहुत दुख होता है,
0: निश्चित रूप से।
2: लेकिन हाँ यस और होगा, तो इसलिए मैं चाहती कि एक अच्छी टीम बनाएं जो कि आगे लोग आए अच्छे और जो है टेक ओवर करके आगे इसी तरह से काम करते रहें।
0: क्या बात है?
2: जैसे मिस्टर रूंगटा ने किया,
0: बहुत बहुत खूब। लेकिन मैम सच्चाई ये है कि हालांकि आप जो कह रहे हैं वो भी सच्चाई है, लेकिन सच्चाई है कि सर के कामों के आगे, सर की ऊर्जा के आगे 25-30 साल के युवा भी जलन महसूस करते हैं ये बात भी सच है मैम उतनी जी।
2: लेकिन
0: मैं
2: फिर भी ऐसा नहीं है कि जिन लोगों में ऊर्जा है वो लोग अगर आगे आके काम करेंगे तो उनमें भी डबल ऊर्जा जरूर उनको मतलब मिलेगी और वो जरूर निश्चित रूप से जो है अपनी जो भी काम करना चाहते हैं उसको मतलब रिजल्ट्स उनको जरूर मिलेगी।
0: क्या बात सर, बहुत इम्पोर्टेंट बात की और इशारा किया सर ने, और कहीं ना कहीं ये बात मेरे भी जहन में चल रही थी। आप कितने संतुष्ट हैं जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, आपके पीछे जो युवा शक्ति अभी लगी हुई है वर्तमान में, और खासकर संगठन के भविष्य को लेकर के आप आशान्वित हैं या फिर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं टीम तैयार करने में थोड़ा सा वक्त अभी और लगेगा?
1: देखो, टीम तैयार करना एक सतत प्रक्रिया है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रक्रिया ठीक तरीके से चल रही है।
0: बहुत खूब जी।
1: और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो जनतांत्रिक प्रणाली में
0: जी
1: जिसको मैंने संजोया है
0: जी जी जी,
1: बड़े तूफान आए इस जनतांत्रिक प्रणाली को, चुनौतियां दी, संगठन और संगठन के अस्तित्व पर कई बार प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास भी हुआ
0: जी जी जी।
1: लेकिन मुझे लगता है कि ये जो टीम बनाने का जो प्रयास था और है
0: जी,
1: उसी टीम ने
0: जी
1: इस झंझावात को मेरे साथ मिलकर खड़े होकर सहा है
0: जी जी जी,
1: और उसको झंझावात को नेस्त नाबूद किया है
0: जी जी।
1: वही इस बात का प्रतीक है कि प्रक्रिया सही दिशा में
0: जी
1: चल रही है
0: जी।
1: अब आप देखिए, मेरा जो प्रयास है
0: जी
1: वो नेशनल स्तर से लेकर
0: जी
1: राज्यों के स्तर तक,
0: बिल्कुल सर,
1: युवाओं को अधिक से अधिक भागीदारी देना है,
0: बिल्कुल सर,
1: महिलाओं को अधिक से अधिक भाग देना है,
0: बिल्कुल सर,
1: क्योंकि मैं ये मानता हूं
0: जी
1: कि जो युवा और महिला अगर मिलकर
0: जी
1: संगठन को चलाएंगे
0: जी
1: तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वही मजबूती मिलेगी जो मजबूती आज है, हो सकता है इससे ज्यादा मिले और सस्टेनेबिलिटी और ज्यादा हो
0: जी।
1: क्योंकि मेरा जो इस समय प्रयास चल रहा है वो हर स्तर पर
0: जी
1: एक कलेक्टिव लीडरशिप का प्रयास चल रहा है
0: जी जी,
1: एक कार्य विभाजन कर हरेक को अपनी जिम्मेदारी देकर बिना हस्तक्षेप किए उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का अवसर देकर
0: जी
1: अभी अपनी देखरेख में उनमें एक कॉन्फिडेंस पैदा करने का प्रयास चल रहा है। जैसा आपने देखा
0: जी,
1: आप तो काफी निकटता से जुड़े हुए हैं संगठन से
0: जी जी जी।
1: अब राजस्थान के स्तर पे आप देखिए जैसे, या इसी तरह कोई भी राज्य।
0: मेरा प्रश्न था सर आगे वो भी कि केंद्र में आपके नेतृत्व में इतना सुदृढ़ तरीके से काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज के एक विद्यार्थी को, एक युवा को जो नया नया संगठन से जुड़ा है और वो किसी राज्य के दूर दराज के किसी कोने में है, कहीं उसके मन में शायद ये आता होगा सर कि राज्य की शाखाओं में उतना प्रबल, उतना सशक्त तरीके से काम शायद नहीं हो रहा जितना आपने उम्मीद की है।
1: जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसका कारण अगर हम ढूंढे
0: जी
1: तो कारण कहीं ना कहीं ये है कि जो केंद्रीय स्तर पर युवा भागीदारी बढ़ाई गई वो अभी राज्यों के स्तर पर परकुलेट नहीं हुई, और राज्यों के स्तर पर अभी हमारे कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने और जिम्मेदार पदाधिकारियों ने विशेष रूप से
0: जी
1: युवाओं को फ्रीडम नहीं दी है।
0: बिल्कुल सर,
1: और मेरा प्रयास यही है
0: जी
1: कि वो फ्रीडम मिले।
0: मिले वही सर जी,
1: और वो फ्रीडम मिलकर उनको गलती करने दीजिए आप।
0: जी जी जी जी जी,
1: गलती करने दीजिए, हम बैठे हैं
0: बिल्कुल
1: गलती को ठीक करने के लिए।
0: जी
1: हम बैठे हैं,
0: मॉनिटरिंग पूरी रखनी है, उन्हें अवसर भी पूरा देना है।
1: अवसर पूरा देना है
0: जी,
1: इंटरफेयर नहीं, हर दो मिनट में ये नहीं पूछना है
0: जी
1: कि तुम्हारा, अगर आपको जिम्मेदारी दे दी एक हॉस्टल चलाने की
0: जी
1: तो मैं नहीं पूछूंगा कि भाई कैसे चल रहा है क्यों नहीं चल रहा है। मेरे पास कोई बात आएगी तब पूछूंगा कि ये क्या हुआ कि नहीं हुआ, क्या दिक्कत आ रही है वगैरह।
0: वही बातें हैं सर, दरअसल ये एक किसी भी
1: वो हमको जब तक हम वो नहीं देंगे लिबर्टी।
0: जी जी,
1: अब मैंने तो अपने स्तर पर अब राष्ट्रीय कार्यालय ने तो लिबर्टी दे रखी है राज्यों को
0: जी।
1: अब जैसे आपके यहाँ हॉस्टल की स्कीम है
0: जी,
1: हमने तो लिबर्टी दे रखी है
0: जी।
1: अब वो ठीक से चलाना न चलाना
0: जी
1: वो राज्य के पदाधिकारियों का काम है। ठीक है
0: जी जी जी,
1: और इस दिशा में हमको ये चाहिए और ये हमको कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राज्यों के स्तर पर ये प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है
0: जी जी,
1: सफल की तो बात दूर है।
0: दूर है बिल्कुल सर,
1: इसको प्रारंभ करना होगा
0: निश्चित रूप से सर, क्योंकि चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, हर एक दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने संगठन के प्रति एक आशा की किरण से देखता है ना सर।
1: निश्चित रूप से, आज महामारी में देखिए
0: जी
1: कोई और संगठन दिख रहा है? अगर महाराष्ट्र के दूर के इलाके से भी मैसेज आता है तो यहीं से आता है, एनएफबी इंडिया पे फॉरवर्ड होके आता है
0: जी।
1: वो निवेदन करता है किसी ना किसी से कि इसको फॉरवर्ड कर दो, सर तक पहुंचा दो
0: जी
1: कि मैं इस परेशानी में हूँ। तो ये सब मैसेजेस आपको बता रहे हैं, हम सबको बता रहे हैं
0: जी
1: कि आपका दायित्व कितना बड़ा है
0: जी,
1: और आपसे कितनी संवेदना की अपेक्षा है
0: जी। इसमें वही बात जुड़ जाती है सर कि जैसे अब जयपुर में भी बात करनी है अगर एग्जेम्पशन को लेके तो आप कर रहे हैं, या पंजाब में भी करनी है तो आप कर रहे हैं।
1: वही आपने देख पिछले दिनों लगातार
0: जी
1: मैं अपने मैसेज में कहता भी रहा है अप्रत्यक्ष रूप से
0: जी जी जी
1: कि थोड़ा आप लोग सहयोग करेंगे तो लोकल,
0: जबकि स्टेट लीडरशिप की तरफ से ये मतलब काम हो जाने चाहिए, आप तक तो इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए कि सर हो गया।
1: वही लेकिन अभी उल्टी गंगा बह रही है, हमें बताना पड़ता है कि अब इस राज्य में आ गया, ये डाल दिया मैंने, ये कर दिया वो कर दिया।
0: वही सर, वही वही वही सर,
1: तो एक्टिव तो होना पड़ेगा। देखिए
0: होना पड़ेगा निश्चित रूप से सर,
1: और उसमें कहीं ना कहीं हमारे सदस्यों को भी जागरूक होना। देखिए जहाँ जनतांत्रिक व्यवस्था है
0: जी
1: तो सदस्यों को थोड़ा मित्रता, अपना पराया ये भूल कर
0: जी
1: निर्णय लेने होंगे अपने कार्यकारिणी के गठन के समय।
0: जी हाँ जी हाँ,
1: संगठन के हित में
0: जी
1: डिस्पैशनेटली निर्णय लेने होंगे
0: जी।
1: मान लीजिए मैं ही काम ना करूं,
0: बिल्कुल सर,
1: फिर भी आप अपना समझ के हमको वोट दें तो आप गलत कर रहे हैं, संगठन के प्रति गलत।
0: जी जी जी जी जी, ठीक कह रहे हैं सर। मैम हमारा कार्यक्रम वैसे वैवाहिक जीवन की चुनौतियों और उसको लेकर के होता है, लेकिन श्रोता सोच रहे होंगे ये संगठनात्मक, लेकिन श्रोताओं ये संगठन भी एक परिवार है और संगठन के मुखिया भी संगठन के साथियों के लिए हमराही की तरह ही होते हैं, इसीलिए ये सब चर्चाएं, और सर का कार्य क्षेत्र इतना बड़ा है कि ये सब चर्चाएं करना बहुत जरूरी है। मैम कभी ऐसा कुछ हुआ हो कि आपने किसी कार्य के लिए सर को रोका हो और बाद में आपका कहना ही सही निकला हो, ऐसा कभी हुआ है?
2: मुझे ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा कि मैंने कभी किसी काम के लिए रोका हो।
0: जी एक मैम मतलब महिलाओं के लिए ये बड़ी एक बात होती है कि लुक्स को लेकर के वो बहुत ज्यादा कंसर्न होती हैं। आपने भी तो कई बार सर को रोका टोका होगा इन मामलों में, या कभी ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी?
2: नहीं, जो भी देखिए वो अपने अपनी चॉइस से तो कपड़े लाते नहीं है, मैं अपनी चॉइस से ही कपड़े लाती हूँ।
0: जी, जी, जी,
2: तो जब भी पहनाती हूँ तो अच्छे ही लगते हैं हमेशा।
0: नहीं कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा और सर ने मना कर दिया, नहीं नहीं यार रहने दो ये
2: नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं, क्योंकि वो तो कहते हैं जो तुम पहना रही हो तो अच्छा ही पहना रही होगी और दूसरे लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा नहीं है।
0: सर कुछ कहना चाह रहे थे शायद?
1: नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ ये अब आपको समझ आ गई ना, सामंजस्य की बात।
0: सामंजस्य की बात, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा सर जबरदस्त आज का कार्यक्रम रहा और बात करते करते वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन सर बातें बहुत हैं अभी भी, जो काम किया है संगठन की तरफ से आपने और पूरे संगठन ने, संगठन के प्रत्येक व्यक्ति ने वो भी, और समस्याओं पर भी, प्रशासन के रवैये पर भी, तो लगता

0: है कि एक कार्यक्रम और होना चाहिए आपके साथ, अगला भाग भी इसका होना चाहिए अगर आप अनुमति देते हैं तो। तो रेडियो मधुबन और हमारे पूरे दृष्टिबाधित समाज की ओर से इन पंक्तियों के साथ कि जैसा कि आपका जीवन रहा है, अभी तक का जो कार्य क्षेत्र रहा है कि नेक ने तो नेक समझा, बद ने बद जाना मुझे, अपने अपने आईने में सबने पहचाना मुझे, आपको सर जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे समाज की ओर से, हमारे परिवार की ओर से। और मैम आप भी अगर इस मंच पर सर को अपनी ओर से जन्मदिन विश करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैम
1: मुझे तो अभी तक इससे पहले बड़ी शिकायत रहती थी कि आप लोगों के साथ ही जन्मदिन मना रहे थे, नहीं तो कभी कभी कानपुर में तो कभी कहीं, कभी कहीं डिफरेंट स्टेट्स में ही जन्मदिन मनाया जा रहा था पिछले कई सालों से। तो
0: बिल्कुल निश्चित रूप से पिछले लगभग 10-12 सालों से ऐसा ही हो रहा था।
1: बिल्कुल
0: आप अपने तरीके से विश कीजिए मैम सर को, कुछ आप ऐसी बात जो शायद कहना चाहते हो।
1: मैं तो यही चाहूंगी कि ईश्वर इनको बहुत लंबी उम्र दे और इतना स्टैमिना दे, हमेशा स्टैमिना रहे कि संघ के लिए हमेशा काम करते रहे अंतिम सांस तक। मैं यही चाहूंगी, यही विश करती हूँ।
0: वाह मैम, और आज इस मौके पर मैम जो महिलाएं आपको सुन रही हैं और खासकर दिव्यांग साथियों से जुड़ी हुई हैं और परिवार में कुछ इसी वजह से गड़बड़ चलती है कि भाई ये मत कीजिए वो मत कीजिए, क्या सलाह देंगी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
1: मत कीजिए तो कभी नहीं कहती, मत खाइए जरूर कहती हूँ।
0: नहीं, जो आपको सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देंगे मैम?
1: अपनी प्यारी बहनों और बच्चियों के लिए तो मेरा यही संदेश है कि भाई ठीक है, घर में जो है मतलब जो हमें परिवार जो चलाना होता है ना, उसकी सारी जिम्मेदारी जो है एक नारी की होती है। मेल्स को थोड़ा फ्री रखना चाहिए जिससे कि वो भी वो जो है जो वो चाहते हैं वो करें, और घर की हमें जिम्मेदारी पूरी लेकर चलनी चाहिए।
0: बहुत गुड। और सर आप अपने सभी साथियों को आज इस मंच पर आपके इस जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एक तरह से क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि हम सब अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानें
0: जी,
2: और जो हमको समाज में अवसर मिले हैं
0: जी,
2: उन अवसरों का लाभ उठाते हुए
0: जी,
2: परिवार और समाज के प्रति अपने दायित्वों का
0: जी
2: उसी तरह से समानता से निर्वहन करें जिस तरह से समानता के अधिकार की रक्षा की अपेक्षा हम रखते हैं
0: जी। जी,
2: और मैं ये भी कहना चाहूंगा सभी साथियों को
0: जी
2: जो लोग सुन रहे हैं
0: जी,
2: कि आप भी निरंतर मेरे साथ साथ हर साल
0: जी
2: अपना जन्मदिन खुशियों और किसी नए निश्चय के साथ
0: जी
2: हमेशा खुशी से मनाएं, परिवार के साथ और समाज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो श्रोताओं आज का ये प्रोग्राम सर के साथ कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा और रेडियो मधुबन सुनते रहिएगा। कॉल करें 94-14-15-14-15 पर।
3: तो श्रोताओं आप सब तो जानते ही हैं, हमरा ही कार्यक्रम रिकॉर्डिंग क्लब और रेडियो मधुबन के साझा प्रयासों से आप सब तक पहुँचाया जाता है। आज का यह कार्यक्रम अगर आपको पसंद आया हो, आप इसका अगला भाग भी सुनना चाहते हो, तो फिर मैसेजेस जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आपके मैसेजेस और कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा, आपके कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। तो चलिए श्रोताओं आज का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त करने की इजाजत दीजिए। रेडियो मधुबन का ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर जाकर के रेडियो मधुबन के ही नाम से है। अगर आप ईमेल करना चाहें तो info@radiomadhuban.in, और कॉल के लिए तो नंबर मैं दे ही चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं 94-14-15-14-15 पर। नमस्कार।
4: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

नमस्ते मित्रों, मैं हूं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। और सच में किस टोन में हम किस बात को कहते हैं ना, लोग कह देते हैं अरे आज बड़े उदास हो, आज बड़े गंभीर हो, या कभी कभी सेम सेंटेंस को ही अलग अलग तरीके से कहने से हमारी भावना को पहचान जाते हैं। लेकिन हम अपनी भावनाओं को कितना पहचान, इसकी कोशिश कर रहे हैं हम, खुद को जान रहे हैं हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जिसका नाम है लव यू जिंदगी। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एक्सपर्ट्स। सबसे पहले स्वागत करते हैं ग्लोबल अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गई हैं कल्पना जी, जो कि साइकोथेरेपिस्ट हैं, साथ साथ स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया आरुषि जी, बहुत बहुत खुशी होती है जब हम अपने श्रोताओं से मिलते हैं और अपने मन की बात उनके साथ शेयर कर पाते।
0: और हमें भी बहुत खुशी होती है क्योंकि हमारे साथ एक नहीं दो दो एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनिधि जी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, साथ साथ जाने माने एंकर और आरजे भी हैं। श्रीनिधि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी। लव यू जिंदगी के हमारे सभी श्रोता मित्रों को नमस्कार। कल्पना जी आपको नमस्कार। और जैसे लव यू जिंदगी में एक और एपिसोड है, जानते हैं कि हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, मेरे सारे विषय ऐसे हैं जो हम सबके दिलों के करीब, और कम बार ही ऐसा होता है जब हम समय निकाल कर इन चीजों पर सोचते हैं, तो शायद ये कोशिश यही काम करती है कि हम उन चीजों को तवज्जो देना शुरू करें जो चीज एक्चुअल में हमारे लिए।
0: बिल्कुल, और इसी चीज की कमी होती जा रही है आजकल, समय समय नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें समझ में आया था पिछले एपिसोड को, अगर दोस्तों आपने भी सुना होगा, कि हीलिंग की प्रक्रिया में समझ और समय दोनों बहुत जरूरी है। तो हम बातचीत कर रहे थे भावनाओं के बारे में, हीलिंग के बारे में, और हमने पिछले एपिसोड में ये जान लिया था कि कहीं ना कहीं कोई बैगेज है जो हम शायद बचपन से कैरी कर रहे हैं, जिसके साइंस नजर आते हैं। हो सकता है गुस्सा जल्दी आ जाता है, बेवजह रोना आ जाता है, या फिर चिड़चिड़ापन लगता है, अकेलापन लगता है, डर लगता है, ऐसे बहुत सारे साइंस है। दीदी आप बता रहे थे कि हम थोड़े और कुछ साइंस के बारे में बात करेंगे, सोशल साइंस के क्या क्या होते हैं जी, उसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: तो हमने भावनात्मक संकेत देखे थे, बिना कारण उदासी, छोटी छोटी बातों पर रोना, अत्यधिक गुस्सा आना, चिंता, डर, अकेलापन। मानसिक संकेत हमने देखे थे, बार बार वही बातें सोचते रहना, ओवरथिंकिंग है, नेगेटिव सोच आना, आत्मविश्वास की कमी होना, खुद के निर्णय लेने में कठिनाई उत्पन्न होना। अब हम शारीरिक संकेतों की बात करते हैं। शारीरिक संकेतों में पहला संकेत जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है नींद ना आना। आजकल भी सोशल मीडिया के ज्यादा यूज की वजह से, मोबाइल के ज्यादा यूज की वजह से लोगों के नींद में डिस्टरबेंस क्रिएट होता जा रहा है, तो ये शारीरिक संकेत बहुत खतरनाक है। दूसरा है कि सारा दिन थकावट बनी रहे, देर से सोना, देर से उठना, और फिर सारा दिन थके थके महसूस कर, सिर दर्द अधिक होना। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं स्कूल कॉलेज जाने वाले, क्योंकि पढ़ाई भी है, सो पढ़ाई करते समय उनका सिर दर्द होने लगता है या कभी पेट दर्द होने लगता है, और जब डॉक्टर को दिखाओ तो पता चलता है ऐसी कोई बात है नहीं जिससे उनका सिर दर्द हो सके, बट रात की नींद नहीं, थकावट है, सिर दर्द होना, शरीर में जकड़न से क्रिएट होना, भूख कम लगना या ज्यादा लगना, ये शारीरिक संकेत हमें दर्शाते हैं कि हमारी भावनात्मक इम्बैलेंस है। फिर व्यावहारिक या सामाजिक संकेतों में हम देख सकते हैं कि हम अचानक लोगों से दूर होने लगे, हमें लोग अपने आसपास अच्छे नहीं लगते, हम ग्रुप से अलग हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, हम अक्सर लोगों से बचकर मोबाइल में घुसे रहते हैं या सोशल मीडिया में चले जाते हैं। एक बार एक यूथ से मैंने प्रश्न पूछा, क्या हुआ भाई आजकल आप दिखाई नहीं देते, तो उसने जवाब दिया, मैम आप ऑनलाइन आ जाए।
0: अच्छा।
1: मैं हमेशा वहां अवेलेबल रहूंगा।
0: अवेलेबल तो हूँ लेकिन ऑनलाइन।
1: इसके साथ साथ नशे के प्रति आकर्षित, नशे के प्रति, और कभी कभी क्या होता है, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो हम लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, पीपल प्लीजिंग बिहेवियर शुरू हो जाता है, या तो कट ऑफ करते हैं या पीपल प्लीजिंग रहते हैं। तो ये सारे संकेत जो हमें नजर आते हैं, अब इसको हमें न्यूट्रलाइज कैसे करना है ये बात हम आगे देखेंगे, बट मैं इस पर श्री जी के भी विचार सुनना चाहूंगी। So, जब हम इनके उपचार की, अभी हमें संकेत का पता चला, क्या साइंस होते वो पता चला, अब हम इसके उपचार की बात करें।
0: एक चीज मैं और जानना चाहूंगी यहाँ पे उपचार से पहले, अगर कि ये जो सारे आपने साइंस बताए, ये क्या कहीं ना कहीं बचपन से ही जुड़े हुए हैं, मतलब अलग अलग चीजों से जुड़े हैं, या जैसे किसी को माँ बाप का प्यार कम मिलता है, लगता है बड़े भाई बहन को ज्यादा मिला, या किसी के साथ टीजिंग होती है तो ऐसा होता है जिसके साथ टीजिंग हुई उसको ये वाला ज्यादा सिम्टम होगा, या जिसके साथ ये हुआ उसको ये वाला ज्यादा सिम्टम होगा, ऐसा कुछ होता है क्या कनेक्शन?
1: जी बिल्कुल, हमारे प्रेजेंट सभी प्रॉब्लम्स का अगर जड़ हम देखेंगे तो हमारे बचपन के एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई।
0: जैसे पीपल प्लीजिंग है तो उसका क्या कारण हो सकता है कि जो लोग कॉन्फिडेंस नहीं होता या दूसरों को ही खुश करने में लगे होते हैं, इसका क्या?
1: आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जिस व्यक्ति के सारे अपने लोग उसको तिरस्कार करते होंगे, उसे प्यार नहीं करते होंगे, या उसे छोड़कर चले गए होंगे, या उसे हॉस्टल में डाल दिया गया होगा, उसको अकेलापन लग गया होगा, जब उसके रिलेशनशिप टूटते जाते हैं तब वो सोचता है कि मेरा हर रिलेशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो हर एक व्यक्ति को प्लीज करने की कोशिश करता है ताकि वो उसके साथ बनाए।
0: ओके, तो उनको वो होल्ड ऑन करने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी करना पड़े कर लेते, बट मुझे वो व्यक्ति का साथ चाहिए।
0: डर होता है कि वो भी छोड़ के ना चला जाए।
1: हाँ।
0: तो मतलब, और जिनके साथ बुलिंग ज्यादा हुई होती है, चिढ़ाया होता है, उनका किस प्रकार का सिम्टम, मतलब या साइन है?
1: बहुत गहराई तक मेरे पास ऐसे कई यूथ्स आए जो कॉलेज में बुलिंग का शिकार हुए, उनका पूरा लाइफ और पूरा करियर बर्बाद। इतने अच्छे पढ़ने वाले ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, लेकिन कॉलेज में इस तरह गलत तरीके से उनकी रैगिंग हुई है, उस वजह से उनका पूरा लाइफ मेंटल बीमारी के कारण के शिकार हो गए है, और पढ़ाई भी रह गई, करियर भी रहे, और अभी हेल्पलेस होकर बैठे। सो बीच में ही मैं सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चाहे वो जो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, या ऑफिस में जाते हैं, किसी भी स्थान पर दूसरे को तंग करने की आदत को पहचान कर उसे तुरंत रोकिए, क्योंकि आपके चिढ़ाने से, आपके तंग करने से, आपके बुली करने से या आपके रैगिंग करने से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है।
0: बिल्कुल दीदी, और ये बहुत सच बात है, बुलिंग होती है, मजाक लगता है लोगों को कि हम तो सिर्फ जोक कर रहे थे, प्रैंक जिसको बोलते हैं, प्रैंक कर रहे थे, पर वो दोनों लोग नहीं हंस रहे होते, एक ही हंस रहा होता है बस, सामने वाला तो बहुत रो रहा होता है, परेशान होता है। इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं आज भी। ये तो फिर जैसा आपने कहा, साइंस अलग अलग है, किसी ट्रॉमा का कुछ और साइन है, किसी ट्रॉमा का कुछ और साइन है। जिस तरह से, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी, जो नींद नहीं आने वाली बात है, ये ओवर थिंकिंग वाली बात है, ये क्यों होती है, मतलब ये कहाँ से शुरुआत होती है, इसकी नींद कहाँ से पड़ती
1: है? नींद का हमारा एक साइकिल होता है, जैसे जैसे अंधेरा होता है एटमॉस्फेयर में, हमारी आंखों में जो मेलानिन द्रव है वो क्रिएट होता है, उसकी वजह से हमको लगता है अंधेरा होता है, तब हमारी आंखें थोड़ी भारी हो जाती है और हमें नींद का आना हो जाता है। अब क्या हो रहा है कि रात तो हो जाती है बाहर, लेकिन हमारा स्क्रीन बंद नहीं होता है, चाहे वो टीवी का स्क्रीन हो, चाहे

0: तो मोबाइल का स्क्रीन हो जो हमारे आंखों में रोशनी देता रहे। तो एक बार मेरे नींद का साइकिल हमारे शरीर का और मन का एक रिदम है, उस रिदम को अगर हम तोड़ देते हैं किसी कारण से, जिस समय सोना चाहिए, समझो रात को 10 बजे सोना चाहिए, पर एक या दो दिन मैंने वो रिदम तोड़ दिया और रात को 1-2 बजे सोना शुरू किया, मेरी बॉडी का सर्कैडियन रिदम टूट जाता और फिर मुझे दूसरे तीसरे दिन से 10 बजे नींद नहीं आती। तो फिर मैं शिकायत करती हूँ, अरे 10 बजे नींद नहीं आ रही। नींद न आने का कारण मैंने ही उसको डिस्टर्ब किया। तो और 2 दिन अगर आप कोशिश करके उसी टाइम पर सोएंगे, फिर से उस रिदम में हम आ सकते। नींद न आने के कई और भी कारण होते हैं जिनको हम बाद में जानेंगे, लेकिन युवाओं के लिए जो मेन कारण है वो है स्क्रीन टाइम का बढ़ जाना, क्योंकि रात में उनको पर्सनल टाइम मिल, उस समय कोई देख नहीं रहा होता है, कुछ काम नहीं होते हैं, तो उस टाइम पर मुझे देखना है
1: रिलैक्सेशन के लिए।
2: पूछना चाहूंगा देखो, क्योंकि वो सर्कैडियन रिदम्स की बात कर रहे हैं, अक्सर ये चीज मेरे को सुनने को मिलता है जब युवा साथी कंप्लेन करते हैं और मैं उनको कहता हूँ कि आप अपना टाइम टेबल वापस रीसेट करो, तो वो बोलते हैं कि भाई नींद नहीं आ रही है इसलिए मैं मोबाइल देख रहा था, अब फिर मैं मोबाइल देख रहा हूँ इसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। दोनों में सत्य क्या है कि ये गोल गोल चक्कर है,
0: मुर्गी पहले या अंडा पहले, ये वही हाल है। परंतु यस, नींद के टाइम पर नींद करना इसलिए जरूरी क्योंकि अगर हमने सही नींद ली है तो ये सारे बैगेजेस जो है ना, केवल एक नींद करने से सारे बैगेजेस को हम विदा कर सकते।
1: नींद इतनी पावरफुल है।
0: एक्जेक्टली, आप सही सुन रहे हैं, केवल एक नींद के ठीक करने, नींद हमारे लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों 8 घंटे की नींद का इम्पोर्टेंस है? दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे या 10 घंटे हम काम करते हैं, बाकी के घंटे हम एंटरटेनमेंट या अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए, लेकिन 8 घंटे सबसे लंबा समय नींद को दिया गया। क्यों? क्योंकि उस दौरान हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी और हमारा माइंड रिचार्ज होते हैं, रिपेयर होते हैं, और वो रिचार्ज और वो रिपेयर कंपल्सरी, उसका कोई और ऑप्शन या अल्टरनेटिव नहीं।
1: शिंदी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: कल्पना जी की बात से मैं सहमत हूँ। ये तो समझते हैं कि नींद का अभाव कितना बड़ा नुकसान कर सकता है शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। हम ये कहते हैं और शायद हमारे कई युवा साथी इस बात को पहले सुना होगा। श्रोता मित्रों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, अगर एक व्यक्ति भोजन नहीं करता है, हमारे साथी शायद इस बात को जान के हैरान होंगे कि अगर एक व्यक्ति भोजन के बिना अगर उसको आप रखना चाहें तो कई लोगों को हम एक हफ्ता 10-15 दिन तक स्टार्विंग पे रख सकते हैं, यानी वो बिना भोजन किए उपवास पे जीवन जी सकते हैं, सिर्फ पानी पे जिया जा सकता है। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई दिन बिना भोजन के बिता दिए, सिर्फ पानी पर, फिर भी शरीर चलता रहा। अगर उसी के मुकाबले आप भोजन को भी काट दो और पानी को भी काट दो तो भी व्यक्ति बिना पानी के 2-3 दिन तो जी ही सकता है। कोशिश करके अगर कई लोग ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 दिन एक हफ्ता भी बिना पानी के सिर्फ हवा पे जीते रहे। मगर अगर आप एक इंसान को सोने ही न दो, अगर 4 दिन लगातार उसको सोने न दें आप, तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि कई सारे लोग जिंदा नहीं रह सकते। नींद का अभाव मौत का कराता है, यानी ये इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और अनेकों एक्सपेरिमेंट्स ने इस बात सिद्ध किया हुआ है। हालांकि इनमें से ज्यादातर लोग नींद की इस महत्व को नहीं जानते। मैं कल्पना जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। रूबरू और विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि नींद हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, दोनों को ठीक रखने मदद करता है। और समझ लें, आज आपने बहुत गुस्सा कर लिया, आज आपका मूड बहुत खराब है, आपने कुछ भी कर लिया, आप सो जाइए, सोने के बाद कुछ घंटे की नींद से आप उठते हैं, आप एकदम रिलैक्स उठते हैं, तो एक प्राकृतिक रूप से मिले हुए तोहफे के रूप में आप नींद को देखें, जो आपको हील करने में मदद करता है, आपके वेलबींग को रिस्टोर करने में मदद करता है। अगर हमें वो मौका देना चाहिए, और अगर हम इस मौके को अपने आप को नहीं देते हैं, ये तोहफा जो हमारे पास है, अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम अपने ही आपको हानि पहुंचा रहे हैं। ये बात सबसे सही बात है।
1: ओके, तो नींद का इतना महत्व है ये तो समझ में आया, लेकिन कई बार लोग सोते तो है ही लेकिन बस लेट से। कई बार हम 1 बजे सोते हैं तो नींद पूरी होती है, 7-8 घंटे भी होती है, क्योंकि हम 10 बजे उठ रहे हैं या 11 बजे उठ रहे हैं या 9 बजे उठ रहे हैं, तो 7-8 घंटे की तो नींद हो रही है। तो क्या वो सेम वर्क करी है या यहाँ भी अंतर हो जाता है? क्योंकि लोग बहुत इरिटेट होते हैं कई बार जब पेरेंट्स बोलते हैं अरे टाइम पे उठो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, टाइम पे सो, तो बहुत कई बार ये चीज इरिटेट करती है एक्चुअली।
2: इससे पहले कि मैं जानता हूँ कल्पना जी इसका उत्तर बेहतर दे सकती है, मैं अपने अनुभव से ये बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक आईटी कंपनी के लिए काम करता था और क्योंकि आईटी कंपनीज ग्लोबल इंडस्ट्री है, वो ग्लोबली काम करती है, अलग अलग क्लाइंट्स आपके दुनिया के दूसरे दूसरे कोने में होते हैं, तो हमारे क्लाइंट्स कैनेडा में, और मुझे उनके टाइमिंग्स के अनुसार काम करने की जरूरत पड़ती थी। कभी कभार मैं शाम को 7:30 बजे काम करना शुरू करता था और रात के 2-3 बजे तक काम करना पड़ता था, और कभी कभार मैं रात को 2:30 बजे 3 बजे सवेरे उठकर काम करना शुरू करता था और दोपहर के 12 बजे तक मुझे वो काम करना पड़ता था। ये टाइम टेबल ऊपर नीचे होता रहता है। हालांकि हमको ऐसा लगता है कि हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब जब मैं रात को 1-2 बजे तक सोता ही हूँ, वीडियो ही देख रहा हूँ, तो फिर उस समय पर तो मेरे पास मोबाइल फोन और इंटरनेट ऐसा माना नहीं था जब मैं काम करता था। बट आजकल के युवा ये समझ सकते हैं कि आज हम रात को 1-2 बजे तक तो ऐसे भी सोते, 12 बजे तक तो सोना होता ही है, तो 2 घंटा और काम कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई ऐसा लग सकता है। अगर वास्तविकता में मैंने ये चीज देखी, जब मैंने ये चीज किया, इस तरीके का शिफ्ट वर्क किया, और क्योंकि मैं सोचता था कि मैं जवान हूँ, मेरा शरीर इन चीजों को मैनेज कर लेगा, और मुझे कोई ऐसी बात लगी नहीं क्योंकि मैं दिन में सो जाऊंगा इस बात, और मैं सोता भी था, तो मैंने ये चीज पाया कि इसकी वजह से मेरे स्वास्थ्य तब्दीली आने लगी, उसकी वजह से मैं बार बार बीमार पड़ने लगा। आए दिन मुझे ना कोई प्रकार की बीमारियां, या तो पेट दर्द, या तो बुखार, सर्दी, खांसी, कभी कभार तो इनडाइजेशन, कभी अस्पताल में भर्ती होना, ये सारी चीजें धीरे धीरे शुरू, और ये बॉडी के नेचुरल साइकिल को छेड़ने की वजह से होता है। प्रकृति में हर एक जीव अपने अपने समय के अनुसार काम करता है, सबका एक सिस्टम बना हुआ है और उसी सिस्टम के अनुसार हमें चलने की जरूरत है।
1: लेकिन मतलब जैसे मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैं भी कई बार रात को पढ़ती थी, बड़ा पीसफुल लगता है, शांति होती है, कोई नहीं होता है डिस्टर्ब करने के लिए, 3-4 घंटे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। तो अगर ऐसा लग रहा है कि हमें ज्यादा पीसफुल लग रहा है उस टाइम पढ़ना या कुछ और काम करना, तो क्या करें फिर?
0: पढ़ने की जहाँ तक बात है, वो थोड़े समय के लिए होता है, इसलिए कोई बात नहीं। उसके बाद आप अपने डेली रूटीन में आ जाते हो, रात की नींद आपकी पूरी हो जाती है। इम्पोर्टेंट रात की नींद का, जबकि प्रकृति भी अंधेरा करती है। आप दिन में 10 बजे तक 11 बजे तक सो रहे हैं, तो आप कोशिश करना, देखना, ट्रायल करना, उसके बाद भी आपको थकावट महसूस होती है। भले आप 10 घंटा सोए, फिर भी आपको थकावट महसूस होती है, ऊर्जा नहीं रहती, एनर्जी नहीं रहती है, थोड़ा सा काम करके उठने का मन नहीं करता है बिस्तर से।
1: ये तो है।
0: तो ये सारी चीजें दिन के सोने में, रात के सोने में आप 10 बजे सो जाओ और सुबह 6 बजे उठो, ये है राइट टाइम सोने। हमारे पास कहीं प्रॉब्लम लेकर आते हैं, नाइट ड्यूटीज करते हैं, जब हम देखते हैं जो श्री जी ने सिम्टम्स बताए उनकी रात की काम करने की आदत की वजह से, वो सारे सिम्टम्स लेकर आते हैं। जब हम उनको पूछते हैं कि आपका काम क्या है, तो मैं सालों से नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ। अब ये इसकी वजह से पूरा मानसिक, शारीरिक और ब्रेन का संतुलन बिगड़ जाता। हम उनकी कंपनी को फिर सलाह देते हैं कि हफ्ते में केवल 3 दिन का नाइट करवाएं और बाकी दिन उनको डे में आने के लिए चांस दे। इसीलिए कई जो क्षेत्र है उसमें ये रूल है, जैसे नर्सिंग में, क्योंकि पेशेंट को अटेंशन देने की जरूरत है, दवाइयाँ ठीक से देने की जरूरत है, उनको 2 नाइट्स के बाद एक छुट्टी मिलती है और उसके बाद उनकी नाइट एक हफ्ते के बाद लगती
1: है, वो बैलेंस।
0: बैलेंस, इसलिए रात का सोना मस्ट है, इम्पोर्टेंट।
1: ओके, तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो बात चली आती है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये बातें यानी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, और इसको चेंज करना हमारी हेल्थ के साथ हम जैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। और आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी शुरू में कि हीलिंग कर देती है नींद, जो पुराना बैगेज है उसको भी हील कर देती है। श्रीनिधि जी, आप भी कुछ क्या कहना चाहेंगे उस, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये बात, हीलिंग नींद कर सकती है, मतलब हम कॉन्शियसली एफर्ट के बिना क्या इतना पॉसिबिलिटी है उस हीलिंग के बारे में, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: बिल्कुल आरुषि जी, जब हम बॉडी के रिपेयर की भी बात करते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब गाड़ी अगर खराब हो गई है, या ये समझें कि भाई गाड़ी की सर्विसिंग कराने की जरूरत है, ऑयल चेंज करना है उसका, या मरम्मत करनी है, तो आप गाड़ी को गैराज में ले जाते हैं। अब आप गैराज में गाड़ी चलाते नहीं है, गैराज में गाड़ी खड़ी रहती है, और उस पर जो काम होना होता है वो होता है। उसी प्रकार शरीर की गाड़ी का भी ऐसा ही है जो हमारा मस्तिष्क, उसके लिए भी रिलैक्सेशन की जरूरत है।

0: मनोस्थिति में क्या परिवर्तन आ रहा है, तो लोग जब उस परिवर्तन को देख लेते हैं तो अपने आप वो उस चीज को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये अनुभव वाली बात है, करके देखने वाली बात है। विज्ञान भी तो एक्सपेरिमेंट की बात करता है, हम बिना एक्सपेरिमेंट और उसके उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो एक्सपीरियंस आता है उसके आधार पर विज्ञान को मानते हैं। तो यही चीज वैज्ञानिकों ने ऑलरेडी बता दिया है, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, अनेक लोग इस चीज को वाउच कर, तो हमें भी वो चीज करके देखने की जरूरत है। और बिल्कुल ये ताकत है प्रकृति, और इसी चीज के लिए लोग कहते हैं जब शरीर में व्याधि भी हो रही होती तो लोग यही कहते हैं डॉक्टर साहब नींद की गोली दे दो, नींद का इंजेक्शन लगा दो, सो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। और अक्सर ये देखा जाता है व्यक्ति वेल रेस्टेड होता है तो उसके स्वास्थ्य में इजाफा होता है। कुछ ना करना ही अपने आप में हीलिंग प्रोसेस, हम सोचते हैं कि क्या करें क्या करें, इसके लिए क्या करें उसके लिए क्या करें, कभी कभार रिलैक्स करना, कुछ नहीं करना, वो हीलिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा कारगर उपाय साबित होता है।
1: तो कभी कभी कुछ ना करना भी जरूरी है। जब पूछते हैं सवाल क्या करें, तो अभी कुछ नहीं करें बहुत जरूरी है, ये समझ में आया। और मुझे लगता है इस एपिसोड में तो हमने बहुत सारी नींद के बारे में बात कर ली है, और किस तरह से नींद मदद करती है वो भी हमने समझा, और क्या क्या हीलिंग है, हम कैसे कैसे बैगेज कैरी कर रहे हैं, कैसे उसको हील करने की शुरुआत कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। फिलहाल जाते जाते दीदी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अब नींद के बारे में क्योंकि बात हो रही है, तो क्या सोने के पहले हम कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं जिससे नींद हमें अच्छी आए?
2: बिल्कुल कर सकती हूँ। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेडिटेशन की शुरुआत डीप ब्रीदिंग से होती है, रिलैक्सेशन से होती है। जब डीप ब्रीदिंग का हम एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं और बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने की प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा मन शांति का अनुभव करता है, विचार रुक जाते हैं, हमारी भावनाएं शांत होती हैं। उस रिलैक्स स्टेट में हमें गहरी नींद का आनंद लिया जा सकता है। तो 2 मिनट के इस मेडिटेशन में हम यही देखेंगे कि सोने से पहले हम कौन से ऐसे विचार करें जिससे हमारा मन भी शांत हो और ब्रेन भी रिलैक्स फील करे। तो मैं श्रोताओं से अनुरोध करूंगी कि वो किसी निश्चित स्थान पर बैठकर गहरी और लंबी सांस लेने का अभ्यास करें। गिने अपनी सांसों को, लंबी सांस गहराई तक भीतर ले और लंबा सांस छोड़े। पूरा ध्यान अपने सांसों पर एकाग्र करें। अपने संपूर्ण शरीर में रिलैक्सेशन को फील करें। एक एक बॉडी पार्ट को ढीला छोड़ दें। अपने सिर को और मस्तक को फील करें, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। मन में विचार दोहराएं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं बिल्कुल सुरक्षित, मैं प्रेम पाने और प्रेम देने के योग्य हूं। गहरी और लंबी सांस के साथ अपने आप को स्वीकार करें, सुरक्षित महसूस करें। चारों ओर से प्रकृति और परमात्मा के प्रेम से घिरा हुआ महसूस करें। और चलिए 1 मिनट के लिए हम गहरी नींद का अनुभव करें। खुद को ऑर्डर दें, मुझे 1 मिनट आंख बंद करके, सारे दरवाजों को बंद करके केवल गहरी नींद का अनुभव करूं। नींद मेरी फ्रेंड है, नींद मेरी दवाई है, नींद मुझे भीतर और बाहर से पूरी तरह से हील करती है। थैंक यू
1: सो मच दीदी। नींद सबसे बड़ी हीलर है, चाहे शरीर हो चाहे मन, और दोनों की ही हीलिंग आज हमें करनी बहुत जरूरी हो गई है, चाहे बच्चे हैं, युवा हैं या बुजुर्ग हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है ये मेडिटेशन हम सबके लिए है। कोई सुन रहे हैं तो अपने घर वालों से भी ये जरूर शेयर करें, और

0: अभ्यास करें, जैसा श्रीनिधि जी ने भी बताया कि एक्सपेरिमेंट करके देखें कुछ हफ्तों तक, फिर आपको उसका असर खुद समझ में आएगा, उसका जीता जागता प्रूफ आप ही बन जाएंगे। और इसी वादे के साथ कि आप इसका प्रयोग करेंगे, इसी आशा के साथ फिलहाल लेते हैं इजाजत और अपने एक्सपर्ट्स को कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का हमें समय देने के लिए, जुड़ने के लिए, गाइड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया,
2: थैंक यू।
0: और दोस्तों, मुलाकात होगी लव्य जिंदगी के अगली कड़ी में। तब तक रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को दिल खोल के कहिए कि लव यू जिंदगी।

मैं सलमा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।

0: कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित ये कविता भारतीय वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा है, जो हम सब ने अपने स्कूली दिनों में पढ़ी भी होंगी। बाल्यावस्था से ही उनके साहस के किस्से चारों ओर फैल चुके थे और 29 वर्ष की अल्प आयु में वो अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। इतिहास के पन्ने ऐसे अनगिनत देशभक्तों और क्रांतिकारियों के खून से सने हैं, जिन्होंने खुशी खुशी मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। फिर वो पुरुष हों या महिला, उनमें से ही एक थी प्रीति लता वाड्डेदार, जो महज 21 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गईं। जब अंतिम सांस ली तो उनके मुख से एक ही शब्द निकला, वंदे मातरम। आज एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के इस एपिसोड में हम जानेंगे इन्हीं वीर क्रांतिकारी प्रीति लता के देशभक्ति की कहानी।
1: निर्मल दा, हम सब ने सिस्टर निवेदिता, भिकाजी कामा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता एवं साहस की कहानी सुनी है। आखिर प्रीति लता ने देश के लिए कैसा बलिदान दिया?
2: अच्छा सवाल। प्रीति लता को बंगाल की अग्निकन्या भी कहते थे। वह किसी से डरती नहीं थी।
1: इतना साहस कैसे आया उनमें?
2: तनिक ठहरो, सब्र करो। इसके लिए हमें चलना होगा इतिहास के उस चटगांव में, जो आज बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी का सबसे व्यस्त बंदरगाह है और जिसे अब चटगांव नहीं चटग्राम के नाम से जाना जाता है।
0: चटगांव को हम मास्टर सूर्यदा यानी बंगाल के वीर क्रांतिकारी सूर्य सेन की वजह से जानते हैं। उसी चटगांव में रहती थी प्रीति लता, जिनके अंदर देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराने की धुन लगी थी। एक सुबह उनके घर घबराई सी युवती प्रतिभा पहुंचती है और उन्हें कुछ दिखाती है।
3: दीदी दीदी, देखो आज के अखबार में क्या छपा है, मास्टर दा की ढोलघाट वाली मुठभेड़ के बारे में क्या लिखा है, उन्हें पुलिस तलाश रही है। मुझे तो डर लग रहा है, आप क्या कहती हैं?
4: किस बात का डर प्रतिभा, डरना तो अंग्रेजों को चाहिए जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बना रखा है।
3: दीदी आपको डर नहीं लगता, आप स्कूल की हेडमिस्ट्रेस है, आपका सभी बहुत सम्मान करते हैं, माँ बाबा आपके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और आप क्रांतिकारियों के साथ आजादी के सपने देख रही हैं।
4: प्रतिभा, जब पूरा देश एक बड़ी जेल बन चुका हो तो चार दीवारों की गृहस्थी में सुख कैसे मिल सकता है। माँ बाबा को समझा देना, उनकी बेटी सिर्फ शादी के लिए पैदा नहीं हुई है, मेरा विवाह तो इस देश की आजादी से हो चुका है।
0: यह वो समय था जब ब्रिटिश पुलिस इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर रही थी। और तभी जून 1932 में ढालघाट गांव में क्रांतिकारियों के एक गुप्त ठिकाने पर पहली बार प्रीति लता और सूर्यदा की भेंट होती है। उनके साथ निर्मल सेन और अपूर्व सेन भी थे।
4: मास्टर दा प्रणाम, मैं आ गई हमेशा के लिए।
5: आओ प्रीति, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। कल्पना दत्त ने मुझे तुम्हारे आने की सूचना दी थी, पर क्या तुम जानती हो कि इस गुप्त ठिकाने पर कदम रखने का वास्तविक अर्थ क्या है?
4: जानती हूँ मास्टर दा, यहाँ कदम रखने का अर्थ है मौत से सीधा सौदा।
5: तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, कोलकाता विश्वविद्यालय से फिलोसफी में ग्रेजुएट हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, फिर इस कांटों भरे रास्ते पर क्यों आना चाहती हो? यहां भूखे पेट रहना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है और किसी भी क्षण अंग्रेजों की गोली का शिकार होना पड़ सकता है।
4: खोमा कोर्बिन मास्टर दा, अगर देश के पढ़े लिखे युवा केवल अपने भविष्य की चिंता करेंगे तो इस भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से कौन आजाद कराएगा? यदि पुरुष इस लड़ाई में गोलियां खा सकते हैं तो महिलाएं पीछे क्यों रहें? मुझे अपनी सेना में शामिल कर लीजिए।
5: तुम्हारी आंखों की यह चमक बता रही है कि तुम पीछे हटने वालों में से नहीं हो। आज से तुम हमारी सैन्य शाखा की सक्रिय सदस्य हो।
0: सूर्यदा के ठिकाने पर पहाड़ तली यूरोपियन क्लब पर हमले की योजना बन रही थी। वहां कल्पना, प्रीति, लता सभी पहुंचते हैं।
6: प्रीति, मास्टर दा चाहते हैं कि इस बार हमले की कमान तुम संभालो, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है।
4: हाँ कल्पना, मैंने देखा है, इस क्लब के बाहर एक बोर्ड टंगा है जिस पर लिखा है कुत्तों और भारतीयों का आना मना है। यह सिर्फ एक बोर्ड नहीं है, यह हमारे पूरे राष्ट्र के आत्मसम्मान पर रोज किए जाने वाला प्रहार है।
6: क्लब के चारों ओर कटीले तारों का घेरा है और हर वक्त ब्रिटिश सर्जेंट हथियारबंद सिपाहियों के साथ गश्त करते हैं। हमें रात के अंधेरे में पुरुष वेश धारण करके जाना होगा। क्या तुम तैयार हो?
4: बिल्कुल तैयार हो। हम धोती और शर्ट पहनकर पंजाबी नाविकों का भेष बदलेंगे। मास्टर दा, मुझे इस अभियान के लिए आपकी अनुमति और आशीर्वाद चाहिए।
5: तुम्हें पूरी अनुमति है प्रीति, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि अभियान के दौरान पकड़े जाने की स्थिति बने तो जीवित दुश्मनों के हाथ मत आना। अंग्रेज महिलाओं और पुरुषों पर ऐसी यातनाएं ढाते हैं जो मौत से भी बदतर होती हैं।
4: इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मास्टर दा, ये पोटेशियम साइनाइड हमेशा मेरे पास रहेगा। अंग्रेजों की गोली या उनकी जेल की काल कोठरी से बेहतर है कि मैं भारत माता की गोद में सो जाऊं।
0: फिर वो तारीख आई, 24 सितंबर 1932, जिस रात को क्लब पर क्रांतिकारियों को धावा बोलना था। प्रीति लता ने कमर कस रखी थी, वो अपने साथियों के साथ आखिरी तैयारी में जुटी थी। उन्हें दिशा निर्देश दे रही थी ताकि कोई चूक ना रह जाए।
4: सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो, जैसे ही मैं सीटी बजाऊं क्लब के भीतर बम फेंक देना और खिड़कियों से गोला

0: बताते हैं कि क्लब के एक मुस्लिम बावर्ची क्रांतिकारियों की सहायता कर रहे थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के बर्ताव से बहुत नाराज थे। उन्होंने ही क्रांतिकारियों को क्लब के रास्तों, बनावट आदि की पूरी जानकारी दी थी। सब बताया था कि क्लब में कितने दरवाजे और खिड़कियां हैं, कहां कहां पुलिस तैनात रहते हैं आदि। ये भी तय था कि वो रसोई की खिड़की से टॉर्च लाइट से इशारा देंगे। उनके इशारे के बाद ही तीखी सीटी की आवाज आती है और रात करीब 10 बजे एक बहुत तेज धमाका होता है। कांच टूटने और अंग्रेजों की चीख पुकार मच जाती है। उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि बाहर जाने के सभी रास्तों पर क्रांतिकारी थे।
1: Help! Help! Terrorists! Terrorists! Run for your lives!
2: इनकलाब जिंदाबाद! आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद! साथियों, कोई भी गोरा अफसर बच कर ना जाने पाए, हमला तेज करो।
0: राइफलों और पिस्तौलों की अंधाधुंध तड़तड़ाहट हो रही थी। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी के बीच लोग इधर उधर भाग रहे थे। चीख पुकार मची थी। अंग्रेजों ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया था।
3: Fire! Fire back! Shoot them down! Don't let these rebels escape!
0: तभी अचानक एक भारी गोली चलने की आवाज आती है और उसके तुरंत बाद प्रीति लता के मुंह से एक तेज करहा निकलती है।
2: आ, आ, मुझे

0: मुझे शायद गोली लग गई।
1: प्रीति दीदी, आप बहुत बुरी तरह से जख्मी हैं, बहुत खून बह रहा है। चलिए चलिए, हम आपको यहाँ से सुरक्षित निकाल लेते हैं।
0: नहीं नहीं, रुकना मत, मेरा आदेश है तुम सब यहाँ से पीछे हटो। हमारा काम पूरा हो चुका है, हमने अंग्रेजों के घमंड को चूर चूर कर दिया है। अगर तुम मुझे बचाने में समय गवाओगे तो सब पकड़े जाओगे।
2: कुछ देर के पश्चात गोलीबारी थम जाती है। केवल क्लब के अंदर लगी आग की लपटों की चटकने की आवाज आ रही थी और प्रीति लता की भारी सांसें सुनाई दे रही थी, लेकिन उस पीड़ा के बीच भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी थी। वो नारे लगा रही थी,
0: भारत माता, आज तुम्हारी ये 21 साल की बेटी तुम्हारे चरणों में अपने जीवन का अंतिम अर्घ दे रही है। मैंने जो मशाल जलाई है, उम्मीद है वह बुझेगी नहीं। घोरे सर्जेंट, मुझे

0: मातरम।
1: प्रीति लता ने कागज की पुड़िया खोली और गोली निगल ली। उसने एक गहरी सांस ली और जमीन पर गिर गई। कुछ सेकंड के भारी सन्नाटे के बाद वहां ब्रिटिश साजन पहुंचे और टॉर्च जलाकर देखा।
2: ओह माय गॉड, चेक दिस आउट, ये तो एक युवा लड़की है। इसने पुरुषों के कपड़े पहन रखे हैं। बट शी इज डेड, इसने जहर खा लिया है। लेकिन चेहरे पर खौफ की जगह ये कैसा सुकून और मुस्कान है।
1: असल में ये क्रांतिकारी अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेना चाहते थे और उसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुए। लेकिन क्लब पर हमले के बाद ब्रिटिश खेमे में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर चारों ओर अंग्रेज सिपाही पहुंच गए।
3: सर्च एवरी कॉर्नर, इस मरी हुई लड़की की जेब की तलाशी लो। मुझे इसके सारे मददगारों के नाम चाहिए। ये अकेली नहीं थी, इसके पीछे मास्टर द सूर्य सेन का हाथ है।
4: यस सर, देखिए इसकी जेब से कुछ दस्तावेज और एक हाथ से लिखा हुआ पत्र मिला है।
3: क्या लिखा है इसमें?
4: सर जी, इसमें लिखा है,
5: भारत की महिलाएं अब किसी भी मामले में अपने भाइयों से पीछे नहीं रहेंगी। यदि हम देश के लिए जान दे सकती हैं, तो हथियारों से दुश्मनों का भी खात्मा कर सकती हैं।
3: Damn it! ये औरतें तो पुरुषों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। तुरंत रेड मारो, कल्पना दत्त और सूर्य सेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ो।
1: क्लब पर हमले के बाद कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। मास्टर सूर्यदा भागने में सफल रहे। मामले की सुनवाई शुरू हो गई। कोर्ट में भारी गहमा गहमी थी।
6: ऑर्डर, ऑर्डर! चटगांव आर्मरी रेड और पहाड़ तली क्लब हमले का स्पेशल ट्रिब्यूनल केस, किंग एम्परर वर्सेस कल्पना दत्त और अन्य।
7: माय लॉर्ड, 25 सितंबर 1932 की रात जो हुआ वह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खुली बगावत थी। प्रीति लता वादेदार नाम की बागी लड़की ने खुदकुशी करके कानून से बचने का रास्ता चुना, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि इस पूरी साजिश के पीछे यहाँ खड़ी मुलजिम कल्पना दत्त और फरार मास्टरदा सूर्य सेन का हाथ है। इन बागियों को सरेआम फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
8: मुलजिम कल्पना दत्त, क्या आपको अपने बचाव में कुछ कहना है?
9: मिलोर्ड, हमें किसी बचाव की जरूरत नहीं है। प्रीति लता वदेदार मरी नहीं है, उसने देश के आत्मसम्मान के लिए शहादत दी है। आप हमें बागी कहते हैं, लेकिन हम अपनी मातृभूमि को आजाद कराने वाले सैनिक हैं। आप हमें जेल भेज सकते हैं, फांसी पर लटका सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों में जल रही आजादी की इस आग को कभी नहीं बुझा सकते।
1: अदालत में भारतीयों द्वारा इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम के धीमे लेकिन दृढ़ नारे गूंजने लगे। जज उन्हें शांत रहने को कह रहे थे।
8: साइलेंस, साइलेंस इन द कोर्ट। ये अदालत ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के जुर्म में कल्पना दत्त को आजीवन काला पानी की सजा सुनाती है।
9: मुझे ब्रिटिश हुकूमत से इसकी ही उम्मीद थी। उन्होंने सोचा था कि प्रीति लता के बलिदान और उनके साथियों को जेल भेजकर वे क्रांति को कुचल देंगे, लेकिन वे गलत थे। 21 साल की प्रीति लता वदेदार ने जो शहादत की मशाल जलाई थी, उसने पूरे देश की महिलाओं और युवाओं को उद्वेलित कर दिया है। चटगांव की उस बेटी का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। उसने सिखा दिया कि आजादी की कीमत अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं।
10: दादा,
0: जब प्रीतिलता शिक्षण से जुड़ ही चुकी थी तो वे क्रांतिकारी गतिविधियों में कैसे शामिल हुई?
10: इसकी भी एक कहानी है। असल में ग्रेजुएशन के दौरान वे श्री संघ से जुड़ी हुई थी, जो लीला नाग के नेतृत्व में चल रहे दीपाली संघ का अंग था। आगे चलकर दीपाली संघ महिला क्रांतिकारियों का एक प्रमुख संगठन बना, जहां सदस्यों को शारीरिक प्रशिक्षण से लेकर राजनीतिक आंदोलनों और अन्य तत्कालिक घटनाक्रमों की जानकारी दी जाती थी। इतना ही नहीं बल्कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर कार्य करने और आंदोलनों में भागीदारी करने के लिए प्रेरित भी किया जाता था। कलकत्ता प्रवास के दौरान प्रीतिलता कल्याणी दास के नेतृत्व में संचालित छत्री संघ से भी प्रेरित रही। उन्हीं दिनों प्रीतिलता की मुलाकात पूर्णेंदु दस्तीदार से हुई, जो चितगोंग क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य थे।
1: प्रीतिलता के क्रांतिकारी बनने की कहानी जानने के लिए हमें इतिहास में लौटना होगा, जब प्रीतिलता मिलती है क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य पूर्णेंदु दस्तीदार से।
5: पूर्णेंदु जी, आप मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए।
11: मुझे समय दो प्रीति, मैं ऐसे फैसले नहीं लेता। मुझे सूर्यदास से विचार विमर्श करना होगा।
5: ठीक है, आप कर लीजिए, मैं जवाब का इंतजार करूंगी।
1: पूर्णेंदु ने सूर्य सेन को प्रीतिलता के बारे में बताया कि वो पार्टी में शामिल होने को लेकर कितनी उत्सुक है।
12: देखो पूर्णेंदु, मैं महिलाओं के क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन्हें कुछ विशेष कार्यों की जिम्मेदारी ही सौंपी जा सकती है, जैसे संदेश वाहक, क्रांतिकारियों को पनाह देना, किताबों को छिपाकर रखना आदि। जहां तक प्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने, हथियार चलाने की बात है, जिससे काफी खून खराबा होने की आशंका रहती है, वैसी गतिविधियों में महिलाओं को हम खतरे में नहीं डाल सकते हैं।
11: आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्रीतिलता के इरादे भी काफी मजबूत है। वह मानसिक रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। आप उसे एक मौका देकर देखें, क्या पता कि हमें एक वीर महिला योद्धा मिल जाए।
12: अब तुम इतना कह रहे हो तो ले लो प्रीतिलता को पार्टी में, लेकिन यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए।
1: इसके बाद ही प्रीतिलता को चितगोंग क्रांतिकारी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में चितगोंग आर्मरी रेड होता है। उसके बाद जलालाबाद की जंग हुई, जिसमें 14 से 19 वर्ष के युवा क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सिपाहियों को कड़ी टक्कर दी। उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस संघर्ष में 11 क्रांतिकारी शहीद हो गए। इसके पश्चात कर्णफुली नदी के समीप यूरोपियन क्वार्टर्स पर हमला किया गया। कालरपोल की जंग हुई, काफी क्रांतिकारी शहीद हो गए। उधर प्रीतिलता के सब्र का बांध टूटा जा रहा था।
5: पूर्णेंदु दा, मुझे सशस्त्र संघर्ष के लिए कब भेजा जाएगा?
11: मैं सूर्यदा से बात करता हूं।
12: पूर्णेंदु, उसे धीरज रखने को कहो। पहले उसे अलीपुर सेंट्रल जेल में बंद रामकृष्ण विश्वास से जाकर मिलने को बोलो।
11: प्रीति, सूर्यदा ने तुम्हें रामकृष्ण से जेल जाकर मिलने को कहा है। उन्हें फांसी की सजा हुई है।
5: क्या क्या किया था उन्होंने?
11: उन पर चांदपुर रेल पुलिस इंस्पेक्टर तारिणी मुखर्जी की हत्या का आरोप है।
5: ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं उनसे जाकर मिलूंगी।
1: प्रीतिलता रामकृष्ण से मिलने जेल गई। वो उनकी कजन के रूप में उनसे मिलने गई, ताकि किसी को कोई शक ना हो। इस तरह प्रीतिलता करीब 40 बार से ज्यादा रामकृष्ण से मिली। असल में सूर्यदा ने उन्हें एक खास मकसद से वहां भेजा था। वो जानते थे कि रामकृष्ण से मिलकर प्रीतिलता के अंदर क्रांति का भाव और गहरा होगा, उनमें स्थिरता आएगी।
10: जानती हो बन्नो, सूर्यदा का ये प्रयोग सफल भी रहा।
0: कैसे दादा?
10: प्रीतिलता रामकृष्ण से मिलने के बाद रोजाना डायरी लिखा करती थी। उसमें वे अपनी भावनाएं और तमाम विचार लिखती। इससे उनके दृष्टिकोण में स्पष्टता आती गई।
1: हालांकि रामकृष्ण की फांसी का प्रीतिलता के मन पर गहरा आघात लगा। उन्होंने तय कर लिया कि वो अब अपना समय जरा भी जाया नहीं करेंगी। खुदीराम, कन्हैयालाल, बाघा जतिन, रानी लक्ष्मीबाई की तरह वो भी देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देंगी। इसीलिए वो सूर्यदास से मिलना चाहती थी। उन्होंने पार्टी में अपना संदेश भिजवाया।
12: प्रीतिलता, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपने जा रहा हूँ। तुम्हें चटगांव में अंग्रेजों पर हमला करना है।
5: मैं कब से इंतजार कर रही हूँ दादा।
1: योजना के अनुसार अगले दिन ही यानी 13 जून को प्रीतिलता को निकलना था, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन कैमरून के साथ अचानक मुठभेड़ हो गई, जिसमें निर्मल सेन की गोली से कैप्टन मारा गया, जबकि एक गोरखा सिपाही की गोली से निर्मल शहीद हो गए। गोलीबारी में अपूर्व की भी मौत हो गई। प्रीतिलता और सूर्य सेन किसी तरह भागने में सफल रहे, लेकिन इस घटना के बाद प्रीतिलता को वापस ढाल घाट लौटना पड़ा। उधर पुलिस ने प्रीतिलता के घर की तलाशी ली, जहां से उन्हें एक पत्र और कई फोटो मिली। उसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं था। फिर भी प्रीति को घर में नजरबंद कर दिया गया।
13: प्रीतिलता घर में कैद होकर रहेगी सूर्यदा, उन्हें बाहर निकालना होगा।
12: उसे संदेश भिजवाओ कि वह अब घर छोड़ने की तैयारी करे। उसे अब से अंडरग्राउंड रहकर काम करना है।
13: ठीक है, मैं संदेश भिजवाता हूँ।
1: प्रीतिलता को सूर्यदा का संदेश मिलता है और 5 जुलाई 1932 को वो अपने घर से भाग जाती हैं। ब्रिटिश प्रशासन उनके ऊपर 500 रुपए का इनाम घोषित कर देता है, लेकिन प्रीतिलता को फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी तैयारियों को और धार देने में जुट जाती हैं। इस समय तक वो रिवॉल्वर, पिस्टल एवं बम चलाना सब सीख लेती हैं। आखिरकार उनके सपने के पूरा होने का दिन तय हो जाता है, 24 सितंबर 1932। सूर्यदा उन्हें पहाड़तली यूरोपियन क्लब पर हमले की जिम्मेदारी सौंपते हैं। उसी हमले में प्रीतिलता को गोली लगती है और वो शहीद हो जाती हैं। लेकिन उनका वही सर्वोच्च बलिदान आने वाली सदियों तक हर भारतीय के दिल में देशभक्ति के अंगारे सुलगाता रहेगा। तो अब हमें दीजिए इजाजत। एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा की अगली कड़ी में मिलेंगे एक और वीर सेनानी से। वंदे मातरम।
14: अभी बजे हैं शाम के 7। अगले इस 1 मिनट में मन को रखिए प्रभु के साथ।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। क्या कहे, गांव और अंचल का जब नाम सुनते हमें बहुत खुशी मिलता है, अपना पन आता है, क्योंकि अपना गांव स्वर्ग से बड़े होते हैं और गांव को स्वर्ग बनाने के लिए हमारा पर्यावरण कितना आवश्यकता हम भलीभांति जानते हैं। आप और हम सब मिलकर पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं और हमारा एपिसोड में हम इस पर्यावरण को लेकर ज्यादा बातचीत होते रहता है। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हर एपिसोड की तरफ आज का एपिसोड में हम क्या कहेंगे, वायु का प्रदूषण का बारे में, उसको कैसे सुरक्षित रखेंगे, उस चीज हम रखें। लेकिन आज हम खजाना से लाए हैं जल का ऊपर में। जल हमारा जीवन कहते हैं, जल ही जीवन कहते हैं और जल है तो कल है, और जल जितना सुरक्षित रहेंगे हम भी उतना सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि पर्यावरण का अर्थ ही हमारा चारों ओर का वातावरण या परिवेश।
1: बिल्कुल सर,
0: है ना सर। तो हमारे इस कार्यक्रम को सजाने के लिए श्रीमान गोपाल राम जी पुरोहित उपस्थित है, तो उनको स्वागत करते हैं। और पर्यावरणविद है वो, तो अनुभव ही है, जब रिटायरमेंट होने के बाद उनका दिल चाहा जाए हम पर्यावरण का बारे में कुछ अवेयरनेस हम रहेंगे और हमको देखकर दूसरे हमें फॉलो करेंगे। हम पहले खुद को एनवायरमेंट का ऊपर सतर्क सजग जागरूकता लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे से हम बात कर रहे हैं, भाई जिसको अच्छा लगा तो ग्रहण करे, जिसको अच्छा नहीं लगा तो अपना साइड में,
2: सभी ग्रहण करे।
0: वेरी गुड,
2: तो बिल्कुल सभी ग्रहण
0: सब ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमारा पॉजिटिव वाइब्रेशन रहे। तो सर जी आपको स्वागत करते। आज हमारा विषय है जल प्रदूषण, कैसे होता है, क्यों होता है और किससे होता है, और इससे निजात पाने के लिए क्या क्या उपाय हमें करना चाहिए। सर आपको स्वागत है रेडियो मधुबन परिवार की ओर से।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार। नमस्कार।
1: पर्यावरण मानव जीवन के लिए अति आवश्यक पहलू।
0: अति आवश्यक, क्या बात।
1: जिसमें निरंतर रेडियो मधुबन के माध्यम से, जिसकी प्रेरणा ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रेडियो मधुबन के हेड यशवंत भाई, कृष्णा दीदी, आरुषि दीदी और हमारे बी के पवित्र भाई द्वारा इसकी जब प्रेरणा मुझे हुई तो हमने इस पर काम करने का मन बना लिया। और बाह्य वातावरण का जो प्रदूषण हो रहा है उसका सामान्य परिचय देते हुए हम सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी देवे, ये हमारा लक्ष्य रहा। पांचों तत्वों में किस प्रकार से प्रदूषण हो रहा है, बाहरी और उसके बाद में फिर अंतः शुद्धि का जो प्रयास सभी आध्यात्मिक संस्थाओं के द्वारा होता है, राजयोग के रूप में जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसको बहुत फोकस किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ये चीज जा रही है तो हम इस प्रदूषण के इनर जो पोर्शन है मैंने उस पर ही ज्यादा सोचा है कि बाहरी के लिए तो बहुत काम बहुत काम बहुत काम हो गया है।
0: बराबर।
1: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत काम हुआ है, नेशनल लेवल पर भी बहुत काम हुआ है, स्टेट लेवल पर भी बहुत काम हुआ है, सामान्य चर्चा हम करते रहेंगे। अब अति आवश्यकता ये है कि ये सब लोग काम करें, सरकार काम करें, तो हम क्यों नहीं करें। हम में भी मैं कहूंगा, आप ये कहेंगे मैं क्यों नहीं करूं। जब से इंडिविजुअल आप स्वयं जब इस काम को करना शुरू करेंगे तब जा करके ये पर्यावरण शुद्धि जो है का वातावरण बनेगा। तो हम हमारे जो लक्ष्य प्राप्त करने हैं विकास के, वो सभी निरोगी रह करके प्राप्त कर पाएंगे, जहाँ पर ईश्वरीय अनुकंपा प्रकृति के माध्यम से बरसेगी। हम सब पर जो इसके लिए काम करेंगे दत्तचित्त होकर के हमको काम करना पड़ेगा। तो हमने इसकी एडवोकेसी का पूरा कार्यक्रम तैयार किया है, इसके तहत हम प्रकृति की गोद में बैठकर ही ये काम कर रहे हैं। हर जगह जगह पर हम लोग बीके पवित्रा भाई हमको जगह सुझाते हैं, कभी हम सुझाते हैं।
0: तो आज का सुझाव कहा आपका तरफ से?
1: आज का सुझाव भाई साहब
0: जिस जगह में हम आज कर रहे हैं,
1: भाई साहब एक दिन भी मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि दिन का कम से कम एक थोड़ा समय मैं इस काम के लिए सोचता पूरे दिन हूँ, लेकिन इस काम के लिए मैं देख रहे किसी को जागरूक कर पाऊँ।
0: अरे इस जगह का क्या
1: और बात कर, रोज नई जगह हम देख रहे हैं। आज ये हमारे केवरले गांव का रामदेव मंदिर परिसर है, बहुत ही सुंदर ढंग से सुसज्जित।
0: और आपने क्या बताया, इसको एक व्यक्ति इंडिविजुअल वन मैन?
1: हाँ सर, इसका जीर्णोद्धार वन मैन ने किया, एक व्यक्ति ने किया है सर,
0: मानना पड़ेगा सर। कितना भावना है
1: सर, लोगों में भावना है,
2: भावना और उसी भावना के तहत हम
0: भक्ति
2: ये
0: भावना में जो पूरा उत्सव
2: तो सर इसी भक्ति भावना को लेकर के अंत शुद्धि होगी तो ये पर्यावरण के लिए हम सब मतलब अंत शुद्धि का मतलब जब एक व्यक्ति विशेष आत्म ज्ञान से प्रेरित होकर के काम करेगा उसकी चर्चा इसी एपिसोड में बाद में करेंगे तो जनहित में जब वो काम करेगा
0: जी सर
2: पवित्रा भाई आप स्वयं करेंगे अंजा बहन बैठी है ये स्वयं करेगी जब आप और हम सब मिलकर के स्वयं जब इस पर्यावरण की शुद्धि का प्रयास करेंगे तो पर्यावरण स्वतः ही शुद्ध हो जाएगा।
0: सर आज के समय में पर्यावरण का शुद्धि पर्यावरण को बचा पर्यावरण संरक्षण ये सब शब्द आ रहा है
2: जी सर
0: अब थोड़ा हमारा श्रोता मित्र भी थोड़ा सोचने के लिए मजबूर कर देते आप
2: सर बात यही है कि इसमें मुझे आप लोग खींच के ले जाते आध्यात्म की दुनिया में जो जीवन का वास्तविक पहलू है मैं सर जब कहीं बैठता हूँ तब लोग मुझे चूंकि सेवानिवृत्त हो गया लोग ये कहते हैं कि आप अपना समय कैसे गुजारते हैं समय आप तो मुश्किल से निकाल पा रहे होंगे अरे भैया समय को मैनेज करते समय मिल ही नहीं रहा सामाजिक सेवा करते हैं और भी काम करते हैं उसके साथ संयोजन बिठाना पड़ता है पवित्रा भाई मुझे मजबूर कर देते हैं कई बार कभी कभार तो जब नहीं दे पाते हैं तो ऑनलाइन ही कर देते हैं तो पर जो आमने सामने बैठ करके बातचीत करने का जो आनंद है वो वास्तव में उसमें तो नहीं मिलता सर
0: कुछ भी हो जाए किंतु प्रकृति पूरा खुश होता है
2: प्रकृति बरस
0: हमारा बारे में
2: बिल्कुल
0: लोग इतना महिमा कर रहे हैं तो ये बोले सूक्ष्म में जो हम जहाँ पर बैठ छत का नीचे
2: बिल्कुल
0: बैठकर
2: जी जी
0: पांच तत्व का परिवेश में
2: उस परिवेश
0: में सभी चीजें जो पर्यावरण के लिए संश्लिष्ट है जैसे जीव जंतु पंछी
2: जी हाँ जी
0: और ये जो पांच तत्व हैं
2: हाँ
0: सूरज का प्रकाश भी
2: बिल्कुल सभी सभी
0: आ रहा है
2: पृथ्वी जल वायु और आकाश
0: उनका आवाज
2: सभी
0: का आ रहा है
2: जी हाँ जी हाँ
0: इसके बाद जब जहाँ हम बैठे मिट्टी के नीचे बैठ कर हम बात करते
2: नीचे बैठ कर बात करते हमेशा नीचे बैठ कर बात करते तो सर ये प्रकृति बहुत कुछ देती है सर हम प्रकृति के ही तो अंश है
0: अब जाएंगे तो मिट्टी में वैसी मिलेंगे
2: मिट्टी से पैदा हुए और मिट्टी में ही
0: मिलना है
2: तो सर उसकी शुद्धि का प्रयास उस पर्यावरण को ठीक रखने का प्रयास हम सबको करना होगा नहीं तो हम भयावह बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे तो हम इस प्रकृति की शुद्धि की बात कर रहे हैं तो वो जो पर्यावरण जब शुद्ध विशुद्ध हो जाएगा तो हमारा जो विकास है वो भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से होगा हमने पृथ्वी पर माइनिंग वगैरह इसकी जो होती है उस पर बात की उसके बाद में वायु प्रदूषण की बात की आज हमारा फोकस पवित्रा भाई
0: जी जी
2: जल की पवित्रता की तरफ होगा कि जल किस तरह से प्रदूषित होता है और क्या क्या कारण है और वो क्या दुष्प्रभाव डालता है
0: सर जल को तो अमृत भी कहते हैं लेकिन आज तो 20 जैसे हो गया बोतल में भी आ रहा है कितना भी प्यूरिफिकेशन करते हैं सभी फलवंत करते हैं
2: सर
0: कोला पानी नहीं पी पा रहे अभी पहले तो हम तो कई बार भी पानी पी लेते थे हमारा 50 साल पहले का बात मैं कह रहा हूँ
2: सर अपन कई बार जैसे
0: आपने पवित्रता जल में पवित्रता शुद्ध अमृत जल
2: अमृतम जलम
0: ओ क्या बात
2: तो सर जब जल अमृत है और अगर इसमें अगर कुछ मिलावट हो गई तो समझो हमारी मानवता खतरे में पूरी मानव जाति ही खतरे में पड़ जाएगी कहते हैं सर अगला जो विश्व युद्ध है ऐसा कहते थे कुछ समय पहले तक वो जल के लिए होगा और सर ये बात भी सत्य हो रही है कि अभी जल मार्गों के लिए विश्व युद्ध की बात तो चल ही रही है
0: उसी के लिए तो सब कुछ पानी रोक जाएगा तो क्या हालत होगा सब
2: वाहन कहाँ से होगा तो हम तो जब जल ही पवित्र नहीं बचेगा तो हम कैसे बच पाए
0: जल तो हर चीज में आवश्यकता है सर नहाने कपड़ा धोने में खाना पीना सब में जल
2: और

0: में भी सर एक बढ़िया चीज आपके माध्यम से सामने आ रही है कि बाकी चीजों की शुद्धि, जैसे पृथ्वी तत्व है प्योर तो वो भी होना चाहिए, लेकिन वहाँ थोड़ी सी अशुद्धि अगर रह भी जाती है तो चल सकता है। जल की अशुद्धि वो तो निश्चित रूप से हमको इस तरह से कर देगी, झकझोर देगी कि आप अपने आप को संभाल भी नहीं पाएंगे। बीमारियों की चर्चा अपन बाद में करेंगे इस मामले में। और सर मेरा बीमारियों की चर्चा करने के पीछे वजह ये है कि हमको इसके प्रति सचेत होना है। डराना नहीं है,
1: डरना नहीं, डराना
0: कि भाई इससे ऐसी बीमारी हो जाएगी तो ऐसे करे वैसे करे, नहीं, वो जो हमारा कदई उद्देश्य नहीं है। लेकिन उसके लिए एक जागरूक होना है कि किस तरह से ये नुकसान कर सकता है, तो हम उसकी शुद्धि का प्रयास क्यों नहीं करें। मूल तत्व, मूल बात हमारी वो है। तो सर ये जल प्रदूषित कैसे होता है? सर जब ये विषय जब मैं लेता हूँ तो मेरे लिए इस तो जो जल है उसका प्रदूषण बड़े भारी तौर पे भयंकर तरीके से हो रहा है। तो अब जैसे नदियों में जो पानी आ रहा है,
1: नदियों में जो जल आ रहा है
0: वो मतलब सीवरेज का पानी नदियों में छोड़ दिया।
1: क्या बात, देख हाँ सभी गांव में, इसे तो गंगा में भी
0: सब में डाल दिया।
1: कितना हालत,
0: तो सीवरेज जब उसमें छोड़ दिया तो निश्चित तौर पे वो सारा जल प्रदूषित हो जाएगा, वो सारे एरिया को प्रदूषित कर, सारे एरिया को प्रदूषित कर देंगे।
1: जी जी,
0: तो बताइए कि हम अपने आप को बचा कैसे पाएंगे?
1: बचाने के लिए क्या तरीका होना चाहिए? सबको पता है
0: उसको
1: कितना हो रहा है,
0: अपन दूसरे भाग में बात
1: ऐसे होता है।
0: हाँ, तो ये अब आप ये बताओ कितना खतरनाक,
1: कारण कैसे होता है, नहीं किस तरह पानी प्रदूषित होता है,
0: दूषित सामान्य कारण ही है
1: अवेयरनेस का कमी,
0: कोई ऐसा हाँ अवेयरनेस की।
1: चलो भाई इतने में हम थोड़ा डाल दें क्या हो जाएगा, ऐसे सभी लोग ऐसे ऐसे करते हैं।
0: सर जो औद्योगिक अपशिष्ट है वो सारा का सारा, सर उसका सिस्टम है प्योरिफिकेशन का, हम बात करेंगे उस पर, लेकिन वो सारा का सारा नदी की तरफ, गांव का नारा नदी की तरफ, तो सारे नाले जब नदी में जाएंगे तो फिर वो पानी वहाँ का शुद्ध कैसे होगा? तो फिर शुद्ध जल आप किसी को कैसे उपलब्ध करवा पाएंगे?
1: पूजा पाठ में भी तो जल पहला आवश्यकता होता है,
0: तो सर वहाँ भी शुद्ध जल चाहिए। आप तो शुद्ध जल काम में ले रहे हो।
1: हाँ, फिर भी मंत्र द्वारा लोग शुद्धिकरण भी कर देते हैं मन को समझाने के लिए।
0: वो मन को समझाने के लिए मंत्र से शुद्धि कर दो, लेकिन उसका जो केमिकल जो उसमें जो मिला हुआ है वो तो बाहर नहीं जाएगा, तो वो तो हम नहीं मिलने देंगे तभी शुद्ध होगा। ये आपने बहुत बढ़िया बात की कि ये तो एक तरह से वो हो जाएगा कि मंत्र उसके पावर पानी,
1: पानी के लिए करके इतना 20 साल पानी को हम कहां से मंत्र
0: प्योर पानी को पावरफुल बना सकते हैं चार्ज करके।
1: जी जी,
0: लेकिन जो अशुद्ध पानी है,
1: हाँ,
0: जो पानी जिसमें मिलावट है, तो उसके कण तो थोड़ी दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो आपको कम से कम जागरूक ही होना पड़ेगा, तब जाकर के काम। जैसे अब इसका सर जल प्रदूषण का एक बहुत बढ़िया बात बताऊं मैं, कैसे अपन परिभाषित कर सकते हैं, जो सर टेक्निकल टर्म्स में है वो चीज मैं एक बार रखूंगा ही सामने।
1: जी जी, क्योंकि हमारा श्रोता मित्र टेक्निकल भी जानते, नॉन टेक्निकल भी जानते,
0: नॉन टेक्निकल बराबर समझाएंगे, क्योंकि इसमें सर ऐसे ऐसे वर्ड्स उपयोग होते हैं इसके, जो
1: क्योंकि हमारा श्रोता टेक्निकल का भी है नॉन टेक्निकल सभी लोग सुनते हैं,
0: तो सर उस चीज को बताना बहुत जरूरी है। दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषण एवं अन्य प्रदूषण, मतलब कार्बन से जनित है।
1: जी जी,
0: और अन्य में काफी सारे असर ये मिलावट वाले आ जाते हैं, जिनका सामान्यतः सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होता, जैसे अपन ने पहले देखा है सर, उनका डीकम्पोजिशन जो सूक्ष्म जीव नहीं कर पाते, जो अपघटन जब नहीं कर पाएंगे और उसके बाद में वो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करेंगे, वो कैसे करेंगे? हम भोजन बनाते हैं ना, उसमें वो अशुद्ध जल, वही जल जो इसको आप शुद्ध कहते हैं, वो अशुद्ध जल उसमें आ जाएगा। तो वो फिर कहाँ पहुँचेगा? व्यक्ति के शरीर में पहुँचेगा,
1: राइट,
0: वो केमिकल्स उसकी बॉडी में पहुँच जाएंगे, पशु पक्षी जो भी उसको खा रहा है उसके शरीर में पहुँच जाएंगे।
1: तो नुकसानदायक
0: उत्तरोत्तर सर इसके पोषण स्तर में जब सांद्रता बढ़ जाएगी, जिसको जैव आवर्धन कहते हैं, लगने में बहुत अच्छा है, इसके भी सुपोषण का स्तर होता है। किनका? इस प्रदूषित वस्तुओं का सुपोषण का स्तर होता है।
1: जी जी,
0: जो नहीं होना चाहिए वो अगर सुपोषित हो जाए तो फिर वो नुकसान ही करता है। तो सर ये सर जल प्रदूषण की श्रेणी में है।
1: जी जी,
0: ये कैसे होगा सर? जब ये जल है ना, ये पादपों में चला जाएगा, वृक्षों में चला जाएगा, ठीक है, फिर वो वहां से जंतुओं में चला जाएगा जो इसका उपयोग करेंगे, फिर छोटी मछली में चला जाएगा,
1: क्या बात,
0: वो जो भी उपभोग करेगा बड़ी मछली में चला जाएगा, फिर पक्षियों में चला जाएगा।
1: जी जी।
0: तो सर इस तरह से इसकी पूरी सर चेन बन जाती है और वह आपको नुकसान करती है। अब सर जो जैव आवर्धन है ये सर जो बताया, जो शब्द तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये जो तकलीफ देने वाली चीजों का आवर्धन होगा तो वो निश्चित रूप से नुकसान करेगा। अब वो क्या क्या होता है, जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होता, डिकम्पोजिशन नहीं होता। दूसरा, ये सर जल में, सर ये जो जलावर्धक होते हैं ना, जल में तो सर अघुलनशील होते हैं और वसा में घुलनशील होते हैं सर, और ये जैविक रूप से जल के अंदर सक्रिय हो जाते हैं। जब सक्रिय होंगे तो इनकी जो मात्रा वो बढ़ेगी, तो फिर वो विभिन्न प्रकार से पूरे पर्यावरण को
1: नुकसान,
0: उसमें सभी को नुकसान करेंगे,
1: हमारा आसपास जो हो रहा है सभी का,
0: जो कुछ है, जिसमें सर अपन उदाहरण अपन दे सकते हैं कि जैविक रूप से कैसे सक्रिय होगा। जैसे इसका उदाहरण है DDT, पानी में चला गया, अब वो कहाँ जाएगा,
1: जहाँ तक पानी का स्रोत है जाएगा,
0: बस फिर हो गया काम। फिर पारा, जो विभिन्न उसमें दवाइयों के अंदर मिला हुआ मरकरी, बहुत नुकसान करता है सर। फिर एल्यूमिनियम है, आयरन के ऑक्साइड से है, कीटनाशक है, एंडोसल्फान है, एल्ड्रीन है, सारे के सारे जितनी भी जो दवाइयाँ जो उसमें से होकर के निकलेगी, किसमें से पानी में होकर के निकलेगी, तो फिर सोचिए कि वो कहाँ नहीं पहुँचे, किस व्यक्ति में नहीं पहुँचे। क्या आप शुद्धि कर पाएंगे? बिल्कुल शुद्धि के तरीके तो है, लेकिन उसको कम से कम बाह्य रूप से शुद्ध करना तो आवश्यक होगा सर। इस संबंध में मैं कई बार कहता हूँ कि खूब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हुए हैं। फिर एक रोटरडम समझौता हुआ था 1998 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, COP की जो मीटिंग्स होती हैं, जैसे अभी बेलेम में हुई है, जिसमें अमेरिका ने भाग लिया
1: 2025 में,
0: अभी सर अभी जस्ट हुई, अभी दो चार दिन पहले, पर अमेरिका उसमें शरीक नहीं हुआ। तो दूसरे दोस्तों ने मिल करके ये तय किया कि भाई उसके बिना भी काम तो हो सकता है। तो सर रोटरडम समझौता हुआ था 1998 में। अब सर ये सारी चीजें होती, लेकिन ऑथेंटिक रूप से वो लागू कब से हुआ है, 1998 से, लेकिन प्रभावी हुआ है 2004 से, ऐसे कई सारे आंकड़े मेरे पास।
1: आप तो रिसर्च करते रहते हैं, कहीं ना
0: सर रोजाना है, आपको बताना है, सभी को जागरूक करना है कि कम से कम ये काम तो अच्छा हो। तो सर 2004 से ये प्रभावी हुआ है। उसमें सर क्या था कि जितने भी रसायनों का उपयोग होता है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो किसी टीम की स्वीकृति के बाद ही, किसी देश की स्वीकृति के, उन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई है सर विभिन्न प्रकार के रसायनों की, कि उनका उपयोग आप सरकारों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई कमेटी की परमिशन के बाद ही उसकी मात्रा तय करेंगे, वो किसके लिए आप ले जा रहे हैं ये आपको बताना होगा। जैसे कोई घातक पदार्थ है, अब जैसे आप कभी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए और जब पेट्रोल लेने जाते हैं तो पेट्रोल पंप का मालिक आपको पेट्रोल देगा क्या? वो नहीं देता है। वो क्यों नहीं देता? कि कहीं आप उसका दुरुपयोग नहीं कर जाए। गाड़ी चलाने के लिए, दुरुपयोग के लिए थोड़ी है, तो
1: गाड़ी लेकर जाएंगे तो देगा, पर कैन में बोलेंगे भाई क्यों,
0: तो फिर उसमें
1: बोतल में नहीं दे रहा।
0: बिल्कुल, तो वो इसके मानक बने हुए हैं। तो सर इस तरह से इसको कंट्रोल करने का सर बहुत प्रयास किया है, पर कितना कंट्रोल होता है
1: जानेंगे, जानेंगे अगला लिंक में कितना कंट्रोल हो रहा है। तो सुनते रहिए कार्यक्रम, खासकर पर्यावरण मेरा गांव मेरा अंचल कार्यक्रम में पर्यावरण बीच से हम अच्छा से अच्छे बात सुन पा रहे हैं, और हमारा श्रोता मित्र और हमें बहुत फायदा मिल रहा है, जिसका चलता हम एपिसोड को एक के बाद एक एपिसोड चलाते जा रहे हैं। और लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद अगला कड़ी में सुनेंगे श्रीमान जी से। सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन, खासकर पर्यावरण स्पेशल।

0: कुछ बना के रखा होगा।
1: बिल्कुल, और आज आपकी आवाज, आपने, आप बिल्कुल देश से भी बाहर रहते हैं लेकिन वहां भी अपनापन महसूस कराने के लिए गीत संगीत एक बहुत सुंदर माध्यम है। और जानेंगे आपसे इंडियन कल्चर के बारे में, कैसे बाहर भी क्या प्रभाव है आज, प्रैक्टिकली आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि कोई और, क्योंकि हम देशभक्ति के रंग में रंगे हुए हैं, देशभक्ति के गीतों में आज बिल्कुल खोना ही चाहते हैं, क्योंकि 15 अगस्त का सेलिब्रेशन है, इससे अच्छा दिन कौन सा होगा अपने देश को सेलिब्रेट करने के लिए। तो क्या कोई और गीत है आपके खजाने में जो आप हमें हमारी श्रोताओं के लिए सुनाए?
0: तो वैसे बहुत सारे होते हैं गाने के लिए, अभी लोग भी मुझे कहते हैं कभी कभार कोई ऐसे ऐसे गाना ऑफर करते हैं, मैं जरूर कोशिश करता हूँ, अगर वो गाना मेरे से पॉसिबल होता है तो मैं गाता हूँ, अगर नहीं पॉसिबल है, देखो कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, चप्पू चलाए बिना नौका पार नहीं होती, तो कोशिश हम जरूर करते हैं। जब कोशिश करने के बावजूद भी अगर हमको वो गाना नहीं जमता तो उस गाने को बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन में बहुत सारे गाने हैं, तो अभी आपने कहा कि और एक खजाने में से कोई एक गाना, तो मैं जरूर एक गाना अभी सुनाना चाहता हूँ, वो है ऐ मेरे प्यारे वतन।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर।
0: ये भी गाना जब मैं गाता था तो लोगों को लगता था कि ये आवाज, भले तुम अभी मेल में गए हो लेकिन पुराने जमाने का जिन्होंने वो गाना सिंगर गाए, मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा, उनसे बहुत मिलता है क्योंकि मेरी मेल वॉइस का ज्यादा डिमांड नहीं है, तो बहुत आजकल के टाइम पर ये उसी जमाने का लगता है अगर वो सुनते हैं तो मैं जरूर ये गाना सुनाने के लिए कोशिश करूंगा।
1: तो चलिए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, प्यारा सा नगमा, अपने भारत देश को डेडिकेट करते हैं, हर भारतीय को डेडिकेट करते हैं, अरविंद जी की आवाज में रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।
0: है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन,

फिर भी है यही तमन्ना तेरे जर्रों की कसम हम जहां

मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान।

0: सच में भारत पर दिल कुर्बान है, जान कुर्बान है, और हमारे देश पर गर्व महसूस करते हैं हम अपने. जब भी देश के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं ना दोस्तों, तो गर्व थोड़ा और बढ़ जाता है. तो इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने देश के बारे में कुछ और जरूर जाने. अरविंद जी, आपने ये गीत गाया, क्या महसूस कर रहे थे आप जब गा रहे थे तब?
1: मैं अभी नेक्स्ट लाइन मेरा यही था आपसे शेयर करने के लिए कि इसमें लास्ट जो गाने के अंतर था, हम जहाँ पैदा हुए हैं उस जहाँ निकले ये दम. तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा एक ही संकल्प है, एक इच्छा है, मेरे आंखें खुले तो भी भारत धरती माँ पर, आंखें बंद हो तो भी भारत का ही ये धरती हो. मैं भले आर्मेनिया में रहता हूँ बहन जी, बट वहाँ पर मैं जब भी सवेरे उठता हूँ तो ये मानता हूँ कि ये मेरी ये भूमि है, कर्म भूमि है ना, तो कर्म भूमि को भी अपने अपना ही मानना पड़ता है, उसको सम्मान करना पड़ता है,
0: बहुत जरूरी.
1: तो हमारी परंपरा में है कि सुबह उठने के पहले प्रणाम करो, नमस्कार करो, फिर धरती माता को नमस्कार करने के बाद हम मेरा पहला कदम पड़ता है धरती पर. तो वहां पर भी मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है, जिससे क्या होता है ना कि अपना एक संस्कार और संस्कृति उसको हम कभी भूलेंगे नहीं.
0: बिल्कुल.
1: और जैसा अभी मैंने पहले भी कहा था कि मेरे आंखें खुले होना, बंद होना, मतलब मेरा एक इच्छा है कि मेरा अभी जन्म तो हुआ ही है धरती अपने भारत देश पर, लेकिन अंतिम श्वास भी मेरा यही पर हो, और फिर उसके बाद का जन्म भी मुझे फिर से यहीं पर चाहिए, भारत देश पे.
0: भारत देश में.
1: तो इसके
0: आपको क्या अच्छा लगता है भारत के बारे में, अगर मैं पूछूं कि देश हमारा इतना बड़ा, इतना हिस्ट्री, इतना आर्ट, इतना कल्चर, और क्या नहीं है यहाँ पर, खूबसूरती भी इतनी है, प्रकृति भी इतनी है, क्या आपको अच्छा लगता है भारत के बारे में, क्या आपको याद आता है भारत के बारे में जब आप भारत में नहीं होते?
1: बिल्कुल. अभी आपने जैसा अच्छा प्रकृति का जब नाम आपने लिए है सिस्टर, तो मैं एक ये कहना चाहता हूँ कि प्रकृति हमारे भारत देश का काफी सुंदर है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट के चक्कर में हम फॉरेस्ट को कम करना ये एक होने जा रहा है, फिर एक तरफा कहते हैं कि वृक्षारोपण भी करो, ठीक है. तो हमको सबसे पहले नेचर लवर बनना बहुत ही जरूरी है. नेचर लवर मतलब हम जंगलों को काट करके शहर बना रहे, तो आज हम देख रहे हैं जंगल के जानवर भी हमारे आर्टिफिशियल बने हुए शहरों में वो घुस रहे हैं, ठीक है. तो हमें जंगलों को जब हम काट भी रहे हैं तो दूसरी तरफ हमको उसका वृक्षारोपण भी तो करना है, क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग भी मिलते जा रहे हैं, नेचुरल कैलामिटीज हम देख रहे हैं.
0: बिल्कुल.
1: जिसके कारण अभी एयर पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है. अभी एयर पोल्यूशन के कनेक्टेड में दूसरा आता है वाटर पोल्यूशन, ठीक है. तो वाटर पोल्यूशन भी कैसे, अभी हवा में तो इतने टॉक्सिन और ये सब गंदे जहर वाले केमिकलाइज पूरे धूल, वो जो स्नो वगैरह क्या कंपनीज के जो होते हैं मिक्स होने जा रहे हैं, तो वैसे पानी के अंदर भी कितने सारे गंदगी हम लोग करने जा रहे हैं.
0: बिल्कुल. पानी तो अभी में हम कितना कुछ डाल भी देते हैं, नदियों में बहा भी देते
1: हैं. बिल्कुल. तो उसके ऊपर भी कैसे अभी स्वच्छ भारत अभियान अभियान जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें जो निकाला, तो उसको लेकर के अभी लोगों के बीच काफी सारा अवेयरनेस आया है. जैसे अभी मैं मुंबई से बिलोंग करते, तो मैं मुंबई के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वहां पर काफी सारे लोग एक ग्रुप बनाया है.
0: ओके.
1: वो ग्रुप कैसे एक मिशन लेके चलते है, कैंप करते है अलग अलग जगहों पर. एक तो स्वास्थ्य के रिलेटेड हो गया. स्वास्थ्य में भी मैंने देखा कि मैं खुद मुंबई में जब रहा था तो तभी मैं एक नेचर के उपचार एक्यूप्रेशर कैंप हम लोग करते थे, फ्री ऑफ कैंप.
0: क्या बात है.
1: एक्यूप्रेशर कैंप के साथ साथ हम लोग नेचुरली अपने स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करें, खान पान के ऊपर ध्यान. तो ऐसे वो कैंप करते करते इन लोगों के बारे में भी मुझे पता चला कि ये लोग कैसे अलग अलग पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, और पब्लिक गार्डन्स होते हैं उसके यहाँ, वहां पर जाकर के क्लीनलीनेस का करना, समुन्द्र के किनारे, मुंबई में तो चारों तरफ हर जगह पर समुन्द्र है, समुन्द्र में कितने सारे पब्लिक जाते हैं तो वहां पर गंदगी मचा देते हैं, तो ये ग्रुप वहां पर जाकर के सारा जो भी है सफाया करने में लग जाते हैं, क्योंकि बीच के किनारे बहुत सारे पब्लिक मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए भी निकलते हैं, और ये समुन्द्र का किनारे ही मुंबई की एक ब्यूटी है, आपको तो पता ही, मुंबई को देखना हो तो समुन्द्र के किनारे शाम के समय पर जाओ तो मुंबई की खूबसूरती आप देख पाएंगे। तो मुंबई में ही नहीं बल्कि अभी देश का यहाँ पर अभी बात चल रही है तो देश में भी जैसे हमने कहा कि वृक्षारोपण का करना ये सब जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: अभी समुन्द्र के किनारे तो हो गए, अभी जहाँ पर बड़ी बड़ी नदियां हैं तीर्थ स्थानों पर, वहां पर भी अभी अवेयरनेस बढ़ गई है। जैसे निर्माल्य, पहले लोग पब्लिक क्या करते थे, नदी में बहा देते थे, निर्माल्य मतलब ये फूल हो गया,
0: हाँ,
1: खाना पीना जो हम लोग नैवेद्य जो दिखाते हैं तो वो भी उसमें डाल देना, वस्त्र का दान देना नदी को, गंगा माता को हम दान दे रहे करके, बट वो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, हम दूषित कर रहे हैं पानी को। तो यहाँ पर क्या है ना, हमको एक तो नेचर को भी बचाना है, नेचर लवर बनना है, जैसे हमारे मुंबई में महाराष्ट्र में कहते हैं निसर्ग प्रेमी बना, मतलब नेचर लवर। अगर हम नेचर से खिलवाड़ करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, तो नेचर का एक लॉ है कि हमने नेचर को जितना देंगे ना उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न में अपने को देता है विथ इंटरेस्ट।
0: बिल्कुल, ये सच बात है
1: ना। तो हम अगर नेचर से अगर छेड़छाड़ करेंगे तो नेचर भी अपने को विथ इंटरेस्ट ही रिटर्न में देगा ना। तो उससे अब ये क्लाइमेटी जो होती है तभी हम देख भी सकते हैं कि देखते भी है कि फिर उसको रोकने के लिए किसी के अंदर ताकत नहीं होती है। इसके लिए अब भी हमको सतर्क होना बहुत जरूरी है।
0: सतर्क होना जरूरी,
1: बिल्कुल। और अभी अभी मैंने कहा कि सेव ट्रीज, सेव एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो जैसे पानी का भी मैंने कहा, जैसे सेव वाटर सेव लाइफ, पानी बचाओ जीवन बचाओ।
0: बिल्कुल, जल है तो जीवन है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये सत्यता है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक स्टेटमेंट नहीं है। और जब बड़ी कोई कलामिटी आती है तब वो काम नहीं हो सकता, काम तो पहले से ही होना है, तो हम सबका उसमें सहयोग चाहिए। एक जना नहीं कर सकता अकेले, एक संस्था भी नहीं कर सकती, तो हम सबको एक कदम उठाना है। आपने बात की, क्योंकि मैंने प्रश्न किया था भारत के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है, याद आता है आपने प्रकृति की बात की, तो प्रकृति जब इतनी सुंदर लगती है तो उसको बचाने का भी रोल हम सबका है, क्योंकि प्रकृति से बहुत कुछ मिलता है
1: जी। अब आते हैं भारत के बारे में, तो जैसे देखिए मैंने अभी आर्मेनिया में इतने सालों मैंने रहा, तो आर्मेनिया कंट्री और हमारे भारत देश के बीच एक रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है।
0: ओके,
1: क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति के कारण आर्मेनिया कंट्री में हमारे फादर ऑफ नेशन गांधी बापू का भी वहां पर एक स्टैच्यू है।
0: अच्छा, क्या बात है।
1: मैंने देखा, मैंने सुना भी है, और वहां के इंडियन एम्बेसी ऑफ इंडिया इन येरेवान कंट्री, तो वहां पे एम्बेसी जब वहां पर जाते हैं गांधी जयंती मनाने के लिए, तो उनका एक सोशल पेजेस है, तो उसमें मैंने देखा। मुझे अगर मौका मिले तो मैं जरूर एक बार जाऊंगा वहां पर, सेल्फी खींच के मैं शेयर करूंगा। बट ऐसा है कि वहां पर कंट्री में हमारे भारत की संस्कृति के बारे में भी वहां के लोगों को बताया जा रहा है। मैंने ये देखा कि वहां पर क्लासेस चलती है कि उस कंट्री में कैसे इंडियन लोग, तो काफी सारे इंडियन तो हमारे पूरे देश विदेश में फैले हुए हैं, तो वहां पर भी इंडियंस काफी सारे हैं, खासकर काम करने वाले, जॉब करने वाले भी हैं, तो साथ साथ ही अपने मेडिकल स्टूडेंट्स, तो वहां पर अपने भारत देश के बारे में वो लोग सिखाते हैं वहां के लोकल लैंग्वेज लोगों को। अच्छा? लोकल लोगों को कि हमारे भारत देश इज नॉट अ देश, देश के रूप में नहीं देखते, क्योंकि हमारा जो भारत देश जो है ये कला संस्कृति योग और परिवार का जो वैल्यू जो है उसको लेकर के चलती है।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: हमारा आधार रहा है हमेशा से।
1: यस, तो हमारा भारत जो है संस्कृति और ये त्योहार भी, अभी उनको एक वंडर बहुत खाते हैं कि भारत देश में, इनके देश में इतने सारे मल्टीपल लैंग्वेजेस है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: फिर मल्टीपल लैंग्वेज के साथ साथ फिर उन लोगों का ये ड्रेसअप है, पहनाव जो है वो भी अलग अलग भाषा के साथ पहना, और फिर उनका खान पान अलग अलग, अलग अलग होने के बावजूद भी
0: कैसे
1: ये लोग एक एकजुट कैसे रहते हैं ये एक ज्यादा वंडर खाते हैं।
0: ये सबको लगता होगा।
1: हाँ, एकजुट तो रहते ही है, रहते तो है ही, प्लस उसने और एक सबसे बड़ा वंडर कहते हैं कि ये लोग त्योहार जो मनाते हैं उसके पीछे भी कुछ न कुछ बहुत सारा वैल्यूज छुपा हुआ है, जैसे हम दीपावली मनाते हैं। तो मैंने जब इस बार मैंने आर्मेनिया में दीपावली का प्रोग्राम अरेंज किया था उसी क्लासेस में जहां पर इंडियन लोगों को वहां का लोकल लैंग्वेज सिखाते हैं और वहां के लोकल लैंग्वेज लोगों को वहां पर इंग्लिश ना के बराबर आता है, तो वहां के लोकल लैंग्वेज को लोकल लोगों को इंग्लिश सिखाने के साथ साथ अपना भारत देश के बारे में बताते। तो वहां पर मुझे भी एकदम उस टाइम पर मुझे मैं वंडर खाया कि वो टीचर थी रशिया की।
0: अच्छा।
1: वो जो क्लासेस चलाने वाली, वो कोचिंग करने वाली, और वो वहाँ के लोगों को इंडिया की संस्कृति के बारे में बता रही है। दिवाली क्यों मनाते ये लोग, मतलब दिवाली का इनका वैल्यू यही है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। फिर होली ये लोग क्यों मनाते हैं, उसके बारे में वो लोग बता रहे थे वहाँ पर। तो हालांकि वो प्रोग्राम मैंने अरेंज किया दिवाली के निमित्त, लेकिन वहाँ पर वो लोग होली के बारे में बता रहे। तो ये एक्चुअली फैक्ट है कि हमारे भारत देश में जितने भी जो त्योहार है ना उसके पीछे बहुत सारा गुह्य रहस्य जो है ना समाया हुआ है पीछे।
0: बिल्कुल।
1: अभी होली भी मनाते हैं,
0: बहुत सारे रहस्य हैं हमारे बिल्कुल भारत त्योहार के बारे में, आपने सच कहा। तो इन त्योहारों को मनाते हैं तब भी हम देखते हैं गीत संगीत का बड़ा महत्व होता है, रोल होता है, और हमारा कार्यक्रम भी उसी संगीत को सेलिब्रेट करता आया है। तो क्या कोई और गीत है आपके पास जो आज आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे?
1: ओके, तो अभी मैं क्या ही सुना
0: कोई भी गीत, कोई त्योहार से रिलेटेड भी हो, चाहे कोई बॉलीवुड का ही गाना हो या कोई और आपको गाना जो सुनते हुए आप बड़े हुए हो आपको याद आता हो, कोई भी आपकी पसंद का गीत।
1: ऐसे गाने तो बहुत सारे हैं, तो मैं एक गाना गाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ
0: जी।
1: ये भी एक वंडर होता है लोगों के बीच में, अभी त्योहारों का जो चल रहा है तो इसके ऊपर अभी एक और गाना है जो मैं बाद में सुनाना चाहता हूँ, लेकिन अभी तो है एक डुअल वॉइस में मैं गाना चाहता हूँ, बॉलीवुड का सॉन्ग या तो फिर एक भक्ति सॉन्ग है।
0: ये डुअल वॉइस में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, हम भी सुनना चाहेंगे क्योंकि हमने सुना है आपने मेरे वतन के लोगों को क्या खूब गाया, तो जरूर जरूर जरूर।
1: अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लवम।

0: बिल्कुल, भक्ति में डूबने वाले कई गीत हमने सुने हैं दोस्तों, और भारत की संस्कृति का ये भी बड़ा अहम हिस्सा रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई गीत हम भक्ति रस का सुनते हैं तो न सिर्फ किसी त्योहार से जुड़ जाते हैं, संस्कृति से जुड़ जाते हैं, बल्कि ईश्वर से ही जुड़ जाते हैं, और प्रकृति को भी धन्यवाद करते हैं, भारत के हर कण को धन्यवाद करते हैं आज हम इस मंच द्वारा। दोस्तों, सेलिब्रेशन हो रहा है, 15 अगस्त का सेलिब्रेशन हो रहा है, हमारे देश का आजादी का महोत्सव है ये, और हमारे श्रोतागणों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वैसे हम बढ़ रहे हैं आगे कार्यक्रम की अंतिम घड़ियों की ओर, और हम गीत संगीत के सेलिब्रेशन को भी आगे लेकर जा रहे हैं। तो अरविंद जी, आज आपने हमें बताया कैसे बाहर भी भारत की संस्कृति की बड़ी रिस्पेक्ट है, कद्र है, लोग सीख रहे हैं, जानना चाहते हैं, तो क्या कुछ आप कहना चाहते हैं हमारे देशवासियों को, हमारे जो श्रोतागण सुन रहे हैं आज खास इस स्पेशल प्रोग्राम को, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे?
1: संदेश यही मैं देना चाहता हूँ कि देखिये, हमारा भारत देश का जो त्योहार है, हर एक त्योहार का एक ही मूल संदेश रहा, प्रेम, खुशी और एकता। ओके, तो प्रेम, खुशी, एकता के साथ साथ अभी हम एक कहना चाहते हैं कि जो भी हम करते हैं देश के लिए, अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करें अपने से, खुद से होकर के, अपने से होने के बाद फिर अपनों से, अपनों मतलब हमारे घर परिवार, फिर उसके बाद ही आता है हमारा समाज, फिर देश के प्रति। तो कभी भी हम कोई भी शुरुआत करते हैं तो पहले घर से करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी आज के दौर पर हम देख रहे हैं कि टेक्निकल ज्यादा बढ़ गया है, टेक्नोलॉजीज, ठीक है,
0: बिल्कुल।
1: तो कोई हर एक चीजें आज हम भारत में देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी, नॉट ओनली इन इंडिया, अदर कंट्रीज में भी टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ रहे है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये केमिकलाइज्ड ज्यादा हो गया है एक तरफा, हम जो खा रहे हैं ऑर्गेनिक के बदले नॉन ऑर्गेनिक, जिससे रिलेटेड अपने को स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर एक तो ध्यान देना, और दूसरा है कि तो घर से शुरुआत, मतलब मैंने अभी जैसे कहा कि मैं एक छोटी सी बात है लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है कि आज के यहाँ पर रोजमर्रा की जिंदगी में एक छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग आयु तक मोबाइल के बीच में भी, मोबाइल के पीछे भी बहुत लगे हुए हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी देख रहे हैं अपने आसपास ये सब।
1: तो छोटा बच्चा अगर वो 1.5 साल 2 साल का होता है तो उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल उनके हाथ में थमा देते हैं फ्री होने के लिए, अगर रोता है तो उनके हाथ में मोबाइल थमा देते और अपने काम में लग जाते हैं। तो छोटा बच्चा जब ये मोबाइल यूज करता है तो लोगों को ये पता भी है कि उसके रेडिएशंस हानिकारक होता है। कुछ लोगों को तो मैं ऐसा भी देखता हूँ बहन जी कि वो लोग बच्चे को देते तो है लेकिन आई प्रोटेक्शन ऑन नहीं करते, स्क्रीन का जो ब्राइटनेस होता है वो भी काफी तेजी से रखते हैं, जिससे उनको आई को भी इफेक्ट हो सकता है, उनके मस्तिष्क को भी, उनके ग्रोथ होने में भी। फिर बच्चे से अगर मोबाइल छीन ले तो चिड़चिड़ा हो जाता है, तो फिर वो बच्चा फिर बड़ा होने के बाद चिड़चिड़ा बन जाता है। अभी आते हैं थोड़ा ऊपर के लेवल पर, आजकल के जो जो स्कूल के जो बच्चे, कॉलेज के बच्चे, घर में मम्मी पापा कुछ अगर उनको काम बताते हैं तो मोबाइल में घुसे हुए रहते हैं, लगे हुए रहते हैं। तो अगर बुलाया तो हाँ मम्मी एक मिनट, आया मैं करते करते वो डिले हो जाते हैं। तो फिर बाद में बोलते हैं कि मैं आज नहीं मम्मा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कल। तो ये होता है इस लेवल के। तो क्या है ना, मोबाइल यूज कीजिए, जहां तक अपने को यूज करना है उतने, क्योंकि आजकल सारी चीजें अभी ऑनलाइन हो गए, ऑनलाइन से सब कुछ हम कर रहे हैं, ये सुविधा अच्छी है, लेकिन उसको यूज करते हुए कभी कहीं पर मिस यूज ना हो, इस पर भी हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: ओके। तो अब आते हैं थोड़ा सा ऊपर के एज वालों को, जहाँ पर अभी वेल सेटल जो होते हैं आफ्टर स्कूल कॉलेज लाइफ के बाद जो जॉब के लिए निकलते हैं, तो वहां पर भी लोग, अभी जैसे मैं मुंबई से बिलोंग करते हैं, नॉट ओनली मुंबई, पूरे दुनिया में ही ये सब चल रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड।
0: बिल्कुल,
1: ट्रेवल करने के टाइम पर भी, लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेवल करने के टाइम पर भी मोबाइल में ही रहते हैं, चाहे वहां पर पब्लिक भीड़ क्यों ना हो, मतलब खड़े खड़े भी मोबाइल,
0: मोबाइल का भी कल्चर जैसा बन गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, स्क्रीन पर ही ध्यान देते हैं, उससे आंखों को इफेक्ट, हेल्थ को इफेक्ट हो रहा है बहुत ज्यादा।
1: तो मैं अंत में यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अपने ये समाज में किसी का कभी अगर हम अच्छा नहीं कर सकते है ना, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप किसी का बुरा भी ना करें. ओके और जब बात आई तो खुद से फिर पूरे समाज तक, तो वहां पर हमेशा हम लोग को तीन ए में समझता हूँ. मेरे तीन ए काफी सारे लोगों को मैं बताता हूँ, मेरे स्टाफ हो गए या कोई भी हो गए, फ्रेंड्स को भी तीन ए का अप्लाई करना बहुत जरूरी है. जैसे अटेंशन, अलर्ट और एक्टिव. अटेंशन, अलर्ट और एक्टिव, ये अभी अगर हम खुद इन तीनों बातों पर, इन तीनों शब्दों पर अगर विचार करेंगे तो अपने को खुद को ही समझ में आएगा कि ये तीन वर्ड के पीछे क्या का है? क्या है. तो ये हमारे खुद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ साथ पूरे परिवार को भी वो फायदा होता है और समाज को भी फायदा होता है.
0: जी.
1: तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, ये तीन शब्द कभी भूले नहीं, बस सबका भला करो, आगे बढ़ो और बढ़ाओ, ना किसी का लेग पुलिंग करो, ना किसी का बुरा करो.
0: बिल्कुल.
1: तो इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी यही संकल्प ले कि अपने विचारों, व्यवहारों और कर्मों से भारत को और भी श्रेष्ठ बनाने का अपना सहयोग दान दे.
0: और इसी के साथ दोस्तों, इस एपिसोड से हम मधुबन अनप्लग्ड से तो इजाजत ले रहे हैं, लेकिन इस वादे के साथ और इस विश्वास के साथ कि अपने देश के लिए, अपने देश को बनाए रखने के लिए, जो हमारे देश का आधार है उसको बनाए रखने के लिए हम भी अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देंगे. कुछ ना कुछ एक कदम देश की ओर, समाज की ओर, कुछ कल्याण की ओर जरूर बढ़ाएंगे. जय हिंद, जय भारत. जाते जाते हम अरविंद जी, क्या कोई और दो लाइनें हैं जो आप हमारे श्रोताओं के लिए आज
1: दो लाइनें तो यही है कि
0: ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन ये माटी की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया.

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम यशस्वी भारत में हम हमेशा भारत की ऐसी यशस्वी लोगों के साथ रूबरू होते हैं और जानते हैं उनका क्या योगदान है, उनकी अपनी फील्ड में ऐसा क्या एक्सलेंसी किया है भारत को यशस्वी बनाने में। चलिए दोस्तों, आज हम बातचीत करते हैं समीर शेंदे जी से। आप एक्स सेकेंड इन कमांडर है होमगार्ड्स के, और इसके साथ साथ आपने बहुत सारे प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स भी जीते हैं और वर्तमान समय में एक ऐसी स्कूल की व्यवस्था आपने बनाई है जिसका आप सुनेंगे तो सोचेंगे कि बिना किताबों का कोई स्कूल हो सकता है क्या। ताजुब है ना। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने जो ग्रुप ऑफ स्कूल्स बनाए हैं, जैसे गैलेक्सी एजुकेशन सोसाइटी है और आप डायरेक्टर है यूनिवर्सल कमर्शियल सर्विसेज की, फाउंडर डायरेक्टर है शाइनिंग स्टार्स कॉन्सेप्ट स्कूल CBSE की, और उसके साथ साथ आप फाउंडर भी हैं ब्लूबेरी बिजनेस इंटरनेशनल। इस तरीके से बहुत सारी वैरायटी सेवाओं की आप धनी हैं। तो बातचीत करते हैं और उससे पहले हम स्वागत करते हैं समीर शिंदे जी को आज के इस कार्यक्रम यशस्वी भारत में। समीर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में।
1: थैंक यू।
0: ये बहुत खुशी की बात है कि आज हम आपसे स्टूडियो में रूबरू हो पा रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इतनी सारी वैरायटी आप सेवाएं कर रहे हैं और आप किसी का फाउंडर है, किसी का CEO है, किसी का डायरेक्टर है, तो इतनी सारी बिजनेसेस एक बार कैसे आप हैंडल कर लेते हैं?
1: दीदी, मुझे एक बात बताते हुए बड़ा मुझे हर्ष हो रहा है कि एक वाक्य रतन टाटा जी ने कहा था, आप जीवन में व्यवसाय मत करिए, आप ऐसा काम करिए जिससे समाज का कुछ ना कुछ फायदा हो। तो आप मेरे प्रोफाइल में जितनी सारी चीजें देख रहे हैं, ये सारी चीजें मैंने ब्रेड एंड बटर के साधन के लिए नहीं की। मैं जब समाज में घूम रहा था, जब मैंने देखा जहां पर जो मुझे प्रॉब्लम नजर आ रहा था, उसी बात को पकड़ के मैंने उस एरियाज में काम करके उस एरिया को मैंने बेहतरीन बनाने का प्रयास किया। वो चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, जिसमें मैंने पिछले 12 वर्ष में लगभग 5,000 लोगों को रोजगार दिया है यूनिवर्सल कमर्शियल सर्विसेज के माध्यम से। वो चाहे फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, जहां पर मैंने देखा कि 3 साल के छोटे बच्चों के ऊपर जितना प्रेशर डाला जाता था जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, तो वहां पर मुझे लगा कि काम करना चाहिए। फिर वहां पर मैंने काम किया और ऐसी अन्यत्र बहुत सारी चीजें, जहां पर अभी हम देख रहे हैं कि आज ब्रह्म कुमारीज में जिस तरीके से काम हो रहा है पूरे अक्रॉस द ग्लोब, तो एक व्यक्ति से ये कार्य का निर्माण हुआ। वैसे समाज में हर व्यक्ति का ये परम कर्तव्य है कि उसने अपने सामने जो भी चीजें दिख रही है उसको अनदेखा न करे, और जहां जहां मुझे ऐसी चीजें दिख रही थी कि यहाँ पर फोकस देके ध्यान करने की जरूरत है, वो फील्ड में मैंने काम किया। लेकिन आज मेरा पूरा का पूरा फोकस शिक्षा पर है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप आने वाले समय में और ज्यादा कहाँ फोकस करना चाहेंगे, तो मेरा इसमें उत्तर यही रहेगा कि शिक्षा के जैसा कोई कार्य नहीं है। आप एक व्यक्ति को एक बार शिक्षित कर दो, पूरे जीवन भर उसके जीवन में प्रकाश में रहेगा
0: जी। So, ये जो आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं, उसके पीछे एक बहुत लंबी जर्नी है। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपकी कहानी आपकी जुबानी कि वो सफर कहाँ से वैसे शुरू हुई है, बचपन से आपको ऐसी क्या चीजें इन्फ्लुएंस किया है जो आज यहाँ पर हम आपसे बैठे हैं, समीर शिंदे जी जो डायरेक्टर CEO फाउंडर ये सारी पदों को, और आपने प्रेसिडेंट से भी अवार्ड लिया है, तो फिर वो जो छोटा सा नन्ना सा बच्चा जो समीर शिंदे जी और आज एक CEO है, इस बीच का जो सफर है उसके बारे में थोड़ी सी झलकी आप
1: जी। ऐसा बोला जाता है कि आप जितना ज्ञान में डुबकी लगाएंगे उससे और थोड़ा सा खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि और भी कुछ हो लाइफ में हासिल किया जा सकता है, या और भी ज्ञान इसके भी आगे कुछ है। मुझे याद है कि मैं मेरी जब प्री प्राइमरी और प्राइमरी की जब शिक्षा चल रही थी, तो एक नन्हे से बालक के दिमाग में जीवन का उतना विजन नहीं रहता, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, मतलब कक्षा 10वीं तक तो उसके लाइफ में सिर्फ माता पिता और मित्र रहते हैं, और तब इतने समस्याएं भी लाइफ में नहीं रहती। लेकिन असली समस्या चालू होती है जब पहली बार वो बोर्ड के एग्जाम देते हैं, और वहां से उसके जीवन की शुरुआत होती है। तो ऐसा नहीं था, ऐसा बोला गया है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे बहुत सारी असफल कहानियां होती हैं। तो मेरा अर्ली डेज का जो शिक्षा थी वो उतनी सफल नहीं थी। आई वॉज अ मोस्ट एवरेज स्टूडेंट इन माई स्कूलिंग डेज। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि क्या मेरा लाइफ ऐसे ही बीतते रहेगा कि और आगे कुछ मैं कर सकता हूँ। तो मैं जब 12वीं कक्षा में था तब मुझे कुछ मार्क्स कम आए, कुछ सब्जेक्ट में मुझे काफ़ी कम, लोअर देन एक्सपेक्टेशंस आए। तो उससे मेरे घर वाले थोड़े नाराज़ हो गए कि देखो मेरे घर में जो मेरी सिस्टर थी वो तो मेरिट थी और मुझे बिल्कुल बिलो एवरेज मार्क आए। तब मैंने किताब पढ़ी, उस किताब का टाइटल था आत्मविश्वास की कुंजी, और उसके लेखक थे स्वेट मॉडर्न। उनकी एक लाइन का मेरे मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा असर हुआ। उन्होंने कहा कि आपके अंदर हिम्मत हो और आत्मविश्वास हो तो आप पहाड़ों को भी हिला सकते हो। मैंने कहा यह क्या बात हुई, अपनी बुद्धिमत्ता तो उतनी आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन ये तो कह रहे कि आप आगे बढ़ सकते हैं, तो ऐसी कौन सी बात है। तो वहां से मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन ने एक टर्निंग पॉइंट लिया, और उस दिन से मैंने किताबें पढ़ना चालू की। और दीदी मुझे ये बताते हुए बड़े गर्व महसूस हो रहा है कि आज मेरे पास लगभग 4000 किताबें हैं। आज भी मैं यहाँ पर हेडक्वार्टर में आया हूँ माउंट आबू के, जहाँ पर वर्ल्ड समिट चल रही है। आज सुबह से मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ कि मैं सारी अच्छी अच्छी किताबें मैंने चुन चुन के ली हैं आज। तो जिस तरह से एक हनी भी क्या करती है कि मधुमक्खी के छत्ते पे जाने से पहले हर एक फूल से वो अपना अपना ये निकालती है, मधु निकालती है, वैसे मैंने मेरे लाइफ में क्या किया कि जहां से मुझे जो प्राप्त हो सके वहां से मैंने वो प्राप्त किया, और उसका इम्प्लीमेंट मैंने रियल लाइफ में लेना चालू कर दिया। एक आम अवधारणा है कि आप एक अच्छा शिक्षण ले लेते हैं, अच्छी डिग्री ले लेते हैं, तो आपको बेसिक हर घर में यही कहानी होती है कि पहले अच्छी शिक्षा हो, फिर अच्छी नौकरी हो, और फिर अच्छे घर में इसके या बहू लेकर आए। तो ये जो आम अवधारणा है, इससे भी आगे मुझे ऐसा लगता था कि इससे भी आगे जीवन है। पहले तो मेरे मन में था कि शादी ना करें, मैंने शादी नहीं की थी, लेकिन उसके बाद मेरे जीवन में जो मेंटर्स आए, गुरु आए, उन्होंने कहा कि आपको शादी करके ही समाज सेवा करनी पड़ेगी। क्योंकि जितने लोगों की शादियाँ होती है वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, वो अपना परिवार, अपने बाल बच्चे बीवी यहीं तक उनकी विचारधारा केंद्रित हो जाती है। लेकिन मेरा जो पहले से विचारधारा थी कि वसुधैव कुटुंबकम, ये जो वसुधा है, ये जो ब्रह्मांड है, ये पूरी एक परिवार की जैसे है, ये आपस में जितने मतभेद है ये इंसान ने तैयार किए हैं। और जैसे जैसे ये मेरी विचारधारा बढ़ती गई, एक अच्छा कनेक्शन मेरा समाज के साथ में बढ़ते गया, और फिर मैंने पहले ही जैसे आपको कहा कि आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बनता है। मतलब जो अच्छा ड्राइंग बचपन से बना रहा था वो एक अच्छा चित्रकार बनता है, जो बचपन से म्यूजिक में जिसका रुचि है वो अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है। तो मुझे लोगों से मिलके, लोगों से बातें करके बड़ा मजा आता था। तो फिर मेरी जो सारी जीवन जो बना, फिर यही आधार रहा कि लोगों से मिलते मिलते मेरे व्यवसाय खड़े होते गए, जिसमें मैंने सबसे पहले यूनिवर्सल कमर्शियल सर्विसेज की स्थापना की, और फिर वहां से मैंने पीछे मुड़के नहीं देखा।
0: सो ये जो यूनिवर्सल कमर्शियल सर्विसेज है, इसमें क्या होता है सर, क्या करते हैं आप इसका?
1: इसकी भी एक रोचक कहानी है कि मैंने लगभग 2000 में मुझे होमगार्ड्स का ऑफर आया कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, और उस होमगार्ड का जो वो पद दिया जाता था, समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता था, उसके पहले मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। तो वो एक अच्छा बायोडाटा था मेरा। तो एज अ सोल्जर पहले मैंने ज्वाइन किया, और मेरी पहली एग्जाम हुई मुंबई में घाटकोपर में। वहां पर मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन का पद मिला, इसमें 3 स्टार मुझे मिले। ये कार्य करते करते मुझे 3 साल हो गए, और 3 साल के बाद मेरा काम देख के मुझे पहला मेरा प्रमोशन मिला डेप्यूटी कमांडेंट का, जो कमांडेंट की एक स्टेज नीचे होता है। कुछ काम के वजह से मेरे जो कमांडेंट थे वो छुट्टी पे चले गए, और 45 दिन के लिए मेरे पास चार्ज आया। तो मैंने क्या किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जनता का दरबार लगाया, और सब जगह में गया, और सब लोगों ने मुझे कहा कि सर हमारे पास जॉब नहीं है, हमें रोजगार तो मिलता है लेकिन कब मिलता है, गणेश उत्सव, नवरात्रि उत्सव या फिर ईद, ऐसे वक्त रोजगार मिलता है, लेकिन बाकी दिन में हम लोग खाली रहते हैं। तो मैंने कहा आपको रोजगार मैं दूंगा। तो देखिए वही बात है कि समाज में जो चीज़ चाहिए वो देना चाहिए आपको, ना कि आपको अपने हिसाब से। और मेरी रुचि भी थी और वहाँ पर मैंने एक गवर्नमेंट का लाइसेंस रजिस्टर्ड किया जिसको पसारा लाइसेंस बोला जाता है। ये जो पसारा एक्ट है ये सोसाइटी पुलिस के साथ में पैरेलली काम करती है। आप आपकी सिक्योरिटी यूनिफॉर्म दे सकते हो, बैचेस दे सकते हो और गवर्नमेंट को सारा इसका रिपोर्टिंग करना पड़ता है कि आपके पास में कितने गार्ड्स हैं। तो मेरी इसकी शुरुआत सिर्फ दो गार्ड से हुई थी, 2012 से मैंने इसकी शुरुआत की थी और इसका कारवा बढ़ते बढ़ते बढ़ते लगभग 500 के करीब ये गार्ड पहुंच गए सिर्फ 12 साल में। और इन दिनों में मुझे इस बात का बड़ी खुशी है कि लोग आते थे जाते थे और कारवा बनते गया और लगभग 5000 से भी ज़्यादा लोगों को अभी तक इस प्लेटफॉर्म से हमने रोजगार दिया और आगे भी इसका काम जारी ही है।
0: जी, और जैसे आपका वो नन्हे से बालक के अंदर स्काउट्स एंड गाइड्स का जो रुझान थी जिस कारण से आपको 1992 में शंकर दयाल शर्मा जी ने आपको बेस्ट स्काउट ऑफ महाराष्ट्र का भी पुरस्कार दिया है, तो जब आप उस नन्हे से बालक के रूप में प्रेसिडेंट हाउस में गए उस समय की क्या जर्नी रही और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है?
1: ये बात तो सच में मुझे बड़ा बताते वक्त खुशी महसूस हो रही है। बचपन में अगर आपको कोई बड़ी अच्छी चीज देखने को मिलती है तो उसका गहरा असर पूरे जीवन भर रहता है। मैं जब पहली बार राष्ट्रपति भवन गए तो हमको सारे प्रोटोकॉल समझाए गए कि राष्ट्रपति के सामने आपको कैसे जाना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए और वो जब पुरस्कार देंगे तब आपको कैसे खड़े रहना है वगैरह वगैरह। और वो सारा जो मंजर था वो मेरे दिमाग में आज भी ऐसे सामने आ रहे हैं। जब पहली बार मैंने देखा शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति भवन से जैसे पहली बार बाहर आए, तो देश का राष्ट्रपति बाहर आता है तब तब राष्ट्रगान होता है, तो वो राष्ट्रगान की जो गूंज है आज भी मेरे कानों में पहुंच रही है। तो इतना मुझे मतलब गर्व से ये बात मुझे लग रहा था कि क्या बात है, ये है हमारा देश और ये है देश के राष्ट्रपति। और दूसरी बात, जब आप देश के इतने बड़े मुकाम पहुंचे ऐसे व्यक्ति से आप मिलते हो तो उनका जो ऑरा है, उनका जो आभा मंडल है, उनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति से आपके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो वो नन्हे से बालक जो टीनेजर्स पे था उसका असर उस बालक के दिल पे पड़ गया कि जीवन में श्रेष्ठ सफलता तभी हासिल की जा सकती है जब आप कुछ करते हो। तो लगभग लगभग मैंने मेरे स्कूलिंग डेज में 100 से ऊपर कैंप्स किए जिसमें हमको हर चीज़ पढ़ाई जाती थी, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम बेसिक डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। आप खाना कैसे पकाना चाहिए, आपका जो टेंट है वो कैसे सजाना चाहिए, ड्रिल एंड डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग। और वो हमारी जो एग्ज़ाम थी वो इतनी हार्ड थी जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपति अवार्ड से पहले आपको राज्यपाल अवार्ड प्राप्त करना पड़ता है, वो कंडीशन थी उसकी। तो पहले मुझे जो है वो, तब हमारे राज्यपाल हुआ करते थे पीसी अलेक्जेंडर साहब, तो पहले मुझे राज्यपाल अवार्ड मिला। और जैसे आपको वो अवार्ड मिलता है देन यू आर क्वालिफाइड फॉर राष्ट्रपति अवार्ड। तो वो दोनों अवार्ड के बीच की जो कहानी थी वो बहुत डिफिकल्ट थी क्योंकि पूना में हमारे प्रेसिडेंट अवार्ड की एग्जाम हुई थी और वहां पर जो एग्जामिनर जो लोग बैठे थे उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली वो एग्जाम ली। लेकिन उसके बाद जो हमारे प्रोफाइल में वो जो बात लग गई कि प्रेसिडेंशियल अवार्ड विनर, तो मेरे लाइफ पर उसका बहुत अच्छा गहरा प्रभाव पड़ा और मेरे सारे जीवन में उसकी बहुत अच्छी गहराई और सफलता मुझे मिली। तो अर्ली डेज का किया हुआ जो कर्म रहता है वो लाइफ टाइम काम में आता है। अगर आपके जीवन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरे जीवन पर उसका असर अच्छा हो सकता है। इसलिए जब भी आप कोई कर्म करते हो तो उसका प्रभाव अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा।
0: जी सही कहा आपने, इसलिए बचपन से हम सभी को माँ बाप यही सिखाते हैं कि बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो और बुरा ना सुनो। और यहाँ पर हमें आध्यात्मिक मार्ग में ये सिखाते हैं कि बुरा ना सोचो, क्योंकि ये तीनों चीज़ों की शुरुआत होती है सोच से, देखना सुनना बोलना। अगर हम बुरा सोचना ही बंद कर देते हैं तो फिर बुरा देखना सुनना भी बंद हो जाता है। तो शिंदे जी, जैसे आपने एक लंबे अरसे की सक्सेसफुल लाइफ की लीड की आपने, कभी ऐसा हुआ आपके जीवन में कोई उतार चढ़ाव या फेल्यूर्स आए, आपने फिर उसको हैंडल करना पड़ा?
1: देखिए, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। और जैसे हम लोग देखते ना ईसीजी, जब हमारा ब्लड प्रेशर काउंट किया जाता है तो उसमें उतार चढ़ाव ही रहता है।
0: जी,
1: तो लाइफ इज लाइक दैट।
0: यस,
1: तब आप जब सोचते हो कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूं और बहुत अच्छा सफलता मुझे मिले, और दूर से जब किसी सफल व्यक्ति को लोग देखते हैं कि यार इसके जीवन में तो कितनी अच्छी ऊंचाई को छू रहा है, लेकिन अगर ऐसी कोई किताब रहती है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री बना सकता था कोई, कि उसके लाइफ के दुख दर्द और उसने जो हार्डवर्क किया उसका अगर कोई फिल्म बना सकता था तो वो रियल फिल्म होती थी जीवन की। आमतौर पर क्या होता है, लोगों को सिर्फ सक्सेस स्टोरीज दिखती है, लेकिन सक्सेस स्टोरीज के पीछे वो जो हजारों रातें, मतलब थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स, जैसे अपन बोलते ना कोई स्कॉर्पियो जब आपको काटता है तो कितना दर्द होता है, तो वैसे एक सफल इंसान के पीछे इतने बार उसको तकलीफ होती है, लेकिन वो हर बार वो बाउंस बैक जो करना सीख जाता है। सफल और असफल इंसान में, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। वो जो एक्स्ट्रा काम करता है, जैसे आमतौर पर जब मैं बिजनेस पे जाता था या जब मैं जॉब भी करता था, लोगों की जॉब की शुरुआत या बिजनेस की शुरुआत 10 बजे हुआ करती थी और मैं 7 बजे घर से निकल जाता था।
0: अच्छा,
1: तो 3 आवर्स बिफोर मेरा काम होता था।
0: जी।
1: जहां पर लोग 6 बजे काम बंद करते थे, वहां पर मैं रात को 10 बजे काम करता था।
0: ओके।
1: तो वो जो एक्स्ट्रा माइल मेंटेलिटी जो होती है कि आपको जब लॉन्ग जर्नी करनी है या आपको अबव एवरेज जाना है तो अबव एवरेज आपको काम भी करना पड़ेगा। ये मेरे पढ़ने में ये बात आई थी कि अगर आपको अबव एवरेज जीवन करना है तो एवरेज लोग 10 से 6 काम करते हैं, तो आपको 6 से रात को 12 बजे तक काम करना पड़ेगा, तब आप अबव एवरेज जाएंगे। तो ऐसा मैंने लगभग मेरे 30 साल में, मुझे पता नहीं कि जिस दिन मैं रात को बेड पर सोता हूँ मेरे शरीर में दर्द ना हो। नो पेन नो गेन। अगर जिस दिन आपके शरीर में दर्द नहीं है, इसका मतलब वो दिन आपने काम किया ही नहीं। और लोगों को मैं, मतलब एक आम अवधारणा है कि हार्ड वर्क का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज हम देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी कितना काम करते हैं, वो ट्रैवल करते हैं 4 घंटा 3 घंटा, वो सिर्फ फ्लाइट में सोते हैं, देश विदेश में घूमते हैं, तो ऐसे देश को चला नहीं रहे। वैसे एक इंसान जब अपने खुद के लाइफ को भी लीड कर रहा है, यू आर द CEO ऑफ योर लाइफ,
0: दैट्स ट्रू।
1: आपसे मिलने के बाद आप किसी को कैसा इंप्रेशन देते हो, वो क्या आपको लाइफ टाइम ध्यान में रखेगा या आपको भूल जाएगा, ये एक 5 मिनट में आप उसको क्या इंप्रेशन दे रहे हो इस पर डिपेंड करता है। तो मैंने दीदी जब भी एक दिन का इस्तेमाल 24 घंटे जिसमें होते हैं उसका इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया, इतने लोगों से मैंने कनेक्टिविटी बनाई कि आज लोग मुझे बोलते कि तूने इतना सारा नेटवर्क कैसे बनाया। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि मैं लोगों से मिलता हूँ, और मैं जब मैं किसी को मिलता हूँ तो उसमें मेरी अपनेपन की भावना होती। तो ऐसे करते करते करते करते जिस फील्ड में काम किया उस फील्ड में एकदम 0 to टॉप मोस्ट लेवल, और जिस फील्ड में हमने काम किया उस फील्ड में पूरा ध्यान लगन और मनन से, मतलब R&D करके काम किया। मतलब कोई भी काम अगर आप एवरेजली करते हो तो लोग आपकी कदर नहीं करेंगे, लेकिन वही काम अगर आप रिसर्च करके करते हो और लोगों के सामने रिसर्च पब्लिश करते हो कि देखिए इसके पीछे ये चीजें हैं, तो लोग आपके पास में आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए नॉर्मल वैसे सफलता नहीं मिलेगी, हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं देश में, लेकिन अगर आपको उसके ऊपर जाना है तो आपको आपके अंदर से चीजें निकालनी पड़ेगी, आपका USP दिखाना पड़ेगा लोगों को कि आपके अंदर यूनिक कौन सी चीजें हैं। आप किसी के कॉपीकैट करके कभी भी बड़े व्यक्ति नहीं बन सकते।
0: नहीं बन सकते। जी, सही बात है। So, शिंदे जी, आपने जीवन में इतनी सारी उतार चढ़ाव की जो एसेंस है उसको, जीवन के अनुभव को आप अपने आप के लिए एक शिक्षा बनाया, और वो शिक्षा को आपने याद रखा और अब मुश्किलों को भूल गए हैं और उससे आप आगे बढ़ते गए हैं। तो ये जर्नी कब शुरू हुआ कि जहाँ पे आपने स्कूल की व्यवस्था बनाई या स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट किया, जहाँ पर बिना किताबों का स्कूल चलता है?
1: मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि आपने इतने कम समय में जीवन की शुरुआत की और मेरा जीवन मोस्टली आध्यात्मिक रहा है। मुझे याद है कि मैं 16-17 साल से मैं बाहर मेरी एक बैग हर पे अटैची भर के रहती थी। तो मेरे जीवन का जब कोई चैप्टर लिखा जाएगा या जब मैं फ्यूचर में मेरी ऑटोबायोग्राफी बनेगी, उसमें सबसे बढ़िया पेजेस जो रहेंगे वो शिक्षा के रहने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शिक्षा ही वो जरिया है जिसके वजह से आप समाज की निर्मिति या नव निर्माण आप कर सकते हो। फिर से इसकी भी कहानी है कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि भाई शिक्षा में ये इट वॉज नॉट रिटन इन माई पर्सनल गोल बुक कि मैं शिक्षा में आऊँगा या ऐसा कुछ काम करूँगा। जैसे गांधी जी को साउथ अफ्रीका में जब ट्रेन से धक्के मार के उतारा गया, निकाल दिया गया, तो नेगेटिव जो धारणा रहती है, एक तो रहता है रिवेंजफुल एटीट्यूड या अभी के अभी मैं जवाब दे दूँ इनका। लेकिन गांधी जी ने क्या किया? तभी के तभी जवाब नहीं दिया। उन्होंने वहाँ से एक लेसन लिया। जैसे मुझे यहाँ पर नेगेटिवली इन लोगों ने ट्रीटमेंट दिया, मैं

0: जोर से बारिश गिर रही थी बाहर। मैंने कहा क्या किया जाए, तो मेरे अंदर के अंदर आत्मा से मुझे आवाज आई कि शिक्षा में काम करने की जरूरत है, आप शिक्षा में काम करिए। उस आवाज को मैंने नहीं दबाया, उसको और उसकी जो अग्नि है प्रज्वलित की, और मैंने मेरी एक डायरी निकाल के लिखना चालू किया कि आज के दौर में समाज में किस तरह के स्कूल की जरूरत है। इसमें सबसे पहले मैंने कुछ बातें लिखी। मैंने कहा इसमें नॉन कंपैरिजन एजुकेशन पॉलिसी आनी चाहिए। जब देखते हैं कि एक क्लास में 30-40 बच्चे पढ़ते तो कंपैरिजन होती है, तो बच्चों को कंपैरिजन पसंद नहीं है। एवरी चाइल्ड इज अ यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। तो मैंने कहा कंपैरिजन नहीं चाहिए। दूसरा, इनके ऊपर प्रेशर नहीं चाहिए। ये जैसे है, क्योंकि एक बच्चा जो है वो उमलती हुई कली है, आप जितना उनको प्यार से प्रेम से पढ़ाएंगे उतना वो फुल बेहतरीन बनने वाला है, तो हम उन पर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। तीसरा, सेल्फ लर्निंग प्रोसेस हम लाएंगे। मतलब आप देखिए, हर घर में बच्चों के पीछे माता पिता ऐसे डंडा लेके पढ़ते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो सिर्फ पढ़ाई करके बोलने से बच्चे लोग पढ़ाई नहीं करते। तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे वो खुद होके पढ़ाई करने लगेंगे। और चौथा चीज हमने इंट्रोड्यूस की हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, जिसमें हार्वर्ड गार्डनर ने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का बेस हमने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि हर कोई मैथ में ठीक अच्छे नहीं है, हर कोई लैंग्वेज में अच्छे नहीं है, कोई म्यूजिक स्मार्ट है, कोई स्पोर्ट्स स्मार्ट है, कोई किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, किसी का मैथ अच्छा है। तो जिसमें जो चीज अच्छी है उसको वो चीज पढ़ने में आप प्रमोट करो। तो ये सारी अवधारणाएं हमने किताब इस पर लिखी, और इसमें दो डिवाइड किया कि प्री प्राइमरी एजुकेशन अलग है और प्राइमरी अलग है। मतलब 3 से 6 साल का जो टाइम है ये अलग है। तो प्री स्कूल का अलग हमने एक सिलेबस डिजाइन किया, और प्राइमरी का एक अलग डिजाइन किया, जो गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेटेड सिलेबस रहता है। प्री स्कूल के लिए गवर्नमेंट का ऐसा कोई वो नहीं है बॉदरेशन, आप अपने हिसाब से पढ़ा सकते हैं। इसमें हम लोगों ने मोंटेसरी मेथड को इंट्रोड्यूस किया, और आज मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि आज से लगभग 11 वर्ष पहले हमने जो वर्धा में पहली प्री स्कूल इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें नो स्कूल बैग और नो होमवर्क। एक बच्चा जब स्कूल में आता था वो सिर्फ अपना टिफिन लेके आता था, और बाकी सारी की सारी शिक्षाएं हम लोग स्कूल में करते थे। और मुझे याद है कि सबसे पहले वर्धा में लोगों ने मुझे कहा था कि आपके स्कूल में होमवर्क नहीं है, किताबें नहीं है, फिर भी शिक्षा कैसी होगी। तो उसका जवाब मैंने दिया कि आप एक साल आप हम पर ट्रस्ट करके देखिए। और दूसरे वर्ष से मुझे जो रिस्पॉन्स मिला वो इतना बढ़िया मिला, 10 एडमिशन की मल्टीपल एडमिशंस, और आज हम लोग वर्धा में टोटल 5 स्कूल चला रहे हैं, जिसमें 4 प्री स्कूल है और एक बड़ी स्कूल है CBSE, जिसमें 1st to 12th तक के बच्चे पढ़ रहे हैं।
1: ये बात तो अच्छा है कि आपको प्रेरणा मिली शिक्षा के जगत में काम करने की, लेकिन जब स्कूल में किताबें नहीं लेके आते हैं तो बच्चे पढ़ते क्या है?
0: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, हमारे प्राचीन गुरुकुल पद्धति में जब शिक्षाएं होती थी, आपको क्या लगता है तब के बच्चे किताबें लेके आते थे क्या?
1: बात तो सही है।
0: अरे हमारे देश में हमने 0 दिया वर्ल्ड को हमारे ऋषि मुनियों ने,
1: यस।
0: क्वांटम फिजिक्स दिया हमारे ऋषि मुनियों ने,
1: यस।
0: हवाई जहाज दिया हमारे ऋषि मुनियों ने। अब हुआ ये कि यहाँ से हमारी चीजें पाश्चिमात्य देश में चली गई, और उन्होंने उसको ब्यूटीफुली पैकिंग करके हमारे सामने पेश की, और 150 वर्ष हमारे देश में जो अंग्रेजों का राज चला उसमें हम लोगों का जो माइंड सेट है वो चेंज हो गया पूरा। तो हमारी गुरुकुल पद्धति पर जो अंग्रेजों ने सबसे पहले ये जो खत्म कर दिया, उनको पता था कि आप भारतीय लोगों पर कभी राज नहीं कर सकते जब तक आप इनकी शिक्षा पद्धति नहीं चलाएंगे। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि तब भारत वर्ष में 118,000 गुरुकुल थे, मतलब जितने गांव थे उतने गुरुकुल थे। और इस गुरुकुल में क्या नहीं पढ़ाया जाता था? एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, मतलब ये एटॉमिक्स के सारे सब्जेक्ट, एस्ट्रोलॉजी, क्या नहीं पढ़ाया जाता था। हमारे शरीर के भीतर जितने सारे केंद्र बिंदु है, मूलाधार से लेके स्वादिष्टान और सहस्रार तक, ये सारा इनके माध्यम से, योग के माध्यम से उनको ये सारा पढ़ाया जाता था। मेडिटेशन का आधार लिया जाता था। धन्वंतरी शास्त्र जो है, हमारे सुश्रुत जो है सबसे पहले सर्जन होकर गए, सर्जरी के वो सबसे बड़े मास्टर थे। तो ये सारी

0: या तब, तो तब कोई किताबें नहीं थी।
1: सही बात।
0: तब किताबें नहीं थी, तब शब्द से उनको ज्ञान दिया जाता था, स्पर्श से सिखाया जाता था। तो हमने यही चीज इंट्रोड्यूस की स्कूल में, और ये चीज मुझे बताते हुए बड़े हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने सेंसोरियल वे से बच्चों को पढ़ाया। अब सेंसोरियल में कितने सेंसेस है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 सेंसेस है। तो शब्द से हम पढ़ाते हैं, सेंसोरियल मतलब स्मेल से हम लोग, हमारे पास स्मेलिंग की एक्टिविटीज है, टच की एक्टिविटी है। अब एक बच्चे को जब सैंड पेपर पे आप ए पढ़ाते हो, ए पढ़ाते हो दो उंगली के माध्यम से, दिस इज ए, तो ये जो दो उंगली से जो बच्चा ट्रेसिंग पेपर पे ए करता है ना, लाइफ टाइम उसके दिमाग में मेमोरी प्रिंट हो जाती है। ऐसे हम लोग उनको स्मॉल ए टू सेड पढ़ाते हैं, और ऐसे हम लोग उनको कर्सिव भी पढ़ाते हैं, ये सैंड पेपर पे पढ़ाते हैं। तो ये सेंसोरियल ऑर्गन जो है ना, ये सबसे बड़े कारीगर साबित होते हैं। और अध्यात्म भी यहाँ कहा गया है कि अगर आपने आपके कर्मेंद्रियों पर अगर काबू कर लिया तो आपको बुद्धत्व प्राप्त हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों को सेंसोरियल के थ्रू एजुकेशन देंगे, तो वो बच्चा कल का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार नागरिक भी बनेगा और प्रबुद्ध भी बनेगा। हर क्षेत्र में उसकी एक वैल्यू रहेगी, और वो जहां पर जो काम करेगा उसका इनर नॉलेज रहेगा।
1: जी सर, ये जो आप बात कह रहे हैं, ये बातें तो मॉन्टेसरी स्कूल में, जो प्राइमरी स्कूल में जब बच्चा आता है, उस समय ये सभी चीजें मीनिंगफुल रहता है और समझ सकते हैं कि ये बेसिक एजुकेशन जो हम उसको दे रहे हैं वो सिर्फ रट करके आगे बढ़ने की बात नहीं, लेकिन वो सेंसेस के द्वारा समझ के करने की बात है। लेकिन क्या जब बच्चा बड़ा होता है, जब 12वीं कक्षा तक पढ़ता है आपके स्कूल में, तब भी यही बिना किताबों का होता है, या फिर उस समय तो फिर आप, वो जर्नी कैसी है?
0: ये भी अगेन इट्स अ वेरी माइलस्टोन क्वेश्चन। देखिए, 3 से 6 साल का जो एजुकेशन है वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, इसमें चॉक्स भी नहीं है, बुक्स भी नहीं है, बोर्ड भी नहीं है, किताब भी नहीं है, फिर भी पढ़ाई है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वी प्रिपेयर अवर स्टूडेंट्स फॉर स्टैंडर्ड फर्स्ट। अब देखिए, जितने भी गवर्नमेंट के सिलेबस है वो फर्स्ट से चालू होते हैं। अब फर्स्ट से चालू होता है उसका फॉर्मल एजुकेशन। तो हम लोगों ने स्कूल में ऐसा सिस्टम बनाया कि सारे उनके अलग अलग ये बनाए कबर्ड्स, जहां पर उनका सारे बुक्स रखते हैं हम लोग। किताबें साल में एक बार स्कूल में लेकर आ जाते हैं, प्रॉपरली उनका नेम और उनका सारा किताब पर लिखा जाता है और एक जगह उनके रखे जाते हैं। डेली उनके पास में हम लोग सिर्फ 2 बुक्स देते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने ये भी बात बोली है कि आप बच्चों का स्कूल बैग का जो वेट
1: है
0: कम करिए, इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए दीदी, पिछले कई सालों में बच्चों को, अभी जो सीनियर बन रहे, सर्वाइकल के प्रॉब्लम आ रहे हैं, स्पॉन्डिलेसिस के प्रॉब्लम आ रहे हैं, जॉइंट्स के प्रॉब्लम आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस हैवी स्कूल बैग। अच्छा, गवर्नमेंट ने इसका GR भी निकाला है, लेकिन इम्प्लीमेंट कितने लोग करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम लोगों ने जेन्युइनली उसको इम्प्लीमेंट किया, स्कूल में सारे बुक्स रखे और एक ऐसा टाइम टेबल बनाया जिसमें लैंग्वेज भी हो, साइंस भी पढ़े, मैथ्स भी पढ़े, और हफ्ते में 2 दिन बुक्स घर पे जाए। पेरेंट्स को भी हम लोग फर्स्ट डे पेरेंट्स मीटिंग लेके अब समझाते हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका यह है। दूसरी बात, किसी विधि को जब आप क्लासरूम में समझाते हो तो वो विधि बच्चे भूल सकते हैं, लेकिन यही विधि जब वो करके देखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, अगर मैंने आपको चाय की विधि कैसे करना ये अगर थ्योरी में लिख कर दिया और वही आपको कहा कि चाय ऐसी बनती है, तो प्रैक्टिकल करने के बाद आप चाय बनाना कभी नहीं भूलेंगे।
1: जी
0: ठीक है। हमारे बच्चों को ये बात पता नहीं कि हम एक जमाने में हम लोग चूल्हे पे खाना पकाते थे।
1: जी
0: हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग में ये पढ़ाते हैं स्कूल में बच्चों को। दीदी, बच्चों को हमने सलाद कटिंग से लेके रॉ फूड क्या होता है, फिर त्योहारों के साथ में जैसे राखी आती है उसके साथ में हमारा क्या सिलेबस है, पोला आता है उसके साथ में क्या है, दिवाली है तो उसके साथ में क्या है, इसका पूरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मॉडल बनाया। लैंग्वेज में एक लेसन है जैसे बकरी की शादी, हिंदी का लेसन है। एक्चुअल उस दिन बकरी की शादी होती है स्कूल में।
1: अच्छा।
0: बच्चे लोग मस्त कपड़े पहन के आते हैं, मिठाइयां लाते हैं, शादी लगाते हैं, और उसके बाद सेकंड डे उस टॉपिक पर उनकी टेस्ट होती है, ओरल एंड रिटन।
1: ओके।
0: दीदी आप सुन के हैरान रहेंगे, बच्चे लोग इतने बढ़िया तरीके से लिखते हैं, इतना बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। ये वातावरण हमने स्कूल में बनाया। ये जानकर आप हैरान होंगे कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं अभी, और बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। असली शिक्षा जो चालू होती है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं जिसको थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है, वो होता है 7th स्टैंडर्ड। बस वहां से हम लोग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चालू, लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग वे हम लोग कभी नहीं छोड़ते, एक्सपीरियंस देके ही पढ़ाते।
1: तो फिर 7वीं कक्षा के बाद स्कूल में बुक्स लेके जाते हैं।
0: अभी हम लोगों का स्कूल जो है वो नर्सरी से चालू हुआ था, अभी हम लोग नेचुरली 6th स्टैंडर्ड तक पहुंच गए।
1: ओके।
0: अभी हर साल एक एक क्लास ऐड होती जाएगी।
1: आपने जो कहा कि वो 12वीं कक्षा तक आपका
0: परमिशन गवर्नमेंट की 12th तक आ गई है।
1: ओके।
0: लेकिन हमारे जो स्टूडेंट हैं नेचुरली एक एक क्लास
1: अपग्रेड करते जा रहे हैं।
0: जी।
1: ओके, वेरी नाइस, वंडरफुल सर। सो जिस तरीके से आपने ये शिक्षा पद्धति को इंट्रोड्यूस किया है, तो कहाँ से आपने ये आइडिया लिया कि हमें इस तरीके से पढ़ाना चाहिए? और जब आप एक कन्वेंशन स्कूल से एक अलग तरीके से हटके पढ़ाते हैं, तो फिर पेरेंट्स की सपोर्ट कैसे रही, समाज में आपके लिए सपोर्ट कितना मिला, और कहीं पे आपको कॉन्फ्लिक्ट्स या इस तरीके से सामना करना नहीं पड़ा?
0: नहीं, आप देखिए, आप किसी के बच्चे को जब आप इस तरह से पढ़ाते हैं, तो हमको समाज से इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला
1: जी।
0: और कुछ स्कूलों ने फिर हमको फॉलो करना भी चालू किया कि इस तरीके से अगर हम पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जहाँ तक सवाल है, पेरेंट्स का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि यस, इसी डायरेक्शन में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आपने एक सवाल मुझे पूछा कि भाई आपने ये कहाँ से किया, तो सबसे पहली बात तो यही है कि हम लोग सिर्फ रूटीन्स पर चलते हैं, या जिस तरीके से सारी बातें चल रही है उसी बातों पर हम लोग कदम रख के आगे बढ़ते हैं। हमने ऐसा नहीं किया, हम लोगों ने एक एक स्टैंडर्ड में R&D की हमारी खुद की, एक एक सब्जेक्ट की R&D की, ये टॉपिक बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग वे में कैसे पढ़ाना चाहिए, तो इसके लिए हमने कुछ बातें की, वो मैं बताना चाहता हूँ।
1: जी जी जरूर।
0: वो बात में सबसे पहली नंबर की बात है कि हम लोगों ने एक थिंक टैंक का कल्चर इंट्रोड्यूस किया टीचर्स के लिए, और एक स्कूल में हमारा एक जर्नल रखा है जिसमें डेली टीचर को एक क्रिएटिव आइडिया नोट डाउन करना सब्जेक्ट को लेके। अब उसका असर यह हुआ कि 250 डेज में 250 आइडियाज आ गए हमारे पास
1: जी।
0: दूसरा, एवरी टीचर को साल में 2 एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज उनकी सब्जेक्ट की कंपलसरी बनाना हमारे स्कूल में मैंडेटरी है, और वो उन्होंने अपना रिसर्च करके सबमिट करना है विद थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, वो आना चालू हो गई। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो मॉड्यूल है स्कूल का, वो हर साल अपग्रेड होता गया, और हर साल नई नई एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज आती गई सब्जेक्ट्स को लेके, और नया नया आते गया, और इससे हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से प्रॉपरली डिजाइन।
1: मतलब अगर आप CBSE बोर्ड को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन उसी सिलेबस को कैसे आप एक्सपीरियंशियल तरीके से बना सकते हैं, बच्चों को प्रैक्टिकली समझ में आए, घर जाने के बाद उनको होमवर्क के बोझ से फिर वो पढ़ाई के प्रति जो रुचि है या रुझान है उसमें कमजोरी ना कम ना हो, उसके ऊपर आपने ये बहुत अच्छा ध्यान रखा है। जब आप एजुकेशन फील्ड में हैं, और आज के समय में भारत में देखा जाए तो एजुकेशन एक बिजनेस बन गया है, तो इस चीज का बैलेंस कैसे करते हैं आप?
0: ये देखिए, संसाधन करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। बीच में कोरोना भी आ गया था, और उस वक्त लोगों के पास में पैसे नहीं थे, तो सबसे पहले स्कूल किसने ओपन करना चाहिए और किसने नहीं ओपन करना चाहिए, ये सवाल आना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है, शिक्षा ये व्यवसाय हो ही नहीं सकता, ये वो पवित्र काम है विद्यादान का। ऐसा माना गया है कि 3 जो क्षेत्र है वो स्वयं परमात्मा ने बनाए, जिसमें पहला है डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को एंजल्स ऑफ गॉड कहा गया है, कि जब किसी पेशेंट को बीमारी आती है तो बोलते कि अब
1: भगवान,
0: तो आप भगवान, आप ही हो सब कुछ। दूसरा, जुडिशियरी। जब कोई न्यायाधीश के कुर्सी पे बैठ जाता है तो उनको भी हम भगवान के रूप में देखते हैं, क्योंकि पहले उनके आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी कि भाई न्याय देवता है, वो भी जो प्रोफेशन है वो गॉड्स का प्रोफेशन है, और तीसरा शिक्षा का, क्योंकि एक पीढ़ी को अगर गलत दिशा में पढ़ाया जाए, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं मैं कि
1: जी।
0: अगर आप टू व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हो और गाड़ी चलाने वाले में फॉल्ट है तो 2-3 लोगों की जान जा सकती है। अगर आप 4-व्हीलर चला रहे हो और उसको अच्छे से 4-व्हीलर नहीं चला रहे तो 4-5 लोगों की लाइफ खतरे में है। अगर आप हवाई जहाज चला रहे हो तो 300 लोगों की जान खतरे में है। और अगर आप एक टीचर हो, और वो भी अगर आपके भीतर वो टीचर को पढ़ाने की अगर खूबियां नहीं है और बच्चों को अपने रॉन्ग वे में पढ़ाया तो पीढ़ियों का नुकसान हो सकता है, पीढ़ियों का,
1: देश का भविष्य भी है।
0: इसीलिए अब्दुल कलाम जी ने उनकी किताब में लिखी ये बात, सिर्फ और सिर्फ उच्च जिनके भीतर प्रतिभा है ऐसे ही व्यक्तियों ने टीचर बनना चाहिए। और दूसरे वे में अगर ये बात मैं आपको कहूं, सिर्फ और सिर्फ अच्छे विचारधारा, उच्च मानसिकता और आध्यात्मिकता के, जिन्होंने अपने जीवन का मूल्य आध्यात्मिकता के ऊपर पूरी विचारधाराएं बनाई, ऐसे लोगों ने स्कूल का निर्माण करना चाहिए। स्कूल ये व्यवसाय हो ही नहीं सकता। और ऐसे स्कूलों से जो बच्चे बाहर निकलते वो आप देखेंगे कि वो भविष्य खतरे में है। वो बच्चों को सिर्फ यांत्रिक की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वो अंदर से नर्चर्ड नहीं है। इसलिए शिक्षा का पूर्ण आधार जो है वो विद्यालय होता है, और विद्यालय जो होना चाहिए वो आत्म संशोधन का केंद्र बिंदु होना चाहिए, जहां पर अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग बच्चों को तैयार करना चाहिए, और एक शिक्षक पूर्ण रूपे न वहां पर समर्पित भाव से, ना कि सैलरी के लिए, ना कि धन के लिए, समर्पित भाव से। और ऐसे चीजों पर हमने बहुत काम किया। मैंने खुद अभी तक हजारों वर्कशॉप की टीचर्स पर
1: जी।
0: अगर मैं सिर्फ टीचर्स ट्रेनिंग पे बात करूं तो मैं पूरा दिन बात कर सकता हूं। एक अध्यापक कैसे होना चाहिए, एक टीचर कैसे होना चाहिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए
1: जी।
0: तो मेरा ऐसा मानना है इसमें संतुलन होना चाहिए। जितना आपको लगता है उतना फीस लीजिए, जितना खर्चा उतना खर्चा कीजिए, आपके टीचर्स को भी अच्छे से तनख्वाह दीजिए और बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाइए।
1: बहुत सुंदर सर। तो अभी हम कार्यक्रम की अंत की ओर पहुंचे हैं। हम एक छोटा सा गेम खेलना चाहते हैं आपके साथ, एक रैपिड राउंड, जहां पे जो एक शब्द के सवाल है उसका भी हम एक शब्द या फिर एक वाक्य में आप उस चीज का जवाब दें। सेवा क्या है?
0: समर्पण, आत्मसमर्पण, पूर्ण रूपेण
1: जी। भारत क्या है?
0: संस्कृति
1: जी। बहुत सुंदर। शिक्षा क्या है?
0: शिक्षा की परिभाषा मैं एक लाइन में बताना चाहता हूँ
1: जी।
0: एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन।
1: वंडरफुल, बहुत सुंदर। पेरेंट्स का रोल क्या है?
0: गाइड। एक पेरेंट अपने बच्चों को अगर गाइड करते रहेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक गंतव्य तक पहुंच जाएगा
1: जी।
0: डोंट इंटरफेयर इन देयर लाइफ
1: जी। विद्यालय
0: आत्म संशोधन का केंद्र। हु एम आई, मैं कौन हूं
1: जी। बहुत सुंदर। समीर शिंदे जी कौन है?
0: आई बिलीव ऑन क्रिएटिविटी।
1: ओके।
0: क्रिएटिविटी का मतलब है टू क्रिएट एक्टिविटी
1: जी।
0: आई ऑलवेज क्रिएट समथिंग फॉर द सोसाइटी, इन वन लाइन।
1: बहुत सुंदर सर। आपकी इतनी जीवन की उपलब्धियां और इतनी व्यस्ततम समय से आपने बहुत अमूल्य समय लेकर के आज यहाँ पर आए हैं। आध्यात्मिकता से जुड़ने का आपने एक प्रयास किया है, तो शिक्षा का, अध्यात्म का, विद्यालय का क्या कनेक्शन है?
0: बहुत बड़ा गहरा कनेक्शन है। शिक्षा, अध्यात्म और विद्यालय, तो ये ट्रायंगल आपने बनाया। दूसरा ट्रायंगल हमने भी बनाया, टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट।
1: जी।
0: तो शिक्षा का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा
1: जी।
0: जितनी बार उसको पढ़ाएंगे उतनी बार उसके जीवन का अंधकार नष्ट होगा। अध्यात्म का मतलब है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है
1: जी।
0: और विद्यालय का रोल जो है इन सब बातों का संतुलन बनाए रखना। ये तीनों बिंदु अगर आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो ये कनेक्टिंग डॉट बन सकता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जी को बनाया, वैसे ही जैसे अब्दुल कलाम जी ने उनके नारायण मूर्ति जो शिक्षक थे चौथी कक्षा में, जैसे एक राष्ट्रपति को बनाया, वैसे हर स्कूल से एक देश का राष्ट्रपति निकल सकता है, एक देश का पंत प्रधान निकल सकता है, एक देश का सरपंच निकल सकता है और एक देश का समाज सेवक निकल सकता है। तो तीनों के केंद्र बिंदु, उसके जीवन में समन्वय संतुलन अगर साधना हो तो ये कनेक्टिंग डॉट करना ही होगा। और इसमें सबसे ज्यादा आज के दौर में दो चीजें बताना चाहूंगा मैं, बच्चे का स्पिरिचुअल क्वोशंट पावरफुल होना चाहिए और बच्चे का इमोशनल क्वोशंट पावरफुल होना चाहिए, बाकी चीजें ऑटोमेटिक आ जाए।
1: बहुत सुंदर सर। व्यक्तिगत रूप से आप अपने आप को आध्यात्मिकता से कैसे जोड़ते हैं?
0: हमारे भारत में विदेश से लोग आते हैं अध्यात्म सीखने के लिए।
1: सही बात है।
0: और आज ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हमने हमारे देश की संस्कृति को और अध्यात्म कैसे पकड़ के रखना चाहिए। उन लोगों ने हमारे यहाँ पर अगर पीएचडी की और हुएमाय को भी देखा, आत्म साक्षात्कार भी किया। मैंने अपने आप को ये सब करते वक्त एक ही चीज देखी कि जब हम किसी के सामने आते हैं तो हमारा ओरा बात करता है, ना कि आपकी जब मुख से आप बात करते हैं। और आपका ओरा तब बनता है जब आप गहरी ध्यान में डुबकी लगाकर बाहर आते हो, और वो गहरा ध्यान तब लग सकता है जब आप ईश्वर के साथ में कनेक्शन बनाते हैं। क्योंकि परापश्यंती मध्यमा और वैखिरी वाणी के चार प्रकार जो है, जिसमें परावाणी ईश्वर की वाणी बोली गई। परावाणी में इंसान का शब्द नहीं चलता है, वैखिरी से कंठ से वो बात करता है, लेकिन परा की जो वाणी है वो ईश्वर की है। तो परावाणी प्राप्त करना है आपको, ईश्वर के साथ में कनेक्शन बना के रखना पड़ेगा। तो ऐसा कहा गया है कि पावर ऑफ एसोसिएशन, आप जैसा एसोसिएशन करेंगे वैसे आप बनते जाते हो। अगर आप निरंतर ईश्वर के साथ सानिध्य बना के रखते हो तो धीरे धीरे धीरे वो ईश्वर तुमको समहाउ किसी ना किसी से मिलाते रहेगा, किसी ना किसी से ज्ञान देता रहेगा, और कभी कभी वो डायरेक्टली आपसे बात भी करेगा। वो जो बात करता है वो वाइब्रेशन से बात करता है, और उसकी अनुभूति मैंने ली है। और शिक्षा में मैंने जो भी आज काम किए हैं वो किसी कॉपी नहीं की है, परमात्मा ने मुझे जो भी उसके बारे में ज्ञान देते थे वैसा वैसा मैं करते गया। तो इन शॉर्ट, विदाउट स्पिरिचुअलिटी आप कुछ भी नहीं कर सकते, ईश्वर से संबंध बना के रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट।
1: बहुत सुंदर सर। इसी मैसेज के साथ आज के इस कार्यक्रम को भी हम यहाँ पे विराम करते हैं। आप इतने बहुमूल्य समय लेकर के हमारे बीच में आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू।
1: थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे समीर शिंदे जी को। आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, बिजनेसमैन भी हैं और यूनिवर्सल पीस एम्बेसडर भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे उपलब्धियों के धनी समीर शिंदे जी को आपने अभी तक सुना है। तो ऐसे ही अनुभवों को आप सुनते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे रेडियो मधुबन 107.8।

0: सरिता, मैंने कहा ना एक बार, तुम दोनों हमारे साथ चल रहे हो, बस बात खत्म।
1: हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो। यहाँ अब ना कोई सहारा है ना कोई सिक्योरिटी। एक तो जमाना ऐसा है, ये रोज अखबार में क्या क्या सुनते हैं।
0: और नहीं तो क्या, अभी पति गया है और ये अकेली औरत शहर में, उधर गांव के लोग क्या कह रहे हैं बात मत पूछो।
2: दीदी, रोहन का कॉल आया है, आपसे अभी बात करनी है उसे।
3: अच्छा। हाँ रोहन बेटा, सब ठीक है?
4: दीदी, मामा और दादी घर पे सारा सामान पैक कर रहे हैं।
3: क्या, ऐसा क्यों?
4: वो कह रहे हैं कि अब पापा ही नहीं रहे तो हम उनके बिना अकेले यहाँ कैसे रहेंगे, इसीलिए दादी के साथ गांव जा रहे हैं। मेरा एडमिशन भी गांव के स्कूल में ही करवा रहे हैं।
3: अरे, हम है ना आपके साथ।
4: हाँ, लेकिन दादी तो मानती ही नहीं है और मम्मी भी कुछ नहीं बोल रही हैं।
3: ठीक है रोहन, तू चिंता मत कर, मैं अभी आ रही हूँ।

0: पर अभी ऐसे अचानक सब कुछ छोड़कर
1: छोड़ना ही पड़ेगा। ना आदमी रहा ना सहारा, अब यहाँ किसके सहारे रुकेंगे? गाँव चलो, घर किराए पे दे देंगे, दुकान भी आगे चल के बेचेंगे।
2: हाँ वहाँ सब जान पहचान वाले हैं और रोहन का भी देखभाल अच्छे से हो जाएगा।
1: सरिता जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
3: ओम शांति। किस बात की तैयारी चल रही है
1: बहन जी? अब ये दोनों यहाँ नहीं रहेंगे, हम इन्हें अपने साथ लेके जा रहे हैं। अब बहू अकेली क्या करेगी यहाँ?
3: अकेली क्यों, भगवान है ना साथ में।
1: हाँ हाँ, भगवान साथ होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज के जमाने में घर का राशन पानी, रोहन का पढ़ाई का खर्चा, ये सब अकेली कैसे संभल पाएगी? ये
3: इसका मतलब आप भगवान से अभी भी नाराज हैं? लेकिन विश्वास रखिए, परमात्मा की याद में ही जीवन के हर समस्या का समाधान है।
1: हाँ तो बोल दो आपके भगवान को, ला दे मेरे बेटे को वापस।
3: माता जी शांत हो जाइए, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। जो चला गया उन्हें तो अब हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन समस्या से भागकर उसका हल भी तो नहीं मिलता ना।
2: हम कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहते, साथ में रहेंगे तो हमें भी चिंता नहीं रहेगी।
1: यहाँ ये अकेली एक औरत मतलब कर भी क्या सकती है?
2: हम गांव चले जाएंगे और दुकान किराए पे दे देंगे, इससे इनका भी खर्चा निकल आएगा।
3: आपका कहना है कि क्या सिर्फ पुरुष ही सहारा है? आज के समय में महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे हैं, अपना जॉब भी कर रही है, घर भी संभाल रही है।
4: वही तो, मेरे फ्रेंड की मम्मी भी तो दुकान चलाती हैं।
2: लेकिन सरिता को तो इतना अनुभव नहीं है ना।
3: जब जिम्मेवारियां आती है तो इंसान खुद ही सब कुछ सीख जाता है, और सरिता जी तो फिर भी पढ़ी लिखी है, वो गांव में जाकर करेगी भी क्या, यहाँ रहेगी तो अपना साड़ी का दुकान चलाएगी।
1: हाँ बात तो आपकी सही है, हम भी भला कब तक साथ दे पाएंगे, लेकिन ये हिम्मत रखे तब ना।
3: क्या आपने महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की जीवन कहानी सुनी है?
4: जो हमारे प्रेसिडेंट है उनकी कहानी?
3: हाँ उनकी जीवन कहानी।
2: हाँ मैंने न्यूज में देखा था, वो उड़ीसा के एक छोटे से गांव की आदिवासी समाज की साधारण सी महिला हैं, लेकिन आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं।
3: हाँ सिर्फ इतना ही नहीं, वो आज जिस पद पर है वहाँ वो ऐसे ही नहीं पहुँचे हैं, उनका जीवन भी बहुत संघर्ष वाला रहा है। उन्होंने भी जैसे अपना सब कुछ खो दिया था, पहले अपने दो जवान बेटे और फिर अपना पति, क्या गुजरी होंगी उनके ऊपर। लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और आज वो हमारे देश के सबसे बड़े पद को संभाल रहे हैं। तो एक घर परिवार संभालना क्या बड़ी बात है।
1: आपकी बातें सब ठीक है, लेकिन इसमें उतनी हिम्मत होनी चाहिए।
5: हाँ दीदी, मेरे अंदर अब बात ही नहीं रही।
3: हाँ जी बिल्कुल, उनका भी कुछ ऐसा हुआ था, वो भी अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। लेकिन उन्होंने कई बार अपने अनुभव में सुनाया है कैसे परमात्मा से योग लगाकर उन्होंने खुद को अबला से सबला, शक्ति से शिव शक्ति संपन्न बनाया।
4: क्या ये राजयोग मैं और मम्मी भी सीख सकते हैं? पापा भी तो यही चाहते थे ना।
3: जी जी क्यों नहीं, ये तो हर किसी को सीखना चाहिए। राजयोग माना ईश्वर से अपना मन और बुद्धि को जोड़ना, जिससे जीवन के हर कठिन परिस्थिति में फिर से खड़ा होने के लिए शक्ति मिलती है।
5: दीदी हम जरूर सीखेंगे उसे, मैं भी अब हार नहीं मानूंगी। वैसे भी रोहन के पापा के साथ कई बार दुकान जाती थी, अब मैं भी धीरे धीरे सब संभाल लूंगी।
1: लेकिन लोग क्या कहेंगे, अभी अभी पति मरा है और ये औरत दुकान चला रही है।
3: ऐसा क्यों, स्त्री हो या पुरुष, ये शरीर तो सिर्फ वस्त्र मात्र है, हम तो सब एक शक्ति स्वरूप आत्माएं हैं और पिता परमात्मा हमारे साथ है, तो डरने की क्या बात है।
5: हाँ जी दीदी मैं समझ गई, अब मैं डर कर नहीं हिम्मत के साथ जीऊंगी, दुकान संभालूंगी और रोहन को यही पढ़ाऊंगी।
1: क्या आप गारंटी लेती है कि ये अकेली सब कर लेंगे?
3: सिर्फ मेरी गारंटी नहीं माता जी, स्वयं भगवान की गारंटी है, जिसके साथ ही है भगवान उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान।
4: ये हुई ना बात, दीदी आपने तो सबकी सोच ही बदल दी।
2: दीदी अब बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन हमारे गांव में ऐसा कोई सेंटर ही नहीं है। क्या आप वहां पे आकर के ये बातें सिखा सकते हैं क्या? बहुतों की सोच बदल जाएगी।
3: क्यों नहीं, आपके गांव में भी हम 7 दिन का राजयोग कोर्स शुरू करेंगे। हमारी सोच बदलती है तभी तो हमारी जिंदगी बदल जाती है।
2: मैं जाकर सब तैयारी करता हूँ। पहले सिर्फ सरिता के लिए सोचता था, अब समझ गया पूरा गांव बदल सकता है।
1: बहन जी, आपका कैसे शुक्रिया करे समझ नहीं आ रहा है। न कोई रिश्ता, न कोई नाता, न कोई स्वार्थ, फिर भी आपने इतना प्यार से समझाया। अब तो मैंने भी ठान लिया है, अब कुछ दिन यही रहूंगी और आपसे ये राजयोग सीख कर ही गाँव जाऊंगी।
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी कुछ दिन आपका साथ मिलेगा।
6: आज की नारी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं निभा रही, वो अपने जीवन की दिशा भी खुद तय कर रही है। लेकिन याद रखिए, नारी या पुरुष होना सिर्फ शरीर रूपी वेश है। हम सभी पहले आत्मा हैं, न कि सिर्फ शरीर। आत्मा जो शक्तिशाली है, अजर है, अमर है। आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, और ये आत्मा उस परमात्मा की संतान है जो स्वयं शक्तियों का सागर है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तब हम इस आत्मबल को फिर से जागृत कर सकते हैं। यही आत्मबल आज की हर स्त्री को सीमाओं से ऊपर उठने की ताकत देता है। यही राजयोग है। राजयोग कोई कर्मकांड नहीं, ये एक आत्मा परमात्मा मिलन की शुद्ध अनुभूति है। ये एक जीवन जीने की सच्ची कला है।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। और बड़ा अच्छा लग रहा है आज आप सभी से रूबरू होते हुए, क्योंकि आज हम लोग विशेष खास गेस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर शालिनी जी, जिनसे आप लोग रूबरू हो रहे हैं। तो इनसे हम लोग बात करेंगे कि ये ग्लूकोमा है क्या, इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम लोग सुनने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर शालिनी जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर शालिनी जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, थैंक यू।
0: जी, स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। और जिस विषय को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं, हमारे साथ सुभाष जी सोनावने जुड़ गए हैं, उन्होंने वेलकम लिखा है। और वुमेन्स डे एंड सभी को, माता बहनों को बधाई, गुड विशेष करके भी मैसेज किया है, थैंक यू सो मच। और आपको भी याद किया है उन्होंने, और मानसी जी भी याद किया है, ओम शांति लिख के भेजा है। मानसी जी, सुधा जी और सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और मैं चाहूंगा कि आज हम लोग एक खास पर्टिकुलर विषय को लेकर बात करेंगे, जिसका नाम है ग्लूकोमा। तो ये आंखों के लिए खास है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर शालिनी जी, मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, कि ये ग्लूकोमा है क्या, इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए।
1: ग्लॉकोमा एक्चुअली एक प्रकार की आंखों की बीमारी है जिसमें आंखों का प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसी तरह आंखों का प्रेशर भी बढ़ता है। और आंखों के प्रेशर बढ़ जाने से आंखों के नसों को नुकसान होने लगता है, नसें सूखने लगती है, और उसकी वजह से हमारी जो रोशनी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। शुरुआत में तो पेशेंट को बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन एडवांस स्टेज में काफी विजन लॉस हो चुका होता है तब पेशेंट को पता चलता है कि मुझे रोशनी कम हो गई है। इसको ही हम ग्लॉकोमा बोलते हैं,
0: जी
1: आंखों
0: जी
1: के प्रेशर बढ़ने से रोशनी की कमी होना।
0: जी डॉक्टर शालिनी जी, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा वर्तमान आपका सिनारो के बारे में बताइए।
1: मैं अभी ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू यहाँ तलहटी में एज अ कंसल्टेंट एंड कंसल्टेंट ऑप्थल्मोलॉजिस्ट एंड ग्लॉकोमा स्पेशलिस्ट सेवाएं दे रही हूँ लास्ट 2.5 इयर्स से।
0: जी जी
1: और
0: जी
1: जी यहाँ पे काफी पेशेंट्स हैं ग्लॉकोमा के। इस राजस्थान के इस जोन में ग्लॉकोमा स्पेशलिस्ट कोई है भी नहीं, तो मेरे पास पेशेंट्स काफी रेफर होकर आते हैं।
0: बिल्कुल
1: बहुत अच्छी सेवाएं हो रही हैं यहाँ अपने हॉस्पिटल में।
0: जी। तो आइए, मैं चाहूंगा कि इसका जो अभी पेशेंट्स तो काफी है आपने बताया, और खास इसके कमी के कारण रोशनी की कमी हो जाती है, और तो ऐसे में हम लोग कैसे ट्रीटमेंट शुरू करें, हमें कैसे पता चले कि ग्लूकोमा का ये प्रॉब्लम है, शुरू शुरू में जल्दी से हमें पता चल जाए, ऐसा क्या हो सकता है?
1: एक्चुअली ग्लॉकोमा को साइलेंट किलर ऑफ विजन या साइलेंट थीफ ऑफ विजन कहते हैं, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता कि पेशेंट की रोशनी कब कम हो गई। धीरे धीरे सिम्टम्स नहीं होने के कारण पेशेंट को महसूस नहीं होता। तो हर वो इंसान जो 40 इयर्स अबव हो उनको साल में एक बार जरूर आई चेकअप कराना चाहिए, कंप्लीट चेकअप कराना चाहिए, जिसमें आंखों का प्रेशर आता है, टोनोमेट्री आती है, फंडस एग्जामिनेशन, गोनियोस्कोपी, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, सारे एग्जामिनेशन इंक्लूडेड हैं उसमें, वो जरूर कराना चाहिए। उसके बाद अगर डॉक्टर को लगता है कि आपको फर्दर इवेल्युएशन की जरूरत है तो कुछ और इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं ये मालूम करने के लिए कि उनको ग्लॉकोमा है या नहीं, और फिर जैसा ट्रीटमेंट, जैसा एडवाइस डॉक्टर देते हैं उसको फॉलो करना होता है।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ग्लूकोमा एक्चुअली में साइलेंस किलर भी कहा जाता है, इसका पता जो है बहुत जल्दी स्टेज पे नहीं मालूम पड़ता, तो थोड़ी देर के बाद ही पता चल जाता है, और जब पता चल जाता है तो इलाज संभव है। तो अब इसका जो ट्रीटमेंट है, जैसे किसी को मालूम पड़ गया कि भाई यहाँ इनका ग्लूकोमा का प्रॉब्लम है, तो इसके वजह से कम दिखाई देता है, तो कैसे ट्रीटमेंट चलता है, लंबा चलता है या तुरंत हो जाता है, या कुछ ऑपरेशन से भी ठीक हो जाता है, कैसे?
1: एक्चुअली प्राइमरी ट्रीटमेंट तो मेडिकेशन से ही है, आई ड्रॉप्स है शुरुआत में। अगर ड्रॉप से प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम सर्जरी की तरफ सोचते हैं, और सर्जरी भी इसकी काफी अवॉर्डिंग है, रिजल्ट अच्छे हैं सर्जरी की, काफी एडवांस सर्जरी भी है। तो ट्रीटमेंट एक्चुअली इसकी ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलती है, ये इम्पोर्टेंट है जानना लोगों को। ऐसा नहीं
0: अच्छा
1: कि
0: अच्छा
1: आज हम, हाँ जी, ये क्योरेबल नहीं है कम्प्लीटली, ये ट्रीटेबल है। मतलब हम जब तक ट्रीट कर रहे हैं, मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तब तक ये हमारे कंट्रोल में रहेगा। अगर हमने दवाइयां कर दी तो फिर वो बीमारी बढ़ जाती है, तो हमें
0: जी
1: लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। इसकी।
0: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर शालिनी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि इसका जो है पूरी तरह से इलाज नहीं है, बाकी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और लाइफ टाइम के लिए आपको जो है ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे आपको एक बार पता चल जाता है तो डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करके रहे तो उसका ट्रीटमेंट होता रहेगा और आप अच्छी तरह से उसका लाभ भी ले सकते हैं। अच्छा, ये बीमारी हो नहीं, इसके लिए हमें क्या कुछ डाइट प्लान या फिर कुछ प्रिकॉशन कैसे कर सकते हैं?
1: एक्चुअली पहले तो ये अवेयर होना जरूरी है कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं ग्लॉकोमा के। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अबव 40 इयर्स बहुत वल्नरेबल एज होता है, इसके बाद ग्लॉकोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जिनको पुरानी कोई आंखों में चोट लगी हो वो काफी वल्नरेबल होते हैं, किनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, माना उनके फैमिली में किसी को ग्लॉकोमा हो रखा है, जैसे फादर मदर ब्रदर सिस्टर किसी को भी, तो उनको आई चेकअप जरूर कराना चाहिए साल में एक बार। जिन्होंने लंबे समय तक स्टीरॉइड्स लिया हो किसी न किसी फॉर्म में, लाइक इनहेलर्स के फॉर्म में या टैबलेट्स के फॉर्म में, इवन एलर्जी के लिए हम स्किन ऑइंटमेंट यूज करते हैं उसके फॉर्म में भी वो हमारा आंखों का प्रेशर बढ़ा सकता है। तो ये सारी चीजें अगर कोई भी इनमें से एक कारण है तो वो जरूर डॉक्टर से एक बार सलाह ले।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए डॉक्टर शालिनी जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत विजय लक्ष्मी जी लेकर आ रही हैं वो सुनते हैं, उसके बाद फिर आपसे बातें करते हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक मित्र जो हमें सुन रहे हैं उनमें से इस हाई के लिए या आंखों के लिए कोई भी सवाल आपको हो तो जरूर आप पूछ सकते हैं, डॉक्टर शालिनी जी आपको पूरी जानकारी देगी। और मैं चाहूंगा कि आप अपने सवाल कमेंट सेशन में जरूर पुट अप करें। मानसी जी हैं, सुधा जी हैं, सुभाष जी हैं, आप सभी ने मैसेज किया, तो आपका आंखों से रिलेटेड कोई सवाल हो तो वो भी पुट अप करिए तो हम लोग डॉक्टर शालिनी जी से उस पर बातचीत करेंगे। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत लेकर आ रही हूँ विजय लक्ष्मी जी।

0: थैंक यू विजयलक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए, कुछ सवाल आए हैं और मानसी जी लिखते हैं, व्हाट इज ग्लूकोमा, और इसके बाद शिवाज जी ने याद किया है, वेरी नाइस दीदी, शुक्रिया। डॉक्टर शैलन जी, ग्लूकोमा के बारे में बताइए।
1: जी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ग्लॉकोमा सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आंखों के प्रेशर को बढ़ने को कहेंगे, जिसे काफी नुकसान होता है, आंखें की
0: बिल्कुल
1: रोशनी जा भी सकती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मानसी जी, जिससे जो है आंखों की रोशनी कम हो जाती है और ये पता नहीं चलता, साइलेंट किलर है, तो ये डॉक्टर साहिबान ने थोड़ी देर पहले बताया था, तो आपको फिर से बता दिया है। तो अब इसका जैसे ट्रीटमेंट की आपने बात कही कि एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, लेकिन पूरा इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट चलता रहता है, तो यहाँ आबू रोड में कितने लोगों का इसमें ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको स्पेसिफाई जिनको रिजल्ट अच्छे मिले हैं, थोड़ा सा दो चार लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: जी
1: आबू रोड में मैं आपको बहुत खुशी हो रही है मुझे बताने में कि आबू रोड के साथ साथ काफी दूर से पेशेंट यहाँ आकर लाभ ले रहे हैं और दूसरे आई हॉस्पिटल से पेशेंट रेफर भी हो रहे हैं जिनके वहाँ पे इलाज की कोशिश की गई लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो यहाँ रेफर किया गया, ऐसे पेशेंट्स भी आ रहे हैं। उसमें से काफी एक एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी। एडवांस ट्रीटमेंट की जब बात आती है तो एक साल पहले एक बच्चा आया था, 7 साल उम्र थी उसकी और उसकी दोनों आंखों कंजेनाइटल ग्लॉकोमा जैसी बीमारी से ग्रसित था वो और दोनों आंखों की विजन ग्लॉकोमा की वजह से बहुत कम थी, बिल्कुल नजदीक का भी उसे देखना मुश्किल था। तो और वो ऐसे कम्युनिटी को बिलोंग करता था कि वो ये महंगी ट्रीटमेंट अफोर्ड भी नहीं कर सकता था क्योंकि ये एडवांस सर्जरी थोड़ी महंगी होती है, जिसको हम ट्यूब शंट ग्लॉकोमा ड्रेनेज डिवाइस बोलते हैं, उसका वो प्लान था करने का, अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन लोगों ने मदद की, हमारे हॉस्पिटल ने भी, उसे काफी कम रेट में उसकी सर्जरी हुई और उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। सर्जरी मैंने ही की थी, कुछ दिनों तक उसका प्रेशर बढ़ा था, वो सर्जरी का टाइम लगता है पोस्ट ऑप पीरियड में, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी प्रेशर बहुत कंट्रोल हो गई और जो उसकी विजन थी जो कि सूजन की वजह से कम थी वो काफी ठीक हो गई। और कुछ दिनों के बाद उसके जो रिलेटिव्स थे और जिन्होंने उनको मदद किया था बच्चे की फैमिली को फाइनेंशियली, वो आकर बता रहे थे कि बच्चे की पढ़ाई हो रही है, स्कूल जा रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है वो। तो एक ये सक्सेसफुल ट्रीटमेंट का मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी।
0: बिल्कुल
1: दूसरा
0: बिल्कुल
1: एक एग्जाम्पल है, एक 45 ईयर ओल्ड लेडी थी जिनकी पहले से ग्लॉकोमा सर्जरी हो रखी थी और प्रेशर काफी कम उसके आंखों का, प्रेशर सर्जरी की वजह से ओवर फिल्ट्रेशन कहते हैं वो, उसकी वजह से बहुत कम थी प्रेशर और कैटरैक्ट हो रखा था। आसपास के सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था सर्जरी के लिए, कैटरैक्ट सर्जरी के लिए, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड केस था वो, कैटरैक्ट सर्जरी भी कॉम्प्लिकेटेड, पीछे जो पर्दा बोलते हैं रेटिना बोलते हैं उसके भी इन्वॉल्वमेंट का शक था। तो वो पेशेंट काफी उम्मीद से, उसको मेरे किसी और पेशेंट ने रेफर किया था कि वहां आप जाओ, तो वो काफी उम्मीद से आया था कॉम्प्लिकेटेड केस, लेकिन मैंने उसे सारे रिस्क समझाकर वो केस टेकअप
0: जी,
1: किया था।
0: अरे वाह,
1: और उसका सर्जरी का रिजल्ट जानकर आपको इतनी खुशी होगी, अगले दिन ही उसके विजन बहुत अच्छे आए और खुश होके उसके परिवार वालों ने पूरे हॉस्पिटल को पार्टी दी। और
0: क्या बात,
1: धीरे धीरे सर्जरी का ऐसा मैंने मोड अपनाया था, ऐसा तरीका अपनाया था ताकि वो जो नॉर्मल से कम प्रेशर था वो भी थोड़ा बढ़ जाए, नॉर्मल रेंज में आ जाए,
0: बिल्कुल
1: तो वो भी उसका नॉर्मल के रेंज में आ गया प्रेशर। तो वो काफी खुश होकर पेशेंट गए और काफी पेशेंट्स वो लोग भेजते हैं हमारे हॉस्पिटल में।
0: अच्छा।
1: तो
0: सुधा
1: ये
0: भारती
1: तो
0: जी लिखते हैं कि इस ब्लड प्रेशर और डायबिटीज,
1: जी
0: उन्होंने लिखा है, क्या ग्लूकोमा का कमी ब्लड
1: उनके
0: प्रेशर की वजह
1: पूछने
0: से
1: का
0: ही है?
1: सेंस होगा, जी उनके पूछने का सेंस होगा कि अगर ब्लड शुगर और हाइपरटेंशन
0: डायबिटीज,
1: से बढ़ता है प्रेशर, या हाँ बिल्कुल, जो डायबिटिक है वो बहुत रिस्क फैक्टर है, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है ग्लॉकोमा के लिए, और जिनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा है उसमें भी हो सकता है आंखों
0: और
1: का
0: दूसरा
1: प्रेशर
0: ये है, इज इट रिलेटेड टू शुगर और ओनली स्ट्रेस, मानसी जी पूछ रहे, दोनों से
1: बहुत
0: रिलेटेड हो
1: बहुत
0: बोथ?
1: वैसे भी रिलेटेड है और स्ट्रेस से भी रिलेटेड है।
0: अच्छा, सुभाष जी लिखते हैं, आंखों से पानी आना, कभी कभी आंखों में खुजली आना, इसके लिए क्या इलाज है?
1: ये सिम्टम आपको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के हैं, आंखों में पानी आना, खुजली आना, तो इसके लिए नॉर्मल एक ड्रॉप देते हैं एंटी एलर्जी और टीयर सब्स्टिट्यूट देते हैं, उसके काफी अच्छे रिजल्ट होते हैं, वो नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप 40 हैं के अबव हैं तो एक बार प्रेशर जरूर चेक कराना है आंखों का।
0: बिल्कुल सुभाष जी, बहुत ही अच्छे सवाल पूछा, धन्यवाद, शुक्रिया। और इस ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज रिलेटेड टू ग्लूकोमा, यस भारती जी, दोनों से रिलेटेड है ये, ब्लड प्रेशर हाई भी है लो भी है या फिर आपका डायबिटीज है, तो इन सारी चीजों में जो है ग्लूकोमा का चांसेस ज्यादा है, तो उसका ट्रीटमेंट लेना या आंखों को दिखाते रहना नॉर्मल आपके लिए हमेशा कंसल्ट करते रहना जरूरी है। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग अभी, जैसे सुभाष जी ने सवाल पूछा है और देवेंद्र जी लिखते हैं, आंखों में खुजली आने के बाद नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, क्या मेडिसिन ले इसके लिए? डॉक्टर शालिनी बताइए इनको, देवेंद्र पांड्या ने लिखा है।
1: कंजक्टिवाइटिस, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस का सिम्टम है ये, एंटी एलर्जी ड्रॉप देते हैं। एक बार मैं देवेंद्र जी को इनवाइट करना चाहूंगी हमारे हॉस्पिटल, ऐसे हम बता नहीं सकते हैं आपको पूरे कंडीशन देखने के बाद, फिर बताएंगे कि वो किससे रिलेटेड है, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस से रिलेटेड है या कोई और प्रॉब्लम है, तो फिर हम ड्रॉप दवा दे सकते हैं।
0: देवेंद्र पांड्या जी, आपका सवाल वाजिब है और उसमें क्या होता है कि किस कारण से ये पता लगाना बहुत जरूरी है, तो जब तक पेशेंट सामने ना आ जाए और कितने समय से है वो और आपको क्या तकलीफ है, कुछ बीमारी है, थोड़ा हिस्ट्री लेना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉपरली जो है चीजें दे सकते हैं, ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ऐसे देखा जाए तो नॉर्मली आपको कोई आई ड्रॉप बता सकते हैं, लेकिन उससे मेन जो है आपको एक बार कंसल्ट करने से क्या होता है, ओवरऑल चीजें क्लियर हो जाती। ओम शांति दीदी, बहुत शानदार। अमित कुमार जी, अमित कुमार जी धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और मानसी जी, आप फिर से लिख रहा है, माई डैड वॉज लॉस्ट वन आई एंड ही इज एन dialysis, then what I take precautions?
1: डायबिटिक है वो, अगर डायलिसिस पे है तो मोस्ट प्रोबेबली वो डायबिटिक होंगे और डायबिटीज की वजह से उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी हुई होगी। तो अभी अगर वो डायबिटिक हैं तो ब्लड शुगर का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कंट्रोल रखने का, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी दोनों आंखों में होती है साइमल्टेनियसली। अगर एक आई लॉस्ट हो चुकी है तो दूसरी आई बहुत प्रेशियस हो जाती है, तो ब्लड शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रखने की जरूरत है अगर डायबिटिक है तो, और एक बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की राय जरूर ले ले, आकर दिखाए और कंप्लीट एग्जामिनेशन के बाद हम फिर और डिटेल एग्जामिनेशन के बाद ही बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा।
0: चलिए मानसी जी, आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, देवेंद्र जी ने ओके लिख के भेजा है। डॉक्टर शालिनी दीदी, आई एम सफरिंग फ्रॉम ड्राइनेस इन माय आईज, व्हाट शुड आई डू? जी जी,
1: उनको टियर सब्स्टिट्यूट्स रेगुलरली लेने की आवश्यकता है और बाहर जब भी निकले धूप में या गर्मी में तो डार्क गॉगल्स लगाकर निकले। जितने हो सके कोशिश करें कि आंखों को ल्यूब्रिकेंट मिलता रहे, मतलब अगर हम बहुत लंबे समय तक लैपटॉप पे या मोबाइल यूज कर रहे हैं तो हम टियर ड्रॉप्स डालते रहे, तो उससे हमें काफी फायदा होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मानसी जी ने धन्यवाद लिखा है। और चलिए आकाश जी, आपका मैसेज रिपीट हो रहा है तो आपको बता दिया, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर रेगुलर जो आई ड्रॉप्स होते हैं वो, अगर आप टीयर्स नाम का आई ड्रॉप है, TEARS, तो TEARS नाम का आई ड्रॉप आप यूज कर सकते हैं, इससे ड्राइनेस कम हो जाएगा और अच्छा भी। जी,
1: वो एक बार आप डॉक्टर की राय लेंगे तो आपको बता देंगे कौन सा लेना है।
0: हाँ, कौन सा लेना है और कितने टाइम आपको यूज करना है वो भी बता देंगे। देवेंद्र जी एक और सवाल लेके आए हैं, मैम एंटी एलर्जी मेडिसिन लेने से कंट्रोल हो जाता है?
1: हाँ हो जाता है, लेकिन आंखों की एलर्जी में टैबलेट का थोड़ा कम रोल है, ड्रॉप डायरेक्टली हम डालते हैं, टॉपिकल कहते हैं, तो उसका ज्यादा इफेक्ट है, अच्छा है। नहीं तो एंटी एलर्जी पूरा सिस्टमिक, माना टैबलेट लेने पे और शरीर पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है, तो वो हम नहीं चाहते हैं। केवल आंखों की एलर्जी के लिए आंखों की ड्रॉप, एंटी एलर्जिक ड्रॉप सफिशियंट होता है।
0: बिल्कुल, सविता जी ने लिखा, आज मुझे देर हो गई, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और इन्होंने लिखा है देवेंद्र, सेट्रिजिन टैबलेट
1: हमेशा लेने की जरूरत नहीं है, सेट्रिजिन टैबलेट जब बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही है तो हम एडवाइस करते हैं। हाँ, आंखों की एलर्जी के लिए रेगुलरली हम सेट्रिजिन टैबलेट एडवाइस करते हैं, ड्रॉप सफिशियंट होते हैं।
0: अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा। चलिए, हम लोग बहुत सारे लोग आजकल तो क्या हो गया कि ऑफिस और जो भी लोग ऑफिस में जाते हैं या
1: जी,
0: काम।
1: एक्चुअली वो हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो लोगों को ड्राइनेस की कंप्लेंट बहुत ज्यादा हो रही है। कोविड ने
0: बिल्कुल
1: हमें दो एक्स्ट्रा चीजें ज्यादा बढ़ाकर दे दी हैं आंखों के लिए, एक ड्राइनेस की कंप्लेंट, दूसरा स्टीरॉइड्स। जिनको कोविड हुआ उन्होंने स्टीरॉइड्स बहुत लंबे
0: ज्यादा
1: समय तक लिया जी, तो जो स्टीरॉयड रिस्पॉन्डर हैं तो हो सकता है कि उनकी आंखों का प्रेशर भी बढ़ा हो और ग्लॉकोमा भी हो सकता है, उनको चांस है होने की, तो उनको एक बार जरूर आई चेकअप करानी चाहिए।
0: डॉक्टर शालिन जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताया। और आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग सभी लोग जो है कहीं ना कहीं मोबाइल के टच स्क्रीन से या कंप्यूटर या लैपटॉप के टच स्क्रीन से कनेक्टेड रहते हैं, ज्यादा टाइम तक रह रहे हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन जरूर रखना है। टाइम टू टाइम जो है आके ब्लिंक करते रहना चाहिए और बीच बीच में एक इंटरवल में पानी ज्यादा पीना चाहिए। अच्छा, सविता जी लिखते हैं, आइस में खुजली बहुत होती है, क्या करें? ये सभी का प्रॉब्लम है और इसके बारे
1: सभी
0: में अभी डॉक्टर
1: को
0: साहब
1: एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स लेने
0: जी।
1: की जरूरत है, बट मैं सभी को ये बताना चाहूंगी कि खुद से कोई ड्रॉप ना ले, ना ही किसी फार्मेसी पे जाकर किसी ने सजेस्ट कर दिया है कि ये ड्रॉप ले लो तो ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल ना करें। जो भी ड्रॉप लेना है आप प्लीज अपने डॉक्टर की राय लेकर ही लें, क्योंकि ज्यादातर लोग जल्दी ठीक हो जाए इसके कारण माइल्ड स्टीरॉइड्स दे देते हैं, और वो माइल्ड स्टीरॉइड्स एक्शन तो बहुत अच्छा करती है लेकिन अगर लंबे समय तक हमने उसको यूज किया है, रेगुलरली यूज किया है, तो अगेन वो आंखों का प्रेशर बढ़ा सकती है, ग्लॉकोमा कॉज करा सकती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी मेडिसिन ले तो डॉक्टर के निरीक्षण में ले, किसी से पूछ के ले ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि कई बार हम लोग कुछ चीजें जल्दी ठीक होने की वजह से या किसी ने बता दिया, तुरंत दवा ले लिया और असर हो गया, तो वो फिर कंटिन्यू हम लोग लेते रहे तो वो भी हमें पता नहीं चलता कि इसका साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको कितना लेना है, कितना समय तक लेना है और क्या सिम्टम्स में लेना है, ये डॉक्टर ही आपको बताएंगे, तो आप उससे ले।
1: एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जो भी एलर्जी की जिनको प्रॉब्लम है आंखों की, वो कोल्ड कंप्रेशन करे, ठंडे पानी से आंखों को सेके, ठंडे पानी से या बर्फ से आंखों को सेके, उससे काफी रिलीफ मिलता है एलर्जी कंडीशन में। ड्रॉप्स तो डॉक्टर जो एडवाइस करेंगे वो तो है, लेकिन ये कोल्ड कंप्रेशन बहुत बेनिफिशियल होता है एलर्जी कंडीशन।
0: जी, अच्छा, एक और सवाल मानसी जी लिखते हैं यहाँ पर। आई हैव माइग्रेन, इट

0: दर्द, सिर का दर्द हो सकता है, फिटीक फील हो सकता है आंखों के अंदर, और या नहीं तो आंखों का प्रेशर बढ़ा है, ग्लॉकोमा है, तो उनको भी काफी हेडेक होता है, लेकिन ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि किस वजह से। तो लोग माइग्रेन समझकर माइग्रेन का ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, हेडेक के लिए पैरासिटामोल ले लिया और फिजिशियन के पास गए। इवन मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं जो सीटी स्कैन एमआरआई तक करा कर आए हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाया संभव। लास्टली उसको किसी ने सजेस्ट किया कि एक बार आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलो, वो मेरे पास आए, तो मैंने देखा उनको ग्लॉकोमा की वजह से प्रेशर बहुत
1: यस
0: बढ़ा हुआ था आंखों का, और फिर मैंने उसका फर्दर ट्रीटमेंट किया, उनको लेजर की जरूरत थी तो लेजर किया, तो अगले दिन ही पेशेंट बहुत कंफर्टेबल, रिलैक्स, जैसे ही उसका प्रेशर कम हुआ, उसकी वो बीमारी शांत हुई, सिम्टम्स कम हुए, तब पेशेंट ने रियलाइज किया कि हमने कितने पैसे वेस्ट कर दिए। जी
1: यही प्रॉपर डायग्नोस होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारे पैसे और टाइम वेस्ट हो जाता है। अच्छा,
0: जी
1: एक
0: तो
1: और
0: लोगों
1: सवाल
0: को ये
1: आया।
0: जानना, जी
1: बिल्कुल
0: लोगों को
1: बिल्कुल
0: ये जानना जरूरी है कि आंखों की वजह से भी सिर दर्द होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अगर आंखों
0: जी
1: में कहीं प्रॉब्लम है तो सरदर्द या सरदर्द होने पर आंखों की प्रॉब्लम या दोनों में से रिलेटेड चीजें हैं, तो आप जब भी ऐसा सिम्टम्स पता चले ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट। सुभाष जी लिखते हैं, नजर के स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा में सनग्लास गॉगल यूज करने से अच्छा है या नहीं, ये
0: कर सकते
1: बताइए।
0: हैं, सनग्लास में जिनको पावर है वो बाहर सनग्लास यूज करना चाहें तो कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा है, बस जो पावर है वो सही होनी चाहिए, नहीं तो आपको उसकी वजह से दिक्कत होती है, तो किसी अच्छे जगह से जो कि प्रोफेशनल है, वेल ट्रेन्ड है, उस जगह से बनवानी चाहिए ताकि पावर में कुछ एक्सेस में गड़बड़ी ना हो, नहीं तो हेडेक हो।
1: मानसी जी लिखते हैं, आई हैव 3 days कंटिन्यू हेडेक, सो तो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट कीजिए, आप क्या कर सकते
0: दिनों
1: हैं।
0: से कंटिन्यूस हेडेक है तो एक बार जरूर आंखों की चेकअप करवाइए, हमें
1: चेकअप
0: लगता
1: कराओ।
0: है तो हम आपको फिजिशियन के पास भी रेफर कर सकते हैं। अगर हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जिनको फिजिकल दूसरी रीजन होती है हेडेक की, तो हम उनको भी
1: बिल्कुल
0: और भी रेफर करते हैं, लेकिन आंखों का भी चेकअप जरूर करवाइए।
1: हाँ, एक बार चेकअप कर लें तो वो क्या है, थोड़ा सा फ्री भी हो जाएंगे, और जैसे कि डॉक्टर ने अभी बताया, कोल्ड आप जो है पट्टी लगा सकते हैं, ठंडे आंखों का पट्टी वगैरह लगा के 1-2 बार देख लीजिए, है ना, तो उससे भी आपको थोड़ा रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ सुधा भारती जी लिखते हैं, व्हाट इज इनिशियल सिम्टम्स ऑफ ग्लूकोमा।
0: ग्लॉकोमा ऑफ मेनी टाइप्स, लाइक ओपन एंगल ग्लॉकोमा है, एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा है। ओपन एंगल ग्लॉकोमा में इनिशियली तो कुछ भी पता नहीं चलता, प्रेशर बढ़ा रहता है, माइल्डली प्रेशर बढ़ा है, लंबे समय तक बढ़ा है, कभी कभी पेशेंट हेडेक का कंप्लेन करेगा, या माइल्ड ब्लरिंग ऑफ विजन का कंप्लेन करेगा, या उसके ग्लासेस के पावर जल्दी जल्दी बदल रहे हैं उसका कंप्लेन करेगा। ये ओपन एंगल के सिम्टम्स होते हैं इनिशियली, जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे टाइप है, जैसे एंगल क्लोजर, उसमें प्रेशर सडनली बढ़ता है, और सडनली प्रेशर बढ़ने की वजह से सिम्टम्स भी उसमें काफी अक्यूट आते हैं, उसमें
1: बिल्कुल
0: कलर्ड हेलोज, कॉर्नियल एडिमा हो सकता है, कॉर्नियल एडिमा माना जो आगे की पुतली है उसमें सूजन हो जाती है, तो उसकी वजह से ब्लरिंग होगा, देख रोशनी कम हो जाएगी, देखने में तकलीफ होगी, आंखें बहुत लाल हो जाएंगी, अक्यूट हेडेक होगा, आईब्रोज के अराउंड इधर वो हेडेक होता है, फिर कलर्ड हेलोज बोलते हैं, माना अगर हम कोई लाइट देख रहे हैं तो लाइट के अराउंड रेनबो टाइप कलर्ड छल्ला जैसा दिखेगा, उसको कलर्ड हेलोज बोलते हैं। तो ऐसी अगर तकलीफ होती है तो हम सिम्टम समझ सकते हैं कि ये शायद एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा का सिम्टम्स है इनिशियली, और ये एक एमरजेंसी कंडीशन है, उसे तुरंत ट्रीट करना जरूरी है, एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा का अगर सिम्टम्स किसी को हो रहे थे।
1: सुधा जी आप समझ गए होंगे इनिशियल सिम्टम्स क्या है, इसके ऊपर आप काम कीजिएगा जरूर। और एक और मैसेज आया, मानसी जी लिखते हैं, आई टेक ट्राई केयर कोर्स ऑफ माइग्रेन बट नॉट एनी रिजल्ट।
0: देन यू
1: कोई बात नहीं,
0: डेफिनेटली नीड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ओपिनियन।
1: आपका पास ऑप्शन है, उसको भी ट्राई कर लीजिए। अमित जी लिखते हैं, दीदी आंखों की प्राकृतिक रोशनी बढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए, कृपया कुछ मार्गदर्शन करें, अमित जी ने।
0: ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम अपने डाइट में बढ़ाएं, येलो फ्रूट्स बढ़ाएं और फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन करें, माना स्ट्रेस फ्री लाइफ, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, ये सारी चीजें हमारे आंखों के हेल्थ को बढ़ाती हैं। इवन कि ग्लॉकोमा के लिए भी हम कहते हैं

0: मेरे पास कई ऐसे पेशेंट आए हैं जिन्हों को केवल मेडिटेशन के प्रैक्टिस से, मैं केवल मेडिटेशन नहीं कहूंगी,
1: बिल्कुल
0: विथ मेडिटेशंस एंड मेडिटेशन बोथ, काफी रिजल्ट अच्छे हुए हैं. तो
1: बिल्कुल, दोनों चीजों का
0: स्टील
1: फर्क है।
0: अभी बहुत
1: अच्छी
0: इम्पोर्टेंट रोल है. जी
1: डॉक्टर मसालिनी जी, एक और मैसेज आया है, लिखते हैं, डॉक्टर मैम, हाउ कैन आई कांटेक्ट विद यू फॉर फर्दर गाइडलाइंस। आप ग्लोबल हॉस्पिटल में, माउंट आबू में ये है हॉस्पिटल, और यहाँ नीचे आबू रोड में भी आप आएंगे तो ग्लोबल हॉस्पिटल यहाँ पर नजदीक में है। आप आबू रोड उतर के ग्लोबल हॉस्पिटल बोलेगा, कोई भी 10 रुपए में आपको ग्लोबल हॉस्पिटल छोड़ देगा, और वहां पर ही आपको आई हॉस्पिटल है, उसमें ही आप डॉक्टर शालिनी जी से मिल सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, यू कैन टेक हर नंबर ऑल्सो, आई थिंक, या जहाँ से आपको अपॉइंटमेंट मिले। डॉक्टर शालिनी जी, आप कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो तो वी कैन।
0: बिल्कुल. मेरी ईमेल आईडी मैं शेयर कर सकती हूँ. आपको
1: जी
0: कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ईमेल आईडी, क्योंकि कई बार मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ फोन पर,
1: हाँ,
0: ओटी
1: तो
0: में
1: मेल
0: हूँ
1: से
0: या
1: आप
0: किसी
1: कॉन्टेक्ट कर
0: चीज में
1: सकते
0: हूँ,
1: हैं, कोई बात नहीं।
0: तो फिर ईमेल आईडी diashalini.6@gmail.com. आपको कुछ भी पूछना हो कनेक्ट कर सकते हैं, उससे मेल कर
1: बिल्कुल,
0: सकते हैं.
1: अगर आप लिखेंगे तो मैसेज में आप लिख भी सकते हैं, आप एक ऑप्शन है जहाँ SMS में आप टाइप कर देंगे तो देख पाएंगे। इसके साथ में एक और मैसेज आया, माई आईज वेर लैसिक ऑपरेटेड 3 years बिफोर ER एंड आई स्टिल फील द पेन समटाइम, हाउ शुड आई क्योर इट परमानेंटली, थैंक्स एंड एडवाइस दीदी। ये आकाश जी लिखते हैं कि इनका जो है लैसिक ऑपरेशन हुआ है 3 साल पहले और PRP का, तो अभी तक उनको जो है थोड़ा सा दर्द में फील होता है, तो क्या परमानेंटली ये दर्द खत्म हो सकता है, इसके लिए क्या करें, ये पूछा है।
0: पेन एग्जैक्टली एक्चुअली देखना जरूरी है ये कंडीशन, कि ये पेन है या डिस्कम्फर्ट है, ये देखना जरूरी है कि ड्राइनेस की वजह से हो रहा है. बहुत सारी चीजें हैं, जैसा अभी आकाश जी ने थोड़ी देर पहले बताया था, उनको ड्राइनेस की कंप्लेन है, तो ड्राइनेस की वजह से भी पेन होता है, लोग उसको पेन समझते हैं. तो मे बी इट इज नॉट रिलेटेड विथ लेसिक और इट कैन बी, तो एक बार देख कर ही बता सकते हैं, और एक कॉर्निया स्पेशलिस्ट की ओपिनियन हम ले सकते हैं. जहां आपने सर्जरी कराई है वहां भी एक बार जाकर आप फिर से ओपिनियन ले सकते हैं.
1: चलिए, आकाश आपको वापस एक बार दिखाना पड़ेगा, या फिर आप ग्लोबल हॉस्पिटल आ जाएंगे, या मेरी से, डॉक्टर साहिबा से टाइम लेके आप आ सकते हैं, तो यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, तो इससे भी काम हो जाए। सविता जी लिखते हैं, आईज के लिए कोई एक्सरसाइज है तो बताइए प्लीज। जी
0: आई के लिए एक्सरसाइज एक्चुअली हम सभी को नहीं बताते, जिनको अकोमोडेशन इश्यूज है, मसल एक्सरसाइज, कैट गार्ड एक्सरसाइज होता है, उनके लिए हम रिकमेंड करते हैं. अदरवाइज बेनिफिशियल तो सभी के लिए है. वो मेरे पास अभी है नहीं कैट गार्ड, वो लेकर आपको एक्सप्लेन करना होगा. हमारे पास आइए आप हॉस्पिटल, तो हम आपको कैट गार्ड भी बताएंगे और एक्सरसाइज भी बताएंगे, इसे कैसे करना है डिस्टेंस पे लेकर. एक्चुअली वो एक फिगर होता है जो डिस्टेंस पे लेकर फिर नजदीक करना होता है, दो फिगर एक हो जाए तो
1: बिल्कुल,
0: वो बार बार प्रैक्टिस करनी होती है मॉर्निंग इवनिंग. वो एक्सरसाइज काफी अच्छा है. अगर वो नहीं हमारे पास तो पेन से भी कर सकते हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल, तब तक कुछ चीजें जो आपको बताई गई हैं उसके प्रैक्टिस आप करिए। और ऐसे ईमेल शेयर करने के लिए बोला है तो मैं लिख देता हूँ, DR Shalini,
0: शालिनी
1: SHALINI
0: diashalini.6.
1: .6 ना,
0: जी
1: @gmail.com, drshalini.6@gmail.com।
0: जी
1: ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को ईमेल भी मिल गया डॉक्टर साहबा का, तो आप मेल करके उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए और फिर आप जो है ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। सुभाष जी ने याद किया है, थैंक यू गाइडलाइन के लिए, टोटल
0: थैंक
1: अच्छा लगा आपने सुनकर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो चलिए डॉक्टर साहब, जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें, फिर हम लोग पूरा करते हैं। जी
0: हमारा थीम है द वर्ल्ड इज ब्राइट सेव योर साइट.
1: द वर्ल्ड इज ब्राइट सेव योर साइट, जी आंखों की रोशनी को अच्छा रखिए, तो आपको दुनिया जो है चमकीला प्रकाश में दिखे, अच्छा अच्छी तरह से दुनिया को देख सकते हैं आप।
0: जी
1: तो डॉक्टर शानन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका जो समय मिला, और साथ में आपने ग्लूकोमा के बारे में काफी अच्छी जानकारी दिया, और ये मेनली प्रेशर और डायबिटीज डायबिटिक पेशेंट्स को होते हैं और ज्यादातर इन पेशेंट को इसके बारे में पता हो, नहीं भी हो तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप डायबिटीज ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर है लो और हाई है, तो दोनों में अगर कहीं सर दर्द हो रहा है या आंखों में पेन हो रहा है तो जरूर आप ऑप्टोमोलॉजिस्ट से, आंखों के डॉक्टर से संपर्क करें। इससे क्या होगा, थोड़ा पहले आपको अवेयरनेस आ जाएगा और ट्रीटमेंट आसानी से हो जाएगा, और जब आंखों का पूरा रोशनी चली जाएगी या फिर कम दिखाई देगा तब जाएंगे तो लेट हो जाएगा।
0: ये बोलना चाहूंगी कि इसमें इरिवर्सिबल लॉस होता है विजन का, और जब बाकी बीमारियों में हम ट्रीट करें तो विजन वापस आती है, लेकिन ग्लॉकोमा में एक बार लॉस हो गया तो परमानेंट लॉस होता है, इरिवर्सिबल लॉस होता है, इसीलिए हम ये अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, विषय गंभीर है, इसलिए आपको बहुत सारी बातें हमने बता दी और आप इन चीजों पे ध्यान रखिए। हाई ब्लड प्रेशर है या फिर डायबिटिक है तो आप ऑप्टोमोलॉजिस्ट से जरूर बीच बीच में कंसल्ट करते रहे जब भी आपको ये पता चले। और इसके बाद आप जो से जनरली हमारा आंखों के लिए जो ट्रीटमेंट में खुजली है ये है वो है, इसमें आपको जो डॉक्टर साहब ने बताया किसी भी व्यक्ति के कहने पर ट्रीटमेंट ना करें, प्रॉपर आप ट्रीटमेंट ले ताकि प्रॉपरली आपको सजेशन अच्छा मिल सके और अच्छी तरह से आप अपने, क्योंकि आंखें हैं तो दुनिया है, आंखें नहीं तो दुनिया है, इसीलिए आंखों का केयर ज्यादा करें और ठंडे और ठंडे पानी का जो मसाज है वो थोड़ा सा हल्का सा या कपड़ा ठंडा पानी का रखिए बीच में, और अच्छे ड्रॉप्स यूज कीजिए डॉक्टर से बात करके, है ना, और रेगुलर उसका ध्यान रखिए, स्वच्छ पानी से आंखों को बीच बीच में धोते रहें, क्योंकि ये आदत में आ जाए तो फिर अच्छी बात हो सकती है, थोड़ा सा अच्छी आदतों को बढ़ाना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहबा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और एक अच्छे विषय को लेकर आपने बातें की, एंड थैंक यू सो मच। दयाराम जी ने भी याद भेजा है आपके लिए, ये भी हमारे हमेशा प्रोग्राम सुनते रहते हैं, और सवाल आपके, अच्छा मेरे को एक गहरी जानवर ने काटा था उसके बाद मेरी आंखों की रोशनी कम मुझे दिखाई देती है, उसके लिए क्या करना। अच्छा इनको कोई जानवर ने काटा है, दिखाना तो पड़ेगा भाई साहब, है ना। अब ये छोटे से सेशन में आपको कैसे सवाल पूछें और क्या क्या करें ऐसा हो जाता है ना, लेकिन कोई बात नहीं, आपने सही डॉक्टर को सवाल पूछा है तो डॉक्टर साहब ने ईमेल दिया है, ये वाला डॉक्टर का ईमेल है drshalini.6@gmail.com, तो इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा और बताइए, और फिर आपको ट्रीटमेंट भी बता देंगे, अपॉइंटमेंट लेके आप एक बार आप रोड आइए दिखाइए, क्योंकि आंखों का काम है तो आप जल्दी से जल्दी दिखाएंगे तो उतना अच्छा रहेगा, है ना। तो और कोई बीमारी हो तो डिले करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आंखों के लिए आपको बहुत जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो थैंक यू दयाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका मैसेज दिखा आपने भी, आंखें अच्छे हैं तो आप दुनिया को अच्छी तरह से देख सकते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, अपने आंखों का ख्याल रखिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खुद को समय दें, क्योंकि आत्मा की गहराई तक पहुंचने में धैर्य और ध्यान दोनों की आवश्यकता होती है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। यह है रेडियो मधुबन 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, स्वास्थ्य के बारे में हर व्यक्ति कभी ना कभी सोचता जरूर है, खासकर उस समय पर जब व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ता है। स्वास्थ्य अगर थोड़ा भी खराब होता है तो हम सभी जानते हैं कि उसे ठीक करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और हम ये सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य को ठीक करने में समय भी लगता है, पैसा भी लगता है और ताकत भी लगती है। जब ये तीनों चीजें स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आवश्यक हो जाती हैं तो स्वस्थ रहने में इन तीनों ही चीजों की बचत हो सकती है, तो इसलिए स्वस्थ रहना हम सभी के लिए अनिवार्य भी है। मगर क्या हम चाहकर भी स्वस्थ रह पाते हैं? किन कारणों से हम बीमार होते हैं? कैसे हम अपने स्वास्थ्य को स्वयं ठीक रखने की कोशिश कर सकते हैं? इस पर बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। आइए आज सहज स्वास्थ्य में हम ऐसे ही विषयों पर चिंतन करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी। डॉक्टर राहुल मोदी पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, मगर साथ साथ भारत के वो एक जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और भारत के प्राचीन नेचुरोपैथी केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर के, यहाँ अनेकों पीढ़ियों से उनके परिवार के जन लोगों को शफा देते आए हैं और आज भी वो नेचुरोपैथी के क्षेत्र में काम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: ओम शांति, नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, जब हम स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो नेचुरोपैथी कैसे काम करती है, इस विषय पर हमने आपसे जानकारी ली। आपने कहा कि प्रकृति चिकित्सा प्रकृति के आधार पर हमें स्वस्थ बनाने के बारे में काम करती है, और सारे रोगों की दवा क्या है वो भी आपने कहा था, और प्रकृति के तत्वों से ही व्यक्ति का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, आपने ये कहा। पहले तो ये बात समझा जाए कि आप क्यों प्रकृति के तत्वों से ट्रीटमेंट करने की बात करते हैं बॉडी के इलनेसेस के लिए, और फिर इसके बाद मैं ये समझना चाहूंगा कि हम कैसे करते हैं, मगर उससे पहले क्यों प्रकृति के तत्वों का ही आधार लेने की जरूरत है?
1: हमारा शरीर भी प्रकृति ने बनाया है और हमारा शरीर भी प्रकृति के पांच तत्वों से ही बना है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। आप खुद देखिए कि बोलचाल की भाषा में भी बोला जाता है कि ये मिट्टी का शरीर था, मिट्टी में मिल गया। या हम कितने सारे लोक गीत सुनते हैं जिसमें भगवान के या कबीर के गाने सुनते हैं, उसमें ये बोलता है कि घमंड नहीं करना चाहिए, अपनी लाइफ नॉर्मली लिव रहना चाहिए क्योंकि ये मिट्टी का शरीर है। और ये भी बोला जाता है तू क्या लेकर आया, क्या लेके जाएगा, ये मिट्टी से बना शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इवन बाइबल हैज अ कोट सेइंग कि भगवान ने पहले आदमी को मिट्टी से बनाया, फिर उसके नाखून में अपना प्राण डाला और वो आदमी जीवित हो गया। और हम पृथ्वी को माँ मानते हैं, और आप देखिए कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपने कोख में रह के पैदा करती है और उसे पूरा भरण पोषण सब कुछ करती है, और पैदा होने के बाद भी माँ ही उसको सिखाती है। हम लोग कहते हैं मदर इज द फर्स्ट टीचर। मदर ही उस बच्चे का भरण पोषण करती है, पहले अपने कोख में रख के, अपने पेट उसमें रख के 9 महीने, और उसके बाद जब वो कुछ भी करने लायक नहीं रहता तो उसको खिला के पिला कर और उसको नर्चर करती है। यही सारा काम प्रकृति हमारे लिए करती है, और प्रकृति के पांचों तत्व करते हैं। इन पांचों तत्व में सबसे ज्यादा अगर किसी की वैल्यू है तो वह है पृथ्वी, या मिट्टी की, या धारा की, या धरती की, आप जिस भी उसको उसको बोलना चाहिए कि ये वसुधा है, वसुंधरा है, धरा, धरती, पृथ्वी, मात्री, जो भी बोलिए, तो हम अपनी पृथ्वी को भी माँ मानते हैं और हम नेचर को भी माँ मानते हैं, मदर अर्थ, मदर नेचर, क्योंकि वो माँ माँ हमको जैसे माँ की तरह वो हमें भरण पोषण देती है। प्राकृतिक चिकित्सा एक ईश्वरीय चिकित्सा है, इसे खुद ईश्वर ने बनाया है, और अगर हम फिजिकली मतलब माने तो जो सबसे करीब हम ईश्वर को देख पा रहे हैं अपने, तो हम उन पांचों तत्वों में से देख पा रहे हैं। हम उसको सौर्य की, सूरज की धूप से देख पा रहे हैं, हम जिस जमीन पर रह रहे हैं उसको पृथ्वी के रूप में देख जा रहे हैं, जो पानी बह रहा है विभिन्न झरनों में, नदियों में, समुन्द्र में, उसको देख के हम माँ मतलब नेचर को अपने पास देख पा रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि जब नेचर ने ही हमें बनाया है तो नेचर ही हमको ठीक कर सकता है, और जब हम एंटी नेचर जाते हैं तो हम खराब हो जाते हैं। हमारा सारी बीमारी का जो जड़ है वो प्रकृति से दूर होना ही है। हम जितना प्रकृति से दूर चले गए उतना हम बीमार पड़ गए, जितना हम प्रकृति के पास आ जाएंगे उतना हम ठीक हो जाएंगे, ये हम लोग की सोच है।
0: ये बात समझ में आती है डॉक्टर साहब की, प्रकृति के तत्वों से ये शरीर बना हुआ है और प्रकृति के तत्वों से शरीर के बनने के कारण प्रकृति के तत्वों से ही इसका इलाज भी, इसके रोगों का भी इलाज किया जा सकता है। आपने कहा, आपने धरती के बारे में कहा, बिल्कुल धरती को माँ कहना ये तो भारतीय संस्कृति में तो है ही, मगर अन्य संस्कृतियों में भी विश्व भर में ये चीज़ हम देखते हैं, मदर अर्थ कहा ही जाता है, अंग्रेजी में भी हम इस चीज़ को ऐसे ही कहते हैं, पाश्चात्य देशों में भी ये मान्यता है। और आपने ये जो मिट्टी का पुतला है ये चीज़ सांस्कृतिक विरासत में हम इन शब्दों को सुनते आए हैं, उसकी वास्तविक अहमियत कहाँ है, उसका वास्तविक संबंध क्या है, ये बात समझ में आती है। मिट्टी से बने हुए शरीर की जब हम बात करते हैं तो जब मिट्टी हम कहते हैं तो हम देखते हैं कि पूजा पाठ में अनेक चीज़ों में जब हम धरती की भी वंदना करते हैं, जैसे भूमि वंदना के लिए एक बहुत ही मशहूर श्लोक है, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडली, ये हम कहते आए हैं, गाते आए हैं, ये सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा तो है ही, मगर शरीर में हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए भूमि तत्व कहाँ है, वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है, इन चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वैचारिक दृष्टिकोण से बात सही लगती है मगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हिसाब से आप इसे कहाँ देखते हैं।
1: भैया आपने जो श्लोक बोला उसमें अंत में शायद ये है ना कि मैं धरती माँ तुम पे पैर रख रहा हूँ, उसके लिए तुम्हें प्रणाम कर रहा हूँ और माफी मांग रहा हूँ।
0: जी बिल्कुल।
1: आप सोचिए हम किस संस्कार से आए हैं। आप देखिए जयशंकर प्रसाद की एक कविता, हिमालय के आंगन में तुम्हें प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन पह किया और पहनाया हीरक हार, जगे हम और लगे जगह ने, विश्व में बैला फिर आलोक, व्योम तम पुज नष्ट हुआ अखिल सन। हमारी संस्कृति भैया कितनी पुरानी है और हमारी धरा और धरती भी कितनी पुरानी। और भैया हमने सिर्फ अपनी धरती को अब्यूज किया है। हमने पेड़ काटा, हमने पॉल्यूशन किया, हमने जहां मन चाहा वहां गड्ढा खोद दिया, हमने जो मन चाहा उसमें डाल दिया। और अगर आप अपनी पृथ्वी माँ को प्यार करते हैं तो प्लीज, ये हेल्थ से हट के टॉपिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। सॉरी हम लोग हेल्थ पे बात कर रहे हैं पर ये मेरे मन से निकल गया कि अगर आप मदर अर्थ को बचाना चाहते हैं, क्योंकि आपका भोजन उसी से मिल रहा है। कुछ लोग जो बोलते हैं कि मैं नॉनवेज खाता हूं, पर आप एक बात जानिए कि जो आप जिस जीव को खा रहे हैं उसकी भी खुराक इस
0: धरती से
1: हम सब की खुराक इसी धरती से आ रही है। हम जो भी कह लें, हमको वाटर रिसोर्स जो हमको मिल रहा है उसी धरती में से ही हम निकाल के पानी पी रहे हैं। हमारे सारे फ्रूट वेजिटेबल्स ग्रेन्स सब कुछ इसी धरती से आ रहा है। तो धरती सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, या मिट्टी हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्रकृतिक चिकित्सा में मिट्टी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे माँ की गोद ठंडक देती है, दुलार देती है, उसी तरह मिट्टी भी मानव शरीर को दुलार और प्यार देती है। भैया मिट्टी बहुत तरह से है, मतलब मैं थोड़ा समय लूंगा इसको बताने में, मिट्टी बहुत तरीके की आती है, बालू मिली मिट्टी, पीली मिट्टी, कंकड़ वाली मिट्टी, पथरीली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी जो सबसे कॉमनली लोग सुनने में आते हैं। हम मिट्टी का सबसे जो पॉजिटिव पार्ट है वो ये है कि मिट्टी में ठंडक होती है। और अगर मेडिकली देखा जाए तो हम जब भी बीमार पड़ते हैं वो एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। इन्फ्लेमेशन मतलब गर्मी। और मेडिकली ये देखा जाता है कि रेडनेस, हीट, हाँ, रूबर ट्यूमर, डॉलर कैलोर, चार चीजों में पैथोलॉजी में सिखाया जाता है, कहीं भी अगर गर्मी हो, अगर हम उसके ऊपर मिट्टी रख देंगे तो उसकी गर्मी को वो सोख लेगा। और एक सिंपल बात, अगर किसी का दिमाग गर्म है तो वो अपशब्द बोलेगा, इधर उधर झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, और अगर उसका दिमाग ठंडा कर दिया जाए तो वो अच्छी बातें करेगा, वो उसका दिमाग, उसका सब कुछ ठीक से काम करेगा। मिट्टी में वही ताकत है, उस चीजों को ठंडा कर देती है। कहीं इन्फ्लेमेशन हो, कहीं टॉक्सिन्स हो, कहीं गर्मी हो रही हो, मिट्टी उसको ठंडा कर देती है।
0: डॉक्टर साहब, एक बात मेरे को याद आई जब आप ये बात कह रहे थे, मैंने अक्सर ये चीज सुनी हुई है कि जब दो व्यक्ति झगड़ रहे हो, वो पुरानी किसी बात को लेकर झगड़ रहे हो, तो लोग अक्सर कहते हैं पुरानी बात पे मिट्टी डाल दो ना,
1: मिट्टी डाल जाता है। इसमें भैया मिट्टी का दो प्रयोग है, वो एक ठंडा ठंडक देती और दूसरा जो गंदगी की बदबू या वो चीज फैल रही होती उसको दबा लेती है अपने अंदर। तो अब मिट्टी का हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में, हम ऐसी मिट्टी इस्तेमाल करते हैं जिसमें कंकड़ रेत नहीं। हम जो भी मिट्टी लेते हैं उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लेते हैं और फिर उसको चलनी से छान लेते हैं। आरोग्य मंदिर अपनी जो मिट्टी लाता है, पहले भैया हम कहीं से भी ले सकते थे, पर अब फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक, मेटल, इन सब चीजों की वजह से हमको जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहां से करीब 12 फीट 18 फीट नीचे से मिट्टी निकाली जा रही है उसको हम लेते हैं और उस मिट्टी को हम स्टोर करते हैं अपने यहां। मतलब हमको अगर कहीं भी कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही होती है तो हम वहां जाके, या जो अभी भी थोड़ा सा नॉन पोल्यूटेड एरियाज हैं वहां से मिट्टी लेकर आते हैं अपने यहाँ इलाज के लिए। उस मिट्टी को हम लोग पहले छानते हैं, फिर उसको पीसते हैं और पीसने के बाद एक बार फिर छानते हैं और फिर उसको भैया 24 to 48 hours तक उसको हम लोग पानी में भिगो के रखते हैं। महात्मा गांधी की किताब है आरोग्य की कुंजी, उसमें महात्मा गांधी जी ने कहा है कि मिट्टी का प्रयोग बाजरे की रोटी के, जितनी मोटी बाजरे की रोटी बनती है उसकी उतनी मोटाई की मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। इसको अब आज की भाषा में अगर समझाएं तो 1 to 2 inches मिट्टी का आपको प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी हम पूरे शरीर में भैया कहीं भी लगा सकते हैं और आप जहां भी लगाइएगा वहां से ये आपको ठंडक देगी और आप छोटी छोटी पट्टियों के रूप में, जैसे आंख पे मिट्टी, पेड़ों पे मिट्टी, पैरों में मिट्टी, हाथ पे मिट्टी लगा सकते हैं और या तो पूरे शरीर में मिट्टी लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रयोग पेड़ों पे मिट्टी की पट्टी या एब्डोमिनल मड पैक का होता है और ये ऐसी चिकित्सा है जो कि हर डाइजेस्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा इसका पॉजिटिव रोल है। क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है, ये उस एरिया में जहां मिट्टी रखी जाती है वहां ठंडक ला देता है। तो जैसे ठंडक आती है तो जो गर्मी निकल रही होती वो बंद हो जाती है, थोड़ी देर के लिए ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है या कम हो जाता है और फिर जब मिट्टी हटती है तो एक वहां पे स्वच्छ क्लीन ब्लड आता है जो सारे टॉक्सिन्स को निकाल के ले जाता है। पूरी की पूरी मड थेरेपी की यही फिलॉसफी है कि वो जहां पे लगती है वहां के शरीर को ठंडा कर दे।
0: जैसे आप ये मड थेरेपी की बात करते हैं, बहुत सारे लोग जब प्रकृति चिकित्सा की बात करते हैं, लोग सुनते हैं या कोई करने गया है तो लोग यही सोचते हैं कि हाँ शरीर पे मिट्टी मल दिया गया है, मड पैक्स लगाए हैं, मड बाथ इत्यादि लिया गया, इत्यादि चीजें सुनने को मिलते हैं और आप ये कह रहे हैं कि ये बॉडी के इन्फ्लेमेशन को हील करने के लिए, उसे ठंडा करने के लिए, इन्फ्लेमेशन का मतलब ही गर्म होना है तो उसको ठंडा करने के लिए मिट्टी कार्य में ली जाती है और मिट्टी कहाँ से ले आते हैं ये भी चीज आपने बताई। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि मिट्टी ही क्यों, क्या मिट्टी में कोई ऐसी हीलिंग प्रॉपर्टी है, क्या कोई ऐसी चीज है जो मिट्टी इस कार्य को कर सकती है, इस चीज को समझा जाए कि ये कार्य कैसे होता है।
1: भैया हम एक चीज जोड़ना चाहेंगे कि नेचुरोपैथी अस्पताल इस नाम, इस चीज के लिए बदनाम भी है कि वहां लोगों को मिट्टी में गाड़ दिया जाता है जबकि ऐसा भैया नहीं होता है। अगर मिट्टी के अंदर किसी को डाला जाता है तो इसका मतलब उसकी नर्वस वीकनेस बहुत है, उसको के लिए, स्किन डिजीज के जो पेशेंट है उसके लिए। और अब सिंगल यूज हर जगह आ गया है, कोई भी व्यक्ति एक बार इस्तेमाल की हुई मिट्टी को दूसरी बार इस्तेमाल करना नहीं चाहता है तो वो पिट मड थेरेपी जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होती है। आपने पूछा कि मिट्टी क्यों ही, उसकी जगह कुछ और क्यों नहीं,
0: आप कहते हैं तो लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए कि मिट्टी में क्या ऐसी खास बात है, कोई वो हीलिंग का कार्य करती है, क्या उसके गुण हैं, वो समझ में आए।
1: मिट्टी अपने आप में ठंडक ज्यादा समय तक भैया सजो के रख पाती है। और आप देखिए कि प्राकृतिक उसका नेचर ही है कि वो चीजों को ठंडा रखती है। आप देखिए मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की सुराही, मिट्टी का घड़ा, क्यों? और पहले तो मिट्टी के ही बर्तनों में भोजन बनता भी था और मिट्टी के ही बर्तनों में भोजन सूखे अनाज रखे जाते थे। देखिए रसगुल्ला भी मिट्टी के बर्तन में मिलता था जब सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं था, पत्ते से उसका मुंह बांध करके मिलता था, कॉयर की रस्सी से उसका मुंह बांधा जाता था जब रबर बैंड नहीं था
0: जी।
1: तो आप देखिए कि वो और उसमें रसगुल्ला ज्यादा फ्रेश रहता था, या दही कितनी फ्रेश मिट्टी के बर्तन में जमती थी, या रबड़ी उसमें कितना ज्यादा उस मिट्टी के बर्तन में रखी जाती थी। मिट्टी में ठंडक सोखने की ज्यादा शक्ति है, वो ज्यादा देर तक ठंडी रहती है और लगाने के बाद ज्यादा देर तक वो गर्मी को एब्जॉर्ब कर पाती है। उसमें एब्जॉर्प्शन पावर इज मच मोर देन एनी अदर सब्सटेंस, तो इसीलिए मिट्टी का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। अगर आप मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो उसकी जगह एक ठंडा तौलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मिट्टी अगर आधी घंटे से 45 मिनट तक इस्तेमाल की जा सकती है एक बार में, तो तौलिए को हर 10 से 15 मिनट तक, 15 मिनट के बाद फिर से भिगो के ठंडा करना पड़ता है। ये डिफरेंस है मिट्टी में और किसी और चीज में। और मिट्टी की अपनी इनहेरेंट नेचर है खींच लेने की, और वो आपके शरीर की सारी नेगेटिविटी भी खींच लेती है। बेयर फुट वॉकिंग में बोला जाता है, वॉक बेयर फुट सो दैट ऑल योर नर्व्स आर एनर्जाइज्ड, कि आपका पूरा नर्वस सिस्टम एनर्जाइज हो जाए और वो जो भी आपकी नेगेटिविटी है वो आपसे निकाल ली जाए। फिजिक्स वाले इसको अर्थिंग बोलते हैं, पैर रख दिया अर्थिंग हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। सो मिट्टी हैज दैट पावर एंड इट कैन रीजनरेट, मींस इट डज वंडर्स इन स्किन डिजीजेस एंड नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये पूरी की अगर पूरे शरीर पे मिट्टी लगा दी जाए तो ये आदमी को जितने भी नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इंसोम्निया है, इसमें ये वंडरफुल इसका रोल है, वंडरफुल भैया। और जब बड़ा अजीब लगता है जब चिकित्सालय में आदमी बोलता है मैं तो सोया ही नहीं, और जब एक बार उसको पूरे शरीर की मिट्टी दी जाती है तो कहता मैं तो बचपन में ऐसा सोता था। इसमें इतना चमत्कार है। आप आंख के ऊपर मिट्टी रख लीजिए, आपको पूरे के पूरे हेडेक, टेंशन हेडेक्स उसमें आराम मिलेगा, आपके मेंटल प्रॉब्लम्स में आपको आराम मिलेगा। पेड़ों पे मिट्टी रखिए, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में आराम मिलेगा, यूरिनरी सिस्टम्स की प्रॉब्लम में आराम मिलेगा, महिलाओं में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जितनी प्रॉब्लम्स होती है उसमें आराम मिलेगा। इवन पेड़ों पे मिट्टी रखने से ओबेसिटी भी कम होती है, क्योंकि वो शरीर को जब ठंडा करती है तो वहां ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, फिर धीरे से ब्लड सर्कुलेशन पूरा उस एरिया में बढ़ता है तो फैट जो है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना शुरू करता है। तो मिट्टी का प्रयोग पूरे शरीर पे किया जा सकता है, वनस्पत अगर वो मिट्टी ठीक से ली गई हो, उसमें कंकड़ प्लास्टिक केमिकल फर्टिलाइजर्स न मिले हो और उसको 24 से 48 घंटे तक ठंडा किया गया हो। ठीक,
0: ये बात बहुत ही अहम लगती है कि मिट्टी के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हीलिंग के लिए मददगार हैं। जैसे आपने कहा कि मिट्टी गर्मी को खींच लेती है, मिट्टी का जो दूसरा अल्टरनेटिव है, अगर आप मड पैक्स नहीं इस्तेमाल करते तो फिर आपको गीले तौलियों को कितने बार बदलना पड़ता है, ये बात समझ में आ रही है। मिट्टी के बारे में आपने ये भी चीज कहा कि बेयर फुट वॉकिंग के बारे में भी आपने चीजें बताई, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में प्राय बहुतों के मन में प्रश्न उठते होंगे, क्योंकि पुराने लोगों को वो ये चीज करते हुए देखते आए हैं। मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल के बारे में आपने जो बात कही उसके फायदे क्या हैं, वो सारी चीजें कई लोग आज भी उन चीजों को वापस समझकर फिर से उसे वापस इस्तेमाल में लाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं और अनेक ऐसी प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। आज के विषय पर और भी प्रश्न हैं, मगर मैं उन प्रश्नों को कल के लिए आगे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वक्त को देखते हुए यहाँ रुकना होगा, क्योंकि अगर मैं सवाल पूछ लूं तो उसके लिए जवाब के लिए भी वक्त देना पड़ेगा आपके लिए, तो इसलिए हम लोग यहीं रुकेंगे और अगले एपिसोड में मिट्टी से जुड़े हुए प्रकृति चिकित्सा में मिट्टी की भूमिका के ऊपर जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को भी समझेंगे। डॉक्टर साहब, आज आप समय निकालकर हमारे बीच पहुंचे और इन प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार भैया, ओम शांति।
0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य, मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री, और आज हमने डॉक्टर मोदी जी से ये बातें समझी कि मिट्टी कितनी आवश्यक है। हम धरती को माता कहते हैं, धरती की गोद से हम सभी का जन्म हुआ है, इस वसुंधरा पर जो भी अन्न है, जो भी पोषण है, वो सब कुछ धरती से आता है। जब हम धरती की अहमियत को देखते हैं तो हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए, जब हम बीमार पड़ते हैं तो वापस इसी माँ की गोद में लौटने पर, इसी मिट्टी के इस्तेमाल से कितना फ़ायदा हो सकता है, उन चीज़ों पर जानकारी ली है। मगर ये कैसे फ़ायदेमंद होता है, हमें कैसे ये लाभ लेना है, इन विषयों पर अगले एपिसोड में बातचीत करेंगे। आज आप सभी हमारे साथ जुड़े सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम में, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम ऐसी नारी शक्ति पर आधारित है जिनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव या कुछ अलग उनके जीवन की कोई कहानी होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि नारी शक्ति के साथ जो घर में रह रही है या बाहर जो भी करती है तो उनके साथ इस तरह की परिस्थितियां भी आ सकती है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आप नारी शक्ति की शक्ति को भी पहचान सकते हैं, उसके स्ट्रगल को भी आप महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी ही नारी शक्ति से आपको मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है मधु राठौड़। आप गुजरात जूनागढ़ जिला बांटवा गांव के रहने वाले हैं। आपकी उम्र 52 वर्ष है। आपने 12th तक पढ़ाई की हुई है। सिलाई कढ़ाई बुनाई का आपको बहुत ही शौक है, कुकिंग का और विशेष करके सफाई का बहुत ही शौक है और अध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं। तो ऐसी नारी शक्ति से आपसे मिलवाने जा रहे हैं। मधु जी नमस्कार।
1: धन्यवाद जी,
0: बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
1: धन्यवाद
0: मधु जी। चलिए, आपकी उम्र 52 है, मतलब पिचपन के आसपास पहुंच चुकी है। और कहते हैं ना, पिचपन में जब बचपन की बातें करते तो बड़ा अच्छा लगता है, क्या कहेंगे?
1: बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी
0: जी,
1: तब से मुझे कुछ ऐसे लगा, बचपन से तो वैसे माँ बाप, हम 5, 3 बहनें हैं, 2 भाई है, छोटा सा परिवार है और माता पिता है, दादी थी। फिर दादी तो अचानक से हार्ट अटैक आया और चली गई। उसके बाद सत्संग चला था घर में, जैसे कि तो सत्यनारायण की कथा हर 11 को होती थी। तो मम्मी सब कहती थी कि जाओ आप ना, सबको जो सगे संबंधी है उसको कहना कि हमारे यहाँ सत्संग है तो आ जाना। फिर सबको वो फूल लाना, प्रसाद लाना, वो सब मम्मी मुझे देती थी कि आप वो करो। फिर तो सब लाते थे, फिर ना बरसात आई, ये सब इकट्ठा करते हैं पैसा और उसका कुछ बड़ा करना था। तो मैं तो छोटी थी, तो एकदम बरसात आई तो सारा पैसा ऐसे पास रहता है, 25 पैसे का 30 पैसे का
0: जी
1: हाँ, तो वो सब इकट्ठा किया हुआ था और घर की जो कांधी कहते मतलब माड़िया कहते उसमें लगा था। तो बरसात आने की वजह से जोरदार वो बिक गया। फिर सब वो सुखाया बहनों ने, मेरी 2 बहनें हैं और भाभी है, सब सुखाया। फिर तो मम्मी ने और सत्संग की जो मंडली थी ना, बड़ी पहली बार मेरी मम्मी ने ही वो सत्संग चालू किया। तो कहते हैं कि अब ना कुछ उसका नया करे, हमारे यहाँ जो राजपूत के मंडली होती है ना बहनों की, तो उसमें सत्संग में से जो इतने पैसे इकट्ठे हुए थे तो उसका कुछ अच्छा सा करे जो सबको काम भी आए उसमें।
0: चलिए मधु जी, सत्संग की बातें हम जरूर जानेंगे, पहले हम बचपन की बात जानना चाहेंगे। आप जैसे बता रहे थे कि 5 भाई बहनों, ठीक है, अच्छा आप 3 बहनें और 2 भाई हो, आपका नंबर कौन सा आता है?
1: मेरा लास्ट का नंबर 5वां।
0: तो आप तो सबके चहेते रहे होंगे।
1: बहुत बहुत बहुत चहेते रहे।
0: आपके पिताजी क्या काम करते थे उस समय?
1: वो किसान थे, किसान। पहले तो मैं जब से आई ना तब से तो हमने बहुत खेती देखी। इससे पहले कहते थे कि हमारे 7 थे ना घर में, जैसे 5 बच्चे और 2 माँ बाप और दादी, उसमें बहुत एकदम करकसर से जीवन था
0: जी जी, मुश्किल से हाँ, चल पाते थे गृहस्थी की।
1: हाँ, नहीं, पापा का यही एक सपना था कि मैं बड़ी खेती लूँ। इसके लिए उसने करकसर से हम सबको ऐसे सिखाया कि करकसर से रहोगे, लोभ से नहीं, करकसर से।
0: जी जी।
1: तो उसने 100 बीघा, मतलब अभी उसका पैसा होता है वो 15 करोड़ होता है, तभी कभी कुछ नहीं था, फिर भी पापा ने, हम काका कहते थे, हम साथ में रहते थे,
0: जॉइंट परिवार था।
1: हाँ, जॉइंट परिवार था, मतलब मेरे जो बड़े पापा के बड़े भाई वो साथ में रहते थे, उसका 6 बेटा
0: जी
1: हाँ, और साथ में रहते थे। तो साथ में रहने की वजह से जो बड़े बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं
0: जी, काका बोलते हैं और बड़े पापा के बेटे,
1: हाँ पापा के बड़े भाई, उसको हम अदा बोलते हैं गुजराती में
0: जी।
1: तो वो अदा का सब बच्चे इकट्ठे रहते, तो वो मेरे पापा को काका कहते थे, तो हम भी काका ही कहते, लास्ट तक काका किया। तो काका का यही सपना था और मुझे बहुत पढ़ाया उसने, सब हमारे भाई बहन है ना, उसमें से मुझे ज्यादा पढ़ाया।
0: अच्छा, बाकी आपसे सब कम पढ़े लिखे हैं,
1: सब कम पढ़े लिखे,
0: भाई भी?
1: भाई भी।
0: तो सब क्या करते, खेती का काम?
1: हाँ, सब खेती का ही काम करते।
0: तो आपके सामने 100 बीघा जमीन का जो आपके पिताजी का
1: वो बनाया उसने अपने,
0: संकल्प था तो लिया?
1: हाँ वो पूरा किया। पहले ऐसा नहीं था, फिर पूरा किया। फिर उसको तो इतना उमंग आया। उसके बाद सब, पहले भाई की शादी हुई, बड़े भाई की। उसके बाद तीन तीन के साथ में हुई और मेरी अकेली हुई।
0: अच्छा, आपकी शादी की बात तो जरूर करेंगे, लेकिन बात कर रहे थे आपके बचपन की, कि इस तरह आपके पिताजी खेती का काम करते थे, किसान थे। आपके माताजी भी कुछ करते थे?
1: हाँ, घर का काम करती थी और खेत में पिताजी को बहुत साथ देती थी। सारा पूरा काम करके, अपना बाता बना करके, और मुझे कहती थी कि आप ये घर संभालो, और पढ़ाई करने के बाद हम आएंगे तो आपको ये खिचड़ी बना के रखनी है, ये सफाई करनी है, और चूल्हा चूल्हा ये सब कुछ अच्छे से रखना है, ताकि आए तो सिर्फ हमें सब्जी और रोटी दोनों ही बनानी है, और पूरा घर का ख्याल रखना है, बाहर सब आपको करना है। और फिर आप ये सब पढ़ाई करने के बाद फिर पेड़ाई कर लेना और सफाई कर लेना। तो मम्मी भाता बनाकर, मतलब रसोई बनाकर जाती थी।
0: जी
1: हाँ, और साथ में पिताजी को बहुत बहुत साथ देती थी।
0: तो आपके भाई बहन भी जाते थे खेत में?
1: सब जाते थे, सब के सब।
0: आप अकेले घर पर रहते?
1: हाँ, मैं अकेली घर पर रहती, मैं डरती नहीं थी। मेरे से जो तीसरे नंबर की बहन है ना, जैसे हम तीन बहन हैं, तो तीसरे नंबर की बहन के, वो अकेली नहीं रहती थी, वो डरती थी। वो कहती थी मैं अकेली नहीं रहूंगी। मम्मी बहुत कहती थी कि आप रहो इसके साथ। फिर मैं कह देती हूँ कोई बात नहीं मम्मी, आप जाओ उसको भी ले जाओ, मैं अकेली रहूंगी। और मैं बहुत बड़ा था तो मैं उसमें अकेली रहती थी और सब काम कर लिया करती। और मम्मी मुझे ऐसी शाबाशी देती, देखो तो आपसे छोटी है तो भी वो अकेली रहती है, और सारा डरती भी नहीं है। कोई आते हैं तो ऊपर से देख लेती हूँ कि कौन आया है। अगर कोई हमारा संबंधी आते हैं तो मैं खिड़की खोलती हूँ, अगर कोई और है तो खिड़की भी नहीं खोलती। ऐसे में बहुत तैयार थी, तो मम्मी और पापा दोनों की चाहती थी।
0: जी
1: पापा पापा तो हमें साथ में ही सुलाते थे, वो तो मेरी सगड़ी है जैसे बोलते। मैं इतनी गर्म रहती हूँ ना, तो वो खेत में से आते और पापा को मैं पानी देती हूँ, कुछ खाने को देती हूँ, तो पापा की बहुत चाहती थी। छोटी थी इसलिए बहुत बचपन प्यार से ही गुजरा, और सबका, भाई बहनों का अभी तक प्यार मिल रहा है।
0: जी जी
1: हाँ,
0: जी
1: बहुत प्यार मिल रहा है।
0: जी
1: और अभी वो पे दुलार देते तो कहते हैं कि तुम बड़ी भाग्यशाली हो, ऐसे कहते हैं अभी भी।
0: जी जी वो कहते हैं ना कि नमे सौने गमे, गुजराती कहावत है। तो
1: हाँ,
0: आपके अंदर नम्रता थी, तो आप सभी के दिलों पर राज करते थे।
1: अभी भी कर रही हूँ। और
0: बचपन से जो स्वभाव संस्कार जो हमारे अंदर पड़ जाते हैं, वो लाइफ टाइम चलता है।
1: हाँ, वो आगे ज्यादा हो जाता है बढ़कर। तो बचपन ऐसे ही गुजर गया, पता ही नहीं चला कि देखो सबने इतना साथ दिया। और मैं मेरा उत्साह और उमंग बहुत बढ़ाते थे भाई बहन है,
0: जी
1: जो मेरे से चारों भाई बहन है ना, बहुत उत्सव उमंग बढ़ाते थे। जैसे कि खेतों में बुनाई होती है, कटाई होती है, वो हम एक दो मजदूर रख करके हम स्वयं करते थे।
0: अच्छा,
1: मजदूर चार आते थे, वो चार बहनें आती थी, दो बहनें अपनी और दो भाई उसके, वो चार ही आते थे, और हम सब मिल करके ये सारा खेत संभालते थे।
0: सौ
1: तो
0: सौ बीघा जमीन में?
1: हाँ, सब
0: अच्छा,
1: मजदूर, नहीं ना कोई किराए का रखा, रात में कोई नहीं, सब अकेले ऐसे ही करते थे। तो हमने बचपन से यही सीखा कि मेहनत करो, और मेहनत से आगे बढ़े। और पापा का तो बहुत था कि ये ले वो ले, बहुत था को ना, मेहनत में बहुत विश्वास था।
0: जी चलिए मधु जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन समय हो चला है यहाँ पर एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुन करके पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, मधु जी के अनुभव बहुत ही अच्छे हैं जो हम फिर से सुनेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई। चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न,
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, हर रिश्ते में अपनापन जगाए, नन्हे कदमों से सपने बुनती, घर को स्वर्ग सा बना जाए, घर को स्वर्ग सा बना जाए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में ऐसी ही बेटी जुड़ी हुई है, ऐसी ही मातृशक्ति जुड़ी हुई है, मधु राठौड़, जिनके अनुभव हमने सुने हैं। इसी कड़ी में और भी आगे बढ़ेंगे। मधु जी पुनः स्वागत है आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
5: जी थैंक यू जी।
4: तो मधु जी आपके बचपन की बातें चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा स्कूल की बातें बताएंगे कि आपके टीचर्स के साथ, सखियों के साथ कैसा व्यवहार रहा?
5: हाँ मेरी सखियाँ भी बहुत बढ़िया थी। एक सखी थी बहुत अच्छी थी, मैंने उसे अपना माना था, उसका वो अलग था। फिर मैंने पहले आठवीं पढ़ी तो कुछ आठवीं पढ़ी तो मम्मी होली का त्यौहार था, जैसे अभी होली आ रही है तो होली का त्यौहार था, तो मम्मी ने कहा कि अब मैं ना सारा रसोई या बाता बोलते हैं ना वो बाता कर रही हूँ, तो आप ना आज जाओ शिव के मंदिर पर। और वहाँ से गुजरात में ये होता है कि बड़ा शिवरात्रि का महत्व होता है, शिवरात्रि के दिन उपवास करते हैं और भांग का प्रसाद मिलता है और बड़ी उत्साह उमंग से शिवरात्रि पूरा दिन रहते हैं। और शिवरात्रि के दिन खाना कुछ नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा फ्रूट लेना है, दूध लेना है और वो प्रसाद लेना ज़रूरी है। तो प्रसाद नहीं, माताजी लाई थी तो उसने कहा आप जाओ तो मुझे मंदिर भेजा। तभी एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी मिली और मैं आठवीं कक्षा में वो प्रदर्शनी देखी। तो वो प्रदर्शनी पहले तो कुछ समझ में नहीं आई, बाद में इतनी मन को भा गई कि बार बार वही आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगे। इसमें इतनी लगती थी कि मैं ही वही देवी हूँ और मुझे इतना अच्छा अनुभव होने लगा कि मैं बस इसी मार्ग पर चलूं। घर पर आई, प्रदर्शनी देखी तो उस प्रदर्शनी में सुना कि मैं कौन हूँ, वही बहुत अच्छा लगा। फिर पहले तो कुछ समझ में नहीं आया और माताजी तो चली गई खेत में और मैं घर पे, तब स्कूल पे रजा होती है तो घर पे हूँ, घर पे थी। उसके बाद आध्यात्मिक में मेरा जुड़ाव बहुत रहा, मैं बहुत अच्छा लगता था कि मैं आध्यात्मिक में कैसे आगे चलूँ। फिर हर ग्यारस के दिन और पूनम के दिन मेरी माताजी कथा करती है, सत्संग सब बहनें आती है, सत्संग की 50 बहनें होती है। तो माताजी सत्संग में होने के कारण मैं इतनी आध्यात्मिक रही पहले से, भक्ति भाव उसमें प्रसाद होता है, महाप्रसाद की बहुत महिमा होती है सत्संग में, सत्यनारायण की कथा वो सत्संग, फिर पाठ पूरा हो जाता है, 5 अध्याय होता है, पूरा होने के बाद प्रसाद सबको बांटते।
4: अच्छा तो आप अध्यात्म में चलने लगे, तो फिर घर में किसी ने विरोध तो नहीं किया?
5: जी छोटी थी तब तो किसी ने विरोध नहीं किया, पर ऐसे कहा कि अच्छा है, मम्मी अध्यात्म से जुड़ी थी तो अध्यात्म में बहुत रुचि थी मेरी पहले से ही।
4: तो भक्ति के संस्कार आपको बचपन से?
5: बचपन से
4: जी। और आठवीं से आपको थोड़ा अध्यात्म स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया?
5: स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया।
4: अच्छा, मैं स्कूल की बात कर रही हूँ कि आपकी सखियों के साथ कैसा था?
5: सखियों के साथ तो इतना मैं सखी नहीं करती थी, मुझे ऐसे आध्यात्म में अच्छा लगता है बस।
4: अच्छा, ये बताइए आप स्कूल में कोई पार्टिसिपेट करते थे जैसे गाने? हाँ, में
5: हाँ, जो कोई स्पर्धा होती है, कोई भी स्पर्धा होती है, तो पहले तो मैं लींबू चमची में वो स्पर्धा किया ना, तो मेरा वो इसमें फर्स्ट नंबर आया, पहला नंबर आया, जो अच्छा लगा कि आगे बहुत बढ़ना चाहिए, उत्सव उमंग बढ़ा, जैसे पहले नंबर आया ना तो अंदर से लगा कि बहुत आगे मेहनत करनी चाहिए, फिर तो आगे आगे नंबर आता ही गया।
4: अच्छा, तो हर साल आप भाग लेते थे?
5: हाँ, हर साल भाग लेते।
4: अच्छा, और डांस गरबा ये भी करते थे?
5: हाँ, गरबा करते, डांस तो अकेले अकेले करते।
4: तो करते थे अकेले स्टेज पर?
5: हाँ, अकेले अकेले स्टेज पर करते थे, पर थोड़ा हिचकिचाते पर कर लेते थे, फिर बाद में एक भी किया फिर तो अच्छा लगा तो करते रहते थे डांस भी।
4: कभी टूर्नामेंट में भी गए? गेम्स में कोई गेम्स खेलते थे?
5: गेम्स तो नहीं खेले।
4: अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप?
5: पढ़ाई में बहुत बढ़िया था, और एक फोकस था कि आगे बढ़ना है, मतलब इतना तो लाना ही है, तो पढ़ाई में भी रुचि बहुत रही, दसवीं में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, बारहवीं तक, पर बारहवीं तक में तो मेरी शादी हो गई थी, मैं बारहवीं तो वहाँ ससुराल में किया।
4: अच्छा, बारहवीं पढ़ रहे थे और शादी करवा दी?
5: हाँ, बारहवीं में तो मेरा जो रिजल्ट आया ना वो ससुराल में आया, पढ़ाई तो वहाँ, शादी तुरंत कर दी।
4: तो आपका ससुराल कहाँ है?
5: ससुराल भी वही बांटवा में ही है।
4: बांटवा में ही? कितना बड़ा शहर है बांटवा? शहर है या गांव है?
5: वैसे शहर भी कहो तो शहर भी है और गांव भी है,
4: तो वहीं पर आपका पियर भी और ससुराल भी?
5: ससुर एक गांव में, सब कई बार गई नहीं, रेल तो मैंने कहीं देखा नहीं, आध्यात्मिक में रहे और गांव में ही शादी हो गई।
4: तो आप बता रहे थे कि छोटे थे तब तो कोई विरोध नहीं करते थे, तो शादी के समय किसी ने विरोध किया क्या?
5: नहीं, फिर तो युगल को मैं आध्यात्मिक में ले गई तो उसको भी अच्छा लगा, फिर विरोध होगा आध्यात्मिक में,
4: फिर क्या हुआ, विरोध हुआ?
5: हाँ, ससुराल में कहते कि नहीं, हम कोई पकड़ बकड़ नहीं है, हम आध्यात्मिक में नहीं चल सकते, अब तो हमें बेटा चाहिए बेटी चाहिए, ऐसे आप शादी की है तो ये करना है वो करना है।
4: कौन बोलता है?
5: सास ससुर बोलता है, पर हमारे में लाज प्रथा थी, घूंघट निकालने की प्रथा थी
4: जी,
5: तो मेरे पापा ने ही शादी के वक्त किया था कि आप घर जाके घूंघट उठाओ, वो अलग बात है, हमारे यहाँ तो शादी होगी तो घूंघट में ही होगी
4: जी।
5: पापा जी ने यही बोला था, और माता जी और बड़ी दो बहनें हैं वो भी अच्छे से शिक्षा देती रही कि हमें अपने मर्यादा में ही रहना है, कभी इधर उधर पाँव ना जाए, फिसल ना जाए, वो बड़ा ध्यान रखना है किसी के साथ, बहुत सारी हमें मदद की बातें मिली उसी से
4: जी,
5: बड़ी दो बहनें थी उसे से सब मिला।
4: तो फिर ससुराल में सब कैसे रहते थे? शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
5: सासी तो घूंघट निकालते थे और बहुत स्ट्रगल हुआ।
4: मतलब आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट करते थे?
5: तभी तो करते थे, पर जब आध्यात्मिक में जुड़ी, आध्यात्मिक में मेरा मन रुचि लगी, तभी विरोध हुआ।
4: तो आपने कहा कि आपके हस्बैंड तो आपके साथ जाते थे?
5: पहले उसने थोड़े टाइम किया, थोड़े टाइम वो मेरे साथ चले, मैंने कहा प्यार से उसे बोला ना कि चलो हम जाते हैं, इसमें आध्यात्मिक में क्या, बहुत अच्छा है लगता है, वो सत्संग में जाने लगे, अब मेरे साथ आए, उसमें साप्ताहिक होता है कोर्स, उस वो किया उसने, और उसके बाद विरोध किया, और घर में तो जाते हैं तो सबको पता चलता है ना ससुराल में, तो मैं कह कर के जाती थी कि मैं सत्संग में जा रही हूँ, तो फिर आने के बाद सबको अच्छा नहीं लगता है, मैं अपना काम टाइम पर करती थी, सबको बहुत प्यार से रखती थी, फिर भी उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि हम पकड़ लोग नहीं है सत्संग में, हमारा आध्यात्मिक में नहीं जाना है, सत्संग में नहीं जाना है, तो फिर मन नहीं लगता था सत्संग के बिना। तो
4: फिर आपने विरोध किया?
5: मैंने विरोध नहीं किया, मैंने चलती रही सत्संग में, जाती रही
4: जी।
5: फिर छुप छुप के जाने लगी, इसे थोड़े सामने से, फिर तो उसको पता चल गया कि ये वहां से वहां हंस जाती है, तो सामने से आकर दो चमाट लगा देती।
4: अच्छा, तो इस तरह आपके साथ विरोध होने लगा।
5: बहुत
4: अच्छा, ससुराल में कितना बड़ा परिवार था, मतलब संयुक्त परिवार था या आप अकेले रहते थे सास ससुर के साथ?
5: संयुक्त परिवार था, 10 जने रहते थे, 4 भाई है, 2 बहनें हैं, 2 ननद है और सास ससुर है।

0: कि ये कैसी है ना, उसको अच्छा नहीं लगता है। वो कहते बोलते थे ना कि नहीं नाना नहीं है, हम थोड़ा ब्राह्मण है, ब्राह्मण होते हैं वो नाते थे इस।
1: जी चलिए मधु जी, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर समय हो चला एक ब्रेक लेने का, तो एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं। कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: बेटी जब आगे बढ़ती है तो कुल खानदान रोशन होता है। बेटी जब आगे बढ़ती है तो कुल खानदान रोशन होता है। उसकी एक मुस्कान से ही पूरा समाज प्रोत्साहित होता है। उसकी एक मुस्कान से ही पूरा समाज प्रोत्साहित होता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम और वंदे मातरम में मधु जी हमारे साथ बने हुए हैं। आइए, इनके अनुभव हमने काफी कुछ सुने हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो मधु जी, जैसे आपकी शादी हो गई, आपको अध्यात्म में गहरी रुचि थी, सत्संग में आप जाते थे, ससुराल में फिर आप जाने लगे तो विरोध होने लगा, फिर आप रोज नहाते तो नहाने का भी विरोध होने लगा, तो पानी कहाँ से भर के लाते थे? घर पर नल था?
3: हाँ जी, नल तो था, पर ऐसे भी सबका मन भी देखना है ना, उसका मन नहीं है और हम ना रहे फिर भी नहाना ही है, जरूरी है। फिर नहाते थे, नहाना तो जरूरी लगा, तब भी लगा और अब भी लग रहा है।
2: नहाते और रोज डांट खाते?
3: रोज डांट भी खाते, और उसको हम अच्छे नहीं लगते थे, क्यों नहाने के लिए मना करते और हम नहाते, तो संबंध ऐसे प्यार से नहीं रहता है।
2: आपके हस्बैंड के साथ?
3: हाँ, वो तो बहुत अच्छे थे, अभी भी अच्छे है।
2: तो कौन मना करता है?
3: सासू, जेठानी, वो कहते कि नहीं नहाना है, ये क्यों नहाना है इसे।
2: तो फिर साथ में ही रहे या अलग हो गए?
3: नहीं, फिर तो साथ में रही, जब तक पहली बेटी आई दूसरा बेटा आया तब तक साथ थे।
2: अच्छा, आपके हस्बैंड क्या काम करते थे उस समय?
3: वो होम गार्ड में थे, अभी तो रिटायर हो गए हैं।
2: अच्छा, तो आपके गांव में थे?
3: हाँ, गांव में ही सेवा होती है ना सरकारी होम गार्ड की, जैसे पुलिस के नीचे।
2: जी जी,
3: कॉन्स्टेबल के नीचे होती है।
2: अच्छा, तो जैसे आपका मायका भी वहीं था और
3: ससुराल भी गांव में।
2: जी, जैसे आप बता रहे थे कि कपड़े धोने आप खेत में जाते थे, तो पानी की कमी थी तो आपके मायके में भी कपड़े धोने आप खेत पर जाते थे?
3: जी नहीं, वहाँ तो घर पे ही था सब कुछ, घर पे ही कपड़े धोते थे, पर ससुराल में ना दुष्काल हुआ तो वहाँ थोड़ी तंगी हुई पानी की, तो कहते कि आप खेत में जाओ। तो मैंने तो जैसे शादी की आई और तुरंत कपड़े या जो चद्दर वो रजाई होती है ना, एक साथ 18 रजाई धोई, एक दिन भी मैंने बैठी नहीं हूँ।
2: इतना काम करते थे?
3: एक दिन भी बैठी नहीं हूँ, जैसे आज इधर पांव रखा, शाम को शादी करके आए, सुबह सब बोलने लगे इतना काम है, इतना काम है, वो है, इतना धोना है। तो मैंने सीधा कहा चलो मैं आती हूँ, मैं और मेरी जेठानी साथ में गए। फिर एक दिन आई, दूसरे दिन तो सास बोलने लगी कि इतना काम मैं अकेली क्या करूँगी, तो वो तो घर पर रही रसोई के लिए और मैं अकेली गई
2: कपड़े धोने।
3: हाँ,
2: तो शादी होते ही आपके काम में लगा देते हैं, नई नई बहू आई तो थोड़ा लाड़ कोड़ भी तो करते हैं ना?
3: करते हैं ना, अभी हम भी कर रहे हैं, हमारी भी बहू है, हम भी बहुत करते हैं, क्योंकि ऐसे आध्यात्म में जाते हैं ना तो जैसे हम पर बीती है ना उस पर ना ही बीते, उसको तो इतना लाड प्यार करते, उसको तो आप करके, आप अभी भी मैं, मेरी बहू है, उसको आप कहकर ही बुलाती हूँ
2: जी,
3: उसको ऐसे तुकार के नहीं बुलाते, प्यार से ही उसे बुलाते, अगर बुलाना है तो प्यार से ही बुलाते
2: जी जी। अच्छा, तो जैसे आपका काम में लगा दिया तो आपके मायके वालों ने कुछ नहीं कहा?
3: नहीं नहीं, माँ पापा का तो यही था कि मेहनत करो, मेहनत आपको जगह दे, मेहनत से ही आगे बढ़ना है ना।
2: तो इतना आप काम करते थे तो सास ससुर प्यार करते थे आपको?
3: नहीं, अपना अपना तरीका होता है ना, अपना अपना नजरिया होता है,
2: अच्छा, किसी का प्रेम नहीं मिला?
3: नहीं, आध्यात्मिक में बहुत रुचि इसलिए तो जगी ना।
2: अच्छा, तो इसलिए आपको थोड़ा सत्संग से प्रेम बढ़ा?
3: हाँ, प्रेम और बढ़ा।
2: फिर कितने समय में आप पियर जाते थे?
3: पियर तो गांव में ही था, क्योंकि वहाँ खाना मुझे, वहाँ तेल बहुत लगता था सब्जी में, और मायके में तेल नहीं था तो साग भाजी में मायके ही खाती थी। अब माता जी मेरी और मेरी भाभी थी, सब कहते थे अच्छा आपको अच्छा नहीं लगता यहाँ खा लो, और खा करके वहाँ जाती हूँ ससुराल में।
2: तो रोज जाते थे खाना खाने?
3: हाँ, वहाँ रिवाज है, गांव में जो शादी होती है ना वो 4 बजे या 5 बजे मायके में रोज जाती है।
2: अच्छा,
3: अभी भी
2: टाइम मिल जाता है?
3: नहीं, टाइम निकालते, वो रिवाज हो गया है।
2: तो 5 बजे जा करके खाना खा के वापिस आ जाते हैं?
3: हाँ।
2: फिर ससुराल में खाना नहीं खाते थे?
3: नहीं, सब्जी में बहुत तेल होता है, कोई स्वाद नहीं। तो क्या,
2: तो आप नहीं बोलते कि सब्जी में थोड़ा तेल कम डालो, या आप खुद नहीं बनाते?
3: नहीं, सबको यही पसंद है, मेरी पसंद नहीं है तो इसमें क्या बड़ी बात है, हम मैं खा लेते।
2: नहीं तो जैसे नहीं कहते कि आपके चाहिए उत्ती अलग से बना दो?
3: अलग कोई नहीं बनता किसी का।
2: अच्छा, तो इस तरह आपके जीवन यात्रा रही। वो कहते हैं ना, गांव में पियर और गांव में ससुराल है, तो थोड़ी मुश्किल तो रहती है बैलेंस बनाने में। तो मुश्किल रहती थी आपके जीवन में भी?
3: हाँ, पर अध्यात्म में बहुत रुचि थी ना, तो मुश्किल नहीं लगा
2: जी। अच्छा, और आप बोल रहे थे कि आपके हस्बैंड का आपको सपोर्ट मिलता था?
3: तभी मिलता था, फिर वो आध्यात्मिक में जुड़े तो थोड़ा कम हुआ। फिर ससुराल में सास ने और बोला कि अब तो 3 साल हो गए, तो 3 साल में तो बच्चा होना चाहिए। मैके में भी यही कुछ रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर तो बेटी हुई। बेटी हुई तो जेठानी थी, वो खेत में चली जाती थी, पूरा काम मेरे पर आ जाता था, जैसे गायों को दोना, भैंस रखते थे इसको दोना, सब काम करना और बच्चे को रखना
2: जी।
3: थोड़ा ज्यादा सासू का साथ था, सासू थोड़ी बेटी को रखती थी, साथ में थे ना, जॉइंट फैमिली में
2: जी,
3: तो रखती थी।
2: दूसरे और कोई सदस्य नहीं थे परिवार में?
3: हाँ थे ना, वो है, एक चूल्हे पर ही रसोई बनती थी, पर यहाँ से कटोरी में लेकर वो अपने घर में खाती थी, वो मेरी सास की सास थी ना वो।
2: अच्छा, तो मधु जी, जैसे आप कह रहे थे कि आपको सत्संग का शौक था, इस वजह से परिवार वाले आपको सपोर्ट नहीं करते थे और काम की जिम्मेवारी काफ़ी रहती थी आपके ऊपर, और फिर आप कह रहे थे कि बच्चे होने के बाद आप अलग हो गए, तो सभी अलग हो गए, जेठानी, आप या फिर सास ससुर के साथ रहते थे आप?
3: सभी अलग हो गए, देवरानी भी अलग हो गई, मैं भी। फिर तो देवर की शादी हुई, उसके बाद 1 साल में सब अलग हो गए
2: जी। फिर तो आपको सत्संग में जाने से कोई नहीं रोकता था?
3: नहीं, कोई नहीं रोकता था, मैं चुपके से ही जाती थी सत्संग में। वो जो मेरे पति है ना, उसको जाना अच्छा नहीं लगता है, फिर मैं अपना ढूंढती थी अंदर से कि भई क्या मेरी कमी है, मेरा कोई काम छूट ना जाए, उसको बराबर से टाइम देती हूँ, उसका खाना पीना सब काम करना।
2: अच्छा, आप सारा काम करते थे और भजन कीर्तन भी करते थे
3: साथ में? बहुत भजन कीर्तन साथ में ही रहता था।
2: अच्छा, और आप क्या करते थे? कभी
3: सिलाई करते थे? हाँ, बच्चों को पढ़ाई। हाँ, में
2: आपको सिलाई का भी शौक रहा, तो सिलने में आप क्या क्या सिलते थे?
3: ब्लाउज सिलते थे, ड्रेस सिलते थे, सिलाई का काफी शौक था, मैं ब्लाउज भी बना लेती थी और अपना पूरा जो भी है वो सब मैं सिलाई कर लेती हूँ।
2: जी जी, तो आप जैसे सास, जेठानी, देरानी सबके साथ रहते थे, वहाँ पर भी सिलाई करते थे या अलग होने के बाद शुरू?
3: अलग होने के बाद, साथ में तो टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि 10 जने का काम था,
2: इसलिए आप अलग होने के बाद सिलाई का काम शुरू किया। तो आप अपना ही सिलते थे या मोल का भी सिलते थे?
3: मैं अपना ही सिलती थी, फिर दो थे, भैंस थी और खेत थी। अलग होने के बाद तो खेत को संभालना होता है, सुबह 8 बजे बाता बना करके 8 बजे निकल जाना, 1 घंटे का चलने का खेत दूर थी।
2: अच्छा,
3: तो वहाँ पहुँच के आध्यात्मिक में रुचि थी ना, तो वहाँ भी मैं पढ़ लेती थी, कुछ भजन भजन कर लेती थी।
2: वहाँ भजन किसके साथ करते थे?
3: ऐसे अपने ऐसे मन से। तो जब मजदूर आते ना, उससे पहले मैं पहुँच जाती थी।
2: अच्छा,
3: हाँ।
2: तो आपके हस्बैंड भी जाते थे?
3: वो दोपहर को रोटी लेकर आते थे, उसको क्या भाता बोलते हैं। हाँ, तो वो भात लेकर के आते थे। मैं अपने भाता लेकर के जाती थी सुबह, और बच्चों को मेरी माँ रखती थी।
2: अच्छा,
3: अलग होने के बाद।
2: जी जी
3: हाँ। और शाम को आती थी चल करके, साइकिल भी नहीं कुछ नहीं था, चल के आना चल के जाना। तो एक घंटा तो हो जाता है आने जाने में, दो घंटा।
2: तो खेत में क्या करते थे आप, कुछ बोते थे?
3: बोते तो वो
2: बुआई आप ही करते या मजदूर करते, आप देख रेख करते?
3: बुआई तो उसी से होती है, ट्रैक्टर से होती है।
2: जी,
3: पहले तो बेल था ना, बेल से होती बुआई। तो फिर उसमें सफाई होती है ना, वो हम करते थे।
2: अच्छा,
3: उसके बाद बड़े होकर के कटाई होती है ना, जैसे मूंगफली को पाड़ते हैं, भेगी करते हैं जैसे।
2: जी, खटी करते हैं और हाँ, फिर उसकी मिट्टी हटाते हैं।
3: हाँ,
2: मतलब खेत के काम में आप व्यस्त
3: सारे काम थे? सारे काम करते थे।
2: जी जी,
3: जो मजदूर वाला होता है ना, वो सारा काम करते थे।
2: जी जी, और पढ़ाई में आपको शौक था, और उसी गांव में आपकी शादी हुई, तो आपके टीचर लोग नहीं कहते कि क्या तू इन कामों में लग गई, पढ़ाई कर लेती तो अच्छा रहता?
3: टीचर बहुत अच्छी थी, पढ़ने जाते थे तो भी वो ऐसे वार्ता बोलते हैं, ऐसे ही पढ़ाई की भार नहीं दिया, भणतर में तो बहुत अच्छा।
2: जी जी, आप इस तरह खेत में जाते, खेत में आते, आपका टाइम पूरा हो जाता, फिर सिलाई कब करते हैं?
3: सिलाई तो मैं जिस दिन नहीं जाना होता है ना, तब करती हूँ। और कभी कभी तो खाने पीने के बाद टाइम निकाल करके जो बनाना है ना, वो मन से बना लेती हूँ, करना है कि यही करना है, यही चाहिए घर में और अपने पहनने में। तो रात को भी मैं सिल लेती थी।
2: अच्छा, जब जरूरत पड़ी कि हाँ मेरे को इस तरह के कपड़े चाहिए, तो आप खुद का सिल लेते थे?
3: खुद का सिल लेते।
2: चलिए, बहुत अच्छी बात है मधु जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन फिर से समय हो चला एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, मधु जी के अनुभव और भी बाकी है, तो बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: नारी की हंसी में ईश्वर बसता है, नारी की हंसी में ईश्वर बसता है, उसकी बातों में सच्चाई रहती है। जो नारी का मान रखे उसकी हर राह उजली रहती है, उसकी हर राह उजली रहती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में मधु जी हमारे साथ बने हुए हैं। मधु जी के काफ़ी अनुभव सुने हैं, और भी हम कहना चाहेंगे, मधु जी आप पूरे जीवन अभी तक 52 साल की उम्र है तब तक आप पाटवा गांव में ही रहे, उससे बाहर आपका जाना नहीं हुआ
1: कभी नहीं।
0: तो जैसे आपकी दो बहनें बड़ी है, कभी उनके यहाँ जाना हुआ होगा?
1: एक तो गांव में ही है, एक बाजू में मजेठी है, वहाँ है।
0: अच्छा, पास पास में ही है।
1: हाँ, कभी कभी जैसे कि प्रसंग होते हैं, उसकी बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, तभी जाना हुआ
0: जी। और आप कभी ट्रेन में बैठे ही नहीं?
1: नहीं, पहली बार एक आध्यात्मिक ही बैठे।
0: हाँ, पहले जब आप रहे अपने ससुराल में तब तक ट्रेन में नहीं बैठे?
1: ट्रेन देखा ही नहीं था, दूर बाटवे में तो ट्रेन नहीं है, जूनागढ़ से।
0: जूनागढ़ से मिलती है। अच्छा, और जैसे अब आपकी उम्र 52 साल की है, आपके भी बच्चे बड़े हो गए हैं, बहू भी आ गई है, बेटी की भी शादी हो गई होगी?
1: हाँ, बेटी की भी शादी हो गई है, वो उसका भी दो बेटी है, बेटा है छोटा।
0: अच्छा, तो आप नहीं पढ़ पाए तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाया?
1: बहुत खूब पढ़ाया, यहाँ तक कि उसको तो नौकरी भी दिलाई, यहाँ तक
0: बेटी को?
1: बेटे को भी। अभी बेटा भी है, वो लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर वहाँ पाजोद में है।
0: अच्छा, दोनों बच्चे जॉब करते हैं आपके?
1: हाँ, बेटी नहीं करती, बेटी को तो अच्छा ससुराल मिला है तो उसको नहीं करने देते, पर अब वो विदेश जाने वाली है।
0: जी, शादी हो गई और बेटा जॉब करता है?
1: हाँ
0: अभी आपको कोई दिक्कत नहीं?
1: जी नहीं,
0: अभी कोई सत्संग से रोकता नहीं?
1: जी नहीं।
0: आपके हस्बैंड सहयोग करते हैं अब?
1: हाँ, वो सहयोग करते हैं थोड़ा, मैं बोलती हूँ कि मैं जा रही हूँ तो सत्संग में, तो मुस्कुरा देते हैं, कुछ बोलते नहीं है।
0: जी,
1: मैं उसको भी बोलती हूँ आप भी हमारे साथ चलो।
0: अभी भी आपके सास ससुर सभी है?
1: सास है अभी।
0: जी, अब अच्छे रहते हैं आपके साथ?
1: हाँ, बढ़िया रहते हैं, सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहते हैं।
0: जी,
1: हाँ,
0: एक समय था जब कोई आपके साथ अच्छे नहीं रहते थे तो
1: नहीं,
0: आपका दिल दुखता था?
1: एक समय तो यही था कि जब मैं अलग हुई ना, तब तो मेरे से सब विरोधी थे, फिर मेरी ये सत्संग की वजह से मैं सबसे साथ मिलजुल रही हूँ। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं उसको स्वीकार लेती हूँ, जैसे भी है मैं मिल जाती हूँ उसके, हर प्रसंग में उसके आगे होती हूँ।
0: जी, बिल्कुल। तो आपने सबके साथ तालमेल बनाए रखा?
1: अभी भी बना ही रखा है।
0: जी, और बहू के साथ आपका कैसा व्यवहार है?
1: बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, उसका नाम भी ऐसा है जैसा उसका काम है, उसका नाम है शीतल। तो बहुत प्यारी है, बहुत मासूम है, बहुत अच्छी है।
0: जी, तो आपने बहू और बेटी को समान समझा?
1: हाँ, बेटी से बढ़कर भी बहू को मैंने अपने दिल में रखा है।
0: जी,
1: कहते हैं ना, बेटी तो आती है तो जाती है,
0: जी
1: बेटी से हमारा क्या। हाँ, आती है, वो फोन भी करती है, सब हालचाल पूछती है, पर बेटी से बढ़कर है बहू,
0: जी, बहुत
1: और
0: बढ़िया।
1: बहुत बहुत अच्छी है,
0: जी
1: बहुत प्यारी है, और उस जैसा इसका नाम है ना वैसा उसका गुण है।
0: जी और सिलाई काम आज भी आप करते हैं या
1: हाँ,
0: छोड़ दिया?
1: नहीं नहीं करती हूँ अभी भी, अभी तो बहुत अच्छा सिलाई काम हाथ में बैठ गया है।
0: तो आप अपना ही करते हैं या अभी भी मूल का करते हैं?
1: मूल का बेटे ना बोलते हैं कि अभी कोई जरूरत नहीं मम्मी, वो गवर्नमेंट जॉब करता है, खेती है,
0: जी,
1: अभी बहुत अच्छा है।
0: तो पहले आप मॉल का भी करते थे?
1: पहले पोल का नहीं, घर का पूरा करती थी, खेत करती थी और पशुपालन,
0: अच्छा
1: पशुपालन मेरे ऊपर था।
0: अच्छा कितनी गाय भेजते हैं?
1: 3 गाय भैंसे थी और उसके बछड़े बच्चे होते हैं वो थे,
0: तो आप अकेले
1: और
0: संभालते थे?
1: हाँ, हस्बैंड का तभी थोड़ा कम था साथ सहयोग,
0: जी, तो
1: कहती
0: वो
1: है
0: क्यों सहयोग नहीं करते थे फिर? आपने इतना क्यों पाला, खेती को
1: पैसे
0: संभाला?
1: के लिए, पैसा तो चाहिए ना घर चलाने के लिए, तो खेत में से जो उत्पादन होता है वो तो इतना नहीं होता था तब।
0: लेकिन आपके हस्बैंड तो होमगार्ड थे ना, तो सैलरी तो आती होगी ना?
1: हाँ, वो उसके खाते में जमा होती है, वो घर पर नहीं देते थे ना,
0: अच्छा, घर में पैसे नहीं देते थे
1: नहीं देते थे
0: तो घर
1: इसलिए।
0: कैसे चलेगा?
1: हाँ बस दूध घर का है, सब्जी खेत की आती है, गेहूं भी खेत के आते हैं, तो और क्या चाहिए? जैसे कि बाहर से कुछ लेना है ना, तो वो गाय भैंस का जो दूध बेचने के बाद जो पैसा आता है ना, उसमें से मेरा घर चल जाता है।
0: इसलिए आपने गाय भैंस रखी कि आपके हस्बैंड पैसे नहीं देते थे?
1: हाँ, तभी भी नहीं देते, अभी भी नहीं देते,
0: अभी भी नहीं देते?
1: नहीं देते।
0: तो फिर पैसों का क्या करेंगे वो?
1: वो तो क्या करेगी, ले जाएंगे साथ में, कोई नहीं ले जाता है ना, यहाँ ही पड़ा रहेगा।
0: अच्छा, तो आप जैसे आबू आए, अभी आप रेडियो मधुबन में हमारे साथ है, तो किराया भी लगता है, पैसा भी चाहिए बाहर जाने पर, तो कौन देता है फिर आपको? अच्छा,
1: बेटा देता है ना,
0: बेटा देता है।
1: बेटे से मांगती हूँ, मेरा स्वभाव यही है कि मैं भांगती नहीं, वो सामने से बोलता है कि अभी तो आपका खलास हो गया होगा, इतना दिया था, अब खलास हो गया होगा तो लो मम्मी। मैं तो पहले तो ना ही बोलती थी, मुझे नहीं चाहिए, फिर यहाँ ये तो नहीं,
0: बाहर जाते हैं तो फिर पैसे दे देते हैं बेटा, लेकिन हस्बैंड आज भी नहीं देते, और आज भी जॉब उनकी जारी है,
1: नहीं वो रिटायर्ड हो गए,
0: रिटायर्ड हो गए, पेंशन आती होगी।
1: नहीं पेंशन नहीं आती उसमें, नहीं आती है, होम गार्ड
0: अच्छा
1: में नहीं आती है,
0: अच्छा फिर भी थोड़ा बहुत पैसा उनके हाथ में होगा, लेकिन देते नहीं है
1: हाँ वो सारा जमीन का पैसा तो आता ही है ना,
0: जी, खेती बाड़ी का।
1: खेती बाड़ी का
0: तो फिर खेती बाड़ी में से भी आपको नहीं मिलता, जबकि आप तो काम करते हैं।
1: से नहीं मिलता।
0: अच्छा,
1: ये महिलाओं की जिंदगी ऐसी टगल वाली है,
0: हाँ, फिर भी आप खुशी खुशी उसको बर्दाश्त करके चल रहे हैं।
1: स्वीकार लिया ना जैसे भी है।
0: जी। तो चलिए, कार्यक्रम के अंत में आप हमारी बहनें सुन रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे?
1: मेहनत करना है, मेहनत से डरना नहीं है, और हर परिस्थिति का डट के सामना करना है, जब सामना करेंगे आगे बढ़ेंगे तभी हमें अंदर से खुशी भी आएगी और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा।
0: जी, चलिए, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है मधु जी, सभी नारी शक्ति को, कि मेहनत करना है और मेहनत के दम पर आगे बढ़ना है। जैसे आप पशुपालन करके थोड़ा बहुत पैसे बचा करके कहीं जाते हो तो लेके जाते हो,
1: नहीं
0: बाकी घर से नहीं मिलता है।
1: और सहन शक्ति एक बड़ी शक्ति है, वो सहन शक्ति से हमारा सबके साथ संबंध अच्छा रहता है,
0: जी,
1: सहन करेंगे ना तो सबके प्यारे रहेंगे।
0: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है मधु जी ने, बहुत बहुत आभार। आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने जीवन के अनुभव सभी के साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू जी, थैंक यू उषा दीदी जी, आपका बहुत बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, और बहुत बहुत दुआएं देती हूँ आपको।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में मधु जी राठौड़ हमारे साथ बने हुए थे। आप जूनागढ़ बांटवा से पधारे हैं और आपने अपने जीवन के अनुभव सुनाए हैं। देखिए, आपने जाना है कि नारी शक्ति कितनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका एक रुपये पर भी अधिकार नहीं होता है, फिर भी आप खुश है, परिवार को साथ में लेके चलते हैं, और सत्संग में जाना कोई गलत बात नहीं है। अच्छी बात है कि आप ईश्वर भजन करते हैं, तो परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया और आपके साथ अव्यवहार किया, फिर भी आप सहनशीलता के दम पर और मिलनसार संस्कार होने के दम पर सभी को साथ में लेके चले और हमेशा खुश रहे, और आज भी खुश है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृ शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

है जो करता है मुश्किल हमारी दूर। हर तरफ हर जगह

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। क्या कहे, गांव और अंचल का जब नाम सुनते हमें बहुत खुशी मिलता है, अपनापन आता है, क्योंकि अपना गांव स्वर्ग से बड़े होते हैं और गांव को स्वर्ग बनाने के लिए हमारा पर्यावरण कितना आवश्यकता हम भलीभांति जानते हैं। आप और हम सब मिलकर पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं और हमारा एपिसोड में हम इस पर्यावरण को लेकर ज्यादा बातचीत होते रहता है। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हर एपिसोड की तरफ आज का एपिसोड में हम क्या कहेंगे, वायु का प्रदूषण का बारे में, उसको कैसे सुरक्षित रखेंगे, उस चीज हम रखें। लेकिन आज हम खजाना से लाए हैं जल का ऊपर में। जल हमारा जीवन कहते हैं, जल ही जीवन कहते हैं और जल है तो कल है, और जल जितना सुरक्षित रहेंगे हम भी उतना सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि पर्यावरण का अर्थ ही हमारा चारों ओर का वातावरण या परिवेश।
1: बिल्कुल
0: सर। तो हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए श्रीमान भोपाल राम जी पुरोहित उपस्थित है, तो उनको स्वागत करते हैं। और पर्यावरणविद है वो, तो अनुभवी है, जब रिटायरमेंट होने के बाद उनका दिल चाह जाए हम पर्यावरण के बारे में कुछ अवेयरनेस हम रहेंगे और हमको देखकर दूसरे हमें फॉलो करेंगे। हम पहले खुद को एनवायरमेंट के ऊपर सतर्क सजग जागरूकता लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे से हम बात कर रहे हैं, भाई जिसको अच्छा लगा तो ग्रहण करे, जिसको अच्छा नहीं लगा तो अपना साइड में
1: सभी ग्रहण करेंगे।
0: वेरी गुड।
1: तो साथ सभी ग्रहण
0: सब ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमारा पॉजिटिव वाइब्रेशन रहे। तो सर जी आपको स्वागत करते। आज हमारा विषय है जल प्रदूषण, कैसे होता है, क्यों होता है और किससे होता है, और इससे निजात पाने के लिए क्या क्या उपाय हमें करना चाहिए। सर आपको स्वागत है रेडियो मधुबन परिवार की ओर से।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार। नमस्कार।
1: पर्यावरण मानव जीवन के लिए अति आवश्यक पहलू।
0: अति आवश्यक, क्या बात।
1: जिसमें निरंतर रेडियो मधुबन के माध्यम से जिसकी प्रेरणा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रेडियो मधुबन के हेड यशवंत भाई, कृष्णा दीदी, आरुषि दीदी और हमारे बी के पवित्र भाई द्वारा इसकी जब प्रेरणा मुझे हुई तो हमने इस पर काम करने का मन बना लिया। और बाह्य वातावरण का जो प्रदूषण हो रहा है उसका सामान्य परिचय देते हुए हम सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी देवें, ये हमारा लक्ष्य रहा। पांचों तत्वों में किस प्रकार से प्रदूषण हो रहा है, बाहरी, और उसके बाद में फिर अंतः शुद्धि का जो प्रयास सभी आध्यात्मिक संस्थाओं के द्वारा होता है, राजयोग के रूप में जो पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसको बहुत फोकस किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ये चीज जा रही है, तो हम इस प्रदूषण के इनर जो पोर्शन है मैंने उस पर ही ज्यादा सोचा है कि बाहरी के लिए तो बहुत काम हो गया है।
0: बराबर।
1: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत काम हुआ है, नेशनल लेवल पर भी बहुत काम हुआ है, स्टेट लेवल पर भी बहुत काम हुआ है, सामान्य चर्चा हम करते रहेंगे। अब अति आवश्यकता ये है कि ये सब लोग काम करें, सरकार काम करें, तो हम क्यों नहीं करें। हम में भी मैं कहूंगा, आप ये कहेंगे, मैं क्यों नहीं करूं। जब से इंडिविजुअल आप स्वयं जब इस काम को करना शुरू करेंगे तब जा करके ये पर्यावरण शुद्धि जो है का वातावरण बनेगा। तो हमारे जो लक्ष्य प्राप्त करने हैं विकास के, वो सभी निरोगी रह करके प्राप्त कर पाएंगे, जहाँ पर ईश्वरीय अनुकंपा प्रकृति के माध्यम से बरसेगी। हम सब पर जो इसके लिए काम करेंगे, दत्तचित्त होकर के हमको काम करना पड़ेगा। तो हमने इसकी एडवोकेसी का पूरा कार्यक्रम तैयार किया है, इसके तहत हम प्रकृति की गोद में बैठकर ही ये काम कर रहे हैं। जगह जगह पर हम लोग बीके पवित्रा भाई हमको जगह सुझाते हैं, कभी हम सुझाते हैं।
0: तो आज का सुझाव कहा आपका तरफ से?
1: आज का सुझाव भाई साहब
0: जिस जगह में हम आज कर रहे हैं,
1: भाई साहब एक दिन भी मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि दिन का कम से कम एक थोड़ा समय मैं इस काम के लिए सोचता पूरे दिन हूँ, लेकिन इस काम के लिए मैं देख के किसी को जागरूक कर पाऊँ।
0: अरे इस जगह का क्या
1: और बात कर, रोज नई जगह हम देख रहे हैं। आज ये हमारे केवरले गांव का रामदेव मंदिर परिसर है, बहुत ही सुंदर ढंग से सुसज्जित।
0: और आपने क्या बताया, इसको एक व्यक्ति इंडिविजुअल वन मैन।
1: हाँ सर, इसका जीर्णोद्धार वन मैन ने किया, एक व्यक्ति ने किया है सर,
0: मानना पड़ेगा सर। कितना भावना है
1: सर, लोगों में भावना है,
0: भावना
1: और उसी भावना के तहत हम
0: ये भावना में जो पूरा उत्सव
1: तो सर इसी भक्ति भावना को लेकर के अंतः शुद्धि होगी तो ये पर्यावरण के लिए हम सब मतलब अंतः शुद्धि का मतलब जब एक व्यक्ति विशेष आत्म ज्ञान से प्रेरित होकर के काम करेगा उसकी चर्चा इसी एपिसोड में बाद में करेंगे तो जनहित में जब वो काम करेगा
0: जी सर
1: पवित्रा भाई आप स्वयं करेंगे अंजा बहन बैठी है ये स्वयं करेगी जब आप और हम सब मिलकर के स्वयं जब इस पर्यावरण की शुद्धि का प्रयास करेंगे तो पर्यावरण स्वतः ही शुद्ध हो जाएगा।
0: सर आज के समय में पर्यावरण का शुद्धि पर्यावरण को बचा पर्यावरण संरक्षण ये सब शब्द आ रहा है
1: जी सर
0: अब थोड़ा हमारा श्रोता मित्र भी थोड़ा सोचने के लिए मजबूर कर देते आप
1: सर बात यही है कि इसमें मुझे आप लोग खींच के ले जाते आध्यात्म की दुनिया में जो जीवन का वास्तविक पहलू है मैं सर जब कहीं बैठता हूँ तब लोग मुझे चूंकि सेवानिवृत्त हो गया लोग ये कहते हैं कि आप अपना समय कैसे गुजारते हैं समय आप तो मुश्किल से निकाल पा रहे होंगे अरे भैया समय को मैनेज करते समय मिल ही नहीं रहा सामाजिक सेवा करते हैं और भी काम करते हैं उसके साथ संयोजन बिठाना पड़ता है पवित्रा भाई मुझे मजबूर कर देते हैं कई बार कभी कभार तो जब नहीं दे पाते हैं तो ऑनलाइन ही कर देते हैं तो पर जो आमने सामने बैठ करके बातचीत करने का जो आनंद है वो वास्तव में उसमें तो नहीं मिलता सर
0: कुछ भी हो जाए किंतु प्रकृति पूरा खुश होता है
1: प्रकृति बरस
0: हमारा बारे में ये लोग इतना महिमा कर रहे हैं तो ये बोले सूक्ष्म में जो हम जहाँ पर बैठ छत का नीचे
1: बिल्कुल
0: बैठकर
1: जी जी
0: पांच तत्व का परिवेश में
1: उस परिवेश
0: में सभी चीजें जो पर्यावरण के लिए संश्लिष्ट है जैसे जीव जंतु पंछी
1: जी हाँ जी
0: और ये जो पांच तत्व हैं सूरज का प्रकाश भी
1: बिल्कुल सभी सभी
0: आ रहा है
1: पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश
0: उनका आवाज
1: सभी
0: आ रहा है
1: जी हाँ जी हाँ
0: इसके बाद जहाँ हम बैठे मिट्टी के नीचे बैठ कर हम बात करते हैं
1: नीचे बैठ कर ही बात करते हैं हमेशा नीचे बैठ कर ही बात करते हैं तो सर ये प्रकृति बहुत कुछ देती है सर हम प्रकृति के ही तो अंश है
0: अब जाएंगे तो मिट्टी में वैसी मिलने
1: मिट्टी से पैदा हुए और मिट्टी में ही
0: मिलना है
1: तो सर उसकी शुद्धि का प्रयास उस पर्यावरण को ठीक रखने का प्रयास हम सबको करना होगा नहीं तो हम भयावह बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे तो हम इस प्रकृति की शुद्धि की बात कर रहे हैं तो वो जो पर्यावरण जब शुद्ध विशुद्ध हो जाएगा तो हमारा जो विकास है वो भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से होगा हमने पृथ्वी पर माइनिंग वगैरह इसकी जो होती है उस पर बात की उसके बाद में वायु प्रदूषण की बात की आज हमारा फोकस पवित्रा भाई
0: जी जी
1: जल की पवित्रता की तरफ होगा कि जल किस तरह से प्रदूषित होता है और क्या क्या कारण है और वो क्या दुष्प्रभाव डालता है
0: सर जल को तो अमृत भी कहते हैं लेकिन आज तो 20 जैसे हो गया बोतल में भी आ रहा है कितना भी प्यूरिफिकेशन करते हैं सभी फल बनते हैं
1: सर
0: कोला पानी नहीं पी पा रहे अभी पहले तो हम तो कहीं पर भी पानी पी लेते थे हमारा 50 साल पहले का बात में कह रहा हूँ
1: सर अपन कई बार जैसे
0: आपने पवित्रता जल में पवित्रता शुद्ध अमृत जल
1: अमृतम जलम
0: क्या बात
1: तो सर जब जल अमृत है और अगर इसमें अगर कुछ मिलावट हो गई तो समझो हमारी मानवता खतरे में पूरी मानव जाति ही खतरे में पड़ जाएगी कहते हैं सर अगला जो विश्व युद्ध है ऐसा कहते थे कुछ समय पहले तक तो वो जल के लिए होगा और सर ये बात भी सत्य हो रही है कि अभी जल मार्गों के लिए विश्व युद्ध की बात तो चल ही रही है
0: उसी के लिए तो सब कुछ पानी रोक जाएगा तो क्या हालत होगा सब
1: वाहन कहाँ से होगा तो हम तो जब जल ही पवित्र नहीं बचेगा तो हम कैसे बच पाएंगे
0: और जल तो हर चीज में आवश्यकता है सर नहाने कपड़ा धोने में खाना पीने सब में जल
1: और
0: खेती में भी जल
1: ये बढ़िया चीज आपके माध्यम से सामने आ रही है कि बाकी चीजों की शुद्धि जैसे पृथ्वी तत्व है प्योर तो वो भी होना चाहिए लेकिन वहाँ थोड़ी सी अशुद्धि अगर रह भी जाती है तो चल सकता है जल की अशुद्धि वो तो निश्चित रूप से हमको इस तरह से कर देगी झकझोर देगी कि आप अपने आप को संभाल भी नहीं पाएंगे बीमारियों की चर्चा अपन बाद में करेंगे इस मामले में और सर मेरा बीमारियों की चर्चा करने के पीछे वजह ये है कि हमको इसके प्रति सचेत होना है डराना नहीं है
0: डराना नहीं
1: कि भाई इससे ऐसी बीमारी हो जाएगी तो ऐसे करे वैसे करे नहीं वो हमारा कतई उद्देश्य नहीं है लेकिन उसके लिए एक जागरूक होना है कि किस तरह से ये नुकसान कर सकता है तो हम उसकी शुद्धि का प्रयास क्यों नहीं करें मूल तत्व मूल बात हमारी वो है तो सर ये जल प्रदूषित कैसे होता है सर जब ये विषय जब मैं लेता हूँ तो मेरे लिए इस तो जो जल है उसका प्रदूषण बड़े भारी तौर पे भयंकर तरीके से हो रहा है। तो अब जैसे नदियों में जो पानी आ रहा है,
2: नदियों में जो
1: जल आ रहा है, वो मतलब सीवरेज का पानी नदियों में छोड़ दिया।
2: क्या बात, देख हाँ सभी गांव में, इसे तो गंगा में भी
1: सब में डाल दिया।
2: कितना हालत,
1: तो सीवरेज जब उसमें छोड़ दिया तो निश्चित तौर पे वो सारा जल प्रदूषित हो जाएगा, वो सारे एरिया को प्रदूषित कर, सारे एरिया को वो प्रदूषित कर देंगे।
2: जी जी,
1: तो बताइए कि हम अपने आप को बचा कैसे पाएंगे?
2: बचाने के लिए क्या तरीका होना चाहिए? सबको पता है
1: उसको
2: कितना हो रहा है,
1: अपन दूसरे भाग में बात करेंगे।
2: होता है
1: तो ये अब आप ये बताओ कितना खतरनाक,
2: कारण कैसे होता है, नहीं किस तरह पानी प्रदूषित होता है,
1: दूषित मतलब सामान्य कारण ही है
2: अवेयरनेस का कमी,
1: कोई ऐसा हाँ अवेयरनेस की।
2: चलो भाई इतने में हम थोड़ा डाल देंगे क्या हो जाएगा, ऐसे सब लोग ऐसे ऐसे करते
1: हैं। सर जो औद्योगिक अपशिष्ट है वो सारा का सारा, सर उसका सिस्टम है प्योरिफिकेशन का, हम बात करेंगे उस पर, लेकिन वो सारा का सारा नदी की तरफ, गांव का नारा नदी की तरफ, तो सारे नाले जब नदी में जाएंगे तो फिर वो पानी वहां का शुद्ध कैसे होगा? तो फिर शुद्ध जल आप किसी को कैसे उपलब्ध करवा पाएंगे?
2: पूजा पाठ में भी तो जल पहला आवश्यक होता है,
1: तो सर वहाँ भी शुद्ध जल चाहिए। आप तो शुद्ध जल काम में ले रहे हो।
2: फिर भी मंत्र द्वारा लोग शुद्धिकरण भी कर देते हैं, मन को समझाने के लिए।
1: वो मन को समझाने के लिए मंत्र से शुद्धि कर दो, लेकिन उसका जो केमिकल जो उसमें जो मिला हुआ है वो तो बाहर नहीं जाएगा, तो वो तो हम नहीं मिलने देंगे तभी शुद्ध होगा। ये आपने बहुत बढ़िया बात की कि ये तो एक तरह से वो हो जाएगा कि मंत्र उसके पावर पानी
2: के लिए करके, इतना विशाल पानी को हम कहां से
1: मंत्र, प्योर पानी को पावरफुल बना सकते हैं चार्ज करके।
2: जी जी,
1: लेकिन जो अशुद्ध पानी है, जो पानी जिसमें मिलावट है, तो उसके कण तो थोड़ी दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो आपको कम से कम जागरूक ही होना पड़ेगा, तब जाकर के काम। जैसे अब इसका सर जल प्रदूषण का एक बहुत बढ़िया बात बताऊं मैं, कैसे अपन परिभाषित कर सकते हैं, जो सर टेक्निकल टर्म्स में है वो चीज मैं एक बार रखूंगा ही सामने।
2: जी जी, क्योंकि हमारा श्रोता मित्र टेक्निकल भी जानते, नॉन टेक्निकल भी जानते।
1: नॉन टेक्निकल बराबर समझाएंगे, क्योंकि इसमें सर ऐसे ऐसे वर्ड्स उपयोग होते हैं इसके, जो
2: क्योंकि हमारा श्रोता टेक्निकल का भी है, नॉन टेक्निकल सभी लोग सुनते हैं,
1: तो सर उस चीज को बताना बहुत जरूरी है। दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषण एवं अन्य प्रदूषण, मतलब कार्बन से जनित है।
2: जी जी,
1: और अन्य में काफी सारे सर ये मिलावट वाले आ जाते हैं, जिनका सामान्यतः सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होता, जैसे अपन ने पहले देखा है सर, उनका डीकम्पोजिशन जो सूक्ष्म जीव नहीं कर पाते, जो अपघटन जब नहीं कर पाएंगे और उसके बाद में वो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करेंगे, वो कैसे करेंगे? हम भोजन बनाते हैं ना, उसमें वो अशुद्ध जल, वही जल जो इसको आप शुद्ध कहते हैं, वो अशुद्ध जल उसमें आ जाएगा। तो वो फिर कहाँ पहुँचेगा? व्यक्ति के शरीर में पहुँचेगा,
2: राइट।
1: वो केमिकल्स उसकी बॉडी में पहुँच जाएंगे, पशु पक्षी जो भी उसको खा रहा है उसके शरीर में पहुँच जाएंगे।
2: तो नुकसानदायक
1: उत्तरोत्तर सर इसके पोषण स्तर में जब सांद्रता बढ़ जाएगी, जिसको जैव आवर्धन कहते हैं, लगने में बहुत अच्छा है। इसका भी सुपोषण का स्तर होता है, किनका? इस प्रदूषित वस्तुओं का सुपोषण का स्तर होता है।
2: जी जी,
1: जो नहीं होना चाहिए वो अगर सुपोषित हो जाए तो फिर वो नुकसान ही करता है। तो सर ये सर जल प्रदूषण की श्रेणी में, ये कैसे होगा सर? जब ये जल है ना, ये पादपों में चला जाएगा, वृक्षों में चला जाएगा, ठीक है, फिर वो वहां से जंतुओं में चला जाएगा जो इसका उपयोग करेंगे, फिर छोटी मछली में चला जाएगा,
2: क्या बात,
1: वो जो भी उपभोग करेगा बड़ी मछली में चला जाएगा, फिर पक्षियों में चला जाएगा।
2: जी जी।
1: तो सर इस तरह से इसकी पूरी सर चेन बन जाती है और वह आपको नुकसान करती है। अब सर जो जैव आवर्धन है, ये सर जो बताया, जो शब्द तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये जो तकलीफ देने वाली चीजों का आवर्धन होगा तो वो निश्चित रूप से नुकसान करेगा। अब वो क्या क्या होता है? जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होता, डिकम्पोजिशन नहीं होता। दूसरा, ये सर जल में, सर ये जो जलावर्धक होते हैं ना, जल में तो सर अघुलनशील होते हैं और वसा में घुलनशील होते हैं सर, और ये जैविक रूप से जल के अंदर सक्रिय हो जाते हैं। जब सक्रिय होंगे तो इनकी जो मात्रा वो बढ़ेगी, तो फिर वो विभिन्न प्रकार से पूरे पर्यावरण को
2: नुकसान,
1: उसमें सभी को नुकसान करेंगे,
2: हमारा आसपास जो हो रहा है सभी का,
1: जो कुछ है, जिसमें सर अपन उदाहरण अपन दे सकते हैं कि जैविक रूप से कैसे सक्रिय होगा। जैसे इसका उदाहरण DDT पानी में चला गया, अब वो कहाँ कहाँ जाएगा?
2: जहाँ तक पानी का स्रोत है जाएगा,
1: बस फिर हो गया काम। फिर पारा, जो विभिन्न उसमें दवाइयों के अंदर मिला हुआ मरकरी, बहुत नुकसान करता है सर। फिर एल्यूमिनियम है, आयरन के ऑक्साइड से है, कीटनाशक है, एंडोसल्फान है, एल्ड्रीन है, सारे के सारे जितनी भी जो दवाइयाँ जो उसमें से होकर के निकलेगी, किसमें से पानी में होकर के निकलेगी, तो फिर सोचिए कि वो कहाँ नहीं पहुँचे, किस व्यक्ति में नहीं पहुँचे। क्या आप शुद्धि कर पाएंगे? बिल्कुल शुद्धि के तरीके तो है, लेकिन उसको कम से कम बाह्य रूप से शुद्ध करना तो आवश्यक होगा सर। इस संबंध में मैं कई बार कहता हूँ कि खूब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हुए हैं। फिर एक रोटरडम समझौता हुआ था 1998 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सीओपी की जो मीटिंग्स होती हैं, जैसे अभी बेलेम में हुई है, जिसमें अमेरिका ने भाग लिया
2: 2025 में,
1: अभी सर अभी जस्ट हुई, अभी दो चार दिन पहले, पर अमेरिका उसमें शरीक नहीं हुआ। तो दूसरे दोस्तों ने मिल करके ये तय किया कि भाई उसके बिना भी काम तो हो सकता है।
2: जी।
1: तो सर रोटरडम समझौता हुआ था 1998 में। अब सर ये सारी चीजें होती, लेकिन ऑथेंटिक रूप से वो लागू कब से हुआ है 1998 से, लेकिन प्रभावी हुआ है 2004 से, ऐसे कई सारे आंकड़े मेरे पास।
2: आप तो रिसर्च करते रहते हैं, कहीं
1: सर योजना है, आपको बताना है, सभी को जागरूक करना है कि कम से कम ये काम तो अच्छा हो। तो सर 2004 से ये प्रभावी हुआ है। उसमें सर क्या था कि जितने भी रसायनों का उपयोग होता है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो किसी टीम की स्वीकृति के बाद ही, किसी देश की स्वीकृति के, उन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई है सर विभिन्न प्रकार के रसायनों की, कि उनका उपयोग आप सरकारों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई कमेटी की परमिशन के बाद ही उसकी मात्रा तय करेंगे, वो किसके लिए आप ले जा रहे हैं ये आपको बताना होगा। जैसे कोई घातक पदार्थ है, अब जैसे आप कभी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए और जब पेट्रोल लेने जाते हैं तो पेट्रोल पंप का मालिक आपको पेट्रोल देगा क्या? वो नहीं देता है। वो क्यों नहीं देता? कि कहीं आप उसका दुरुपयोग नहीं कर जाए। गाड़ी चलाने के लिए, दुरुपयोग के लिए थोड़ी है, तो
2: गाड़ी लेकर जाएंगे तो देगा, पर कैन में बोलेंगे भाई क्यों,
1: तो फिर उसमें
2: बोतल में नहीं दे रहा।
1: बिल्कुल, तो वो इसके मानक बने हुए हैं। तो सर इस तरह से इसको कंट्रोल करने का सर बहुत प्रयास किया है, पर कितना कंट्रोल होता है
2: जानेंगे जानेंगे अगला लिंक में, कितना कंट्रोल हो रहा है। तो सुनते रहिए कार्यक्रम, खासकर पर्यावरण मेरा गांव मेरा अंचल कार्यक्रम में पर्यावरण बीच से हम अच्छा से अच्छे बात सुन पा रहे हैं, और हमारा श्रोता मित्र और हमें बहुत फायदा मिल रहा है, जिसका चलता हम एपिसोड को एक के बाद एक एपिसोड चलाते जा रहे हैं। और लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद अगला कड़ी में सुनेंगे श्रीमान जी से। सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन, खासकर पर्यावरण स्पेशल।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए।

0: जल है
1: तो जीवन है,
0: जल ही जीवन है, जल ही जीवन है।
1: चलिए जल हमारा मित्र बने और उसको संरक्षण करने के लिए हम सबका कर्तव्य है और आज इसका आवश्यक पड़ रहा है, क्योंकि समय अनुसार समय था उसमें कोई आवश्यक नहीं पड़ता उसको प्रदूषण से मुक्त करने के लिए, लेकिन आज जरूरत पड़ा इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं।
0: एक
1: तो आपको स्वागत करते हैं। आवश्यक क्यों पड़ा और उसका नुकसान का चलता आवश्यक पड़ा उसको संरक्षण करने के लिए, उसको शुद्ध करने
0: शुद्ध करना है, उसको बचाना भी है और शुद्ध भी करना है। गर्मी ग्रीष्म काल में तो हमको खूब याद आती है, लेकिन इस समय हम लोग कम याद करते हैं।
1: हमेशा याद रखना, हमेशा जितना आवश्यक उतना करना चाहिए,
0: करना ही चाहिए,
1: क्योंकि जल नहीं तो बोलो भाई तुम्हारा तो स्वार्थी हो गया, तुम जब
0: बिल्कुल
1: जरूरत हो तब।
0: जब गर्मियों में पानी कम होता है तभी याद करते हैं, सभी तब जल जल चिल्लाते हैं। आज कोई बात नहीं कर रहा है। देखिए सर, ये कितना बढ़िया विषय निकल के सामने आया कि जब ग्रीष्म काल होता है और पानी बहुत कम होता है तब सभी
1: कम तो नहीं होता होगा, हम लोग उसको यूज कर कहां पे उसका अस्तित्व रहता ही होगा, वो तो क्योंकि वो तो खंडन नहीं होता है, हो सकता बर्फ रूप में होगा,
0: हाँ
1: तो वाष्प में के रूप में होगा, नहीं तो अंदर में कहाँ पर जाता होगा, कोई ना कोई तो संतुलन होगा।
0: वो संतुलन तो सर है, जैसे सर E=mc² एक फॉर्मूला है सर आइंस्टाइन का, उसमें सर ये सारी चीजें प्रकृति में जितनी चीजें वो वही रहती है,
1: उसका अवस्था चेंज होता है, तरल
0: अवस्था बदल जाती है। कहने का मतलब हमारा
1: कभी नीचे कभी ऊपर रहता होगा,
0: हाँ, कभी इधर कभी उधर। अब जैसे आप जैसा करते हैं,
1: जैसे बाढ़ का समय में
0: जी सर,
1: वो तो धारा पृष्ठ में आ जाता, दिखाई देता है बाढ़ का रूप में
0: सामने दिखाई देता है ना, फिर है जब बरसात खत्म होती है वो कहाँ चला जाता है, सागर में चला जाता है,
1: सागर में चला जाता है,
0: सागर से उसके बाद
1: ऊपर
0: एवोपरेट होकर के वाष्पीकरण के ऊपर चला जाता है। ये देखिए प्रकृति में हर चीज वैसे ही विद्यमान है, ये सर ईश्वरीय चिंतन है, पर हम तो वहाँ तक तो जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन अभी हमारे आसपास जो भौतिक रूप में क्या हो रहा है,
1: जाएंगे तब तो हम पाएंगे, नहीं जाएंगे तो पाएंगे क्या। जैसे आपने बोला भाई वहाँ तक पहुँचेंगे आध्यात्मिक तरफ तो हमारा बुद्धि खोलेगा
0: जी बिल्कुल,
1: फिर उसके बारे में सोचने पर याद भी करेंगे, सिर्फ बारिश के टाइम में क्यों याद नहीं करेंगे, गर्मी में क्यों याद करते
0: हैं, पानी आ गया बहुत पानी आ गया, अरे भाई वो बहुत क्यों आया, या तो अच्छा बाढ़ से आया प्लावन हो जाता है उस समय, क्योंकि लोग कई बार नदी के क्षेत्र में मकान भी बना देते हैं, उसका अतिक्रमण कर देते हैं, तो फिर वो बह जाते हैं, तो फिर कहते हैं जनधन की खूब हानि हुई, खूब हानि हुई, अरे भाई जनधन की हानि थी, उसके रास्ते में क्यों बैठे,
1: उसका घर में प्रवेश किया,
0: प्रवेश आपने अतिक्रमण किया, तो ये तो प्रकृति है।
1: हाँ अभी तो पानी नहीं है, सूखा पड़ा है तो खेती भी करा देते,
0: खेती भी कर लेते,
1: तो पानी जब आएगा वो अपना एरिया को
0: जाना ही है,
1: बुलडोजर लगा देता,
0: वो तो इसीलिए प्रकृति इसी तरह से आपको जो आप जितना अतिक्रमण करोगे प्रकृति उसी रूप में अपना रौद्र रूप दिखाएगी।
1: सर ये अभी कुछ साल से इसे हमको सुनने को मिला बहुत तांडव रच रहा है
0: जी जी,
1: पहले इतना लोग का खेत नहीं करते,
0: पहले तांडव इसलिए नहीं था कि वो प्रकृति में इंटरफेयर भी नहीं करता था, हस्तक्षेप नहीं करता था प्रकृति के कामों में, इतना हस्तक्षेप नहीं करता था, सीमित हस्तक्षेप करता था,
1: हम लोग उसका अतिक्रमण
0: उसको रौद्र रूप में लाने के लिए हम नहीं तैयार किए हैं
1: आप और हम,
0: तभी तो वो अपनी पुलिसिंग खुद कर रही है प्रकृति।
1: बोला भाई हम अपने बच्चा
0: ठीक है नहीं मानते हो, ठीक है बना दो इस नदी के बीच में मकान बना दो, तालाब के अंदर मकान बना दो, जब वो पानी जाएगा और वो भरेगा तब वो फिर ऊपर ही तैरना है फिर तो।
1: जैसे सर अभी समुद्र को रेती भर के मकान, जैसे जहाँ जहाँ समुद्र तट, जैसे मुंबई है
0: बिल्कुल
1: गोपालपुर जहाँ पर सी बीच में
0: जी जी जी
1: पाली रेती भर के पूरा मकान
0: बनाते,
1: और कोई कोई समुद्र के अंदर में भी तो अपना मकान बना रहे,
0: तो फिर अब आप देखिए कि अभी सर एक रिपोर्ट है,
1: क्या करेगा अपना
0: सर, एक रिपोर्ट ऐसी है कि जो हरित गृह प्रभाव बढ़ रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा सर तो हमारे जितने ग्लेशियर्स हैं वो सारे पिघलने लगे हैं सर, तो सर ये जो समुद्र तटीय जितने भी शहर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश के डूबने का खतरा है,
1: वही डूबेगा,
0: तो वो डूबेंगे तो जनधन की हानि होगी, तब आप कहोगे कि बहुत बड़ा नुकसान करें प्रकृति में रौद्र रूप दिखाया, अरे भाई इसके लिए जिम्मेदारी कौन है, ये पर्यावरण जिस रास्ते से जा रहे हैं
1: सर, मनुष्य तो इसको सफाई नहीं कर पाएगा, इसलिए प्रकृति खुद अपना सफाई कर रहा है,
0: वो तो हो जाएगा वो तो कर लेगी, लेकिन अगर आपको चैन से जीना है तो अच्छा जीवन जीना है तो आपको स्वयं के लिए प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो प्रकृति तो कर देगी, वो तो अपना काम करती रहती है,
1: अभी भी तो इशारा दे रहा है,
0: अभी भी इशारा दे रहा है,
1: तो सुधरेंगे नहीं
0: तो फिर सुधार देगी प्रकृति, सुधार देगी, नहीं सुधरे तो सुधार देगी आप,
1: ये बात तो है।
0: तो सर अपन चर्चा कर रहे थे, मुझे ये चीज बड़ी वो वैसी लगती है जैसे आप कई बार कहते हैं कि ये सारी चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए, इस पर बहुत

0: लंबे समय से बातचीत हो रही है सर
1: जी।
0: और सर हम बात कर रहे हैं, काम खूब लोग करे, हम सब मिल करके काम करें तो काम तो होगा,
2: तो स्वर्ग तो आ जाएगा धरा पर, प्रकृति आपका दासी बनेगा, आपका भी शत्रु जो है
0: बिल्कुल साहब
2: दासी बन जाएगा, जो चाहे हक बोले
0: प्रकृति
2: हजूर हजूर हम हाजिर है, हुकुम करो बोले,
0: प्रकृति तो मित्र ही है सर,
2: और बोलेगी सर ऐसे सत्य युग में ऐसे करती थी,
0: आज प्रकृति तो मित्र ही है, लेकिन उसका अतिक्रमण करोगे तो निश्चित रूप से वो आपको नुकसान करेगी, निश्चित रूप से नुकसान करेगी। अब सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे रोटरडम समझौता हुआ इसमें रसायनों के उपयोग पर, सर ये समझौता होता है 1998 में पर प्रभावी रूप से लागू कब होता है 2004 में, पर वो भी कितना लागू होता है वो आप और हम सब जानते हैं,
2: साल का बाद
0: हरेक सर समझौता जब भी हुआ है उसको कई साल बाद में वो सीओपी की जब मीटिंग होती है उसके बाद में फिर वो लागू होता है, तो
2: सर इतना लेट क्यों होता है
0: सर, बस इच्छा शक्ति किसकी होती है बस वो जब उसके दुष्प्रभाव दिखते हैं, ये जैसे आप जैसे हम इस पे एडवोकेसी करते हैं जागरूकता वाली बात, तब जाकर के कहते हैं कि यार बड़ा भारी नुकसान हो रहा है तो इस पे कंट्रोल कीजिए, क्या क्या किया
2: अभी करना चाहिए,
0: तो अभी से लागू कर दो। अब सर लागू होने के बाद भी कितना लागू होता है,
2: हाँ और उसको इम्प्लीमेंट होने में
0: तो वहाँ तो फिर
2: फॉलोअप नहीं करेंगे तो
0: वहाँ तो फिर इच्छा शक्ति
2: मंदिर बना देते,
0: इच्छा शक्ति काम करेगी वहाँ पर,
2: इच्छा शक्ति कहाँ से आती है सर, इच्छा शक्ति सबका तो इच्छा होता है, हम भी करें लेकिन
0: अच्छा करने के लिए सर,
2: सबका सबका कोई भी मनुष्य नहीं चाहता जब हम बुरा करे, सब तो अच्छा करे फिर भी हो नहीं पा रहा,
0: बिल्कुल सर। अब सर सरकार ने भी सर एनवायरमेंट स्टडीज का एक नया विंग खोल दिया, अपने पूरी दुनिया में सब जगह कर दिया, ये अपनी यूनिवर्सिटीज में स्पेशल सब्जेक्ट जो सिर्फ एनवायरमेंट पे बात करेंगे, हम जैसे लोग भी आप सब मिलकर के एनवायरमेंट पे बात करते हैं, अब ये बात करने की सर आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि उस पर अमल नहीं होता, उस काम को करेंगे तब ना उसका फायदा मिलेगा सर, जैसे संगीत सुनते हैं तो उसका प्रभाव कब पड़ेगा, जब वो अंदर तक आप उसके आनंद को महसूस करोगे तब तो उसका फायदा नहीं मिलेगा, नहीं तो वो भी पॉल्यूशन है,
2: नहीं तो ऊपर से ऊपर
0: नहीं तो
2: वो काम में निकाल,
0: तो उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, वही बात हो रही है सर अब तक, अभी जो एनवायरमेंट
2: फॉर्मेलिटी
0: बस अपना काम कर रहे हैं, अपना काम
2: हमारा ये ड्यूटी है, अपना नहीं है ड्यूटी, में 8 घंटे का ड्यूटी
0: फिर प्रकृति जाना है, ये सब ठीक है जो होता रहे, हमको हमारा काम करना है। तो फिर वहाँ जब लोक भावना से प्रेरित होकर के हम प्रकृति के साथ में हितकारी काम करेंगे, अपने हित के लिए अच्छा करेंगे, तो प्रकृति निश्चित रूप से हमें अच्छा फल देगी सर। अब सर इसके उपायों की तरफ चलते हैं, अब सीधा सा है सर, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग खाद्यान्न को या उत्पादन को बढ़ाने के लिए, सब्जी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम करते हैं कि ताकि उसमें जो है उत्पादकता बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो सर वो रासायनिक उर्वरक NPK ये जो भी है, नाइट्रोजन है पोटेशियम है, ये सब मिलकर के अपने शरीर पर, क्योंकि उसी अनाज से उसी यूरिया से उसी खाद से वो जो अनाज पैदा हो रहा है तो प्राकृतिक रूप से तो हो नहीं रहा, उसकी ग्रोथ को बूस्टअप किया जा रहा है, मतलब वहाँ भी उसकी प्रकृति को तो तोड़ा जा रहा है
2: बाई फोर्स, ले
0: बाई फोर्स बाई फोर्स
2: देना ही है,
0: तो फिर
2: मरक कुछ हो हमको को मतलब नहीं, तुम दे दो
0: बस दे दो, तो फिर वो नुकसान ही करेगा वो इंसान में होकर के,
2: डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली
0: कैसे भी ले लो आप, वो नुकसान ही करेगा
2: हमें,
0: हमें तो नुकसान ही करेगा,
2: हमको डायरेक्ट नहीं दे रहा अपना परिवार को,
0: हाँ तो
2: डायरेक्ट नहीं पिला रहे लेकिन इनडायरेक्टली
0: दवाई छिड़ाने
2: जो खाद हम खा रहे हैं जो खाद्य पदार्थ खा रहे हैं उसमें आ जाता है
0: जी जी, तो फिर वो आपको
2: जहर,
0: बस वो जहर आप खिलाओ सभी को परिवार को खिलाओ
2: सर, समय था अन्नदाता कहते किसान
0: जी,
2: जैसे समय
0: मजबूरी हो सकती उनकी मजबूरी कई तरह से, अन्नदाता की सर बहुत सी मजबूरियां भी है, मैं डेली इस पर विचार करता हूँ, लेकिन फिर भी जो जैविक तरीके से तैयार होगा वो निश्चित रूप से परिवारों को सभी को
2: मिलेगा
0: फायदा देगा, तो जैविक दूसरा है इसका सर, ये जो है ना इसका सीधा सा उपाय है कि रासायनिक उर्वरक के स्थान पर जहाँ तक संभव हो सके जैविक और कार्बनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए,
2: ये तो सर जमीन के लिए ठीक है लेकिन हम पानी के लिए कैसे होता है आप थोड़ा क्लियर करिए, जैसे हम जो रासायनिक पदार्थ डालते किसान तो जमीन को बंजर बना देता है बस जहर देते हैं, लेकिन पानी को आप अभी तो पानी का टॉपिक चला जल का,
0: बिल्कुल सर
2: तो उसको कैसे प्रभावित,
0: इसको जो ये समझौते के तहत इसमें जैसे उर्वरक है इसको तो लिक्विड करके भी तो छिटक रहे ना, तो सर इससे जल तो प्रदूषित होगा ना, इससे भी
2: तो डायरेक्ट जमीन में गिरता है ना,
0: वो जहाँ भी जाके मिलता है, अब जैसे ये सीधा जमीन में भी तो जाता है
2: पानी डालेंगे तो उसमें
0: ये रसायन जो जाएगा उसमें पानी डलेगा तो वो जमीन में भी तो जाएगा, तो वो नुकसान किसको करेगा? आखिर प्रदूषण तो हुई
2: डायरेक्टली हम जल को नहीं देख, लेकिन जल जो तत्व है उसमें खाद्य पदार्थ, हाँ। जैसे हम गेहूँ लेते हैं,
0: अभी सर गेहूँ में नैनो यूरिया अपन यूज करते हैं, अभी नया कंसेप्ट आया है, नैनो यूरिया लिक्विड है, लिक्विड बॉटल्स आती है सर,
2: तो उसको छिड़काव करेंगे
0: तो बस, तो फिर वो उस पर करेगा तो निश्चित रूप से उस पृथ्वी के अंदर भी तो वही पानी जा रहा है, तो जल को तो प्रदूषित ही कर रहा है। अब जैसे इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो हो रहा है, ये दूसरा नुकसान जो इसका है और उसका भाई बता रहे थे कि जैविक और कार्बनिक खाद का उपयोग जो रसायन के स्थान पर हो जाए, ठीक है भाई, उसी फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए आप जैविक खाद का उपयोग कर लो, गोबर है वगैरह है उनका कंपोस्टिंग कर लो, कार्बनिक खाद का उपयोग कर लो। दूसरा सर घरेलू मैं बता रहा हूँ, अब देखिए यहाँ जल प्रदूषित ही तो हो रहा है, प्रदूषित जल ही तो आ रहा है क्योंकि वो नदी में जाएगा,
2: पूरा भास्ट चैप्टर है जल का जो,
0: जी सर मतलब ये सोर्स, ये गंभीरता से सोचने वाला बिंदु है सारा का सारा। सर जो घरेलू सीवरेज निकलता है, घरेलू इंडिविजुअल
2: जी,
0: तो वो जो सीवरेज है सर, अब उसमें कितना अपशिष्ट निकलता है, कितना केमिकल उसमें बाहर आ रहा है, और वो फिर कहाँ जाएगा, हम कहाँ छोड़ रहे हैं?
2: पानी में बहा देते ड्रेन में के माध्यम से, लय में तो नदी नाला में आ जाता हो।
0: अब सर ये तो मान लिया, पर सर उसका उपाय है,
2: उपाय तो
0: उसका उपाय है
2: जैसे
0: क्या है? उसको सर सिस्टमेटिक तरीके से किसी एक विशेष स्थान पर डाला जाए और उसके बाद में उसमें से सर नाइट्रेट और फॉस्फेट को अलग कर सकते हैं, तो इतनी चीजें तो उसमें से बाहर आ गई, और जब वो चीजें अलग हो गई तो निश्चित रूप से वो प्रदूषण के स्तर को भी कम करेगा, वो पानी में तो नहीं जाएगा, नदी में तो नहीं जाएगा, वो नाइट्रेट और फॉस्फेट जब रुक जाएगा तो उसका कोई और उपयोग हो जाएगा, वो नदी में नहीं जाएगा तो वो मैनेज हो जाएगा, निश्चित रूप से हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक हो जाएगा, जल प्रदूषण उससे कम हो जाएगा। अब सर उद्योग का जो ड्रेनेज आता है इंडस्ट्रियल
2: भास्ट, उसमें तो बहुत कुछ होता
0: है, इधर एक तरफ हम बात करते हैं कि विकास के लिए इंडस्ट्रीज चाहिए, तो उसका ट्रीटमेंट तो हो सकता है,
2: हाँ, वाटर ट्रीटमेंट
0: तो उसका हो सकता है, तो उससे शुद्धि होकर के तो बाहर आ सकता है, जैसे अपने ब्रह्मा कुमारीज में हम कर रहे हैं, जो पानी है जो बचता है उसको रिसाइकल करके, रिसाइकल हो रहा है,
2: रिसाइकल
0: होकर पौधों की सिंचाई में काम में आ रहा है
2: जी, जी।
0: तो बस ठीक है ना, तो उपयोग तो किया जा सकता है, तो कोई भी इंडस्ट्री क्यों नहीं कर सकती, तो
2: इंडस्ट्री भी करना चाहिए उस तरह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट,
0: तो सर जहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया जाए वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट के लिए पूरा का पूरा सिस्टम होना चाहिए। अच्छा ये कोई मुश्किल नहीं, अब चाहिए हम
2: तो यहाँ पर है सर,
0: मुश्किल तो सर अपने अंदर है,
2: अंतरात्मा में,
0: मुश्किल तो अपने
2: विचार में,
0: मुश्किल तो विचार में है। तभी आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कृष्ण ने अर्जुन को ये संदेश बहुत पहले दिया था, लेकिन सर इंसान ऐसा है कि लोप हो जाता है ज्ञान का, इसलिए ज्ञान के लिए तो
2: आप गीता
0: पुनः प्रयास करना पड़ रहा है,
2: जरूरत पड़ा है, हम सब अर्जुन है,
0: बिल्कुल
2: अभी सीख रहे हैं, और देने वाला तो दे रहा है, ऊपर
0: देने वाला दे रहा है, फिर जब ये चीज लोप हो जाती है तो वापस इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, जैसे
2: आवश्यकता पड़ रहा है,
0: आवश्यकता पड़ रहा है,
2: हमारा जो श्रोता एक एक अर्जुन है सर
0: जी जी,
2: और परमात्मा जो ज्ञान दे रहे, जो समझ दे रहे, हम समझदार बन रहे, तो जल्दी हमारा सुखमय दुनिया आएगा, पर्यावरण अति शांत शुद्ध पवित्र समृद्ध बनेगा, और हमारा
0: ईश्वरीय बन जाएगा,
2: ईश्वरीय प्रकृति बन जाएगा,
0: पर्यावरण ईश्वरीय बन जाएगा,
2: दुनिया स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग ऊपर नहीं सर, यहीं पर स्वर्ग, और हम सब स्वर्ग निवासी बनेंगे
0: जी सर,
2: तो हमारा विचार इतना शुद्ध हो, और उसके लिए हमारा मनन चिंतन सात्विक हो,
0: सात्विक होना चाहिए,
2: तामसिक नहीं सात्विक, आज तामसिक हो गया,
0: बिल्कुल
2: तामसिक बदल हम तो सात्विक तौर जाएंगे।
0: आपने जब गीता ज्ञान की बात की तो फिर बात करते हैं
2: जी सर,
0: कि जब इतना पहले ये सारी चीजें बताई गई, जो उनको जब विषाद हो जाता है कि मैं क्यों युद्ध करूं, नहीं करना चाहिए मुझे, इनको मारना भी नहीं है, भाई बंधु लगते हैं, नहीं मारना है, हिंसा नहीं करनी है, और ये मुझे मार देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर मुझे से राज्य लेना नहीं है, तो फिर भगवान उसको अगले अध्याय में बताते हैं,
2: तो पहले बता देते लास्ट युद्ध का, पहले ही पता भाई हमको जरूरत नहीं है, फिर भी करना पड़ रहा है
0: तो ये चीजें तो समझा रहे,
2: पहले उनको समझा रहे
0: सर, ये समझा रहे कि फिर सांख्य योग करते हैं, सांख्य योग की बात करते हैं, और सांख्य योग में क्या कहते हैं, ये सभी मनुष्य अकर्ता बन जाए, कर्तापन के अभिमान से रहित हो जाए, सभी
2: संभव
0: सब ईश्वरीय है,
2: अकर्ता
0: अकर्ता बन जाए,
2: अभक्ता
0: कौन करता है, ऊपर वाला करता है,
2: करता है और आप करता
0: है। सुप्रीम पावर ही है
2: जी जी।
0: जो कुछ है सुप्रीम पावर, आप और हम समझ पा रहे हैं लेकिन आपको समझाने का प्रयास है
2: जी जी।
0: सब सुप्रीम पावर ही करता है
2: हाँ।
0: तो फिर अर्जुन ये कहता है कि जब सब सुप्रीम पावर ही कर रहा है तो फिर हम ये क्यों करें। तब उन्होंने निष्काम कर्मयोग समझाया।
2: अच्छा,
0: निष्काम कर्मयोग, ज्ञान युक्त चीज अलग हो गई। निष्काम कर्मयोग ये कहता है कि चलो ये भगवान का है तो उनकी पूजा तो हम करें, अपने आप को समर्पित कर दे उसमें, जैसे आप किए हैं। निष्काम कर्मी होगी, आपने समर्पित कर दिया कि भाई चलो ये सब भगवान का ही है तो हम उसकी पूजा करें। किसकी? जो भगवान ने रास्ता बताया है उसकी मूर्तिमान रूप की पूजा करें, वैसे निष्काम कर्मयोग हम करें। तो निश्चित इन्होंने ये समझाया। तो फिर वो जो अर्जुन क्या कहता है सर, फिर बिल्कुल सार वाली बातें हो रही है। अर्जुन ये कहता है कि भाई ज्ञान और कर्म दो बातें कह दी आपने, तो जब ज्ञान कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है तो आप मुझे मुझे भयानक कर्म में लड़ने के लिए क्यों लगा रहे हैं। तब वहाँ पर समत्व बुद्धि योग से ये समझाया जा रहा है कि तेरे को युद्ध करना ही करना है, और संशय युक्त जो पुरुष है वो सर परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। ये सारी चीज उसमें जो संशय रखता है वो, तो संशय वहाँ नहीं होना चाहिए था।
2: सही बात, संशय तो बहुत बड़ा,
0: संशय बहुत बड़ा सत्र है, वो परमार्थ से हटा देता है। इसलिए आपको समत्व बुद्धि योग से सब कुछ ईश्वरीय मानते हुए, ये ज्ञान रखते हुए कि सब कुछ ईश्वर का ही है, अकर्ता बन करके नहीं बन पाओ और कर्ता बन जाओ तो निष्काम कर्म योग से। निष्काम आप समर्पित हो, निष्काम काम आपको क्या लेना,
2: उनका काम हो जाने,
0: हो जाने, राइट। तो इस तरह से समर्पित होकर के और संशय बुद्धि से रहित होकर के अगर आप करेंगे।
2: सर मैं जब गांव अंचल में जाते हैं
0: ठीक है,
2: ये मेरा काम नहीं है, उनका काम हो जाने, उसका लॉस फायदा उनका नाम जो मिला ठीक है, नो प्रॉफिट है वो दे देते हैं, ऐसे हम सोच कर जाते हैं।
0: तो आप में ये निश्चयात्मक बुद्धि है, संशय नहीं है, तो संशय हो तो फिर काम सफल भी नहीं है।
2: ऐसे अर्जुन को संशय आया था तो क्लियर कराया ना भाई,
0: तो वो क्लियर हुआ ना, और आगे से आगे फिर उत्तरोत्तर जो उसके प्रश्न चलते हैं अर्जुन के, मतलब आपके हमारे संसारियों के, तो वो उसमें समाधान उनके द्वारा जो दिया गया है
2: जी,
0: उसको जब हम फॉलो करेंगे ये सारा अपना जो संकल्प सिद्धि हो जाए।
2: संकल्प सिद्धि
0: जी सर, संकल्प सिद्धि
2: बहुत अच्छा बात, संकल्प से सिद्धि,
0: क्योंकि हमको संकल्प कैसा बनाना पड़ेगा,
2: लेकिन संकल्प तो सभी लोग सिद्धि
0: कि भाई हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, जिसकी हवा
2: सर, संकल्प तो बहुत सारा होता है, शुद्ध अशुद्ध संकल्प भी करते लोग।
0: यहाँ सर अच्छे संकल्प की बात है, दूसरा संकल्प आप कुछ कर लो तो फिर वो तो फिर सर एक सीधा सीधा समय उदाहरण देता हूँ, एक चाकू है, चाकू बनाया किसके लिए है,
2: सब्जी बड़ा अच्छा काम करने
0: का, फल काटो, सब्जी काटो, आप चाहो तो मिर्ची काट दो, आप चाहो तो कुछ और काट दो, तो फिर सर उसका उपयोग
2: सात्विक काम
0: अपना सर, यहाँ पर सारा जो उद्देश्य है वो सात्विक से ही है, तो अपन उसका अच्छा उपयोग सदुपयोग करें, तब तो जाकर के
2: हमारा इनपुट अच्छा होगा तो आउटपुट भी अच्छा होगा,
0: आउटपुट ऑटोमेटिक,
2: सात्विक विचार से उसको ले रहे तो सात्विक ही आउटपुट मिलेगा,
0: सात्विक की आउटपुट मिलेगा, तो प्रकृति अपने आप ही अपने को सात्विक रूप से बहुत बहुत अपने को देने को उपहार देने
2: जाते हैं। आप तो बहुत अच्छा बात, सात्विक विचार है ना,
0: बिल्कुल सर,
2: संकल्प आपका श्रेष्ठ हो, शुद्ध हो,
0: शुद्ध
2: पर उपकारी हो, जनहित में हो, और जनहित होने का पहले खुद का हित हो, स्वयं का जो हम जो हमारे आसपास रहते हैं उनका हित हो, भले दूसरे के बाद में, आपने तो हित करो, अपने परिवार का हित करो, आप
0: हाँ।
2: जो मिलते हैं
0: सर हम सब अपना हित करेंगे,
2: तब
0: आप आपका करूंगे, मैं अपना करूंगा, सब अपना अपना करेंगे,
2: गांव होगा तो गांव को लेकर तो स्वर्ग बनता है,
0: ग्रुप
2: गांव बन जाएगा। बहुत अच्छा बात हुआ है, सही बात, हमारा संकल्प हमारा सिद्धि हो, जो हमारा संकल्प इतना श्रेष्ठ हो, श्रीमत आधार से हो, श्रीमत आधार, श्रीमत मतलब श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ मत सिर्फ परमात्मा ही गीता ज्ञान में दिया,
0: वही देते
2: भगवान
0: परमात्मा ही,
2: इसलिए गॉड इज ट्रूथ कहते सर
0: जी, गॉडली
2: गॉड इज ट्रूथ,
0: दूसरा
2: कभी सुना है सर आप कभी, लॉर्ड इज ट्रूथ नहीं, गॉड इज ट्रूथ, ईश्वर ही सत्य,
0: ईश्वर ही सत्य,
2: देवी देवता सत्य नहीं लिखा है,
0: नहीं ईश्वर सत्य,
2: ईश्वर एक है,
0: ईश्वर एक,
2: गॉड इज वन कहते हैं, और हम सब परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली सर, पूरा विश्व हमारा परिवार है,
0: सब
2: और आप हम हमारा सभी,
0: इसलिए सभी के लिए
2: श्रेष्ठ भावना,
0: पर्यावरण की श्रेष्ठ भावना,
2: पर्यावरण में तो हम ही आते हैं और हम ही
0: सभी तो, आप और हम भी तो पर्यावरण है,
2: जीव जंतु पशु पंछी पंच तत्व ये सब मिलाकर तो सौर जगत में जो भी हमारे परिवेश प्रकृति और पुरुष
0: ये प्रकृति और पुरुष यही तो है,
2: और प्रकृति पति तो ऊपर वाला है,
0: प्रकृति पति ऊपर वाला है।
2: तो ये तीनों का एक खेल सर, ज्यादा कुछ नहीं है।
0: हम अपना पार्ट अदा कर रहे हैं,
2: एक्टर है
0: हमको,
2: वो डायरेक्टर है,
0: बस
2: स्टेज है सर
0: अपना काम।
2: जो परिवेश, जो पर्यावरण का बात कर रहे हैं वो स्टेज है
0: बिल्कुल, तो वो काम अपने को करना है सर। इसमें सर
2: बहुत सेक्टर, उसमें
0: गीता में सर एक चीज बताइए, वो कहते हैं कि कर्म, कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ, क्योंकि कर्म नहीं करोगे तो भी आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।

0: में मिलेंगे आपसे रूबरू होने के लिए, और खासकर आपका मन में कोई भी विचार आता है तो हमें जरूर बुलाइए, चाहिए रेडियो मधुबन में पधारिए, चाहिए किवली में पधारिए, चाहे रेडियो मधुबन में पहुंचे तो हम तो मिल जाए, क्योंकि आप तो जानते गोपाल राम जी को इतना परिचय हो गया था, उनसे भी कुछ सलाम वसलाम नहीं, तो हम कहीं पर भी आपका जहाँ संकल्प करेंगे वहीं पर हम पहुंच जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हमारा कर्तव्य हमको करने सेवा जो हमको दिए है करान करावन हाथ करा रहा है
1: वो करा रहा है, और पवित्र जीव है ये घूम रहा है प्रयास में।
0: सही बात, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद,
0: राम राम, ओम शांति और नमस्ते।
1: नमस्कार।

0: मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, माने आवे पिया जीरी हिचकी, मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे।
1: अभी बजे हैं रात के 1, याद दिलाइए स्वयं को, मेरा तो परमपिता परमात्मा एक।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। शास्त्र अनुसार विधिवत नियम और कठिन अनुशासन मानकर संगीत परिवेशन करना ही शास्त्रीय संगीत है। जैसे कि ध्रुपद, धामर, ख्याल इत्यादि शैली इस शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत होते हैं। साधारण श्रोता में अल्पज्ञ संगीत धारणा होती है तो इसमें सहजता से प्रविष्ट नहीं कर सकते। इसके लिए कठिन साधना की जरूरत है, तब सफलता अनिवार्य मिल सकती है। तो आइए शास्त्रीय संगीत के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हर बार की तरह मौजूद है हमारे साथ श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ, जितने सारे संगीत प्रेमी हैं, विद्यार्थी हैं, सबको मैं नमस्कार करती हूँ।
0: श्यामली जी, हमने आज शास्त्रीय संगीत के बारे में कुछ जानकारी दी, शास्त्रीय संगीत की और महिमा में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: हाँ, शास्त्रीय संगीत जैसे हमारा नींव है, घर अच्छा। की जो नींव होता है, या बचपन में जब बच्चे बड़े होते हैं, माता पिता उसको जब पहले शिक्षा देते हैं, माता पिता गुरु है, उसके बाद जब शिक्षा लेते हैं तो वो नींव हो गया ना, उसी संस्कार बढ़ जाते हैं। वो जैसे जितना सुंदर संस्कार, जितना सुंदर शिक्षा मिलते हैं, वो उसको अंदर बढ़ जाते हैं, उसी से वो बाकी जिंदगी में सफलता लाते हैं।
0: मतलब बचपन में माता पिता के द्वारा मिले हुए संस्कार इतने पक्के हो जाते हैं जो जीवन भर काम आते हैं।
1: इसलिए तो उनका तो उत्तरदायित्व है ही माता पिता की। तो कोई भी बच्चे अगर उस टाइम में नींव को मजबूत कर लेते हैं तो बाकी जिंदगी में सफलता तो अनिवार्य होते हैं।
0: वैसे संगीत में भी शास्त्रीय संगीत,
1: संगीत में भी शास्त्रीय संगीत ऐसी है जिसको हाथ पकड़ के कोई भी संगीत प्रेमी चल सकता है। संगीत शिक्षा देने में या करने में सफलता मिलते है उसको। ठीक है,
0: तो माना शास्त्रीय संगीत सीखना अनिवार्य हो जाता है।
1: जी, जैसे बचपन में ओ आ ई ई अगर नहीं सीखेंगे
0: तो शब्द कैसे आएंगे, वाक्य कैसे बनेंगे?
1: कोई भी शिक्षा में तो ये तो पहले तो है ही, प्राइमरी जो सेशन होता है वो तो चाहिए ही चाहिए ना। ये शास्त्रीय संगीत ऐसी ही है।
0: अच्छा, मालकोस राग हम 2 हफ्तों से उसके बारे में सीखते आए हैं।
1: हाँ जी,
0: आज आप आगे हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हम तो विलंबित ख्याल सिखा दिया, थोड़ा इतना कम टाइम में नहीं होता है, तब भी अगर शुरू करते हैं तो अच्छा है
0: जी।
1: तो आज क्या करेंगे, वैरवी ठाट है, तो इसमें रे और पा वर्जित है। इतना सुंदर, हर राग में पा होता ही है, यूज होता ही है, लेकिन इस राग में पा वर्जित है, पा रे वर्जित है, तो इसलिए माँ को वाइटल स्वर, माँ को उसके ऊपर डिपेंड करके हमको चलना है। जैसे सा पा सा होता है, अभी क्या करके सा मा सा। अगर रे पा वर्जित है, ऐसे भी भैरवी ठाट जो है, भैरवी राग भी ठाट भी इतना सुंदर इसका जो चलन है, तो जो मालकोस राग है रे पा वर्जित है और गा नी धा कोमल है, तो हमने पहले बताया। तो अभी आज क्या करेंगे, 3 ताल के ऊपर छोटा ख्याल दे देंगे। स्वरलिपि पहले अगर लिसनर लिख लेते हैं तो अच्छा है, किताब पेंसिल लिख लेते हैं तो मैं पहले बताना चाहती हूँ कि स्वरलिपि क्या है। ठीक है, 3 ताल के ऊपर है। पहला जो लाइन है, पहले जो बंदिश का जो लाइन है, 2 लाइन में है, थोड़ा डिफर है, बाकी कुछ नहीं है। पहले लाइन है जैसे फाक से शुरू होता है, मा गा सा सा नी सा धा नी सा आ मा आ गा मा गा सा। लिसनर जरूर ध्यान देंगे, गा धानी कोमल है
0: जी।
1: फिर वही लाइन दूसरा है, गा गमा गा सा धानी, ये जो धानी है नीचे का नी है, धानी सा आ मा आ गा आ मा आ। फिर से बताती हूँ, मा गा सा नीसा धानी, ये नीसा धानी जो है नीचे का है, सा आ मा आ गा मा गा सा। नेक्स्ट लाइन, गा गमा गा सा धानी नीचे है, सा आ मा आ गा आ मा, ऊपर की तार स्वर की है। सेकंड लाइन, सा आ सा नीसा नी धा मा धा नी ई धा नी धा मा आ, यह स्थाई का स्वरलिपि है
0: जी।
1: अभी हम अंतर की स्वरलिपि बताते हैं, मा मा गा गा मा आ धा आ नी सा सा गा नी सा सा, ये सा भी है गा भी है ऊपर की है. नेक्स्ट लाइन सा आ नी धा, सा है तार स्वर की. मा धा नी ई धा नी धा मा, मामा गा गा मामा धा धा नी सा गा गा, ये जो है गागा ऊपर की है. नीसा गागा मागा सासा ऊपर की है मागा सासा. लास्ट लाइन सा आ नीसा नीधा माधा नी ई धा नी धा मा. ये चार लाइन है अंतरा की और दो लाइन है स्थाई का. लेकिन पहले जो लाइन है दो लाइन जो है अलग अलग कर सकते हैं
0: जी.
1: ठीक है तो हम करके सुनाते हैं. तो पहले आरोहण अवरोहण पकड़ जी करते.

0: ये एक ही लाइन दो बार अलग अलग है,
1: अलग अलग कर
0: तो हमने ऐसे सुना है कि अगर करते, क्योंकि अभी ऊपर चढ़ रहे हैं ना
1: जी,
0: थोड़ा कठिन तो चाहिए ना, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी तो प्राइमरी में नहीं है ना, थोड़ा बेसिक नॉलेज तो चाहिए, तो ऊपर उठना चाहिए। इसमें दो लाइन, पहला जो लाइन है इसमें दो अलग अलग ढंग से हमने किया है, उसके बाद सेकेंड लाइन है सा। इसमें अगर आकर सहित करते हैं तो बहुत अच्छा है।
1: ऐसे भी प्रैक्टिस करने के लिए तो आकर सहित ही करना
0: करेंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में बंदिश दे देंगे।
1: अच्छा।
0: तो बहुत सहजता से उठा सकते हैं।
1: श्यामली जी, यहाँ ही हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में हमारे सभी श्रोता मित्रों को मालको सराग से संबंधित गीत सुनाते हैं। आप सभी श्रोता मित्र इसका आनंद लीजिए। हम पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक से पहले मालको सरा के आरोहण अवरोहण पकड़ के बारे में हमने शामली जी से जानकारी ली और भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक ही स्थाई का अलग अलग रीत से हमको सिखाया भी कि किस प्रकार हम अलग रीति से भी गा सकते हैं। शामली जी आगे आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: अभी ये जो बंदिश जो है अंदर भी उठा देती हूँ।

0: हमने क्या किया, स्वर लिपि जो दिया है पहले स्थाई अंतरा, स्थाई का दो लाइन अंतरा जो है चार लाइन की है, नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको बंदिश बैठा देंगे।
1: अच्छा, मगर इस एपिसोड में आगे हमको मालकोस में क्या सिखाएंगे?
0: आगे हम क्या करेंगे, छोटा सा मालकोस की जो बंदिश अच्छा। मैं सुना देती हूँ,
1: मतलब सिखाने वाली नेक्स्ट एपिसोड में सिखाएंगे। अभी यूं
0: अभी यूं ऐसी बहुत सुंदर एक बंदिश है,
1: बंदिश सुनाकर आप उसकी सुंदरता को
0: और भी बढ़ाते हैं
1: जी।
0: और भी बढ़ाते हैं
1: बिल्कुल
0: ठीक है।

0: हमको भी आप जो इतनी सहजता से गा लेते हैं इसको सुन सुन के सिर्फ मन ही मन में मुस्कुरा ही सकते हैं, हम गा नहीं सकते आपकी जैसा।
1: आपको पहले एपिसोड में बताया कि ये जो राग जो है इसका समय है मध्य रात्रि का।
0: जी जी,
1: तो मध्य रात्रि में क्या हुआ कि कृष्ण जी राधा जी जब रास करते थे, निद्रा देवी क्या करते थे उस टाइम सबको निद्रा में पहुंचा देते थे, तो उस टाइम सब निद्रा में चले गए। लेकिन इनका दोनों में जो मिलाप है, राधा और कृष्ण जी को मिलाप है, हर जगह में आप देखना श्रृंगार भाव है, मन ही मन में मुस्काए जाते। जो राधा कृष्ण जी का ये भाव जो है वो मध्य रात्रि का ही होता है, इसलिए मध्य रात्रि में इस गीत सुनने से क्यों नींद आते हैं इसका राज यही है। इसलिए मैं सोचती हूँ इसलिए शायद ये मध्य रात्रि का शास्त्रीय संगीत है।
0: ओके श्यामली जी, आज जाते जाते इसी बंदिश के साथ साथ और भी क्या सुनाना चाहेंगे आप?
1: आज बहुत सुंदर एक फिल्म है नवरंग। अच्छा। बहुत पुरानी फिल्म है,
0: बहुत फेमस है।
1: आशा जी और महेंद्र कपूर जी ने ये निभाया है गीत। आधा है चंद्रमा रात आधी, ये राग जो मालकस के ऊपर है ये गीत आधारित है। मैं करना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि कोशिश करना भी चाहती हूँ। बहुत सुंदर गीत है।
0: ऐसे भी पहले भी आपने ये राग के बारे में बताया कि ये मध्य रात्रि में गाया जाने वाला राग है और ये गीत भी उससे ही कुछ संबंधित है। जी,
1: आप देखना मालकस राग की जैसे जैसे गीत चलता है वो ऐसे ही होता है राग के समय।

0: बहुत सुंदर, हमारी मुलाकात भी आधी ही रह गई।
1: सुंदर है आधे को लेकर सब ये गीत
0: आधा, राधा
1: सब कुछ,
0: जितने भी शब्दों का प्रयोग किया।
1: तो मध्यरात्रि का ये गीत जो है कितना इसके साथ कितना मिलजुलते हैं
0: जी
1: समय के अनुसार।
0: जी जी बहुत सुंदर। श्यामली जी यहाँ ही हम लेते हैं इजाजत, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत विषय, तो आप जरूर हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9414151415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किसके पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जब कबूतर को पता चलता है कि बिल्ली उसके पास आ गई है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है जैसे बिल्ली गायब हो गई है, पर ऐसा होता नहीं है बाबू। वैसे हम लोग कभी कभी यही तरीका अपनाते हैं, समस्या से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या इससे वो खत्म हो जाती है? घर ऑन एयर के पिछले एपिसोड में आपने सुना कि राठौड़ परिवार बड़ी मुश्किल से नाश्ते की टेबल पर बैठे ही थे कि तभी दरवाजे पर होती है एक नॉक। कौन पूछने पर गेट से जवाब आता है, पुलिस। अब यहाँ कबूतर है राठौड़ परिवार और बिल्ली है पुलिस। चलिए देखते हैं कि अब कबूतर करता क्या है।
1: बड़े भैया गेट मत खोलिए, मैंने सीरियल में देखा है, पुलिस एकदम से आती है अंदर और बिना कुछ बताए हथकड़ी लगाकर ले जाती है और फिर बहुत मारती है।
2: अरे अरे तो आप गेट मत खोलिए, आपको ले गए तो हमारा क्या होगा?
3: अरे पुलिस वालों के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि किसी को भी ले जाए, और मुझे क्यों पकड़ेंगे, मैंने क्या किया है?
4: एक काम करते हैं, तुम लोग सब चुप हो जाओ, उनको लगेगा घर पे कोई नहीं है तो सब वापस चले जाएंगे।
5: माँ ऐसी थोड़ी होता है, आप
4: चुप कर किशन, जेल जाना है क्या?
6: माँ आप डरो मत, कुछ नहीं होगा। बड़े भैया आप बैठिए, भाभी घबरा रही है, मैं देखता हूँ और आप लोग जरा शांत हो जाइए।
7: भैया मैं भी आपके साथ चलता हूँ।
6: ठीक है चलिए।
4: नहीं वीरेंद्र रुक, अरे रुक बेटा।
6: माँ आप मेरा हाथ पकड़ो, मैं हूँ ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा।
8: हम नजदीकी पुलिस थाने से आए हैं, हमें विजय की तलाश है।
7: आपका मतलब विजय दीनानाथ चौहान है?
8: आप पुलिस वाले से मजाक कर रहे हैं?
7: सॉरी सर, मैं नर्वस होता हूँ तो मजाक निकल जाता है।
8: ठीक है आप मेरी बात का ठीक से जवाब दीजिए, विजय कहाँ है?
6: जी विजय नाम का तो यहाँ कोई नहीं रहता।
8: देखिए हमें पता चला है यहीं रहता है, एक आरोपी को छुपाना कानूनन जुर्म है, इसलिए जल्दी बताइए विजय कहाँ है।
6: सर हम सच कह रहे हैं, यहाँ कोई विजय नहीं रहता।
8: देखिए हमारे पास प्रूफ है, विजय कुशवाहा आधार कार्ड डिटेल्स हैं, उसमें यहीं का एड्रेस दिया हुआ है।
9: अरे ये तो अपना विजय है।
8: हाँ हाँ पकड़े गए, मतलब हमसे झूठ बोल रहे थे, कौन विजय, अब कहते हो अपना विजय।
6: नहीं नहीं सर, मतलब क्या है ना, ये हमारे परिवार का मेंबर नहीं है, ये तो हमसे पहले इस मकान में रहता था तो इसलिए ये एड्रेस पड़ा होगा, इसकी पोस्ट आती है कभी कभी यहाँ तो लेने आ जाता है बस।
8: कोई और आपके एड्रेस पे 5 साल से अपनी पोस्ट पार्सल मंगा रहा है, आपने कुछ नहीं कहा?
7: ये लोग यहाँ 5 साल से रह रहे हैं।
8: सर मुझे लगता है ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं।
6: नहीं सर हमें लगा वो तो हमारा दोस्त है।
10: सर हुआ क्या है ये तो बताइए।
8: देखिए विजय ने बड़ा बैंक फ्रॉड किया है।
0: कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर में कोई नहीं फंसना चाहता, लेकिन अगर मुसीबत आ ही जाए तो फिर समझदारी ही तो काम आती है। आपका आईडी प्रूफ आपका प्रमाण है, ध्यान रखिए कि आपके नाम नंबर या एड्रेस का कोई और इस्तेमाल ना करे। अब पुलिस अपने विजय, मेरा मतलब है कि विजय को तो पकड़ ही लेगी, बैंक में जो फ्रॉड किया है, लेकिन क्या राठौड़ परिवार की समस्या कम होगी? अब ये तो बाद में पता चलेगा।
11: मर्दों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए, हमसे हंस खेल के बात करने वाला वो विजय फ्रॉड निकला।
12: रागिनी दीदी पहली बार सही बात बोली है आपने।
11: पहली बार तो क्या कहना चाहती है शांति, क्या मैं हमेशा गलत बात कहती हूँ?
10: भैया ये हमारी बहने ही है ना, कहीं मंदिर से तो उठा कर नहीं लाए थे इन दोनों को?
11: किशन तू तो पिटेगा मुझसे।
12: दीदी आपसे और मुझसे दोनों से।
11: रुक अभी बताती हूँ।
12: पकड़ो दीदी पकड़ो इसको, बहुत मजाक बनाता है हमारा।
10: अरे कोई बचाओ मुझे इन दोनों से, कोई छोड़ के आओ इनको वापस मंदिर में।
11: तुझे तो मंदिर में भी नहीं रखेंगे, रुक।
1: मारो दीदी, मारो मारो।
11: अरे ये तुम तीनों क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो?
6: बड़े होकर भी बचपन भी जी लेना चाहिए कभी कभी, घर की रौनक इस मीठी प्यार वाले झगड़े से तो है। और देखो ये लोग इस बहाने एक तो हो गए।
2: इसलिए तो मैं भी प्यार से झगड़ती हूँ ताकि आप लोग खुश रहें।
4: बड़ी बहू तू तो इतना खुश कर देती है कि खुशी के साथ मेरा बीपी भी बढ़ जाता है।
3: वैसे चंद्रावती तुम तो बचपन में बड़ी शांत थी, तुम्हारी माताजी ने बताया था मुझे, कहीं शादी के लिए झूठ तो नहीं कह दिया था?
2: मैं तो सच में बड़ी शांत थी, अपने छोटे भाई पर कभी हाथ नहीं उठाया मैंने। और ये आपकी बहनों को देख लीजिए।
10: बड़े भैया आप तो बहुत लकी हैं।
6: हाँ बिल्कुल, बड़ी बहू ने आते ही इस घर को संभाला, इस घर को एक करके रखा। जब इन दोनों की शादी हुई थी तो चंद्रावती 23 साल की थी और गजेंद्र 26 का, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी बहू पर ज्यादा थी। शादी होते ही एक लड़की से अब ऐसे उम्मीद लगा जैसे एकदम से वो बदल जाए, अपनी उम्रों से भी बड़ी होकर व्यवहार करने लगे। और वही लड़के को छूट दे देते हैं बस इसलिए कि वो एक लड़का है। इसलिए मैं तो सच में मानता हूँ बहुत सयानी है।
2: थैंक यू।
0: चलिए कोई तो समझा कि बहू भी एक आम लड़की ही तो है जिसे अपनी सहेलियों से बात करना पसंद है, जिसकी आंखों में अपने भी कुछ सपने हैं। उसी लड़की को शादी की रस्मों के बाद एकदम से सब जिम्मेदारियों से लाद दिया जाता है और कहीं चूक हो जाए तो उसे बुरी बहू का खिताब दे दिया जाता है। उसकी गलतियों पर ताने कसने की जगह प्यार से समझा कर गले लगाकर तो देखिए, देखिए कि कैसे वो बहू बेटी बन जाती है। हाँ वैसे बहू से याद आया कि राठौर परिवार की छोटी बहुरानी राजकुमारी जी नजर नहीं आ रही। हो समझ गया, राजकुमारी जी किचन में है।
4: कुमारी ये क्या कर रही हो? अरे ये कढ़ाई जमीन पर क्यों गिरी हुई है और ये दो तरफ से मुड़ी हुई क्यों है?
13: मासा मैं तो आपने जो कहा था बस वही कर रही थी। आपने ही तो कहा था मासा कि राजकुमारी हमें कढ़ाई की जरूरत नहीं है, जा इसे बदल कर कुकर ला। हाँ मैं तो इसे कुकर बना रही थी मासा।

0: ओ, तभी मैं सोचूं कि मैं तो इंजीनियर भी नहीं हूँ, फिर मासा ने मुझे कुकर बनाने को क्यों बोला। लेकिन फिर मैंने सोचा, मासा ने बोला है कि कढ़ाई को बदल के कुकर बना ला तो मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए।
1: आपको क्या लगता है भाभी, इंजीनियर बर्तन बनाते हैं?
0: हाँ, मतलब वो पास वाली दुकान पे जो छोटू है ना, वो इंजीनियर ही तो है, बर्तन ठीक करके देता है सारे वो।
1: भाभी, वो उसके पापा की दुकान है और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है।
0: ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में शुरू में ही सिखा देते हैं बर्तन बनाना।
2: हमारी भाभी कितनी भोली है ना।
3: हाँ, भोली भी है और भाली भी,
1: जैसी भी है हमारी है।
2: मैं बहुत लकी हूँ मासा कि इस परिवार का हिस्सा हूँ।
4: ऐसा आज्ञाकारी देखा है आपने कि कोई कढ़ाई को कुकर बनाने की कोशिश करने लगे। वैसे हर परिवार में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, पर यही तो जिंदगी का मजा है। जैसे चाट होती है ना, थोड़ी खट्टी, आहा, थोड़ी मीठी और थोड़ी तीखी, हर स्वाद होता है। ऐसे ही जिंदगी में हर कोई हमारे जैसा सोचने, बोलने और करने लगे तो फिर बोरिंग ना हो जाएगी लाइफ। हाँ, तो चलिए, आप और हम लोगों में छुपी खूबसूरती को देखते हैं और उन्हें सराहते भी हैं। आखिर अपने तो अपने होते हैं। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ, आपका साथ निभाने और राठौड़ परिवार की कहानी सुनाने फिर आऊंगा अगले एपिसोड में। इंतजार कीजिएगा हमारा, क्योंकि भाई ये राठौड़ परिवार है, बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है यहाँ।
5: घर ऑन एयर, पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौड़, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी, अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

0: रुक, ओए रुक, ओए रुक, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे

0: पेपर के लिए ही बोल रहा हूँ।
1: कोई चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, कोई इतनी धूप है धूल है वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो, तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
2: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
1: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो है? पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं होलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

मैं अशोक खोसला बोल रहा हूँ और मैं रेडियो मधुबन सुनने वालों सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। वो सबको बहुत बहुत खुश गवार गुजरे, सब बहुत खुश रहें और आगे भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, यही शुभकामना है। धन्यवाद। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

शांति। आज है 17 अगस्त 2026 और आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को बाप और दादा की मधुर कहानी सुनाते हैं। बाबा कहते हैं डबल ओम शांति, एक शिव बाबा ओम शांति करते हैं, दूसरा ब्रह्मा बाबा ओम शांति करते हैं। ये दोनों बाप दादा है। बाबा कहते जैसे पहले कहानी सुनते थे, एक था राजा एक थी रानी, ठीक इसी तरह एक था बाबा एक था दादा। और बाबा आते हैं दादे में और हम बच्चों को शिव बाबा का वर्षा मिलता है दादा द्वारा। तो बाप दादा की ये वंडरफुल कहानी संगम पर ही समझने की है। साथ ही साथ बाबा कहते बच्चे ड्रामा पर अटूट निश्चय चाहिए। ड्रामा की हर घड़ी हर सीन जो भी चल रही है एक्यूरेट चल रही है, इसीलिए कभी भी संशय बुद्धि नहीं बनना है, ये ऐसा क्यों या ये क्या। बाबा कहते ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है और तुम बच्चों को भी सदा इस ड्रामा की पटरी पर स्थिर रहना है। जितना हो सके ड्रामा को यथार्थ रीति समझते हुए हर कदम आगे बढ़ना है, पुरुषार्थ करते जाना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य, ओम शांति। मीठे बच्चे बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। आज की मुरली से प्रश्न है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है। उत्तर है पुरुषार्थ कर गैलॉप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना। कर्मातीत का मतलब है आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसीलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति। दोबारा बाबा ने कहा ओम शांति। ये दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा एक था दादा। एक ओम शांति बाबा ने कहा, दूसरी ओम शांति दादा ने कहा। कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा एक थी रानी। अब यह फिर है नई बात, एक बाबा एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा दूसरा था ब्रह्मा दादा। तो ये सारी है नई बातें। अब शिव के बच्चे तो सब है, सभी आत्माएं एक बाप की संतान है, वह तो है ही है। अविनाशी आत्मा परमात्मा की संतान तो है ही है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थे। उन्होंने कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं। बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पोत्रे भी हैं। बच्चे तो है ही, अब पोत्रे भी बने हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोत्रे भी हैं। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने,
अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है जिसको शिव बाबा कहते हैं, परंतु वर्षा शिव बाबा का है लेकिन कहा जाता दादे का वर्षा मिलता है क्योंकि प्रजा पिता है और प्रजा पिता उसका पिता शिव बाबा तो दादे हो गए तो दादे का वर्षा मिलता है, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने कारण उनको हम दादा कहते हैं, बड़ा भाई भी है, वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा नहीं, दादे का यानी ग्रैंडफादर का, ब्रह्मा दादा अर्थात बड़ा भाई। वैकुंठ वासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है, शिव बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो फिर तुमको श्राप मिलता है, किससे, रावण से, नीचे उतरते आते हो जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई, राहु की दशा है सबसे बुरी, ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी तो पांच विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, है तुम्हारी बात, बाबा कहते ये इस समय तुम्हारी बात है, उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया है। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं, यहां बाप तुमको कहते हैं पांच विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। ग्रहचारी का कारक है ये पांच विकार, इसीलिए उसका दान दे दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पापात्मा बने हो, मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे फिर सतो रजो तमो बने हैं, 84 जन्म लिए हैं ये तो पक्का निश्चय है, बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं, पहले उन्होंने को ही मिलना चाहिए बाप से, पहला पहला वर्षा बाप से किसको मिलना चाहिए, देवताओं को ही मिलना चाहिए। गाया भी जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लगा जब सतगुरु मिला दलाल। बाप कहते पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो, आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी है सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्र तो बिल्कुल सहज है, अभी कलयुग और सतयुग का संगम है, लड़ाई भी सामने खड़ी है, यह भी तुमको निश्चय है सतयुग की स्थापना होती है। कलयुग में जितने भी है उन सब के शरीर खलास हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुक तो कर जाएगी, यह सब के कयामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएगी, ये तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरे तरफ हो सिर्फ तुम थोड़े से, तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। बाबा को चाहिए पक्के निश्चय बुद्धि, इसीलिए बाबा कहते एक तरफ सारी दुनिया, दूसरी तरफ तुम थोड़े से ब्राह्मण, उसमें भी पक्के निश्चय बुद्धि कितने हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला, उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्लें होती है, ये निशानी है। हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे,
फिर यहां आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16108 की भी है। अब 16000 है या 5-10 हजार है, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। ये मालाएं गाई जाती है। बाबा कहते हैं, ये सब तुम क्यों विचार करते हो? जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे, उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200, 300 बने, ये पूछना नहीं है। राजाएं भी तो होंगे, अलग अलग राजाओं की राजधानी होगी। महाराजा महारानी एक ही होंगे, लेकिन अनेक राजाएं तो होंगे, तभी तो दिखाते हैं। श्री कृष्ण अलग राजा के प्रिंस थे और राधा अलग राजा के प्रिंस प्रिंसेस थी। तो इसीलिए बाबा कहते, 100 बने, 200, 300 बने, ये पूछना नहीं है। बाप कहते, तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो ये सब समझ जाएंगे। कितने होंगे वो भी सब समझ जाएंगे। आज हम यहां है, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते हैं। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहे या 9-10 लाख रहे, लाखों के अंदाज में ही सतयुग की आरंभ की जनसंख्या होगी। तो बाबा कहे, फिर लाख रहे या 9-10 लाख रहे, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे, तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है। बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती है, सब चीजें महंगी होती जाएंगी। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगाते रहेंगे, बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। ये भी ड्रामा का एक सीन है कि बहुत बहुत महंगाई हो करके फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सतयुग में कोई चीज पर खर्चा नहीं होगा, सब खानियां आदि भरपूर हो जाएगी। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना, श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभव का भोग लगाते हैं। वहां बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं। कहेंगे, हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं। कहेंगे, देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वह नाराज हो जाएंगे। अब इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं है। तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो, जानते हो ड्रामा अनुसार यह विनाश होना ही है। कलयुग से बदल फिर सतयुग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के वश हो। ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में एक मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता है। जैसे बाबा आया, तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसे होगा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम गैलॉप कर रहे हो। जानते हो, बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है। अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना है, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो, यह भी जानते हो। बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्म में बदली हो गए हैं, वह निकल कर आते रहेंगे।
आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे, बाप से वर्षा पाने, ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे, ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे, ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे, देखेंगे विनाश सामने आ गया है। ये तो ठीक कहते हैं, जैसे ही आसार दिखाई देंगे तो कहेंगे ये तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि होती जाएगी, ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फुल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे, देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो, इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है, संगम का ही गायन है, गंगा सागर का मेला दिखाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग का, यह है ज्ञान सागर और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। गंगा सागर का मेला बाबा कहते स्थूल का नहीं, ये सूक्ष्म है कि अभी ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाओं का बाबा से मिलन है। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है, वह समझते हैं पतित पावनी गंगा है और फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं। ये नदियां तो सतयुग से लेकर चलती आती है, आजकल तो नदियां भी कहां कहां डुबो देती है, बाढ़ आती है तो कितने डूब जाते हैं। प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है, सुनामी लहरें आती है तो सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है, सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देंगे। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं, यमुना के कंठे पर दहली परिस्थान थी फिर बननी है, सतयुग में थोड़ी ही जीव आत्माएं रहती है फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। अभी है कलयुग का अंत, कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं, बेहद का नाटक है, जिसको अच्छी रीति समझना है। भल कोई अपने को एक्टर समझते भी है परंतु कल 5000 वर्ष का है, यह किसको भी पता नहीं है। कहां 84 जन्म, कहां 84 लाख। अभी तुम रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है, बाप कहते हैं मन मना भव, बाप से वर्षा मिलता, लेकिन उसके लिए बाबा को याद करना पड़ता है, तो बाबा कहते बच्चे मन मना भव, बाप को याद करना है। शिव भगवान वाच, भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है, बाप जो नई रचना रचते हैं उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न सोले कला संपूर्ण। अभी तुम ऐसे बन रहे हो, बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फर्क है, देवताओं और परमात्मा की महिमा में रात दिन का अंतर है। ये राजयोग है ना, गाया भी जाता है, भगवान राजयोग सिखाते हैं, वह निराकार तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े, भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, और किसका दिव्य जन्म नहीं गाया जाता, यह भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको ही भगवान कह याद करते हैं, और तीसरा है अलौकिक बाप, ये फिर वंडरफुल बाप है। तीन बाप है, लौकिक अलौकिक पारलौकिक। जब पारलौकिक बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो बीच में यह अलौकिक आ जाता है, क्योंकि बिना अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्ट नहीं हो सकते। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं,
कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं, लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती है हम सब ब्रदर्स हैं। अब इस संगम पर ही फिर अलौकिक बाप मिलता है। ये ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा, सतयुग में नहीं रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो यह अलौकिक जन्म हुआ ना, इनको कोई समझ नहीं सकते। वह लौकिक, वह पारलौकिक और यह है संगम युगी अलौकिक बाप। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते आए हैं, पारलौकिक बाप को वहां कोई याद नहीं करते। वहां होता ही है एक बाप, हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते। सतयुग में कोई हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते हैं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो बाप दो होते हैं, संगम पर है तीन बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है, अभी तुम उनके बने हो। जानते हो यह अलौकिक बाप है। अभी तुम इन दोनों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं रहती। दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरण करते हैं। ये तो बिल्कुल सहज बात है कि जरूर दुख होगा तो सब परमात्मा बाप को याद करेंगे। सतयुग त्रेता में एक बाप होता है, द्वापर में दो बाप होते हैं और इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो। जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो, तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो जो फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है। जो तुम इन आंखों से देखेंगे, बॉम्ब्स छोड़ेंगे, मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी बॉम्ब छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे। अब यहां लड़ाइयां लगती रहती है, खुद भी कहते हैं हम तंग होते जाते हैं। 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बॉम्ब्स में तो चपटी में सेकंड में सब खलास हो जाएगा। चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाते हैं। यह तो बॉम्ब्स है, आग भी लगनी है। बॉम्ब्स के द्वारा ही आग भी बाबा कहते लगनी है। तुम बच्चे जानते हो बाप आए ही है किस लिए, स्थापना और विनाश कराने। तो जरूर यह सब होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। अर्जुन तुम अडोल स्थिर कहां बने हो। बुद्धि योग इसीलिए टूटता है क्योंकि अभी तक अडोल स्थिर नहीं बने हैं। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, कोई तो सारे दिन में घंटा आधा भी याद नहीं करते हैं। बाप कहते तुम कर्म योगी हो, 8 घंटा तो ये सेवा करेंगे, 8 घंटा याद कर सको इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह है मेहनत। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है। यह भी बाबा बतलाते हैं कि जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वह भी इतना याद नहीं करते हैं। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना, एकलव्य और अर्जुन का भी मिसाल देते हैं ना। मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़ी लगेगी।
तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी

यार प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसीलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, तोड़ना मोड़ना और जोड़ना। इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। तोड़ना मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार यह 3 शब्द है। पहला, कर्म बंधन तोड़ने हैं। दूसरा, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है। और तीसरा, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। यही 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नैनों से विनाशी चीजें देखते हैं, वह सब विनाश हुई पड़ी है। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो नहीं सकती। आज का स्लोगन है, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। आज का व्यक्त इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, अगर ब्राह्मण जीवन में संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाते हो। कोई भी कर्म नहीं हुआ लेकिन व्यर्थ कर्म भी हुआ तो पश्चाताप के बजाय महसूसता की स्टेज होती है। महसूस होता है कि ये रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। वह बात कांटे के समान चुभती रहेगी, इसीलिए इस व्यर्थ से भी मुक्त बनो। इस व्यर्थ से भी बाबा कहते मुक्त बनो। अच्छा।